0: वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिक करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
1: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इमारत के मालिक समेत जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
3: हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं
3: ना, एक्शन। बच्चों की जान है और कोई भी कल्प्रिट छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ ज्यादा है। अब उन लोगों की जुबानें आप सुनिए कि हादसा कैसे हुआ।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है, तो इन दोनों में भी पीजीज ही है, और इनके एंट्रेंस एक उधर से एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है, और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है, और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यन के तरह में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20-25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है,
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी, अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली है, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: सत्य निकेतन हादसे में 11 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है, जिनमें से 3 की मौत हो गई है, और 5 मंजिला जब इमारत गिरी तो आसपास के लोगों को लगा मानो भूकंप आ गया हो।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना

0: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेबर काम कर रही थी, अब यहाँ पर दो कारपेंटर काम कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिर गई है। ऐसे बात,
2: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
3: क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा था?
4: बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
3: अच्छा।
4: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीज थे, और एक पीजीज में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी, अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
3: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
4: पानी।
3: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें और बेसमेंट में काम चल रहा था। सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
2: इमारत ढहते ही यहां अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
5: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहां पर आप देखिए, यहां लोकल्स की मदद से जो है यहां ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहां पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहां पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहां लोकल्स हैं वो लोकल जो है यहां मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहां पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहां आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहां पर तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
2: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
3: मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहां पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा। पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
2: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इलाके में कई छात्र आवास।
5: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी, वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है, कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
2: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था 5

0: मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
1: ये इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही है और इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है, इस समय फरार है और बताया जा रहा है कि मेडिकल शॉप भी वहां पर चलते थे और इस इमारत में 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ, वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद है। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
2: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के, एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
3: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, MCD का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके, आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में UPSC की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
1: दिल्ली में इमारत के ढहने की न तो ये कोई पहली घटना है न ही अंतिम। ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में भी इमारत गिरी थी। 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद भी अधिकारियों ने कहा, लेकिन दिल्ली की तस्वीर नहीं बदली। एक और हादसा हो गया।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी? और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? ये किसकी जिम्मेदारी थी?
3: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन एक घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है। बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है। एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है, लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहाँ अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो MCD समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
4: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज हैं आपके, इस समय सभी जायज हैं, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई?
3: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है, और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं। और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई। अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
5: पीजी का काम चल रहा
6: है? नहीं, ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था। वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
7: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ के अंदर सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है, इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
9: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
1: दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया है। गोवा में गृहमंत्री शाह ने अपने कार्यक्रम को रोका तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया, और विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे ये बिल्कुल कोई इनकी कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या, कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहां आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो। स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो वही छत गिर जाती है तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विपक्ष के वार पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा पीएम ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन असर हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। आरएसएस के आलोचकों को लंदन से संघ प्रमुख मोहन भागवत का जवाब, कहा नफरत नहीं शुद्ध सात्विक प्रेम है संघ के काम का आधार। बिहार में उफान पर गंगा, 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक कोसी और घाघरा में भी बढ़ा पानी। आज सजेगा देश के बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच, सीडीएस एनएस सुब्रमण्यम के संबोधन से होगी शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम को करेंगे रक्षा के क्षेत्र में नए भारत की बात।

आपके साथ पूजा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देर रात मलबा हटाने के दौरान एक और शव बरामद किया गया। इस पूरे हादसे में जान गंवाने वालों में एक छात्र और एक मजदूर भी शामिल है। आपको ये बता दें कि 4 मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। तो वहीं पूरे हादसे में घायल हुए 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव टीम ने अब तक 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 5 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। मलबा हटाने के दौरान एक और शव देर रात बरामद किया गया है, तो कुल संख्या अब 6 हो चुकी है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की अभी फिलहाल तलाश में जुटी हुई है। अभी मलबा हटाने का काम देर रात वहां पर किया गया। 17 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाज आई रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी इमारत के मालिक समेत जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं ना।
3: बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी
2: पड़ेगी। जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ में हैं। उन लोगों की जुबानी सुनिए कि जिनके सामने ये पूरा हादसा हुआ है।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है, और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20-25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: दिल्ली पुलिस पे है, 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी। अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए। यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनका एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: दिल्ली के सत्यनिकेतन में 5 मंजिला इमारत जब गिरी तो आसपास के लोगों को लगा कि भूकंप आया है, लेकिन इस इमारत के मलबे में फंसे छात्रों की चीख पुकार से हादसे की खबर लगी। इस इमारत में जब छात्र अपने कमरों में थे तब बेसमेंट में काम चल रहा था। इस हादसे ने दिल्ली की खतरनाक इमारतों और मौत वाले हॉस्टल से देश को एक बार फिर से खबरदार कर दिया है।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में, आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी। दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो आ रखा था, फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, और यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ।
4: बिल्डिंग की क्या हालत थी? बेसमेंट में कोई काम चल रहा
5: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था, और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, और आप कह सकते हो कि इलीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक। और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजीस थे, और एक पीजीस में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी, अब हम प्रे करते कि कोई नुकसान ना हो।
4: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
5: पानी।
4: ये जो 40-50 साल, ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था, सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
0: इमारत ढहते ही यहाँ अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
6: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है, अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी, और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
4: किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है, ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भरभरा करके गिरा, पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
0: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास,
6: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
3: इमारत 50 साल पुरानी बताई जा रही थी, इसके बेसमेंट में काम चल रहा था। इसका मालिक आनंद बंसल गुरुग्राम का रहने वाला है। इस इमारत के नीचे मेडिकल शॉप चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस इमारत में करीब 10 कमरे थे।
0: दिल्ली में हादसों की वजह बनने वाली गैर कानूनी इमारत पर समय रहते लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लिया जाता? दिल्ली के जिस सत्य निकेतन में यह हादसा हुआ वहां बड़ी संख्या में पीजी, रेंटेड रूम और हॉस्टल चलते हैं। यहां पर कितनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया। जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे की जगह पहुंची तो उन्हें घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दूसरी इमारत के ऊपर मंजिल का सहारा लेना पड़ा। अगर इलाके की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी गलियां हैं और घनी आबादी के बीच कई बहुमंजिला मकान मौजूद हैं। ऐसे ही एक इमारत गिरने से छात्र दब गए। मलबे में फंसे छात्र ने ये वीडियो बनाया जिसमें दबे हुए छात्र दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई मलबे में दबे छात्रों ने फोन कर मदद मांगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली में इस तरह का हादसा हुआ हो। राजधानी दिल्ली में कई जगह ऐसे ही पीजी संचालित हो रहे हैं। कई जगह ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन नियमों की अनदेखी रहती है। दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।
7: अगर आप नीचे बेसमेंट को, ये क्या है कि हवस है पैसे कमाने की, पीजी ही हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट करना, ज्यादा से ज्यादा भर्ती करना, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना, ये जो हवस है। राजेंद्र नगर में बेसमेंट को यूज कर रहे थे, वो हवस वो भी वही है। ये पीजी का भी मसला यही है। और अभी 3 महीने पहले अगर आपको ध्यान हो तो सैदुला जाब में 5 बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी जो कर रहे थे वो मर गए। तो ये दरअसल क्या है कि ये एक तो ये हवस जो बन गई है कि ज्यादा से ज्यादा माल, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हो, चाहे पीजी वाले हो, चाहे जितने भी है, ये किराए पे देने के एक एक डब्बे का कमरे का मकान बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं।
0: बेसमेंट की वजह से छात्रों की जान जाते हुए देश ने साल 2024 में देखा, जब ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज IAS सर्किल के बेसमेंट में पानी भरने से 3 UPSC छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया गया। जब इसी साल जून के महीने में आज तक ने वहां जाकर पड़ताल की तो हमें बेसमेंट में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए लाइब्रेरी मिली।
8: एक लंबे वक्त से ये सिलसिला चलता हुआ चला आ रहा है। आप किसी भी दिल्ली के लोगों से पूछ लीजिए, जब भी वो कोई बिल्डिंग गिराएंगे तुरंत वहां पर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी, एमसीडी का कर्मचारी वहां पर आ जाएगा और उसके बाद फिर सेटिंग करके जरिए, लोकल पार्षद के जरिए सेटिंग करके आप 3 मंजिल की जहां इमारत बननी वहां 5 मंजिल बना लीजिए और उसके बाद फिर हादसा होता है तो फिर सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगते हैं। तो जरूरी है सिस्टम में बड़े स्तर पर सुधार की। ओल्ड राजेंद्र नगर का हादसा आपको याद होगा, वहां पर किस तरीके से कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र मर गए, उसके बाद आज तक की टीम ने वहां खुद जाकर बाकायदा रियलिटी चेक किया, खुद मुझ पर अटैक हुआ लेकिन वहां कोई बदलाव नहीं आया।
3: दिल्ली में इमारत ढहने की ना तो ये कोई पहली घटना है और ना ही आखिरी। दरअसल ठीक 2 महीने पहले 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में एक इमारत ढह गई थी और ये 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल यही है कि जिम्मेदार अफसरों को ये खतरनाक इमारतें दिखती क्यों नहीं है।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी? और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है? ये किसकी जिम्मेदारी थी?
8: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है। बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है। लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहां अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है। वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो एमसीडी समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
9: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जाए आपके इस समय सभी जाए जाए, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई?
8: ये जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जो जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो एमसीडी के अधिकारी हैं, वो जाएं, जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर एनओसी नहीं है, फायर की एनओसी नहीं है, कई जगह पर एमसीडी की एनओसी नहीं है और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं। और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई। अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
10: पीजी का काम चल रहा
11: है, नहीं ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग थी ये, इसमें पीजी तो था। वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
12: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, देयर विल बी 20-25 सच बिल्डिंग्स जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
13: जितनी भी पीजीज है सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है। इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
14: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि जेई आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे जेई बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
3: इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से।
16: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा, सिर्फ आज तक पर।
17: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
18: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
19: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
18: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: उपहार देने में किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजों का उपहार देने से बचना चाहिए और राशि के अनुसार क्या उपहार दें जिससे संबंध हमेशा मधुर बने रहें? क्या है आपके उपहारों का आपके भाग्य से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

दिल्ली के सत्यनिकेतन इमारत हादसे में मृतकों की संख्या 6 पहुंची। अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के बयान पर सियासी घमासान। विपक्ष के वार पर नितिन नवीन का पलटवार। कहा पीएम ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन असर हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। आरएसएस के आलोचकों को लंदन से संघ प्रमुख मोहन भागवत का जवाब। कहा नफरत नहीं शुद्ध सात्विक प्रेम है संघ के काम का आधार। बिहार में उफान पर गंगा। 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित। पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी। गंडक कोसी और घाघरा में बढ़ा पानी। आज सजेगा देश के बड़े रणनीतिकारों का और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच। सीडीएस एनएस सुब्रमणि के संबोधन से होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम को करेंगे रक्षा के क्षेत्र में नए भारत की बात।

का मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। दिल्ली के सत्यनिकेतन हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। देर रात मलबा हटाने के दौरान एक और शव बरामद किया गया है। इस हादसे में जान गंवाने वालों में एक छात्र और एक मजदूर शामिल है, जबकि 4 मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसे में घायल हुए 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और राहत और बचाव टीम ने अब तक 12 लोगों को सुरक्षित वहां से बाहर भी निकाल लिया है। इस हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। तो कल देर रात मलबा हटाने का काम किया गया, 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

0: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। देखिए, दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत ढह गई। इमारत ढहते ही अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, सिर्फ धूल का गुब्बार नजर आ रहा है और साथ में नजर आ रहा है कि कैसे मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है।
1: यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है। एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है, वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
0: बताया जा रहा है कि इस इमारत में पीजी हॉस्टल था। सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं, इसी वजह से यहाँ दिन भर छात्रों की आवाजाही रहती है। हालांकि सत्य निकेतन में कुल कितने छात्र रहते हैं इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी बचाव काम चल रहा है, वो भी संभाल कर कि कहीं मलबे में दबे किसी शख्स को नुकसान न पहुंचे।
1: तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये पता लग पाए कि कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी। वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है और लोगों को इंजरीज हो सकती है और लोगों को चोट आ सकती है।
0: बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में काम चल रहा था, लेकिन अभी सही तौर पर ये नहीं मालूम चल सका कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पर पहुंची। सीएम ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी, इमारत के मालिक समेत जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: इस्तेमाल हो रहा है, हमारी टीमें जो है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, नीचे ऑक्सीजन भी डाली गई है, कैमरा भी
4: काम कर रहे हैं ना।
3: बच्चों की जान है और कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: जिन लोगों ने इमारत को ढहते हुए देखा वो खौफ में है। उन लोगों की जुबानी सुनिए जिनके सामने ये पूरा हादसा हुआ है।
5: हॉस्टल डेज नाम की बिल्डिंग है, इसके साथ एक और बिल्डिंग पीजी गिरी है। हॉस्टल डेज तो है, वो बॉयज पीजी है प्रॉपर, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी ये, एंड इसके साथ बगल वाली बिल्डिंग भी गिरी है, एंड जो ये येलो वाली बिल्डिंग है ये दोनों हिल रही थी जब वो गिरी है। तो इन दोनों में भी पीजीज ही है और इनके एंट्रेंस एक उधर से, एक पीछे की साइड से, दो साइड से एंट्रेंस है। और मलबे के चक्कर में इनका एंट्रेंस भी जहाँ तक है ब्लॉक हो चुका है, और 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, जितने बच्चे रूम में थे वो तो सारे दब गए हैं, और जो बाहर थे बच्चे उनका पता नहीं है, और जितना भी रजिस्टर में एंट्रीज होंगे उसके हिसाब से ही पता चलेगा अब कितने बच्चे दबे हैं इसमें।
6: कम से कम 40 बच्चों के हताहत होने की खबर है, और ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, सरकार को बच्चों से शिक्षा से कोई मतलब नहीं है।
7: There will be 20-25 such buildings, जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दिल्ली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
8: 1:45 पे दिल्ली पुलिस को फोन किया था, दिल्ली पुलिस 3:15 तक कहाँ थी, और दूसरी बात यहाँ के बिल्डिंग का ओनर कहाँ है।
9: और यहाँ पे जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है, और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ कैंपस के सभी बच्चों का, उनको खाना खराब दिया जाता है, और उनकी मजबूरी है पीजीज की।
7: आधे बच्चे गंदे खाने से मर जाते हैं, जो बच रहे हैं वो बिल्डिंग गिरने से मर रहे हैं।
10: 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं जब हमारे सामने बिल्डिंग गिरी थी, तो काफी नीचे मतलब लेबर भी काम कर रही थी, इसमें 7 से 8 लेबर थी जो काम करे जा रही थी, अब उनका भी नहीं पता कि वो निकल पाए थे या नहीं निकल पाए थे, मगर मुझे इतना पता कि बहुत बच्चे हैं इसके नीचे, कम से कम 8-10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, मगर बाकी जितने भी यहाँ के मोहल्ले क्षेत्र के हैं सबने अपने हाथों से मलबा हटा के 4 लोगों को निकाल लिया गया है।
11: हम दुकान के अंदर बैठे थे, हम एकदम आवाज आई जैसे भूकंप टाइप होता है, 1:30 बजे हम अंदर इतनी नहीं आई, जो बाहर बच्चे खड़े थे उनके पास आवाज आई, हम फटाफट भाग के आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं वगैरह था, सारी बिल्डिंग गिरी हुई थी, और अभी इन्होंने यहाँ से मजदूर वगैरह निकाले हैं, उनकी डेड बॉडी मिली, और 4 बच्चे निकाले हैं जिनकी सांसें चल रही थी, वो अभी उनको एम्बुलेंस ले गई है, बट वो मतलब अधमरे की हालत में थे।
2: दिल्ली के सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत जब गिरी तो आसपास के लोगों को लगा कि भूकंप आया है, लेकिन इस इमारत के मलबे में फंसे छात्रों की चीख पुकार से हादसे की खबर लगी। इस इमारत में जब छात्र अपने कमरों में थे तब बेसमेंट में काम चल रहा था, और इस पूरे हादसे ने दिल्ली की खतरनाक इमारतों और मौत वाले हॉस्टल से देश को एक बार फिर से खबरदार कर दिया है।

0: दिल्ली में कितनी इमारतें इस तरह हादसे के इंतजार में हैं? आखिर कितने बेकसूर छात्रों की जिंदगी ज्यादा किराए के लालच में इस तरह दांव पर लगाई जाती रहेंगी? दिल्ली में लगातार हो रहे इन हादसों की जिम्मेदारी कब और कैसे तय होगी? दिल्ली का सत्य निकेतन इलाका, जहां 5 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, पहली नजर में ये आपको हादसा लग सकता है, लेकिन ये हादसा नहीं बल्कि लालच और लापरवाही के कॉकटेल का नतीजा है। क्योंकि जब 40 साल पुरानी इमारत को 3 की जगह 5 मंजिल तक अवैध बना दिया जाए, 40 साल पुरानी इमारत की जांच करने वाला कोई न हो, बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरा होने के बावजूद काम किया जा रहा, जबकि हादसे के वक्त छात्र कमरों में मौजूद थे, तो अब आप ही बताइए क्या इसे हादसा कहना ठीक होगा?
1: यहाँ पर लिमिट ही खाली 2 या 3 फ्लोर्स के, बट इन लोगों ने 5 फ्लोर्स बनवा रखे थे। इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था, उसकी वजह से बिल्डिंग गिरी है। मैं उस टाइम पे अपना खाना ही खा रहा था, एकदम से सोफा हिलने लगा, प्रॉपर फील हुआ कि अर्थक्वेक आया, पर बाहर आके देखा तो धुआं वो हो रखा, तो फिर पता लगा कि बिल्डिंग गिरी है।
2: लेवर लगी हुई थी सर, नीचे बेसमेंट में काम कर रहे थे सुबह।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट में आया तो मैंने देखा तो लेवर काम कर रही थी, प्लस यहाँ पर 2 कारपेंटर काम कर रहे थे।
3: अच्छा,
2: जब मैं मार्केट से होकर फिर मैं सीधा घर चला गया था। अच्छा। उसके बाद पता लगा तो ये बिल्डिंग गिरी है सर।
0: इस हादसे ने देश की राजधानी को एक बार फिर हिला दिया है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि वो जिन इमारतों में रह रहे हैं उनका भी ऐसा ही अंजाम हो सकता है, जैसा दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में दोपहर करीब 1:30 बजे इस इमारत के साथ हुआ है।

0: अंडर कंस्ट्रक्शन था और आप कह सकते हो कि लीगली है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक।
1: अच्छा।
0: और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे, और एक पीजी में 3 और 4 ही बच्चे रहते थे। और संडे की वजह से स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे चाय की दुकान है, ब्रेड बटर लेने आते हैं। ये बिल्डिंग इस वजह से भी अब हम पे प्रे करते हैं कि कोई नुकसान ना हो।
1: अभी बिल्डिंग का बेसमेंट में काम चल रहा था
0: पानी।
1: ये जो 40-50 साल ये दिल्ली पुलिस आधिकारिक बयान दे रही है, 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग थी, 5 मंजिला थी, बेसमेंट था उसमें, और बेसमेंट में काम चल रहा था। सीधे सीधे जो छात्र हैं जिसमें रह रहे थे उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा दी बिल्डिंग के मालिक ने ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में।
2: इमारत ढहते ही यहां अफरा तफरी मच गई, धूल के गुब्बार में पूरे इलाके को घेर लिया।
3: मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लोकल्स की मदद से जो है यहाँ ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ को भी इस वक्त बुला लिया गया है, एनडीआरएफ की भी एक बटालियन जो है, एक टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पहुंच गई है, और अभी धीरे धीरे वो यहाँ पे स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि कितनी भारी संख्या में जो यहाँ लोकल्स हैं, वो लोकल जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं। अभी ये बड़ी मशीन, अभी जो मशीनें हैं, जो कटर्स हैं, हैवी कटर्स हैं, बोल्डर कटर्स हैं, उन्हें भी अभी लेकर के यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो इस वक्त यहाँ आई है। और ये 5 मंजिला इमारत बताई जा रही है। अगर आप तस्वीरों में थोड़ा और क्लैरिटी से देखें यहाँ पर, तो ये देखें आप, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और ये काफी बड़े इलाके में जो है ये पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हुआ है। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर एक बॉयज हॉस्टल था, और उसे बॉयज हॉस्टल में जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
2: बिल्डिंग गिरने के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, कुछ हथौड़े से मलबा हटाने लगे।
1: किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ये एक गाड़ी है जो कि बिल्डिंग के पास खड़ी थी, जब बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो उसकी हालत देखिए कि किस तरीके से इस पूरी गाड़ी के ऊपर बिल्डिंग का जो मलबा है वो भर भरा करके गिरा। पूरी गाड़ी जो है वो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब इसको जेसीबी की मदद से जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। आप ये समझिए कि जब मैं ये समझाने की कोशिश इसलिए भी कर रहा हूँ कि ये तस्वीरें देखने के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो मलबा, सोचिए उस बिल्डिंग के अंदर कई सारे लोग थे, और उनकी हालत क्या रही होगी जब ये बिल्डिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हुई, जब गाड़ी की हालत इस तरीके की है।
2: सत्य निकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास बसा प्रमुख छात्र इलाका है। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। इलाके में कई छात्र आवास।
3: जेसीबी की अगर बात करें तो यहाँ पे जेसीबी चलाना वो खतरे से खाली नहीं हो सकता, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि आखिर कितने लोग फंसे हैं और कौन कौन सी जगह फंसे हैं। अगर जेसीबी से मलबा हटाने के चक्कर में कुछ और लोग जो फंसे हुए हैं, जो शायद इंजर्ड हो, बस उनकी भी जान पर बना सकती है। और इसीलिए जेसीबी का अगर हम देखें तो ज्यादा इस्तेमाल ऐसे सिचुएशंस में नहीं किया जाता। और जो प्रिसाइज हैवी टूल्स होते हैं, जैसे बड़े ड्रिलर्स होते हैं, स्टील कटिंग मशीन्स होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये पता लग पाए कि कहां कहां लोग फंसे हैं। अभी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे ये समझ आ गया है कि यहां पर लोग नहीं फंसे हैं, जो बिल्डिंग के बाहर की लोकेशंस हैं, वहां पर अब जेसीबी की कार्रवाई जो है वो शुरू होती हुई दिख रही है। और बिल्डिंग के बाहर जहां गाड़ियों पर जो मलबा गिरा था उनसे अब मलबा हटाना शुरू किया जा रहा है। लेकिन बिल्डिंग जहां पर थी, जहां लोग फंसे हुए हैं, वहां पर अभी जेसीबी नहीं चलेगी, वहां पर अभी मेटल कटर्स चलेंगे, वहां पर अभी जीपीआर लगाया जाएगा, ये पता लगाया जाएगा कि कहां कहां लोग फंसे हैं, और उसके बाद वहां से मैन्युअली डिग करके ही लोगों को निकालना होगा, या फिर हैंड यूजेबल मशीन से ही लोगों को निकालना होगा। अगर आप देखें यहां पे अभी भी प्रशासन को बहुत मुश्किलें हो रही हैं लोगों को समझाने में कि ये जगह खाली कर दे, क्योंकि ये जगह अब बिल्कुल भी सेफ नहीं है। कहीं से भी मलबा और भी थोड़ा घिसक सकता है, और लोगों को इंजरीज हो सकती है, और लोगों को चोट आ सकती है।
2: इस इमारत को लेकर सवाल ये है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? अनमोल बाली, अरविंद ओझा के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।
4: दिल्ली में इमारत ढहने की ना तो ये कोई पहली दुर्घटना है और ना ही आखिरी। ठीक 2 महीने पहले ही 8 जुलाई को रोहिणी के सेक्टर 16 में एक इमारत ढह गई थी। ये 4 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी और इस बिल्डिंग के गिरने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल यही है कि जिम्मेदार अफसरों को ये खतरनाक इमारतें आखिर दिखती क्यों नहीं है?

0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसे के बाद राजधानी में घर बनाने के नियमों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बने हुए घर के नीचे बेसमेंट बनाया जा सकता है, क्या इसके लिए कोई कानूनी अनुमति लेनी होगी, और अगर बिना अनुमति के बेसमेंट बना दिया तो क्या कार्रवाई हो सकती है, ये किसकी जिम्मेदारी थी।
1: दिल्ली के जो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है, तकरीबन एक घंटे से ज्यादा वक्त का हो चुका है। बड़ी बात यह है कि वो खुद भी यहाँ पर जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको संचालित होते हुए देख रही है, एक बड़ी बात है, तारीफ की बात है। लेकिन यहाँ खड़े होकर वो ये भी देखे कि आसपास कितने अवैध पीजी चल रहे हैं। मैंने कई छात्रों से कुछ देर पहले बात की है, उन पर शिकंजा कसा जाए, अधिकारियों को सख्त ऑर्डर दिया जाए कि खास तौर से जो अवैध पीजी चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वहां पर क्या एनओसी है क्या या नहीं है, किस तरह से सुरक्षा के मानकों का वहाँ अनदेखी की जा रही है, वो तमाम चीजें देखने की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसों को रोका जाना काफी मुश्किल होगा। देखिए, ऑन रिकॉर्ड दिल्ली पुलिस ये कह चुकी है कि 40 से 50 साल ये पुरानी इमारत थी जिसमें पीजी का काम चल रहा था।
0: दिल्ली में इस तरह के हादसे समय समय पर सामने आते रहते हैं। जब हादसा होता है तो MCD समेत संबंधित एजेंसियों पर सवाल उठता है, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही सब कुछ पहले की तरह होने लगता है, जबकि सिस्टम में कमियों की बात मेयर पद पर बैठे लोग भी कबूलते हैं।
2: चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत इसलिए गिरी क्योंकि उसके बेसमेंट में काम चल रहा था। सवाल यह है कि क्या काम चलने से नींव कमजोर हुई और इमारत गिर गई।
1: यह जरूरी हो जाता है कि कम से कम जो जहां छात्र रहते हो, जो पीजी है, जो गर्ल्स हॉस्टल है, जो बॉयज हॉस्टल है, जो कोचिंग है, कम से कम वहां पर जो कंसर्न अधिकारी हैं, जो MCD के अधिकारी हैं, वो जाकर देखें कि वहां पर छात्र किस तरह से पढ़ाई करते हैं, किस तरह से रहते हैं। वहां पर NOC नहीं है, फायर की NOC नहीं है, कई जगह पर MCD की NOC नहीं है, और धड़ल्ले से अवैध तरीके से वहां पर लोग रह रहे हैं, और बारिश होती है, जरा सी बारिश दिल्ली में हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि दिल्ली में बिल्डिंग गिर गई, अगर आग लग जाती है तो उस बिल्डिंग में लोग फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। यहां पर
0: दिल्ली में बेसमेंट बनाने के लिए संबंधित अथॉरिटी से संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी की जरूरत होती है, लेकिन अगर घर पहले बना हो तो उसके नीचे बेसमेंट में काम करने की छूट तो बहुत देखरेख के बाद ही दी जाती है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता।
3: पीजी का काम चल रहा
4: है, नहीं ये पीजी तो बना हुआ था ऑलरेडी, पुरानी बिल्डिंग की है, इसमें पीजी तो था, वो पीजी वाले तो लंच करने बच्चे चले गए, संडे का दिन था ना, तो लंच करने दूसरी मैच में चले गए, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता।
5: अपना घूम के एक बार पूरे सत्या में देख लो, there will be 20 to 25 such buildings जो आज गिरे, एक महीने बाद गिरे, एक साल बाद गिरे, गिरी जाएंगी। विधायक का घर पीछे ही है, उसका भाई आधा दलाली करता है यहाँ पे, तो पीजीज को लेके नो एक्शन इज बीइंग टेकन।
6: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है, साउथ के अंदर सभी बच्चों का।
0: दिल्ली में ऐसे हादसे तब तक होते रहेंगे जब तक अवैध निर्माण पर लगाम नहीं लगती। दिल्ली में 75 लाख इमारतें बताई जाती है, दुर्भाग्य ये है कि चंद इमारतें ही सभी नियमों को पूरा करे हुए बनी है, इसलिए एक्सपर्ट की मांग है कि सरकार बाकी इमारतों को लेकर अभियान चलाए, क्योंकि 40 से 50 साल पुरानी हो चुकी इमारतों की दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है।
7: जो इस बिल्डिंग का ओनर था, क्या उसको एक दिन के लिए भी, एक मिनट के लिए भी ये सोच नहीं आई कि वहां पे लोग निवासी अभी भी हैं? एटलीस्ट बिल्डिंग को खाली किया जाता। और जो हम बात करते हैं कि JEE आके इंस्पेक्ट कर ले, हमारे JEE बाय द वे कितने एजुकेटेड है इस मामले में कि वो आके को ढंग का इंस्पेक्ट भी करते, वो तो किसी और वजह से वहां पे आते और अपनी वो वजह पूरी करके निकल जाते वहां से। तो ये सारा सिस्टमिक चेंज जो हमें चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए एक सिस्टमिक चेंज की जरूरत है।
8: इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली बिल्डिंग हादसे को लेकर, दरअसल CCTV फुटेज सामने आया है, एक और बिल्डिंग गिरने के दौरान भागता शख्स दिख रहा है। सत्ता निकेतन इलाके में बिल्डिंग गिरने के हुए जैसे जो हादसा हुआ उसमें 6 लोगों की मौत हो चुकी है, आशंका है कि अभी भी मलबे में 15 से 20 लोग दबे हो सकते हैं, और इन लोगों को बचाने के लिए देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। एक नया CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें एक शख्स भागता हुआ दिख रहा है, ये तस्वीर आप देखिए, बिल्डिंग हादसे में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। एकदम से बिल्डिंग गिरती है और वो शख्स वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आ रहा है। दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया। गोवा में अमित शाह ने अपने कार्यक्रम को रोक दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी दुख जाहिर किया। तो वहीं विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है और पूछ रहा है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है।
1: एक समाचार है, एक दुखद घटना हुई है और उस दुखद घटना का समाचार सुनने के बाद हमारे देश के गृह मंत्री ने तुरंत निर्णय ले लिया कि ये कार्यक्रम यहाँ तक सीमित करके खत्म।
0: घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
2: देखिए, हम तो चाहते हैं कि बच्चे उसमें बच जाएं। पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है। सभी जायजा आपके इस समय सभी जायजा बहुत कमियां हैं, सिस्टम में बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
3: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
4: जी चल रहे, ये बिल्कुल कोई इनकी किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी मैं भी गया था वहां आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
5: जब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो ही छत गिर जाती है, तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
6: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: उपहार देने में किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजों का उपहार देने से बचना चाहिए और राशि के अनुसार क्या उपहार दें जिससे संबंध हमेशा मधुर बने रहें। क्या है आपके उपहारों का आपके भाग्य से संबंध, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

दिल्ली के सत्य निकेतन इमारत हादसे में मृतकों की संख्या 6 पहुंची, अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी। सीएम रेखा गुप्ता ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के बयान पर सियासी घमासान, विपक्ष के वार पर नितिन नवीन का पलटवार, कहा पीएम ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन असर हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ। आरएसएस के आलोचकों को लंदन से संघ प्रमुख मोहन भागवत का जवाब, कहा नफरत नहीं शुद्ध सात्विक प्रेम है संघ के काम का आधार। बिहार में उफान पर गंगा, 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा में बढ़ा पानी। आज सजेगा देश के बड़े रणनीतिकारों का और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच, सीडीएस एनएस सुब्रमण्य के संबोधन से होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम को करेंगे रक्षा के क्षेत्र में नए भारत की बात।

आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में अपनी खुशियों को व्यक्त करने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए हम उपहार लेते भी हैं और देते भी हैं। आज आपको बताएंगे कि उपहारों के लेने देने का किन ग्रहों से आपके भाग्य से क्या संबंध है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज के दिन की विशेषता क्या है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। हम आज बात कर रहे हैं उपहारों के लेन देन के बारे में। उपहारों के देने और लेने का ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। जब भी आप किसी को उपहार देते हैं तो उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना सोचे विचारे उल्टे सीधे उपहार देंगे, गलत उपहार देंगे, तो संबंध खराब हो सकते हैं। सही भावना से, सही तरीके से, सही उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। आप जब उपहार देते हैं तो उसमें उपहारों की पैकिंग बड़ी महत्वपूर्ण होती है, खास तौर से पैकिंग पेपर का रंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि किस रंग के पेपर में पैक करके आप उपहार दे रहे हैं। उपहारों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन
मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान मिल सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो हम आज उपहारों की बात कर रहे हैं। अब ये जानते हैं कि उपहार लेते समय, देते समय उपहार के लेन देन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु देना शुभ होता है। जो वस्तुएं नियमित प्रयोग में आएं, ऐसी वस्तु का उपहार देना शुभ है। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव आइटम कम से कम देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन उसी को उपहार में देना चाहिए जिससे आपके रिश्ते बहुत करीबी हों। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे व्यक्ति को पास मत करें, दूसरे व्यक्ति को उपहार में ना दें। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं और ताजमहल सामान्यतः उपहार में नहीं देना चाहिए। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां और उनके चित्र भी उपहार में ना दें। देवी देवता हमारी श्रद्धा के प्रतीक हैं। वैसे किसी पूजा के अवसर पर आप ले जा करके दे सकते हैं, लेकिन उपहार के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र नहीं देने चाहिए। चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अजीत ने हमें लिखा है और अजीत हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 14 मार्च 1981। जन्म का समय सुबह के 10:55। जन्म स्थान है झांसी, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी बदलने का काफी समय से प्रयास कर रहा हूं। मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और भविष्य में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अजीत, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी बदलने की कोशिश मार्च 2027 के बाद करिएगा। मार्च 2027 के बाद आपकी नौकरी बदलेगी और स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा 2027 में पैसा अगर कहीं लगाएंगे, पैसे का अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें सावधानी थोड़ी बनाए रखिएगा। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग अवसरों पर अलग अलग उद्देश्य के लिए किस तरह का उपहार देना चाहिए। अगर किसी वरिष्ठ व्यक्ति को या गुरुजन को उपहार देना चाहते हैं तो उनको कलम का या पुस्तक का उपहार देना ज्यादा बेहतर होगा। प्रेम के मामले में सुगंध का उपहार, सुंदर कपड़े या फूलों का उपहार देना सबसे ज्यादा बेहतर होगा। विवाह के अवसर पर वस्त्र उपहार में दें, घर में काम आने वाली चीजें उपहार में दें, मिठाई जरूर दीजिएगा। संतान प्राप्ति के अवसर पर चांदी की कोई छोटी सी चीज, चांदी के कड़े, चांदी की चम्मच या चांदी की चेन, चांदी की किसी वस्तु का उपहार देना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ उपहार देना चाहते हैं तो घड़ियों का उपहार देना सबसे ज्यादा उत्तम होगा। मित्रता के मामले में चॉकलेट उपहार में दे सकते हैं या संगीत की कोई चीज, म्यूजिक की कोई चीज उपहार में दे सकते हैं। टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती, सुगंधित धूप बत्ती और घड़ी, ये आप उपहार में दे सकते हैं। तो अगर जरूरत के हिसाब से, उद्देश्य के हिसाब से और व्यक्ति के हिसाब से आप उपहार दें तो उपहार को देने से आपके संबंध बेहतर होंगे।
उपहारों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

मिलेगी, परिवार में अशांति से बचें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब आपको बताते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार सामान्य रूप से क्या उपहार दें जिससे रिश्ते बेहतर बने रहें, जिससे रिश्तों में उन्नति होती रहे। अगर मेष राशि की बात करें तो इन लोगों को उपहार में दूसरों को सौंदर्य प्रसाधन या सुगंध का उपहार देना चाहिए। वृषभ राशि के लोगों को दूसरों को मीठी चीजों का उपहार देना बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सजावटी मूर्तियां, डेकोरेटिव चीजें उपहार में देना अच्छा रहेगा। कर्क राशि, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें अगर आप उपहार में दें तो काफी बेहतर होगा। सिंह राशि, उपहार में जूते, बेल्ट या पर्स, इसका उपहार देना अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आपको उपहार में दूसरों को कलम, किताब या लैंप आदि उपहार में देना चाहिए। तुला राशि, आप उपहार में चॉकलेट, मिठाई या शरबत का अगर उपहार दें तो बहुत बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, आप उपहार में आभूषण दें या सुगंधित वस्तुओं का उपहार दें तो काफी अच्छा रहेगा। धनु राशि, आप उपहार में दूसरे व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तु या बर्तन अगर उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, आप उपहार में चांदी की वस्तुएं दें या प्रकाश वाली वस्तुएं, लाइट, मोमबत्ती, दीपक, ये उपहार में देना अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आप उपहार में लकड़ी की चीजें या आभूषण अगर उपहार में दें तो ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। मीन राशि, आप उपहार में अगर पौधे दें, पढ़ने लिखने की चीजें, कलम या किताब उपहार में दें तो बहुत बेहतर होगा। अगर अपनी राशि के अनुसार आप दूसरे व्यक्ति को उपहार देते हैं, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और दोनों के बीच के संबंध
काफी अच्छे हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

का आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उपहार में कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, कांच शुक्र से संबंध रखने वाली वस्तु है और कांच की चीजें सामान्यतः नाजुक होती हैं। जब आप किसी को कांच की वस्तु उपहार में देते हैं तो उससे रिश्ते संवेदनशील हो जाते हैं, रिश्तों में दिक्कत आने की संभावना बढ़ जाती है। और जब उपहार में दी गई कांच की वस्तु टूटती या खराब होती है तो रिश्तों के बिगड़ जाने की संभावना बन सकती है। इसीलिए सामान्यतः कहा जाता है कि नाजुक चीजें और कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, करियर में परिवर्तन होगा। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं दूर होंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अवनी ने हमें लिखा है और अवनी हमें पुणे महाराष्ट्र से मेल लिखती हैं। 26 दिसंबर सन 2000 का जन्म है।
जन्म का समय है अर्ली मॉर्निंग 5:10, जन्म स्थान है धूलिया महाराष्ट्र में, लिखती हैं पुणे से। ये कह रही हैं कि मैं अभी अच्छी नौकरी कर रही हूं लेकिन मैं मैनेजमेंट करना चाहती हूं, तो क्या नौकरी छोड़ करके मैनेजमेंट की पढ़ाई करना मेरे लिए बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? अवनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप नौकरी मत छोड़िए, नौकरी के साथ एग्जीक्यूटिव एमबीए या ऑनलाइन एमबीए करने का प्रयास करिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। उस एमबीए में आपको सफलता भी मिलेगी और नौकरी भी आपकी चलती रहेगी। आपके करियर की स्थिति अच्छी है, अप्रैल 2028 के बाद का जो समय है वो आपकी कुंडली में काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य बेहतर होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। कन्या राशि वालों के लिए चिंताएं दूर होंगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: दिल्ली में कल दोपहर सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत, कई घायल। बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत बचाव कार्य जारी। बिल्डिंग गिरने की नई सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीएम रेखा गुप्ता ने हादसे वाली जगह पहुंची, हालात का जायजा लेकर दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। बोली, नहीं बचेगा एक भी गुनहगार, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। सीएम रेखा ने कहा, हॉस्टल में पीजी चल रहा था और बेसमेंट में खुदाई की वजह से बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल फरार है, जिस पर FIR दर्ज हो गई है। दिल्ली हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों से मिली सीएम रेखा गुप्ता। एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल। दिल्ली हादसे की जगह पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह और बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज। लिया हालात का जायजा, कहा, रेस्क्यू हमारी पहली प्राथमिकता। दिल्ली हादसे के बाद अवैध इमारतों पर MCD का बड़ा एक्शन, 4 मंजिल से ज्यादा निर्माण होंगे सी। दिल्ली मेयर प्रवेश वाही ने यह भी कहा है कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने या लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों को तुरंत नौकरी से किया जाएगा बर्खास्त। दिल्ली हादसे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच छिड़ा सियासी संग्राम। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा बीजेपी पर बरसी, बोली कि दिल्ली में माफिया चल रहा है। दिल्ली हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जताया दुख, बोले, ये टाली जा सकने वाली घटना थी, हर छात्र की जिंदगी अनमोल। राहुल गांधी की अपील, मलबे में फंसे हर छात्र तक पहुंचे NDRF और रेस्क्यू टीमें। बोले, अमानवीय हालात में 40-40 छात्र एक छत के नीचे रहने को मजबूर। सत्यनिकेतन हादसे पर आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार को घेरा के जुआल। बोले, लापरवाही से कई हादसे हुए, सरकार नींद से जागे, बड़े स्तर पर हो कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर हमला। बोले, ऑडिट के नाम पर फिर से करोड़ों वसूले जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। दिल्ली हादसे पर CJP प्रमुख अभिजीत दीपके पर PM मोदी पर निशाना। बोले, एक दिन पहले DU में भाषण, अगले दिन छात्रावास की इमारत ढही। अभिजीत दीपके का PM मोदी पर हमला, पूछा, आखिर कब तक छात्र चुकाएंगे खस्ता हाल सिस्टम की कीमत। दिल्ली PG बिल्डिंग हादसे को लेकर ABBP कार्यकर्ताओं का MCD दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। इस दौरान MCD दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ हुई। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। सत्यनिकेतन हादसे को लेकर ABBP का आरोप, नगर निगम की लापरवाही से यह हादसा हुआ। प्रदर्शनकारियों ने MCD कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली हादसे पर NSUI का प्रदर्शन। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सत्यनिकेतन हादसे के खिलाफ आम आदमी पार्टी छात्र विंग का प्रदर्शन। दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास जुटे हैं कार्यकर्ता। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में गिरी इमारत, अब भी राहत बचाव कार्य जारी। मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। दिल्ली के SRCC में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा, प्रधानमंत्री ने कल नाराज फुफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ।
1: पूरी तरह से निजी स्वार्थ में ही चिपके रहते हैं और निजी प्रतिष्ठा में ही आपकी पूरी चीजें छिपी रहती है और परिवार के अंदर जो नाराज फूफा की स्थिति रहती है वही आज भारत में आपकी स्थिति होगी।
0: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे PM मोदी पर आरोप, कहा, प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया। PM मोदी की नाराज फूफा वाली टिप्पणी पर सुप्रिया सुले, बोले, बोलने के अधिकार के साथ साथ सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच PM मोदी आज करेंगे कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से पहले सामाजिक न्याय, जनकल्याण और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड में शुद्धिकरण विवाद पर आज कांग्रेस करेगी बड़ी बैठक, सभी दलित सांसद होंगे शामिल। हल्द्वानी में शुद्धिकरण मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध मार्च, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास तक करेगी कूच। लंदन के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल, कहा, सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। दुबई पहुंचे मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, निवेश जुटाने की मुहिम शुरू। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को MP आने का दिया न्योता। CM मोहन यादव ने माइनिंग से हॉस्पिटैलिटी तक निवेश की जताई संभावनाएं। सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर पर भी खास फोकस। CM मोहन यादव ने दुबई में ODOP प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। MP के उत्पादों की दिखी झलक, चंदेरी साड़ी ने दुबई में बिखेरी रंग। सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत, मामले में 20 लोगों पर FIR दर्ज। वहीं 8 आरोपी हिरासत में लिए गए और 3 अधिकारी किए गए सस्पेंड। सागर में जहरीली शराब कांड पर DPCM राजेंद्र शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर की मरीजों से मुलाकात। बोले, दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। PM मोदी ने पेरिस में BAPCS स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर जताई खुशी। बोले, ये मंदिर भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों का नया युग स्तंभ। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर जताई आपत्ति। जस्टिस अश्विनी मिश्रा को शपथ न दिलाने की मांग। बार एसोसिएशन ने राजनीतिक दखल की निंदा की। जयपुर निकाय चुनाव में AIMIM RLP का शक्ति प्रदर्शन। ओवैसी और हनुमान बेनीवाल ने की संयुक्त जनसभा। हनुमान बोले बीजेपी कांग्रेस के सामने तैयार करेंगे तीसरा विकल्प। जयपुर में ओवैसी का बीजेपी पर हमला। बोले मस्जिदें तोड़कर नफरत की दीवारें ऊंची करने की राजनीति बंद हो। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिले कुएं की बैरिगेटिंग। सुरक्षा में पुलिस तैनात। एएसआई टीम का इंतजार। अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूपी प्रभारी के पराया धन अपना टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि विनोद तावड़े पागल हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर धन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से SP और सहयोगियों की जीत का दावा किया। गोवा में गूंजा विकसित बिहार का संकल्प। 2047 के बिहार का रोडमैप तैयार हुआ। बिहार के विकास पर हुआ मंथन। उद्यमिता शिक्षा और रोजगार पर भी चर्चा। कारगिल से डोंबिवली लौटी 2252 किलोमीटर लंबी देशभक्ति राइड। दही हांडी पर हुआ समापन। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने किया सम्मान। बिहार में उफान पर गंगा। 12 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित हुए। पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी। गंडक कोसी और घाघरा में भी बढ़ा पानी। मुंगेर में आपदा मंत्री रत्नेश सादा ने बाढ़ की समीक्षा की। बोले बिहार के 27 जिले प्रभावित। फसल और अन्य नुकसान का होगा आकलन। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ और गंगा के बढ़ते जलस्तर की समीक्षा की। वैशाली जिले के हाजीपुर में बाढ़ का भीषण कहर देखने को मिला। 106 गांव पानी में घिरे। सोनपुर दिगवारा में तटबंध टूटने की वजह से हड़कंप मचा। पटना के रामनगर दियारा में 5000 लोग से ज्यादा लोग बाढ़ में घिरे। लोगों ने मदद नहीं पहुंचने का प्रशासन पर आरोप लगाया। हाजीपुर में गंडक नदी का बढ़ा दबाव। अखिलाबाद में रिंग बांध टूटा। बाढ़ का खतरा बढ़ा। लखीसराय में गंगा का बढ़ा जलस्तर। बस्ती के घरों में घुसा पानी। बाहर रहने को मजबूर हुए लोग। छपरा में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से तटबंध टूटे। गांव और खेतों में फैला बाढ़ का पानी। खगड़िया में गंगा का कहर। 10 पंचायतें जलमग्न हुई। हजारों लोग प्रभावित हुए। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। धौलपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कें जलमग्न। नदियों और बांध के उफान से गांव का संपर्क टूटा। सवाई माधोपुर में उफनते पुलिया से बाइक समेत बहा युवक। बाल बाल बचा। मोटरसाइकिल बही। सोनीपत में भारी बारिश से जलभरा

उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा बारिश का पानी। अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी। यूपी के बागपत में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालु से भरी बस पलटी, 4 लोगों की मौत। जालौन में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी लूटकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, 1 घायल, 2 ने किया सरेंडर। महोबा में मॉडल स्कूल परिसर के पानी से भरे गड्ढे में डूबे 3 बच्चे, पुलिस जांच में जुटी। पटना के मनेर में जंगली सुअरों का आतंक, हमले में 2 महिलाएं घायल हुई, कल बच्ची की हुई थी मौत। बिहार के जमुई में 9 दिन बाद नाबालिग सहाना हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, नशे की हालत में गला दबाकर की थी हत्या। पैसों के लिए गाय काटकर देहरादून में मांस बेचने का आरोप, बिजनौर में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए, 1 मुठभेड़ में घायल। हैदराबाद में जुबली हिल्स के पब में देर रात 2 गुटों में मारपीट हुई, अरविंद यादव उर्फ टिल्लू समेत 21 पर केस दर्ज हुआ। हापुड़ में गोलीकांड में दलित युवक दीपक की मौत हुई, 6 आरोपी गिरफ्तार, तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए, तमंचे और कारतूस बरामद। बलिया में बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से 2 किशोरों की मौत, दोस्तों संग नहाने गए थे, एसडीआरएफ ने निकाले शव। पूर्णिया में जर्जर लोहा पुल टूटा, गिट्टी लदा ट्रक नदी में समाया, 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा। लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या की, सिर पर लोहे की रॉड से किया हमला। गुजरात के महीसागर में मृत महिला के नाम पर लोन घोटाला, पुलिस ने 7 शातिर लोग को किया गिरफ्तार। सूरत में अमेजोन डिलीवरी के असली सामान बदलकर डमी प्रोडक्ट रखने वाला गिरोह गिरफ्तार, 4 डिलीवरी बॉय समेत 5 पकड़े गए। मुंगेर में पिता ने कुल्हाड़ी से दिव्यांग बेटे की निर्मम हत्या की, पुलिस ने पारिवारिक विवाद में वारदात का अनुशंका जताई, मौके से कुल्हाड़ी बरामद। जालना में जालना का राजा गणपति का हुआ भव्य आगमन, ढोल ताशों की गूंज के बीच भक्तों ने बप्पा का किया जोरदार स्वागत। गणपति बप्पा मोरिया के जय घोष से गूंज उठा शहर, भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कोलकाता में दुर्गा पूजा का आगाज, चोरबाग में पूरे किए 91 साल, हेरिटेज पंडाल में दिखेगा खास अंदर। मदुरई में मां मदुरई फेस्टिवल 2.0 का भव्य समापन हुआ, वैगई नदी किनारे रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान रोशन दिखा अद्भुत नजारा। ड्रोन शो ने भी बांधा समा, रंगों से जगमगाया पूरा आसमान, आतिशबाजी देखने के लिए उमड़ी भीड़। बैडमिंटन कोर्ट से आई भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी, सात्विक चिराग की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास, फाइनल में चीनी जोड़ी को दी मात। सात्विक चिराग चाइना मास्टर्स का टूर्नामेंट जीतने वाली बनी पहली भारतीय जोड़ी, इससे पहले सात्विक चिराग को 2023 और 2025 के फाइनल में करना पड़ा था हार का सामना। प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 10 दिन में 17 शहरों में 4,000 टन प्याज 35 रुपए किलो बेचा जाए। सरकार के पास 1,21,000 टन प्याज का स्टॉक मौजूद है, इसे ट्रक और कांदा एक्सप्रेस से देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा। सरकार की सस्ती प्याज योजना से कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की कमी आई, अक्टूबर से नई फसल आने पर प्याज के दाम और नीचे आने की उम्मीद। पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने जेलेंस्की से की मुलाकात, युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर हुई चर्चा। यूक्रेन रूस जंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच पोपलियो ने शांति की अपील की, कहा 4.5 साल से जारी संघर्ष अब खत्म होना चाहिए। ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद ईरानी स्पीकर गलिबाफ की अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा अब युद्ध के हालात और नियम बदल गए हैं, हर हमले का जवाब होगा। पश्चिमी ईरान में एक ईंधन टैंकर में हुआ जबरदस्त विस्फोट, 11 लोगों की मौत, 7 लोग हुए घायल। लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला, अलग अलग हमलों में 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, घायलों में 3 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में छोटा प्लेन क्रैश, हादसे में 2 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए। जापान के गिफू प्रांत में चाकूबाजी और आगजनी की घटना में 3 लोगों की मौत, 2 घायल, संदिग्ध हमलावर ने चाकू से हमला कर घर में लगाई आग। इंडोनेशिया के माउंट अनाक क्राकाटाओ में जोरदार विस्फोट, करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंची ज्वालामुखी की राख। तूफान सेडोल के कारण चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन, मरने वालों की संख्या 3 हुई, 9 लोग लापता। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने के बाद मेसी का जादू बरकरार, रिटायरमेंट के बाद अपने पहले मैच में मेसी ने दिखाया जबरदस्त खेल।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आगे आगे।
3: अरे उधर
2: उधर
3: उधर।
2: करेक्ट करेक्ट।
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: खाना कहाँ से मंगवाया?
2: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी?
4: जीके वॉल मैक्स।
2: बेस्ट प्राइमर?
5: जीके मैक्स।
2: बेस्ट पेंट?
5: जीके मैक्स।
2: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जीके मैक्स पेंट्स।
3: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
2: जीके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
6: पापा
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ
3: ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
3: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
9: टाटा AIG है तो भरोसा है।
10: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
11: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
10: असली शहद असली स्वाद।
12: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।
3: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
4: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
5: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
4: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है हाँ ला भाई मेरा बैट
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू
5: चार्ज हुआ यार
6: बैट किसका है
7: टाटा AIG है तो भरोसा है
8: और वही कहाँ गए थे घूमने
9: जीके मैक्स
10: खाना कहाँ से मंगवाया
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
11: जीके वॉल मैक्स
9: Best primer,
12: JK Maxx.
9: Best paint,
12: JK Maxx.
9: JK Maxx. बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन most beautiful walls के लिए सिर्फ JK Maxx paints.
13: यार ये fitness के लिए क्या करूँ?
9: JK Maxx paints. खुशियों के रंग.
14: भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी
15: नड्डा जी ने कहा था कि इसकी तहकीकात जरूर होगी
16: यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है लेकिन चुनाव से ठीक पहले हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा गर्मा गया है दलितों के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस मैदान में है कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया लेकिन अब मामला विरोध प्रदर्शन से आगे निकल चुका है अब मामला चुनावी है बुधवार यानी 9 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हल्द्वानी जाएंगे लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस ने अपने दलित सांसदों की बैठक बुला ली सोमवार को देहरादून में शुद्धिकरण के खिलाफ कांग्रेस मार्च निकालेगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास तक कांग्रेस नेता मार्च करेंगे कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि उत्तराखंड में दलित अपमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए लेकिन 13 अगस्त को जब खड़गे ने हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो जेपी नड्डा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई
17: हमारी धरती में कुछ ऐसे लोग हैं आज के दिन जिन लोगों ने वहां रामलीला ग्राउंड में अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेचर का आदमी आकर के संबोधित कर रहा है तो सौभाग्य की बात है लेकिन उन्होंने वहां शुद्धिकरण किया ये शुद्धिकरण क्या है इसका अर्थ है तुम संविधान का उल्लंघन कर रहे हो SC ST एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो बल्कि राहुल जी ने जब कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करो तो FIR राहुल जी के खिलाफ दर्ज कर दी गई तो देश का जो जागृत जनमत है वो आज ये समझ रहा है कि जो कुछ हल्द्वानी में ये तथाकथित शुद्धिकरण के नाम पर हुआ है वो ब्लॉट है देश के ऊपर
18: शुद्धिकरण का मामला है राहुल जी के ऊपर भी FIR का मामला है तरह तरह की ये बातें हैं लोगों तक हमने जाना है और उजागर करना है लेकिन आप ये देख ही सकते हैं कि राहुल जी के ऊपर तो कितनी जल्दी से FIR हुई लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट जो LOP हैं राज्यसभा में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है उसके बावजूद कोई हरकत कोई कार्य नहीं इसकी ओर ये बढ़ना नहीं चाहते इनके लिए मैं तो मुझे लगता है कि इनकी सोच क्या है उत्तराखंड के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये इस सरकार ने ऐसा काम करके उत्तराखंड के लोगों को ऐसा करने का प्रयास किया
16: जब उत्तराखंड में FIR दर्ज नहीं हुई तो कांग्रेस ने बेंगलुरु में 0 FIR करवाई लेकिन बदले में राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में SC ST एक्ट में FIR लिखवा दी गई अब कांग्रेस इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है क्योंकि मामला सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं पूरे दलित समाज से जुड़ा है और कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

इमारत गिरने से अब तक 6 लोगों की मौत, 5 घायलों का एम्स में इलाज, अब भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। पीजी मालिक फरार, दर्ज हुई FIR। नहीं बचेगा सत्य निकेतन हादसे का एक भी गुनेगार। हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, न्यायिक जांच के दिए गए आदेश, नींद से जागा एमसीडी, आसपास की जर्जर इमारत को नोटिस। देहरादून में आज शुद्धिकरण मामले पर जबरदस्त टकराव के आसार, सीएम आवास तक कूच करेगी कांग्रेस, परेड ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान। गंगा के रौद्र रूप से सहमा बिहार, पटना में अब तक के सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा वाटर लेवल, 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित, गंडक, कोसी और घाघरा में बढ़ा पानी। आज सजेगा देश के बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच, CDS NS सुब्रमण्य के संबोधन से होगी शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम करेंगे रक्षा के क्षेत्र में नए भारत की बात।

0: स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं, वक्त है सुपर 8 खबरों का। सबसे पहले देखिए कि सुपर 8 खबरें कौन कौन सी आज होने वाली है। दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत हादसा हुआ है, पूरी डिटेल आपको देंगे। हादसे के 18 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो वहीं सत्य निकेतन हादसे पर जबरदस्त सियासत जारी है। इसी के साथ इस हादसे के लिए कौन कौन जिम्मेदार है ये भी डिटेल के साथ आपको देंगे। किसी की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं ये आपको बताएंगे। और आज मंत्रियों के कार्यों की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो वहीं शुद्धिकरण पर उत्तराखंड में सियासी लड़ाई तेज हो चुकी है। आज कांग्रेस देहरादून में कोहराम मचेगा, सीएम आवास तक पहुंचेगा विरोध। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, पानी में कैसे इलाके डूब गए हैं, लोग बेबस नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर भारत में भी बारिश बाढ़ का कहर है, कहीं पर सड़कें दरिया बन चुकी हैं तो कहीं गांव का संपर्क टूट चुका है। वहीं एमपी के सागर में संदिग्ध जहरीली शराब का कहर, 11 मौत के बाद अब सप्लाई नेटवर्क पर शिकंजा कसा जाएगा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के इमारत हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। इसमें छात्र और मजदूर शामिल है। पीजी में छात्र रहते थे, वहां बेसमेंट में कुछ काम भी चल रहा था, इसी दौरान पूरी इमारत ढह गई। 3 मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हादसे में घायल हुए 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो उधर राहत और बचाव टीम ने अब तक 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। इस पूरे हादसे के बाद पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। लेकिन सवाल यही है कि इससे आखिर होगा क्या? क्या ये इमारतें रातों रात या एक दिन में बन जाती हैं? किस इमारत का कैसा उपयोग हो रहा है ये तो अथॉरिटीज को पता ही होना ही चाहिए, या फिर सब सोए रहते हैं, हादसे के इंतजार में रहते हैं और एक बड़ा हादसा एक बार फिर से दिल्ली में हुआ। तो सत्य निकेतन के में हुए इस दर्दनाक बिल्डिंग हादसे का सीसीटीवी वीडियो एक सामने आया है। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कैसे देखते ही देखते 5 मंजिला इमारत भरभराकर नीचे गिर जाती है। ये नया सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे हैं, इमारत ढहती हुई नजर आ रही है। हादसा अचानक हुआ और किसी को संभलने तक का मौका ही नहीं मिल पाया। इस हादसे में फुटेज में पूरी तरफ से तस्वीर साफ नजर आ रही है। एक शख्स आप देखिए, जैसे ही इमारत ढहती है उस शख्स अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है। चलिए अब इस हादसे से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स आपको बता देते हैं। अभी तक क्या कुछ अपडेट इस हादसे को लेकर है। सत्य निकेतन हादसे में अभी तक फिलहाल 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, दिल्ली पुलिस, फायर सर्विसेज के लोग भी हैं। तो वहीं घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है, उनका हालचाल भी जाना जा रहा है। कुछ घायल सफदरजंग अस्पताल में भी भर्ती है। इमारत हादसे की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रेट से जांच की बात कही है। तो उधर बिल्डिंग मालिक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जानकारी यह भी है कि गुरुग्राम का रहने वाला है ये बिल्डिंग का मालिक। पीजी की इमारत करीब 40 से 50 साल पुरानी थी। बेसमेंट में काम के दौरान इमारत गिर गई और अभी और डिटेल्स भी आना बाकी है। हादसे के बाद के अफसर जाग गए हैं। MCD ने सत्य निकेतन के एक मकान को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो वही मकान नंबर 13 को खाली करने का आदेश दिया गया है। MCD ने कहा है कि सत्य निकेतन का हाउस नंबर 13 खतरनाक है और इसे भी गिराया जाना चाहिए। तो 10 बड़े अपडेट दिल्ली इमारत हादसे से जुड़े। अब ताजा तस्वीर आप ये देख रहे हैं, जब ये पूरा हादसा हुआ इमारत ढह गई उसके बाद की तस्वीर, मलबा ही मलबा वहां पर नजर आ रहा है। ये एक नया फुटेज सामने आया है। अंशुल सिंह जुड़ गए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अंशुल, अभी तक ना कोई गिरफ्तारी इस पूरे केस में हो पाई है जो बिल्डिंग का मालिक है, और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी कहां पर पहुंचा है अंशुल?
1: जी, रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। 18 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। कुछ 11 से 12 लोगों को यहां से निकाला गया है, जिसमें से 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। मैं आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप देखें इस वक्त भी किस तरीके से जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। NDRF की टीमें हैं, दिल्ली पुलिस का K9 स्क्वाड है, जो डॉग स्क्वाड है वो भी यहां पर सक्रिय है। ये सूंघ के ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन है जहां पर बच्चे फंसे हो सकते हैं, और फिर वहां पे बहुत प्रिसाइस ऑपरेशन करके लोगों को निकाला जा रहा है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में काफी ज्यादा समय लग रहा है। हालांकि अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, कितने बच्चे फंसे हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो एम्बुलेंसेज बाहर लगातार एक के बाद एक एम्बुलेंसेज लगाई गई हैं। जैसे ही कोई भी निकलता है उन्हें तुरंत एम्बुलेंसेज में लेकर के यहां से निकला जाता है। इसके अलावा मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा यहां से। अगर आप ये देखें, ये पीला बोर्ड जिसपे कपड़ा डला है, ये हॉस्टल डेज है, ये वही मकान है, उसी ओनर का मकान है जिसका जो बिल्डिंग गिरी है, उसी ओनर का मकान है ये। और इस मकान की भी जो हालत है वो भी उतनी ही खराब है। इस वक्त आसपास भी आप देखें तो एक के बाद एक जितनी भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब बिल्डिंग बायलॉज को ताक पे रख करके बनाई गई है। और आप देखें यहाँ पे ये जो हॉस्टल डेज है, ये वही बिल्डिंग है और उसी सेम ब्रांड की बिल्डिंग है, और यहाँ पे हॉस्टल है उनका करीब 50 मीटर दूर है। और यहाँ पे भी आप देखें तो ये एंट्री एग्जिट है। एक बार फिर से बहुत साफ दिख रहा है कि ये भी पूरी तरीके से इलीगली बनाया गया है। इस इलाके में जो बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग परमिशन है वो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स का है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो सारी 5-5 मंजिला बिल्डिंग है। और इसके अलावा ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पर किसी भी तरह की कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी करप्शन का आप आलम देखिए कि हर बिल्डिंग में यहाँ पीजी चल रहे हैं, हर बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।
0: सरकार एक्शन में आई और एक मकान को भी खाली करने का आदेश वहां दे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल जानकारी के लिए। तो दिल्ली के सत्यनिकेतन में बिल्डिंग गिरने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR में बिल्डिंग के मालिक हरिराम समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन या निर्माण का काम चल रहा था और इमारत ढह गई।
2: ऐसा हादसा जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया, ऐसा हादसा जिसने लोगों के दिलों में खौफ भर दिया। दिल्ली के सत्य निकेतन की ये तस्वीरें उस दर्दनाक हादसे की गवाह है। दोपहर करीब 1:30 बजे एक इमारत अचानक भरभराकर नीचे आ गिरी। राहत और बचाव दल ने तुरंत मोर्चा संभाला, एक एक कर मलबा हटाया गया और अब तक 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी घटना स्थल पर पहुंची। मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन की बात कही।
3: कोई भी कल्पित छोड़ा नहीं जाएगा, खास करके ये जिसका मकान है, जो यहाँ पे बिल्डिंग छोड़ के भाग गया, जो कि अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, बेसमेंट में खुदाई कर रहा था, और जिसकी वजह से जो पिलर है वो डिसमेंटल हुआ और बिल्डिंग पूरी गिर गई, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और जिसके कारण से ये हादसा हुआ है, सबको सजा भुगतनी पड़ेगी।
2: दर्दनाक बिल्डिंग हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उधर मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। FIR में बिल्डिंग के मालिक हरिराम समेत अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बिल्डिंग PG के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी और इसके ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन या निर्माण का काम चल रहा था। जाँच इस बात पर केंद्रित है कि क्या निर्माण कार्य के दौरान बरती गई लापरवाही से इमारत का ढांचा कमजोर हुआ और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग ढह गई। आरोपियों को ट्रेस करने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। वहीं मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका को देखते हुए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे के बाद विरोध का सिलसिला भी शुरू हो गया। ABBP ने दिल्ली नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। निगम की कथित लापरवाही को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदारी तय करने और कार्रवाई की मांग की। सत्य निकेतन का ये हादसा कई गंभीर सवाल छोड़ गया है। क्या निर्माण और रेनोवेशन के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था? क्या वक्त रहते इमारत की हालत पर ध्यान दिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: जहां पर यह हादसा हुआ है वहीं से हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, इस हादसे के बाद MCD जागी है, वहां पर एक मकान को नोटिस जारी किया गया है। सवाल यही है कि इतने बड़े हादसे के बाद एक्शन लिया गया है, अब नींद खुली है MCD की?
4: बिल्कुल इसी तरीके से होता है, जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद जो सरकारी महकमा है उसकी नींद खुलती है और इसी तरीके का एक्शन लिया जाता है। लेकिन मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि इस पूरे इलाके की सिचुएशन क्या है। आखिर यहां सबसे पहले आप देखिए कि जहां पर PG बने हुए हैं, यहां पर अगर तारों का जाल आपको दिखाना चाहेंगे तो किस तरीके से एक मकड़ जाल जैसा फैला हुआ है पूरी तरीके से। और यहां पर जो साउथ कैंपस में दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, क्योंकि पतली पतली गलियां हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कि एम्बुलेंस तक लाने में यहाँ पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि जो ऐसे चाहे ये ब्लॉसम स्टे पीजी हो, ये पीजी जो है यहाँ पर एमसीडी की तरफ से जो परमिशन दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 फ्लोर की परमिशन है, लेकिन 5-5 फ्लोर ऐसे पीजी बने हुए हैं। और ये पीजी ऐसे इस पूरे इलाके में एक तरीके से मशरूम की तरह फैले हुए हैं, किसी में किसी भी तरीके के कानून की व्यवस्था का पालन कहीं भी नहीं हुआ। सारी चारों तरफ आपको जो बिल्डिंग और लोकेशंस दिखा रहे हैं जिसमें ज्यादातर जो है वो पीजी बने हुए हैं। तो एक ये ग्राउंड रियलिटी है और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और यहां पर पुलिस प्रशासन और इसके साथ साथ एमसीडी ये तमाम जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से नियमों का पालन नहीं किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पूरे गली की कि किस तरीके से अगर इस खंभे को आप देखें तो यहां पर जो पीजी बने हुए हैं वहां बिजली का मकरजाल किस तरीके से बिजली के तारों का यहां पर दिखाई पड़ रहा है और इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से जो फायर सेफ्टी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक जो सारे यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनसे किस तरीके से दिक्कत हो सकती है, कभी भी आग जो है वो फैल सकती है। लेकिन इन तमाम चीजों को नजरअंदाज किया गया और ग्राउंड जीरो पर आज तक आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से रियल में यहां पर एक्शन हुआ। ये आप देखिए कि जो एक गाड़ी है जिसके ऊपर जब बिल्डिंग पूरी भरभरा करके ताश के पत्तों की तरह गिरी तो इस गाड़ी की कंडीशन आपको दिखाई पड़ रही कि किस तरीके से पूरी तरीके से कुचल गई है और इसको अभी बाहर जो है यहां पर फायर सेफ्टी और एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों ने इसको बाहर निकाला है। लेकिन तस्वीरें ये साफ बयां करती हैं कि कितनी जो है यहां पर इस पूरे इलाके में किस तरीके से जो लगातार बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसमें किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें साफ बताती हैं कि इस पूरे इलाके की सिचुएशन और जो बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए अलग अलग राज्यों से आते हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और तमाम राज्यों से जो बच्चे आते हैं उनकी सिचुएशन यही होती है कि यहां पर महंगे महंगे उनको कमरे मिलते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कमरे जिनकी एक एक बेड की जो कीमत है करीब 15,000 के आसपास होती है। तो ये तमाम तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस तरीके से नियमों का पालन नहीं किया गया और इसके साथ ही इन नियमों का उल्लंघन करने के पीछे सरकारी महकमा किस तरीके से लगा हुआ था इनको लेकर के ये
0: जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर, सत्या निकेतन हादसे के बाद एमसीडी के अफसर जाग गए। सत्या निकेतन के हाउस नंबर 13 को नोटिस जारी किया गया है। मकान को 3 दिनों के अंदर तोड़ने का नोटिस दिया गया है। एमसीडी ने सत्या निकेतन के हाउस नंबर 13 को जर्जर घोषित कर दिया है और 3 दिन का समय उनको दिया गया है। तो दिल्ली के सत्या निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद अब सियासी विरोध भी तेज हो गया है। हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी की छात्र विंग, एबीवीपी और एनएसयूआई ने अलग अलग प्रदर्शन किए। आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने सत्य निकेतन में दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन किया, जबकि एबीवीपी ने एमसीडी मुख्यालय के बाहर विरोध जताया है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी बिल्डिंग हादसे को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस हादसे के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली और छात्रों के रहने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सत्य निकेतन हादसे के बाद अब छात्र संगठन भी सवाल उठा रहे हैं। एनएसयूआई ने इस पूरे मामले में प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की है।
5: हमारे साथ विनोद जाखड़ है, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्यनिकेतन का इलाका है, साउथ दिल्ली के कैंपस के पास का इलाका है, छात्रों से भरा हुआ ये इलाका है जहां घटना हुई, जिसके कारण देखा गया कि बहुत से घरों के जो दिए हैं वो बुझ गए। पर उसी बीच दूसरी तरफ नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन है, उनका यहां पर धरना और विरोध प्रदर्शन जारी।
6: छात्रों की जान की किसी को नहीं पड़ी है, छात्रों की जान की किसी को नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि ये सारा जो तंत्र है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी भी चला रहा है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में जाइए और देखिए कि प्राइवेट कोचिंग है, उनके एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोग। जब हम लोग सवाल करते हैं कि प्राइवेट कोचिंगों को आप एडवर्टाइजमेंट से कैसे कर सकते हैं, प्राइवेट पीजियों का आप एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, बोलते हैं सर रेवेन्यू आता है। जहां पे हॉस्टल बनने चाहिए वहां पे इन्होंने जो है उन ग्राउंड्स को जो है मैरिज हॉल बना दिया है, वो किराए पे देते हैं, बोले रेवेन्यू आता है।
0: तो दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के हादसे पर राहुल गांधी ने चिंता जताई है। राहुल गांधी ने इसे बेहद दर्दनाक बताते हुए एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस और सभी बचाव दलों से हर संभव प्रयास कर लोगों को मलबे से बाहर निकालने की अपील की है। उन्होंने दिल्ली में छात्रों के लिए पर्याप्त तो हॉस्टल की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बेहतर हॉस्टल नहीं होने के कारण कई छात्र पीजी में अमानवीय परिस्थितियों में रहने को मजबूर। तो दिल्ली में हुए हादसे के बाद राजनीतिक दलों के नेताओं ने दुख जताया। गोवा में अमित शाह ने अपने कार्यक्रम को रोक दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी दुख जाहिर किया। वहीं विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है और पूछ रहा है कि इस लापरवाही का जिम्मेदार आखिर कौन है।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है।
1: ये 40-45 साल पुरानी कॉलोनी है, इसके अभी हमारा पहला प्राथमिकता यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो निकल जाएं किसी तरीके, और ये जो बाकी चीजें हैं बिल्कुल ठीक है। कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होती है वो खतरनाक है, और वो कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।
0: अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
2: सर्वे करिए, भारतीय जनता पार्टी के 5 नेता हैं जिनके ज्यादातर पीजी हैं यहाँ पे, बड़ी संख्या में पीजी वो लोग चला रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली जे रिसेटलमेंट थी, उसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी, एमसीडी नहीं बनवाई है, मगर अब हम एमसीडी के पीछे पड़ेंगे, एमसीडी इनसे और पैसा लूट लेगी।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
3: यूनिवर्सिटी में हॉस्टल ही नहीं है, और इस निकेतन पे आपने रखा है तो और वो ही छत गिर जाती है, तो सुरक्षित छात्र किसी तरीके से सुरक्षित नहीं है, और बड़ी दुख की बात है। तो प्रधानमंत्री जी ऐसा करिए, हमें एक दिन आप कुछ अपना वक्त दे दीजिए, हम रिपोर्ट कार्ड लिख के आपको लिखित रूप में दे देंगे तो अच्छा लगेगा।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।
4: बात कर लेते हैं बिहार में बाढ़ के कहर की। बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और बड़ी संख्या में लोग सुरक्षित जगहों की ओर जाने को मजबूर हो चुके हैं।
5: पानी ही पानी, घर डूबे, रास्ते डूबे और अब लोगों के सामने घर छोड़ने की मजबूरी। बिहार में गंगा समेत कई नदियों का बढ़ता जलस्तर अब गांव की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। लखीसराय में महादलित बस्ती तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। घरों में पानी घुसने के बाद लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। छपरा में नदी का पानी बांध को तोड़कर गांव और खेतों में फैल गया है। चारों तरफ पानी का फैलाव और इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बाढ़ का दायरा कितना बढ़ चुका है। कटिहार में हालात और मुश्किल हैं। घरों में पानी भरने के बाद कई परिवार पलायन कर चुके हैं। वहीं दिव्यांग दंपत्ति पानी से घिरे घर में बांस के मचान पर रहने को मजबूर हैं। खाने पीने का सामान भी इसी मचान पर टिका है।
6: हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए गंगा कोसी, मेन गंगा और कोसी का ये पानी है जो कि पिछले 2 दिन से लगातार जल वृद्धि होने के कारण यहाँ पे अब घरों में पानी घुसने लगा है। लोग अब त्राहिमाम करने लगे हैं। सभी लोग जो है अपने घर को छोड़ चुके हैं, घर में ताला लगा चुके हैं, घर के सामान को लेके कहीं ना कहीं लोग शिफ्ट होने के लिए सोच रहे हैं।
5: बलिया में बाढ़ का पानी 2 किशोरों के लिए काल बन गया, दोनों की डूबने से मौत हो गई। बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैल रहा है। कहीं लोग घर छोड़ रहे हैं तो कहीं पानी के बीच जिंदगी बचाने की जद्दोजहद जारी है। प्रशासन राहत का दावा कर रहा है लेकिन जमीन पर चुनौती बड़ी है। मुंगेर से गोविंद कुमार और कटिहार से विपुल राहुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: वहीं मध्य प्रदेश के सागर में संदिग्ध जहरीली शराब ने कई घरों में मातम पसार दिया है। दरअसल बांद्रा इलाके में शराब पीने के बाद अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। शनिवार रात शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। गुस्साए लोगों ने एक मृतक का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। प्रशासन ने एहतियातन इलाके की 6 शराब दुकानों को सील भी कर दिया है। चलिए अब वक्त हो गया है सुपर एट खबरों का। महाराष्ट्र के पालघर में इलाज के बिल को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं का अस्पताल में हंगामा, अस्पताल स्टाफ से मारपीट और बदसलूकी का आरोप। तेलंगाना के सूर्यापेट में कांग्रेस नेता पर उत्पीड़न का आरोप, महिला ने की आत्महत्या की कोशिश, मामले में पुलिस जांच जारी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में केएफसी के चिकन में मिला मरा हुआ कीड़ा, ग्राहक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू मेडिकल इंस्टीट्यूट में मारपीट का आरोप, परिवार ने विश्वविद्यालय प्रशासन से की शिकायत। उत्तर प्रदेश के कानपुर बारिश के बीच दो मंजिला कच्चा मकान ढहा, हादसे में पिता और तीन बेटियों की मौत। हरियाणा के सोनीपत में बारिश ने खोली नगर निगम की व्यवस्थाओं की पोल, जलभराव से सड़कें बनी ताला। ओडिशा के नबरंगपुर में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक रोज नदी पार करते नजर आए, इंद्रावती नदी में 3 घंटे से ज्यादा का सफर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पीएम पे विवाद में टीएमसी नेता पर फेंके गए अंडे, प्रदर्शन के दौरान जमकर हुआ हंगामा। इसी के साथ सुपर एट में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: पापा।
3: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
4: सब कैशलेस हो गया
3: है। ला भाई मेरा बैट,
5: वो अभी तो ठीक हुआ। तो
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
10: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
9: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
2: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
5: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
6: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
7: सोच बदलो और बैंक भी।
8: और वही कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
11: जेके वॉल मैक्स
12: बेस्ट पेंट,
13: जेके मैक्स।
14: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
15: JK Maxx Paints.
14: JK Maxx, JK Maxx Paints. खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
5: E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
7: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा सिर्फ आज तक पर।
8: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
9: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
10: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
9: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली के सत्यनिकेतन में इमारत गिरने से अब तक 6 लोगों की मौत, 5 घायलों का एम्स में इलाज जारी। अभी भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, पीजी मालिक फरार, दर्ज हुई FIR। नहीं बचेगा सत्यनिकेतन का एक भी गुनेगार, हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, न्यायिक जांच के दिए गए आदेश, नींद से जागा MCD, आसपास की जर्जर इमारत को नोटिस।

0: सीएम आवास तक कूच करेगी कांग्रेस, परेड ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं से जुटने का आह्वान। गंगा के रौद्र रूप से सहमा बिहार, पटना में अब तक के सबसे खतरनाक स्तर तक पहुंचा वाटर लेवल, 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित, गंडक, कोसी और घाघरा में बढ़ा बाढ़ का पानी। आज सजेगा देश के बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच, सीडीएस एनएस सुब्रमण्य के संबोधन से होगी शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम को करेंगे डिफेंस में नए भारत की बात।
1: प्रेजेंटेड बाय

दिल्ली में कल दोपहर सत्यनिकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हुई, कई घायल। बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत बचाव कार्य जारी। बिल्डिंग गिरने की नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पहुंची, हालात का जायजा लेकर दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। बोली, नहीं बचेगा एक भी गुनेगार, दोषियों को मिलेगी सख्त सजा। सीएम रेखा ने कहा, हॉस्टल में पीजी चल रहा था और बेसमेंट में खुदाई की वजह से बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल फरार है, जिस पर FIR दर्ज हो गई है। दिल्ली हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों से मिली सीएम रेखा गुप्ता। एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों का जाना हालचाल। दिल्ली हादसे की जगह पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह और बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज। लिया हालात का जायजा, कहा रेस्क्यू हमारी पहली प्राथमिकता। दिल्ली हादसे के बाद अवैध इमारतों पर MCD का बड़ा एक्शन, 4 मंजिल से ज्यादा निर्माण होंगे सील। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाई ने कहा कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देना या लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों को तुरंत नौकरी से किया जाएगा बर्खास्त। दिल्ली हादसे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच सियासी घमासान छिड़ा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बीजेपी पर बरसी, बोली दिल्ली में माफिया चल रहा है। दिल्ली हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जताया दुख, बोले ये टाली जा सकने वाली घटना थी, हर छात्र की जिंदगी अनमोल। राहुल गांधी की अपील, मलबे में फंसे हर छात्र तक पहुंचे NDRF और रेस्क्यू टीमें, बोले अमानवीय हालत में 40-40 छात्र एक छत के नीचे रहने को मजबूर। सत्यनिकेतन हादसे पर आम आदमी पार्टी ने रेखा सरकार को घेरा, केजरीवाल बोले लापरवाही से कई हादसे हुए, सरकार नींद से जागे, बड़े स्तर पर हो कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर हमला।

हादसे पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके का पीएम मोदी पर निशाना, बोले एक दिन पहले दीव में भाषण, अगले दिन छात्रावास की इमारत गई।

0: नोटबंदी पर हमला, पूछा आखिर कब तक छात्र चुकाएंगे खस्ता हाल सिस्टम की कीमत। दिल्ली पीजी बिल्डिंग हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का एमसीडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, इस दौरान एमसीडी दफ्तर में जमकर हुई तोड़फोड़। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सत्यनिकेतन हादसे को लेकर एबीवीपी का आरोप, नगर निगम की लापरवाही से हुआ हादसा, प्रदर्शनकारियों ने एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली हादसे पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सत्यनिकेतन हादसे के खिलाफ आम आदमी पार्टी छात्र विंग का प्रदर्शन, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास जुटे कार्यकर्ता। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में गिरी इमारत, अब भी राहत बचाव कार्य जारी, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा बाहर। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने कल नाराज हुफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा।
1: आप पूरी तरह से निजी स्वार्थ में ही चिपके रहते हैं और निजी प्रतिष्ठा में ही आपकी पूरी चीजें छिपी रहती है और परिवार के अंदर जो नाराज फूफा की स्थिति रहती है वही आज भारत में आपकी स्थिति हो गई।
0: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पीएम मोदी पर आरोप, कहा प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया। पीएम मोदी का नाराज फूफा वाली टिप्पणी पर सुप्रिया सुले बोली, बोलने के अधिकार के साथ साथ सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच पीएम मोदी आज करेंगे कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी चर्चा से पहले सामाजिक न्याय, जन कल्याण और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के कामकाज की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड में शुद्धिकरण विवाद पर आज कांग्रेस करेगी बड़ी बैठक, सभी दलित सांसद होंगे शामिल। हल्द्वानी में शुद्धिकरण मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध मार्च, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास से करेगी कूच। लंदन के एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल, कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार, व्यक्ति और समाज के बीच संतुलन जरूरी। दुबई पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, निवेश जुटाने की मुहिम शुरू, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को एमपी आने का न्योता दिया। सीएम मोहन यादव ने माइनिंग से हॉस्पिटैलिटी तक निवेश की जताई संभावनाएं, सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर पर भी खास फोकस। सीएम मोहन यादव ने दुबई में ओडीओपी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, एमपी के उत्पादों की दिखी झलक, चंदेरी साड़ी ने दुबई में बिखेरा रंग। सागर में जहरीली शराब पीने की वजह से 11 लोगों की मौत, मामले में 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई, वहीं 8 आरोपी हिरासत में लिए गए और 3 अधिकारी सस्पेंड किए गए। सागर में जहरीली शराब कांड पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर की मरीजों से मुलाकात, बोले दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। पीएम मोदी ने पेरिस में बैप स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर जताई खुशी, बोले ये मंदिर भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों का नया युग स्तंभ। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर जताई आपत्ति, जस्टिस अश्वनी मिश्रा को शपथ न दिलाने की मांग, बार एसोसिएशन ने राजनीतिक दखल की निंदा की। जयपुर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम आरएलपी का शक्ति प्रदर्शन, ओवैसी और हनुमान बेनीवाल ने की संयुक्त जनसभा, हनुमान बोले कि बीजेपी कांग्रेस के सामने तैयार करेंगे तीसरा विकल्प। जयपुर में ओवैसी का बीजेपी पर हमला, बोले मस्जिदें तोड़कर नफरत की दीवारें ऊंची करने की राजनीति बंद हो। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिले कुएं की बैरिगेटिंग, सुरक्षा में पुलिस तैनात, एएसआई टीम का इंतजार। अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूपी प्रभारी के पराया धन अपना टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा विनोद तावड़े पागल है। अखिलेश ने बीजेपी पर धन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, उन्होंने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी और सहयोगियों की जीत का दावा किया। गोवा में गूंजा विकसित बिहार का संकल्प, 2047 के बिहार का रोडमैप तैयार हुआ, बिहार के विकास पर हुआ महामंथन। कारगिल से डोंबिवली लौटी 2252 किलोमीटर लंबी देशभक्ति राइड दही हांडी पर हुआ समापन, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष रविन्द्र चौहान ने किया सम्मान। बिहार में उफान पर गंगा, 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित हुए, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी और घाघरा में भी बाढ़ का पानी। मुंगेर में आपदा मंत्री रत्नेश्वर सादा ने बाढ़ की समीक्षा की, बोले बिहार के 27 जिले प्रभावित हुए, फसल और अन्य नुकसान का होगा आकलन। मुंगेर में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बाढ़ और गंगा के बढ़ते जल स्तर की समीक्षा की। वैशाली जिले के हाजीपुर में बाढ़ का भीषण कहर, 106 गांव पानी में घिरे, सोनपुर दिगवारा में तटबंध टूटने की वजह से हड़कंप मचा, राहत बचाव। पटना के रामनगर दियारा में 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ में घिरे, लोगों ने मदद नहीं पहुंचने का प्रशासन पर आरोप लगाया। हाजीपुर में गंडक नदी का बढ़ा दबाव, अकीलाबाद में रिंग बांध टूटा, बाढ़ का खतरा बढ़ा। लखीसराय में गंगा का बढ़ा जलस्तर, बस्ती में घरों में घुसा पानी, बाहर रहने को मजबूर लोग। छपरा में नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से तटबंध टूटे, गांव और खेतों में फैला बाढ़ का पानी। खगड़िया में गंगा का कहर, 10 पंचायतें जलमग्न, हजारों प्रभावित हुए परिवार, घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। धौलपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़के जलमग्न, नदियों और बांधों के उफान से गांव का टूटा संपर्क। सवाई माधोपुर में उफनते पुलिया से बाइक समेत बहा युवक, बाल बाल बचा, मोटरसाइकिल बही। सोनीपत में भारी बारिश से जल भरा, सड़क जनी बनी तालाब। नगर निगम की मानसून तैयारियों पर उठे सवाल। एमपी के श्योपुर में भी भारी बारिश का कहर, नदियां उफान पर। बाढ़ से विजयपुर के करीब 20 गांव का कटा संपर्क। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी। यूपी के बागपत में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 4 लोगों की मौत। जालौन में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी लूटकांड के आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़, एक घायल, दो ने किया सरेंडर। महोबा में मॉडल स्कूल परिसर के पानी में भरे गड्ढे में डूबे 3 बच्चे, पुलिस जांच में जुटी। पटना के मनेर में जंगली सुअरों का आतंक, हमले में 2 महिलाएं घायल हुई, कल बच्ची की हुई थी मौत। बिहार के जमुई में 9 दिन बाद नाबालिग सहाना हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पैसों के लिए गाय काटकर देहरादून में मांस बेचने का आरोप, बिजनौर में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 मुठभेड़ में घायल। हैदराबाद के जुबली हिल्स के पब में देर रात 2 गुटों में मारपीट, अरविंद यादव उर्फ टिल्लू समेत 21 पर केस दर्ज। हापुड़ में गोलीकांड में दलित युवक दीपक की मौत, 6 आरोपी गिरफ्तार, तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचे और कारतूस बरामद। बलिया में बाढ़ के पानी में डूबने की वजह से 2 किशोरों की मौत हुई, दोस्तों संग नहाने गए थे, एसडीआरएफ के निदेशक। पूर्णिया में जर्जर लोहा पुल टूटा, गिट्टी लदा ट्रक नदी में समाया, 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क टूटा। लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या की, सिर पर लोहे की रॉड से किया हमला। गुजरात के महीसागर में मृत महिला के नाम पर लोन घोटाला, पुलिस ने 7 शातिर लोगों को किया गिरफ्तार। सूरत में अमेजॉन डिलीवरी में असली सामान बदलकर डमी प्रोडक्ट रखने वाला गिरोह गिरफ्तार हुआ, 4 डिलीवरी बॉय समेत 5 पकड़े गए। मुंगेर में पिता ने कुल्हाड़ी से दिव्यांग बेटे की निर्मम हत्या की, पुलिस ने पारिवारिक विवाद में वारदात की आशंका जताई, मौके से कुल्हाड़ी बरामद। जालना में जालन का राजा गणपति का भव्य आगमन हुआ, ढोल ताशों की गूंज के बीच भक्तों ने बप्पा का जोरदार स्वागत किया। गणपति बप्पा मोरिया के जयघोष से गूंज उठा शहर, भव्य शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। कोलकाता में दुर्गा पूजा का आगाज, चोरबाग पूजा ने पूरे किए 91 साल, हेरिटेज पंडाल में दिखेगा खास अंदाज। मदुरई में मां मदुरई फेस्टिवल 2.0 का भव्य समापन हुआ, वैगई नदी किनारे रंग बिरंगी आतिशबाजी से आसमान रोशन दिखा, दिखा अद्भुत नजारा। ड्रोन शो ने बांधा समा, रंगों से जगमगाया पूरा आसमान। बैडमिंटन कोर्ट से आई भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी, सात्विक चिराग की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास।

प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 10 दिन में 17 शहरों में 4000 टन प्याज 35 रुपए किलो बेचा गया। सरकार के पास 1,21,000 टन प्याज का स्टॉक मौजूद है। इसे ट्रक और कांदा एक्सप्रेस से देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। सरकार की सस्ती प्याज योजना से कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की कमी आई। अक्टूबर से नई फसल आने पर प्याज के दाम और नीचे आने की उम्मीद। पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने जेलेंस्की से की मुलाकात। युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच पोपलियो ने शांति की अपील की। कहा 4.5 साल से जारी संघर्ष अब खत्म होना चाहिए। ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद ईरानी स्पीकर गलिबाफ की अमेरिका को खुली चेतावनी। कहा अब युद्ध के हालात और नियम बदल गए हैं, हर हमले का जवाब होगा। पश्चिमी ईरान में एक ईंधन टैंकर में हुआ जबरदस्त विस्फोट, 11 लोगों की मौत हुई, 7 लोग घायल हुए। कई गाड़ियों से टकराते वक्त आग की चपेट में आया टैंकर। लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला, अलग अलग हमलों में 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका के कैलिफोर्निया में छोटा प्लेन क्रैश, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 घायल। जापान के गिफू प्रांत में चाकूबाजी और आगजनी की घटना की वजह से 3 लोगों की मौत हुई, 2 घायल। संदिग्ध हमलावर ने चाकू से हमला कर घर में लगाई आग। इंडोनेशिया के माउंट अनाक क्राकाटो में जोरदार विस्फोट, करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंची ज्वालामुखी की राग, 201 उड़ानें प्रभावित हुई। तूफान जेडोल के कारण चीन के कई हिस्सों में भारी बारिश और भूस्खलन, मरने वालों की संख्या 3 हुई, 9 लापता। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कहने के बाद मेसी का जादू बरकरार। रिटायरमेंट के बाद अपने पहले मैच में मेसी ने दिखाया जबरदस्त खेल।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं।

रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान मिल सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, शिव जी को

तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, अतिथि का आगमन होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में अशांति से बचें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

दूर होगी, नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: अयोध्या के राम मंदिर में सीईओ राज का आगाज हो चुका है।
1: एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र जी को सेवानिवृत्त हो चुके हैं
0: और इसी के साथ सियासी बयानों की आहुतियों का दौर भी शुरू हो गया है।
2: कल इन्होंने एक सीईओ की नियुक्ति की है।
3: ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ?
4: अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे।
0: जिस वक्त रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक उसी समय विपक्ष ने इस ताजपोशी पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। हाल ही में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड जैसी घटनाओं के सामने आने के बाद मंदिर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी एक सैन्य अफसर को सौंपी गई है, लेकिन कार्यभार संभालते ही ये नियुक्ति सियासत के केंद्र में आ गई। कांग्रेस नेताओं ने इस नियुक्ति को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर ताबड़तोड़ हमले बोल दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि मंदिर के प्रबंधन में संतों और धर्माचार्यों की भूमिका होनी चाहिए।
5: कि चंदा चोरी पे आप कुछ नहीं बोले हैं, जरा सा उस पे भी बोल दीजिए अध्यक्ष जी।
2: नहीं, चंदा चोरी देखिए, मैं इसलिए बोल दूं कि अभी कल इन्होंने एक सीईओ की नियुक्ति की है।
5: वो ऑपरेशन सिंदूर में काम कर चुके
2: हैं।
5: आपने तब भी सबूत मांगा था?
2: नहीं, सबूत हमने नहीं मांगा। सीईओ की बात मैं कर रहा हूँ। राम मंदिर में सीईओ का क्या काम है आप बताइए ना भाई। भगवान का स्थान है, मंदिर है, वहाँ सीईओ क्या करेंगे? वहाँ तो धर्माचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए। वहाँ तो परम पूज्य शंकराचार्य के द्वारा नामित होना चाहिए, जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं।
0: विपक्ष यही नहीं रुका, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो इस नियुक्ति को सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हुए सवाल खड़े किए।
3: एयर चीफ को आपने राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बना दिया है, उनका इससे क्या ताल्लुक है? ऑपरेशन संदूर के अंदर कहीं कोई सच तो नहीं छुपा हुआ जिस वजह से उन्हें यहाँ पे सीईओ बनाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है?
0: उधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी सरकार को घेरते हुए सवाल दागा कि क्या देश के साधु संतों में उन्हें कोई योग्य चेहरा नहीं मिला जो ये प्रशासनिक जिम्मा किसी फौजी अफसर को सौंप दिया गया?
4: भाई ये काम साधु संतों का है। अब एयर मार्शल साहब ने हवाई जहाज उड़ाया, हवाई जहाज उड़ा लेते, अब इनके आरएसएस के जंगल में फंस गए वो। अब कल को ये भी बेचारे बदनाम होकर बाहर निकलेंगे। क्या तमाशा है भाई, मंदिर का काम मंदिर वालों को करने दो।
0: सवाल उठता है कि क्या जानबूझकर ऑपरेशन सिंदूर के हीरो को विवादों में घसीटा जा रहा है? क्या मंदिर की व्यवस्था सुधारने के बहाने सरकार पर सियासी निशाना साधने की कोशिश है? सवाल ये है कि क्या सिंदूर वीर के पास राम ट्रस्ट, कांग्रेस को कष्ट,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली के सत्र निकेतन में इमारत गिरने से अब तक 6 की मौत, 5 घायलों का एम्स में इलाज। अब भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। फरार पीजी मालिक के लिए छापेमारी, दर्ज हुई FIR। नहीं बचेगा सत्य निकेतन का एक भी गुनहगार। हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश। नींद से जागा MCD, आसपास की जर्जर इमारतों को नोटिस। कैबिनेट में बदलाव की खबरों के बीच आज कई मंत्रालयों की मीटिंग लेंगे PM। शिक्षा और सामाजिक न्याय समेत कई विभागों के कामकाज की समीक्षा, जवाबदेही तय करने पर भी नजर। गंगा के रौद्र रूप से सहमा बिहार। पटना में अब तक के सबसे खतरनाक स्तर के पार पहुंचा वाटर लेवल। 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित। गंडक, कोसी और घाघरा में बढ़ा पानी। रात सजेगा देश के बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच। CDS NS सुब्रमण्यम के संबोधन से होगी शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 7 बजे करेंगे डिफेंस में नए भारत की बात।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं रेहा बादम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में 6 लोगों के लिए कैसे कब्र बन गई 5 मंजिला इमारत। हादसे का कसूरवार कौन है, क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपडेट, इस बड़ी खबर पर विस्तार से इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे। बिहार में बाढ़ से बचा है त्राईमाम, दिखाएंगे वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स। लंदन में RSS को लेकर क्या बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, ये भी इस बुलेटिन में शामिल होगा। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन शुरुआत करें दिल्ली हादसे की खबर के साथ।

0: दिल्ली के सत्य निकेतन में कल दोपहर हुए इमारत हादसे को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल की तलाश में दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। आज तक उली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को हरिराम घर पर नहीं मिला, वो फरार बताया जा रहा है। उनके करीबियों के यहाँ पुलिस ने दबिश की है। इस बीच दिल्ली के इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 6 हो चुकी है, इनमें छात्र और मजदूर दोनों शामिल है। दरअसल जो 5 मंजिला इमारत गिरी उसमें पीजी हॉस्टल चल रहा था। हादसे में घायल हुए 5 लोगों की हालत गंभीर है। राहत और बचाव टीम ने अब तक 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। मलबे में जिंदगी की तलाश अब भी जारी है। इस बीच तस्वीरें हम आपको सीएम रेखा गुप्ता की दिखा रहे हैं, जो इस हादसे की जगह पर पहुंची है और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेते हुए दिख रही है। बिल्डिंग मालिक हो, अफसर हो, कोई दोषी नहीं बचेगा। सीएम की ओर से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन बिल्डिंग का मालिक अब भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। जगह जगह पुलिस दबिश दे रही है, जिसमें गुरुग्राम जैसे इलाके शामिल हैं। माना जा रहा है कि किसी करीबी के घर इस बिल्डिंग का मालिक छिपा हो सकता है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, क्या क्लूज मिली है इस बिल्डिंग मालिक के बारे में, कहां वो छुपा हो सकता है, पुलिस क्या कह रही है?
1: जब ये पूरा हादसा हुआ नेहा, तो उसके बाद से ही जो बिल्डिंग का मालिक है हरिराम, वो अंडरग्राउंड हो गया, फरार हो गया। कल यहाँ तक कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, उन्होंने भी मौके पर मौजूद होकर ये बयान दिया था कि जो बिल्डिंग का मालिक है वो भाग गया है। कल दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम के इसके घर पर रेड की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन वो घर पर नहीं मिला। उसके बाद मल्टीपल लोकेशन पर कल रात से अब तक दिल्ली पुलिस की लगातार रेड जारी है। पुलिस को ये आशंका है और ये शक है कि ये अपने किसी करीबी के यहाँ सुरक्षित ठिकाना देखकर वहां पर छुपा हुआ है, और दिल्ली पुलिस लगातार इसको तलाश रही है। जब इसकी गिरफ्तारी होगी तब इस बात का खुलासा होगा कि कैसे अवैध तरीके से बिल्डिंग में पीजी चल रहा था, कैसे बेसमेंट का काम चल रहा था, किसकी मिली भगत से चल रहा था, ये सबका खुलासा तभी होगा। और इसकी इसको इसकी गिरफ्तारी के लिए मल्टीपल लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की रेड लगातार चल रही है नेहा।
0: इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या खामियां पाई गई बिल्डिंग में जिसके चलते ये बिल्डिंग गिर गई? क्या कोई एमसीडी की तरफ से लापरवाही सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरीके से अब बार बार वही प्रश्न उठता है जब भी इस तरह का हादसा होता है कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है यहाँ। अरविंद,
1: देखिए आपको बताऊं, ये 40-50 साल की इमारत, पुरानी इमारत थी। इस पे एक तो अवैध तरीके से पूरी बिल्डिंग ही खड़ी थी। आसपास के छात्रों से भी हमने बात की और कोई पिलर मजबूत नहीं था। ऊपर से फिर अवैध तरीके से बेसमेंट में काम चल रहा था, पानी भरा हुआ था, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन 40-50 साल पुरानी इमारत, उसमें पीजी चलाकर और वो भी लुभावने वादे देकर। कल मैंने छात्रों से बात की थी, आज तक की टीम ने बात की थी, पीजी के बाहर लुभावने।
0: आपको अंशुल में सहयोगी जुड़ गए हैं जहां पर ये हादसा हुआ है उसी जगह से। अंशुल, कितने लोग अभी भी अंदर मलबे में दबे हुए हैं, क्या कह रही है वहां पर रेस्क्यू टीम्स?
2: जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं, सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं, मलबा हटाया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो एग्जैक्ट नंबर है, कितने लोग इसमें दबे हो सकते हैं, इसको लेकर के अभी भी ज्यादा क्लैरिटी आई नहीं है। अगर आप तस्वीरों में यहां देखें तो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता यहां पहुंची हैं, मनिंदर सिंह सिरसा यहां पर पहुंचे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। लेकिन पिछले 1 से 1.5 घंटे में यहां से कोई भी किसी भी आदमी को नहीं निकाला गया है। हालांकि जो एम्बुलेंस है वो क्रम से बिल्कुल लगाई हुई है कि जैसे ही कोई भी जान मिलती है, कोई भी आदमी मिलता है, उसे तुरंत यहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया जाए। लेकिन अगर आप इस पूरे इलाके को देखें और इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि जो करप्शन है वो कितनी इजीली इस पूरे इलाके में चलता है। ये जो पूरा इलाका है ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, यानी कि रेसिडेंशियल लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस हर बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं, जो कि बिल्कुल 100% इलीगल है। और कोई भी यहां आकर इन्हें देखने वाला नहीं है, इन्हें पूछने वाला नहीं है कि किस तरीके से ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है उसकी नीचे की मंजिलों पर दुकानें थी और ऊपर की मंजिलों पर पीजी था, तो पूरी बिल्डिंग कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। एक और बड़ा आरोप जो यहां पर छात्रों ने और लोकल्स ने लगाया है, उनका ये कहना है कि इस बिल्डिंग को कुछ महीनों पहले बंद कर दिया गया था, यहाँ पे लोगों को रहने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर कुछ करप्शन हुआ, कुछ बातचीत हुई, बैकडोर बातें चली और उसके बाद इस बिल्डिंग में दोबारा से कमर्शियल एक्टिविटी करने की इजाजत दे दी गई और फिर यहाँ पे बच्चों को ला के रखा गया। ज्यादातर जो बच्चे इसमें फंसे हैं वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, 12वीं पास करके अभी पहली बार दिल्ली में आए थे, अगस्त में अभी सेशन शुरू हुआ था और यहाँ पे इन पीजीज में आके रह रहे थे, जिनका एक बेड का, बस बेड पे रहने का जो किराया है वो 16,000 से 17,000 रुपए, इसके अलावा बिजली और मेंटेनेंस के
0: ठीक है। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। इस बीच दिल्ली सत्य निकेतन हादसे पर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में दिख रही है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता वहीं पर मौजूद है और उन्होंने कहा है कि दोषी चाहे बिल्डिंग मालिक हो या फिर कोई अफसर हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डिंग पुरानी थी, बेसमेंट में खुदाई चल रही थी जिससे नींव हिली और बिल्डिंग गिर गई।
3: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसीज काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए, रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा, सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
4: जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है, गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
0: जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, साफ तौर पर मामला लापरवाही और कानूनी उल्लंघन का है, आखिर प्रशासन हो या फिर सरकार, घटना घट जाने के बाद क्यों सब जागते हैं?
5: यही बात है नेहा, और सुबह से ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दरअसल इस पूरे इलाके का जब मैंने जायजा लिया तो मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं उन्होंने नॉर्म्स जो है पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। जो 3 से 4 मंजिला इमारत होनी चाहिए उसको 5 से 6 मंजिला इमारत पूरी तरीके से बनाया गया है। आप जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है उसको आप देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो शिव मंदिर है उसकी छत पर इस वक्त जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं और तमाम अधिकारियों के साथ इस वक्त उनकी बातचीत चल रही है। दरअसल जब इस तरीके का हादसा हो जाता है तो चाहे सरकार हो, मंत्री हो, नेता हो, तमाम लोग आकर के जो घटना स्थल है उसका जायजा उनके द्वारा लिया जाता है, लेकिन उससे पहले जो एक्शन की बात होती है उस पर किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता। हमने तमाम इलाकों में देखा, चाहे इससे पहले हौज खास की बात हो या फिर दूसरे इलाके जहां पर राजेंद्र नगर में हमने देखा कि बेसमेंट में पानी भर गया था और बच्चे जो वहां पर पढ़ते थे उनके ऊपर किस तरीके से खतरा पैदा हुआ था और उसमें कई जाने चली गई थी। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां पर आपको तस्वीरों में जरूर दिखाई पड़ रही हैं और ऊपर ये शिव मंदिर है जहां पर आपको ये तस्वीर दिखाई पड़ रही है, यहां पर मौजूद होकर के अधिकारियों के साथ भले ही बातचीत कर रही हैं, लेकिन जब एक्शन की बात होती है तो किसी भी तरीके से जो है यहां पर एक्शन को लेकर के कदम नहीं उठाए जाते हैं। यहां नेहा आपको बता दें कि कुछ छात्र जो हैं जो इस पूरे इलाके में रहते हैं किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, तंग गलियां भी हैं इस तरीके से। आप ये बताइए कि यहाँ पर किस तरीके के जो है पीजी बने हुए हैं, कैसे रहते हैं आप लोग, क्या दिक्कतें हैं?
6: यहाँ पे लगभग सभी पीजीज ऐसे हैं, बल्कि यहाँ तो फिर भी थोड़ा खुला है, अंदर जाके और भी बुरा हाल है। बिल्कुल छोटी छोटी गलियां और भी बिल्कुल बीच में मकान वगैरह और सबका ही ऐसा हाल है, बिल्कुल बुरा हो, और इनके ऊपर से बस पेंट वगैरह करके इनको नया बना के दिखा देते हैं, लेकिन अंदर से इनका हाल काफी बुरा है।
5: तो इस इलाके में आप रहते हो, यहाँ पर हमने भी देखा कि ये जो गली है ऐसे तंग गलियां बहुत सारी हैं,
6: तो काफी ठीक है, इससे भी छोटी छोटी गलियां हैं अंदर की तरफ।
5: तो क्या सिचुएशन है जो यहाँ पर बाहर से स्टूडेंट आते पढ़ने के लिए, उनको किस तरीके का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे, क्या बेसमेंट में भी बहुत सारे लोग रहते हैं या किस तरीके का?
6: हाँ, बेसमेंट में भी काफी लोग रहते हैं, और यूं भी नहीं कि यहाँ का किराया कम है इसलिए ये ऐसी चीजें, किराया बहुत ज्यादा है यहाँ का, एक एक बेड का 20,000 रुपए लेते हैं और फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं देते। खाना देखो, इनका खाना बेकार है काफी, और ये भी मुद्दे बस कुछ टाइम, और ऐसा नहीं है यहाँ पे ये पहली बार बिल्डिंग गिरी है, इससे पहले भी एक बार यहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी, उस टाइम पे भी 5 से 6 लोग घायल हुए थे या मरे थे शायद, और उस टाइम पे भी कुछ नहीं करा गया था और अब भी
5: बिल्कुल। तो नेहा ये स्टूडेंट हैं और इसी इलाके में रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि खतरा इनकी जान को भी रहता है, ये लोग बाहर से आकर के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन सबको इसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भले ही यहाँ ग्राउंड जीरो पर
0: ठीक है बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम आपको दिल्ली के सत्य निकेतन में बिल्डिंग हादसे पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, हादसे के पीछे की क्या कहानी है जो अब तक सामने आई है, उसमें सिस्टम पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
7: दिल्ली के सत्य निकेतन में कल सुबह तक यहाँ 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबों का पहाड़ है और मलबों के बीच तलाश हो रही है जिंदगी की। कल दोपहर करीब 1:30 बजे जो इमारत गिरी थी उसमें चल रहे पीजी हॉस्टल में ज्यादातर डीयू के छात्र रहते थे। बिल्डिंग करीब 40 से 50 साल पुरानी बताई जा रही है। देश की राजधानी में हुए इस हादसे से हड़कंप है, सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये इमारत गिरी कैसे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था, बारिश की वजह से वहां पानी भर गया था, बारिश के पानी से नींव कमजोर होने से इमारत भरभरा कर गिर गई। ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत को अवैध रूप से 5 मंजिला बना दिया गया था।
8: बेसमेंट में कोई काम चल रहा
9: था? बेसमेंट में काम चल रहा था, 2 दिन से पानी भरा हुआ था और इसका क्या था कि अंडर कंस्ट्रक्शन था और आप कह सकते हो कि इलीगली है क्योंकि यहाँ पे अलाउड है कि आप 3 मंजिल से लेके 5-4 मंजिल तक कर सकते हो, मगर यहाँ ये बिल्डिंग थी 5वीं मंजिल तक और मैक्सिमम स्टूडेंट थे, पीजी थे।
7: बड़ा सवाल है कि क्या इस बिल्डिंग का नक्शा पास था? 5 मंजिला इमारत बनाने की अगर अनुमति नहीं थी तो इसे रोका क्यों नहीं गया? 40 साल पुरानी इमारत में छात्रों को रहते बेसमेंट में काम की इजाजत कैसे दी गई? जाहिर है पहली नजर में मामला अवैध निर्माण और नियमों की धज्जियां उड़ाने का लग रहा है। यही वजह है कि कल जब मेयर प्रवेश वाही से सवाल किया गया तो उन्हें जवाब देते नहीं बना।
10: पहले रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट है, सभी जायज आपके इस समय सभी जायज है, बहुत कमियां हैं सिस्टम में, बहुत कमियां मैं मानता हूं, लेकिन पहले अभी रेस्क्यू होने दीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं।
7: मामला देश की राजधानी का है, सबकी नजरें इस पर है, सरकार भी अब एक्शन में आ गई है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
11: अब इस पूरे मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं। अब इसकी पूरे मामले की जांच जो है वो की जाएगी। हत्या दिल्ली पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि इस पूरे हादसे पर जो हरिओम बंसल है जो कि इस बिल्डिंग का मालिक है उसके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाए।
7: दिल्ली में जो बिल्डिंग गिरी है उसका मालिक हरिराम बंसल बताया जाता है। हरिराम बंसल गुरुग्राम का रहने वाला है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है।
12: पुलिस का कहना है कि उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, उसको तलाशा जा रहा है, एक्शन होगा जिस तरह से दिल्ली CM ने बोला है, लेकिन ये जरूरी है कि एक बड़ा ड्राइव चलाया जाए दिल्ली में, खास तौर से लाइब्रेरी, PG, कोचिंग, ये तमाम चीजों पर।
7: दिल्ली में नियमों की अनदेखी और प्रशासन की बेरुखी की वजह से पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में लगी भीषण आग ने भयावह रूप ले लिया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं 2 साल पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। हादसे पर हादसे, आखिर कब सबक सीखेगी दिल्ली? सुशांत मेहरा, अंशुल सिंह और अनमोल बाली के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन में हुए इस हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पर एडिशनल DCP अभिमन्यु पोस्टवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
13: 1:30 बजे के आसपास हमारे पास एक PCR कॉल आई थी जिसमें हमें पता चला था कि एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। इमीडिएटली हमारा जो दिल्ली पुलिस का स्टाफ था साउथ कैंपस थाने का, उसने रश किया स्पॉट पे, आइडेंटिफाई किया कि PG था, कुछ बच्चे अंदर फंसे हुए थे, कुछ को इमीडिएटली रेस्क्यू किया उन्होंने और कंसर्न हॉस्पिटल भेजा गया उनको। उसके बाद धीरे धीरे जब इंटरोगेशन और फर्दर इंक्वायरी करी गई तो पता चला कि कुछ और भी बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। NDRF की टीम, कैट की एम्बुलेंसेज और बाकी जितना भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ था वो सबके सब यहां पहुंचे। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया अभी तक टोटल 10 बच्चे जो थे उनको रेस्क्यू किया जा चुका था। अनफॉर्चुनेटली उसमें से 5 बच्चों को ब्रॉड डेड डिक्लेयर करा है हॉस्पिटल ले जाने के बाद। इसमें FIR हमने रजिस्टर कर दी है रिलेवेंट सेक्शंस में भारतीय न्याय संहिता के, और जो ओनर है इस बिल्डिंग का उनको पकड़ने के लिए हमारी जो टीम है उनको अरेस्ट करने के लिए वो भी भेज दी गई है, और जैसे भी होगा उसके आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी।
0: अंशुल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, क्या उम्मीद करें जिंदगियों को लेकर जो अभी भी इस मलबे में दबी हुई हैं? क्या किसी तरह का कोई नया वीडियो या फिर कुछ आवाजें अंदर से आ रही हैं जिससे पता चल सके कि अभी भी वहां पर जिंदा छात्र मौजूद हैं?
2: जी, ज्यादातर जो लोग हैं उन्हें अभी निकाल लिया गया है, ये यहाँ के अधिकारियों का कहना है। अभी ऑफ रिकॉर्ड ये यही बता रहे हैं। अगर मैं आपको अपने पीछे तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊं तो आप देखें, अब जो है हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है, यानी कि जो प्रिसाइज ऑपरेशन चल रहा था वो अब खत्म हो गया है, और मलबा जो है अब JCB से लगातार हटाया जा रहा है, और ये पूरा इलाका करीब करीब खाली हो ही गया है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी ये बताया जा रहा है कि अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इसके नीचे फंसे हों, जिसको लेकर के सारी तैयारियां यहाँ पे कर ली गई हैं, यहाँ पे एम्बुलेंसेस लगा दिए गए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर क्या है इस पर अभी तक ज्यादा क्लैरिटी कोई नहीं दे रहा, कोई एग्जैक्ट बताना नहीं चाह रहा कि कितने बच्चे फंसे हुए थे और कितने स्टाफ फंसे हुए थे, कितने मजदूर फंसे हुए थे, ये कोई भी अधिकारी जो है ये ऑफिशियली बताना नहीं चाह रहा है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है। लेकिन आप तस्वीरें देखें तो ज्यादातर जो इलाका है यहाँ पर उस इलाके को अब खाली कर दिया गया है बुलडोजर से और JCB से, इस पूरे इलाके को अब खाली कर दिया गया है। लेकिन अभी भी जो मलबा है उस मलबे में लोग और एक या दो लोग और फंसे होने की आशंका है। अगर आप बिल्डिंग की तस्वीरें आप देखें तो सामने वाली बिल्डिंग जो है उस सामने वाली बिल्डिंग में भी आप देखें कि कितना बड़ा जो छेद है वो हो गया है, ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से खराब हो गया है, और ये 5 मंजिला बिल्डिंग हमारे सामने जो है ये भी किसी भी वक्त गिर सकती है, किसी भी वक्त इस पे भी एक्सीडेंट हो सकता है। और इसी में एक आई वॉश करते हुए आज MCD ने एक नोटिफिकेशन निकाला है और ये कहा है कि इस बिल्डिंग को भी जल्द से जल्द डिमोलिश कर दिया जाए। अब जाके MCD की आंखें खुली हैं, अगर ये बिल्डिंग डिमोलिश नहीं हुई तो ये बिल्डिंग ऐसी भी कुछ दिनों में खुद ही गिर जाएगी जिस हालत में ये बिल्डिंग है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप आसपास की सारे इलाके
0: रोकूंगी आपको। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, सिर्फ बिल्डिंग मालिक की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है। कभी किसी बिल्डिंग को हम ध्वस्त होता हुआ देखते हैं क्योंकि वो जर्जर थी, कभी किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, ये तमाम नॉर्म्स को पूरे धड़ल्ले से यहां पर धत्ता बताया जाता है, और इसी तरह से जो बेकसूर है उनकी जान चली जाती है।
14: नेहा, मतलब 20-22 साल से हम लोग यही कवर करते आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया दिल्ली, ये देश की राजधानी दिल्ली की बात हो रही है, ये कोई दूर दराज गाँव के इलाके या कोई और शहर की बात नहीं हो रही है, और वो भी काफी पॉश इलाका है ये, बगल में ही शांति निकेतन नाम की बड़ी पॉश कॉलोनी है। लेकिन जब आप एक जो कॉन्ट्रास्ट है वो यहाँ पे नजर आता है, आप देखिए ना जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं ये रास्ते भी कितने संकरे हैं, अगर फायर की कोई सिचुएशन हो या तरह की कोई भी आपातकाल स्थिति हो तो यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशंस कितने मुश्किल हो जाते हैं। बारिश हो जाए तो यहाँ पे ये वो इलाके हैं जिन्हें जल भराव सबसे पहले देखने को नजर आता है। बहरहाल यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि जो पूरी व्यवस्था एक तरीके से एकजुट है, यही व्यवस्था की असली अग्नि परीक्षा तब होती है जब घटना घटती है, हो हल्ला होता है, हंगामा होता है, और कितनी बार हम लोग ने ऐसे घटना कवर की है जिसमें मासूम जाने जो है वो इसका शिकार होती है, लेकिन उसके बाद नतीजा ढाक के तीन पात। आज बड़ा अनफॉर्चुनेट है, एक तरफ पूरी शिक्षा व्यवस्था की बात हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, देश के बेहतरीन कैंपसेस के बीच की बात हो रही है, और मैं वो आई कार्ड देखती हूँ, वो मैं आइडेंटिटी कार्ड देख रही हूँ या पहचान पत्र देख रही हूँ जिनमें 22 साल 18 साल 24 साल के बच्चों के आई कार्ड है जिनका अता पता नहीं चला है। अभी इसी मलबे में कहीं वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे। तो बहरहाल, और यहाँ पे आप देखिए कि पूरे जो आसपास के सोसाइटी के लोग हैं, हमने बात भी की है कई लोगों से, वो बोलते हैं कि यहाँ पे आप प्रशासन को बुलाइए तो वो बेईमानी है क्योंकि कोई मदद करने के लिए भी यहाँ पे आता नहीं है। जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी होती है हम लोग को अपने आप ही अपनी परिस्थिति से जूझना पड़ता है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं हादसे में मारे गए 6 लोगों में ज्यादातर छात्र हैं जो पीजी में रहते थे। इसे छात्र संगठनों में गुस्सा है। कल एबीवीपी, एनएसयूआई और आपकी स्टूडेंट विंग से जुड़े छात्रों ने प्रदर्शन किया। 3 तस्वीरें प्रदर्शन की आप देख रहे हैं, जिसमें एबीवीपी और एनएसयूआई एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। दरअसल छात्रों की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में ये प्रदर्शन किया गया।
14: एमसीडी ये कार्य कर रहा है, ये चीजें छोड़ दे। अगर विद्यार्थी परिषद अपनी पे आ गया तो ये बिल्डिंग चकनाचूर कर देगा।
15: आपको डिटेन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे?
16: दिल्ली प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि जहाँ पर लोग मर रहे हैं, स्टूडेंट्स मर रहे हैं, मलबे के अंदर दबे हुए हैं, वहाँ पर एमसीडी के अधिकारियों को तो अरेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों पे अपनी दादागिरी जमा रहे हैं, ऐसे दिल्ली पुलिस के प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। एमसीडी कमिश्नर को यह होना चाहिए था, वो अपने ऐसे कमरे में बैठे, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। ये विद्यार्थी परिषद की मांग है, मलबे के अंदर दबे हुए ये छात्र, उसके परिवार की मांग है।
17: 5 मंजिल, तो 5 मंजिल का जो परमिशन किसने दिया, कैसे दिया, और उसमें बेसमेंट खोदने के लिए किसने इनको परमिशन से, जो ये देखने को जो दिख रहा है साफ साफ, इन लोग ने करप्शन के कोई हद नहीं है, सब पार करके रखा है। इनको कमीशन मिलने से किसी का चीज के भी परमिशन देते हैं।
18: ये सारा नेक्सस भाजपा वालों का है, ये पीजी जो है ये सारे के सारे भाजपा वालों का। अच्छा सर्वे करवा के देख लिए, मैं बात पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है, हमने उन छात्रों को मरते हुए देखा है। शायद मेडिकल की टीम समय पे आ जाती, इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते, कुछ मशीनरी होती जिससे उस मलबे को हटाया जा सकता था, तो बहुत सारे छात्र की जान बच सकती थी। अब सब
0: बात बिहार में आई बाढ़ की, यहां पर बाढ़ से करीब 12 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित हैं। पटना में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा में बाढ़ से भागलपुर और मुंगेर जिले के कई गांव जलमग्न हो गए।

0: दूर दूर तक पानी ही पानी। ये पटना जिले के अथमलगोला प्रखंड का रामनगर दियारा पंचायत है। गंगा नदी ने रौद्र रूप लिया तो नदी के किनारों को तोड़ते हुए गंगा का पानी दियारा इलाके में घुस गया। पंचायत के 5,000 से ज्यादा लोग सैलाब के बीच अपने घरों में ही रहने को मजबूर हैं। गांव के हर घर में कमर से ज्यादा पानी भर आया है। देखिए बाढ़ की वजह से किस तरह बस्ती में नाव का इंतजाम किया गया है।
1: मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड अंतर्गत बुचाही गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं ये एक स्थानीय स्कूल है। यहाँ का स्कूल में भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और लोग अपने जान बचाने के लिए किसी तरीके से अब ये जुगाड़ की नाव के सहारे आप देख सकते हैं किस तरीके से खाने पीने की चीज़ मवेशी सब को लेकर जो है वो स्कूल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित स्थान पर जाना अभी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पूरे इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और चारों तरफ केवल और केवल गंगा का पानी नज़र आ रहा है। और आप ये देखें कितने विकट परिस्थितियों में आप ये देखें ये परिवार जो है वो अपना घर छोड़कर स्कूल के तरफ जा रहा है ताकि जो भी यहाँ पर उनका मवेशी है खाने पीने की जो बचा खुचा है उसको सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा सके।
0: बिहार में सिर्फ यही एक इलाका बाढ़ प्रभावित नहीं है। मुंगेर जिले के जमालपुर के बोचाही गांव का हाल देखिए। आज तक संवाददाता बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों से लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। भागलपुर जिले के भवनाथपुर से उनकी ये रिपोर्ट देखिए।
1: भागलपुर के भवनाथपुर गांव में हम मौजूद हैं, सुल्तानगंज प्रखंड में पड़ता है और देखिए जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। कमर भर से ऊपर पानी आ रहा है, आगे छाती भर पानी है और ये गंगा नदी की रफ्तार आप देखें किस तरीके से नदी का पानी एक तरफ से दूसरे तरफ जो है इस ग्रामीण सड़क से होते हुए गुजर रहा है और चारों तरफ आपको केवल और केवल गंगा का पानी ही नज़र आएगा और परिस्थितियां कितनी विकट हैं ये साफ तौर पर देख सकते हैं। हम इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर आप देखिए झोपड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से कह सकते हैं जल समाधि ले चुकी हैं। आज तक इस वक्त आपको पल पल की जानकारी बिहार के बाढ़ की स्थिति को लेकर जो है वो दे रहा है और फिलहाल बिहार में बाढ़ ने ज़बरदस्त तांडव मचाया है और तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा की आबादी अभी तक बाढ़ को लेकर प्रभावित है। रोहित सिंह, गांव भवनाथपुर, भागलपुर, आज तक।
2: और इस बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। यहां पर सागर में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से कई घरों में मौत का मातम पसर गया है। बंडा इलाके में शराब पीने के बाद अब तक 11 लोगों की मौत की खबर है। शनिवार रात शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी जिसके बाद हड़कंप मच गया। गुस्साए लोगों ने एक मृतक का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम भी किया। प्रशासन ने एहतियातन इलाके की 6 शराब दुकानों को सील कर दिया है।
0: मध्य प्रदेश के सागर में संदिग्ध जहरीली शराब ने कई घरों में मातम पसार दिया है। बंडा इलाके में जहरीली शराब पीने से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। शनिवार रात शराब पीने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी जहां कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया।
3: जिन्होंने जहरीली शराब का सेवन किया था उनको यहां भर्ती किया गया है, उनको लगातार उनका उपचार चल रहा है और पूरा अस्पताल जो है छोटा सा सिविल अस्पताल है वो इस वक्त भरा हुआ है। सामने इमरजेंसी वार्ड में भी अगर आप देखें तो लोग अंदर मौजूद हैं जिनका इलाज लगातार चल रहा है। अचानक से ये छोटा सा अस्पताल जो है वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि आसपास के गांवों के जो तमाम पीड़ित हैं उन्हें इसी अस्पताल लाया गया जिनमें से कई लोगों की मौत हो चुकी है, कईयों का इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों का गंभीर आरोप है कि जो अवैध शराब का जिक्र किया जा रहा है क्या वो वाकई अवैध थी, जहरीली थी, ये तो साबित हो गया है क्योंकि लोग मरे हैं।
0: गुस्साए लोगों ने 32 साल के मृतक का शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। एहतियातन इलाके की 6 शराब दुकानों को सील कर दिया गया है।
4: ये जो ललितपुर में पूर्व में जो फैक्ट्री पकड़ी गई है उससे लोग ये लिंक्ड हो सकते हैं तो उसी संदर्भ में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी FIR रजिस्टर कर ली गई, करीब 20 लोगों के खिलाफ FIR रजिस्टर करी, 8 से 10 लोग अभी हमारे हिरासत में, पुलिस पार्टियां लगी हुई हैं, जल्द से जल्द और भी लोग हिरासत में ले लेंगे।
0: मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया है और 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में शराब यूपी से लाकर यहां खपाने की बात सामने आई है। पीड़ितों ने गांव के ही कुछ लोगों पर शराब बेचने की बात कही है। अब पुलिस सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी है। रोहित कुमार सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
2: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

शांतिनिकेतन की इमारत गिरने के बाद अब तक 6 की मौत, 5 घायलों का एम्स में चल रहा है इलाज, अभी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, फरार पीजी मालिक के लिए छापेमारी, दर्ज हुई FIR। नहीं बचेगा सत्य निकेतन का एक भी गुनहगार, हादसे के बाद दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश, नींद से जागा एमसीडी, आसपास की जर्जर इमारतों को नोटिस। कैबिनेट में बदलाव की खबरों के बीच आज कई मंत्रालयों की मीटिंग लेंगे पीएम, शिक्षा और सामाजिक न्याय समेत कई विभागों के कामकाज की समीक्षा, जवाबदेही तय करने पर भी नजर। गंगा के दौर रूप से सहमा बिहार, पटना में अब तक के सबसे खतरनाक स्तर तक पहुंचा वाटर लेवल, 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित। और आज सजेगा देश के बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामन, सीरियस NS सुब्रमण्यम के संबोधन से होगी शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 7 बजे करेंगे नए और आत्मनिर्भर भारत की बात।

0: और सीधे आप
1: को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा और सरकार नगर निगम के साथ में एक ऐसा पॉलिसी लेके आ रही है। आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा और सरकार नगर निगम के साथ में एक ऐसा पॉलिसी लेके आ रही है जिसमें कि हर एक बिल्डिंग जो कि कोई पब्लिक डोमेन का काम करेगी, चाहे वो पीजी हो, चाहे नर्सिंग होम, स्कूल, कुछ भी जो काम करना चाहती है, जब तक कर रही है। जिन बच्चों के साथ हादसा हुआ है उनके पेरेंट्स के साथ भी हम संपर्क में हैं और उन पेरेंट्स को भी हम पूरी मदद दे रहे हैं ताकि वो परेशान ना हो। हम सरकार की ओर से जितने भी वो अधिकारी हैं जिनकी अनदेखी थी, लापरवाही थी या कोई भी कारण था, ऐसे अधिकारियों को भी आज की आज उन पे एक्शन होगा, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं।
0: और अब रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर का। दिल्ली में सत्य निकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत ढही, हादसे में 6 की गई जान, कई घायल, बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत और बचाव काम जारी, बिल्डिंग गिरने का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह पहुंची, हालात का जायजा लेकर दिए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश, बोली नहीं बचेगा एक भी गुनहगार। सीएम रेखा ने कहा हॉस्टल में पीजी चल रहा था और बेसमेंट में खुदाई की वजह से बिल्डिंग गिरी, बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल फरार। दिल्ली हादसे में रेस्क्यू किए गए लोगों से मिली सीएम रेखा गुप्ता, एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों से जाना हालचाल। दिल्ली हादसे की जगह पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, लिया हालात का जायजा, कहा रेस्क्यू हमारी पहली प्राथमिकता है। दिल्ली हादसे के बाद अवैध इमारतों पर एमसीडी का कड़ा एक्शन, 4 मंजिल से ज्यादा निर्माण होंगे सील। दिल्ली मेयर प्रवेश वाही ने कहा अवैध निर्माण को बढ़ावा देने या लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों को तुरंत नौकरी से किया जाएगा बर्खास्त। दिल्ली हादसे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच छिड़ा सियासी संग्राम, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बीजेपी पर बरसी, बोली दिल्ली में माफिया चल रहा है। दिल्ली हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जताया दुख, बोले ये टाली जाने वाली घटना थी, हर छात्र की जिंदगी अनमोल है। राहुल गांधी की अपील, मलबे में फंसे हर छात्र तक पहुंचे एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें, बोले अमानवीय हालात में 40-40 छात्र एक छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। सत्य निकेतन हादसे पर आपने देखा सरकार को घेरा, केजरीवाल बोले लापरवाही से कई हादसे हुए हैं, सरकार नींद से जागे। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की दिल्ली सरकार पर हमला, बोले ऑडिट के नाम पर करोड़ों वसूले जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। दिल्ली हादसे पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर का मोदी पर निशाना, बोले एक दिन पहले डीयू में भाषण, अगले दिन छात्रावास की इमारत ढही। अभिजीत दीपके का पीएम मोदी पर हमला, बोले आखिर कब तक छात्र चुकाएंगे खस्ताहाल सिस्टम की कीमत। दिल्ली पीजी बिल्डिंग हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का एमसीडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, इस दौरान एमसीडी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़, सुरक्षाकर्मी और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सत्य निकेतन हादसे को लेकर एबीवीपी का आरोप, नगर निगम की लापरवाही से हुआ हादसा, प्रदर्शनकारियों ने एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली हादसे पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप। सत्य निकेतन हादसे खिलाफ आप छात्र विंग का प्रदर्शन, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास जुटे कार्यकर्ता। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरी इमारत, अब भी राहत बचाव वहां जारी, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा रहा है बाहर। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों को नितिन नवीन का तंज, कहा प्रधानमंत्री ने कल नाराज वूफान और होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ।
2: आप पूरी तरह से निजी स्वार्थ में ही चिपके रहते हैं और निजी प्रतिष्ठा में ही आपकी पूरी चीजें छिपी रहती है और परिवार के अंदर जो नाराज फूफा की स्थिति रहती है वही आज भारत में आपकी स्थिति हो गई है।
0: कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पीएम मोदी पर लगा रहे आरोप, कहा प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया। पीएम मोदी का नाराज फूफा वाली टिप्पणी पर सुप्रिया सुले बोली, बोलने के अधिकार के साथ साथ सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच पीएम आज करेंगे कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी। प्रधानमंत्री चर्चा से पहले सामाजिक न्याय, जनकल्याण और अन्य प्रमुख मंत्रालयों के कामकाज करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड में शुद्धिकरण विवाद पर आज कांग्रेस करेगी बड़ी बैठक, सभी दलित सांसद होंगे शामिल। हल्द्वानी में शुद्धिकरण मुद्दे को लेकर कांग्रेस का विरोध मार्च, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास तक करेंगे कूच। लंदन के कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा सबको एक मानता है हिंदू विचार। दुबई पहुंचे दुबई पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, निवेश जुटाने की मुहिम शुरू, मुख्यमंत्री निवेशकों को एमपी जाने का न्योता दिया। सीएम मोहन यादव ने माइनिंग से हॉस्पिटैलिटी तक निवेश की जताई संभावना, सेमीकंडक्टर, एआई और डेटा सेंटर पर खास फोकस। सीएम मोहन यादव ने दुबई में ओडीओपी प्रदर्शनी का किया उद्घाटन, एमपी के उत्पादकों की दिखी झलक, चंदेरी साड़ी ने दुबई में बिखेरा रंग। सागर में जहरीली शराब पीने से 11 की मौत, 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 8 आरोपी हिरासत में लिए गए। सागर में जहरीली शराब कांड पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर की मरीजों से मुलाकात, बोले दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई। पीएम मोदी ने पैरिस में बीएपीएस स्वामीनारायण हिंदू मंदिर के उद्घाटन पर जताई खुशी, बोले ये मंदिर भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों का नया युग स्तंभ है। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर जताई आपत्ति, जस्टिस अश्विनी मिश्रा को शपथ न दिलाने की मांग, बार एसोसिएशन ने राजनीतिक दखल की निंदा की। जयपुर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम आरएलपी का शक्ति प्रदर्शन, ओवैसी और हनुमान बेनीवाल ने की संयुक्त जनसभा। जयपुर में ओवैसी का बीजेपी पर हमला, बोले मस्जिदें तोड़कर नफरत की दीवारें ऊंची करने की राजनीति बंद करे सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट दौरे के दौरान रामघाट का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। सीएम योगी ने राहत किट और सहायता राशि के चेक वितरित किए, कहा आपदा की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूपी प्रभारी के पराया धन अपना पर पलटवार करते हुए कहा कि विनोद तावड़े पागल है। अखिलेश ने बीजेपी पर धन के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, कहा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी और सहयोगियों की जीत का हम दावा करते हैं। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले मुस्लिम प्रेम में सही गलत भूल गए अखिलेश। आजमगढ़ कार्यकर्ता की पिटाई को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को घेरा, कहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो खड़े हो जाओ। बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, सीएम योगी से मुलाकात में सभी को साथ लेकर चलने की रणनीति। यूपी में बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट पर विनोद तावड़े का फोकस, बोले बूथ इतना मजबूत करो कि विपक्ष सेन न लगा पाए। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या मामले में गैंगस्टर भोलू साहापुरिया पर घोषित किया गया 1,00,000 का इनाम। कनाडा के टोरंटो में बैठे गोगी गैंग के भोलू साहापुरिया पर शामली पुलिस ने घोषित किया इनाम। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिले कुएं की बैरिकेडिंग, सुरक्षा में तैनात पुलिस, एएसआई टीम का इंतजार। कोलकाता में बीजेपी एमएलए सौरभ सिकदर का बड़ा बयान, बोले भगवा कपड़े पहनने से कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बन जाता। एमएलए सौरभ सिकदर बोले भगवा त्याग और बलिदान का रंग है, पार्टी टिकट के लिए भगवा पहनने वालों के लिए मेरा संदेश है। तेलंगाना विधानसभा में 22 एलएस का मुद्दा उठा, बीजेपी ने जमीन मकानों पर चर्चा की मांग की। कर्नाटक में एफडीए की कार्रवाई, अमेजॉन के 2 ठिकानों पर छापेमारी, बिना लाइसेंस रखी गई 4,00,000 से ज्यादा की दवाएं जब्त। बिहार में उफान पर गंगा, 12 जिलों के 22,00,000 लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर गंडक नदी, घाघरा में भी उफान, मुंगेर में बाढ़ और गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोगों की बड़ी मुसीबत, मवेशियों ने लोगों की बचाई जान। मुंगेर में आपदा मंत्री रत्नेश सादन ने बाढ़ की सीमा पर बोले बिहार के 27 जिले प्रभावित हैं, फसल और अन्य नुकसान का होगा आकलन। वैशाली जिले के हाजीपुर में बाढ़ का भीषण कहर, 106 गांव पानी में घिरे, सोनपुर दिगवारा में तटबंध टूटने से हड़कंप। पटना के रामनगर यारा में 5,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से घिरे, लोगों ने मदद नहीं पहुंचने पर प्रशासन पर लगाया आरोप। हाजीपुर में गंडक का बढ़ा जलस्तर, अकीलाबाद में रिंग बांध टूटा, बाढ़ का खतरा बढ़ा। लखीसराय में गंगा का बढ़ता जलस्तर, बस्ती के घरों में घुसा पानी, बाहर रहने को मजबूर है लोग। छपरा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूटे, गांव और खेत में फैला बाढ़ का पानी। खगड़िया में गंगा का कहर, 10 पंचायतें जलमग्न, हजारों परिवार प्रभावित। धौलपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें जलमग्न, नदियों और बांधों में उफान से गांव का संपर्क टूटा। सवाई माधोपुर में उफनते पुलिया से बाइक समेत बहा युवक, बाल बाल बचा, मोटरसाइकिल बही। सोनीपत में भारी बारिश से जलभराव, सड़कें बनी तालाब, नगर निगम की मॉनसून तैयारियों पर उठे सवाल। एमपी के श्योपुर में भारी बारिश के कहर, नदियां उफान पर, बाढ़ से करीब 20 गांव का कटा संपर्क। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी जानकारी, बागपत में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 20 से ज्यादा लोग घायल, 4 की मौत। गोरखपुर में अंतिम संस्कार में दिए गए 2 वकीलों पर गिरी बिजली, दोनों की मौके पर मौत। बस्ती में दरोगा सुसाइड केस में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में बाढ़ सर्वे के नाम पर अवैध वसूली, हंगामे के बाद लेखपाल और मुंशी ने लुटाई रकम। बिहार के जमुई में 9 दिन बाद नाबालिग सहाना हत्याकांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्त में। पैसों के लिए गाय काटकर देहरादून में मांस बेचने का आरोप, बिजनौर में

मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचे और कारतूस बरामद। बलिया में बाढ़ के पानी में डूबने से दो किशोरों की मौत, दोस्त ने संग नहाने गए थे, एसडीआरएफ ने निकाले शव। पूर्णिया में जर्जर लोहा पुल टूटा, ट्रक नदी में समाया, एक दर्जन ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या की, सर पर लोहे की रॉड से किया हमला। गुजरात के महीसागर, मृत महिला के नाम पर लोन घोटाला, पुलिस ने सात शातिर को किया गिरफ्तार। सूरत में अमेजॉन डिलीवरी में असली सामान बदलकर डमी प्रोडक्ट देने वाला गिरोह गिरफ्तार, चार डिलीवरी बॉय समेत पांच पकड़े गए। मुंगेर में पिता ने कुल्हाड़ी से दिव्यांग बेटी की निर्मम हत्या की, पुलिस ने पारिवारिक विवाद में वारदात की आशंका जताई। बैडमिंटन कोर्ट से आई भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी, सात्विक चिराग की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास। सात्विक चिराग चाइना मास्टर्स का टूर्नामेंट जीतने वाली पहली महिला भारतीय जोड़ी बनी। इससे पहले सात्विक चिराग को 2023 और 25 में फाइनल में करना पड़ा था हार का सामना। प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 10 दिन में 17 शहरों में 4000 टन प्याज 35 रुपए किलो बेचा गया। सरकार के पास 1.21 लाख टन प्याज का स्टॉक मौजूद, इसे ट्रकों और कांदा एक्सप्रेस से देश के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। सरकार की सस्ती प्याज योजना से कम कीमतों में 2 से 3 रुपए तक की कमी आई है। अक्टूबर से नई प्याज की फसल लाने पर प्याज के दाम और नीचे आने की उम्मीद। पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने जेलेंस्की से मुलाकात, युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच पोप लियो ने शांति की अपील की, कहा 4.5 साल से जारी संघर्ष अब खत्म होना चाहिए। ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद ईरानी स्पीकर गालिबाफ की अमेरिका को खुली चेतावनी, का युद्ध के हालात और नियम बदल गए हैं। कश्मीर में ईंधन टैंकर में जबरदस्त विस्फोट, 11 की मौत, 7 घायल। लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला, अलग अलग हमलों में 4 की मौत, 20 से ज्यादा घायल। बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे में सीएम रेखा गुप्ता ने फिर हादसे वाली जगह का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग गिरी है वो बहुत पुरानी थी, बेसिन में पानी भरे होने की वजह से यह हादसा हुआ है, जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

0: घटना बहुत ही दुखद है। इस बिल्डिंग के ऑनर की जो लापरवाही है, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और बेसमेंट में पानी भरा होने के कारण उसके पिलर जो है वो गिर गए, पूरी बिल्डिंग ढह गई और इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: अभी जिन चला गया,
0: खाली कराया गया है उन सबको हमने कॉलेज हॉस्टल्स में अकोमोडेट कराया है, उनकी सुविधाओं की चिंता सरकार कर रही है। जिन बच्चों के साथ हादसा हुआ है उनके पेरेंट्स के साथ भी हम संपर्क में हैं और उन पेरेंट्स को भी हम पूरी मदद दे रहे हैं ताकि वो परेशान ना हो। हम सरकार की ओर से जितने भी वो अधिकारी हैं जिनकी अनदेखी थी, लापरवाही थी या कोई भी कारण था, ऐसे अधिकारियों को भी आज की आज उन पे एक्शन होगा, किसी को भी छोड़ेंगे।
2: वक्त इशू से ब्रेक का उछला, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: आगे आगे
4: अरे उधर
3: उधर किधर
4: करेक्ट करेक्ट
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चले।
6: पापा
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ। तू
8: चार्ज हुआ यार।
9: ला बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।
11: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
12: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: और ओपनिंग एड्रेस के लिए, उस उद्बोधन के लिए जिसके साथ आज पूरे दिन के हर सत्र का एजेंडा तय होने वाला है, उसके लिए मैं आग्रह करूंगी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सुब्रमण्य से कि वो हम सबको संबोधित करें।
1: थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार और जय हिंद। मिसेस पुरी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, यहाँ उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और बच्चों, मुझे आज तक के सुरक्षा सभा में आने पर बहुत गर्व है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के समय में ऐसा मंच और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिफेंस या नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस का ही जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि आज नेशनल सिक्योरिटी में सरकार, उद्योग, टेक्नोलॉजी कम्युनिटी, एकेडमिया और पूरे समाज की भूमिका है। आज हमारे आसपास का सिक्योरिटी वातावरण जो है बहुत तेजी से और रफ्तार से बदल रहा है, खतरे का स्वरूप बदल रहा है, टेक्नोलॉजी की रफ्तार बढ़ती जा रही है और बैटलफील्ड की सीमाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इसलिए अगर खतरा बदल रहा है तो हमारी तैयारी का तरीका भी बदलना चाहिए। आज मैं अपनी बात को 6 मुख्य विचारों के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट का बदलता स्वरूप, दूसरा बैटलफील्ड की बढ़ती ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, तीसरा जॉइंटनेस का लेवल सिर्फ कोऑर्डिनेशन से आगे ले जाकर जेन्यूनली इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस तक जाना, चौथा विकसित भारत के साथ उभरने वाली नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस और नेशनल सिक्योरिटी की बदलती ज्योग्राफी, पांचवा रेजिलियंस और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। इसमें डिफेंस फोर्सेस के साथ एकेडमिया, एमएसएमईस, स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडस्ट्री की साझेदारी, और अंत में कंपटीशन से कॉन्फ्लिक्ट के पूरे स्पेक्ट्रम में भारत की प्रिपेयर्डनेस, यानी सिर्फ युद्ध लड़ने की ही नहीं बल्कि उसको शेप करने की, डिटर करने की और सिचुएशंस को रेस्पॉन्ड और प्रिवेल करने की तैयारी करना। इन 6 बातों पर मैं बात करूंगा। सबसे पहले युद्ध का बदलता स्वरूप। युद्ध अब केवल एक घटना ही नहीं रहा है बल्कि यह एक कंटिन्यूम बनकर रह चुका है। शांति और युद्ध के बीच की रेखा और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो गैप है वो लगातार धुंधला होता जा रहा है। आज कंपटीशन कई स्वरूप में सामने आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर हो, टेक्नोलॉजिकल डिनायल हो, साइबर एक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, मैरिटाइम कोअर्शन, प्रॉक्सी ऑपरेशंस या पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं। और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कुछ चुनिंदा टेक्नोलॉजिकल नेशंस के पास ही नहीं बल्कि सभी को उपलब्ध है, ये जो हम ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में भी देख रहे हैं। असली एडवांटेज उसी को मिलेगा जो टेक्नोलॉजी को सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीके से ऑपरेशनल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगा। यह बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी अपने आप में सिर्फ एक माध्यम है, उस माध्यम को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन सुपीरियॉरिटी से डिसीशन सुपीरियॉरिटी तक दूसरा बड़ा बदलाव है बैटलफील्ड की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, अनमैंड सेंसर्स, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन और नेटवर्क्ड इंटेलिजेंस अब छुपने को या कंसीलमेंट को बहुत ही डिफिकल्ट बना रहे हैं। साथ ही सेंसर टू शूटर साइकिल का जो टाइम है लगातार कंप्रेस होता जा रहा है। पहले ज़माने में देखना और उस पर एक्शन लेना घंटों में काउंट किया जाता था, अब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में सेंसर टू शूटर टाइम मिनट्स में काउंट होता है, मिनट्स कहीं कहीं सेकेंड्स में काउंट होता है। इसीलिए एनवायरनमेंट में उसी को एडवांटेज मिलेगा जो सबसे पहले सेंस करेगा, मतलब सबसे पहले देखेगा, उसके बाद सबसे पहले समझेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड करेगा और साथ साथ उस पर एक्ट करेगा। यह सेंसर टू शूटर साइकिल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे नेटवर्क्स, हमारे डेटा जो हैं ठीक हों, ताकि उस पर हम अल्गोरिथम चलाकर डिसीशन को जल्दी से जल्दी ले सकें। आज इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। जो कमांडर यह पहचान सके कि कौन सा इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है, कौन सा इन्फॉर्मेशन वह नज़रअंदाज कर सकता है और कौन सा डिसीशन और कब उसको वो ज़रूरी डिसीशन लेना है, वही कमांडर सफल होगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी का असली महत्व यह नहीं है कि हम कितना दूर देख सकें, टेक्नोलॉजी का महत्व यह है कि हम जो हम देख रहे हैं उसको कैसे ठीक तरह से समझ सकें और उस समझ पर किस प्रकार से ठीक तरह से डिसीशन ले सकें और डिसीशन लेने के बाद जिन लोगों ने उस डिसीशन पर एक्ट करना है उनको जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट कर सकें ताकि वो इस डिसीशन को ले सकें। यह टेक्नोलॉजी और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी का महत्व को दर्शाता है। तीसरा, जॉइंटनेस, कोऑर्डिनेशन से इंटीग्रेशन तक। भविष्य का बैटलफील्ड जो है लैंड, मैरिटाइम, एयर, स्पेस, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अलग से अलग बांटा नहीं जा सकता। कोई नेवल ऑपरेशंस में आपको स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस की ज़रूरत होगी, उसी प्रकार से एयर ऑपरेशंस में आपको साइबर और इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स की ज़रूरत होगी, उसी प्रकार से लैंड ऑपरेशंस में आपको एयर सपोर्ट की ज़रूरत होगी, अनमैंड सिस्टम्स की ज़रूरत होगी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की ज़रूरत होगी। इसीलिए जॉइंटनेस का मतलब केवल सर्विसेज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जॉइंटनेस का मतलब है हर सर्विस एक साथ मल्टी डोमेन ऑपरेशन में काम कर सके, मतलब एक स्पेस या एक डोमेन का इफेक्ट दूसरे डोमेन में सीमलेसली कोऑर्डिनेट हम कर सके। इसीलिए हमें अपने फोर्स स्ट्रक्चर को देखने का नज़रिया बदलना होगा, हमें प्लेटफॉर्म सेंट्रिक से कैपेबिलिटी सेंट्रिक की तरफ जाना होगा, सिंगुलर सिस्टम से सिस्टम ऑफ सिस्टम्स की तरफ जाना होगा। हमने प्लेटफॉर्म्स नहीं बल्कि इन प्लेटफॉर्म्स को नेटवर्क्स करके उनका इफेक्ट्स पर ध्यान देना होगा। हर प्लेटफॉर्म एक सिस्टम में एक नोड है, उसका स्ट्रेंथ तभी होगा जब वो बाकी नोड से कनेक्ट होकर सारे सिस्टम्स का इफेक्ट एक साथ हम ला सके। यह जॉइंटनेस और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंटरऑपरेबल कैपेबिलिटीज़ के लिए ज़रूरी है इंटरऑपरेबल ह्यूमन रिसोर्सेस।
2: अब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस को टेक्नोलॉजिकली कैपेबल होना होगा, उनको समझना होगा कि दूसरे सर्विसेज में कैसे ऑपरेट करना है, उनको इक्विपमेंट ऑपरेट करना और एक दूसरे के साथ तालमेल से और समन्वय से काम करना होगा, तभी हम पूरा हमारा ऑपरेशनल एफर्ट्स को अच्छे ढंग से ला पाएंगे। इसीलिए जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस बहुत ही अहम है। यह सिर्फ वर्ड नहीं है, ये वाक्य नहीं है, बल्कि एक ऑपरेशनल इंपरेटिव है। अब मैं हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ सबक के बारे में बताना चाहूँगा। हाल ही के कॉन्फ्लिक्ट्स ने कुछ पुराने सत्यों को फिर सही साबित किया है और कुछ नए कमजोरियों को भी और नए लेसन्स को भी सामने लाया है। पहला है, अब कोई सेंचुरी नहीं है, चाहे फिक्स बेसिस हो, फोर्स कॉन्सेंट्रेशंस हो, लॉजिस्टिक नोड्स हो और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं पर भी हो वो टारगेट किए जा सकते हैं। पहला बैटलफील्ड सिर्फ फ्रंट में और डेप्थ में होता था, रेंज 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। आज का बैटलफील्ड फ्रंट, डेप्थ और पूरा रियर, नेशन रियर में होगा। हर एक इंसान को इस लड़ाई में शामिल होना होगा। आप यूक्रेन रशिया में देखिए, रेंज 2000, 3000, 4000 किलोमीटर तक जा रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो अमेज़न या वाइल्ड बेरीज का जो है वेयरहाउस हो, स्टोर हो, पेट्रोलियम डिपो हो, पोर्ट्स हो या एयरबेसिस हो। दूसरा, ड्रोन्स, मिसाइल्स और प्रिसिशन वेपन्स के प्रोलिफरेशन से अटैक और डिफेंस का इक्वेशन बदलता जा रहा है, इसलिए मिलिट्री और क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी ऑपरेशन सुदर्शन चक्र का घोषणा किया है, जो कि ज़रूरी है कि हमारे सारे बोथ मिलिट्री और क्रिटिकल नेशनल एफेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है प्रोटेक्ट कर सके। तीसरा, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी आज बैटल स्पेस का हिस्सा है। कोई भी मिलिट्री उतने समय तक ही लड़ सकती है जब तक कि उसके पास लॉजिस्टिक्स क्षमता हो, इसीलिए नेशनल रेजिलियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा, टेक्नोलॉजी ने मैन पावर को इररिलेवेंट नहीं बनाया है, बल्कि टेक्नोलॉजिकली ट्रेंड और केपेबल मैन पावर और भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करना है, हमारा मतलब है या मकसद है कि टेक्नोलॉजी से मैन पावर को सशक्त बनाना है, ताकि हमारे पूरे आर्म फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ा सके। सवाल मैन वर्सेस मशीन का नहीं है, सवाल है मशीन से इंसान को सशक्त बनाना। फाइनली, मैरिटाइम स्पेस की जिम्मेवारी। आप अभी स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज में देख रहे हैं कि स्ट्रेट्स हो, पोर्ट्स हो, मैरिटाइम स्पेसेस हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक जगह का इफेक्ट दूसरे जगह पर भी काफ़ी ढंग से होगा। इसीलिए भारत को नेशनल सिक्योरिटी और मैरिटाइम सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को एक साथ देखकर चलना होगा। अब मैं विकसित भारत के बदलता हुआ सिक्योरिटी लैंडस्केप के बारे में बात करूंगा। भारत का इकोनॉमी जैसे जैसे और डेवलप होगा और हम विकसित भारत 2047 पर जाएंगे, अपने आप में एक ये नया सिक्योरिटी लैंडस्केप खड़ा करेगा। जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, हमारे डिपेंडेंसीज भी बढ़ेंगे। डिपेंडेंसीज बढ़ेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी नेटवर्क्स पर, पोर्ट्स पर, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स पर, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम्स पर, फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर और स्पेस बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये मैं कुछ ही चीज़ों का उदाहरण दे रहा हूँ, ये बात बताने के लिए कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और नेशनल सिक्योरिटी एक साथ जुड़े हुए हैं। ये जो कुछ मैंने बताया, ये सिर्फ इकोनॉमिक एसेट्स नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं।
1: इसके साथ नेशनल सिक्योरिटी की ज्योग्राफी भी बढ़ती जा रही है। सुरक्षा अब सिर्फ बॉर्डर्स तक सीमित नहीं है, सुरक्षा अब जरूरी है हमारे नेटवर्क्स, सप्लाई चेन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और कॉग्निटिव स्पेस भी हमारे सुरक्षा में शामिल हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर अटैक, फाइनेंशियल नेटवर्क्स पर अटैक या कम्युनिकेशंस में इंटरफेरेंस या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ये सब कन्वेंशनल अटैक के बिना भी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसीलिए विकसित भारत को रेजिलिएंट भारत बनना होगा, विकास और सुरक्षा को साथ साथ बढ़ना होगा। अब मैं रेजिलियंस और टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दोनों एक ही पहलू के दो हिस्सा हैं। हम अक्सर प्रिपेयर्डनेस को केपेबिलिटीज की तरफ से मापते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टेक्स्ट में वही नेशन सर्वाइव करेगा जो कि शॉक को अब्सॉर्ब कर जल्दी रिकवर कर और फंक्शनिंग को कंटिन्यू करता रहेगा। इसीलिए हमें खुद से पूछना होगा, हमारे फोर्सेस डिग्रेडेड नेटवर्क्स के बिना, क्रिटिकल सिस्टम्स डिसरप्शंस के बावजूद क्या फंक्शन कर सकते हैं? क्या हम अपने इक्विपमेंट का कॉन्फ्लिक्ट में भी रिपेयर और रिप्लेनिश कर सकते हैं? क्या हमारे सप्लाई नेटवर्क्स फंक्शन कर सकते हैं? और क्या हमारी इंडस्ट्री ज़रूरत पूरा करने के लिए जल्दी से अपने आप को अपस्केल कर सकती है? रेजिलियंस को क्राइसिस के समय अपस्केल नहीं किया जा सकता, ये हमारे डिज़ाइन में होना चाहिए। इसी तरह डिफेंस में आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा इक्विपमेंट और क्रिटिकल सप्लाई चेन जो हैं खुद बनाएं, और इसका उद्देश्य है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज़ में हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हासिल करें। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्ट्रेटेजिक चॉइसेस में ऑटोनॉमी और टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी में रेजिलियंस। अब मैं कॉग्निटिव डोमेन और होल ऑफ नेशन अप्रोच के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसका कॉग्निटिव डोमेन का आज विशेष महत्व है। एडवर्सरी का उद्देश्य सिर्फ अब हमारी कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, उसका उद्देश्य है कि हमें प्रभावित करे, किस तरह से हम क्या देखते हैं, उससे क्या समझते हैं और किस तरह रेस्पॉन्ड करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर डाउट, कंफ्यूजन और पोलराइजेशन पैदा करके नेशनल सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। हमारा रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी सिर्फ ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने से नहीं, बल्कि जेन्यून इंफॉर्मेशन स्पीड और कंसिस्टेंसी के साथ और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट बनाकर उस इंफॉर्मेशन को देना ज़रूरी है। इसमें डिफेंस फोर्सेस का महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन होल ऑफ नेशन अप्रोच जरूरी है। इसका मतलब आज नेशनल सिक्योरिटी के लिए डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री कैपेबिलिटी, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस, ये सब ज़रूरी हैं। यही होल ऑफ नेशन अप्रोच का सार है। स्ट्रेटजिक स्पेक्ट्रम में प्रिपेयर्डनेस। अब मैं इन सभी बातों, जो छह पहलुओं मैंने बताए, इन सभी बातों को एक साथ जोड़ना चाहूँगा। भारत का स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट सीधे पीस या कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक कंटिन्यूम में है जिसको कि आज 5 C से कहा जाता है। इसका मतलब कॉपरेशन, कोएग्जिस्टेंस, कॉम्पिटिशन, कोअर्शन, क्राइसिस और कॉन्फ्लिक्ट। हमारी तैयारी को इस पूरे स्पेक्ट्रम के लिए होना चाहिए। पहले हमने एनवायरनमेंट को शेप करना है और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, कंपटीशन बढ़ने पर कोअर्शन रेजिस्ट करने की हमारी क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, क्राइसिस के दौरान हम एस्केलेशन कंट्रोल बनाए रखना होगा और
3: लीडरशिप को मल्टीपल रेस्पॉन्सेस या मल्टीपल ऑप्शंस देना होगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल हो तो हमें इस प्रकार से काम करना होगा कि जीत हमारी हो। इसलिए उद्देश्य केवल युद्ध लड़ने का नहीं है, बल्कि हर तरीके से उसके लिए तैयार रहने का है। उद्देश्य है परिस्थितियों को शेप करना, डिटरेंस बनाए रखना, जरूरत पड़ने पर जवाब देना और विजयी होना। अगर मैं पूरी बात का सार दूं, तो मैं आपके सामने 6 बदलाव रखना चाहता हूं, जो मेरे विचार में भारत की भविष्य की तैयारी को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले, युद्ध को एक इवेंट के रूप में ना देखें, बल्कि पूरे स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूम के रूप में देखकर तैयार रहें। दूसरा, इंफॉर्मेशन सुपीरियरिटी से डिसीशन सुपीरियरिटी की तरफ हमें बढ़ना होगा। इसके लिए AI, हमारे नेटवर्क्स, हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हर चीज़ हमें तैयार करना होगा। तीसरा, प्लेटफॉर्म सेंट्रिक से कैपेबिलिटी सेंट्रिक होना। इसका मतलब सिस्टम ऑफ सिस्टम अप्रोच होना चाहिए, ना कि आइसोलेटेड अप्रोच। चौथा, सिंगल सर्विस डोमिनेटेड ऑपरेशन से हमें जॉइंट ऑपरेशंस में बदलना होगा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पांचवा, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट से नेशनल रेजिलियंस की ओर बढ़ना होगा। हम सबको इस तैयारी में कंट्रीब्यूट करना होगा, जिसमें मिलिट्री, एकेडमिया, स्टार्टअप्स और प्राइवेट इंडस्ट्री सभी साझेदार होंगे। और छठा, केवल वॉर्स लड़ने की तैयारी करने के बजाय हमें आगे बढ़कर स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट को शेप करना, एग्रेशन को डिटर करना, एस्केलेशन को कंट्रोल करना और फेवरेबल आउटकम्स को सिक्योर करना जरूरी है। भविष्य के बैटलफील्ड में निश्चित रूप से और अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, केवल टेक्नोलॉजी ही परिणाम को साबित नहीं करेगा। असली डिसाइसिव एडवांटेज इस बात से आएगा कि जो नेशन टेक्नोलॉजी को कितनी तेजी से कैपेबिलिटी में बदलता है, कैपेबिलिटी को ऑपरेशनल एडवांटेज में और ऑपरेशनल एडवांटेज को स्ट्रेटजिक इफेक्ट में बदल सकता है। भारत के पास स्केल है, टैलेंट है, टेक्नोलॉजी बेस है, इकोनॉमिक एम्बिशन है और स्ट्रेटजिक वेट है। हमें इन सभी स्ट्रेंथों को राष्ट्रीय रेजिलियंस, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी और इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ के साथ एक कोहरेंट नेशनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और कोहरेंट नेशनल सिक्योरिटी तैयारी में बदलना होगा, तभी हमारी जीत निश्चित है। जय हिंद।

मैं कलीपुरी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो प्लीज जनरल सुब्रमण्य और एयर मार्शल दीक्षित को एक छोटा सा टोकन ऑफ थैंक्स दें।

0: के कारण मुझे जाना हो रहा है, बट मैं इस पूरे सेशन को बाद में रिकॉर्डेड देखूंगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाला सेशन भी काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। थैंक यू,
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कमिंग। आइए अब रुक करते हैं खबरों का, बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए हादसे को लेकर 6 मौत के बाद एक्शन तेज हुआ है और हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि बड़ी खबर ये आ रही है कि इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, कुल 11 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। रविवार की दोपहर हुई इस घटना को लेकर कई अहम सवाल उठाए जा रहे हैं। तमाम सवालों के बीच प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। आरोपी बिल्डिंग मालिक की तलाश तेज है और आरोपी मालिक हरिराम बंसल और अन्य पर FIR दर्ज की जा चुकी है और अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें बनाई हैं।

0: तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थोड़ी देर पहले आज भी इस हादसे वाली जगह पर पहुंची थी। वहां अधिकारियों से राहत और बचाव कार्यों की उन्होंने जानकारी ली। फिर उन्होंने कहा कि हम सभी अभिभावकों के साथ संपर्क में हैं और जिस स्तर पर लापरवाही हुई है उनमें से किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये उनका दावा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने भी अधिकारी जिम्मेदार होंगे उन सब पर कार्रवाई हो गई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जमींदोज इमारत के आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स जिनकी हालत खराब है उन्हें भी डेमोलिश किया जाएगा।
1: क्या जानकारी मिल रही है?
2: लगभग 80% मलबा जो है वो हट चुका है। केवल बेसमेंट जितना मलबा रहा है। ये निश्चित है कि बेसमेंट में पानी था और पानी भरने के कारण जो रिपेयर हो रही थी उसके कारण से पुरानी बिल्डिंग थी और वो ढह गई। अभी इसमें 12 लोग जो मिले हैं जिसमें से 6 डेड हैं और 6 जो हैं अभी ठीक स्थिति में हैं। उन सभी के पेरेंट्स जो हैं हमारे टच में हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बच्चों को ठीक इलाज मिल रहा है। ये हमारे आदरणीय हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी के भी उनका पूरा पर्सनल केयर टेकिंग में है। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी पूरी तरीके से सिचुएशन की निगरानी कर रहे हैं। पीएम साहब का भी दिशा निर्देश हमें मिल रहा है और जो भी बच्चे यहाँ आसपास की बिल्डिंग्स भी जो डेंजरस स्थिति में पाई जा रही हैं उनसे उन्हें भी विकेट कराया गया है। और ये खास करके ये बिल्डिंग जो खड़ी है ये पूरी तरीके से डेंजरस प्रतीत होती है। यहाँ से मलबा हटने के बाद में निश्चित रूप से इसको भी गिराया जाएगा। कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है। नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो पब्लिक यूटिलिटी की कोई भी सर्विसेज वहां शुरू करे। चाहे वो पीजी हो नर्सिंग होम हो स्कूल हो कोई भी एक्टिविटी हो वो पब्लिक डोमेन की कोई एक्टिविटी उस बिल्डिंग में बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते। इस पे सख्त नियम लाया जाएगा और जितने भी अधिकारी इस क्षेत्र के जिनकी अनदेखी के कारण ये सारी दुर्घटना हुई है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उनको भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा।
0: तो जब दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसा हुआ तो उस वक्त क्या हाल था वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये सबसे नई तस्वीरें हैं। घटना के तुरंत बाद बगल की इमारत में मौजूद एक महिला चीख चिल्ला रही है कि कैसे छात्र मलबे में दब गए हैं।
3: कितने सारे बच्चे हमारे सामने ही होंगे। पूरी धारा ऐसा हम कहाँ रह रहे हैं वैष्णो। यार चलो उनको
0: तो दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे को लेकर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगी। साथ ही डीडीए एमसीडी दिल्ली पुलिस ये सभी एजेंसियों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक एलजी की ये बैठक आज दोपहर बाद होने वाली है। बैठक में एलजी कई अहम फैसले ले सकते हैं। और सत्य निकेतन में जो इमारत ढही है उसका मालिक हरिराम बंसल बताया जा रहा है वो फरार है। दिल्ली पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। कई जगहों पर रेड पड़ी है। गुरुग्राम समेत कई जगहों पर दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपी मालिक की तलाश में जुटी हुई हैं। ताजा जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक फिलहाल हरिराम अपने घर से भी फरार है। उसका घर गुरुग्राम में है। पुलिस को आशंका है कि हरिराम बंसल किसी सुरक्षित लोकेशन पर जाके छिप गया है। सूत्रों की माने तो हरिराम के करीबियों पर पुलिस ने दबिश दी है ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। तो दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। आइए आपको बताते हैं कि दरअसल उस पूरी FIR में है क्या जो दिल्ली पुलिस दर्ज कर रही है। तो BNS की धारा 105 यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला, 290 इमारतों के निर्माण या मरम्मत में लापरवाही जो साफ नजर आ रही थी, वहीं पे 105 और 290 धारा भी लगाई गई है। ये आपको जैसे कि बताया गैर इरादतन हत्या और साथ में लापरवाही का मामला बताया जा रहा है, इसके साथ दूसरे के जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने की धारा को भी इस मामले में लगाया गया है। तो कोशिश यही है कि जो भी गुनहगार हैं उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा ना जाए, हर तरह की धारा लगाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बार बार होता क्यों है। पहले जान लेते कि पुलिस इस FIR और अपनी कार्रवाई के बारे में क्या कह रही है, सुनते हैं।
4: रिलेवेंट सेक्शंस में भारतीय न्याय संहिता के, और जो ओनर है इस बिल्डिंग का उनको पकड़ने के लिए हमारी जो टीम है उनको अरेस्ट करने के लिए वो भी भेज दी गई है, और जैसे भी होगा उसके आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाएगी। अभी तक ऐसा केवल रूमर्स हैं कि किसी ने बोला कि बिल्डिंग बंद थी, नहीं थी, तो उसके लिए अभी अनवेरीफाइड फैक्ट्स को शेयर करना ठीक नहीं रहेगा। तो एक बार प्रॉपर उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी इंक्वायरी जांच के अकॉर्डिंग जो भी कुछ होगा वो बता दिया जाएगा। हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन NDRF मेजरली हेड कर रही है, अभी भी उसमें चल रहा है, और नेक्स्ट जब तक भी चलता है उसमें वो क्लियरेंस जब तक नहीं दे देते हैं तो तब तक वो अपनी तरफ से कंटिन्यू करेंगे।
0: और आइए अब सीधा रुख करते हैं हादसे की जगह का, जहां पर हमारे सहयोगी अंशुल सिंह मौजूद है। अंशुल, धाराएं लगती रहेंगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करती रहेगी, सबसे बड़ा सवाल जो यह है कि उस बिल्डिंग के अंदर उस वक्त कितने बच्चे, कितने लोग थे, कितनों को रेस्क्यू किया गया है, कितने मौत के आंकड़े अब सामने आ रहे हैं, और क्या NDRF का ऑपरेशन अभी भी जारी है या अब उसे बंद किया गया है?
5: जी बिल्कुल, ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। ऊपर की सतह से जितना मलबा था उसे हटा दिया गया है, अब बेसमेंट का जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बेसमेंट में कुल 2 से 3 लोग और फंसे हो सकते हैं, लेकिन जैसा आपने बोला FIR होगी, धाराएं लगती रहेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी इलीगल तरीके से ये बिल्डिंग चल कैसे रही है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये बिल्कुल घटना स्थल से 50 मीटर दूर हूं मैं, और मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि यहां पे किस तरीके से एक के बाद एक धड़ल्ले से इलीगल बिल्डिंग्स का जो व्यापार है वो किया जा रहा है। आप ये देखिए, फर्स्ट स्टेप नर्सरी प्लेस स्कूल इस बिल्डिंग में खोला हुआ है, प्ले स्कूल खोला हुआ है, जहां एंट्री एग्जिट की कोई सुविधा नहीं है। ऊपर के मंजिलों में PG है, नीचे के मंजिलों में प्ले स्कूल है, और ये जो पूरी बिल्डिंग है ये एकदम धड़ल्ले से अपना यहां धंधा कर रही है, बिजनेस कर रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। जो मैक्सिमम हाइट हो सकती थी इस बिल्डिंग की वो 15 मीटर हो सकती थी, लेकिन आप देखिए ये 4 से 5 मंजिला बड़ी बिल्डिंग है, कम से कम 20 से 25 मीटर जो है इसकी हाइट है। लेकिन कोई भी यहां पे पुलिस प्रशासन किसी की भी नजर इस पर नहीं गई है, और किसी भी तरीके का एक्शन जो है नहीं लिया गया है। अब दोबारा इंतजार किया जा रहा है कि फिर से अनहोनी होगी तो फिर हम वही सारी बातें सुनेंगे, चीफ मिनिस्टर आके बताएंगे कि किस तरीके से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी। जो सेम हमने पिछली बार जो अग्निकांड हुआ था वहां सुना, वही हमने आज रेखा गुप्ता को दोबारा यहां पे सुना, तो वो बाइटें सेम ही रहती हैं, लेकिन जो काम है ग्राउंड पे वो काम होता हुआ कहीं दिखाई नहीं
0: देता। जी अंशुल, आप हमारे साथ बने रहें, आपके पास लगातार आते रहेंगे ताजा अपडेट्स के लिए। फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: एक श्राप,

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: ला भाई मेरा बैट।
6: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और वही कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: खाना कहाँ से मंगवाया?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जीके वॉल मैक्स।
4: बेस्ट प्राइमर
7: जीके मैक्स।
4: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
4: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
5: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
4: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।
12: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी है।

0: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: In association with
4: Anmol Biscuits, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: What is the difference between normal cold, allergy and sinus?
9: जो इनहेलर्स लोग यूज करते हैं that unfortunately becomes a crutch in times of crisis. मैं कोई इनहेलर ले लूँ मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा. Whereas there is no relationship between the two. Horns and जो traffic noise है, India is a very very loud country. वहाँ से भी कहीं ना कहीं hearing loss होता है. हमने हिंदी में earwax को मैल कह दिया. वो मैल नहीं है, वो कान को bacteria, virus ऐसी चीज़ों से बचा के रखता है. कान में तेल नहीं डालना. इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आप ये नहीं कर सकते।
8: सर, हियरिंग लॉस के अर्ली साइंस क्या होते हैं?
9: द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन ऑफ अर्ली हियरिंग लॉस विल बी आस्किंग पीपल टू रिपीट, क्या कहा आपने, क्या कहा।
3: भारत की रक्षा नीति से लेकर भविष्य की युद्ध रणनीति तक देश की सुरक्षा पर सीधी बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के सबसे बड़े रणनीतिकारों और सुरक्षा विशेषज्ञों का महामंच आज तक सुरक्षा सभा, सिर्फ आज तक पर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने से अब तक 6 लोगों की मौत, 5 घायलों का एम्स में इलाज, अब भी चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। फरार पीजी मालिक के लिए छापेमारी तेज, नहीं बचेगा सत्य निकेतन का एक भी गुनहगार। हादसे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक्शन, न्यायिक जांच के दिए आदेश, कहा दोषी अफसर भी नपेंगे, गिराई जाएगी पास वाली इमारत। कैबिनेट में बदलाव की खबरों के बीच आज कई मंत्रालयों की मीटिंग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी, शिक्षा और सामाजिक न्याय समेत कई विभागों के कामकाज की समीक्षा, जवाबदेही तय करने पर भी नजर। गंगा के रौद्र रूप से सहमा बिहार, पटना में अब तक के सबसे खतरनाक स्तर तक पहुंचा वाटर लेवल, 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित, गंडक कोसी और घाघरा में भी बड़ा पानी।

आज तक पर जल थल नब के धुरंधर CDS NS सुब्रमणी के संबोधन से हुई सुरक्षा सभा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 7 बजे करेंगे नए और आत्मनिर्भर भारत की बात।

0: और रविवार को हुए हादसे की एक सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। ठीक बगल की इमारत पर लगे एक कैमरे में यह हादसा कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक दोपहर 1:16 पर यह हादसा हुआ है। बिल्डिंग के गिरते ही वहां पर जाहिर तौर पर अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, ये वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा था उसकी है। उसमें कैद हुआ कि किस तरीके से वहां का जो पूरा इलाका था वहां धूल का गुबार, मिट्टी का गुबार हो गया। जब इमारत जमींदोज हुई तो उस वक्त 1:16 हुए थे। जो आसपास के लोग थे वहां किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागे, क्योंकि इमारत भरभरा के गिर पड़ी थी। मलबा, धूल, गुक्का गुबार सब हर तरफ फैल गया था। और ये जो तस्वीर है वो एक सीसीटीवी पे कैद हुई है जो पास की इमारत पर ही लगा हुआ था। तो उस वक्त जो हुआ वहां आसपास कैसा नजारा मंजर देखने को मिला, ये आप इस सीसीटीवी कैमरे के जरिए देख सकते हैं। तो जब दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसा हुआ तो उस वक्त क्या हाल था, वो तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं। घटना के तुरंत बाद बगल की इमारत में मौजूद एक महिला ने ये तस्वीर रिकॉर्ड की है और आप उन्हें चीखते हुए चिल्लाते हुए सुन सकते हैं कि कैसे छात्र मलबे में दब गए हैं।
1: कितने सारे बच्चे हमारे सामने होंगे, पूरी धारा सर, हम कहाँ रह रहे हैं वैष्णो। यार चलो उनको बचाओ। कितने सारे बच्चे।
0: तो अब सरकार और प्रशासन की तरफ से बयान आ रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, एक दावा कर रहे हैं दिल्ली के मेयर। उनका कहना है कि जो बिल्डिंग्स में पीजी खोले जाते हैं उन्हें पहले एक सर्टिफिकेट लेना होगा, अगर सर्टिफिकेट होगा तो ही वो पीजी खोल सकते हैं। ये बड़ा बयान दिल्ली के मेयर का आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जो खतरे वाली बिल्डिंग्स हैं उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो अब प्रशासन और सरकार की तरफ से सख्ती नजर आ रही है। सर्टिफिकेट की बात कही जा रही है कि सर्टिफिकेट पहले लेना होगा और उसके बगैर पीजी दे अगर दिया किराए पर तो कार्रवाई हो सकती है पीजी मालिक पर।
2: दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जब सर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ की बिल्डिंगों को आपको एक बार दिखा देते हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ इजाजत है 3-4 की 5-5 इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें ये सामने जो बिल्डिंग है इसको अभी जो है यहाँ पर पीजी भी चलाया जा रहा है, इसको ढक दिया गया है कल रात से। इसमें आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस तरीके का नियमों का उल्लंघन हो रहा है। प्रवेश वाही जी, आप आज तक के दर्शकों को किस तरीके से बताएंगे कि ये सिचुएशन ना पैदा हो जो कि यहाँ पर बच्चे फंसे हैं और उनको उनकी जान गई है, क्या स्टेटस है और किस तरीके से अभी ऑपरेशन चल रहा है?
3: देखिए, ये कॉलोनी लगभग 40-50 वर्ष पुरानी है और पहले से ये मकान बने हुए हैं और 2007 से पहले जो मकान है उस पर उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई ना करने के आदेश थे। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें कुछ लोगों ने किराए पे मकान दिए हुए हैं। किराए पे मकान देना कोई अपराध नहीं है, ये पहले से एक प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों को किराए पे देने से पहले सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने और हमने आदेश दिए हैं कि जो भी बिल्डिंग कोई व्यक्ति किराए पे देगा रेजिडेंशियल के रूप में भी, वो अपना स्ट्रक्चरल जो है अप्रूवल वो अधिकारियों से लेगा, दिल्ली नगर निगम के जो इंजीनियर्स हैं उनसे लेगा, तभी वो किराए पे दे सकता है, क्योंकि उसको किसी भी जान माल से खेलने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है।
0: जाहिर तौर से जब से हादसा हुआ है तो इसको लेकर कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा का सवाल हो या फिर सरकारी तंत्र पर सवाल हो, कई ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और हम आपको वो दिखाते हैं। पहला सवाल ये कि बिल्डिंग के अवैध निर्माण पर अधिकारी कहाँ थे? ये सब जब काम चल रहा था क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा? क्या ऑडिट नहीं होते किसी तरीके के? अवैध निर्माण को समय रहते आखिर क्यों नहीं रोक दिया गया? जब जानकारी मिल जाती है तो फिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती है? क्यों एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनकी उस पर नजर नहीं पड़ी या फिर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। बिल्डिंग में छात्र थे तो बेसमेंट में निर्माण कार्य आखिर कैसे हो रहा था? जब रेजिडेंट्स हैं तो फिर काम क्यों हो रहा था? 6 लोगों की मौत का असल कसूरवार अब आप किसको बताएंगे? क्या सिर्फ वो बिल्डिंग मालिक है या कोई और भी है जो इसमें माना जाएगा कि इसमें लिप्त है? अधिकारी, आखिर एमसीडी के लोग, ये सारे सवाल बनते हैं। तो आइए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का। इस वक्त हमारे साथ अंशुल मौके से जुड़ चुके हैं और साथ में जितेंद्र भी हैं। दोनों का रुख करते हैं, शुरू करते हैं जितेंद्र आपके साथ, क्योंकि आपने मेयर से भी बात की। अब वो दावा कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट लाएंगे तो ही आप पीजी का काम कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछले दो हादसे अगर हम देख लें, चाहे वो दिल्ली में आग का हादसा हो मालवीय नगर का या विवेक विहार की आग का मसला हो, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की रिपोर्टें आ जाती हैं, एक्शन में कॉन्ट्रैक्चुअल जो होते हैं अधिकारी एमसीडी के उनको निलंबित किया जाता है। तो काम तो अधिकारियों के सवाल पर भी उठना चाहिए, सवाल तो अधिकारियों के काम पर भी उठना चाहिए।
2: बिल्कुल, जिस तरीके से जो मेयर हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के गंभीरता से लिया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि गंभीरता अगर पहले से होती तो शायद इतना बड़ा हादसा इस पूरे इलाके में नहीं हुआ होता। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे जो पीजी में बच्चे रहते हैं अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि इनकी क्या तकलीफ है, क्योंकि अभी भी इनके कुछ दोस्त हैं जो कि इनको पता नहीं चल रहा कि कहाँ पर हैं वो और किस तरीके से। आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं और किसको यहाँ पर ढूंढ रही है, किस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं?
4: मैं तो वैसे पंजाब से हूँ, लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स के जो फ्रेंड्स थे वो उनमें से एक की डेथ हो चुकी है और एक अभी एम्स में है, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में।
2: यहाँ पीजी में आप लोग रहती हैं, किस तरीके की सिचुएशन इस पूरे इलाके के पीजी की है, कैसे आपने देखा इस यहाँ की घटना को?
4: अब आप देखो कि कल जैसे वो सिचुएशन हुई तो सबसे पहले ओनर का कंसर्न वाज नॉट बच्चे, उसका कंसर्न वाज कि पीजी का नाम ना दिखे, तो सबसे पहले उन्होंने वो उतरवाए। एंड अभी आप जाओगे तो आप देखोगे सभी पीजीज ने अपने वो जो बैनर्स हैं पीछे की पीजीज ने वो अपने बैनर्स उतरवा दिए हैं ताकि पीजी का नाम ना हाईलाइट हो। और इनका कंसर्न इज नॉट स्टूडेंट्स, इनका कंसर्न इज जस्ट कि जो हमारा काम चलता है स्टूडेंट्स को के साथ स्कैम होता है वो होता रहे एवरी ईयर।
2: आप किस राज्य से आए हैं और यहाँ पर किस क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, क्या तैयारी कर?
5: मैं राजस्थान से हूँ, मैं अभी मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, जोडियू का ये कॉलेज है। मैं पिछली बार ये जो पीछे शिव मंदिर के साइड पीजी है वहीं रहता था। ये लोग एक तरीके से एक माफिया की तरह कार्य करते हैं। ये लोग एक तो इनकी मोनोपोली यहाँ पे चलती है, इनके बड़े बड़े कनेक्शंस है, तो जो कोई भी दिक्कत होती है तो उनको आत भी नहीं आती। ये लोग स्टूडेंट्स को कुछ समझते ही नहीं है यहाँ पे। इनका ये है कि बस अपना फायदा देख लो, जो भी है कर लो और निकल लो। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान रहता है। एक तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा उनको पे करना पड़ता है, ऊपर से उनकी सुविधाएं आप देख रहे हो। ये जो पीजी था, अभी जो ये गिरा है पीजी, इस पे ये लोग पेंट करके रखते थे। इन्होंने जब जैसे पीजी पुराना था उनको पता है तो ये लोग पेंट कर देते थे, जिससे जितने भी पेरेंट्स आते हैं वो अट्रैक्टिव हो कि हाँ अच्छा पीजी है। और फिर वो लोग वही चीज है कि अब पेरेंट्स बाहर से आए हैं, उनको तो बस रहने के लिए चाहिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, सेकंड ईयर में यहाँ कोई नहीं रहता।
2: किसी स्टेट से आए हैं और आप किस सिचुएशन में यहाँ पर किस पीजी में रह रहे हैं? कहाँ?
6: मैं यूपी के सुल्तानपुर से जिले से आया हूँ और मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज का छात्र हूँ। मैं बेसिकली बगल दिल्ली कैंट में रहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे छात्रों की मदद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल सर से बात की थी तो हमारे कॉलेज के गेट ओपन किए गए, उनमें जो भी बच्चे यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं बेसिकली उनको शिफ्ट कराने के लिए। अभी जैसे मैं आया, दो बच्चों को हमने अपने कॉलेज में पहुंचा दिया है और बाकी जो भी बच्चे हैं जो यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हैं, जिनको डर लग रहा है, जो अकेला महसूस करें, हम उनको कॉलेज में भेजें। और कॉलेज कोई मैटर नहीं करता, कोई सा भी कॉलेज वो रुकना चाहते हैं तो मोतीलाल।
0: लगातार हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा रुख करते हैं सत्य निकेतन हादसे के बाद। एमसीडी के अफसर अब जाग गए हैं। सत्य निकेतन के हाउस नंबर 13 को नोटिस जारी किया गया है। मकान को 3 दिन के अंदर तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। एमसीडी ने सत्य निकेतन के हाउस नंबर 13 को जर्जर घोषित किया है। तो अब एक्शन में आ रही है एमसीडी, जब मौतें हो गई हैं, जब जान चली गई है। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अंशुल का। अंशुल, अब एमसीडी एक्शन मोड में नजर आ रही है, आपने कमिश्नर से भी बात की थी, तो अब क्या इनके इस एक्शन का कोई फायदा होगा?
7: जी एक्शन का फायदा होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैं आपको ऐसी दिखाना चाहूंगा जिससे ये पता लग जाएगा आपको कि बिल्कुल भी एमसीडी की जो नींद है उससे वो उठ नहीं पाए हैं अभी भी। आप देखिए मेरे पीछे जो ये पूरी गली है ये बिल्कुल हादसे की लोकेशन से करीब 100 मीटर दूर है, और इस पूरी गली में आप जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हैं हर बिल्डिंग में जो है ये पीजी चलाए जा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं। आप ये देखिए ये इस बिल्डिंग की हालत देखिए किस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन किया गया है, ऊपर की दीवारों पे बाहर से पेंट तक नहीं किया गया है, एंट्री एग्जिट का कोई रास्ता नहीं है, छोटी सी एंट्री

0: है, इसी तरीके से चल रहा है। जैसा अभी छात्र यहाँ बता रहे थे कि मीडिया मीडिया के वजह से इन्होंने अपने जो पीजी के बोर्ड थे वो सारे हटा दिए हैं, लेकिन आप देखें ये दोबारा एक 5 मंजिला पीजी जो है यहाँ बना रखी है। यहाँ मैक्सिमम जो हाइट हो सकती है वो 15 मीटर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बिल्डिंग आपको 15 मीटर के आसपास भी नहीं दिखेगी, उससे कहीं ज्यादा ऊपर या तो 20 मीटर या तो 25 मीटर तक की जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। अब एमसीडी के जो मेयर हैं, दिल्ली के जो मेयर हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये काम पहले क्यों नहीं कराया गया? और आप देखें इन सारी सारी बिल्डिंग्स की हालत देखें, अगर यहाँ किसी भी तरह की अनहोनी हो गई तो किसी भी छात्र के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ से बच के निकल पाने का। तारों का जंजाल है, इलेक्ट्रिक वायर्स,
1: एक तरीके से पूरा जो इलाका है वो मौत का कुआं बना हुआ है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त सीधा रुक करें एम्स का, जहां हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा मौजूद है। शिवानी, क्या पता चल पा रहा है उन छात्रों के बारे में जो वहां पर एडमिटेड है?
2: देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं एम्स के ट्रॉमा सेंटर पर मौजूद हूं और यहां पर 10 ऐसे जो विक्टिम्स थे जिनको लाया गया था, और उनमें से जो 4 थे वो ब्रॉड डेड थे। ये एम्स की तरफ से एक सूचना आई जिसमें ये पता चला। तो बाकी के जो छात्र हैं वो उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है, भीतर यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर के अंदर उनका इलाज चल रहा है। और उन कई लोग ऐसे हैं जिनके परिजन यहाँ पर आ रहे हैं, अपने जो छात्र हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं उनको ढूंढते हुए भी, और कई दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हाल चाल लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ट्रॉमा सेंटर के भीतर इलाज चल रहा है। कैसी सिचुएशन है इन सभी छात्रों की, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में एम्स की तरफ से हो सकता है कोई सूचना दी जाए। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिली थी कल देर शाम कि 10 जो स्टूडेंट्स थे जिनको रेस्क्यू किया गया था, इस मलबे के बाहर निकाल कर उनको लाया गया था, उसमें से जो 4 थे वो ब्रॉट डेड थे, और एक और व्यक्ति उसकी भी बाद में मृत्यु हो गई थी, उनकी हालत गंभीर थी। लेकिन फिलहाल ट्रॉमा सेंटर पर ये भी सूचना मिल रही है कि दिल्ली सरकार के भी कुछ अधिकारी पहुंच रहे हैं कुशल क्षेम लेने के लिए, और किस तरह से इलाज चल रहा है उसका सुपरविजन के लिए। अंजलि, तो लगातार एम्स के ट्रॉमा सेंटर पर
1: जी बिल्कुल हमारी नजर बनी रहेगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शिवानी। इस घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दूसरी ओर आसपास के इलाके के तमाम छात्र छात्राएं परेशान हैं। कई लोग अपने दोस्तों को ढूंढने वहां पहुंचे। वैसे छात्रों से बात की है हमारे आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह ने।
3: एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और यहाँ पे लगातार जो आसपास छात्र छात्राएं रहती हैं वो इस पूरे वाक्य से, इस पूरी घटना से बेहद स्तब्ध हैं। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं, पूरे साउथ कैंपस में किस तरह के हालात हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आई विटनेस भी हैं, जब बिल्डिंग गिरी उस वक्त ये मौजूद थे वहाँ पे, क्या उन्होंने देखा आप बताइए सबसे पहले कि कितना भयावह मंजर था।
4: मैम, जब मैं कपड़े देके आया था धुलने के लिए, मैं यहाँ पे ब्लैक गेट है वहाँ तक पहुँचा था, मेरे पीछे एक खूब बोले थी भाग रही थी। मैं जब पीछे देखा तो धूल का मतलब डस्ट का ना एकदम बहुत बड़ा था, तो कोई बाउंड्री टाइप स्टॉम आ गया हो, बिल्कुल धूल ही धूल था। 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ, बिल्डिंग के पीछे तक गए, बिल्डिंग के पीछे तक गए, तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो द्वारा देखते हम लोग आगे बढ़े कि ना बढ़े, फिर थोड़ा सा सिस्टम हुई तब आगे बढ़े और अच्छे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तब जाके हम लोग खुद मिलके इंडिया की टीम आई नहीं थी और जो एनसीडी लोग थे वो आए नहीं थे।
3: कितनी देर में आए ये लोग?
4: ये इंडिया की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, और जो जेसीबी है, जेसीबी तो ढाई घंटे 3 घंटे की काम रही है, उसमें से पहले एक जेसीबी आई है, फिर उसके बाद दो, तब 2 घंटे 3 घंटे के बाद 3 घंटे की काम जो दो जेसीबी आई है, और एक जो बड़ी वाली मशीन होती है बोलते हैं
3: राम। देखिए, राम उस वक्त वहीं पे थे जब लगभग 1:40 के आसपास ये घटना घटी, और उनका कहना है कि आधे घंटे बाद एनडीआरएफ 11 लोग आते हैं या और उनके पास ज्यादा मशीन्स होती नहीं है, और जेसीबी तो बहुत देर की बात है, और ये देश की राजधानी दिल्ली का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे छात्र हैं जो सुबह सुबह आए हुए हैं यहाँ मौके पर, और कोई अरविंदो कॉलेज में पढ़ा है, कोई किसी और कॉलेज में पढ़ा है, कई लोग यहीं पे।
1: और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आइए सीधा उसी का रुख करते हैं। इस बिल्डिंग हादसे में बड़ी खबर, आरोपी बिल्डिंग मालिक

0: श्रीराम बंसल जो आपको पहले भी बताया कि फरार है, उसके खिलाफ अब लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल अब लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद उम्मीद ये की जाती है कि एजेंसियां सतर्क हो जाएंगी। हमारे सहयोगी जितेंद्र सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, बताइए लुकआउट नोटिस से क्या फायदा होगा इस फरार व्यक्ति को पकड़ने में?
1: और देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा इस आरोपी के खिलाफ जो है वो लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसका फायदा ये होगा कि किसी भी एयरपोर्ट के जरिए वो यहां देश से फरार नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके की कड़ी कार्रवाई जो है इस वक्त दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया है, क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग यहां पर बनी हुई है, जब हमने यहां के छात्रों से बातचीत किया जो कि बगल के पीजी में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को पूरी तरीके से रंग रोगन करके उसको बनाया गया था, लेकिन 40 से 50 साल पुरानी जो बिल्डिंग थी, इस बिल्डिंग पर किसी भी तरीके से बेहतर तरीके से इसमें काम नहीं हुआ था। अब बेसमेंट में जिस तरीके का काम चल रहा था, वैसे में एक बहुत बड़ा खतरा था, और इस खतरे को लेकर के यहां के ना तो किसी अधिकारी ने, एमसीडी का ना तो अधिकारी, ना ही दिल्ली पुलिस, किसी ने इसको लेकर के एक्शन नहीं किया। और पिछले एक सप्ताह से इस तरीके का उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा था और ऊपर छात्र रह रहे थे, तो इस तरीके का जो हादसा हुआ है उसके बाद बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, जिससे कि वो देश से फरार न हो सके और उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे इलाके की अगर भौगोलिक सिचुएशन की बात करें तो यहां पर 2 से 3 मंजिला इमारत यानी 15 मीटर तक सिर्फ बिल्डिंग बनाने की इजाजत है, लेकिन इस पूरे इलाके में उससे कहीं ज्यादा ऊंची ऊंची जो है बिल्डिंगें बना दी गई हैं, जिसमें पीजी के तौर पर उसको खोला गया है, उसमें स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि साउथ कैंपस में पढ़ते हैं। तस्वीरें एक बार आपको यहां की दिखा देते हैं, इन तंग गलियों में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है। आप एक बार देखिए कि यहां पर मोटे मोटे वायर्स जो हैं वो पूरी तरीके से यहां पर वायर का मकड़ जाल यहां पर लगा हुआ है, और बिल्डिंगों की अगर सिचुएशन देखें तो ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है जो कि गर्ल्स पीजी के तौर पर इनको यहां पर स्थापित किया गया है, और इसमें एक ही एग्जिट और एक ही एंट्री का रास्ता है। इस तरीके की यहां पर स्थिति आपको दिखाई पड़ रही है। यहां अगर आपको दिखाना भी चाहेंगे, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है, इसी तरीके का घर है। एंट्री और एग्जिट की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यही एक रास्ता यहां पर दिखाई पड़ता है, जाने का, ऊपर का और नीचे आने का। ऐसे तंग रास्तों में अगर किसी भी तरीके से वहां पर फायर की सिचुएशन बनती है कोई, या फिर किसी भी तरीके का खतरा होता है, कोई हादसा होता है, तो कोई भी छात्र जो पीजी में रह रहा है वो बाहर नहीं निकल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन इस पूरे इलाके में बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में छानबीन किया जाएगा, और दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से घटनास्थल का उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस इलाके के तमाम,
0: बिल्कुल आश्वासन तो मिल जाते हैं लेकिन एक्शन कितना होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
5: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: खाना कहाँ से मंगवाया?
8: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
10: जेके वॉल मैक्स।
8: बेस्ट प्राइमर
11: जेके मैक्स।
8: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स।
8: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
9: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
8: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
4: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
5: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
4: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे पर एलजी ने बुलाई बैठक। सीएम रेखा गुप्ता समेत डीडीए, एमसीडी और पुलिस अफसर रहेंगे मौजूद। अब तक 6 की मौत, 5 घायल। पीजी मालिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी।
1: नहीं बचेगा सत्य निकेतन का एक भी गुनहगार। हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान। न्यायिक जांच के दिए आदेश, कहा दोषी अधिकारी भी नपेंगे। गिराई जाएगी पास वाली इमारत।
0: आज कई मंत्रालयों की मीटिंग लेंगे पीएम मोदी। शिक्षा और सामाजिक न्याय समेत कई विभागों के कामकाज की समीक्षा, जवाबदेही तय करने पर नजर।
1: गंगा के रौद्र रूप से सहमा बिहार। पटना में अब तक सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा वाटर लेवल। 12 जिलों के 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। गंडा, कोसी और घाघरा नदी में भी पानी बढ़ा।
0: आज तक पर जल थल नभ के धुरंधर। सीडीएस एनएस सुब्रमणि के संबोधन से हुई सुरक्षा सभा की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 7 बजे करेंगे नए और आत्मनिर्भर भारत की बात।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की शतक आज तक के साथ। दिल्ली में सत्य निकेतन इलाके में 5 मंजिला इमारत गिरी। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। बेसमेंट में खुदाई से हादसे की आशंका है। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत बचाव का काम जारी। बिल्डिंग गिरने का नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घटना के तुरंत बाद बगल की इमारत में मौजूद एक महिला चीख चिल्ला रही थी कि कैसे छात्र मलबे में दब गए। सीएम रेखा गुप्ता हादसे वाली जगह भी पहुंची, हालात का जायजा लिया और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। बोले कि नहीं बचेगा एक भी गुनहगार, दोषियों को सजा मिलेगी। सीएम रेखा ने कहा कि हॉस्टल में पीजी चल रहा था और बेसमेंट में खुदाई की वजह से बिल्डिंग गिरी। बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल फरार है, एफआईआर दर्ज हो गई। दिल्ली हादसे की जगह पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह और बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज। हालात का लिया जायजा, कहा हमारी टीमें काम कर रहे हैं, रेस्क्यू प्राथमिकता है। दिल्ली हादसे के बाद अवैध इमारतों पर एमसीडी का एक्शन, 4 मंजिल से ज्यादा निर्माण सील होंगे। दिल्ली मेयर प्रवेश वाही का बयान, अवैध निर्माण को बढ़ावा देने या लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों को तुरंत नौकरी से निकाला जाएगा। दिल्ली हादसे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच में छिड़ा सियासी संग्राम। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैल जब बीजेपी पर बरसी, बोले कि दिल्ली में माफिया चल रहा। दिल्ली हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जताया दुख, बोले कि यह टाली जा सकती थी घटना, हर छात्र की जिंदगी अनमोल है।
0: राहुल गांधी की अपील, मलबे फंसे हर छात्र पहुंचे एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें। बोले अमानवीय हालात में 40-40 छात्र एक छत के नीचे रहने को मजबूर। सत्य निकेतन हादसे पर आपने रेखा सरकार को घेरा, केजरीवाल बोले लापरवाही से कई हादसे हुए, सरकार नींद से जागे, बड़े स्तर पर हो कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को दिल्ली सरकार पर हमला, बोले ऑडिट के नाम पर करोड़ों वसूले जाएंगे लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। दिल्ली हादसे पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके का पीएम मोदी पर निशाना, बोले एक दिन पहले डीयू में भाषण, अगले दिन छात्रावास की इमारत ढही। अभिजीत दीपके का पीएम मोदी पर हमला, पूछा कि कब तक छात्र चुकाएंगे खस्ताहाल सिस्टम की कीमत। दिल्ली पीजी बिल्डिंग हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का एमसीडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, इस दौरान एमसीडी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारी में झड़प, पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सत्य निकेतन हादसे को लेकर एबीवीपी का आरोप, नगर निगम की लापरवाही से हुआ हादसा, प्रदर्शनकारी ने एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली हादसे पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। सत्य निकेतन हादसे खिलाफ आप छात्र विंग का प्रदर्शन, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास जुटे कार्यकर्ता।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में गिरी इमारत, अभी राहत बचाव का काम जारी। मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। दिल्ली के एसआरसीसी में पीएम मोदी के संबोधन को लेकर विपक्ष के सवालों पर नितिन नवीन का तंज, कहा कि प्रधानमंत्री ने नाराज फूफाओं को होम्योपैथी की दवा दी लेकिन इसका असर एलोपैथी वाली हाई एंटीबायोटिक जैसा हुआ।
3: और परिवार के अंदर जो नाराज फूफा की स्थिति रहती है वही आज भारत में आपकी स्थिति हो गई है। आप पूरी तरह से निजी स्वार्थ में ही चिपके रहते हैं और निजी प्रतिष्ठा में ही आपकी पूरी चीजें छिपी रहती है।
1: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़े पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा कि प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ बातचीत का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए किया। पीएम मोदी की नाराज फूफा वाली टिप्पणी पर सुप्रिया सुले बोले कि बोलने के अधिकार के साथ साथ सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए। दुबई पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, निवेश जुटाने की मुहिम शुरू, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को एमपी आने का दिया न्योता, सेमीकंडक्टर एआई और डेटा सेंटर पर खास फोकस।
4: मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वास्तव में दुबई आज विश्व के सबसे सफल शहरी विकास मॉडल में माना जाता है और स्वाभाविक रूप से मध्यप्रदेश में वो संभावना और मध्यप्रदेश से सीखेंगे भी और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे भी।
1: सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत मामले में 20 लोगों पर एफआईआर, 8 आरोपी हिरासत में लिए गए, 3 अधिकारी सस्पेंड। सागर में जहरीली शराब कांड पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से की मुलाकात, बोले कि दोषियों पर होगी कठोर कार्रवाई।
0: कोलकाता में बीजेपी एमएलए सौरभ सिकदर का बड़ा बयान, बोले भगवा कपड़े पहनने से कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बन जाता है। बीजेपी एमएलए सौरभ सिकदर बोले, भगवा त्याग और बलिदान का रंग है, पार्टी टिकट के लिए भगवा पहनने वालों के लिए मेरा संदेश है। जयपुर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम आरएलपी का शक्ति प्रदर्शन, ओवैसी और हनुमान बेनीवाल ने की संयुक्त जनसभा। जयपुर में ओवैसी का बीजेपी पर हमला, बोले मस्जिदें तोड़कर नफरत की दीवारें ऊंची करने की राजनीति बंद हो। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिले कुएं की बैरिकेडिंग, सुरक्षा में तैनात है पुलिस, एएसआई टीम का इंतजार। तेलंगाना विधानसभा में 22A लिस्ट का उठा मुद्दा, बीजेपी ने जमीन मकानों पर चर्चा की मांग की। तेलंगाना विधानसभा के गेट पर हंगामा, बीआरएस विधायक सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने पुलिस पर साड़ी खींचने का लगाया आरोप। तेलंगाना विधानसभा गेट पर बीआरएस विधायक और पुलिस में झड़प, महिला विधायक भावुक होकर रोई, ब्लैक टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंची बीआरएस से मिले। तमिलनाडु में एमएलए को बड़ा तोहफा, वाहन के साथ 75,000 मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव। कर्नाटक में एफडीए की कार्रवाई, अमेजॉन के 2 ठिकानों पर छापा, बिना लाइसेंस रखी गई 4 लाख से ज्यादा की दवाएं जब्त।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चित्रकूट के दौरे के दौरान रामघाट का हवाई और स्थलीय निरीक्षण करते देखे, साथ ही बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम योगी ने राहत किट और सहायता राशि के चेक भी वितरित किए, कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ, जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए उन्हें हर संभव मदद मिलेगी। अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूपी प्रभारी के पराया धन अपना टिप्पणी पर पलटवार किया, बोले विनोद तावड़े पागल हैं। अखिलेश ने बीजेपी पर धन के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी और सहयोगियों की जीत का दावा भी। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले कि मुस्लिम प्रेम में सही गलत भूल गए अखिलेश। आजमगढ़ कार्यकर्ता की पिटाई को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को घेरा, कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो खड़े हो जाओ कम से कम। बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, सीएम योगी से मुलाकात के बाद सभी को साथ लेकर आगे की चलने की रणनीति पर बात। यूपी में बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट पर विनोद तावड़े का फोकस, बोले कि बूथ इतना मजबूत करो कि विपक्ष सेंध ही ना लगा पाए। शामली में हरियाणवी सिंह और अंकित बालियान की हत्या के मामले में गैंगस्टर भोलू पर घोषित किया गया 1,00,000 रुपए का इनाम। कनाडा के टोरंटो में बैठे गोगी गैंग के भोलू साहबपुरिया पर शामली पुलिस ने घोषित किया इनाम, शूटर सत्यम खादियान और आर्यन संधु पर पहले से ही 1,00,000 का इनाम है।
0: आज तक के मन से सीडीएस का बड़ा संदेश, भविष्य के युद्ध में तकनीक बनेगी निर्णायक ताकत। आज तक सुरक्षा सभा में सीडीएस की ओंकार, हर मोर्चे पर तैयार रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सीडीएस ने आज तक के मंच से बताया युद्ध का नया फॉर्मूला, तेजी से देखो समझो और तुरंत एक्शन लो। सीडीएस ने चेताया, कहा बदल रहा है युद्ध का स्वरूप, अब बदलनी होगी हमारी तैयारी। सीडीएस का बड़ा विजन, बोले रक्षा में आत्मनिर्भरता के साथ तकनीक को बनाना होगा ताकत। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का दौर जारी, दक्षिण पश्चिम मॉनसून अब भी सक्रिय। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्यप्रदेश, राजस्थान को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका जताई, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा। दिल्ली एनसीआर को लेकर भी मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, गरज चमक के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना।
1: बिहार में उफान पर गंगा, 12 जिलों के 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी है, गंडक नदी, कोसी और घाघरा नदी भी उफान पर है। मुंगेर में बाढ़ और गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोगों की मुसीबत बढ़े, मवेशियों की जान बचाई भी गई। मुंगेर में आपदा मंत्री रत्नेश सादा ने बाढ़ की समीक्षा की, बोले कि बिहार के 27 जिले प्रभावित हैं, फसल और दूसरे नुकसान का आकलन होगा। वैशाली में बाढ़ का भीषण कहर, 106 गांव पानी में घिरे हुए। सोनपुर दिघवारा में तटबंध टूटने से हड़कंप, राहत बचाव तेज। पटना के रामनगर दियारा में 5000 से ज्यादा लोग बाढ़ से घिर रहे हैं, लोगों तक मदद नहीं पहुंचने पर प्रशासन पर एक गंभीर आरोप है। बिहार के हाजीपुर में 3 जगहों से टूटे बांध, जिले के 106 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचा। हाजीपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासनिक अधिकारी लगातार दौरा कर रहे, राहत बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी। लखीसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई मकानों के भीतर भी पानी घुसा दिखा। छपरा में नदी का जलस्तर बढ़ा है, तटबंध कई टूटे, बाढ़ का पानी गांवों में और खेतों में फैला दिखा। प्यार में बाढ़ का कहर, कई गांवों में घुसा गंगा का पानी, 5000 से ज्यादा आबादी प्रभावित।
0: सवाई माधोपुर में फंदे पुलिया से बाइक समेत बहा युवक, बाल बाल बचा, मोटरसाइकिल बही। सोनीपत में भारी बारिश से जलभराव, सड़कें बनी तालाब, नगर निगम की मॉनसून तैयारियों पर उठे सवाल। एमपी के श्योपुर में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर, विजयपुर के करीब 20 गांवों का संपर्क कटा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी। अफगानिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने दी जानकारी। यूपी के बागपत में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 4 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। गोरखपुर में अंतिम संस्कार में गए 2 वकीलों पर गिरी बिजली, दोनों की मौके पर मौत। बस्ती में दरोगा सुसाइड केस में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बांदा में बाढ़ सर्वे के नाम पर अवैध वसूली, हंगामे के बाद लेखपाल और मुंशी ने लौटाई रकम। बिहार के जमुई में 9 दिन बाद नाबालिग सहाना हत्याकांड खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार।
1: पैसों के लिए गाय काट कर देहरादून में मांस बेचने का आरोप है, बिजनौर में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 मुठभेड़ में घायल। मणिपुर के कांगपोपकी में 2 गुटों के बीच में गोलीबारी, हमले के बाद से प्राइमरी स्कूल जला दिया गया। हापुड़ में गोलीकांड में दलित युवक दीपक की मौत, 6 आरोपी गिरफ्तार, तनाव के बीच में पुलिस बल की तैनाती। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी पुलिस, मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचे और कारतूस इनके पास से बरामद। बलिया में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 किशोरों की मौत, दोस्तों के साथ नहाने के लिए गए थे, एसडीआरएफ ने शव निकाले। पुणे में जर्जर लोहे का पुल टूट गया और एक ट्रक भी नदी में जा समाया, 1 दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क कटा। लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या की और सिर पर लोहे के रॉड से हमला किया। गुजरात के महीसागर में मृत महिला के नाम पर लोन का घोटाला, पुलिस ने 7 शातिर लोगों को गिरफ्तार किया। सूरत में अमेजॉन डिलीवरी में असली सामान बदलकर डमी प्रोडक्ट रखने वाला एक ग्रुप गिरफ्तार हुआ, 4 डिलीवरी बॉय समेत 5 पकड़े गए। मुंगेर में पिता ने कुल्हाड़ी से दिव्यांग बेटे की निर्मम हत्या की, पुलिस ने पारिवारिक विवाद में वारदात की आशंका जताई, मौके से कुल्हाड़ी बरामद।
0: बैडमिंटन कोर्ट से आई भारतीय फैंस के लिए खुशखबरी, सात्विक चिराग की जोड़ी ने चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास, फाइनल में चीनी जोड़ी को दी मात। सात्विक चिराग चाइना मास्टर्स के स्वर्ण में जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी बने, इससे पहले सात्विक चिराग ने 2023 और 2025 के फाइनल में हार झेली थी। प्याज की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने उठाया बड़ा कदम, 10 दिन में 17 शहरों में 4000 टन प्याज 35 रुपए किलो बेचा गया। सरकार के पास लगभग 1.25 लाख टन प्याज का स्टॉक मौजूद है, इसे ट्रकों और कांदा एक्सप्रेस से देश भर के अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। सरकार की सस्ती प्याज योजना में कम से कम 2 से 3 रुपए तक की कमी आई है, अक्टूबर से नई फसल आने पर प्याज के दाम और नीचे आने की उम्मीद। पुतिन से मुलाकात के बाद अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर ने जेलेंस्की से की मुलाकात, युद्ध खत्म करने की अमेरिका के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। रूस यूक्रेन जंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच पोप लियो ने शांति की अपील की, कहा 4.5 साल से जारी संघर्ष अब खत्म करना चाहिए। ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले के बाद ईरानी स्पीकर गरीबाफ और अमेरिका को खुली चेतावनी, कहा अब युद्ध के हालात और नियम बदल गए। पश्चिमी ईरान में ईंधन टैंकर में जबरदस्त विस्फोट, 11 की मौत, 7 घायल। लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला, अलग अलग हमलों में 4 की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती में कथित घोटालों के खिलाफ पुणे में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ पुणे में ये प्रदर्शन जारी है। सड़कों पर हजारों छात्र मार्च करके एमपीएससी से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। भर्ती और परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता की मांग हो रही है। छात्रों की प्रमुख मांग में कथित गड़बड़ियों की जांच और भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के साथ एमपीएससी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग शामिल है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में पारदर्शी और जवाबदेही होना जरूरी है ताकि उम्मीदवारों का भरोसा बना रहे।
1: तब एमपीएससी में अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद सड़कों पर ये स्टूडेंट्स से अभ्यर्थी दिखाई दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि एमपीएससी चेयरपर्सन इस्तीफा दें। हमारे संवाददाता ओमकार बावला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओमकार, क्या क्या मांगे हैं, कहां कहां कब कब अनियमितता हुई है इस परीक्षा में और चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग क्यों है?
5: देखो, पिछले दो महीने में एमपीएससी के लगभग तीन अलग अलग एग्जाम्स थे जिस एग्जाम्स में कुछ ना कुछ गफला हुआ ये सामने आ रहा है। और फिर कितना ही नहीं, अभी रिसेंटली जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम थी उस एग्जाम में तो एफआईआर दाखिल हुआ और क्लियर कट एमपीएससी जो है महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग उसने ये कबूल कर लिया कि इसमें गफला हुआ था, पेपर लीक हुआ था। शुरू में जो एमपीएससी डिनाई कर रही थी एग्जैक्टली उसके कॉन्ट्रेक्टरी हुआ। इसलिए आज पुणे में जितने एमपीएससी एस्पिरेंट्स मैं दिखाना चाहता हूँ, हजारों लोग यहाँ आए हैं और इनका ये कहना है जो महाराष्ट्र से यहाँ पुणे में तैयारी करने के लिए आते हैं, पुणे एक हब है एजुकेशन का, यहाँ ये लोग आते हैं और उनकी मांग है कि एमपीएससी में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जी, आप कहाँ से आए हो? जगह से आए हैं तो एग्जैक्टली क्या मांगे हैं आपकी? हाँ,
1: उनका ऑडियो नहीं आ रहा है।
5: एमपीएससी पर आपका भरोसा नहीं रहा तो आपका आपका विश्वास उन्होंने तोड़ दिया आपका कहना है, तो आप इस्तीफा चाहते हैं? अभी इस्तीफा चाहते हैं ये कहलाए
0: ठीक है, लौटेंगे आपके पास क्योंकि आपका ऑडियो इस वक्त हम तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये प्रदर्शन दरअसल सुबह से ही जारी है जिसमें एमपीएससी की जवाबदेही तय करने की बात छात्रों द्वारा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पूरे सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाए। हजारों छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन इस वक्त पुणे में चल रहा है। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तमाम जानकारी हमको दे रहे हैं। ओम प्रकाश, दिखाइए कितनी संख्या में छात्र हैं और क्या अब तक कोई भी बातचीत सरकार की ओर से या फिर कोई पहल सामने आई है? ठीक है, लौटेंगे इनके पास। इस बीच ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं, पूरे सड़क को दरअसल इन छात्रों ने घेर रखा है, पोस्टर बैनर के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कथित घोटाला बताया जा रहा है एमपीसी भर्ती परीक्षा में।
1: तो ये बड़ी खबर है, आपने कुछ दिन पहले झारखंड में प्रोटेस्ट देखा, वहां बीपीएससी को लेकर प्रोटेस्ट, उससे पहले दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था नीट एग्जाम को लेकर और अब ये एमपीएससी को लेकर पुणे में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, बीजेपी शासित राज्य है तो ऐसे में क्या अब ये प्रोटेस्ट आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अभी जो तस्वीर है ये अपने आप में आप इस तस्वीर को देखेंगे तो भीड़ बहुत ज्यादा, यानी कि इस एग्जाम को लेकर और चेयरपर्सन को लेकर गुस्सा तो काफी ज्यादा है, अनियमितताओं को लेकर आक्रोश बहुत है। क्योंकि आक्रोश ज्यादा ना होता तो इतनी भीड़ नहीं दिखाई देती है, बहुत ज्यादा संख्या है जो इस समय आप पुणे में देख रहे हैं, जो अपने आप में जो एक एजुकेशनल हब बन चुका है और छात्रों के भविष्य अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, लगातार अनियमितताएं हो जाती हैं, ये गंभीर आरोप है और ऐसे में वो एमपीएससी के चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। ये समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, परीक्षा में धांधली के फिर से आरोप।
0: ऋत्विक भालेकर मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋत्विक, क्या पहले भी ये मांग की गई थी और इस मांग को अनसुना कर दिया गया, यही वजह है कि छात्रों को मजबूरन अब सड़क पर उतरना पड़ा?
6: जी बिल्कुल, देखिए एमपीएससी के ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम हो या तो चाहे कई सारे स्पर्धा परीक्षा हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इन मामलों को लेकर पुणे हमेशा से एक शैक्षणिक हब रहा है और वहाँ पर एमपीएससी स्टूडेंट जो है कई दिनों से जो मांग उठा रहे हैं कि जांच जो हो वो निष्पक्ष हो, जो रिपोर्ट आई है वो सार्वजनिक की जाए और कड़ी से कड़ी सजा लीक करने वाले सभी संबंधित अधिकारियों को दी जाए, लेकिन बावजूद उसके सरकार की तरफ से उसकी गंभीरता से दखल नहीं ली जा रही है, जिसको लेकर अब सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी इस आंदोलन में जो है वो कूद पड़ी है। एनसीपी शरद पवार बूथ हो या तो फिर कांग्रेस हो, उनके कार्यकर्ता भी समर्थन में अब सड़क पर उतरते नजर आ रहे हैं और एमपीएससी के स्टूडेंट जो है वो पूना में धरना आंदोलन देते दिख रहे हैं।
1: क्या इसको लीड कौन कर रहा है, इस प्रोटेस्ट को लीड करते हुए कौन दिख रहा है?
6: देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये छात्रों का उत्स्फूर्त आंदोलन है और पूरी तरह से छात्रों ने इसकी मांग की थी और कई दिनों से लगातार वो कल ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी मिलकर आए थे, कई सारी जगहों पर उन्होंने अपनी गुहार लगाई थी। लेकिन एनसीपी एसपी शरद पवार गुट के जो विधायक और नेता है रोहित पवार, वो लगातार इसको लीड करते नजर आ रहे थे, उनसे बातचीत करते नजर आ रहे थे। बीजेपी के भी कई विधायक उनसे बातचीत कर रहे थे, लेकिन रोहित पवार काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, जिसके बाद अब कांग्रेस से विश्वजीत कदम जो खुद एक शिक्षण संस्था के मालिक है वो भी इस आंदोलन को समर्थन देते नजर आ रहे हैं।
1: जी ऋतिक, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का रुख करेंगे, जहां पर कोलकाता में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुर्गा पूजा पंडालों के किनारे नॉनवेज की बिक्री के खिलाफ अपील की है। कहा कि नवरात्रि में दुर्गा पंडाल के पीछे नॉनवेज का भोजन किया जाता है, ये हमें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि इस बार की नौ दुर्गा में कोलकाता का हिंदू जागे और नॉनवेज खाने वालों का बहिष्कार करें।
0: तो ये अपील यहाँ पर बागेश्वर बाबा द्वारा की गई है, क्योंकि इस बार नवरात्र के मौके पर उनकी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में होगी और ऐसे में वो चाहते हैं कि जितने भी पंडाल सजाए जाएंगे उनके किनारों पर नॉनवेज खाना ना परोसा जाए।
7: पुराना मानना पश्चिम बंगाल की हमको एक बात बहुत अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती, दिल में बहुत ठेस पहुंचती। यहाँ जब नवरात्रि आती है दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, दुर्गा पंडाल जब लगाए जाते हैं तो दुर्गा पंडाल के पीछे या अथवा तखत के नीचे नॉन वेज का भोजन किया जाता, गंदे गंदे भोजन पीछे बनाए जाते, हमें ये पसंद नहीं है। हम चाहते इस बार की नव दुर्गा में कलकत्ता का पत्ता पत्ता वाला हिंदू जागे और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, उनकी ठटरी बारे। और तुम कहो कि इन्हें धार्मिक कहें, हम इसको धार्मिक ना कहेंगे, हम इनको धार्मिक नहीं पाखंडी कहा जाएगा। पुराना मानना पश्चिम बंगाल की हमको एक बात बहुत अच्छी नहीं लगती, बहुत बुरी लगती, दिल में बहुत ठेस पहुंचती। यहाँ जब नवरात्रि आती है दुर्गा पंडाल लगाए जाते हैं, दुर्गा पंडाल जब लगाए जाते हैं तो दुर्गा पंडाल के पीछे या अथवा तखत के नीचे नॉन वेज का भोजन किया जाता, गंदे गंदे भोजन पीछे बनाए जाते, हमें ये पसंद नहीं है। हम चाहते इस बार की नव दुर्गा में कलकत्ता का पत्ता पत्ता वाला हिंदू जागे और ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, उनकी ठटरी बारे। और तुम कहो कि इन्हें धार्मिक कहें, हम इसको धार्मिक ना कहेंगे, हम इनको धार्मिक नहीं पाखंडी कहा जाएगा।
1: हमारे संवाददाता अनुपम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, एक विशेष अपील है और हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता की वहां की तो पहचान, वहां तो नॉनवेज सामान्य है, मतलब खाया ही जाता है, तो ये अपील क्यों की गई और क्या इसका अपील का इम्पैक्ट होगा?
8: ये देखिए, सोशल मीडिया पर इस अपील के बाद से ये जो धीरेन्द्र शास्त्री ने हावड़ा में, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में उनका तीन दिवसीय कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने ये बात कही, तो उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उसके उनके बयान की आलोचना हो रही है। बहुत जगहों पर कहा जा रहा है कि इस तरह से कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में खासतौर पर दुर्गा पूजा में एक दो दिन छोड़कर बाकी नॉनवेज का सेवन होता है और यहाँ पर नॉनवेज एक स्टेपल फूड के तौर पर है, और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सुर्खियों में आ गया है और खास तौर पर सोशल मीडिया में बहुत सारी जो सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर इस बयान की आलोचना हो रही है। खासतौर पर जो बंगाली समुदाय है उसकी ओर से इस बात की आलोचना की जा रही है। तो फिलहाल देखना है कि बीजेपी सरकार इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि एक तरह से राजकीय सम्मान के तौर पर उनको यहाँ पर बुलाया गया, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शामिल हुए, अब ऐसे में बीजेपी का क्या कहना है ये देखने वाली बात है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवार।
11: आगे आगे उधर करेक्ट करेक्ट
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू,
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
8: जेके वॉल मैक्स
6: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
6: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Maxx Paints। JK Maxx, JK Maxx Paints, खुशियों के रंग।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
1: इन एसोसिएशन विद
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
1: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
5: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
6: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
7: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
6: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
8: आज तक की पंचायत में यूपी विजय के पक्के वादे।
9: अंजना जी को इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा। वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा।
8: यूपी की चुनावी लीला का मथुरा से शंखनाद सिर्फ आज तक पर।
10: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: दिल्ली के सत्र निकेतन हाथ से पर एलजी ने बुलाई बैठक। सीएम रेखा गुप्ता समेत डीडीए एमसीडी और पुलिस अफसर रहेंगे मौजूद। अब तक 6 की मौत, 5 घायल। पीजी मालिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी।
1: नहीं बचेगा सत्य निकेतन का एक भी गुनहगार। हादसे के बाद दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश। कहा दोषी अधिकारी भी नपेंगे, गिराई जाएगी पास वाली इमारत।
0: महाराष्ट्र में हो रहे पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर हजारों छात्र निकले सड़क पर। पुणे में एमपीएससी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग, जवाबदेही तय करने के लिए जोरदार प्रदर्शन।
1: गंगा के रौद्र रूप से सहमा बिहार। पटना में अब तक सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा पानी का लेवल। 12 जिलों के 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। गंडक, कोसी, घाघरा नदी में उफान।
0: आज तक पर जल नभ थल के धुरंधर। सीडीएस एनएस सुब्रमणी के संबोधन से हुई सुरक्षा सभा की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 7 बजे करेंगे नए और आत्मनिर्भर भारत की बात।

0: में इमारतों के गिरने का सिलसिला जारी है। दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कल एक इमारत गिर गई और हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि हादसे के शिकार कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
1: जैसे अक्सर होता है, हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटती है और इस मामले में कार्रवाई तेज करने का आश्वासन दिया जा रहा है। इमारत के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही है, लेकिन मालिक फिलहाल फरार बताया जा रहा है। सत्य निकेतन में हादसे में 5 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल लगभग 3 घंटे थी, आज भी लगभग आधे घंटे मौके पर रहीं और अब मालिक को ढूंढा जा रहा है।
0: और इस हादसे में उस वक्त क्या कुछ हालात थे वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे नई तस्वीर वहां से आई है। घटना के तुरंत बाद बगल की इमारत में मौजूद एक महिला चीख चिल्ला रही थी, कैसे छात्र मलबे में दब गए। ये उसकी खिड़की से ये पूरा का पूरा हादसा कैद हो गया।
2: यार, चलो उनको
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सुबह मौके पर पहुंची और मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा।
0: लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर हादसे उन्हें ही क्यों दिए गए, प्रशासन ने पहले ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किया कि हादसे को रोका जा सके। अब अगर कार्रवाई होती भी है तो क्या हादसे में जान गंवाने वालों की जिंदगी वापस लौट पाएगी।
3: इस शख्स को गौर से देखिए। जान बचाने के लिए भागते इस शख्स के चेहरे पर खौफ के भाव आप आसानी से देख और पढ़ सकते हैं। ये दिल्ली के सत्य निकेतन का CCTV वीडियो है, जब एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर गिर जाती है और वहां मौजूद लोगों को जान बचाने के लिए यूं भागना पड़ता है।
4: मुख्यमंत्री के द्वारा भले ही ये कहा जा रहा हो कि किसी भी जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां की अभी सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जो बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी खतरा है, जहां पर पिलर लगा करके ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जो उस बिल्डिंग में थे उसको खाली कराया गया। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये सामने जो है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है यहां पर फायर ब्रिगेड के द्वारा इसके साथ साथ NDRF की टीमों के द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। इसमें नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं कि लोहे के पिलर इसमें लगाए गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है, स्थानीय लोग लगातार ये बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है जो बगल वाली बिल्डिंग थी उसके सपोर्ट में ये खड़ी हुई थी।
3: जिससे अक्सर होता है इस बार भी हुआ। जब बेसमेंट में खुदाई हो रही थी तो प्रशासन सोता रहा, जब बेसमेंट में पानी भर रहा था प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जब खतरे को न्योता दिया जा रहा था प्रशासन कहीं मौजूद नहीं था। अब तक आप जान गए होंगे कि आखिर ये इमारत हादसे का शिकार कैसे हुई, जब गैर कानूनी तरीके से 3 के बजाय 5 मंजिला इमारत बना दी जाए, जब नियमों को ताक पर रखते हुए बेसमेंट को खोद दिया जाए, उसमें बारिश का पानी भरने दिया जाए तो हादसा होगा है। इस हादसे में भी वही पुरानी गलतियां दोहराई गई हैं और किसी को बख्शे न जाने का वही पुराना वादा भी दोहराया गया।
5: जो भी बच्चे यहाँ आसपास की बिल्डिंग्स भी जो डेंजरस स्थिति में पाई जा रही हैं, उनसे उन्हें भी विकेट कराया गया है। और ये खास करके ये बिल्डिंग जो खड़ी है ये पूरी तरीके से डेंजरस प्रतीत होती है। यहाँ से मलबा हटने के बाद में निश्चित रूप से इसको भी गिराया जाएगा, कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा। और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा।
3: अब ऐसे वादों से क्या फायदा मुख्यमंत्री जी, हादसा तो हो गया, जाने तो चली गई, अब लकीर पर लाठी पीटने से क्या होने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हादसे हुए, सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है, जरा उंगलियों पर गिनते जाइए। अप्रैल 2025 मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी जिसमे 11 की जान गई। 17 मई 2025 पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट ढहा, 3 मजदूरों की मौत। 12 जुलाई 2025 उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम में 4 मंजिला पुरानी इमारत ढह गई, 6 लोगों की मौत। 30 मई 2026 साकेत में एक 5 मंजिला अवैध इमारत गिर गई, 6 की मौत। 9 जुलाई 2026 रोहिणी इलाके में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, 3 लोगों की मौत। तो सिर्फ सत्य निकेतन के सत्य का ही सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि ऐसे मामलों की सिस्टम और सरकार को परवाह ही नहीं। हादसे की शिकार इमारत में रहने वाले छात्रों को कहां पता था कि जिस पीजी में वो रह रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं, न इमारत के मालिक की, न एमसीडी की, न सरकार की। सुशांत मेहरा अनमोल बाली के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और आपको एक बार फिर सुनाते हैं हादसे के बाद दिल्ली वालों के नाम सीएम रेखा गुप्ता का एक डिटेल्ड पैगाम।
6: दुर्घटना बहुत ही दुखद है, इस बिल्डिंग के ऑनर की जो लापरवाही है, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और बेसमेंट में पानी भरा होने के कारण उसके पिलर जो है वो गिर गए, पूरी बिल्डिंग ढह गई और इस बिल्डिंग पे भी कार्रवाई हो गई, इसके मालिक पे कार्रवाई होगी और जो इसके आसपास की जितनी डेंजरस बिल्डिंग है उनको भी आइडेंटिफाइड करके ध्वस्त किया जाएगा। विशेष रूप से इस बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे वाली बिल्डिंग को भी हमने खाली करवा दिया है और तुरंत प्रभाव में उसे भी डेमोलिश किया जाएगा।
7: अभी जो चला गया,
6: खाली कराया गया है, उन सबको हमने कॉलेज हॉस्टल्स में अकोमोडेट कराया है, उनकी सुविधाओं की चिंता सरकार कर रही है। जिन बच्चों के साथ हादसा हुआ है उनके पेरेंट्स के साथ भी हम संपर्क में हैं और उन पेरेंट्स को भी हम पूरी मदद दे रहे हैं ताकि वो परेशान ना हो। हम सरकार की ओर से जितने भी वो अधिकारी हैं जिनकी अनदेखी थी, लापरवाही थी या कोई भी कारण था, ऐसे अधिकारियों को भी आज की आज उन पे एक्शन होगा, किसी को भी छोड़ेंगे।
1: दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे को लेकर उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, सभी एजेंसियों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक एलजी की ये बैठक आज दोपहर के बाद होने वाली है। बैठक में एलजी कई अहम फैसले ले सकते हैं और ऐसे फैसले लेने की आवश्यकता भी है।
0: सवाल बड़ा यही है कि क्या हादसों का इंतजार किया जाता है इन फैसलों के लिए। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, इस बैठक के बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए, क्या अहम फैसले आ सकते हैं एलजी की ओर से?
8: देखिए नेहा, सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर हैं और ये तस्वीर आपने देखी होगी हॉस्टल डेज की, जो कि जो महिला पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, वो यहाँ पे जो चल रहा है विमेंस वाला, बगल में ही बॉयज वाला था और ये गर्ल्स वाला पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। और यहाँ पे आप देखिए, हालांकि बाहर इस तरफ ताला पड़ा हुआ है, ठीक है, जरा ये देखिए ताला पड़ा हुआ है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर आप देखिए कपड़ा डाला हुआ है हॉस्टल डेज के अकोमोडेशन पे। लेकिन अगर भीतर जाके अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई यहाँ पे, एक सेकेंड आइए पवन, अंदर आइए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में ये चल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी पॉपुलर था, काफी पोस्टर बैनर प्रमोशन इसके पूरे इलाके में है और जो रेट था, मुझे छात्रों ने बताया कि इसका रेट बाकी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये कितना संकरा है, ये हॉस्टल डेज गर्ल्स आप देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ की सुविधा बता रहे हैं, वही बिल्डिंग जो बगल में ढह गई है इसी तरह की सुविधा बता रहे होंगे, नंबर भी दिए हुए हैं जो फरार चल रहा है आरोपी यहाँ पे। और ये देखिए कि वाईफाई, लॉन्ड्री, एसी रूम, गीजर, हाउसकीपिंग, ये सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी, 4 बारी मील मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, वार्डन मिलेगा और पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन नाम के लिए ये बैनर है, सुविधा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे 0/0 है यहाँ पे। और इसी तरीके की पूरा यहाँ पे अगल बगल में आपको बता दें कि पीजी अकोमोडेशन को लेके कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है, जबकि ये पता है कि हजारों छात्र और खास तौर से फर्स्ट ईयर के छात्र पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे बाहर इस तरीके से हॉस्टल डेज जो गर्ल्स वाला है वहां पे ये तारों का जाल आप देख रहे हैं, उसकी बालकनी में हम लोग खड़े हुए हैं, बगल में वो बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है और यहाँ पे ये कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये छुपाया गया है। ये है हॉस्टल डेज, हॉस्टल डेज का ज्वाइन द डेज, और यहाँ जगह जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर है। इसी तरीके का चार मंजिला जो बिल्डिंग का टावर है वो भी गाइडलाइंस को पूरे खुला खेल का फरुखाबादी यहाँ पे चल रहा है, गाइडलाइंस को वायलेट करता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना पाछने वाला है यहाँ पे। और ऊपर भी हम लोग चल रहे हैं और पूरी बिल्डिंग में वही यथास्थिति बनी हुई है। आप देखिए कि इन विषम परिस्थितियों में बच्चियां पढ़ रही हैं, और ये भी पता चला है कि जबरन ये कहा जाता है कि 2-3 महीने का पेइंग गेस्ट आप नहीं देंगे, आपको 11 महीने का देना पड़ेगा, पसंद आए नहीं पसंद आए, जितना खराब अकोमोडेशन है उससे कोई लेना देना नहीं है, 11 महीने का मिनिमम पेमेंट हर पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन यहाँ ले रहा है, और पूरा इनकी गुंडागर्दी यहाँ पे धड़ल्ले से चल रही है।
1: ये तो बिल्कुल हैरान करता है जो मौसमी आप इस समय रिपोर्ट दिखा भी रहे हैं। हॉस्टल डेज, तमाम तरह की सुविधाओं की बात, सिक्योरिटी की बात अंदर, लेकिन बिल्डिंग तो सुरक्षित है नहीं। आप भी जिस बिल्डिंग में है वो भी ऐसी ही अवस्था में बिल्कुल मौसमी होगी। बहुत शुक्रिया मौसमी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सत्य निकेतन वाली हादसे वाली बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में लोहे के पिलर लगा हुआ एक बगल वाली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को सपोर्ट दिया गया है, इस बिल्डिंग में भी खतरा बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग हल्की सी झुकी हुई है, और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह।
4: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, और यहां की अभी सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जो बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी खतरा है, जहां पर पिलर लगा करके ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जो उस बिल्डिंग में थे उसको खाली कराया गया। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये सामने जो है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है यहां पर फायर ब्रिगेड के द्वारा, इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पर

0: तरफ जो आप देख रहे हैं कि लोहे के पिलर इसमें लगाए गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है, स्थानीय लोग लगातार ये बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है, जो बगल वाली बिल्डिंग थी उसके सपोर्ट में ये खड़ी हुई थी और अब ये बिल्डिंग थोड़ी झुकी हुई दिखाई पड़ रही कि यहाँ पर पिलर नहीं है। आप देखिए कि ये अलग से सहारा दे करके और इसको, बिल्डिंग को आप देखिए, इस बिल्डिंग को किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ा दिया गया, इसका छज्जा इसी तरीके से। आप देखिए कि ये गलियां जो हैं, आपको एक बार दिखाते हैं कि कितनी तंग गलियां हैं जहां पर गेट लगा दिया गया है और इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। कैमरामैन लोकेंद्र से कहेंगे कि एक बार इसको दिखाएं पूरी तरीके से।
1: आपका घर है ये सर?
2: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
0: अच्छा अच्छा,
2: हाँ मैं रहता हूँ भाई साहब।
0: लेकिन एक मिनट आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
2: मैं आपको बताऊं, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
0: ये सपोर्ट,
2: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मंजिल कैसे बन जाएगा आप बताएं।
0: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
3: हाँ हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी दो दो फीट, तीन तीन फीट ऐसे निकला हुआ है इधर, और ये सारे बिल्डिंग की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनीज
0: जो है, जिनका पीजी है, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
3: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, और मान लीजिए इनका नहीं है और सारे बिल्डिंग्स हो रखे हैं, ऐसे ही हो रखे हैं,
4: बिल्डिंग ने सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स।
0: इस तरीके से बिल्डिंग जो बनाई गई है, जिसमें पिलर दिए गए हैं बाकायदे लोहे के और आगे की तरफ, और उनके छज्जे इतने निकाल करके एक एक कमरे बना दिए गए हैं जहां पर उनको किराए पर उठाया जा रहा है, और उसको 12 से 15 हजार रुपए पर बेड लिया जा रहा है, इस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है।
5: दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने कहा है कि जो खतरे वाली बिल्डिंग है उन पर एक्शन होगा, ये बड़ी खबर, और उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। स्टेटमेंट आए हैं और उनका कहना है कि जो खतरे वाली बिल्डिंग है उन पर एक्शन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई सवालों में है वो एमसीडी है और वो खुद मेयर है, और बीजेपी सबसे ज्यादा रूल एमसीडी में करती रही है 2007 से लेकर 22, फिर उसके बाद 25 से, और मेयर कह रहे हैं कि बगैर सर्टिफिकेट पीजी देने पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक क्यों नहीं किया आपने कार्रवाई?
0: दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जब सर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ की बिल्डिंगों को आपको एक बार दिखा देते हैं, आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ इजाजत है 3 से 4 फ्लोर की 5-5 फ्लोर इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें ये सामने जो बिल्डिंग है इसको अभी जो है यहाँ पर पीजी भी चलाया जा रहा है, इसको ढक दिया गया है कल रात से, इसमें आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस तरीके का नियमों का उल्लंघन हो रहा है। प्रवेश वाही जी, आप आज तक के दर्शकों को किस तरीके से बताएंगे कि ये सिचुएशन ना पैदा हो, जो कि यहाँ पर बच्चे फंसे हैं और उनको उनकी जान गई है, क्या स्टेटस है और किस तरीके से अभी ऑपरेशन चल रहा है?
6: देखिए, ये कॉलोनी लगभग 40-50 वर्ष पुरानी है और पहले से ये मकान बने हुए हैं, और 2007 से पहले जो मकान है उस पर उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई ना करने के आदेश थे। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें कुछ लोगों ने किराए पे मकान दिए हुए हैं। किराए पे मकान देना कोई अपराध नहीं है, ये पहले से एक प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों को किराए पे देने से पहले सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने और हमने ये आदेश दिए हैं कि जो भी बिल्डिंग कोई व्यक्ति किराए पे देगा रेजिडेंशियल के रूप में भी, वो अपना स्ट्रक्चरल जो है अप्रूवल वो अधिकारियों से लेगा, दिल्ली नगर निगम के जो इंजीनियर्स हैं उनसे लेगा, तभी वो किराए पे दे सकता है, क्योंकि उसको किसी भी जान माल से खेलने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है।
7: प्रभाकर सत्य निकेतन के हादसे वाले जगह की तस्वीरें दिखा देते हैं, यहाँ पर किस तरीके से बिल्डिंग ढही है। नीचे बताया जा रहा है कि बेसमेंट में काम चल रहा था, इसकी वजह से इमारत कमजोर हो गई और इस तरीके से अचानक भरभराकर गिर गई।
5: रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां जिनका नियमितीकरण हुआ और जो जहां है जैसा है के आधार पर उनको वैसे ही रखा गया है, तो दिल्ली की कितनी इमारतें सुरक्षित होंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं लगभग 75 लाख के आसपास आवास है, उसमें से एक बहुत बड़ी संख्या है जो इसी तरह की इमारतें हैं, उसमें अवैध तरीके से और उनकी इमारतें किराए के लिए और दूसरे कारणों से बढ़ा दिए गए हैं। तो आप अंदाजा लगाए कि जो अनऑथराइज कॉलोनियां थी जिनको बाद में ऑथराइज कर दिया गया, आप अंदाजा लगाइए वहां पर क्या हल होगा। और ये इब्तिदा भर है, ये शुरुआत भर है, दिल्ली में आने वाले समय में इस तरह के हादसे बढ़ सकते हैं।

0: ड्राइव नहीं चलाई गई, इमारतों को जर्जर इमारतों का चिन्हीकरण नहीं हुआ, तो इस तरह के हादसे बढ़ेंगे, ये एक्सपर्ट करें। इस समय प्रशासन मौके पर है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, मेयर कह रहे हैं, एमसीडी की तरफ से बयान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो घटनास्थल पर भी गए, लेकिन अब बिल्डिंग मालिक की तलाश जारी है और 10 पुलिस की टीमें बनाई गई हैं जो मकान मालिक की तलाश कर रहे हैं जो इस समय फरार बताया जा रहा है।
1: लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, ये वही नोटिस है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बिल्डिंग हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि इस पूरे मामले पर अब रेखा गुप्ता ने स्वयं संज्ञान लेते हुए आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई है जिसमें तमाम वो लोग शामिल होंगे, वो अधिकारी शामिल होंगे जो सीधे तौर पर उन्हें बताएंगे कि कहां कहां पर दिल्ली में ऐसी इमारतें हैं जिन्हें अवैध ढंग से चलाया जा रहा है, जो सुरक्षा मानकों को धत्ता बताते हुए धड़ल्ले से इस तरह के स्टूडेंट्स या फिर अन्य लोगों से पैसे वसूल रहे हैं।
0: और अब तो चला छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी।
7: नड्डा जी ने कहा था कि इसकी तहकीकात जरूर होगी।
8: यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा गर्मा गया है। दलितों के अपमान का आरोप लगाकर कांग्रेस मैदान में है। कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया, लेकिन अब मामला विरोध प्रदर्शन से आगे निकल चुका है, अब मामला चुनावी है। बुधवार यानी 9 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हल्द्वानी जाएंगे, लेकिन उससे ठीक पहले कांग्रेस ने अपने दलित सांसदों की बैठक बुला ली। सोमवार को देहरादून में शुद्धिकरण के खिलाफ कांग्रेस मार्च निकालेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास तक कांग्रेस नेता मार्च करेंगे। कांग्रेस का एजेंडा साफ है कि उत्तराखंड में दलित अपमान के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाए, लेकिन 13 अगस्त को जब खड़गे ने हल्द्वानी शुद्धिकरण का मुद्दा राज्यसभा में उठाया तो जेपी नड्डा ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई।
9: हमारी धरती में कुछ ऐसे लोग हैं आज के दिन जिन लोगों ने वहाँ रामलीला ग्राउंड में, अरे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्टेचर का आदमी आकर के संबोधित कर रहा है तो सौभाग्य की बात है, लेकिन उन्होंने वहाँ शुद्धिकरण किया। ये शुद्धिकरण क्या है? इसका अर्थ है तुम संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, SC ST एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। बल्कि राहुल जी ने जब कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज करो तो FIR राहुल जी के खिलाफ दर्ज कर दी गई। तो देश का जो जागृत जनमत है वो आज ये समझ रहा है कि जो कुछ हल्द्वानी में ये तथाकथित शुद्धिकरण के नाम पर हुआ है वो ब्लॉट है देश के ऊपर।
10: शुद्धिकरण का मामला है, राहुल जी के ऊपर भी FIR का मामला है, तरह तरह की ये बातें हैं, लोगों तक हमने जाना है और उजागर करना है। लेकिन आप ये देख ही सकते हैं कि राहुल जी के ऊपर तो कितनी जल्दी से FIR हुई, लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट जो LOP हैं राज्यसभा में उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है, उसके बावजूद कोई हरकत कोई कार्य नहीं, इसकी ओर ये बढ़ना नहीं चाहते। इनके लिए मैं तो, मुझे लगता है कि इनकी सोच क्या है। उत्तराखंड के लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके ऊपर ये इस सरकार ने ऐसा काम करके उत्तराखंड के लोगों को ऐसा करने का प्रयास किया।
8: जब उत्तराखंड में FIR दर्ज नहीं हुई तो कांग्रेस ने बेंगलुरु में 0 FIR करवाई, लेकिन बदले में राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में SC ST एक्ट में FIR लिखवा दी गई। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर आर पार के मूड में है, क्योंकि मामला सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष का नहीं पूरे दलित समाज से जुड़ा है और कांग्रेस की नजर दलित वोट बैंक पर है। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

महंगाई का दबाव हो, दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता हो या फिर ब्याज दरों को लेकर चिंता, इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत आम आदमी की खपत है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय परिवारों का खर्च अर्थव्यवस्था को लगातार सहारा दे रहा है। दरअसल अप्रैल जून तिमाही में जहां भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है, वहीं इस दौरान प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 7.1% का इजाफा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में निजी खपत की ग्रोथ 6.8% थी। यानी एक साल पहले के मुकाबले घरेलू खपत की रफ्तार बढ़ी है और ये बढ़ता खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खास है, क्योंकि आम आदमी की बढ़ती खरीदारी से बाजार में मांग बढ़ने के साथ उत्पाद से लेकर सप्लाई और कारोबार की पूरी चेन को भी फायदा मिलता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कंज्यूमर की जेब से निकला पैसा दुकानदार की कमाई बनता है, दुकानदार के ऑर्डर बढ़ने से कंपनियों का उत्पादन बढ़ता है और फिर इसी पूरी प्रक्रिया में सप्लाई, ट्रांसपोर्टर और छोटे कारोबार भी जुड़ते हैं। यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमी में मांग पैदा करने का काम करती है, इसीलिए आने वाले त्योहारी सीजन को भी कंज्यूमर डिमांड के लिए अहम माना जा रहा है। त्योहारों पर परिवार कपड़े, मिठाई, पूजा सामग्री, सजावट और दूसरी चीजों पर अतिरिक्त खर्च करते हैं। जन्माष्टमी जैसे त्योहारों की तैयारियों में अभी से बाजार में इसका असर दिखाई दे रहा है। यानी त्योहारों पर होने वाला खर्च केवल कुछ दिनों की बाजार की रौनक नहीं है, इस खरीदारी का पैसा छोटे दुकानदारों, कारीगरों और स्थानीय कारोबारियों तक भी पहुंचता है। जब मांग बढ़ती है तो इन छोटे कारोबारियों को ज्यादा सामान तैयार करने, ज्यादा ऑर्डर लेने और ज्यादा लोगों को काम देने का मौका मिलता है। यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग की रफ्तार बढ़ने का सीधा फायदा MSME और छोटे कारोबार के बड़े नेटवर्क को मिल सकता है। हालांकि इस पूरी तस्वीर में महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। जरूरी सामान की कीमतें बढ़ने पर परिवार की आय का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा की जरूरतों में चला जाता है और गैर जरूरी खरीदारी के लिए पैसा कम बचता है। लेकिन अभी उपलब्ध आंकड़े ये जरूर बताते हैं कि हाउसहोल्ड कंजम्पशन भारतीय ग्रोथ स्टोरी का मजबूत आधार बना हुआ है। ऐसे में ये त्योहारी सीजन इस खपत को कितना और बढ़ाता है, इस पर बाजार और अर्थव्यवस्था दोनों की नजर रहेगी। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे पर एलजी ने बुलाए बैठक, सीएम रेखा गुप्ता समेत डीडीए एमसीडी और पुलिस अधिकारी मौजूद। अब तक 6 लोगों की मौत, 5 घायल। पीजी मालिक की तलाश में पुलिस के 10 टीमें तैनात। नहीं बचेगा सत्य निकेतन का एक भी गुनहगार, हादसे के बाद बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। एक्शन भी जारी, न्यायिक जांच के आदेश। कहा दोषी अधिकारी भी नपेंगे, गिराई जाएगी पास वाली इमारत। महाराष्ट्र में हो रहे पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर हजारों छात्र निकले सड़क पर। पुणे में एमपीएससी चेयरपर्सन की इस्तीफे की मांग, जवाबदेही तय करने के लिए जोरदार प्रदर्शन। गंगा के रौद्र रूप से सहमा बिहार, पटना में अब तक सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंचा पानी का लेवल। 12 जिलों के 22 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। गंडक, कोसी, घाघरा नदी उफान पर। आज तक पर जल थल नभ के धुरंधर सीडीएस एनएस सुब्रमणि के संबोधन से हुई सुरक्षा सभा की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाम 7 बजे करेंगे नए और आत्मनिर्भर भारत की बात।

0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं राजीव ढोंडियाल। 12 बजे 12 रिपोर्टर की शुरुआत आज दिल्ली की बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में मलबे में जिंदगी की तलाश जारी है। कल दोपहर लगभग 1:30 बजे यहां 5 मंजिला इमारत गिरी थी और 22.5 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन तक नहीं हुआ है, लगातार चल रहा है। हादसे में अब तक 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। इस समय भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अब भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें कल से ही लगातार ऑपरेशन चला रहे, रात भर इसके ऑपरेशन चलता रहा और अब बिल्डिंग मालिक जो इस समय फरार है उसके तलाश में 10 पुलिस की टीमें बनाई गई हैं उसको पकड़ने के लिए। लेकिन सवाल फिर से एमसीडी पर, सवाल सरकार पर। हमारे संवाददाता अंशुल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अंशुल, सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट दें, क्या अब भी आशंका है कि भीतर लोग दबे हुए हो सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, अभी पूरी आशंका है कि और लोग दबे हो सकते हैं। अब फाइनली जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो करीब करीब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। अब जो बेसमेंट में जो मलबा है उस मलबे को निकाला जा रहा है और उस मलबे के साथ साथ जैसे वो मलबा निकाला जा रहा है वहां से अभी 2 मिनट पहले अभी एक और बॉडी निकली है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक कुल 13 लोगों को जो है यहाँ से जो मलबा है उससे निकाल लिया गया है। किस हालत में है वो, कैसी कंडीशन है, इस पर अभी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पाई है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर अब जो है आखिरी स्टेजेस पे करीब जो है ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इमरजेंसी के लिए जो यहाँ पर एम्बुलेंसेज हैं वो कैट्स एम्बुलेंसेज जो हैं वो अंदर लगाई जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये आशंका है कि करीब 2 या 3 लोग और हो सकते हैं।
0: अंशुल, आप बता रहे हैं कि एक और बॉडी को निकाला गया है और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन इस बीच में एनडीआरएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं।
2: तो कोई भी कॉल आने पे तुरंत निकलती है, उस तरह से हम इसको तुरंत रिस्पॉन्ड करने में ये हमको हेल्प करता है।
3: रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी जो डेबरीज है उसको जो है भी निकाला जा रहा है, तो एक टेंटेटिव टाइम माना जाए कि कब तक?
2: टाइम अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन अभी भी डेबरी है जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ऑलमोस्ट आ गया, उसको भी एजेंसीज निकाल रही है, तो मुझे संभावना है कि आज का दिन तो लग जाएगा इसमें।
3: कितना चैलेंज था
2: इस तरह की जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या जहां पर बिल्डिंग कोलैप्स होती है, चैलेंज होता है स्टेबिलिटी का। एक तो विक्टिम जो अंदर ट्रैप्ड है, लिविंग विक्टिम्स हैं, उनको हम इस बिल्डिंग को स्टेबल करके बाहर सेफली निकाल लें, क्योंकि बिल्डिंग को छेड़ने पे फिर से मलबा दब सकता है, उनको इंजरी हो सकती है जो कि इनके लिए घातक हो सकता है। दूसरा, जो रेस्क्यूअर्स काम कर रहे हैं उसमें उनकी अपनी सेफ्टी भी उनको देखना पड़ता है कि वो भी इस मलबे में कहीं दब ना जाए रेस्क्यू एफर्ट के लिए। तो इसमें कई टेक्निक्स हैं, इक्विपमेंट हैं जो रेस्क्यूअर्स यूज करते हैं, तो उन सबको ध्यान करके रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी होता है। और इसमें कुछ वॉलंटियर्स ने भी जो हेल्प करने गए थे वहाँ पर, जैसा कि मुझे बाद में लोकल पुलिस से इनपुट मिला, कुछ लोगों को उसमें भी थोड़ी इंजरी हुई थी, तो इसको भी ध्यान में रख के काम करना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो कंसर्न एजेंसी है वो उसमें काम कर रही है, इसमें एंड मैं सिर्फ एनडीआरएफ रिस्पॉन्स पार्ट पे बोल सकता हूँ। सो राइट नाउ वी आर यूजिंग कैनाइंस ऑल्सो, सो वी डोंट हैव एनी इंडिकेशन, बट so sometimes it can be very tricky if there is any cavity or space in the rubble, there might be some victim, but it's very difficult to comment right now.
4: How many people, any estimate how many people were trapped?
2: So far 12 people have been evacuated from that site. So regarding how many more will be trapped, I'm not able to comment on that unless we have a specific evidence from the site.
4: So there is no official data available as to how many occupants were inside the PG when the building
2: collapsed. So what I have already said, we have taken input from the local police administration and the community while doing the rescue operation. So far 12 people have been taken out from the site. How many are trapped inside, we don't have any specific figure. So
0: एग्जैक्ट नंबर किसी के पास नहीं है, लेकिन इस बीच में एक अपडेट आपको दे दें कि एक और शख्स को निकाला गया है, वो जीवित है या नहीं इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 13 लोगों का अब तक रेस्क्यू हो गया है। दिल्ली बिल्डिंग हादसे का जो जांच है वो मामला लगातार चल रहा है। इस बीच में दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया, एक बड़ी खबर आपको दे दें, ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है। अब दिल्ली के एक अधिवक्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने सत्यनिकेतन में इमारत गिरने का मामला उठाया है। घटना को गंभीरता से देखे जाने और इस मामले की तुरंत सुनवाई की मांग की गई है। चीफ जस्टिस आज ही इस मामले की सुनवाई करने के लिए सहमत भी हो गए। तो दिल्ली हादसे पर तुरंत सुनवाई की मांग की गई और उस मांग को मान लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट अब बिल्डिंग हादसा पहुंच गया है जहां 13 लोगों का रेस्क्यू हुआ है, अब तक 6 लोगों की जान चली गई है, बाकी घायल है जिनका उपचार चल रहा है। एनडीआरएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने आपको सुनाई और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। किसी के पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, जानकारी नहीं कि कितने लोग दबे हुए हो सकते हैं। और इस बीच में मामला दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया है और एक अधिवक्ता पहुंचे हैं इस मामले की जांच, इसे एक बहुत गंभीर मुद्दा वो बता रहे हैं। हमारे संवाददाता अंशुल भी इस खबर पर हमारे से जुड़ गए। अंशुल, थोड़ी देर पहले एनडीआरएफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुना रहे थे, वो तो 12 का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन आप एक ऐड भी कर रहे हैं, साथ साथ में दिल्ली हाईकोर्ट भी मामला पहुंच गया
1: आज। जी बिल्कुल, दिल्ली हाईकोर्ट भी यह मामला पहुंच गया। अब ये देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट में किस तरीके की सुनवाई होती है और किस तरह के आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और प्रशासनिक लेवल पर ही नहीं बल्कि हर लेवल पर, यहाँ लोकल पुलिस से लेकर के MCD से लेकर के प्रशासन तक, सब की जिम्मेवारी यहाँ पर तय होनी चाहिए। अब वो होगी या नहीं, हाईकोर्ट में किस तरीके से सुनते हैं ये देखना होगा। लेकिन अगर आप NDRF की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसी वक्त ये बिल्कुल बॉडी निकली थी, तो अभी जो काउंट है वो 12 से एक बढ़ के अब 13 हो गया है। अभी भी ये आशंका है, जो यहाँ पे लोकल बूट्स ऑन ग्राउंड हैं, जो ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि बेसमेंट में करीब 2 लोग और ऐसी आशंका है कि हो सकता है दबे हों, और उसको लेकर के अब जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। ये एग्जैक्ट लोकेशन अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बेसमेंट में कौन सी एग्जैक्ट जगह है जहां पर वो दबे हो सकते हैं, जिसके लिए एक बार फिर से K9 स्क्वाड्स और जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स हैं उनको यहाँ पर ला करके इस्तेमाल में रखा गया।
0: अंशुल, नजर बनाए रखे, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। आगे बढ़ते हुए इस बीच में आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, 6 से ये मौत का आंकड़ा बढ़कर अब 7 हो गया है। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। अब एक सवाल यह है कि कहां छिपा बैठा है दिल्ली की मौत की इमारत का वो मालिक, वो बिल्डिंग मालिक हरिराम बंसल, जिसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम समेत कई इलाकों में छापेमारी की है और आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस को हरिराम घर पर नहीं मिला है, वो इस समय फरार है। कल मुख्यमंत्री ने भी बताया था कि हरिराम फरार चल रहा है, जो बिल्डिंग का मालिक है। हरिराम के करीबियों के यहां पर भी पुलिस ने दबिश दी है, कई 10 टीमें बनाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग मालिक को पकड़ने के लिए ये टीमें बनाई हैं। इन 10 टीमों में जिले के लोकल पुलिस है, स्पेशल स्टाफ के अलावा इसमें जिले के अलग अलग ऑपरेशन यूनिट के पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन सभी टीमों को जिले के एडिशनल DCP रैंक के अधिकारी लीड कर रहे हैं। हरिराम को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस हरियाणा यूपी में लगातार रेड की जा रही, छापेमारी की जा रही।
5: सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने के बाद बिल्डिंग का मालिक हरिराम फरार हो गया है। कल दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने मौके पर ही इस बात का खुलासा किया था कि हादसे के बाद कैसे हरिराम बंसल मौके से फरार हो गया। उधर दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और जब हरिराम की तलाश शुरू की तो हरिराम कहीं नहीं मिला। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंचती है जहां पर हरिराम का घर है, वहां पर भी हरिराम नहीं मिला। घर की तलाशी ली गई, आस पड़ोस की तलाशी ली गई, लेकिन वहां से भी हरिराम गायब मिला। दिल्ली पुलिस को शक है कि वो किसी अपने करीबी के यहाँ पनाह लिए हुए है। गुरुग्राम और दिल्ली के कई ठिकानों में दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। दिल्ली पुलिस को इस बात का शक है कि कहीं वो दिल्ली छोड़कर विदेश न फरार हो जाए, इसलिए LOC जारी कर दिया गया है और एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन को अलर्ट पर रख दिया गया है। अवैध तरीके से हरिराम सत्य निकेतन में PG चला रहा था और बिल्डिंग गिरी जिससे कई छात्रों की मौत हो गई।
0: तो सत्य निकेतन की जो बिल्डिंग गिरी है, जो उसका मालिक है, उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें छापेमारी कर रहे हैं। गुरुग्राम के हरिराम बंसल के घर पर भी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, छापेमारी की, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
6: मैं इस तरह गुरुग्राम के पालम विहार इलाके में मौजूद हूं, जहां देख सकते हैं आप 271F जो कि हरिराम बंसल का एक निवास स्थान है। हरिराम बंसल पिछले काफी सालों से अपने परिजनों के साथ यहां पर रह रहे थे। हालांकि फिलहाल इस कोठी पर सन्नाटा पसरा है, कोई आपको इसके अंदर हलचल दिखाई नहीं देगी। दिल्ली पुलिस भी हरिराम बंसल की गिरफ्तारी के लिए गुरुग्राम के तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही है। सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस के जवान आसपास के इलाकों में तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस कोठी के अंदर कोई है नहीं, और इस कोठी को कितने बढ़िया स्ट्रक्चर से बनाया है यह आप साफ तौर से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लेकिन जब उस PG को बनाया गया तो इतनी घटिया कंस्ट्रक्शन के थ्रू बनाया गया, जिसमें कि कल दो दिन पहले वो हादसा सामने आया था और उस हादसे के अंदर 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया था। अब दिल्ली पुलिस लगातार दबिश दे रही है इस पालम विहार स्थित इलाके में। काफी लंबी चौड़ी एक कोठी है और एक और गेट इस कोठी का मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे इनके परिजनों की वो गाड़ी भी मौजूद है। यानी दिल्ली पुलिस का जैसे ही अंदेशा हुआ हरिराम बंसल के परिवार को, हरिराम बंसल को, वैसे ही वो यहां से फरार जरूर हुए हैं। अब कोठी के अंदर कोई है या नहीं है, हालांकि इस बात की तस्दीक तो दिल्ली पुलिस के अधिकारी करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारी आप साफ तौर से देख सकते हैं वो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, सादा कपड़ों में तैनात हैं और लगातार इस पूरे इलाके की रेकी की जा रही है, इस पूरे इलाके से जानकारी साझा करने की कोशिश की जा रही है, लेने की कोशिश की जा रही है। ये उस कोठी का दूसरा गेट है जहां पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी भी खड़ी है लेजेंडर और इसके साथ ये हार्डवेयर का सामान भी मौजूद है।
0: दिल्ली इमारत हादसे में बड़ी लापरवाही और कोताही सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग के बेसमेंट में काम चल रहा था, कुछ खुदाई का काम चल रहा था और बारिश की वजह से वहां पर पानी भर गया था और बारिश के पानी से नींव कमजोर होने से इमारत भर भरा कर गिर गई। ये भी दावा किया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत को अवैध रूप से 5 मंजिला बना दिया गया था और पूरी कहानी बता रहे हैं संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह।
7: दिल्ली के सत्य निकेतन में नियमों की किस तरीके से धज्जियां उड़ी आज तक आपको ग्राउंड जीरो से यहां पर दिखा रहा है। जी हां, जिस बिल्डिंग को 3 मंजिला बनाना था उसको 5 मंजिला बना करके पूरी तरीके से नियमों की अनदेखी की गई। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार एमसीडी, इसके साथ साथ यहाँ का लोकल प्रशासन है। जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था उस दौरान आखिर क्यों नहीं रोका गया और इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया? दरअसल इस बिल्डिंग में नीचे का जो बेसमेंट था उसमें काम चल रहा था और सीलन की वजह से उसमें बड़े स्तर पर काम पिछले 1 सप्ताह से किया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींव काफी कमजोर हो गई और ताश के पत्तों की तरह पूरी इमारत नीचे की तरफ ढह गई, जिसमें तमाम लोगों की इसमें मौत हो गई। और हादसे की अगर बात करें तो ये हादसा दिन के 1:30 बजे हुआ, उस दौरान तंग गलियां होने के चलते यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी काफी मुश्किल हो रहा था। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इस जगह का जायजा लिया और तमाम निर्देश भी उनके द्वारा दिए गए।
0: जब दिल्ली के सत्य निकेतन में हादसा हुआ तो उस वक्त क्या हाल था वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे नई तस्वीर सामने आई घटना के तुरंत बाद। बगल में मौजूद एक इमारत है और वहां पर एक महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी जब मलबे में छात्र दबे।
8: हमारे सामने ही होगी पूरी धारा, ऐसा हम कहां रह रहे हैं वैष्णो।
0: हादसे के बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन में है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता थोड़ी देर पहले भी हादसे वाली जगह पर पहुंची थी, अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली। फिर उन्होंने कहा कि हम सभी अभिभावकों के साथ संपर्क में हैं और जिस स्तर पर लापरवाही हुई है उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जितने भी अधिकारी जिम्मेदार होंगे उन सब पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमींदोज इमारत के आसपास की दूसरी बिल्डिंग जिनकी हालत खराब है उन्हें भी डिमोलिश किया जाएगा।
9: दिल्ली के सत्य निकेतन के हादसे के बाद से ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। जब इस हादसे की जानकारी मिली तभी वो स्पॉट पर पहुंच गई थी और देर रात तक वहां पर डटी रही। रेखा गुप्ता वहां पर अधिकारियों से लगातार संपर्क में रही और जिन जिन चीजों की जरूरत महसूस होती रही वो वहां पर की गई और निर्देश लगातार अधिकारियों को जारी वो वहीं से करती रही। आज तड़के सुबह भी वो वहां पर पहुंच गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि इस पूरे मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जिम्मेदारी लोगों जो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी और साथ साथ इस तरह की घटना ना हो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। एक बात साफ है कि कल के हुए हादसे के बाद से मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और लगातार जो अधिकारी हैं उनको निर्देश देती हुई भी दिख रही हैं। मेरे सहयोगी संजय के साथ मैं पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।
0: अब आपको सुनाते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा है।
10: खास करके ये बिल्डिंग जो खड़ी है ये पूरी तरीके से डेंजरस प्रतीत होती है। यहाँ से मलबा हटने के बाद में निश्चित रूप से इसको भी गिराया जाएगा, कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है, नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो पब्लिक यूटिलिटी की कोई भी सर्विसेज वहां शुरू करे, चाहे वो पीजी हो, नर्सिंग होम हो, स्कूल हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो पब्लिक डोमेन की कोई एक्टिविटी उस बिल्डिंग में बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते। इस पे सख्त नियम लाया जाएगा और जितने भी अधिकारी इस क्षेत्र के जिनकी अनदेखी के कारण ये सारी दुर्घटना हुई है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा।
0: जितने नियम सख्त होंगे एमसीडी उतना ही मोटा पैसा वसूलेगी, उतना ही भ्रष्टाचार करेगी, एमसीडी को लेकर ये आरोप लगते ही रहे। अब दिल्ली के सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे पर छात्रों में नाराजगी है, गुस्सा है। छात्र संगठनों ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी शामिल हुए। उन्होंने एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की। ये NSUI का भी प्रोटेस्ट देखने को मिला है, उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। कल हमने ABVP का प्रोटेस्ट भी देखा था और अब कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इस्तीफा हो, दिल्ली MCD कमिश्नर का इस्तीफे की सीधी सीधी सी मांग है और उसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया है। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। अब तीन तस्वीरें आप देखिए, पहला ABVP का कल का प्रोटेस्ट था, उन्होंने जहां MCD दफ्तर के बाहर हंगामा किया, प्रदर्शन किया, फिर NSUI का प्रोटेस्ट, वो भी धरने पर बैठे रहे और आम आदमी पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने भी प्रदर्शन किया है।
11: सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने से तमाम छात्र मलबे में फंसे हुए हैं और इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। ABVP से लेकर NSUI आमने सामने है। एक तरफ ABVP MCD दफ्तर पर धरना दे रही है तो NSUI लगातार BJP की डबल इंजन सरकार के खिलाफ विरोध में उतर आई है और यहाँ पे पूरी तरीके से सियासत छिड़ गई है। लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है और इसको लेकर लगातार जो कांग्रेस के यूथ विंग है वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। वहीं ABVP लगातार ग्राउंड पर नजर आ रहा है और एक तरीके से वार और पलटवार को लेकर युद्ध छिड़ गया है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज।
0: 12:12 रिपोर्टर में अगली रिपोर्ट देहरादून से। हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में आज कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकली है और देहरादून के परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मार्च कर रहे हैं।
12: यहाँ कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण और नेता विपक्ष राहुल गांधी पर हुई FIR के बाद से ही कांग्रेस लगातार आक्रोशित है और आज विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में आज एक और अध्याय जुड़ा जा रहा है जब कांग्रेस आवाज कूच करने जा रही है और मेरे पीछे से देखा जा सकता है लगातार कांग्रेस नेताओं की और कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के नेतृत्व में ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। यार अब से कुछ ही देर में भीड़ जो है आगाज करेगी सीएम आवास कूच की ओर। लगातार कांग्रेस मांग कर रही है कि नेता विपक्ष पर जो FIR हुई थी इसको कॉस्ट किया जाए और जो लोग आरोपी हैं जिन्होंने शुद्धिकरण हवन किया था उन पर FIR दर्ज हो।
0: अगली रिपोर्ट सहारनपुर मस्जिद से जुड़ी हुई है। मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय आज सहारनपुर जा रहे हैं। अजय राय शाम 5 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे और सहारनपुर पहुंचकर वो मस्जिद कमेटी के सदस्यों से मुलाकात करेंगे।
13: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद गिराए जाने का मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इस मुद्दे पर सपा से लेकर कांग्रेस AIMIM तक उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने में लगी है। आरोप लगाया जा रहा है कि मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का, अदालत से सुनवाई होने का मौका ही नहीं दिया गया और मनमाने ढंग से मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया। यह अलग बात है कि सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में अपील की और अपील खारिज होने के बाद यह एक्शन लिया गया। लेकिन अब समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर जा रहा है और जहां पर वो मस्जिद कमेटी के तमाम लोगों से मिलेगा और एक तरह से उत्तर प्रदेश में मस्जिद की सियासत फिर से गर्माएगी।
0: 12:12 रिपोर्ट में अगली खबर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से जुड़ी हुई है। लंदन में आरएसएस के सेलिब्रेशन सेलिब्रेट ऑफ वननेस यानी कि एकता का उत्सव कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने आरएसएस के आलोचकों को संघ का मतलब बताया। मोहन भागवत ने आरएसएस पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारा काम नफरत नहीं है, प्रेम फैलाना।
14: लंदन में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के आलोचकों को संघ का मतलब बताया। मोहन भागवत ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमारा काम नफरत फैलाना नहीं बल्कि प्रेम फैलाना है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि आजकल कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि आरएसएस के काम का आधार जो है वो नफरत फैलाना है, जबकि संघ के काम का आधार बिल्कुल उसके उल्टा है। शुद्ध और सात्विक प्रेम ही उनके काम का आधार है।
15: इसी के साथ में संघ उसे शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। I heard some people say intent-centered is basis of our work. It is just the reverse. Shuddha Sattvika Prem, that is the basis of our work. And that is there permanently. It has not worn out. Even in 100 years, you will find the same Shuddha Sattvika love in behavior of Svenjava, in atmosphere of the sun.
0: अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में रसुआ में आई विनाशकारी बाढ़ ने 13वें दिन आज वहां पर राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जा रहा है और इस दौरान भीषण प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लगभग 1300 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। चीन की सीमा से लगे हुए रसुआ और आसपास के जिलों में ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में चट्टानों के खिसकने और हिमस्खलन के बाद 26 अगस्त को अचानक बाढ़ से बड़ी तबाही मची थी और इस आपदा में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ था।
16: राष्ट्रीय आपदा के 14 दिन हो चुके हैं और 13 दिन के बाद आज राष्ट्रीय शोक किया जा रहा है और ऐसे में नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है। इस त्रासदी में 1300 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लगभग 5000 लापता हैं। राहत बचाव कार्य अलग अलग चरणों में जारी है। पहाड़ों में दुर्गम परिस्थितियों के बीच हर उस गुमशुदा को खोजने की तलाश है। नेपाल को पूरी दुनिया की मदद मिल रही है, लेकिन ये वक्त है उन लोगों के साथ खड़े होने का जिन्होंने अपनों को खोया है। वो 1300 से ज्यादा जिंदगियां जो इस प्रलय का शिकार हुई हैं, कोशिश ये भी है कि हर उन 5000 लापता लोगों में से हर मुमकिन को लगभग खोज लिया जाए। और ऐसे में जितने भी कार्यालय हैं काठमांडू से लेकर उन तमाम इलाकों में, हम नुआकोट में हैं और नुआकोट में भी जो सरकारी दफ्तर है वहां पर नेपाल के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है। आज राष्ट्रीय शोक का दिन है। नेपाल अपने उन लोगों के साथ खड़ा है जो यहाँ के नागरिक थे जो इस आपदा का शिकार हुए और उन लोगों के साथ भी जो नेपाल में उस समय अतिथि बनकर आए थे, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो दोबारा अपने घरों को जा पाएंगे। उनके बारे में कोई सुराग नहीं है। राहत बचाव कार्य अभियान जारी है। नेपाल से मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
0: अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: और वही कहाँ गए थे घूमने?
20: जीके मैक्स।
21: खाना कहाँ से मंगवाया?
20: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
22: जेके वॉल मैक्स
20: बेस्ट प्राइमर,
23: जेके मैक्स
20: बेस्ट पेंट,
23: जेके मैक्स।
20: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
19: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
20: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जीके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जीके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जीके मैक्स।
1: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
1: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: इन एसोसिएशन विद
6: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
9: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
10: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जारी रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
9: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
11: दरख्तों को देख करके आप समझ में आएंगे कि त्रिशूली की धारा कितनी ताकतवर थी। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ बह गया, ध्वस्त हो गया। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। 9 दिन पहले एक भरा हुआ शहर अब बंजर रेगिस्तान कब्रिस्तान की तरह दिखाई देने लगा। जो अपने आप में मिरेकल हाउस थे, जो बच्चे रहे लोग इनकी छतों पर खड़े रहे, अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। यहां पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। मैं आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: बीजेपी के यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने समाजवादी पार्टी के पीडीए की नई व्याख्या करते हुए कहा कि पीडीए का मतलब पराया धन अपना है। विनोद तावड़े ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा दल है, यूपी के विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम सीएम योगी कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी के यूपी प्रभारी के पराया धन अपना टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा विनोद तावड़े पागल हैं। अखिलेश के बीजेपी पर धन के गलत इस्तेमाल का आरोप, कहा 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में हम जीतेंगे। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले कि मुस्लिम प्रेम में सही गलत भूल गए अखिलेश। आजमगढ़ कार्यकर्ता की पिटाई को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को घेरा, कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो खड़े हो जाओ। यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं को जीत का दिया मंत्र, सीएम योगी से मुलाकात में सभी को साथ लेकर चलने की रणनीति। यूपी में बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट पर विनोद तावड़े का फोकस, बोले कि बूथ इतना मजबूत कर दो कि सेंध ही ना लग पाए। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में गैंगस्टर भोलू साहापुरिया पर घोषित किया गया 1,00,000 का इनाम। कनाडा के टोरंटो में बैठे गोगी गैंग के भोलू साहापुरिया पर शामली पुलिस ने घोषित किया इनाम, शूटर सत्यम कादियान और आर्यन संधु पर पहले से ही 1,00,000 का इनाम। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिले हुए कुएं की बैरिकेटिंग, अब सुरक्षा में पुलिस तैनात, एएसआई की टीम का इंतजार। यूपी को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। यूपी के पश्चिमी हिस्सों में बारिश के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की आशंका, प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की जताई आशंका, पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के साथ भूस्खलन का खतरा। बांदा में बाढ़ सर्वे के नाम पर अवैध वसूली, हंगामे के बाद लेखपाल और मुंशी ने रकम लौटाई। प्रयागराज में रामबन गमन पथ की सड़क पर दरारें दिखी, 4400 करोड़ के प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल। यूपी के बागपत में श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पलट गई, 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। गोरखपुर में अंतिम संस्कार में गए 2 वकीलों पर बिजली गिर गई, दोनों की मौत। बस्ती में दरोगा सुसाइड केस में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पैसों के लिए गाय काटकर देहरादून में मांस बेचने का आरोप, बिजनौर में 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 मुठभेड़ में घायल।

इटावा में चलती डबल डेकर बस बनी आग का गोला, 40 यात्रियों का लाखों का सामान जलकर खाक। हापुड़ में गोलीकांड में दलित युवक दीपक की मौत, 6 आरोपी गिरफ्तार, इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म के 2 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, तमंचे कारतूस इनके पास से बना। बलिया में बाढ़ के पानी में डूबने से 2 किशोरों की मौत, दोस्तों के साथ नहाने के लिए गए थे। लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या कर दी, लोहे के रॉड से हमला किया था।

0: शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बाद अब सियासत थमी नहीं है। अब पुलिस ने सहारनपुर जा रहे असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता को नजरबंद किया है। AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने दावा किया है कि मेरठ से सहारनपुर जाने वाले मजलिस के अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल को रोक दिया गया है। तो AIMIM जो पहले से इस मामले पर हमलावर है वो पहले ही सवाल खड़े कर रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी खुद भी सवाल खड़े कर रहे थे, और अब जब शादाब चौहान एक प्रतिनिधिमंडल उनका बताया जा रहा कि सहारनपुर जाना चाह रहा था तो उनको रोका गया। ये शादाब चौहान दावा कर रहे हैं कि हमें सहारनपुर जाने से रोका गया है। इससे पहले सपा सांसद इकरा हसन को नजरबंद किया गया था, तो ऑपोजिशन की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अब AIMIM की तरफ से दावा कि सहारनपुर जाना चाह रहे थे लेकिन पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। यूपी के चुनावी सीजन में सहारनपुर के अंदर अवैध मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ और एक गुप्त कुएं का उसके बाद राजफाश हुआ है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद कुएं का पता चलने पर अब हिंदूवादी संगठन पूरे इलाके की खुदाई की मांग करने लगे हैं।
1: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां शिव मिलते हैं।
0: सर शुरू हो गए हैं, शादाब चौहान ने क्या दावा किया है आपको अब सुनाते हैं।
2: भारत के न्यायपालिका के अनुसार वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आधार पर जल्दबाजी में रात के अंधेरे में मस्जिद को शहीद कर देना ये प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से सरकार दुर्भावना में कार्रवाई करती है और मस्जिद से नफरत है। मालिकाना हक जो है उस सरकार के पास नहीं है, मालिकाना जिन लोगों के पास है लीज पे था, तो इस प्रकार से पूरा कलेक्ट्रेट अवैध हो जाएगा। उसी कलेक्ट्रेट के अंदर दूसरे धर्मस्थल भी हैं, क्या उनको करिएगा आप? आज देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कोई अब सूची जारी करेंगे कि कौन सा धर्मस्थल वैध है? गाइड करना चाहिए अगर कोई जजमेंट भी आया जिससे कि वो अपेलेंट आगे जा सके। और उस खसरा नंबर पर कौन सा प्रमाण है, कौन सा मालिकाना हक है? कोई एविडेंस नहीं। 100 साल पुरानी मस्जिद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या कहता है कि जो धर्म स्थल जिस स्थिति में थे उसी में रहेंगे। लेकिन ये कौन सी बात है कि एक वकील और वकीलों का एक प्रतिनिधि मंडल सहारनपुर को नहीं जा सकता है? क्या वहां के परिसर में जाना कोई गैर कानूनी है? क्या मैं क्रिमिनल हूं? दे आर सर्चिंग मी लाइक अ क्रिमिनल।
0: आपको बता दें कि कोर्ट ने इसे अवैध माना, इसे सरकारी भूमि माना और उसके बाद से ही प्रशासन ने इस पर एक्शन लेते हुए इसे ध्वस्त किया। यूपी में चुनावों का ऐलान तो नहीं हुआ है लेकिन चुनाव प्रचार शुरू हो चुके हैं। हर दल की ओर से जनता के बीच में दावे, वादे और मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी इंतजार में। समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो घोषित है लेकिन सीटों का अभी तक पता नहीं है। अब खबर है कि कांग्रेस ने आगे बढ़कर अपनी ओर से नंबर भी देने शुरू कर दिए। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 120-107 सीटों के बीच का अपना जो नंबर है वो अखिलेश यादव से चाहती है।
3: सीएम योगी जुलाई से सितंबर के एक हफ्ते के अंदर यूपी के 43 से अधिक जिलों में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं तो 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी ला चुके हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी प्रचार शुरू कर चुकी है लेकिन कांग्रेस का पता नहीं चल पा रहा है। कांग्रेस के नेता परेशान है कि समाजवादी पार्टी जल्दी ही उनकी सीट क्लियर क्यों नहीं कर रही, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव ने घोषित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रचार की शुरुआत पिछले हफ्ते ही कर दी है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनसंपर्क शुरू भी कर चुके हैं। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर।
0: अब आपको लिए चलते हैं सुरक्षा सभा में जहां हमारे साथ हैं पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र।

0: एटीएम कार्ड यूज करती हैं पेट्रोल पंप पे, तो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज कर रही हैं। आप जब एटीएम कार्ड को स्वाइप करते हैं यूएस में जाके, आपका यहाँ का लोकल बैंक का एटीएम कार्ड, एक किताब है द वर्ल्ड इज फ्लैट, उसमें ये एग्जाम्पल कोट किया गया है। जब आप एक कार्ड को स्वाइप करते हैं तो वो सैटेलाइट के जरिए आपके बैंक अकाउंट को यहाँ खोजता है और उसमें से आपका अकाउंट निकाल के 13.50 रुपये डेबिट करता है और वापस इमीडिएटली उस यूएस के पेट्रोल पंप को बताता है कि आधा डॉलर चार्ज किया जाए। सो दिस इज व्हाट वी लिव, फ्यूचर वॉर्स और फ्यूचर एवरी डे, बट वी कांट सी इट। सो टूवर्ड्स दैट जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, धीरे धीरे करके, तैयारी करके, छोटी छोटी तैयारियां। मैं किसी को ये एग्जाम्पल दे रहा था कि आप सिर्फ ब्रह्मोस की फायरिंग के बाद, एक सुखोई 30 का एग्जाम्पल लीजिए, जिससे अगर ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल फायर की जाए तो उसके बाद वो कितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है और कैसे उस टारगेट को वहां ढूंढ लेती है 250-300 किलोमीटर विद इन प्लस माइनस 2 मीटर। इट इज अ मार्वल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दैट टू इंडियन टेक्नोलॉजी। सो दैट इज द फ्यूचर वॉर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड द रेट एट विच you know technology is progressing, especially after the advent of AI, it is going at extremely rapid rate, and we'll be, if you do not catch up with it, you'll be surprised maybe in the next war or otherwise also in life itself.
1: ये सर, क्योंकि जब भी एयर फोर्स की बात होती है ना, मतलब एक तो अव्वल तो मैं क्योंकि नई पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ये बता दूं कि मतलब आप लोग जितनी पढ़ाई करते हैं उससे कहीं ज्यादा पढ़ाई उनको ऑपरेशनल ड्यूटीज निभाते हुए भी करनी पड़ती है। एक एफओस ऑफिसर को हमेशा पढ़ाई करते हुए टेक्नोलॉजी के साथ एकदम तालमेल करते हुए चलना होता है, लेकिन यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन उपकरणों को लेके कि हमारे पास ये ऐसी चीजें थी जो हमारे एयर स्पेस को डिफेंड कर रही थी, जो हमारे एडवर्सरी को डेसिमेट कर रही थी, खत्म कर रही थी, इसीलिए होता है क्योंकि आप हमेशा एक चर्चा सुनते हैं कि कितने पैसे देश के और कितना डिफेंस बजट और किस चीज में कितना। एयरफोर्स तो सबसे महंगी फोर्स हो जाती है सर उस हिसाब से, पर ये चीजें चलती रही। आप लोग एक तरीके से फोर्स के भीतर भी रह के, आपका जितना भी इंटरेक्शंस जिससे भी गवर्नमेंट से रहे, आप लोग उसके भीतर ये लड़ते रहे कि नहीं, ये चीजें जरूरत हैं और हमें चाहिए। आज क्या हम उस स्तर पर हैं जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फोर्सेस में और सबसे सुरक्षित देश को रखने वाले उपकरणों के हिसाब से समझ सके?
0: तो जहां तक आपके फाइनल क्वेश्चन का सवाल है, इसमें मेरे मन में कोई दो राय नहीं है कि हम इस समय दुनिया की सबसे टॉप 4-5 उत्कृष्ट एयरफोर्सेस में से माने जाते हैं। और जहां तक आपने ये कहा कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी स्ट्रगल करके या डेवलपमेंट के थ्रू जाकर, एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, फाइनली एक परिपक्व सिस्टम को तैयार करते हैं, इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। करीब 15 और 20 साल पहले हमारी भारतीय वायुसेना में, और अभी भी हैं वैसे, हर तरह के रेडार्स थे। अभी तो ज़्यादातर रेडार इंडिजिनाइज हो गए हैं, काफ़ी कंपनीज ने इंडिजिनाइज करनी है, अदरवाइज लेगेसी रेडार्स फ्रॉम USSR, from US, from France, from all over, because we did not make those radars here. At that time, we started making an air defense system. And, you know, to make that air defense system, if you have to get a foreign vendor, you have to share the data of your radars, which will become public. So Indian scientists sat down, Indian engineers sat down, Air Force, Indian Air Force sat down, and we created the best integrated air command and control system, which is purely indigenous. It has taken us about 15 years. And today we have the capability where each and every radar of the country, including civil radars, and slowly you have heard of Akashti, which is the system which connects the army radars with the IACCS, the naval radars. Soon we will have the system where 100% radars, or the whole 100% airspace will be covered by our system. And all of this has been done by our people, our scientists, our engineers, and our Air Force.
1: सर, क्योंकि ये जो पूरे उस इंटीग्रेटेड उसकी बात हम कर रहे हैं, हम कई बार बड़े क्लिष्ट शब्दों में, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और जार्गन के साथ वो आता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो एफओस के टर्म्स से उतना सभी लोग नहीं होंगे उससे परिचित। लेकिन अगर, क्योंकि उस समय ना सर, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, आप लोग मोर्चे पर थे, फैसले ले रहे थे, लेकिन बहुत सारे ये लोग सोच रहे थे कि हमारा शहर सेफ है कि नहीं, यहाँ हमें कौन बचाएगा। क्योंकि आपने इतनी सुंदरता से और सिंपल तरीके से समझाया है कि कैसे एक एटीएम कार्ड का स्वाइप भी कहां कहां से होकर आता है, अगर आप हमारे देशवासियों को यह बात समझा सकें
0: तो मैं

0: land and maritime boundaries of the country are defended or air defended by the Indian Air Force. और ये हम ऐसे कैसे करते हैं? 24 घंटे, every second there are radars churning all over the country. Earlier the armed forces radar were only on the border. वो सिर्फ border पे लगे थे, वो सिर्फ बाहर को देखा करते थे. परंतु क्या था कि हर रडार के साथ एक आदमी बैठेगा, वो उसके स्कोप को देखता रहेगा, मैनुअली देखता रहेगा कि कोई बाहर से आ तो नहीं गया, फिर वो कोई अलार्म रेज करेगा, फिर मिसाइल फायर होगी. उसमें समय बहुत लगता था. तो हमारे साइंटिस्ट ने एक सिस्टम बनाया जो कि विदेशों में भी है. और जब मैंने आपको, खैर वो मैं बाद में आऊँगा, लेकिन तो हमारे साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि क्या हम इनको कनेक्ट कर, जब इंटरनेट की टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या हम इसको डेटा नेट पर कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, सो दैट दोनों रडार का फोटो एक जगह पे आ जाए, वहाँ पे बैठे रहें. जैसे आजकल लैन पे या वाईफाई पे आप कंप्यूटर करें, आज के जो यंगर जनरेशन को बहुत आसान लगता है, बट मैं यू नो अर्ली 2000s और यू नो 2005 2010 की बात कर रहा हूँ, तब से हमने उसको धीरे धीरे बनाना शुरू किया. और उसमें पहला प्रॉब्लम ये आया कि ये मेरे ख्याल से यंगर जनरेशन समझेगी कि डेटा फॉर्मेट अलग है दोनों रडार का, एक अमेरिका का है एक रशिया का है. उसको हमने ब्रेक किया, उसको कॉमन डेटा फॉर्मेट में लेके आए और हमने अपने देश के सारे आर्म फोर्सेस रडार्स को इंटरकनेक्ट कर दिया. तो अब मैं उन जगहों का नाम नहीं बताऊंगा, हमारे 7 या 8 अंडरग्राउंड ऑप्सूम है जहां पर बैठे बैठे आप पूरे देश की एयर सिचुएशन को मॉनिटर कर सकते हैं और यदि जरूरत पड़े तो बॉर्डर पे अपना वेपन फायर कर सकते हैं. अब उसके बाद हमने सिविलियन रडार, दिल्ली एरिया का जो रडार है बहुत पावरफुल रडार है जो आपका सिविल टर्मिनल पे लगा है, बॉम्बे चेन्नई, इन सभी रेडार्स को भी इंटीग्रेट कर दिया है उसी सिस्टम के अंदर. हमने आर्मी के रेडार्स को भी इंटीग्रेट कर दिया उसी सिस्टम के अंदर और अब धीरे धीरे नेवी के रेडार्स भी उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएंगे. तो अपने देश के अंदर बैठे बैठे एक ऐसा नेटवर्क हमने तैयार किया है जिसमें आप एक जगह पर बैठे, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द लोकेशन बट अदरवाइज इट्स वेरी क्लोज टू अस, एंड सो यू कैन एक्चुअली सिट देयर एंड वॉच एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन ओवर लेट से टुटकोणे और कन्याकुमारी एंड टेक एक्शन. यू कैन टेक ओवर इंटरनेट आईपी प्रोटोकॉल, सबको पता होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल पे यू कैन टेक ओवर द कमांड ऑफ दैट सिस्टम एंड टेल हिम टू फायर द मिसाइल इफ दैट एयरक्राफ्ट इज अ रोग एयरक्राफ्ट. सो दैट इज वेयर वी हैव रीच्ड. यू एग्जैक्टली सेड इट डिडंट हैपन इन अ डे, इट डिड हैपन ओवर इवन वन जनरेशन. जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर्स पायलट्स हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, हैव फेल्ड, गॉट अप अगेन एंड डन अगेन, बट फाइनली वी हैव दिस इंडिजिनस सिस्टम. तो एक बात जो मैं पहले कहना चाहता था, 2002 में मैं यूएस गया था और 2010 या 11 में मैं फ्रांस गया था और वहाँ के दोनों के मैंने ये एयर डिफेंस सिस्टम देखे थे. तो हम जब आपस में एक्सचेंजेस करते हैं तो हम देखे दिखाने के लिए उनको लेके जाते. आज जो हमारा ISCC सिस्टम है, इट इज़ टूडे वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशनलाइज एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड एंड आई एम सेइंग दिस विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस, हैविंग सीन द अमेरिकन सिस्टम इन 2002, हैविंग सीन द फ्रेंच सिस्टम इन 2010, आई एम वेरी श्योर दे हैव अपग्रेडेड ऑल्सो, आई गॉट नो डाउट, एंड दे मस्ट बी एज गुड और मे बी स्लाइटली बेटर देन अस, बट वी आर वन ऑफ द बेस्ट पीपल, आई मीन एज फार एज द एयर डिफेंस इंटीग्रेशन इज कंसर्न.
1: सर फर्क हो जाता है ना, जैसे अमेरिका को अगर हम देखते हैं तो वो मतलब जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है अपने दुश्मनों से वहां तक कोई खतरा पहुंचने के लिए. अगर हम इसराइल जैसे देश को देखते हैं जहां पर हम ये वॉरफेयर देखते आए, वो एक बहुत छोटा सा देश हो जाता है. भारत का आकार, भारत की भौगोलिक स्थिति, ये चीजें. और सर देखिए ना, कैसे 3-4 साल में बालाकोट और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, हमारे एडवर्सरी का जो रिटेलिएशन था वो भी बदल गया और लगा जैसे अचानक ये कौन सा युद्ध यहां पर चल रहा है. तो बालाकोट ऑपरेशनली और ऑप सिंदूर ऑपरेशनली, अगर आप इनको डिफरेंशिएट करेंगे.
0: When Balakot happened, the Indian Air Force had the same capability what they had in Sindoor. We could have done a Sindoor also. But I would like to, instead of, segregating it operationally, I'd like to segregate it strategically. As to what was our strategy? So if you see, मैं अभी यहाँ पे देख रहा था आपको, शायद आपके बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम. तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है. तो आपने एक टेररिस्ट अटैक के कारण उड़ी किया, उसके बाद आपने बालाकोट किया, उसके बाद

0: अपने सिंदूर किया। तो ऐसा नहीं था कि हमारी सेनाएं उसमें शॉर्ट ऑफ रिसोर्सिस थी कि आप उस टाइम ये नहीं कर सकते थे। ये एक्सपैंडिंग स्ट्रैटेजी है, डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन मेकिंग बाय द गवर्नमेंट वी डिसाइडेड वेदर वी हैव टू डू बालाकोट और वी हैव टू डू सिंदूर, यू नो। सो वी हैव बीन वार्निंग द ऑपोजिट साइड, वी डिड उड़ी, मान जाइए, देन वी डिड बालाकोट, मान जाइए। अब वो जब भी नहीं माने तो फिर सिंदूर की हमारे को नौबत आनी पड़ी। सो इट इज अ स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन ऑफ आर रिएक्शन टू सच यू नो अटैक्स अक्रॉस फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर।
1: मतलब सिंदूर भी ट्रेलर ही है, सिंदूर से भी न माने तो याद रखें कि जो कहा भी गया था कि 2.0 कभी भी इट्स नॉट ओवर येट।
0: 30 अप्रैल 2026 को मैं रिटायर हो चुका हूँ, सो काश, आई एम वेरी श्योर द पीपल हु आर इन नो ऑफ थिंग्स एंड हु आर प्लानिंग दे वुड हैव देयर प्लान्स रेडी फॉर व्हाटएवर वुड बी रिक्वायर्ड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस।
1: सर वही जब बालाकोट जैसे हुआ तो उसका रिटेलिएशन हमने एक अलग रूप में देखा था पाकिस्तान की तरफ से, मैक्सिमम आर्टिलरी फायरिंग अलोंग लाइन ऑफ कंट्रोल और उसको इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी वो कर लें, या फिर जो मिग विमानों को उस समय उड़ाया गया था। इसमें उस समय के बाद प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही थी जब रफाल विमानों को लिया जा रहा था कि बॉर्डर क्रॉस भी नहीं करना होगा और हम यहीं से उन पर आक्रमण कर देंगे। ये क्षमता कितनी निर्णायक, कितनी जरूरी?
0: इसमें मैं तीन मेरे बिंदु हैं, मैं एक एक कर एक पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो कि जब हमने बालाकोट का अटैक किया था तो हमारे पास अच्छी सैटेलाइट इमेजरी दी थी अपने टारगेट की, तो अक्रॉस द बॉर्डर से कुछ कमेंट आए और कुछ कमेंट विद इन आर ओन सिटीजन्स आल्सो आए कि पता नहीं कहीं लगा कि नहीं लगा, बिकॉज सैटेलाइट इमेज में दो धब्बे दिख रहे थे। आप लोगों ने सिंदूर के बाद जो बहावलपुर और मुरीद के पे इंडियन एयरफोर्स ने अटैक्स किए थे 9 बिल्डिंग्स पे, उनकी सैटेलाइट इमेजेस देखी होंगी, वो मीडिया में घूम रही हैं। उसके बाद उसमें भी वही दो स्पॉट्स हैं, और उसके बाद आपने ऑन ग्राउंड इमेजेस देखी कि क्या डैमेज हमने उन बिल्डिंग्स को किया था। सो ये प्रूव करता है कि बालाकोट में भी वही इमेज थी। उस टाइम हमारे पास या तो वेयरविदॉल नहीं था, या मौसम खराब था, या कोई और परिस्थिति रही जहां पे हमको ऑन ग्राउंड इमेजेस नहीं आ पाई और हम प्रूव नहीं कर पाए। सो ये तो देशा वो वाला बात हुआ कि आपने बालाकोट में भी दो स्पॉट देखे, यहाँ पे भी आपने मरकज में भावलपुर के दो स्पॉट देखे, परंतु जब आप करीब से जाके देखेंगे तो तब पता चलेगा कि आपको कितना प्रिसाइज और कितना डिवास्टेटिंग अटैक इंडियन एयरफोर्स ने किया। सो दैट QED इट प्रूव्स द सक्सेस ऑफ बालाकोट अटैक, दैट इज नंबर वन। व्हाट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन?
1: सर ये आपके इस जवाब से मुझे एक और सवाल मन में आया, उसको मैं आगे लूंगी। मैं एक सोल्जर जो कि अपना सब कुछ लगा कर लड़ रहा है, मतलब आप लोग ये बातें सुनते हैं जो हो रही हैं कि कोई सबूत नहीं है या कौवे मार दिए या पेड़ गिर गया, ऐसी चीजें हर्ट करती हैं एज अ सोल्जर?
0: मुझे आपका पिछला क्वेश्चन याद आ गया
1: जी।
0: सुदर्शन सिस्टम आपको पता ही होगा, S-400 314 किलोमीटर का शॉट ऑन अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई विल नॉट क्लेम इट टू बी अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बिकॉज इट्स अ रशियन सिस्टम, आई डोंट नो, दे मे हैव शॉट इट एट 314.1 किलोमीटर, आई डू नॉट नो, बट आई सस्पेक्ट सो, वी विल कन्फर्म फ्रॉम द रशियन साइड और हूएवर इज यूजिंग इट। 314 किलोमीटर मतलब हमारे बॉर्डर से 314 किलोमीटर तक कोई भी लड़ाकू या कोई भी विमान पर तक नहीं मार सकने की हालत में थे हम सिंदूर में। ये हमारा जो आप लॉन्ग रेंज फायरिंग और लॉन्ग रेंज की बात कर रहे हैं, जो हमने ब्रह्मोस फायर करी, आप जानते हैं सरगोधा में, आप जानते हैं रहीम यार खान में, बोलारी में, ये सारे कम से कम 200 किलोमीटर डिस्टेंस से फायर की गई। और ये जो यंगर जनरेशन को मैं बताना चाहता हूँ कि 200 किलोमीटर दूर से फायर करी गई एंड विद एन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 1 मीटर, हैविंग ट्रैवल्ड एट 1 Mach+ थ्रू आउट द, दिस इज द टेक्नोलॉजी द इंडियन एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग एंड दिस इज द लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी दैट वी हैव डेवलप्ड इन द लास्ट डिकेड एंड अ हाफ। एंड वाई आई से लास्ट डिकेड एंड डिकेड एंड अ हाफ स्पेसिफिकली बिकॉज द पुश दैट वी हैव गिवन टू द इंडिजिनाइजेशन, लाइक आई हर्ड एयर मार्शल तिवारी यू नो और द एंकर आस्किंग हिम दैट बाला दिस ब्रह्मोस इज अ सक्सेस स्टोरी, इट्स अ कंप्लीटली इंडिजिनस मिसाइल एंड इट इज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज द ओनली ऑपरेशनल सुपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड टूडे एंड इट्स एन इंडिजिनस मिसाइल डिजाइंड रशियंस एंड द इंडियंस। So that is as far as the long range capability of the Indian Air Force. Actually, you will, just a little extension on the same question. That is the beauty of the air power. I don't say Air Force, because Air Force is an organization. But the air power, unlike the ground power and the naval power, they have their own strengths. I don't want to get controversial on that count. But unlike the air power and naval power, the air power is quick, long-reaching, precise, and dynamic. You can get airborne, you can be recalled. A ground launch BrahMos, once gone, is gone. And you would have seen in this Iran versus Israel in US, you launch a ground-launched missile, ballistic missile or whatever, its launch location is spotted from the space, and it can be neutralized the next day or maybe a couple of hours. Whereas a flying aeroplane, and that's the beauty of the air power. How do you exercise that air power? Now, coming to the last question, which you said, that does it hurt you? Actually, while the operation is going on, you're not bothered. And you are also aware of the result. So I don't have to learn about the result from across the border or, from anybody else. Or please don't mind, but I see even from the media. I don't have to learn it because I know it, that I have shot him at 314. Whether you believe it or not, it's fine with me. I know that I have got his hangar in Bholari with an AWNC and those four or six or eight F-16s there. I know it because I've seen it from space. I have got intelligence from other sources. It could be electronic, communication, whatever. So I'm quite, I mean the Indian Air Force and the Western Air Command. But if we are confident, whether you agree, means satya to satya hi rahega, aap chahe kitna bhi chillate.
1: स्वदेशीकरण बहुत इसकी बात हो रही है. इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने वाकई उन स्वदेशी हथियारों को देखा. एक एयरफोर्स ऑफिसर होने के नाते ये स्वदेशीकरण कितना हमारी सेहत के लिए अच्छा है या फिर नहीं है, आपको लगता है कि क्या हमें कुछ मेक इन इंडिया होने के कारण वो चीज हमारे पास होनी चाहिए या दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण हमारे पास होनी चाहिए?
0: स्वदेशीकरण या इंडिजिनाइजेशन इज इक्वल टू सॉवरेनिटी. इसमें ना मेक इन इंडिया का कोई हाथ है, ना ही हमें बेस्ट होना है या सेकंड बेस्ट होना है. इट इज इक्वल टू सॉवरेनिटी. हाउ विल यू हैव सॉवरेनिटी इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अनदर नेशन टू सेफ गार्ड योर बॉर्डर्स? इफ योर लेट्स से across the border, we have destroyed a large number of radars. As you are aware, we showed it on the TV. The chief of the air staff had given a briefing. So those number of radars are of American origin, ANTPS 4377 series. Now they are waiting, or they have to wait for somebody to come out and repair it. So usme they have lost sovereignty over that. That gap, that hole that I created in his air defense remains till the time the American vendor comes and repairs it. Whereas if I have my radar, it goes unserviceable or it is destroyed, let's say khuda na khasta, then I have my own people, my PSUs, my startups, and my so many people are there in private industry who come and repair it because they made it ourselves. So this example I'm giving you, not to highlight a Sindoor incident, but to explain to you that how important is sovereignty. When you talk about sovereignty, it's not only land, law, and people. It is about your ability to take independent decisions. Sovereignty after this Iran war, Iran and US, we've been talking about fuel shortage ho gaya, LPG ke daam badh gaye. If you can control them, then you are a sovereign. You have exercised your sovereignty. Similarly, in war, if you have to think twice ke mere paas ye missile hai ke nahi, mujhe bahar se lani padegi, wo dega ke nahi, to phir sovereignty ka, phir aapka decision is dependent on what your supplier is telling you. Is dependent on the corporate decision and not on the decision of the government. So when you will become indigenous, or the push to indigenization is push to sovereignty. That is how I look at it, and not as some proud Indian, etc. I have to be, the best. Of course, we will get to the best. But even if we are not the best, let's say, because it's a journey. You don't go from zero to, Vapiti to MCA. It is, you have to go through those steps. You have to go to Maruti, you have to go to LCA, Mark 1, Mark 1A, Mark 2. You have to make mistakes. You have to learn from those mistakes. And if you don't follow this tough path, then you are not going to, not going to get sovereignty. And that is what I keep, to me, when somebody says indigenization, it is not a corporate mantra. It is not a government mantra. It is, in my mind, a definition of sovereignty. If I have, I'll just give you, I can I can give you some examples, but I don't want to get specific. Let's say you have your Air Force trainers from overseas. So jab wo kharab ho jayenge to aapke pilot kahan bahar jayenge train hone ke liye. Or we have to make the trainer yourself. Isn't it? So to me, indigenization is sovereignty, and that is what is more important.
1: But sir, uske saath agar hum baki hathiyar ek taraf hain, jab hum apne vimanon ki baat karte hain, fighter jets ki baat karte hain, LCA Tejas ko lekar itna samay laga, AMCA abhi development ke stage mein hai, aur wo jis generation ka viman hai, wo shayad jab tak develop hoga, tab tak duniya kahin aur pahunchegi. तो इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूं कि फिर प्रतीक्षा कितनी, कितना इंतजार उस स्वदेशीकरण में उस लिहाज से हम कर सकते हैं.
0: तो क्योंकि मैंने ये सॉवरेनिटी का वर्ड यूज किया है, इसके लिए मैं एक छोटा सा और एक इसको क्लैरिफाई कर देता हूं. जहां तक मेरा ख्याल है, वर्ल्ड में कोई भी कंट्री पूरा जहाज खुद नहीं बनाता, नॉट इवन यूएसए. They don't make the aeroplane themselves. You are aware that iPhones and iMacs are assembled and they're made all over. So nobody makes it. So to say that ki humne yahan se liya, wahan se liya, koi fark nahi padta hai. Sovereignty is about, it is not about making an aeroplane. It is making that one critical pin rightly, which can hold the aeroplane. And once you start making that critical pin, that metallurgy, that design, that production, and that quality, which can compete with the world at the cost to our eastern neighbor, at the cost which the eastern neighbor offers, then you are sovereign. It doesn't matter whether you make aeroplane or not. You make that pin which makes all the aeroplanes in the world. So this is how I look at sovereignty. Sovereignty is not about making engine. Of course, there are steps on sovereignty. They are important things. We have to make our engine. We have to make our airframe. So that is why this dilemma in people's mind, ke bahut time lagya, bahut time lagya. Ab bahut time, ab I don't know. We have time. I can give you an example. So, आप LCA के बारे में हर कोई कहता है कि बहुत time लग गया, बहुत, और अंत में ठीकरा किसी एक के सर पे फोड़ना है. So we decide one scapegoat and उसके सर पे फोड़ते हैं. पर इसमें designers, production agency, user, तीनों की थोड़ी-थोड़ी responsibility है at different stages. So again, without getting controversial about it, I'm just see the journey of LCA. Where was India? What was your economic brawn? What was your political brawn? What was your diplomatic brawn? When did it accelerate? When your economic, political and diplomatic brawn increased? Hai ki nahi? Jab mujhe yaad hai, humne jab Pokhran 2 kiya tha Bajpayee ji ke zamane mein, tab hamare imports band kar diye the jo critical technologies thi. The same gyroscope that you use in a missile, you use in an aeroplane. So you're not getting that gyroscope. I'm just quoting one small example. So there are so many roadblocks. Nobody caters for that. I mean, you should cater for that. When you do an audit of the delays, you should cater for this. And subsequently, as our, I shouldn't say it, it's not a magic figure that our standing in the world has increased or something. Our economic brawn has become. Our, R&D has improved. Our, younger generation is coming into the market to, startups have increased. People are now, indigenous production shuru kara hai choti choti companies ke andar. So when all these things will now snowball into the AMCA coming on time, I can assure you this.
1: Sir, drones.
0: Ji.
1: Kya ye in gaps ko fill kar? Kya drones overrated hain? Jab hum drones warfare ki baat karte hain, kya yuddh ko puri tarike se wahi niyantrit kar sakte hain? Kya ek cheap aur bahut efficient tarika ho sakta hai? Drones ko kaise aap dekh rahe hain?
0: So I'm a fighter pilot. Huh. So drone is a four-letter word as far as a fighter pilot is concerned.
1: Okay.
0: So I'll main ek udaharan se aapko samjhane ki koshish karta hu. Iran aur Israel plus US ka jo abhi conflict chal raha hai, uske andar yadi aapne monitor kiya ho to initial phases mein they were flying at the rate of the US and Israel were flying at the rate of 100 fighter sorties per day in the first 12 days. Okay? To get those three nuclear sites previous, in July last year, after Sindoor, to get those three nuclear sites, they flew a single mission of 137 aeroplanes. Where were the drones? Isn't it? So, I'm not saying that drones are good or bad. The heavy lifting in any air war is done by the fixed-wing aeroplane. the drones fill in certain very critical gaps which that fixed wing aeroplane either can't do, or it is too risky to send him there. You know, it's the cost of this thing, pilot ka cost, wo sab laga ke agar aap dekhe, to drones ko kar sakte hain. In addition, we can produce them in mass numbers. In addition, again, we are getting these days so many indigenous drones. I mean, that is one phase which I'm so happy that the government is pushing, our academia is pushing, our corporate is pushing, everybody is pushing it, and I'm really happy the way the younger generation is going and creating this amazing drones. I mean, I don't want to name one IIT or one college, etc. It will be unfair. Everybody is at it. So the heavy lifting in air war, the BrahMos is, if I'm not wrong, 1.2 tons, which drone will carry it. Okay. Isme jab bhi, since I'm a pilot, that's why I cracked that joke in advance. Because when you say, then, people say, pilotless ho jayega, isliye, people are feeling very uncomfortable about it. So pilot is a misnomer. Pilot is not the person who sits in the cockpit. The pilot is one who controls. So you have this, we have external pilots. The MQ-9 series, we shouldn't call them drones, they are UAVs. They fly thousands and thousands of kilometers from their base. They fly automatically after takeoff. But when it comes to weapon aping, weapon shooting, or emergency situation, the pilot gets into the loop, takes it on the video, and fires the weapon. So he's the pilot.
1: Sir, सही बात है. मतलब तकनीक कितना भी विकसित हो जाए, जो उस तकनीक को कंट्रोल कर रहा है, वो दिमाग और वो उस व्यक्ति का शौर्य ही तय करेगा. क्योंकि ये चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि महाशक्तियाँ इन्वॉल्व हैं जिन युद्ध में इस समय. जिसको युद्ध नहीं कॉन्फ्लिक्ट का नाम वो देते हैं, चाहे वो अमेरिका ईरान इसराइल हो या फिर रूस और यूक्रेन हो. उन लोगों ने युद्ध शुरू किया, खत्म नहीं कर पाए. असली शक्ति तो युद्ध खत्म करने पर भी है. ऐसी क्या चीज थी हमारी अलग, भारत की अलग, जो ऑपरेशन सिंदूर में चार दिन में हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया और सीज फायर पर मजबूर किया?
0: धैर्य और एथिक्स. इसके दोनों के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ. 6 PM या 7 AM, जब हमने टेररिस्ट टारगेट्स पे अटैक किया, और नॉट टेररिस्ट टारगेट, और दो इंडियन एयरफोर्स के पास बिग टारगेट्स इन विच देर वर 9 buildings दैट वी अटैक्ड. उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिलिट्री आई थिंक पब्लिकली अनाउंस्ड दैट वी आर डन, वी डोंट वॉन्ट टू गो एनी फर्दर. ओके, सो दिस इज द एथिक पार्ट ऑफ इट. That we want to address only the terrorists, their backers and their handlers across the border. We are neither interested in damaging you or slowing down your progress or your citizens, common citizens, etc. That is what is ethics about. But somehow the opposite side was intent on destroying themselves. So they started sending these drones in hundreds across. So Air Marshal Tiwari has just spoken ahead of me. We've had very loud arguments saying that what our point of view was, that what we could have done on 10th, we could have done on 8th also. What was stopping me from doing it on 8th? Kuch nahi. Jo humne 2 din kis liye intezar kiya? Humne 2 din isliye intezar kiya ki kaash unko ye samajh aaye aur dono taraf se jo jaan maal ki hani hone ka khatra hai usko hum avoid kar sake. Aur isko kehte hain dhairya. So ethics aur dhairya दोनों को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने तब तक वेट किया जब तक कि पानी नाक के ऊपर नहीं चला गया. और जब 9 तारीख को 24 घंटे उन्होंने हजारों ड्रोन्स भेजे, तब हमको ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि अब हमको इनको सबक सिखाना पड़ेगा. एंड देन स्टार्टेड दैट द स्पेट ऑफ अटैक्स ऑन 11 एयर फील्ड्स, अंडरग्राउंड सेंटर्स, अंडरग्राउंड C2 सेंटर्स, रनवेज, एंड वी शोड देम इन अ पीरियड ऑफ से अबाउट हाउ मच, अबाउट 14 or 18 hours, that we can reach wherever we want. We got no problems, and you can not stop us, and we'll do what we want to with you. And I'm very happy that they learned the lesson very fast.
1: Sir, zimmedari aapki rahi desh ki raksha karne ki, aap is saal seva nivritt hue, lekin ek nayi seva vishwas ki raksha ki aapko di gayi hai, aur Ram Mandir ke CEO aap hain. क्या आपने तय किया है अपने आगे का रास्ता? क्या जिम्मेदारी आप देख रहे हैं, कैसे निभाएंगे उसको?
0: तो इस पे मैं सिर्फ 3 points आपको बताना चाहूंगा. पहला तो ये कि जो इनविटेशन था उसमें लिखा था सुरक्षा सभा है और टॉपिक सिंदूर है, तो पिंसर अटैक है ये,
1: सुरक्षा और सिंदूर वहां भी है।
0: दूसरा पॉइंट ये है कि जैसा कि आपको पता है कि इसकी अनाउंसमेंट 2 तारीख को हुई है और अभी मैंने ऑफिशियली टेक ओवर नहीं किया, मैं प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी मीटिंग्स करी हैं। सो यदि आप ये सवाल मुझसे 1 महीने के बाद पूछेंगी तो हो सकता है मैं थोड़ा अच्छा आंसर दे पाऊंगा, वरना स्पेकुलेटिव रेल्म में चला जाएगा वो, जो ठीक नहीं। और तीसरा, जैसे आपने कहा 2 शब्द कहें तो 2 की जगह मैं 3 शब्द कह सकता हूं उसके विषय में, और वो है जय श्री राम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए। एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से आपको।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बिल्डिंग हादसे में एक बड़ा एक्शन हुआ है। 5 एमसीडी के अधिकारियों को रेखा सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर शामिल है। सुबह ही सीएम रेखा गुप्ता ने बात कही थी कि जो दोषी होंगे एमसीडी के अधिकारियों या कोई भी अन्य अधिकारी, उनके खिलाफ कड़ा और सख्त एक्शन किया जाएगा और ये उन्होंने करके भी अब दिखा दिया है। एमसीडी के 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। सुशांत मेहरा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, किस तरीके से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हुई इस पूरे हादसे में और कैसे अब आगे भी कई कार्रवाई इसी तरह की हम देख सकते हैं?
1: देखिए नेहा, ये अभी शुरुआत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरीके से सत्य निकेतन में हादसा हुआ और उसमें कई बच्चों की जान गई है, उसको लेकर के कहीं पर भी कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी। और यही वजह है कि एमसीडी के जो जोन के डिप्टी कमिश्नर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सबकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आखिरकार जो ये बिल्डिंग थी और बनी बनाई बिल्डिंग में बेसमेंट का काम, रेनोवेशन का काम कैसे हो सकता था और पूरे इलाके में इस तरीके की जो बिल्डिंग चल रही है उस पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो होगी। और इसी वजह को लेकर के इन तमाम अधिकारियों को जो है वो सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। शाम 4 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल ने बैठक भी जो है वो बुलाई है जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री और तमाम एजेंसियां, चाहे वो एमसीडी, डीडीए और इसके अलावा दिल्ली पुलिस, क्योंकि इन सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरीके के कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर होते हैं अवैध, तो उन सब की जिम्मेदारी होती है। और मालवीय नगर हादसे में भी जिम्मेदारी जो है वो तय की गई थी, कई अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। और उसके बाद अब एक बार फिर से जिस तरीके से ये हादसा हुआ है उसके बाद सीएम एक बड़े एक्शन में जो है वो इस वक्त नजर आ रही है और हो सकता है इसके अलावा और भी कई अधिकारियों पर जो है वो गाज गिरे और हो सकता है कि आज देर शाम से और कल से दिल्ली के इन इलाकों के अंदर जो जहां पर अवैध रूप से बिल्डिंग चल रही है, अवैध रूप से पीजी चल रहे हैं, जहां पर बच्चों की जिंदगी से सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, उन पर सीलिंग की कार्रवाई भी जो है वो हो सकती है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत हादसे में 24 घंटे होने वाले हैं और इस हादसे में 5 मंजिला इमारत के मलबे से आज एक और शव निकाला गया है। सरा मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 12 लोगों को बचाया गया जिनमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू डॉग और कैमरे की सहायता से लोगों की तलाश की जा रही है। बिल्डिंग का मालिक हरी राम बंसल अब तक फरार है। दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इस तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। कई जगह दबिश दी जा रही है, उसका गुड़गांव स्थित आवास भी उनमें से एक है, उसके रिश्तेदारों के घर भी पुलिस तलाशी कर रही है। 10 टीमें बनाई गई हैं इसके लिए। साउथ कैंपस थाने में हरिराम के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है।

0: सर, ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है अभी भी, किस तरीके से आप लोग सर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कर रहे हैं और कैसे कदम उठाए जा रहे हैं?
1: तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए जॉइंट टीम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो पूरा इनको कोऑर्डिनेट करती है। तो अभी वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, फायर सर्विस की टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पैरामेडिक्स है, दिल्ली पुलिस है, कई एजेंसीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। टेक्निकल काम मेनली बेसिकली एनडीआरएफ और फायर सर्विस इसमें कर रहे हैं और सपोर्ट इनको पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा है। तो दो टीम एनडीआरएफ के अभी वहां पर काम कर रही है।
0: सर, कितने लोगों को अब तक बचाया जा चुका है और कितने लोगों की जान जो है हताहत हुई है इस पूरे बिल्डिंग कोलैप्स जो हुई थी दिल्ली में, और अब किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं?
1: तो साइट में अभी जो 5 लोग सर्वाइव किए जो हॉस्पिटल में एडमिट है, 6 लोगों को जिनको निकाला गया था वो डेड डिक्लेयर कर दिए गए। अभी जो एक रिसेंट इनपुट आया कि एक और आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई है जो कि अनकॉन्शियस है, तो उसको भी अभी निकालने का टीम प्रयास कर रही है।
0: सर, बाकी आप लोग किस तरीके से इक्विप्ड हैं वहां पर, क्योंकि एक कठिन ऑपरेशन है जो कि अभी भी चल रहा है, कैसे एनडीआरएफ जो है पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं?
1: तो ये टेक्निकल काम है, बेसिकली अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू या कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू का काम होता है। हमारी टीम इसके लिए ट्रेंड होती है, स्पेशल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं जिसमें ब्लीचिंग कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, कटर्स होते हैं, इसमें चेनसॉज होते हैं, डायमंड चेनसॉज होते हैं, कंक्रीट को काटना है या आयरन के जो रॉड्स हैं उनको काटना है अंदर विक्टिम तक पास जाने के लिए, या फिर शोरिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करना पड़ता है बिल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए। सर्च एंड डिटेक्शन इक्विपमेंट होते हैं, कैनाइन इक्विपमेंट होते हैं, इन सबका एक साथ उपयोग करके स्थिति पे क्या सही साबित हो सकता है उसको इस्तेमाल किया जाता है।
2: मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, आप तो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपने कई रिपोर्ट्स भेजी जिसमें सिमिलर तरीके के पीजीज हॉस्टल्स चलाए जा रहे थे जहां पर रूल्स की अनदेखी की जा रही थी, लेकिन अगर ये बात सिर्फ सत्य निकेतन के लिए लागू है ये तो दिल्ली के बहुत सारे इलाकों में हम देख लेते हैं। खान मार्केट मसलन चले जाइए, हौस खास चले जाइए, पहाड़गंज चले जाइए, वहां पर भी इसी तरह का तारों का एक मैश होता है, पतली गलियां होती हैं, कहीं आग लग जाए, बिल्डिंग गिर जाए, रेस्क्यू के कोई तरीके नहीं होते हैं। इसके लिए सरकार कितनी सख्त है या फिर जागरूक है?
3: हेलो क्वेश्चन,
2: मौसमी आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए।
3: ज़्यादा नहीं, यहीं से रहो ना आप, चलते रहो।
4: ये तस्वीर आपने देखी होगी हॉस्टल डेज की, जो कि जो महिला पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, वो यहाँ पे जो चल रहा है विमेंस वाला, बगल में ही बॉयज वाला था और ये गर्ल्स वाला पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। और यहाँ पे आप देखिए, हालांकि बाहर इस तरफ ताला पड़ा हुआ है, ठीक है, जरा ये देखिए ताला पड़ा हुआ है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर आप देखिए कपड़ा डाला हुआ है हॉस्टल डेज के अकोमोडेशन पे। लेकिन अगर भीतर जाके अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई यहाँ पे, एक सेकेंड आइए पवन अंदर आइए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में ये चल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी पॉपुलर था, काफी पोस्टर बैनर प्रमोशन इसके पूरे इलाके में है, और जो रेट था मुझे छात्रों ने बताया कि इसका रेट बाकी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये कितना संकरा है, ये हॉस्टल डेज गर्ल्स आप देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ की सुविधा बता रहे हैं, वही बिल्डिंग जो बगल में ढह गई है इसी तरह की सुविधा बता रहे होंगे, नंबर भी दिए हुए हैं जो फरार चल रहा है आरोपी यहाँ पे। और ये देखिए कि वाईफाई, लॉन्ड्री, एसी रूम, गीजर, हाउसकीपिंग, ये सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सीसीटीवी, चार बारी मील मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, वार्डन मिलेगा और पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन नाम के लिए ये बैनर है, सुविधा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे जीरो बटा सन्नाटा है यहाँ पे। और इसी तरीके के पूरा यहाँ पे अगल बगल में आपको बता दें कि पीजी अकोमोडेशन को लेके कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है, जबकि ये पता है कि हजारों छात्र और खास तौर से फर्स्ट ईयर के छात्र पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे बाहर इस तरीके से हॉस्टल डेज जो गर्ल्स वाला है, वहां पे ये तारों का जाल आप देख रहे हैं, उसकी बालकनी में हम लोग खड़े हुए हैं। बगल में वो बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है और यहाँ पे ये कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये छुपाया गया है। ये है हॉस्टल डेज, हॉस्टल डेज का ज्वाइन द डेज। और यहाँ जगह जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर है। इसी तरीके का चार मंजिला जो बिल्डिंग का टावर है वो भी गाइडलाइंस को पूरे खुला खेल का फरुखाबादी यहाँ पे चल रहा है, गाइडलाइंस को वायलेट करता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना पाछने वाला है यहाँ पे।
2: अंशुल सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, क्या किसी तरह का कोई रिकॉर्ड मौजूद है जिससे पता लग सके कि अब तक इतने मृत हैं, इतने घायल हैं और इतने अभी भी मलबे में दबे हुए हैं?
5: जी, अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है उसके अनुसार 7 लोग जो हैं उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है, 12 लोगों को निकाल लिया गया है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये पूरे जोर शोर से चल रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरें अपने पीछे दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मलबा था वो मलबा ज्यादातर खाली कर दिया है, लेकिन अभी भी मलबा जो है वो बेसमेंट में है और बेसमेंट से मलबा खाली करना काफी ज्यादा समय ले रहा है। और ये आशंका है यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ये आशंका है कि हो सकता है 1 से 2 लोग और हो सकते हैं जो अभी मलबे के नीचे दबे हो। तो अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है और जो ऑफिसर है, सीनियर आला अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आके मुआयना कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रीन कॉरिडोर जो है वो कॉन्टीन्यूसली बना के रखे, आसपास का जो पेरीमीटर है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो आखिरी स्टेज है बस ये मलबा हटाने का, इसमें कितना और समय लगता है और किस तरीके से ये मलबा हटता है। और इसके अलावा मैं आपको अगर आसपास की तस्वीरें दिखाऊं तो आपको फिर से ये देखकर डर लगेगा कि क्योंकि यहाँ पर अभी भी कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे ये बिल्डिंग गिरी उसके आसपास ही कई ऐसी बिल्डिंग्स अभी भी हैं जो बिल्कुल झरझर हालत में है, किसी भी दिन गिर सकती है। और इनमें भी बच्चे रह रहे हैं, पीजीज में रह रहे हैं, फैमिलीज में कुछ रह रही हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि किस तरीके से ये जो बिल्डिंग है एकदम ही बुरी हालत में है और ये बिल्कुल उसी बिल्डिंग के साथ में ही एक बिल्डिंग छोड़ के ये वाली बिल्डिंग की भी यही हालत है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो प्रशासन है, MCD है, कितनी लापरवाही दिखाता है और किस तरीके से जो बिल्डिंग्स है जिनकी हालत खराब भी हो गई है उनके खिलाफ।
2: लौटूंगी मैं आपके पास। मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, MCD के 5 अधिकारी तो सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन क्या सिर्फ ये एक्शन करने से, ये त्वरित कार्रवाई करने से इस तरह के हादसे दिल्ली NCR में रुक जाएंगे?
3: अरे मेरे भाई,
4: ये तो भद्दा मजाक है। मतलब 5 अधिकारियों के सस्पेंड होने से क्या होगा? मतलब एक पूरी कॉलोनी है, अगर एक कॉलोनी को ही हम उदाहरण मान लें तो पूरे माइन पर बिछी हुई है। मतलब यहाँ पे हर एक बिल्डिंग को छोड़ के दूसरी बिल्डिंग सारे नॉर्म्स तार तार कर रही है। हम जिस गली में खड़े हैं, ज्यादा भीतर आएंगे तो यहाँ नेटवर्क ही गायब हो जाएगा। आप देखिए कि ये रास्ता कितना संकरा है, पूरा अंदर जाता है और अंदर से फिर दाईं तरफ जाइए तो पूरे मकान पे मकान है, यानी कि 2-4 दर्जन मकान इस रास्ते के जरिए होके जाते हैं। ऊपर एयर कंडीशनर से लेके सारी जो चीजें हैं वो टंगी हुई है, तार हैं, पाइपलाइंस हैं और इस संकरे रास्ते के जरिए आप दूसरे मकानों तक पहुंचते हैं। और इन दोनों बिल्डिंग्स के पीछे बीच में आप डिस्टेंस देख लीजिए तो इतना डिस्टेंस इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में है, बिल्डिंग पूरी 5 मंजिला इमारत है। तो अपने आप में यहाँ पे तो हर नूक एंड कॉर्नर पे या हर चौकट चौराहे पर धज्जियों को तार तार किया जा रहा है और ये अभी से तो किया नहीं जा रहा है, ये साल दर साल चला आ रहा है। अगर नए फायर सेफ्टी नॉर्म्स ही ले लीजिए, उनको लागू करना हुआ तो यहाँ से फायर ब्रिगेड कैसे जाएगी, कैसे कोई एम्बुलेंस जाएगी? आप देखिए पूरी तरीके से ये उसी माइनफील्ड पर बिछा हुआ है। सत्य निकेतन हो या इस तरह के तमाम ऐसे इलाके हैं, मोती अली बाग से लेके जहाँ पे छात्र रह रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि दूर नहीं है, यहाँ से आपको एम्बुलेंस की पूरी बैटरी नजर आ जाएगी, सारे तारे बिछे हुए हैं। सर आप ऊपर कर लीजिए थोड़ी हाइट में, अगर यहाँ कुछ ठेला ठिलिया आ जाए तो यहाँ पे आप देखिए कितने तार हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे एक बहुत बड़ी मुहिम और बहुत वॉर फुटिंग पे एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। कोई पीजी अकोमोडेशंस की गाइडलाइन नहीं है, सब लोग मनमाने ढंग से बच्चों से पैसे ऐंठ रहे हैं, और यहाँ पे सब दुगदुगी बंधी हुई है कि कब किसका नाम आ जाए, किसकी के कौन बाहर आए, उसको लेकर भी काफी ज्यादा यहाँ पे एक तरीके से पूरा सदमा लगा हुआ है लोगों को। सब छात्र जो हैं अपनी बालकनियों में बैठे हुए हैं, कमरों में बंद हैं, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस जो हैं आज वेंकटेश्वर कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है, तमाम छात्रों को यहाँ से कॉलेज ले जाया गया है, कई लोग हॉस्टल में रुके हैं, जो बिल्डिंग खाली कराई गई है। तो एक तरीके से काफी ये हृदय विदारक घटना है। उसके अलावा प्रशासन की जवाबदेही, 5 अधिकारियों के सस्पेंशन से मामला काम नहीं बनेगा। आप देखिए कौन इस अंधेरे में जाएगा, वो जा रही है माता जी अपने बच्चे के साथ, नजर भी नहीं आ रही है। क्या कहना चाहेंगी माता जी?
6: खराब है, पूरे गांव में चेक होना चाहिए ना, इंक्वायरी तो होनी चाहिए ना पूरे गांव के अंदर।
7: ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच तमाम तरह के एक्शन दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, और वादा भी ये किया जा रहा है कि आगे इस तरह के हादसे नहीं होंगे। वक्त एक ब्रेक का उछला, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर किधर,
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
8: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
9: इन एसोसिएशन विद
10: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: ये मार्केट को पता कैसे लग जाता है सर कुछ बड़ा होने वाला है?
6: देखिए तेजी में सबको सब चीज पे भरोसा होता है, मंदी में सब सवाल उठते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो बफेट साहब ने भी बोला ना, बी ग्रीडी में अदर्स आर फियरफुल। क्या होता है कि जब भी जैसे अभी हम लोग वी आर लिविंग थ्रू दिस ना, कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, वॉर चल रहा है, यू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होएगा, ये सब चिंता हो रही है लोगों को।
5: डोनाल्ड ट्रंप
6: साहब है, जियो पॉलिटिक्स है, वॉर है, ये चिंता हो रही है। पिछले 27 साल से मैं वो मार्केट में 6 बार हो चुका है, तो मैंने क्या देखा है कि जितना नंबर चेंज नहीं होता ना, उतना लोगों का मूड चेंज हो जाता है। तो आज के जमाने में वैल्यू की डेफिनेशन ही ये है, मिसप्राइज्ड ग्रोथ।
7: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
8: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
9: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
8: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
10: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा।
11: इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
10: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल आज तक।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
13: दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में बड़ा एक्शन, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफसर सस्पेंड, सीएम रेखा गुप्ता का दावा, नहीं बचेगा एक भी गुनेगार, न्यायिक जांच के आदेश। बिल्डिंग हादसे में अब तक 7 की मौत, पीजी मालिक की तलाश में पुलिस की 10 टीमें, जारी हुआ लुकआउट नोटिस, एलजी ने बुलाई सीएम रेखा गुप्ता समेत डीडी एमसीडी की मीटिंग। महाराष्ट्र में हो रहे पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर हजारों छात्र निकले सड़क पर, पुणे में एमपीएससी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग, जवाबदेही तय करने के लिए जोरदार प्रदर्शन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर दिनेश आसरी की पश्चिम बंगाल में हिंदुओं से अपील, नवरात्र में मांस मच्छी का करें बहिष्कार, नवदुर्गा में नॉनवेज खाने वाले पाखंडी, अब जाग जाएं पत्ता पत्ता वाला हिंदू। आज तक पर जल नभ थल के धुरंधर सीडीएस एनएस सुब्रमणी ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, शाम 7 बजे रक्षा मंत्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात।

नमस्कार, रिमाइज खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बात को सभी मान चुके हैं कि बिहार में बाढ़ की आफत आ चुकी है, साथ ही राजस्थान और मध्यप्रदेश में भी बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, गंडक, कोसी जैसी नदियां उफान पर हैं। सबसे ज्यादा बुरे हाल दक्षिणी बिहार के हैं, यानी वो क्षेत्र जो गंगा जी के दक्षिण में पड़ते हैं। वहां पुनपुन नदी उधम मचाए हुए है। वहीं राजस्थान में भारी बारिश के बाद पार्वती नदी उफान पर है, उसमें 6600 क्यूसेक पानी और छोड़ा गया है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। शुरुआत करेंगे बिहार से, जहां पर पिछले एक दशक की सबसे बड़ी बाढ़ से इस वक्त बिहार जूझ रहा है। राजधानी पटना से लेकर बिहार के उत्तरी और दक्षिणी जिले बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। भागलपुर, सारण, वैशाली, बेगूसराय, हर जगह गंगा और उसकी सहायक नदियां कहर बरपा रही हैं।

0: बिहार बाढ़ की चपेट में है। बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियां कहर ढा रही हैं। राज्य के 12 जिले इसमें पानी पानी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लगभग 22 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा है। बिहार में बाढ़ की भयावहता को समझना है तो ऐसे समझिए कि गंगा नदी के दक्षिण में बसे जिले डूब रहे हैं। दक्षिणी बिहार में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पुनपुन, गंगा, सोन, क्यूल नदी ने गांव के गांव डुबा दिए हैं। गंगा के दक्षिण जिले जिसमें पटना, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर, जहानाबाद, औरंगाबाद बाढ़ से त्राही त्राही कर रहे हैं। ये तस्वीरें पटना के दानापुर की हैं, जहां पूरा इलाका गंगा की सहायक नदी पुनपुन के आगोश में समा चुका है। क्या गलियां, क्या सड़कें, लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर चुका है।
1: ये पूरा इलाका देखिए, पूरी तरह से जो है पुनपुन नदी से सटा हुआ निचला इलाका है। पुनपुन बाजार का जहां रौनक हुआ करती थी, वहां अब जो है पानी ही पानी है और पूरा इलाका देखिए पूरी तरह से जो है डूब चुका है। जो दुकानदार हैं यहां पे, वो जैसे तैसे यहां पे दुकान चला रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी दिक्कतें हो रही है बताइएगा, कितनी दिक्कतें हो रही है?
2: बहुत ज्यादा दिक्कत है।
1: कितने साल बाद इस तरीके से पानी आया है?
2: ये 2019 में आया था सर। हाँ। 2019 के बाद फिर अभी आया है। हाँ। और बहुत ज्यादा दिक्कत है और गंदगी जैसा पानी नली से निकल रहा है तो गंदगी भी है इसमें।
0: खतरे के निशान के ऊपर बह रही पुनपुन नदी का रौद्र रूप सिर्फ इलाकों तक ही सीमित नहीं रहा। पानी का बढ़ा जलस्तर नदी के ऊपर बने रेलवे ब्रिज तक पहुंच चुका है, जिसके चलते पुल पर ट्रेन की आवाजाही भी प्रभावित हुई और पटना गया रेलवे लाइन पर ट्रेनों की स्पीड धीमी हो गई है।
1: अभी हम मौजूद है पटना से सटे पुनपुन नदी के किनारे और देखिए ये रेलवे ब्रिज जो है पूरी तरह से पानी को छू रहा है और ये जो ट्रेन जो है दूसरे लाइन पे चल रही है। यानी यहाँ पे दो ब्रिज बने हुए, इस ब्रिज में जो इस ब्रिज पर पानी टच नहीं कर रहा, यानी छू नहीं रहा ये पुनपुन नदी का पानी, उस ब्रिज पर चल रही है और इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और कई ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई है, जिसके कारण यहाँ जो है पटना से गया जाने वाले लोगों को और गया से पटना जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
0: बाढ़ ने सिर्फ रेलवे लाइन ही नहीं, हाईवे पर भी आवाजाही को प्रभावित किया है। भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 पर गंगा का पानी चढ़ गया है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर का नेशनल हाईवे पूरी तरह से गंगा के आगोश में है।
3: बिहार में गंगा नदी लगातार उफनाई हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर में और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये नेशनल हाईवे नंबर 80 है जो बिहार को आगे झारखंड और पश्चिम बंगाल से जोड़ता है। और आप देखिए, बताया जा रहा है कि पिछले रात से ही इस नेशनल हाईवे पे भी जो है वो गंगा का पानी चढ़ चुका है और तकरीबन इस वक्त जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो तकरीबन 1 फीट के आसपास जो है ये पानी नेशनल हाईवे पे चढ़ चुका है और चारों तरफ इधर आप देखिए किस तरीके से हाईवे के हालात हो गए हैं। हालांकि अभी भी लोग इस सड़क मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि अभी भी पानी तो बढ़ना शुरू हुआ है और अगले 24-48 घंटे में जो हाईवे पे पानी है वो और ज़्यादा उसका जलस्तर बढ़ेगा।
0: बिहार सरकार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि इस बार गंगा में अप्रत्याशित बाढ़ आई है। बिहार में गंगा की बाढ़ ने इस बार 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2016 में पटना में गंगा का जलस्तर 50.52 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार 50.58 मीटर तक गंगा का जलस्तर पहुंच गया है।
4: इस बार गंगा में आज तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ के पानी आया है। आज से पहले 2016 में पटना में जो वहाँ घाट है जहाँ पर पानी का लेवल 50.52 मीटर अभी तक का उच्चतम रिकॉर्ड था, इस बार अभी तक 50.58 मीटर हो गया, मैंने अभी तक का रिकॉर्ड टूट गया है, इतना पानी आया है।
0: बात अगर गंगा के उत्तर में बसे बिहार के जिलों की करें तो वैशाली, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तरी बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती नदियां उफान पर हैं। इन नदियों में नेपाल का पानी भी आता है। पटना का दियारा क्षेत्र यानी उत्तरी इलाका जो वैशाली जिले में पड़ता है वो डूब चुका है। तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र राघोपुर भी इसी दियारा से सटा हुआ है।
5: ये पटना दियारा से सटा राघोपुर का इलाका है जहां हम पहुंचे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र भी है। आप देखिए तस्वीर, किस तरह से तमाम घर इस राघोपुर में डूबे हुए हैं और लोग जुगाड़ की नाव के सहारे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जहां तक नजर जाती है जो हजारों की आबादी इस राघोपुर क्षेत्र में है वो इस वक्त गंगा नदी के पानी के अंदर है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी है और इसी वजह से लोग अपने घरों को छोड़ करके जो उसको जोड़ने वाले यानी राघोपुर को जोड़ने वाली जो कनेक्टिंग सड़क है अप्रोच रोड राघोपुर बिदुपुर फोर लेन से वहां पर आकर के अपने मवेशियों के साथ ठिकाना बना करके रह रहे हैं।
0: बिहार में नदियों का जलस्तर घटने का नाम नहीं ले रहा, पानी लगातार बढ़ रहा है। गंगा की दक्षिणी सहायक नदी पुनपुन में भी तेजी से पानी बढ़ रहा है और यही पानी बिहार के लिए आफत बना हुआ है। रोहित सिंह के साथ शशि भूषण, पटना आज तक।
6: और अब आपको लिए चलते हैं भागलपुर, सीधे ग्राउंड जीरो पर। भागलपुर में गंगा से सटे इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी घुस चुका है, घर बार सब डूब गए हैं, जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों का रुख कर रहे हैं।
3: भागलपुर के भवनाथपुर गांव में हम मौजूद हैं, सुल्तानगंज प्रखंड में पड़ता है और देखिए जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, कमर भर से ऊपर पानी आ रहा है, आगे छाती भर पानी है और ये गंगा नदी की रफ्तार आप देखिए किस तरीके से नदी का पानी एक तरफ से दूसरे तरफ जो है इस ग्रामीण सड़क से होते हुए गुजर रहा है और चारों तरफ आपको केवल और केवल गंगा का पानी ही नज़र आएगा और परिस्थितियाँ कितनी विकट हैं ये साफ तौर पर देख सकते हैं। हम इस तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर आप देखिए झोपड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से कह सकते हैं जल समाधि ले चुकी हैं, कई झोपड़ियाँ यहाँ पूरी तरीके से जो है वो डूबी हुई हैं और पीछे भी आप तस्वीर देखिए, ये झोपड़ी देखिए आप, ये झोपड़ी किस तरीके से पूरा डूबा हुआ है और यही हालात जो है वो इस इलाके में कई दिनों से बने हुए हैं और ख़ासकर पिछले 24 घंटे में लगातार गंगा का पानी जो है उसका स्तर बढ़ता जा रहा है इस इलाके में, जिसकी वजह से जहां पर मैं खड़ा हूं वहां भी आप समझ लीजिए कमर भर से ऊपर पानी जो है वो है, चलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि गंगा की धार में रफ्तार इतनी है। कुछ स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका?
7: जी केशव कुमार क्रांति।
3: केशव ये बताइए इतना पानी है कैसे आप लोग यहाँ पर मतलब रह रहे हैं इस परिस्थितियों में?
7: किसी तरह रह लेते हैं, क्या करेंगे, मजबूरी है और कुछ लोग तो यहाँ से आवागमन कर चुके हैं दूसरे जगह के लिए,
3: पलायन कर चुके हैं।
7: जी, जी जी।
3: अच्छा तो देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात जो हैं ये इस वक्त बने हुए हैं और तस्वीरों के जरिए ही हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कई घर यहाँ पर पूरी तरीके से, ये आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है वो डूबा हुआ है। फिलहाल बिहार में बाढ़ ने ज़बरदस्त तांडव मचाया है और तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा की आबादी अभी तक बाढ़ को लेकर प्रभावित है। रोहित सिंह, गांव भवनाथपुर, भागलपुर, आज तक।
6: और अब बात मुंगेर की करेंगे, ये भी बाढ़ की चपेट में इस वक्त है, वहां पर पानी घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ रहा है। रोहित सिंह की ये ग्राउंड रिपोर्ट वहीं से देखिए।
3: मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड अंतर्गत बुचाही गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं ये एक स्थानीय स्कूल है यहाँ का, स्कूल में भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है और लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी तरीके से अब ये जुगाड़ की नाव के सहारे आप देख सकते हैं किस तरीके से खाने पीने की चीज़ मवेशी सब को लेकर जो है वो स्कूल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षित स्थान पर जाना अभी बेहद ज़रूरी है क्योंकि पूरे इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और चारों तरफ केवल और केवल गंगा का पानी नज़र आ रहा है और आप ये देखें कितने विकट परिस्थितियों में, आप ये देखें ये परिवार जो है वो अपना घर छोड़कर स्कूल के तरफ जा रहा है ताकि जो भी यहाँ पर उनका मवेशी है, खाने पीने की जो बचा खुचा है उसको सुरक्षित स्थान तक पहुँचाया जा सके। एक मिनट, ये आप लोग के गांव में पानी कब से आया हुआ है?
8: पानी तो कम से कम आज एक हफ्ता से है सर पानी।
3: एक आध हफ्ता से पानी है।
8: पानी कुछ पहले कम था लेकिन अब ज्यादा हो गया।
3: क्या नाम हुआ आपका?
8: अजय पासवान।
3: अजय पासवान, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पूरा ये स्कूल पर जा रहे हैं। ये देखिए जुगाड़ से जो है ड्रम का इस्तेमाल करके, तीन ड्रम को जोड़ जाड़ के किसी तरीके से ये जुगाड़ की नाव बनाया गया है। कोई सरकारी मदद कुछ नहीं मिला है?
8: कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं।
3: कोई पूछने आया है? कोई
8: पूछने? कोई नहीं,
3: कोई अधिकारी, कोई भी लोकल आदमी, कोई नहीं
8: अभी तक। कोई कहीं कुछ नहीं है।
3: तो देखिए किस तरीके से ये अजय पासवान, आपका नाम हुआ?
8: हाँ सर।
3: अजय पासवान, उनकी पत्नी, बच्चे, आप देख सकते हैं किस विकट परिस्थितियों में जो है वो सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि क्या हालात इस वक्त मुंगेर ज़िले में भी हैं बाढ़ से, जहां पर चारों तरफ आप देख सकते हैं पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। और इस हालात में एक गरीब परिवार जिसके घर में पूरा पानी घुस गया है, वो अपनी जान बचाने के लिए, मवेशियों की जान बचाने के लिए किसी तरीके से इस इलाके के स्कूल तक पहुंचना चाह रहा है ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो बचे किसी तरीके से। सहयोगी

0: तरीके से पानी में डूब चुका है। वहीं पटना सिटी के गुरुद्वारा रोड पर बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। इसके अलावा राघोपुर में बाढ़ से हालत बिगड़ गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं।
1: बिहार में गंगा नदी लगातार उफान पे है और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि आखिर बाढ़ की स्थिति क्या है अलग अलग जिलों में, लेकिन राजधानी पटना में गंगा किनारे का क्या हाल है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, ये पटना यूनिवर्सिटी घाट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और पटना यूनिवर्सिटी घाट बिल्कुल डूब चुका है और हालात ऐसे बन पड़े हैं जहाँ पटना विश्वविद्यालय का जो कैंपस है उस कैंपस के आसपास पानी इतना ऊपर पहुंच चुका है कि अगर बमुश्किल 6 इंच पानी और बढ़ता है तो आप समझिए कि अंदर कैंपस के पानी चला जाएगा। और यही सूरत नजर आती है, दूर तक अगर आप देखिए जो पीएमसीएच है वो दिख रहा है कैमरे की नजर में, उसके सामने भी घाट डूब चुका है, तमाम वो मंडप डूब चुके हैं जहां पर घाटों के किनारे आरती और बाकी पूजा पाठ का आयोजन होता रहा। और गंगा पथ, जेपी गंगा पथ जहां से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसके दूसरे तरफ की अगर बात करें तो दियारा का इलाका पूरी तरह डूब चुका है। तो हजारों की आबादी प्रभावित हुई है जिस तरह से गंगा में उफान आने के साथ। और जेपी गंगा पथ से हम ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं जहां पर एक तरफ पटना का किनारा गंगा घाट डूब चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ दियारा के अंदर लोग लगातार विस्थापित हो रहे हैं, लोग वहां से निकल करके सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। सरकार भी इस प्रयास में लगी हुई है। 2016 के बाद जो गंगा का जलस्तर है वो सबसे उच्चतम स्तर पे गया है।
0: और बात मध्यप्रदेश के श्योपुर की करेंगे। यहां पर अचानक क्वारी नदी में उफान आ गया है। पिछले कुछ दिन में मध्यप्रदेश में जबरदस्त बारिश हुई जिसकी वजह से छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ गई है। श्योपुर के विजयपुर में भी बाढ़ से मुसीबत बढ़ गई है।

0: ये मध्य प्रदेश का जिला श्योपुर है, लेकिन फिलहाल इसे जलपुर कहिए। दूर दूर तक जहां तक नजर जाएगी पानी का विकराल रूप दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बरसात के बाद कई छोटी छोटी नदियां उफान पर हैं। उन्हीं में से एक है क्वारी नदी। श्योपुर की क्वारी नदी इन दिनों खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नदी के रास्ते में जो भी आया जलमग्न हो गया। क्वारी नदी का पानी रिहायशी इलाकों और बाजारों को समेटता हुआ तेजी से बह रहा है। विजयपुर आगरा रोड पर बना पुल भी पूरी तरह से नदी में समा गया है। पुल बंद होने से करीब 20 गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। यहां पहले सब्जी मंडी हुआ करती थी, लेकिन क्वारी नदी के पानी ने सब्जी मंडी का नामोनिशान मिटा दिया। अब सिर्फ कुछ टीन टप्पर बचे हैं। अचानक नदी में पानी बढ़ने से व्यापारियों की सब्जियां और अन्य सामग्रियां बह गई। लगातार बारिश के चलते श्योपुर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और उफनते नदी नालों को पार नहीं करने की अपील की जा रही है। इधर श्योपुर शहर की सीप नदी पर बना बंजारा डैम भी ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिसके चलते शहर की निचली बस्तियों में जल भराव का खतरा मंडराने लगा है। आपदा डैम में भी क्षमता से अधिक पानी जमा हो गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। आज तक ब्यूरो।
1: रुकेंगे यहाँ शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
5: एयू
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: ऐसा भयानक हादसा जिसने दिल्ली को दहला दिया। जैसे ही खबर आई कि सत्यनिकेतन में एक ऐसी इमारत जमींदोज हो गई है जिसमें छात्र रहा करते थे, तो पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। गृह मंत्री अमित शाह गोवा में थे, वो बीजेपी के नए ऑफिस इनॉग्रेशन सेरेमनी में थे, लेकिन जैसे ही उन्हें हादसे की जानकारी हुई उन्होंने अपना कार्यक्रम रोक दिया। अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया है। घटना बड़ी थी और तकलीफी हादसे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दुख जताया और हादसे वाली जगह पहुंची। एमसीडी के मेयर भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी हालातों का जायजा लिया है। अब इस हादसे पर विपक्ष हमलावर है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली में सरकार की लापरवाही के कारण अब तक कई हादसे हो चुके हैं, सरकार को नींद से जागना होगा, बड़े स्तर पर एक्शन लेकर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के भ्रष्टाचार का नतीजा है।
1: देखिए, मेरे को जो आसपास के रहने वाले लोगों ने बताया है कि पीजी के अंदर करीब 30 से 40 नौजवान बच्चे फंसे हुए हैं इस मलबे में, और आज से कुछ समय पहले की बात है जब साकेत सैजुला जाब में 4 मंजिल की इमारत गिरी तो कहा गया कि हम दिल्ली की सब बिल्डिंगों की ऑडिट कराएंगे, जो पैसा नहीं देता उसकी बिल्डिंग को सील कर देते हैं, पैसे की मांडवाली होती है, एक हफ्ते बाद बिल्डिंग को डी सील कर दिया जाता है। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी रेखा गुप्ता कहेंगी हम बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, आशीष सूद अलग कहेंगे हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, और क्या करेंगे बता देता हूं। एक जेई को सस्पेंड करेंगे और एक एई को सस्पेंड करेंगे और 15 दिन बाद उनको चुपचाप बहाल भी कर देंगे।
0: कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है कि आखिर देश में छात्र सुरक्षित क्यों नहीं है।
2: जी चल रहे ये बिल्कुल कोई इनकी कोई वो कोई किसी तरह का मापदंड नहीं है। एमसीडी क्या कर रही है, एनडीएमसी क्या कर रही है, यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं, अथॉरिटीज क्या कब तक जवाब नहीं देंगी। सारी अभी भी आप चेक कर लो, ये आसपास पीजी हैं सारी, आप चेक कर लो। उस टाइम भी हमने मैं भी गया था वहाँ आप लोगों के सामने, हमने सबने कहा था कि इनको चेक कराओ, इनको कहीं ना कहीं इनकी कोई नॉर्म्स तो हो, स्टूडेंट कब तक बर्दाश्त करेंगे और कब तक अथॉरिटीज जवाब नहीं देंगी। ये मैं समझता हूँ कि आज हम सबके लिए बहुत ही दुख का टाइम है।
0: सियासत अपनी जगह है, मगर ये भी सच है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बदले, सरकार बदली, लेकिन हालात नहीं बदल पाए हैं। इसे हादसा कह देना, लेकिन ये लापरवाही सीधे सीधे मौत को आमंत्रण देने वाली जैसी है। सवाल ये है कि ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। दिल्ली से अंशुल सिंह, अरविंद होजा और अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो।

0: दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जब सर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो यहाँ की बिल्डिंगों को आपको एक बार दिखा देते हैं। आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरीके से यहाँ पर जहाँ इजाजत है 3 से 4 फ्लोर की 5-5 फ्लोर इमारतें बनी हुई हैं, जिसमें ये सामने जो बिल्डिंग है इसको अभी जो है यहाँ पर पीजी भी चलाया जा रहा है, इसको ढक दिया गया है कल रात से। इसमें आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस तरीके का नियमों का उल्लंघन हो रहा है। प्रवेश वाही जी, आप आज तक के दर्शकों को किस तरीके से बताएंगे कि ये सिचुएशन ना पैदा हो जो कि यहाँ पर बच्चे फंसे हैं और उनको उनकी जान गई है, क्या स्टेटस है और किस तरीके से अभी ऑपरेशन चल रहा है?
1: देखिए, ये कॉलोनी लगभग 40-50 वर्ष पुरानी है और पहले से ये मकान बने हुए हैं और 2007 से पहले जो मकान है उस पर उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई ना करने के आदेश थे। उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं उनमें लोगों ने, कुछ लोगों ने किराए पे मकान दिए हुए हैं। किराए पे मकान देना कोई अपराध नहीं है, ये पहले से एक प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन क्योंकि ये बच्चों को किराए पे देने से पहले सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी ने और हमने आदेश दिए हैं कि जो भी बिल्डिंग कोई व्यक्ति किराए पे देगा रेजिडेंशियल के रूप में भी, वो अपना स्ट्रक्चरल जो है अप्रूवल वो अधिकारियों से लेगा, दिल्ली नगर निगम के जो इंजीनियर्स हैं उनसे लेगा, तभी वो किराए पे दे सकता है, क्योंकि उसको किसी भी जान माल से खेलने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे में बड़ा एक्शन, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारी सस्पेंड, सीएम रेखा गुप्ता का दावा नहीं बचेगा एक भी गुनहगार, न्यायिक जांच के आदेश। बिल्डिंग हादसे में अब तक 7 की मौत, पीजी मालिक की तलाश में पुलिस की 10 टीमें, जारी हुआ लुकआउट नोटिस, एलजी ने बुलाई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत डीडीए एमसीडी की मीटिंग। महाराष्ट्र में हो रहे पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर हजारों छात्र सड़क पर निकले, पुणे में एमपीएससी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग, जवाबदेही तय करने पर जोरदार प्रदर्शन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पश्चिम बंगाल में हिंदुओं से अपील, नवरात्र में मांस मच्छी का करें बहिष्कार, नव दुर्गा में नॉनवेज खाने वाले पाखंडी, अब जाग जाए पत्ता पत्ता वाला हिंदू। आज तक पर जल थल नभ के धुरंधर सीडीएस एन एस सुब्रमण्यन ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, शाम 7 बजे रक्षा मंत्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात।

0: घोंडियाल, दोपहर के 2 बज गए और आज हम बात करेंगे दिल्ली सत्य निकेतन हादसे की। मकान गिरा और इसमें अभी तक 7 लोगों की जिंदगी जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय भी जारी है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है, एक एक्शन हुआ है। दिल्ली सरकार ने 5 अधिकारियों पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले ही कह दिया था कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अभी तक 5 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जिसका ये मकान था, मकान मालिक हरिराम बंसल, वो अभी फरार चल रहा है। पुलिस की टीमें बनाई गई हैं जो हरिराम बंसल को ढूंढ रहे हैं। अब बड़ी खबर इस बीच में आपको ये देते हैं कि एक्शन हुआ है, दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया है। अभी 5 अधिकारियों पर गाज गिरी है, ये कार्रवाई हुई है। इसमें कौन कौन है? इसमें एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर इस समय सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो 5 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही 5 अधिकारी तक सीमित रहेगी कार्रवाई, या इससे आगे भी बढ़ेगी? पांच अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई और इस एक्शन के बाद, इस कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं।
1: जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी, उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है। नहीं तो उनको कोई अधिकार नहीं है कि वो पब्लिक यूटिलिटी की कोई भी सर्विसेज वहां शुरू करे, चाहे वो पीजी हो, नर्सिंग होम हो, स्कूल हो, कोई भी एक्टिविटी हो, वो पब्लिक डोमेन की कोई एक्टिविटी उस बिल्डिंग में बिल्कुल शुरू नहीं कर सकते। इस पे सख्त नियम लाया जाएगा और जितने भी अधिकारी इस क्षेत्र के जिनकी अनदेखी के कारण ये सारी दुर्घटना हुई है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको भी तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आपने सुना कि अभी और भी कार्रवाइयां होंगी। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुशांत, जिन 5 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, इनकी भूमिका के बारे में तो आप बताएं, लेकिन साथ साथ में क्या और एक्शन अभी संभव है और है किस किस पर हो सकता है? और
2: देखिए राजीव, जिस तरीके से कल लगभग 1 बजे के आसपास ये घटना हुई थी, उसके महज 24 घंटे बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत इस पर एक्शन जो है वो लिया है, क्योंकि जिम्मेदारी सबसे बड़ी जो है वो एमसीडी की है, एमसीडी के जेई की, एई की, असिस्टेंट इंजीनियर की और इलाके के जो जोन के डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनकी एक जिम्मेदारी होती है। यही वजह है जिसको लेकर के 5 अधिकारियों को जो है वो तुरंत तत्काल प्रभाव के साथ जो है इस पूरे मामले में जो है वो जिम्मेदार ठहराते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में इस वक्त दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर मीटिंग जो है वो कर रही है। 4 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री और तमाम एजेंसियों की एक और अहम बैठक जो है वो होनी है। लगभग ये बैठक जो है वो लगभग 4:30 बजे के आसपास जो है वो शुरू होगी। इस बैठक के बाद कई और बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि स्ट्रक्चर ऑडिट जो है वो पूरे इन इलाकों के अंदर होगा। दिल्ली में अगर इस तरीके से अवैध बिल्डिंग या अवैध तरीके से पीजी चल रहे हैं तो उन पर अब एक्शन का जो है वक्त जो है वो आ गया है और मुख्यमंत्री मामले पर जबरदस्त एक्शन जो है वो
0: ये एक्शन तो हुआ है, लेकिन फिर एक सवाल है कि हर बार हादसे होते हैं, हर बार इस तरह की सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, फिर से बहाल हो जाते हैं। लेकिन इस बीच में दिल्ली पुलिस की टीमें हरिराम बंसल को ढूंढ रही है। हरिराम बंसल जो कि इस मकान का मालिक था, वो इस हादसे के बाद से ही फरार है। इस हादसे के बाद से उसे ढूंढा जा रहा है। 7 लोगों की जान चले गए, 13 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया, इसमें 7 को बचाया नहीं जा सका, 7 लोगों की मौत हुई और हरिराम बंसल वो इस समय फरार है। हरिराम बंसल जो कि कारोबारी बताया जा रहा है, मलबे से शवों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन अब 10 टीमें बनाकर अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में हरिराम बंसल को ढूंढा जा रहा है और आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। 13 लोगों को कुल रेस्क्यू किया गया है। हमारे संवाददाता अंशुल इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। अंशुल, हरिराम पवार कहां है? क्या उसके परिवार का कोई भी सदस्य सामने आकर कुछ भी नहीं बता रहा है? पुलिस की 10 टीमें बनाई है, किस किस स्टेट में हरिराम बंसल को ढूंढा जा रहा है?
3: जी, कल शाम से ही अगर देखें तो जब से ये खबर सामने आई कि हरिराम बंसल जो है वो ओनर है इस हॉस्टल डेज हॉस्टल के, तब से ही उनकी पुलिस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। आज सुबह हमें ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंचती है जहां उनके बेटे मिलते हैं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी थी ये पूरी प्रॉपर्टी हरिराम बंसल के नाम पर ही है और अब उनके लिए अलग अलग टीमें बना करके सर्च की जा रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि ऐसा उन्हें शक है कि हरिराम बंसल अपने किसी रिश्तेदार के घर पे जाके रह रहे हैं, और इसलिए दिल्ली पुलिस की जो 7 से 8 टीमें हैं वो टीमें अब देश के अलग अलग शहरों में उनके रिश्तेदारों के घर पे जाके उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। इन शहर में हरियाणा की कुछ जगह है, राजस्थान की कुछ जगह है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की भी कुछ जगह है, तो अब इन हर जगह पे दिल्ली पुलिस की टीम जा रही है और इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है।
0: अंशुल ठीक है, नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास में हम लौटेंगे। लेकिन अपराध का भागी किसी को बनना नहीं चाहिए। जो इस समय इस अपराधी की मदद कर रहे हैं वो इस समय भागा भागा फिर रहे हैं, उसको पुलिस ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आपको दे दें, आज उपराज्यपाल ने एक अहम मीटिंग बुलाई है जिसमें तमाम अधिकारियों को बुलाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, इसमें ईडी के अधिकारी, इसमें एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। सत्य निकेतन हादसे के बाद से अब काफी सक्रियता दिखाई दे रही है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने बैठक बुलाई है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इसमें मौजूद रहेंगी। डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस, सभी एजेंसियों के अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। इस बैठक से क्या निकलता है तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज से पहले भी कई सालों से ऐसी बैठकें तो हुई रही हैं, लेकिन क्या दिल्ली की तस्वीर बदली? बिल्कुल नहीं बदली। 4 बजे मीटिंग होने वाली है, इसमें कुछ बड़े फैसले बताया जा रहा है कि लिए जा सकते हैं। वो क्या बड़े फैसले होंगे उस पर निगाहें रहेंगी। एलजी ने 4 बजे मीटिंग बुलाई है जिसमें बताया जा रहा है कि तमाम अधिकारी होंगे, मुख्यमंत्री होंगी, एमसीडी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी इसमें मौजूद होंगे, जिसमें कुछ दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो जो आरोपी है, जो मकान मालिक है हरिराम बंसल, वो गुरुग्राम में बताया जा रहा है कि रहता है, गुरुग्राम के सेक्टर 23 इलाके में रहता है। उसके पड़ोसियों का क्या कहना है, क्योंकि उसके घर पर तो ताला लटका हुआ है। पड़ोसियों के मुख से सुनाते हैं हरिराम बंसल को लेकर वो क्या कह रहे हैं।
4: मैं इस वक्त गुरुग्राम के पालम विहार में मौजूद हूँ, जहाँ पे हरिराम बंसल का घर है, और उनके पड़ोसी मेरे साथ हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये कब से रह रहे थे हरिराम और इनका परिवार?
5: काफी सालों से रहते हैं।
4: किस तरह का परिवार है, क्या कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, क्या कुछ आपके पास जानकारी? सर,
5: प्रॉपर्टीज जो है, इनकी बेटी का मकान है अगल बगल में, और इनके बेटे का भी मकान है, सब यहीं सेक्टर 23 में ही रहते हैं लोग।
4: किस तरह का व्यक्तित्व है सर? दिल्ली के शांति निकेतन में जो हादसा हुआ, मैंने बहुत सारे इनके प्रॉपर्टी देखी है, यहाँ पे वेल सेटल्ड है,
5: वेल सेटल्ड है। आदमी तो सीधे साधे ही है, बुजुर्ग जो है शॉप में बैठते हैं, तो कभी आना जाना हुआ है उनकी दुकान में, तो ये देखा कि भी लोगों से ढंग से बात करते हैं।
4: हरिराम बंसल से भी सीधी
5: बात होती है।
4: किस तरह के व्यक्तित्व है, किस तरह की बातचीत है?
5: नहीं, हमारी वैसी कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके साथ, लेकिन जो है जैसे कभी कई बार शॉप में कुछ सामान लेने जाते तो तब मुलाकात होती थी, तो सीधे साधे ही व्यक्ति है।
4: तो ये उनके पड़ोसी है। मैं इस वक्त देखिये, ये 271F ये हरिराम बंसल का ही घर है, और हरिराम बंसल पिछले 2 दिन से फरार हैं। जैसे ही वो हादसा हुआ, बीते रविवार की देर शाम वो हादसा हुआ, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने हरिराम बंसल के खिलाफ FIR दर्ज की थी, और FIR दर्ज करने के तुरंत बाद हरिराम बंसल और उनका परिवार फरार है। इस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं अंदर का जो नजारा है वो।
0: हरिराम बंसल फरार था लेकिन अब पकड़ा गया, ये बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। हरिराम बंसल जिसको ढूंढा जा रहा था, 10 टीमें बनाई गई थी और अब पकड़ लिया गया है। हरिराम बंसल गुरुग्राम के सेक्टर 23 इलाके में ये रह रहा था, लेकिन उसके बाद से घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था। लेकिन अब बड़ी खबर इस समय दिल्ली सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसा मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। आरोपी मालिक, मकान मालिक पकड़ा गया, और कहां से पकड़ा गया? भिवंडी से हरिराम बंसल को पकड़ा गया है। ये बड़ी कामयाबी है। एक इमारत जो 40 से 50 साल पुरानी थी, वो इमारत जिसको सील होना चाहिए था, जहां पर किसी भी तरह की कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी, वहां पर ये PG संचालित कर रहा था, वहां पर बच्चे रह रहे थे, वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उसका विस्तार कर रहा था, वहां पर और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, खुदाई का कार्य चल रहा था। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, भिवंडी में कहां से, कैसे, किन परिस्थितियों में इसे पकड़ा गया है, बताएं।
6: उन्होंने आज तक को यह जानकारी दी है कि जो हरिराम गुप्ता है उसको हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। जिस तरह से फरार हुआ था जब बिल्डिंग गिरी थी, उसके बाद से न सिर्फ दिल्ली की CM बल्कि दिल्ली पुलिस भी कह रही थी कि हरिराम गुप्ता अंडरग्राउंड हो गया है। गुरुग्राम में उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई थी, लेकिन वो फरार हो गया था, और दिल्ली पुलिस को यह आशंका थी कि अपने किसी करीबी यहाँ के यहाँ छुपा हुआ था। 10 टीमें बनाई गई थी और अब से कुछ देर पहले ही हरिराम गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस
0: की गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर भिवाड़ी से पकड़ा गया। ये भिवाड़ी में कब गया, किसके पास रह रहा था, कैसे पुलिस की टीम इस तक पहुंची?
6: देखिए बिल्कुल आपको बताऊं कि जाहिर सी बात है ये सुग्राम इलाके में रह रहा था हरियाणा में और वहां से फिर ये भिवाड़ी की तरफ भागा था और भिवाड़ी से चूंकि इसके पीछे दिल्ली पुलिस की टीमें लगी थी ह्यूमन इंटेलिजेंस उसके अलावा टेक्निकल सर्विलांस के जरिए फिर इसको दबोचा गया है भिवाड़ी से और अब दिल्ली पुलिस इसे दिल्ली लेकर आ रही है जहां इससे आगे की पूछताछ होगी। लेकिन जिस तरह से चकमा दे रहा था, देखिए एक बिल्डिंग बनाई थी 40-50 साल पुरानी बिल्डिंग, उसमें पीजी बनाया था, जानलेवा खिलवाड़ कर रहा था स्टूडेंट के साथ। और उसके बाद आप ये देखिए अमानवीयता की, जब ये बिल्डिंग गिरी उसके बाद ये फरार भी हो गया वहां से। दिल्ली के सीएम ने कल खुद मौके पर ये बोला कि जो बिल्डिंग का मालिक है वो फरार हो गया है। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस की छापेमारी, उसके बाद ये भागता फिर रहा था, अब भिवाड़ी से इसे पकड़ा गया है फिलहाल और अब दिल्ली पुलिस इसे दिल्ली लेकर आ रही है जहां पर इससे आगे की पूछताछ होगी। 10 टीमें बनाई गई थी तो जाहिर सी बात है एक तो जानलेवा लापरवाही कि आप 40-50 साल की बिल्डिंग पर पीजी बनाते हैं, छात्रों की मजबूरी के साथ फायदा उठाते हैं, उसके बाद जब बिल्डिंग गिरती है छात्रों की जान चली जाती है, कई छात्र उसमें दबे रहते हैं तो आप मौके से भाग जाते हैं। उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस ने टीम बनाई है और भिवाड़ी से इसे पकड़ा गया है। पूछताछ होगी कि कब से पीजी चला रहा था, क्या और लोग भी इसमें शामिल है, कहां कहां
0: से। तो इसे ये भी पूछा जाना चाहिए कि किस किस अधिकारियों को कितना कितना पैसा दिया और कार्रवाई अभी तक तो सिर्फ सस्पेंड किया गया लेकिन जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको तो बर्खास्त किया जाना चाहिए था, वो अभी तक कार्रवाई नहीं। लेकिन अरविंद आप इस पर किस तरह की कार्रवाई संभव है, आगे क्या क्या प्रोसेस रहेगा?
6: देखिए अभी तो फिलहाल जो दिल्ली पुलिस ने कल FIR दर्ज की है उन तमाम धाराओं में इसे गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ के बाद इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो फिलहाल भिवाड़ी से इसे लाया जा रहा है और जाहिर सी बात है जब कोर्ट में पुलिस पेश करेगी तो ये बताएगी कि ये बिल्डिंग गिरने के बाद भागा था और कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ा गया, तो ये भाग क्यों रहा था, क्या इंटेंशन थी, क्या मकसद थी, क्या सबूत छुपाने की ये कोशिश कर रहा था, ये सब कुछ उगलवाने की अब दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी। क्योंकि बिल्डिंग गिरने के बाद सभी को मालूम है, खासतौर से इसे ही मालूम है कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा इसके ऊपर, लेकिन आखिर ये भागा क्यों, किस लिए भागा, ये सब कुछ जानने की दिल्ली पुलिस कोशिश करेगी भिवाड़ी से।
0: एक और चीज हमने देखी कि हम गुरुग्राम के इसके मकान में भी गए जहां ये रहता था लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था, परिवार का कोई सदस्य भी कहीं दिखाई नहीं दिया, कोई हर घर पे नहीं मिला, दुकान पर भी ताला लटका हुआ था, पूरा परिवार ही गायब था क्या?
6: पूरा परिवार गायब था मैं आपको बता रहा हूँ और सुबह आज तक नहीं, सबसे पहले ये बताया था कि किस तरीके से जब दिल्ली पुलिस की टीम गुरुग्राम पहुंची तो ये गुरुग्राम में नहीं मिला और उसके बाद दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि अपने करीबियों के यहाँ होगा, उसके बाद करीबियों के यहाँ भी दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की लेकिन वहां पर भी नहीं मिला। उसके बाद फिर इस बात का खुलासा हुआ कि ये भिवाड़ी में है और वो भी टेक्निकल सर्विलांस ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए फिर दिल्ली पुलिस की टीम इसके पास तक पहुंची और इसे पकड़ा है। अब इसे फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली लेकर आ रही है।
0: जी अरविंद, नजर बनाए रखें, हम आपके पास लौट रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, भिवाड़ी से आरोपी पकड़ा गया है और ये कार्रवाई की शुरुआत है। इस पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक नजीर बने। देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी बहुत सारी इमारतें अभी भी चल रहे हैं, जैसे कि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि दिल्ली में आपने अनऑथराइज कॉलोनीज को उसके बाद वैध किया है, तो ऐसे में आप अंदाजा लगाए कि कितनी बड़ी संख्या ऐसे मकानों की होगी जो जर्जर हालत में चल रहे हैं और वहां पर सर इस तरह से व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। अब समय आ गया आपको ग्राउंड जीरो पर ले जाने का। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौसमी सिंह जुड़ गए जो कि सत्य निकेतन में समय मौजूद है। मौसमी मौजूद, अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या समाप्त हो गया है या अभी भी चल रहा है?
7: बिल्कुल, देखिए हम लोग वहीं पे खड़े हुए हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं। आप देखिए कि पूरी जो लेन है वो भरी हुई है, तमाम छात्र हैं जो जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगातार NDRF से लेके यहाँ पे लगी हुई हैं और एक तरीके से ये वो वक्त है जब आप देखिए यहाँ पे कुछ फायर फाइटर्स हैं, एनडीआरएफ की टीम है, वो इस तरीके से आपको नजर आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार आप देखिए लगभग 24 घंटे से ऊपर हो गया है इस पूरे वाकये को, और जिस तरीके से बिल्कुल धराशायी हुई बिल्डिंग, तो पूरा मलबा जिस तरीके से काफी वेट के साथ गिरा होगा, कितना मुश्किल परिस्थिति होगी आप वहां से रेस्क्यू कराने की। और ये आखिरी के कुछ घंटे हैं जब सभी को ये उम्मीद होगी कि कोई आस बंधे, किसी की सांस की डोर ना टूटे, और कोशिश अभी रेस्क्यू में चल रही है। आपको दिखा रही हूं मैं कि पीछे हमारे आप एक बिल्डिंग देख रहे हैं जो कि काफी जर्जर हालत में थी। जिस तरीके से उस बिल्डिंग को भी नोटिस मिला था, और अगर वो मापदंडों का पालन करते तो शायद इस तरीके से बिल्डिंग, देखिए यहाँ पे जो स्थिति है कई बिल्डिंग्स की वो कुछ इस तरीके से है। कितना पानी है आप देखिए कि खुद अपने आप में छत और बीच में से केविन कर गई है सीलिंग, और ये जो मकान है उससे 10 कदम की दूरी पर ये बिल्डिंग है। तो इस तरीके की स्थिति है कई बिल्डिंग्स की, वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अभी भी ऑक्यूपाइड हैं, खाली नहीं की गई हैं।
0: बिल्कुल मौसमी, ये डरावनी स्थिति है। मौसमी आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। कुछ देर पहले जो आपने रिपोर्ट भेजी है वो रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं, जो ये दर्शाती है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो कितने खौफजदा, वो डरे हुए, सहमे हुए। ऐसी एक छात्रा से मौसमी ने बातचीत की, आप सुनिए।
8: इन तारों की ही तरह तमाम छात्र छात्राओं की जिंदगी सत्य निकेतन में उलझी हुई है। हम लोग एक बालकनी में खड़े हुए हैं जो पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, और यहाँ पे आप देखिए जो बगल वाली बिल्डिंग है उसमें एक हाथ का आपको फासला नजर आता है। नीचे आप देखिए कि कितना संकरा ये रास्ता है, आंटी यहाँ से निकल रही है, और ये एक के बाद एक बिल्डिंगें जो है आपस में सटी हुई है, पूरी इमारतें हैं, और तारों का जो जाल है इधर देखिए कितना खतरनाक। इसके बगल में ही बालकनी है और यहाँ पे पूरा पोल है और पूरी तारे इस तरीके से उलझी हुई है, हर जगह एसी लगा हुआ है। रेसिपी फॉर डिजास्टर सत्य निकेतन एक ऐसे बारूद पर बैठा हुआ है जहाँ पे एक बिल्डिंग ढही, लेकिन लाखों ऐसी है जहाँ खतरे की घंटी बज रही है। लेकिन ये कहानी इन बिल्डिंगों की नहीं है, ये कहानी है रितिका की। रितिका जो है एक फ्रेशर है, फर्स्ट ईयर है उसका, और वो पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रह रही है, पैसा देना पड़ता है, और रात भर वो सोई नहीं है। रितिका की पार्टनर का तो इम्तिहान था, वो तो इतनी घबरा गई कि छोड़ छाड़ के अपना बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं पढ़ने के लिए गई है। रात भर ये लोग बहुत ट्रॉमेटाइज रहे हैं क्योंकि जो बिल्डिंग गिरी है वो एक हाथ की दूरी पे है। खुद रितिका की जुबानी सुनते हैं उसकी कहानी, कितना डरावना आपके लिए ये रात रही।
9: बहुत ज्यादा इफेक्ट की है ये चीज, क्योंकि कल सारे दिन से हम ये चीजें जो भी हो रही हैं विटनेस कर रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इतनी लोगों की जान गई है उसमें, कितने लोग दबे हुए हैं उसमें, इतने सारे लोग, उनके फैमिलीज हैं, सब कुछ है, एम्बुलेंसेस आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एनडीआरएफ की टीम्स आ रही है, दिल्ली पुलिस आ रही है। इतनी ज्यादा केओस हो रही थी, हमें खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हम इतने डरे हुए थे, हमें पता नहीं चल रहा है अर्थक्वेक आ गया है, क्या हो गया है, नहीं हुआ है। हमारी क्लास के लोग वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि हमें अभी, हम भी वहीं पे थे थोड़ी देर पहले, हम वहीं पे थे। वो इतनी क्राउडेड जगह है, वहाँ पे हमेशा बच्चे प्रेजेंट होते हैं, मेडिकल स्टोर है, स्टेशनरी की दुकान है, मंदिर है बगल में, एंड वहाँ पे सारे ऐसे क्राउड कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। अब सत्या इलाके में, अब सत्या में जब ही निकलो, किसी भी समय निकलो, तो वहाँ पे हमेशा क्राउड होती है।
0: इस हादसे के बाद एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। एनडीआरएफ की दो टीमें जिसमें 70 जवान जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के आईजी नरेंद्र सिंह बुंदेला से बातचीत की, आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है।
10: सर, ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है अभी भी, किस तरीके से आप लोग सर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त कर रहे हैं और कैसे कदम उठाए जा रहे हैं?
11: तो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए जॉइंट टीम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो पूरा इनको कोऑर्डिनेट करती है। तो अभी वहाँ पर एनडीआरएफ की टीम है, फायर सर्विस की टीम है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, पैरामेडिक्स है, दिल्ली पुलिस है, कई एजेंसीज का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। टेक्निकल काम मेनली बेसिकली एनडीआरएफ और फायर सर्विस इसमें कर रहे हैं, और सपोर्ट इनको पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहा है। तो दो टीम एनडीआरएफ की अभी वहां पर काम कर रही है।
10: सर, कितने लोगों को अब तक बचाया जा चुका है और कितने लोगों की जान जो है हताहत हुई है इस पूरे बिल्डिंग कोलैप्स जो हुई थी दिल्ली में, और अब किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं?
11: तो साइट में अभी जो 5 लोग सर्वाइव किया जो हॉस्पिटल में एडमिट है, 6 लोगों को जिनको निकाला गया था वो डेड डिक्लेयर कर दिए गए। अभी जो एक रिसेंट इनपुट आया कि एक और आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई है जो कि अनकॉन्शियस है, तो उसको भी अभी निकालने का टीम प्रयास कर रही है।
10: सर बाकी आप लोग किस तरीके से इक्विप्ड हैं वहां पर, क्योंकि एक कठिन ऑपरेशन है जो कि अभी भी चल रहा है, कैसे एनडीआरएफ जो है पूरे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं?
11: तो ये टेक्निकल काम है, बेसिकली अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू या कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू का काम होता है। हमारी टीम इसके लिए ट्रेंड होती है, स्पेशल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं जिसमें ब्लीचिंग कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, कटर्स होते हैं, इसमें चेनसॉज होते हैं, डायमंड चेनसॉज होते हैं, कंक्रीट को काटना है या आयरन के जो रॉड्स हैं उनको काटना अंदर विक्टिम तक पास जाने के लिए, या फिर शोरिंग सिस्टम भी इस्तेमाल करना पड़ता है बिल्डिंग को स्टेबलाइज करने के लिए। सर्च एंड डिटेक्शन इक्विपमेंट होते हैं, कैनाइन इक्विपमेंट होते हैं, इन सबका एक साथ उपयोग करके स्थिति पे क्या सही साबित हो सकता है उसको इस्तेमाल किया जाता है।
10: अंतिम सवाल, दूसरी बिल्डिंग्स को लेकर के दिल्ली की सीएम ने कहा कि उनका ऑडिट कराएंगे और जो खतरनाक होंगी उनको डिमोलिश किया जाएगा, आप लोग किस तरीके से वहां पर एक्शन करेंगे?
11: एनडीआरएफ रिस्पॉन्स फोर्स है, हम रिस्पॉन्स पार्ट पे मैं कमेंट कर सकता हूँ, बाकी दिल्ली गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई कर रही है।
0: कार्रवाई लगातार जारी है, पुलिसीय जांच भी लगातार चल रही है, बड़ी खबर लगातार नजर हमारी बनी हुई है। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
3: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
4: इन एसोसिएशन विद
5: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल। E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
7: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में 2 लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
8: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
7: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
9: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में।
10: अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।
11: पांच मंजिल, तो पांच मंजिल का जो परमिशन किसने दिया, कैसे दिया, और उसमें बेसमेंट को खोदने के लिए किसने इनको परमिशन से, जो ये देखने को जो दिख रहा है साफ साफ, इन लोग ने करप्शन के कोई हद नहीं है, सब पार करके रखा है। इनको कमीशन मिलने से किसी का चीज के भी परमिशन देते हैं।
12: ये सारा नेक्सस भाजपा वालों का है। ये PG जो है, ये सारे के सारे भाजपा वालों का। अच्छा सर्वे करवा के देख लिए। मैं बात पार्टी की नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है। हमने उन छात्रों को मरते हुए देखा है। शायद मेडिकल की टीम समय पे आ जाती, इनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते, कुछ मशीनरी होती जिससे उस मलबे को हटाया जा सकता था, तो बहुत सारे छात्र की जान बच सकती थी। आप

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: बारिश की मार और भरभराकर ढहता निर्माणाधीन रिंग रोड का पुश्ता, ये तस्वीरें टिहरी गढ़वाल की हैं, जहां कोटी कॉलोनी जाक डोबरा रिंग रोड के तहत बनाया जा रहा पुश्ता बारिश के बीच क्षतिग्रस्त हो गया। देखते ही देखते दीवार का हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा और निर्माण की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर से आई ये तस्वीरें पहाड़ों में बारिश के कहर की गवाही दे रही हैं। कपकोट में लगातार बारिश के बाद नाले उफान पर हैं। ऐसे में तेज बहाव में एक बाइक सड़क से नीचे बहने लगी। पानी की धार के बीच ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला, बाइक को पकड़कर खींचा और बहने से बचा लिया। गनीमत रही कि बाइक सवार भी बाल बाल बच गया। और अब तस्वीर चमोली की, हेमकुंड साहिब के पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। पुलना से घांघरिया के बीच तीन जगह रास्ता क्षतिग्रस्त है। कहीं मलबा और पत्थर गिरे हैं तो कहीं पेड़ टूट कर रास्ते पर आ गए। कई जगह रास्ता बेहद संकरा हो गया है। इसके बावजूद श्रद्धालु क्षतिग्रस्त हिस्सों से जोखिम उठाकर आवाजाही कर रहे हैं, जबकि मार्ग को सुचारू करने का काम जारी है। कमल नयन सिलौड़ी के साथ आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: ब्रेक के बाद बड़ी खबर ही आपको देते हैं। भिवानी से हरिराम को गिरफ्तार किया गया और अब उसको दिल्ली लाया जा रहा है, लेकिन इस बीच में जो तस्वीर है हरिराम बंसल की, वो तस्वीर भी सामने आ गई। दिल्ली बिल्डिंग हादसे का मुख्य आरोपी मकान मालिक हरिराम बंसल जो फरार चल रहा था, ये उसकी तस्वीर जो इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, नाम में हरी है, उम्र भी बहुत ज्यादा है। ये हरिराम बंसल जिनका सत्य निकेतन में वो 40 से 50 साल पुराना मकान था जिसको सील किया गया था कि कोई गतिविधि वहां पर ना हो। आप उम्र देखिए, लेकिन सिर्फ पैसों का लालच था, पैसे कमाने थे कि उस जगह को, जर्जर इमारत को पीजी बनाकर वहां पर बच्चों को रखा गया, उसके बाद खुदाई भी की गई। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, भिवाड़ी से पकड़ा गया है हरिराम बंसल को, जहां पुलिस का सहयोग करना चाहिए था, हरिराम बंसल को सहयोग नहीं किया और अपने घरों पर ताला, दुकान पर ताला जड़कर फरार हो गया था। और भिवाड़ी से पुलिस ने कई टीमें बनाई और तब जाकर सर्विलांस किया गया और हरिराम बंसल को पकड़ लिया गया है। ये पहली तस्वीर है हरिराम बंसल की, हाफ शर्ट में और उम्र भी काफी ज्यादा है। अब हरिराम बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, पहली तस्वीर में हमने दर्शकों को दिखा दी है, अब देखिए नाम में हरी है और उम्र भी इतनी ज्यादा है, लेकिन ये जो पैसों का लालच था उसे एमसीडी से वो काम करवा दिया जो नहीं करवाना चाहिए था।
5: बिल्कुल, देखिए, और ये कंफ्यूजन थी दिल्ली पुलिस को, क्योंकि अलग अलग जानकारियां दिल्ली पुलिस को मिल रही थी आप राजीव, और इसके नाम को लेकर भी कंफ्यूजन था, क्योंकि बेटे के जो पासपोर्ट में है उसमें कुछ अलग नाम, सब में कुछ अलग नाम। उसके बाद फाइनली दिल्ली पुलिस को इसका असली नाम हरिराम जो गुप्ता है वो पता चला और इसे फिर पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की टीम ने कल गुरुग्राम में इसके घर पर छापेमारी की, ये वहां से फरार हो गया। उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये अपने करीबियों के यहाँ है, वहां पर छापेमारी की गई, वहां से भी फरार हो गया। उसके बाद भिवाड़ी से इसे पकड़ा गया है। अब भिवाड़ी से दिल्ली पुलिस दिल्ली लेकर आ रही है, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं पर जो इलाके के डीसीपी हैं वो मौजूद हैं, जो हरिराम गुप्ता से अब आगे की पूछताछ करेंगे कि ये मौके से क्यों भागा। बड़ी बात ये है, ये देखिए कि एक तो ये 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंग में पीजी बनाता है, छात्रों का जानलेवा खिलवाड़ करता है, उसके बाद अमानवीयता की हद ये है कि जब बिल्डिंग गिरती है छात्र उसमें फंस जाते हैं, छात्रों की मौत हो जाती है, तो ये मौके से फरार हो जाता है।
4: अब अरविंद, जो आप कंफ्यूजन की बात कर रहे थे उस पर थोड़ा सा और क्लैरिटी दें कि ये बंसल गुप्ता, और आप एग्जैक्ट नाम क्या क्या गुप्ता है, अगर गुप्ता नाम है तो शुरुआत से बंसल कैसे नाम है, क्या इसी ने कुछ इसमें भी गोलमोल किया हुआ है नाम में?
5: बिल्कुल, देखिए कई अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं आप दिल्ली पुलिस को, जब सत्य निकेतन की बिल्डिंग गिरी उसके बाद फाइनली दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी है उन्होंने बताया कि इसका नाम हरिराम गुप्ता है और ये मौके से भाग गया था। कल दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने भी कल ये बताया कि जो बिल्डिंग का मालिक है वो मौके से भाग गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और जब इसकी तलाश शुरू की तो गुरुग्राम दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची, वहां पर भी ये नहीं मिला। उसके बाद फिर उसके करीबियों के यहाँ दबिश दी गई, वहां पर भी ये नहीं मिला। उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए जो हरिराम गुप्ता है इसे भिवाड़ी में पकड़ा गया है, इससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर ये क्यों भाग रहा था, कौन सा ऐसा राज है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहा था, कौन सा ऐसा सब है जिसे ये छुपाने की कोशिश।
4: अरविंद, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि एक आनंद का भी बड़ा नाम चल रहा था, तो यही इस उम्र में भी लगातार सारी चीजें हैंडल कर रहा था, पीजी का संचालन भी यही हरिराम ही देख रहा था, या किसी को उसमें रखा हुआ था, या परिवार का कोई और सदस्य भी इसमें शामिल था?
5: देखिए, कई और लोग शामिल हो सकते हैं, इस वजह से जो हरिराम गुप्ता है उसके खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ FIR दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। और जो आज तक ने गुरुग्राम में तहकीकात की है उससे ये पता चला है कि इसके कई और दिल्ली में बिल्डिंगें हैं, बड़ा काम है इसका बिल्डिंगों का, और जाहिर सी बात है बहुत मुमकिन, बहुत अगर आप कहें तो इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं होगी कि और कई बिल्डिंगों में पीजी का गोरख धंधा चलाता होगा। तो ये सारी सच्चाई अब हरिराम गुप्ता दिल्ली पुलिस के सामने कबूलेगा। इसके साथ और कोई क्या पार्टनर है, कितने पार्टनर हैं, किनके किनके इशारे पर ये तमाम पीजी चला रहा था, और 40 साल 50 साल पुरानी बिल्डिंग में आखिर ये पीजी कैसे चला रहा था।
4: हम हरिराम बिल्कुल राक्षसी कृत्य कर रहा था, लेकिन ये बताया अरविंद कोर्ट में कब तक पेश किया जा सकता है?
5: देखिए फिलहाल दिल्ली पुलिस इसको दिल्ली लेकर आ रही है, सबसे पहले इसे दिल्ली लाया जाएगा, उसके बाद इससे पूछताछ के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद इसे अदालत में पेश करेगी, और उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की कवायद की जाएगी। बड़ी बात यह है, और जो शर्मनाक बात है इसके लिए भी, किसी शख्स की कोई बिल्डिंग गिरती है तो वो जाता है राहत और बचाव में, राहत और बचाव के काम में वो हाथ बटाता है, अधिकारियों को जानकारी देता है, लेकिन ये तो मौके से भाग गया, और ये जाहिर सी बात है दिल्ली पुलिस ये ग्राउंड कोर्ट में देगी। हरिराम गुप्ता आखिर क्यों भागा, और इस तरह के कई हरिराम गुप्ता दिल्ली में घूम रहे हैं जो अवैध तरीके से बिल्डिंग बनाकर उसमें पीजी होटल तमाम चीजें चला रहे हैं, तो उनकी भी उन पर भी कार्रवाई करेगी।
4: ठीक है अरविंद, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे, और अब आपको सीधा लिए चलते हैं सुरक्षा सभा में।

0: वादा भी दोहराया गया।
1: जो भी बच्चे यहाँ आसपास की बिल्डिंग्स भी जो डेंजरस स्थिति में पाई जा रही हैं, उनसे उन्हें भी विकेट कराया गया है। और ये खास करके ये बिल्डिंग जो खड़ी है ये पूरी तरीके से डेंजरस प्रतीत होती है। यहाँ से मलबा हटने के बाद में निश्चित रूप से इसको भी गिराया जाएगा, कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा। और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा।
0: अब ऐसे वादों से क्या फायदा मुख्यमंत्री जी, हादसा तो हो गया, जाने तो चली गई, अब लकीर पर लाठी पीटने से क्या होने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हादसे हुए, सिर्फ एक साल का आंकड़ा है, जरा उंगलियों पर गिनते जाइए। अप्रैल 2025 मुस्तफाबाद में चार मंजिला इमारत गिरी जिसमे 11 की जान गई। 17 मई 2025 पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट ढहा, 3 मजदूरों की मौत। 12 जुलाई 2025 उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम में 4 मंजिला पुरानी इमारत ढह गई, 6 लोगों की मौत। 30 मई 2026 साकेत में एक 5 मंजिला अवैध इमारत गिर गई, 6 की मौत। 9 जुलाई 2026 रोहिणी इलाके में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, 3 लोगों की मौत। 6 सितंबर 2026 सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत ढह गई, 7 की मौत। तो सिर्फ सत्य निकेतन के सत्य का ही सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि ऐसे मामलों की सिस्टम और सरकार को परवाह ही नहीं। हादसे की शिकार इमारत में रहने वाले छात्रों को कहां पता था कि जिस पीजी में वो रह रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं, न इमारत के मालिक की, न एमसीडी की, न सरकार की। सुशांत मेहरा अनमोल बाली के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
2: इस हादसे के बाद पीजी माफिया की भी बहुत ज्यादा चर्चा होने की, ये पैसा तो बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन बदले में क्या देते हैं, छोटा सा कमरा, एक बेड और मोटा पैसा वसूला जाता था। और जर्जर इमारत के किन परिस्थितियों में छात्र रह रहे थे और रह रहे हैं, ऐसी एक जगह पर हमारे संवाददाता मौसमी सिंह गए, आप देखिए रियालिटी।
3: ये तस्वीर आपने देखी होगी हॉस्टल डेज की, जो कि जो महिला पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, वो यहाँ पे जो चल रहा है विमेंस वाला, बगल में ही बॉयज वाला था और ये गर्ल्स वाला पेंगे अकोमोडेशन है। और यहाँ पे आप देखिए, हालांकि बाहर इस तरफ ताला पड़ा हुआ है, ठीक है, जरा ये देखिए ताला पड़ा हुआ है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। और ऊपर आप देखिए कपड़ा डाला हुआ है हॉस्टल डेज के अकोमोडेशन पे। लेकिन अगर भीतर जाके अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई यहाँ पे, एक सेकेंड आइए पवन, अंदर आइए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में ये चल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी पॉपुलर था, काफी पोस्टर बैनर प्रमोशन इसके पूरे इलाके में है। और जो रेट था, मुझे छात्रों ने बताया कि इसका रेट बाकी छात्र बाकी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये कितना संकरा है, ये हॉस्टल डेज गर्ल्स आप देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ की सुविधा बता रहे हैं, वही बिल्डिंग जो बगल में ढह गई है इसी तरह की सुविधा बता रहे होंगे, नंबर भी दिए हुए हैं जो फरार चल रहा है आरोपी यहाँ पे। और ये देखिए कि वाईफाई, लॉन्ड्री, एसी रूम, गीजर, हाउसकीपिंग, ये सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, सीसीटीवी, 4 बारी मील मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, वार्डन मिलेगा और पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन नाम के लिए ये बैनर है, सुविधा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे 0/0 है यहाँ पे। और इसी तरीके के पूरा यहाँ पे अगल बगल में आपको बता दें कि पीजी अकोमोडेशन को लेके कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है, जबकि ये पता है कि हजारों छात्र और खास तौर से फर्स्ट ईयर के छात्र पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में रहते हैं। आप देखिए यहाँ पे बाहर इस तरीके से हॉस्टल डेज जो गर्ल्स वाला है, वहां पे ये तारों का जाल आप देख रहे हैं, उसकी बालकनी में हम लोग खड़े हुए हैं, बगल में वो बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है। और यहाँ पे ये कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये छुपाया गया है। ये है हॉस्टल डेज, हॉस्टल डेज का ज्वाइन द डेज, और यहाँ जगह जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर है। इसी तरीके का 4 मंजिला जो बिल्डिंग का टावर है वो भी गाइडलाइंस को पूरे खुला खेल का फरुखाबाद यहाँ पे चल रहा है, गाइडलाइंस को वायलेट करता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना पाछने वाला है यहाँ पे। और ऊपर भी हम लोग चल रहे हैं और वे पूरी

0: बिल्डिंग में वही।
1: और एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सुरक्षा सभा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चीज और यहां पर मेड इन इंडिया, ऐसा नहीं है कि एक चीज आपने कर ली, आप ड्रोन्स में हैं, आप यूएवीज में हैं, आप एंटी नक्सल ऑपरेशंस में उसको प्रोवाइड करते हैं, सेना को प्रोवाइड करते हैं, पर जरूरतें भी तेजी से बदल रही हैं, आपका दुश्मन भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये कैसे मैनेज करते हैं, क्या कैसे ये पूरा सिस्टम बन रहा है?
1: पहले मैं एक देश की सुरक्षा के बारे में ऐड करना चाहूंगा कि डिफेंस में मेक इन इंडिया, डिज़ाइन एंड डेवलप इन इंडिया क्यों इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई लड़ाई लड़ते हैं तो यू कैन नॉट बी एज गुड एज देम, यू हैव टू बी बेटर एट देम। नाउ इफ़ यू वांट टू बी बेटर एट देम, तो आप अगर कहीं बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं या फिर आपने कहीं से सीखा है और आप उस पर R&D नहीं कर रहे हैं, तो आप उस टेक्नोलॉजी में या उस फील्ड में दुनिया में सबसे अच्छे नहीं हो सकते। तो As far as security defense is concerned, आपको जीतने के लिए you have to do R&D, you have to do manufacturing, so that आप दुनिया में सबसे better हों, so that अपने enemy से better हो सकें। Similar thing is related to technological development. मैं हर जगह यही बात बोलता हूँ, अगर आपको टेक्नोलॉजी में बेटर होना है तो आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में बेटर होना है। इट्स एज सिंपल एज कि अगर देश में लोग रिसर्च कर रहे हैं, बेसिक रिसर्च कर रहे हैं, मैथ पे फोकस कर रहे हैं, फिजिक्स पे फोकस कर रहे हैं, केमिस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं, यू वुड सी एवरी टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन दैट। नाउ फास्ट डेवलपमेंट जो है वो तभी पॉसिबल है जब बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके रिसर्च करें, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में बट आल्सो टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तब आप तेज़ी से नए प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं और आप दुनिया में बेस्ट हो सकते हैं।
0: पर सर एक बात कहते हैं ना कि वो बार बार जो क्रिटिक्स हैं वो यही कहते हैं कि भारत में रिसर्च का माहौल नहीं है, वो बढ़ावा नहीं दिया जाता है, क्या ये आज भी हकीकत है या फिर बदल रहा है?
2: बदल भी रहा है और माहौल पहले नहीं रहा है। मैं दोनों चीज़ों को जोड़ के कहूँगा। यहाँ बहुत से छात्र बैठे हैं, इन छात्रों से मैं पूछूं कि कितनी बार इम्तहान के लिए पढ़ाई उन्होंने अपनी किताब से करी है और कितनी बार उनके अध्यापकों ने जो पढ़ाया उससे उन्होंने खाली अध्यापक के पढ़ाए हुए सामान से उनकी इम्तहान में काम चला है।
0: पहले ऑप्शन वाले हाथ उठाएं पहले, जिनको लग रहा है जो टीचर ने पढ़ाया वही एग्जाम के लिए पढ़ा, बहुत कम हाथ है,
2: बहुत कम हाथ है। और खुद मेहनत से इम्तहान के एक रात पहले बैठ के किताब पढ़ी। अब ये जो वर्क दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हमारे देश में आज की तारीख में अर्जुन कम है, एकलव्य ज्यादा है, क्योंकि ये छात्रों ने खुद पढ़ा है, अपनी मेहनत से पढ़ा है उनके। तो हमारे यहाँ अभी अभाव, क्योंकि इतनी देश, इतनी प्रगति, इतनी जोशों से किया, और अधिकांश जो फैमिलीज होती हैं उसमें लोग कहते हैं मेरा बेटा IAS बने, मेरा बेटा फौजी बने, कितने लोग हैं मेरा बेटा जो है वो स्कूल का अध्यापक बने। तो हमारे यहाँ वो फोकस नहीं रहा है अब, क्योंकि पिछले कुछ सालों से रिसर्च और एजुकेशन पे वो आ गया है, और अभी तो जानते हैं क्या क्या हो चुका है एजुकेशन के नाम पे, तो इसलिए अब रिसर्च ज़्यादा बढ़ गई है, पहले थोड़ा फोकस कम रहा है उस पे, तो इसलिए ये थोड़ा सा अभाव रहा है, जैसा आपके हाथ उठा के बच्चों ने बताया अभी अभी, तो इसलिए अब फोकस बढ़ गया है।
0: ब्रिगेडियर चौधरी, एक चीज़ सेना में हमेशा रही वो ये कि आप में भी इनोवेटर्स की कमी नहीं रही, सैनिक अपने सिचुएशन के हिसाब से, फील्ड में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे वो 360 कैमरे वाला बॉल हो या फिर कैसे आप दीवार के आर पार देख सकते हैं कि वहां क्या चल रहा है, उन जिन पर पड़ती है कहते हैं वही वो कहते हैं। तो क्या वहां भी ये चीजें बदलती जा रही हैं कि उसको प्रोत्साहन एक तो मिल रहा है कि इनोवेट करो आगे, ड्रोन्स भी, ड्रोन लैब्स भी कई हमने देखी है। आप चूंकि अभी बहुत बड़े तरीके से ट्रेनिंग से भी जुड़े हैं, उन सिम्युलेटर्स से भी जुड़े हैं, तो मशीन की ट्रेनिंग और मैन की ट्रेनिंग कितनी अहम इस लिहाज से?
3: इस पर थोड़ा सा मैं श्वेता जी आप थोड़ा लंबा इस पर कवर करूंगा। जब हमने अपना कंप्यूटर स्टार्ट किया था सीखना लेट 1980s, 1990 अर्ली 286386 त्रिपाठी जी को याद होगा,
0: एक कंप्यूटर के लिए लाइन भी लगती थी।
3: उसमें एक हमने एक रूल सीखा था, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आज जो एआई, हम लोग सब एआई की बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि एआई ये है, एआई वो, एआई वही है जो आप एआई के अंदर इनपुट डालते हैं वही आपको आउटपुट मिलता है। डिफरेंस क्या है? उस टाइम पे कंप्यूटर में टाइम लगता था, आज की तारीख में एआई गिव्स यू द सेम रिजल्ट बट इन अ मच बेटर पैकेज एंड मच मोर कॉन्फिडेंटली। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज नॉट इन द एल्गोरिथम, प्रॉब्लम इज आप अभी भी मोबाइल फोन पे अपने चैट जीपीटी या ग्रॉक वगैरह खोल के देखे, नीचे एक छोटा सा सबले है, चैट जीपीटी इज एआई एंड एआई कैन मेक मिस्टेक्स।
0: यस,
3: द मिस्टेक इज बीइंग मेड एट द स्पीड ऑफ मशीन टुडे। नाउ दिस इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज, वेर यू डोंट ट्रेन, यू हैव टू ट्रेन। ट्रेन आपको मशीन को भी करना है ताकि वो गलतियां कम करे, ट्रेन आपको मैन को भी करना है क्योंकि मैन के पास दो प्रॉब्लम है, एक या तो वो मशीन को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं या दूसरा वो उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर देगा। जब तक उसको आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे ही विल नॉट बी एबल टू डिलीवर, ही विल नॉट बी एबल टू नो कि वो जो ब्लिप दिख रहा है उसको, वो जो नॉइस है वो दुश्मन का है या खुद का है। डिटेक्ट की बात करते हैं हम, कैसे डिटेक्ट करेगा उसको वो? द फाइट ऑफ टूडे एआई के अंदर जो डेटा जा रहा है दैट इज द वॉर ऑफ यस्टरडे। कल कोई स्वॉर्म ड्रोन आपके पास आएगा वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने पिछले जो वॉर थी उसका प्रेसी पढ़ के मैं पूरा का पूरा आपके ऊपर अटैक कर रहा हूँ। यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योर सेल्फ एंड यू हैव टू कीप ट्रेनिंग, ट्रेन द मशीन, ट्रेन द मैन एंड देन ट्रेन देम टुगेदर। लाइव ट्रेनिंग वेरी वेरी इफेक्टिव बट वेरी एक्सपेंसिव, हम उतना एफोर्ड कर नहीं सकते हैं। सो वॉट इज देयर विद यू इज सिमुलेटर्स, सिम्युलेटेड ट्रेनिंग इज द नीड फॉर द आवर। और अभी मैं ही नहीं, अभी कुछ ही महीने पहले टेरी का भी एक रिपोर्ट आया था जिसके अंदर लिखा था कि सिम्युलेटेड ट्रेनिंग कितना हमको कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल एज मैन इफेक्टिव बना सकता है। दैट इज वाई सिम्युलेटेड ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडे, जो आपको बता रहा था मैं।
0: नहीं, सही बात है, मिसाइलों को आप फायर करके आप ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं, आपको उसके लिए सिम्युलेटर्स की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन एआई को लेकर जो चर्चा हो रही है विवेक जी, वो बोलने में बहुत अच्छा भी लगता है, देख के भी अच्छा लगता है कि एआई वॉर है, अभी पूरा हम साइबर स्पेस में जा चुके हैं। जब आप इन चीजों को विकसित कर रहे हैं, जब ये जरूरत के मुताबिक उस चैलेंज को मीट कर रहे हैं, तो ये एआई क्या दुधारी तलवार है?
1: डेफिनेटली दो तथ्य हैं यहाँ पे। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है और कंज्यूमर मार्केट के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जैसा सर ने बोला कि अभी वो मिस्टेक करता है, लेकिन जब वो मिस्टेक करता है तो उसका कॉस्ट क्या होता है? कंज्यूमर मार्केट में आपका फैन चल रहा है, फैन एआई है और बंद हो गया, कुछ नहीं होगा, गर्मी लगेगी। लेकिन अगर एयरक्राफ्ट में आपने एआई डाला है और टारगेटिंग सिस्टम में एआई डाला है फॉर मिसाइल, और उसने गलती की और हमारे ही जवानों पर आ गई, तो उसका कॉस्ट इज ह्यूमंगस। तो वहाँ पर स्पेशली डिफेंस और एरोस्पेस में हमको इस बात का ध्यान रखना होता है, जो कि अगेन साइंटिफिक स्टडी है, रिसर्च है, कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है। जैसे हम बाकी टूल्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हमको एआई इज़ आल्सो अ टूल, हमको ये देखना है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसके कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, और उसके मुताबिक हम उसको अपने स्ट्रैटेजी में इन्वॉल्व करें। और दूसरा तथ्य यह है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी, यहाँ तक बात करें हम इंडिया में, तो यूएस, यूरोप और अदर डेवलप्ड नेशंस कैन टॉक अबाउट एआई टू मच, बिकॉज वहाँ पर एक बैकबोन है इकोसिस्टम का। अगर मुझे कार्बन फाइबर पार्ट बनवाना है, कॉम्प्लिकेटेड चिपसेट बनानी है, मटेरियल बनाना है, तो देर इज़ एन इकोसिस्टम। इंडिया इज़ लैगिंग बिहाइंड। तो हमारे पास दो टेक्नोलॉजिकल वॉर्स हैं, एक कैचअप करना कि हम मटेरियल्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ तक पहुँचे, और दूसरा पैरेलली एल्गोरिदम्स और एआई पे भी काम करना, सो दैट कि जब 5-10 साल में हमारा नया बैच आए साइंटिस्ट्स का, तो दे आर एट अ लेवल वेयर वी आर एट स्टेट ऑफ द आर्ट एंड देन वी आर रेडी टू क्रॉस इट।
0: अच्छा सर, ये चीज़ परेशान करती रही है, वो इकोसिस्टम की बात हम हमेशा सुनते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, जरूरी ये है कि वो स्क्रू भी भारत में बने, और मतलब स्क्रू मैं छोटी चीज कह रही हूँ, लेकिन एक जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट चीज है, एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट है उसका, वो भारत में ही रहे, और इसके लिए बहुत तेज एक रेस है जिसमें हमें जीतना है।
2: बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि एक रेस है जिसमें जीतना है, और उसमें हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज, हमारे छात्रों ने जब हाथ ऊपर कहा कि हम एकलव्य हैं, ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनको किसी बाहर की चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद जब जरूरत पड़ती है तो उसमें जूझ पड़ते हैं। अब
4: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, और 3 बजे की खबरों की आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको 100 महत्वपूर्ण खबरें नॉनस्टॉप 100 में दिखाएंगे। सत्य निकेतन हादसे में बड़ा एक्शन, इमारत का मालिक हरिराम भिवाड़ी से हिरासत में लिया गया, आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया जा रहा है। दिल्ली सत्य निकेतन हादसे को लेकर सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी कार्रवाई, एमसीडी के 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया। एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर सस्पेंड। सत्य निकेतन हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हुई, मौत के बाद एक्शन 30, पीजी मालिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले जारी किया गया था, वो हिरासत में लिया गया, पकड़ा गया। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने के बाद राहत और बचाव का काम जारी है, बिल्डिंग गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। सत्य निकेतन हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, कहा एक भी अपराधी नहीं बचेगा। सत्य निकेतन हादसे के बाद बड़ा एक्शन, पास की इमारत भी गिराई जाएगी। दिल्ली मेयर प्रवेश वाही बोले, अवैध निर्माण को बढ़ावा देने, लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों को तुरंत नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दिल्ली हादसे को लेकर सत्ता विपक्ष के बीच राजनीतिक संग्राम, उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बीजेपी पर बरसी, बोली दिल्ली में माफिया चल रहा। दिल्ली हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने जताया दुख, बोले ये टाली जा सकने वाली घटना थी, हर छात्र का जीवन अनमोल। दिल्ली पीजी बिल्डिंग हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं का एमसीडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, एमसीडी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। सुरक्षाकर्मियों, प्रदर्शनकारियों में झड़प, पुलिस ने कई को हिरासत में लिया। सत्य निकेतन हादसे को लेकर एबीवीपी का आरोप, नगर निगम की लापरवाही से हुआ हादसा, प्रदर्शनकारियों ने एमसीडी कमिश्नर के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली हादसे पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सत्य निकेतन हादसे के खिलाफ आप छात्र विंग का प्रदर्शन, दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन के पास जुटे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती में कथित घोटाले के खिलाफ पुणे में छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों में आक्रोश। पुणे की सड़कों पर हजारों छात्र मार्च निकालकर एमपीएससी से जवाबदेही तय करने की मांग करेंगे, भर्ती परीक्षा प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता की मांग। छात्रों की प्रमुख मांगों में एमपीएससी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग शामिल, अभ्यर्थियों ने कहा सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता जवाबदेही जरूरी। कोलकाता से धीरेन्द्र शास्त्री ने दुर्गा पूजा पंडालों के किनारे नॉनवेज की बिक्री पर कहा, नवरात्र में दुर्गा पंडाल के पीछे नॉनवेज का भोजन किया जाता है, यह हमें पसंद नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हम चाहते हैं इस बार की नवदुर्गा में कलकत्ता का हिंदू जागे, नॉनवेज खाने वालों का बहिष्कार करे। कोलकाता में बीजेपी एमएलए सौरभ सिकदर का बड़ा बयान, बोले भगवा कपड़े पहनने से कोई बीजेपी कार्यकर्ता नहीं बन जाता। बीजेपी एमएलए सौरभ सिकदर बोले, भगवा त्याग और बलिदान करेंगे, पार्टी टिकट के लिए भगवा पहनने वालों के लिए है मेरा संदेश। जयपुर निकाय चुनाव में एआईएमआईएम आरएलपी का शक्ति प्रदर्शन, ओवैसी और हनुमान बेनीवाली ने संयुक्त जनसभा की, हनुमान बोले बीजेपी कांग्रेस के सामने तैयार है हमारा तीसरा विकल्प। जयपुर में ओवैसी का बीजेपी पर हमला, मस्जिदें तोड़कर नफरत की दीवार ऊंची करने की राजनीति बंद हो। तेलंगाना विधानसभा में 22A लिस्ट का उठा मुद्दा, बीजेपी ने जमीन मकानों की चर्चा की मांग की। तेलंगाना विधानसभा के गेट पर हंगामा, बीआरएस विधायक सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने पुलिस पर साड़ी खींचने का लगाया आरोप। तेलंगाना विधानसभा गेट पर बीआरएस विधायकों और पुलिस में झड़प, महिला विधायक भावुक होकर रोई, ब्लैक टी शर्ट पहनकर विधानसभा पहुंची। तमिलनाडु में एमएलएस को बड़ा तोहफा, वाहन के साथ 75,000 रुपए मासिक भत्ता देने का प्रस्ताव। कर्नाटक में एफडीए की कार्रवाई, अमेजॉन के ठिकानों पर छापा, बिना लाइसेंस रखी गई 4,00,000 से अधिक की दवाएं जब्त। बीजेपी के यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने समाजवादी पार्टी के पीडीए की नई व्याख्या करते हुए कहा, पीडीए का मतलब है पराया धन अपना। विनोद तावड़े ने कहा, हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, यूपी के विकास की रफ्तार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं योगी। अखिलेश ने बीजेपी के यूपी प्रभारी के पराया धन अपना टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा, विनोद तावड़े पागल है। अखिलेश ने बीजेपी पर धन के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में एसपी सहयोगियों की जीत का दावा किया। ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश पर हमला, बोले मुस्लिम प्रेम में सही गलत भूल गए अखिलेश। आजमगढ़ में कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को घेरा, कहा अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो खड़े हो जाओ। बीजेपी यूपी प्रभारी विनोद तावड़े ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, सीएम योगी से मिलने के बाद सभी को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम करने पर जोर। यूपी में बीजेपी के बूथ मैनेजमेंट पर तावड़े का फोकस, बोले बूथ इतना मजबूत करो कि विपक्ष सेंध न लगा पाए। शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या के मामले में गैंगस्टर भोलू साहपुरिया पर 1,00,000 रुपए का इनाम। कनाडा के टोरंटो में बैठे गोगी गैंग के भोलू पर शामली पुलिस ने घोषित किया इनाम, शूटर सत्यम और आर्यन पर भी 1,00,000 रुपए का इनाम। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिले कुएं की गई बैरिकेडिंग, सुरक्षा में पुलिस तैनात, एएसआई की टीम का इंतजार। सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण पर साध्वी प्राची का बयान, बोली जहां मस्जिद हटाई गई वहां हो खुदाई, खुदाई में शिव मिले तो हमारे, शव मिले तो तुम्हारे। सहारनपुर जाने से पहले एआईएमआईएम के प्रवक्ता का मेरठ में नजरबंद करने का आरोप, विपक्ष विरोध, राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने कार्रवाई पर सवाल उठाया। मेरठ में एसपी के विधायक की गाड़ी के आगे पुलिस ने लगाई अपनी गाड़ी, सहारनपुर जाने से रोके गए अतुल प्रधान। सहारनपुर में मुजफ्फरनगर दंगा की बरसी के विवादित पोस्टर हटाए गए, पुलिस ने केस दर्ज किया। आज तक के मंच से सीडीएस का बड़ा संदेश, भविष्य के युद्ध में तकनीक बनेगी निर्णायक शक्ति। आज तक सुरक्षा सभा में सीडीएस के ओंकार, हर मोर्चे पर तैनात रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा। सीडीएस ने आज तक के मंच से बताया युद्ध का नया फॉर्मूला, तेजी से देखो समझो तुरंत एक्शन। सुरक्षा सभा में रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों ने दिखाई अपनी शक्ति। जितेंद्र मिश्र बोले, आत्मनिर्भरता से मजबूत हुई वायुसेना, रडार सिस्टम से 24 घंटे निगरानी, लंबी दूरी तक हमारी भारत क्षमता। दुबई पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, निवेश जुटाने की मुहिम, मुख्यमंत्री ने निवेशकों को एमपी आने का न्योता दिया, सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटर पर विशेष फोकस।
5: वो संभव, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि वास्तव में दुबई आज विश्व के सबसे सफल शहरी विकास मॉडल में माना जाता है, और स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में वो संभावना, और मध्य प्रदेश से सीखेंगे भी और हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे भी।
4: सागर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत के मामले में 20 पर एफआईआर, 8 को गिरफ्तार किया गया, 3 अधिकारी सस्पेंड। सागर जहरीली शराब कांड पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की, बोले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। देश के कई राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून अभी भी है सक्रिय। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान को देखकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, कई स्थानों पर भारी बारिश की आशंका। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बारिश के साथ आंधी तूफान, बिजली गिरने की आशंका, प्रशासन अलर्ट। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की जताई आशंका, पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का बड़ा खतरा। दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, गरज चमक के साथ बारिश की आशंका। बिहार में उफान पर गंगा, 12 जिलों के 22 लाख लोग प्रभावित, पटना में रिकॉर्ड स्तर पर नदी, गंडक, कोसी, घाघरा में भी बढ़ा पानी। मुंगेर में बाढ़ और गंगा के बढ़ते जलस्तर से लोग परेशान, मवेशियों की मौत, लोगों की बचाई गई जान। मुंगेर में आपदा मंत्री रत्नेश सादा ने बाढ़ की समीक्षा की, बोले बिहार के 27 जिले प्रभावित, फसल अन्य नुकसान का करेंगे आकलन। वैशाली में बाढ़ का भीषण कहर, 106 गांव पानी में गिरे, सोनपुर दिघवारा में तटबंध टूटने से हड़कंप, राहत और बचाव तेज। पटना के रामनगर दियारा में 5000 से अधिक लोग बाढ़ में गिरे, लोगों ने मदद नहीं पहुंचने पर प्रशासन पर आरोप लगाए। बिहार के हाजीपुर में 3 जगह से टूटे बांध, जिले के 106 गांव में बाढ़। हाजीपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रशासनिक अधिकारी लगातार दौरा कर रहे, राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर। लखीसराय में गंगा का जलस्तर बढ़ा, घरों मकानों में पानी ही पानी। छपरा में नदी के जलस्तर बढ़ने से टूट गए तटबंध, गांव और खेतों में पानी ही पानी। बिहार में बाढ़ का कहर, कई गांवों में पानी, 5000 से अधिक लोग प्रभावित। रोहतास में डबल मर्डर, लिविन में रह रहे लड़के लड़की की हत्या, जांच जारी। झांसी में रेल बनाने के जुनून ने पहुंचाया अस्पताल, 30 फीट ऊंचे बांध से युवक ने लगा दी छलांग, चट्टान से टकरा। गोरखपुर में अंतिम संस्कार में गए 2 वकीलों पर गिरी बिजली, दोनों की मौके पर मौत। बस्ती में दारोगा आत्महत्या केस में हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार। बांदा में बाढ़ सर्वे के नाम पर अवैध वसूली, हंगामे के बाद लेखपाल मुंशी ने लौटाई रकम। रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी के राज्यसभा सांसद मोहम्मद नदीम हक से जुड़े 60 ठिकानों पर छापे। अहमदाबाद में रिक्शा टैक्सी चालकों का रोजगार बचाओ आंदोलन, 10 सितंबर तक हड़ताल, 2.5 लाख ड्राइवर्स के समर्थन का दावा। नैनीताल के ज्योतिकोट में पीलिया डायरिया का कहर, 2 की मौत, 100 से अधिक बीमार। नैनीताल के पास कई गांवों में दूषित पानी से बीमारी, इलाके में दहशत। अलवर में बेकाबू कार ने 2 को कुचला, मौके पर मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। प्रयागराज में राम वन गमन पथ पर सड़क में दरार पड़ी, 4400 करोड़ के प्रोजेक्ट की गुणवत्ता पर सवाल। इटावा में चलती डबल डेकर बस में आग लगी, 40 यात्रियों का लाखों का सामान खाक, सभी की बची जान। मणिपुर के कांग पोकपी में 2 गुटों के बीच गोलीबारी, प्राइमरी स्कूल में आग लगा दी। पूर्णिया में जर्जर लोहा पुल टूटा, ट्रक नदी में समाया, 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क टूटा। लखनऊ में यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या की, सर पर लोहे के रॉड से हमला करके। इसराइल के पीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यहूदी नववर्ष का जश्न मनाया, बोले ईरान की सरकार का अंत नजदीक। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी बोले आने वाले दिनों में हॉर्मुज के बाहर एक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। अमेरिकी वार्ताकारों से मिलने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उम्मीद है जल्द रूस के साथ युद्ध खत्म हो। उत्तर कोरिया की नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया एक और युद्धपोत, पूर्वी बंदरगाह शहर वॉनसिन में समारोह में किम जोंग भी रहे मौज। जर्मनी की दक्षिण पंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पूर्वी राज्य सैक्सनी अल्थॉट में जीत की ओर। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति कास्त्रो एक मिलिट्री समारोह में आए सामने, अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच कई हफ्तों से उनके स्वास्थ्य को लेकर थी अफवाहें। अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान कार्गो क्रैश, 5 की मौत, 5 घायल। मेक्सिको के सेंटा मारिया इलाके में धमाका, 10 की मौत, कई घायल। नीदरलैंड्स में दुनिया की सबसे बड़ी फूलों की परेड, डच गांव के बीच से फूलों से गुजरे विशाल शानदार 20 गांवों ने हिस्सा लिया। कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के 20वें सीड टॉमी पॉल को 6-4 से हराया।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर।
4: और अब खबरें विस्तार से। खबर सबसे पहले दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। पीजी के मालिक हरिराम बंसल को पुलिस ने पकड़ लिया है। भिवाड़ी से पुलिस ने बंसल को गिरफ्तार किया, भिवाड़ी से हिरासत में लेकर उसे दिल्ली लाया जा रहा है। पुलिस ने बंसल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू टीम ने सोमवार सुबह यानी कि आज सुबह मलबे से एक शव और निकाला। 12 लोगों को बचाया भी गया, 5 की स्थिति इनमें से गंभीर बनी हुई है। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की अभी भी आशंका है। रेस्क्यू डॉग और कैमरे की सहायता से लोगों को तलाश किया जा रहा है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता, और अरविंद ओझा के साथ एक और हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। लेकिन पहले अरविंद, बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया या अभी भी उसके छूटने के कुछ चांस हैं, और क्या जानकारी मिली है पुलिस की तरफ से, क्या और भी कुछ लोग हैं जिनकी तलाश है अरविंद अभी?
7: देखिए हरिराम, जब ये पूरा हादसा हुआ, बिल्डिंग गिरी, उसके बाद से ही वो फरार हो गया था। जब कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौके पर पहुंची तो उन्होंने भी कैमरे के सामने बोला कि बिल्डिंग जो मालिक है वो मौके से फरार हो गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की, और जब इसकी तलाश शुरू की तो गुरुग्राम के इसके बंगले पर पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम, वहां से भी वो गायब मिला। उसके बाद पुलिस ने आशंका जताई कि अपने किसी करीबी के यहाँ पर छुपा हुआ है, फिर वहां दबिश दी गई, वहां से भी गायब हुआ। उसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इसे हरियाणा के भिवाड़ी में पकड़ा गया है, और अब उसे दिल्ली लाया जा रहा है, और दिल्ली लाकर फिर उससे लंबी पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो किस मकसद से फरार हुआ, क्या कोई सबूत छुटा छुपाने की कोशिश की, इस मकसद से फरार हुआ। और देखिए अमानवीयता की हद भी है इसमें सही, क्योंकि एक बिल्डिंग गिरती है,
4: बिल्कुल सही कह रहे हैं अरविंद,
7: बिल्डिंग में आप पीजी चलाते हैं, वहां छात्र जब दब जाते हैं, और जब बिल्डिंग गिरती है तो आप मौके से फरार हो जाते हैं। तो उसे दिल्ली लाया जा रहा है, अब मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश करके इसकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेगी पुलिस, उसके बाद तमाम सवालों के जवाब इससे मांगे जाएंगे।
4: बहुत धन्यवाद, लेकिन कुछ देर और रही है अरविंद, हम और बात आपसे करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है सत्य निकेतन हादसे को लेकर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बड़ा एक्शन लिया है। साउथ जोन MCD के डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, इन सभी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सस्पेंड कर दिया है। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आदेश पर इन 5 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। शिवानी शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। शिवानी, क्या इन 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर देना सही है, सही कदम दिल्ली की मुख्यमंत्री की तरफ से है, या सरकारें और मुख्यमंत्री जो लीपापोती करती है ये वो काम है?
8: देखिए सईद, पहली बार ऐसा हादसा नहीं हुआ है दिल्ली में। हाल ही में आपको याद होगा मालवीय नगर में ऐसे ही एक BNB में आग लगी थी, बहुत लोगों की जाने गई। उससे पहले राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की जाने गई, जहां पर वो बेसमेंट में पानी भरने की वजह से उनकी मौत हुई। और हर बार इसी तरह का सस्पेंशन होता है, लेकिन कुछ दिन बाद बहालियाँ हो जाती हैं। इस बार भी ये एक्शन हुआ है, लेकिन ये एक्शन काफ़ी तब तक नहीं होगा जब तक जो करप्शन है, जो MCD की जड़ तक घुसा हुआ है, उसे नहीं निकाला जाएगा, उसे खत्म नहीं किया जाएगा। क्योंकि किस तरह से ये बिल्डिंग्स चलाने की अनुमति दी जाती है, किस तरह से अवैध रूप से ये निर्माण चलते रहते हैं, साफ आंखों से देखा जा सकता है कि कभी भी ये जो इमारतें हैं वो गिर सकती हैं। लेकिन वहां पर आप देखिए PG चल रहे हैं, बच्चे वहां पर रह रहे हैं, और नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद आकर देखने की कोई जरूरत भी नहीं समझी जाती कि वो नोटिस उस पर कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आप देखिए पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, और एमसीडी की तरफ से ये बार बार होता आया है। ऐसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये जो 5 सस्पेंशन किए हैं ये काफ़ी नहीं दिखाई देते। मैं इस वक्त एम्स के ट्रॉमा सेंटर पर हूँ और सुबह से जिन छात्रों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों से बातचीत कर रही हैं, उनके दोस्तों से बातचीत कर रही हूँ और बहुत ही हृदय विदारक हो जाता है सईद। इन लोगों का ये कहना है कि ये जो सस्पेंशन है इससे क्या उनके बच्चे वापस आ जाएंगे, तो सवाल यही है कि बार बार इस तरह।
9: जी शिवानी, शिवानी आपने आपको रोक रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी बात कही कि सिर्फ सस्पेंड करते हैं और कुछ दिनों बाद बहाल कर देते हैं और एमसीडी पर भी बीजेपी का ही कब्जा है दिल्ली में। खबर अब मध्य प्रदेश की। सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में संदिग्ध जहरीली शराब ने कई घरों में मातम पसरा दिया। बंडा इलाके में शराब पीने के बाद अब तक 11 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह उस ढाबे पर पहुंचे जहां से बताया जा रहा है कि जहरीली शराब की सप्लाई हुई थी।
10: एक ढाबा आज तक ने ढूंढ निकाला है। ये बंडा के पास नौराज गांव है और बिल्कुल सड़क से लगा हुआ ये एक छोटा सा अवैध ढाबा है जहां पे अवैध तरीके से शराब मिलती थी। गांव के लोगों का कहना है कि यहां पर दिन रात मेला लगा रहता था, लोग यहां पे शराब खरीदने आते थे और लालच होता था सस्ती दारू का और इसी का फायदा उठाया इन लोगों ने। और ये जो ढाबा बना रखा है जो दिखने में बाहर से लगेगा कि शायद यहाँ पे खाना मिलता हो लेकिन यहाँ खाना नहीं, लोगों का आरोप है कि यहाँ शराब मिलती थी। हम इस ढाबे के अंदर जाकर के पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या ढाबे जैसा कुछ है या फिर खाने की व्यवस्था थी या नहीं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ढाबे की शुरुआत है, यहाँ पे लोग बैठते थे, यहाँ पानी मिलता था ऐसा उन लोगों का कहना है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये अवैध रूप से बना हुआ एक तरीके का अहाता ही था ढाबे के नाम पर, क्योंकि यहाँ पे सिवाय शराब के कुछ नहीं मिलता था। लोगों का ये कहना है कि बेहद सस्ती शराब मिलती थी यहाँ पे, जो शराब ठेकों पर जिस दाम पे मिलती थी उससे 40-50 रुपए या फिर कई बार लगभग दुगनी से भी कम कीमत पर शराब मिल जाया करती थी और इसी लालच में गाँव के जो लोग हैं वो इस तरीके के ढाबों पर आते थे और इस ढाबे में भी लोगों ने आके शराब खरीदी थी, यहाँ से वो शराब लेके गए थे। और इसमें हर तरफ अगर आप देखें तो शराब के खाली गिलास, बोतलें, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और पीछे भी अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ
9: हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, होते हैं कुछ ही पलों में हाजिर। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज।
6: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।
17: आगे आगे,
18: अरे उधर
17: उधर गया।
18: करेक्ट करेक्ट,
19: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: खाना कहाँ से मंगवाया?
3: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
5: जेके वॉल मैक्स।
3: बेस्ट प्राइमर
6: जेके मैक्स।
3: बेस्ट पेंट
6: जेके मैक्स।
3: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
4: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
3: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: और वही कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: खाना कहाँ से मंगवाया?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जीके वॉल मैक्स।
6: बेस्ट प्राइमर
9: जीके मैक्स।
6: बेस्ट पेंट
9: जीके मैक्स।
6: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
7: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
6: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
10: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
11: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
12: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था, चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
11: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
13: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पकड़ा गया दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे की बिल्डिंग का मालिक हरिराम। राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस ने दबोचा, घटना के बाद सीधा फरार, जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। बिल्डिंग गिरने से अब तक 7 मौत के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफसर सस्पेंड। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार, डीयू और एजेंसीज को जारी किया नोटिस। देहरादून में शुद्धिकरण मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल। परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री के घर तक कार्यकर्ताओं का कूच, पुलिस ने हिरासत में लिया। बारिश के बीच प्रदर्शन करते रहे समर्थक। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से अपील। नवरात्र में मांस मच्छी का करें बहिष्कार। नवदुर्गा में नॉनवेज खाने वाले पाखंडी, अब जाग जाएं पत्ता पत्ता वाले हिंदू। आज तक पर जल थल नभ के धुरंधर। सीडीएस एनएस सुब्रमणि ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। शाम 7 बजे रक्षा मंत्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और खबरें असरदार में सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में अभी की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि डीयू, एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी जहां के ये छात्र थे, एमसीडी जिसके अधिकारियों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सस्पेंड किया है, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, इन सभी को नोटिस जारी किया है। मतलब ये कि जिम्मेदारी आप सभी की है, कहीं ना कहीं आपको बताना पड़ेगा। एनएचआरसी को भी नोटिस जारी किया गया है और इन सबको अब जवाब देना होगा कि आखिर एक ऐसी इमारत, जर्जर इमारत जिसमें छात्र रह रहे हैं, पढ़ने वाले छात्र रह रहे हैं, देश भर से आते छात्र हैं, वो यहाँ पर अपना भविष्य बनाने आते हैं, अपनी करियर की चिंता को लेकर आते हैं, माँ बाप उन्हें यहाँ भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए और उन बच्चों के साथ इस तरह का हादसा होता है। तो हाईकोर्ट ने डीयू, एमसीडी, एनएचआरसी को ये नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली और केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को भी साथ साथ नोटिस जारी किया है। वहां से भी जवाब आना है। केंद्र सरकार को भी अब जिम्मेदार ठहराया गया है, बताया गया है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस समय हाईकोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। संजय, क्या कहते हुए अदालत ने इन सभी अथॉरिटीज को नोटिस जारी किया है? क्या अदालत इनसे जानना चाहती है और इनकी क्या जिम्मेदारी हो सकती है?
2: हाईकोर्ट ने इस मामले में बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं। न केवल सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है, स्थानीय प्रशासन से सवाल पूछे हैं, बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय को भी फटकार लगाई है कि छात्रों के लिए तमाम विकास के दावे किए जा रहे हैं, तमाम फंड आता है, लेकिन हॉस्टल पर्याप्त क्यों नहीं है, छात्र ऐसी जगह पर रहने को क्यों मजबूर है। साथ ही एमसीडी से पूछा है कि इस तरह के पीजी चलाने को लेकर क्या कोई नियम विनियम है, अगर है तो आप हमें जानकारी दें कि आपके पास क्या नियम है, किन नियमों के तहत ये संचालित होते हैं और क्या नियमों का पालन किया जा रहा है। इन तमाम चीजों पर सवाल पूछे गए हैं। इस पूरे जो है जनहित याचिका है, इसमें दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, फायर विभाग, एमसीडी और दिल्ली विश्वविद्यालय सबको पक्षकार बनाया गया है और हाई कोर्ट ने इसमें खरे खरे सवाल पूछे हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता ने कहा कि आए कुछ महीनों के अंतराल पर इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसे ठोस उपाय नहीं किए गए हैं जिनसे ये पर इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। कभी बिल्डिंग में पानी भर जाता है, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, कभी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो एक एक करके तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जिसके लिए जो प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन कोई भी ठोस ऐसा कदम नहीं उठाता है, सिर्फ बयानबाजी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कोर्ट ने आज इन सबकी कुल सही सही खबर ली है और ये पूछा है कि इन इन कौन से नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है, कौन से नियम लागू हैं और अब तक एक्शन क्या लिया गया है।
0: बहुत धन्यवाद संजय शर्मा हमारे संवाददाता। दिल्ली में इमारतों के गिरने का सिलसिला जारी है। दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन में कल एक इमारत गिर गई। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि हादसे के शिकार कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जैसा अक्सर होता है, हादसे के बाद प्रशासन की नींद टूटी। इस मामले में अब तेज कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। पकड़ा गया है दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे की बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल। भिवाड़ी से पुलिस ने हरिराम बंसल को दबोच लिया है। ये फरार चल रहा था और अब पुलिस हरिराम बंसल को भिवाड़ी से दिल्ली ला रही है। दिल्ली में उसका मेडिकल करवाया जाएगा, फिर उसे अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस कस्टडी की मांग करेगी और उसके बाद पुलिस इस हरिराम बंसल से सारे राज उगलवाएगी। क्यों इसने लापरवाही की? बिल्डिंग अगर जर्जर अवस्था में थी तो इसने उस बिल्डिंग को ठीक क्यों नहीं करवाया? इसने क्या क्या अनदेखी की, किन किन अधिकारियों को रिश्वत दी? अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अरविंद, हरिराम बंसल तो पकड़ा गया, लेकिन अब आगे इसके द्वारा क्या कुछ हमें जानकारी मिल सकती है जिससे इस तरह के हादसों को अरविंद रोका जा सके?
3: देखिए, फिलहाल तो इसे भिवाड़ी से दिल्ली लाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में सबसे पहले पेश करेगी दिल्ली पुलिस और वहां से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेगी, जिसके बाद इससे राज उगलवाए जाएंगे कि आखिर किसकी मिली भगत से 40-50 साल पुरानी इस इमारत में पीजी का ये गोरख धंधा चला रहा था। तो किसकी मिली भगत थी, कौन कौन से अधिकारी थे जो उसके साथ मिले हुए थे, किसको रिश्वत दी थी या नहीं दी थी, इन तमाम चीजों का खुलासा दिल्ली पुलिस करने की कोशिश करेगी इससे पूछताछ के बाद। लेकिन फिलहाल ये लगातार कल शाम से ही, जब से FIR दर्ज हुई थी तब से ये चकमा दे रहा था, भाग रहा था। दिल्ली पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि पहले गुरुग्राम में छापेमारी हुई, वहां से भाग गया। इसके करीबियों के यहाँ छापेमारी हुई, वहां से भाग गया। उसके बाद फिर टेक्निकल सर्विलांस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इसे भिवाड़ी से पकड़ा गया है। देखिए, अमानवीयता की हद भी देखिए, जब बिल्डिंग गिरी तो कायदे से इसे जाना चाहिए था, राहत और बचाव काम में इसको हाथ बटाना चाहिए था, लेकिन ये मौके से भाग गया। उसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ा है, अब इसे दिल्ली लाया जा रहा है और आगे की पूछताछ होगी।
0: आप ठीक कह रहे हैं अरविंद, इसे बच्चों की मदद करनी चाहिए थी लेकिन ये भाग गया। फिलहाल बंसल पकड़ा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज सुबह सुबह सत्य निकेतन हादसे वाली जगह पर पहुंची। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आप कह रही हैं कि हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। रेखा गुप्ता ये भी कह रही हैं कि ऐसे हादसे अब दोबारा ना हो, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन सवाल रेखा गुप्ता जी यहां पर यह है कि आप हादसे होने देने के बाद इस तरह के बयान क्यों देती? प्रशासन ने पहले ही ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए कि इन हादसों को रोका जा सके? अब अगर कार्रवाई होती भी है, आपने 5, लेकिन इससे पहले मंत्री सिरसा कुछ कह रहे हैं, हम रेखा गुप्ता की बात करेंगे।
4: मुख्यमंत्री जी ने आज आश्वासन आज और कल दिया था, उसके ऊपर आपने देखा है किस तरह से डिप्टी कमिश्नर से लेकर जेई तक सबको सस्पेंड किया।
5: जो पुराने कंस्ट्रक्शन है, क्या उनका ऑडिट आपको लगता है जरूरी है?
4: देखिए, दो अलग अलग तरह के हैं। कुछ तो मॉनिटोरियम में आते हैं, 2007 का जो मॉनिटोरियम चल रहा है, मे बी बिल्डिंग मॉनिटोरियम के अंदर थी। और उसके साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट यह भी मीटिंग करके कमिश्नर साहब से और वहीं मेयर साहब के मौके पर इस बात को भी सुनिश्चित किया है कि जितने भी इस तरह के पीजी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में चल रहे हैं या एजुकेशन की क्लासेस चल रही हैं या कोई भी हॉस्टल्स चल रहे हैं, उनको अपना स्ट्रक्चर ऑडिट करवाना पड़ेगा वहां, अगर वो ऐसा काम करना चाहते हैं। सारी बाकी जानकारी आपको अभी मिल सकते हैं।
0: मनजिंदर सिंह सिरसा अपनी सरकार, अपनी मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए कह रहे हैं कि सबको करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, जांच करवानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले बच्चे, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे, कोचिंग के बच्चे, उनकी मौत हुई थी, उसके बाद भी यही सरकार की तरफ से कहा गया था, रेखा गुप्ता की तरफ से ये कहा गया था। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह सुबह पहुंच तो चले गई, उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे हम नहीं होने देंगे, उन्होंने 5 को सस्पेंड भी किया, लेकिन जिन बच्चों की जिंदगी चली गई, जिन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, क्या उनकी जिंदगी रेखा गुप्ता वापस लौटा पाएंगी?

0: इस शख्स को गौर से देखिए। जान बचाने के लिए भागते इस शख्स के चेहरे पर खौफ के भाव आप आसानी से देख और पढ़ सकते हैं। ये दिल्ली के सत्र निकेतन का सीसीटीवी वीडियो है, जब एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर गिर जाती है और वहां मौजूद लोगों को जान बचाने के लिए यूं भागना पड़ता है।
1: मुख्यमंत्री के द्वारा भले ही ये कहा जा रहा हो कि किसी भी जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां की अभी सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जो बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी खतरा है, जहां पर पिलर लगा करके ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जो उस बिल्डिंग में थे उसको खाली कराया गया। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये सामने जो है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है यहां पर फायर ब्रिगेड के द्वारा, इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। इसमें नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं कि लोहे के पिलर इसमें लगाए गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है, स्थानीय लोग लगातार ये बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है जो बगल वाली बिल्डिंग थी उसके सपोर्ट में ये खड़ी हुई थी।
0: जिससे अक्सर होता है इस बार भी हुआ। जब बेसमेंट में खुदाई हो रही थी तो प्रशासन सोता रहा, जब बेसमेंट में पानी भर रहा था प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जब खतरे को न्योता दिया जा रहा था प्रशासन कहीं मौजूद नहीं था। अब तक आप जान गए होंगे कि आखिर ये इमारत हादसे का शिकार कैसे हुई, जब गैर कानूनी तरीके से 3 की बजाय 5 मंजिला इमारत बना दी जाए, जब नियमों को ताक पर रखते हुए बेसमेंट को खोद दिया जाए, उसमें बारिश का पानी भरने दिया जाए तो हादसा होगा है। इस हादसे में भी वही पुरानी गलतियां दोहराई गई हैं और किसी को बख्शे न जाने का वही पुराना वादा भी दोहराया गया।
2: जो भी बच्चे यहाँ आसपास की बिल्डिंग्स भी जो डेंजरस स्थिति में पाई जा रही हैं, उनसे उन्हें भी विकेट कराया गया है। और ये खास करके ये बिल्डिंग जो खड़ी है ये पूरी तरीके से डेंजरस प्रतीत होती है। यहाँ से मलबा हटने के बाद में निश्चित रूप से इसको भी गिराया जाएगा, कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा। और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा।
0: अब ऐसे वादों से क्या फायदा मुख्यमंत्री जी, हादसा तो हो गया, जाने तो चली गई, अब लकीर पर लाठी पीटने से क्या होने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हादसे हुए, सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है, जरा उंगलियों पर गिनते जाइए। अप्रैल 2025 मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी जिसमें 11 की जान गई। 17 मई 2025 पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट ढहा, 3 मजदूरों की मौत। 12 जुलाई 2025 उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम में 4 मंजिला पुरानी इमारत ढह गई, 6 लोगों की मौत। 30 मई 2026 साकेत में एक 5 मंजिला अवैध इमारत गिर गई, 6 की मौत। 9 जुलाई 2026 रोहिणी इलाके में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, 3 लोगों की मौत। 6 सितंबर 2026 सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत ढह गई, 7 की मौत। तो सिर्फ सत्य निकेतन के सत्य का ही सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि ऐसे मामलों की सिस्टम और सरकार को परवाह ही नहीं। हादसे की शिकार इमारत में रहने वाले छात्रों को कहां पता था कि जिस पीजी में वो रह रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं, न इमारत के मालिक की, न एमसीडी की, न सरकार की। सुशांत मेहरा अनमोल बाली के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
3: यह हादसा बहुत भीषण था, अब तक इस हादसे में 7 लोगों की जाने जा चुकी हैं, कई लोगों की स्थिति गंभीर है, मरने वालों में अधिकतर छात्र हैं और ये सभी छात्र दिल्ली अपना भविष्य बनाने, भविष्य संवारने के लिए आए थे, लेकिन घोर लापरवाही ने हमारे बच्चों की जान ले ली।
4: कितने सारे बच्चे हमारे सामने होंगे, पूरी धारा सर, हम कहां रह रहे हैं।
0: सत्य निकेतन में जो इमारत गिरी उसमें कई जिंदगियां खत्म हो गई।
4: यार चलो उनको
0: बचाओ। उन्हीं में से एक था आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज का छात्र था अर्पित, वो अब इस दुनिया में नहीं है।
5: दिल्ली हादसे में जिन छात्रों की जान गई है उनमें से एक है अक्षत सिंह यादव। अक्षत पीजीडीएवी कॉलेज का छात्र था, वो भी बदकिस्मत रहा, उसकी जान नहीं बच पाई। कोई बताएगा कि अर्पित और अक्षत का क्या कसूर था? क्या इनका सिर्फ ये गुनाह था कि अपने घर से दूर ये अपना भविष्य सुधारने के लिए दिल्ली पहुंचे थे? क्या ये गलती थी कि इन्होंने दिल्ली के हुक्मरानों पर, निगरानी तंत्र पर आंखें मूंद कर भरोसा किया था कि जो व्यवस्था अभी है वो उसकी जान की हिफाजत करेगा? या फिर उनका ये मान लेना गुनाह था कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पिछले हादसों के बाद से हालात सुधर गए होंगे? दिल्ली में हुई लापरवाही ने अर्पित और अक्षत की जिंदगी छीन ली है। उनके साथ साथ कई अन्य छात्र भी हैं जो अपनी जिंदगी हार गए। किसी दूसरे की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। बीकॉम के छात्र अर्पित के दोस्त की जुबानी सुनी कि जो बिल्डिंग जमींदोज हुई है साल भर पहले, उसकी हकीकत क्या थी?
6: जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, जब पीजी देख रहा था मैं पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो उस टाइम उस पीजी का रिनोवेशन नहीं हुआ था। तो वो पीजी हमने देखा, उस पीजी पे 10 फुट की दरार चल रही है। हाँ, उसे देखते मेरे पापा ने बोला कि ये पीजी तो लेना ही नहीं है। फिर उससे दूर की उसके आगे जो फर्स्ट लेन थी उसमें उन्होंने पीजी किया। और फिर जब अर्पित आया उसके टाइम पे रिनोवेशन के नाम पे उसके ऊपर कलर कर दिया था बस, और जो दरारें थी मुझे नहीं पता पुट्टी से या किस चीज़ से उसको छुपा दिया था, पर सही नहीं करा था उसने। और अब टाइम हो गया, एक साल हो गया उसको, बारिश का मौसम था, पता नहीं उसकी फाउंडेशन कैसी थी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता लीगल था।

0: बंदर पर कटनी जाकर राखी भी बधाई थी, लेकिन परिजनों के रोकने के बावजूद वो नहीं माना। तैयारियों का हवाला देकर दिल्ली चलाया था। अब अपनों की आंखों में आंसू हैं।
1: आपको पता चला कटनी है कि अच्छा जिस बिल्डिंग में रहता था वो बिल्डिंग गिर गई है। तुम गाड़ी पकड़ के कर आया था, वहाँ बोले थे कुछ लोग मिल रहे हैं, कुछ सही साठ है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि सेफ जोन में है, लेकिन अब सवेरे आके पता चलता कि सेफ जोन का बेचारा हमारा बेटा चले भी गया।
0: सत्य निकेतन में जानलेवा हादसा हुआ है। अब जांच होगी, एक्शन भी होंगे, लेकिन ना तो अक्षत वापस लौटेगा और ना ही अर्पित। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है, अब उनके लिए मातम पसरा है। अंशु सिंह और शिवानी शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
2: दिल्ली के जिस सत्य निकेतन इलाके में हादसा हुआ, वहां कई सारे पीजी और हॉस्टल्स वर्षों से चल रहे हैं, और इन पीजी में, इन हॉस्टल्स में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम नहीं है कि हादसों को रोका जा सके। ये हॉस्टल्स इस तरह की स्थिति में है कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ऐसे में एक पीजी का हाल देखिए, हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे इस बारे में। तो सत्य निकेतन की जिस इमारत में हादसा हुआ, जो इमारत हादसे का शिकार हुई, वो लंबे अरसे से खस्ता हाल थी। खंबे लगाकर यानी कि सहारा देकर उस इमारत को बचाने का प्रयास किया जा रहा था। कैसे, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह।
3: मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां की अभी सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जो बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी खतरा है, जहां पर पिलर लगा करके ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जो उस बिल्डिंग में थे उसको खाली कराया गया। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये सामने जो है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है यहां पर फायर ब्रिगेड के द्वारा, इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद है। और जो सामने की तस्वीर आपको जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, जिसमें खुले हुए ईंटे जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एक अलग तरीके का, और इसमें नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं कि लोहे के पिलर इसमें लगाए गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है, स्थानीय लोग लगातार ये बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है, जो बगल वाली बिल्डिंग थी उसके सपोर्ट में ये खड़ी हुई थी, और अब ये बिल्डिंग थोड़ी झुकी हुई दिखाई पड़ रही। जिसके
2: इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।
4: इन एसोसिएशन विद
5: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
4: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
9: आगे दलदल का इलाका है, भरकुशी के एकदम किनारे पर खड़े हैं, और बटार में देखे ये सोलर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। पता तो चले कि किनके अपने लापता है, क्योंकि बहुत सारे लापता लोगों की संख्या 2500 से ज्यादा है। सब कुछ सब रेत से भरा हुआ था, और ये तबाही के निशान अपने साथ कई सारी मानवीय त्रासदियों के निशान भी छोड़ जाते हैं। सब बरामद हो, उनकी आवश्यक जरूरी चीजें हैं, उन लोगों की चीजें बरामद की जा सकती है।
10: इतना कह सकती हूँ कि जो भी व्यक्ति इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो बिल्डिंग का मालिक है या अधिकारी है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी थी और इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन का रेनोवेशन का काम चल रहा था, बेसमेंट में किसी प्रकार की खुदाई चल रही थी जिसके कारण से पिलर जो है वो हिला और वो पूरी बिल्डिंग ढह गई। पीजी के नाते ये बिल्डिंग काम कर रही थी, बच्चे इसके अंदर थे और लगातार सभी एजेंसी

0: काम कर रही है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है इन बच्चों की पहले जान बचाई जाए। रेस्क्यू प्रोग्राम इसी प्रकार से चलेगा। सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी, परंतु दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित रूप में कह रही हूँ।
1: जो बिल्डिंग का ओनर है उसको भी, उसका भी जो घर है पता कर लिया गया है। गुड़गांव में वो अभी निवास कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, क्योंकि वो अनिवार्य है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 31 अगस्त को 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है जब समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बनाने के लिए छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला करने का फैसला कर लिया है। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए। दलित वोटों तक पहुंच की समाजवादी कोशिश की वानगी कुछ ऐसी है कि अखिलेश किसी भी चुनावी मुद्दे का जिक्र करते हुए बाबा साहेब को याद करना नहीं भूलते।
1: प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चोरी हुई तो सोचो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान और कानून उसी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि चोर पकड़े गए ना, तो चोरों के कार्रवाई कैसे हो रही है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, जो कानून बनाया उसी के तहत तो पकड़े जा रहे हैं।
0: अखिलेश के अम्बेडकर मंत्र के पीछे दरअसल चुनावी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 2022 में जहां समाजवादी पार्टी को बमुश्किल 10 से 12 फीसदी दलित वोट मिले थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर लगभग 35 से 40 फीसदी तक पहुंच गए। इंडिया गठबंधन की ओर दलितों के बढ़ते इस रुझान ने अखिलेश को उम्मीदों से भर दिया है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी छात्र सभा की ड्रेस से ही सही अपना लाल रंग छोड़ नीला होने को तैयार हो रही है। और नीले रंग की महिमा कुछ ऐसी है कि 1942 में अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, तब उन्होंने इसके लिए गहरे नीले रंग का झंडा चुना। उस झंडे के केंद्र में अशोक चक्र स्थापित था। अंबेडकर खुद ही अक्सर नीले रंग के कपड़े पहनते थे। बाद में दलित सियासत करने वालों ने भी इसी नीले रंग को अपनाए रखा। और अब लोहिया के जमाने से लाल रंग के साथ सियासत करती आ रही समाजवादी पार्टी धीरे धीरे नीले रंग को अख्तियार करती दिख रही है। हालांकि इसका वोट के लिहाज से चुनावी असर अभी देखना बाकी है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पकड़ा गया दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे की बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस ने दबोचा। घटना के बाद से था फरार, जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। बिल्डिंग गिरने से अब तक 7 की मौत। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कड़ा एक्शन। एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर सस्पेंड। दिल्ली हाईकोर्ट ने घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। देहरादून में शुद्धिकरण मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल। परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक कार्यकर्ताओं का कूच, बीच में पुलिस ने हिरासत में लिया। बारिश के बीच प्रदर्शन।

और आज तक पर जल थल नभ के धुरंधर सीडीएस ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी शाम 7 बजे। रक्षा मंत्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात। रूस के हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार, रिहायशी इलाके पर ड्रोन से हमला, एक की मौत, 4 घायल।

0: सत्य निकेतन मामले में बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी हरिराम भिवाड़ी से गिरफ्तार।
1: कितने सारे बच्चे हमारे सामने ही होंगे, पूरी धारा ऐसा हम कहां रह रहे हैं वैष्णो।
0: रेखा गुप्ता का सख्त कदम, एमसीडी के 5 बड़े अफसर सस्पेंड। दिल्ली हाई कोर्ट में 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग। अवैध हॉस्टल डेज पीजी में कैसे जिंदा दफन हुए छात्र। जर्जर इमारत से कमाई, नींव की खुदाई। कब तय होगी पूरे सिस्टम की जवाबदेही।
2: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील, आप देख रहे हैं आज तक। मेरे पीछे वो जगह है जहां पर अभी भी कोशिश हो रही है कि अगर कोई भी फंसा हो, कोई भी उस इमारत के नीचे गिरा फंसा हो, उसको निकाला जा सके। अभी तक 7 छात्रों की मौत हो चुकी है और लगभग 10 से 11 छात्र वो हैं जो एम्स में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कुछ देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक बयान आया, उसने एक सवाल पूछे हैं और जवाब मांगा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और दिल्ली सरकार से। कुछ देर पहले रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, ने भी ऐलान किया ट्विटर पे जाकर के कि एक्शन हुए हैं। लेकिन वो परिवार और जो यहाँ पर छात्र रहते हैं, ये सत्या निकेतन का इलाका है जहां पर हर गली में पीजी अकोमोडेशन है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स की कमी है। उसके वजह से ज्यादातर बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं वो पीजी अकोमोडेशन में रहते हैं। बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं उनको, लगभग 15 से 16 हजार रुपए का एक बेड मिलता है और बहुत ही छोटे कमरे होते हैं जहां पर जिंदगी बहुत टफ है। इतनी टफ है कि वो पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनका 3 साल है अपना अंडर ग्रेजुएट पूरा करने का, वो ग्रेजुएशन करके यहाँ से निकले। कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना। सत्या निकेतन के इस इलाके में ये रहती हैं, उसके अलावा ये सब जो स्टूडेंट्स हैं, ये सब छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। मुझे बताइए आप कहाँ पर रहती हैं और किस तरह की हालत है। ज्यादातर जैसे आप जैसे छात्र यहाँ पर कैसे रहते हैं।
3: एक्चुअली आई एम इन फर्स्ट ईयर, सो मैं अभी आई, मैंने पीछे देखा, इट्स बीन ओनली 20 डेज सिंस आई एम लिविंग हियर। इट्स लाइक लिटरली हेल, वी आर लाइक फाइटिंग फॉर आवर बेसिक नीड्स, लाइक फूड क्वालिटी, पीजीज आर सो ओवर प्राइस। आई एम इन फर्स्ट लेन एक्चुअली।
2: नहीं तो मुझे बताओ कि जब तुम बोल रही हो कि खाने का क्वालिटी खराब है या कमरा कैसा है, उसके बारे में बताइए कि अगर ये इस तरह की जो घटना हुई है तो क्या आपके माता पिता ने ये बोला कि छोड़ करके आ जाओ, वो घबरा गए, परेशान हो गए।
3: वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा गए और घबराएंगे भी, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से इतना कट ऑफ क्लियर करके इतनी पढ़ाई करके आते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, इतने एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, इतने सारे ड्रीम्स के साथ आते हैं, फिर 15-20 दिन में अगर हमारे साथ ये सब हो रहा है तो उनका घबराना भी रीजनेबल है।
2: कहाँ से हैं आप?
3: आई एम फ्रॉम यूपी एक्चुअली,
2: उत्तर प्रदेश से हैं।
3: जी,
2: तो कितना रुपया लगता है एक उस रूम में जहाँ पे आप रहती हैं?
3: मेरा रूम तो है 10.5K, बट उसमें फूड और कुछ भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी अलग से, फूड भी हमें अलग से मैनेज करना है, क्लीनलीनेस के चार्जेस भी अलग से देने हैं। और यहाँ पे सबका ऐसा ही है, पीजी ओनर्स उनको इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रखा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे पीजीज का रेंट इतना ज्यादा है, 15K-16K से स्टार्टिंग है, और दे आर प्रोवाइडिंग नथिंग, लाइक स्पेस भी नहीं है, वेंटिलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
2: फायर एक्सटिंग्विशर कुछ
3: हर सारे आप देख सकते हैं। 90% ऑफ बिल्डिंग का यही हाल है कि कोई कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते।
2: इतनी बुरी हालत है। आप यहाँ पे रहते थे और उसके बाद आप नॉर्थ कैंपस मूव कर गए?
4: मैं फिलहाल सेकंड ईयर में हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, जब आसपास यही जगह थी, घर वालों को ये रहता कि हॉस्टल बच्चा कॉलेज के पास रहे। जब मैंने यहाँ नई पीजी ली, मतलब क्या होता है कि यहाँ सिक्योरिटी लग जाती है 12 महीने से पहले, आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी है वो कट जाएगी। इस डर की वजह से हमें 12 महीने मजबूरन रहना पड़ा। 40,000 की मेरी सिक्योरिटी थी, इस वजह से मैंने 12 महीने काटे हैं, फिर बाद में मैंने दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ। नहीं तो मतलब छोड़ तो मैं 1 महीने में ही देता, क्योंकि यहाँ की हालत ऐसी है।
2: हालत ऐसी है कैसी है,
4: मतलब
2: बोलते हैं ऐसी हालत है तो कैसी हालत?
4: ना ही तो कोई वेंटिलेशन है, ना ही कोई मतलब हवा है, बीमारियां हो रही हैं। मेरे भी खुद स्किन प्रॉब्लम्स हुई थी जब मैं था, टाइफाइड भी हुआ था मेरे पानी की वजह से,
2: और खराब है
4: पानी भी खराब है, हर चीज खराब है। मतलब कोई बेहतर कुछ है ही नहीं। जो मिलता है मैं 18 के देता था एक रूम के लिए, एक शीट के लिए 18 के,
2: हाँ मतलब
4: एक बेड के लिए 18,000।
2: साथ साथ क्या फैसिलिटी
4: मिल, बेड के साथ साथ खाना पीना ये मिलता था, और जीरो फैसिलिटी तो क्या, जीरो फैसिलिटी है। जो मतलब जो मिलनी चाहिए वो नहीं थी, बेसिक जो फैसिलिटी है वो भी बहुत रेयर फैसिलिटी है। अब मेरा कमरा इतना छोटा था कि मैं 5 दोस्तों को भी साथ में नहीं ले जा सकता था।
5: मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ता हूँ और नॉर्थ कैंपस में रहता हूँ, लेकिन ये जो मंजर है ये सिर्फ यहाँ की स्थिति नहीं है, लगभग हर जगह की यही स्थिति है। अगर आप दिल्ली के किसी भी ऐसे इलाके में जाके देखेंगे जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे रहते हैं, कॉलेज के बच्चे रहते हैं, तो आप देखेंगे ये छोटी गलियां, छोटे कमरे, वो दूर दूर से बच्चे। मैं 915 नंबर लेके हंसराज कॉलेज में आ जाऊं, लेकिन जब मैं ये देखता हूं कि वो हौसले और जो उम्मीदें हम यहां लेके आए थे वो उस मलबे के नीचे दबी हैं, वो बच्चे जो अभी भी उस मलबे के नीचे जिंदगी और मौत से झूल रहे हैं, बस किस चीज के लिए, कुछ चंद पैसों के कारण। उनकी जान की कीमत आज उन पैसों से नीची हो गई है। वो बच्चे तो उन हौसलों के साथ आए थे यहाँ कुछ बड़ा करने। मेरे रूममेट की मम्मी का रात को फोन आता है, वो रोने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि तू कितना दूर है, तो शायद हम दूर तो नहीं है, हम बहुत पास हैं, शायद अगला हम भी हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है
2: जी। हम इन बच्चों से बात करेंगे, इन छात्रों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पीजी मेज है ये जंगल की तरफ बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर फैसिलिटीज क्यों नहीं है, ये सवाल भी हम जरूर पूछेंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी को ये जवाब देना होगा, वाइस चांसलर को जवाब देना होगा, डायरेक्टर्स को जवाब देना होगा, क्योंकि ऐसा क्यों है कि हॉस्टल ज्यादा अवेलेबल नहीं है, उनका इंतजाम क्यों नहीं किया गया है ताकि ये जो बच्चे आते हैं अपनी एक नई दुनिया बनाने के लिए छोटे छोटे शहरों से उनको मौका मिले जिंदगी में एक अच्छे साफ सुथरे जगह रहने का और उसके साथ साथ पढ़ने का। आज क्या क्या हुआ, 24 घंटे में क्या क्या हुआ है, क्या एक्शन लिया है दिल्ली सरकार ने, क्या लुकआउट नोटिस हुआ है उस ओनर के खिलाफ जो मालिक था उस बिल्डिंग के, ये इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद फिर वापस आएंगे और इन छात्रों से बात करेंगे।
1: कितने सारे बच्चे हमारे सामने ही होंगे, पूरी धारा ऐसा गॉड, हम कहां रह रहे हैं वैष्णो।
6: एक सपना जो मलबे के नीचे दफन हो गया और जिम्मेदार हमेशा की तरह बेखबर।
1: यार चलो उनको बचाओ।
6: 40 साल पुरानी जर्जर इमारत, इसके बावजूद कमाई के लिए बेसमेंट में खुदाई, दुकान गोदाम बनाने के लिए 7 दिन से नींव हिलाई जा रही थी, लगातार हो रही बारिश का पानी भी बेसमेंट में भर चुका था, पानी ने इमारत की नींव को और कमजोर कर दिया, इसके बावजूद बेसमेंट में काम चलता रहा। आखिरकार इमारत का मुख्य पिलर खिसका और पूरी बिल्डिंग चंद सेकंड में भरभरा कर गिर गई। कागजों में सिर्फ 2 मंजिल लेकिन मौके पर 5 मंजिला मौत का ढांचा। नियमों को ताक पर रखकर आवासीय इलाके में बिना फायर सेफ्टी, बिना स्ट्रक्चरल ऑडिट के हॉस्टल डेज नाम से लड़कों का पीजी चलाया जा रहा था, और इस लालच की कीमत चुकाई 21 साल के अर्पित जॉर्ज ने। बीकॉम का छात्र अर्पित, जो अपने बेहतर भविष्य के सपने को लेकर दिल्ली आया था, इस लापरवाही की भेंट चढ़ गया। इस बिल्डिंग में रहने वाले बीकॉम के छात्र अर्पित जॉर्ज की मौत हो गई। सैकड़ों बार इस पीजी में जा चुके अर्पित के ही हम नाम दोस्त से सुनिए इमारत कितनी खतरनाक थी।
7: पीजी मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, जब पीजी देख रहा था मैं पापा के साथ मम्मी के साथ, तो उस टाइम उस पीजी का रिनोवेशन नहीं हुआ था, तो वो पीजी हमने देखा उस पीजी पे 10 फुट की दरार चल रही, और फिर जब अर्पित आया उसके टाइम पे रिनोवेशन के नाम पे उसके ऊपर कलर कर दिया था बस, और जो दरारें थी मुझे नहीं पता पुट्टी से या किस चीज से उसको छुपा दिया था, पर सही नहीं करा था उसको।
1: अच्छा।
7: और अब टाइम हो गया, 1 साल हो गया उसको, बारिश का मौसम था, पता नहीं उसकी फाउंडेशन कैसी थी।
6: हादसे के बाद सिस्टम की नींव खुली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश दिए हैं और सत्य निकेतन इलाके में अवैध निर्माणों को सील करने का फरमान जारी हुआ है।
8: दुर्घटना बहुत ही दुखद है, इस बिल्डिंग के ऑनर की जो लापरवाही है। बहुत पुरानी बिल्डिंग थी और बेसमेंट में पानी भरा होने के कारण उसके पिलर जो है वो गिर गए, पूरी बिल्डिंग ढह गई। जितने भी वो अधिकारी हैं जिनकी अनदेखी थी, लापरवाही थी या कोई भी कारण था, ऐसे अधिकारियों को भी आज की आज उन पे एक्शन होगा, किसी को भी छोड़ेंगे।
6: लेकिन सवाल वही है, क्या ये कार्रवाई हादसों को रोक पाएगी? ग्राउंड जीरो की तस्वीरें डराने वाली हैं। गिरी हुई इमारत के ठीक बगल में खड़ी इस दूसरी 5 मंजिला इमारत को देखिए। दवा की दुकान में गहरी दरारें हैं और इमारत लोहे की रॉड के सहारे टिकी है। दूर दराज से आए बच्चों के सपने इसी तरह मलबे में तब्दील होते रहेंगे। बैठकें होंगी, 2-4 अफसर सस्पेंड होंगे और फाइलें बंद हो जाएंगी।
7: हमारी किसी ने हेल्प नहीं करी क्योंकि हम अपने दोस्त को ढूंढते रहे, 24 घंटे बाद ही हमें उसकी डेड बॉडी मिलती है, हमें वो अलाइव नहीं मिलता है। तो ये सब वो खराब सिस्टम, ये सब सिस्टम की गलती है। ऐसी बिल्डिंगें क्यों बनवाने देते हो और लोगों को अलाउड क्यों करते हो रेंट करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं।
6: सिस्टम का ये खोखलापन कब तक मासूमों की जान लेता रहेगा? दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: और इस इलाके में हर गली में अभी आपको बच्चे मिल जाएंगे जो अपने बारे में बताएंगे, अपनी स्टोरीज बताएंगे और ये भी बताएंगे साथ साथ कि कैसे उनके माता पिता उनको बोल रहे हैं कि कुछ दिन के लिए ही सही छोड़ दो और उसके बाद फिर से आ जाना। लेकिन वो क्या, जो कुछ दिन के लिए अगर वो जाएंगे तो क्या सब चीज बदल जाएगा? क्या ये जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो फ्लोर्स ऐड हुए हैं, उस पर जो वायलेशंस हुआ है, जो अनसेफ्टी है पूरी बिल्डिंग की, वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बच्चों से बात करेंगे और छात्रों से बात करेंगे तो वो एक सेंस जरूर मिलेगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं?
4: मैं लॉ फैकल्टी से रहा हूँ स्टूडेंट। हाँ जी।
2: तो यहाँ पर आने का मतलब?
4: सारे हमारे यूनिवर्सिटी के लोग हैं। ये कल जो आज यहाँ हुआ है, नॉर्थ कैंपस में भी हो सकता है, आसपास हो सकता है, पूरी दिल्ली में कहीं भी हो सकता है। अलग अलग शहर से लोग आए हुए हैं, हमारे शहर के भी लोग थे इसमें। मैं कल से यहाँ पे हूँ। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम स्टूडेंट काफी अपफ्रंट रहे हैं, बहुत सारे इशू एड्रेस करने की कोशिश कराते रहे हैं पिछले कई सालों से। मैं यही दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ फैकल्टी का छात्र हूँ। हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3.5 लाख छात्र हैं, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ 9,000 लोगों को है। आप समझिए कि 100 में से सिर्फ 3 बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल मिल सकता है, बाकी 97 लोग ऐसे ही किसी प्राइवेट पीजी में रहने को मजबूर हैं और जहाँ पे ना बेसिक फैसिलिटी है ना कुछ है। आप आंख उठा के देखेंगे तो सारे ऐसे ही जर्जर हालात में आपको बिल्डिंग दिखेंगे। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, नॉर्थ कैंपस में जाएंगे इससे भी जर्जर हालात मिलेंगे, जहाँ भी है। ये साउथ कैंपस में यहाँ पे इस प्रॉक्सिमिटी में 6 कॉलेजेस हैं, इनके पास एक भी अपना हॉस्टल नहीं है। तो इसके वजह से ये कुछ 8-10 ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि मोनो
2: बना रहे हैं अपने इस तरह से, क्योंकि जो ओनर है उस बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग गिरी है, जो हॉस्टल डेज कहा जाता था, उनकी और सारी बिल्डिंग्स हैं ये इस एरिया में, और सारी इमारतें हैं जहां पर वो पीजी अकोमोडेशन चला रहे हैं। तो क्या छात्र जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का एग्जाम, जब इलेक्शन होता है, तो ये सब इशू क्यों नहीं रेज हो?
5: मुझे लगता है कि जब इलेक्शन होता है तो चीजें एक बार के लिए गर्म हो जाती हैं, लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर सत्ता जब उनके पास आ जाती है तो सत्ता के बाद हर चीज भुला दी जाती है। वो बच्चा जो बहुत दूर चल के उन्हीं को वोट, उन्हीं के वोट से जो सत्ता में आए थे, उन्हीं सत्ता वही बच्चों को भुला देती है।
2: ये आप जब सुनेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, साउथ कैंपस के छात्र हैं और वो अपनी परेशानियां बताते हैं। हमारे पास जो 7 छात्र हैं उनमें से 2 का आइडेंटिफिकेशन हो गया है जिनकी मौत हुई है। उनके परिवार वाले आज शॉक में हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं रेखा गुप्ता से, दिल्ली के एलजी से और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके बच्चे आए यहाँ पर अपना ख्वाब लेकर के, ये उम्मीद से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो इतना टफ एग्जाम होता है वो पास करने के बाद शायद वो एक अच्छी जिंदगी होगी, एक यहाँ से वो पास करेंगे तो अच्छी जॉब मिल सकती है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है हम, और वो सब जब थम जाए, उनकी आवाज सुनते हैं उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं।
9: 6 बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनमें से एक अक्षत यादव है कटनी के, उनके जो दोस्त हैं मेरे साथ मौजूद हैं, युगांक और आयुष्मान मेरे साथ हैं। युगांक बताइएगा कि क्या हुआ और आपको कैसे पता चला?
10: अक्षत एक्चुअली उसको मैं पर्सनली नहीं जानता था, वो मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट था। तो कल हम पीजी डीएवी कॉलेज के आसपास ही थे तो हमें पता चला करीब 1:30 बजे की शक्तिनिकेतन में बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। हम उस साइट पे जब गए थे हमारे कॉलेज के एडमिन का कॉल आया था हमारे पास कि हमारे कॉलेज का भी स्टूडेंट उसके अंदर फंसा हुआ है, तो उसके बारे में अगर हमें कुछ डिटेल पता चले तो हम बताएं। तो वहाँ हमने पूछताछ वगैरह करी थी तो रेस्क्यू टीम भी अपना काम कर रही थी वहाँ। उस टाइम पे हमें ये बताया गया था कि वो ऑलरेडी एम्स हॉस्पिटल पहुँच चुका है, बट जब हमने यहाँ ट्रॉमा सेंटर पे कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि वो यहाँ पर नहीं पहुँचा था, उन्होंने हमसे मतलब झूठ बोला था। वो मतलब रेस्क्यू टीम के नहीं थे, वो नॉर्मल सिविलियन ड्रेस में ही थे, उन्होंने हमसे पता नहीं क्यों ऐसा झूठ बोला।
11: उनकी बिल्डिंग्स के उसके आसपास की भी बिल्डिंग्स टूट रही थी, हमारे पास वीडियोस भी हैं। और इनफैक्ट जब वो बिल्डिंग गिरी थी तो उसके बगल में एक और पीजी था, उसकी बिल्डिंग भी हिलने लगी थी। तो ये खुद ही दिखाते हैं कि शक्तिनिकेतन जहाँ पे इतने साउथ कैंपस के सारे बच्चे और भी कैंपस के सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसको नज़रअंदाज किया।
12: आकाश जी ने बताया कि वो आईएएस बनना चाहते
13: थे। जी जी जी, आईएएस बनना चाहते थे।
12: और अभी वो घर पर ही गए हुए थे रक्षाबंधन के लिए?
13: जी जी, रक्षाबंधन में घर गया था, वो 2 दिन पहले ही आया।
12: आखिरी टाइम कब बात हुई
13: उसकी मम्मी से? परसों बात हुई थी, कल बात नहीं पाई।
12: आगे शिनाख्त कैसे हुई?
13: शिनाख्त उसके क्या है कि बचपन में गिर गया था, मैं ही उसको अस्पताल लेके गया था यहाँ मिशन लगे थे उठने के बाद, तो उसका टाँका जो लगा था वो शिनाख्त हुआ उससे।
12: अभी जब वो आए हुए थे तो आप बता रहे थे कि उनकी माताजी मना कर रही थी अभी मत जाओ।
13: जी, अभी 2 दिन पहले वो बैग डिवेट गिर गया तो मम्मी बोली मत जा मत जा, लेकिन वो नहीं माना, चले आया।
14: आइए बात करते हैं और छात्रों से और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो पीजी अकोमोडेशन है वो कैसा है। आप यहाँ पर आसपास में रहती हैं शक्तिनिकेतन की किस लेन में?
15: मैं फर्स्ट लेन में रहती हूँ।
14: इसी में?
15: नहीं, मैं उधर वाली,
14: उधर
16: फोर्थ लेन में।
14: फोर्थ लेन में किस तरह की फैसिलिटीज है यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पर ये घटना घटी क्या आप लोगों के लिए वो शौक है कि कैसे हुआ, बिल्डिंग कैसे गिर गई?
15: शौक तो है ही, क्योंकि आप देखिए एकदम से ऐसे लग रहा है कि जैसे ऐसी समतल भूमि हो, वो बच्चे नीचे दब गए। अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो चुका है, तब तक भी इतने जर्जर हालत में है, और ऊपर आप देखो एक बार ऊपर भी टावर लगा रखे हैं। अभी तक मेरे पीजी तो अभी ठीक है, अभी न्यू ही है उनका तो, और ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट यहाँ पे फिर भी गली में निकलते टाइम भी डर लगता है, इतनी छोटी छोटी गलियां हैं यहाँ पे। 20,000 रुपए दे के रह रहे हैं इतने रिस्क में, आप एक तो एग्जाम क्रैक करके यहाँ पे आते हो, फिर इतना पैसा लगाते हैं, घर वालों की बहुत उम्मीदें रहती हैं, घर वाले भी टेंशन में रहते हैं बेचारे, और यहाँ पे हम डर डर के रहते हैं, पता नहीं कब कौन सी बिल्डिंग गिर जाएगी, कब क्या हो जाएगा।
14: 2022 में यहाँ पर एक बिल्डिंग गिरी थी, उस वक्त 2 मजदूरों की मौत हुई थी। 4 साल के बाद फिर से एक घटना घटती है, यहाँ पर वादा किया जा रहा है कि एक्शन होगा, लेकिन क्या इस एक्शन से तुम्हें कुछ उम्मीद है? लग रहा है कि फाइनली कि इस घटना के बाद कुछ बदलेगा?
16: पहले बात तो लग नहीं रहा कि घटना के बाद कुछ भी बदलेगा, एंड हमेशा ऐसा क्यों होता है कि घटना के बाद ही कुछ बदलना चाहिए? क्या आपको पता है कि इस एरिया में ये स्टूडेंट्स हब है, इस एरिया में एक हॉस्पिटल नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं, इतने सारे मेडिकल स्टोर है बट एक हॉस्पिटल नहीं है इस एरिया में, इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, इमरजेंसीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कल जब बच्चे रेस्क्यू कर रहे थे, कोई भी अगर आसपास हॉस्पिटल होता वो उन्हें ले जा सकते थे, बट कैसे लेके जाए? द नियरेस्ट हॉस्पिटल इज एम्स, नियरेस्ट जो अच्छा हॉस्पिटल है तो एम्स तक लेके जाए, एम्स जो आधा घंटा दूर है, हम वेट करें कि हम उनको एम्स लेके जाएंगे। इस एरिया में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है स्टूडेंट्स के रहने के लिए, और ये जो बिल्डिंग्स है जो बाहर से फिर भी अच्छी दिखती है, वो जो बिल्डिंग अभी गिरी है वो बाहर से अच्छी दिख रही थी, बट इनके फाउंडेशंस इतनी वीक है, इतनी बेकार फाउंडेशंस पे बनी है वो बिल्डिंग्स, और वो ऊपर से बेसमेंट बना रहे थे, क्या उन्हें लगता है?
15: देखिए आप एक बार उधर देखिए, उनसे भी नहीं निकला जा रहा है वहाँ पे, आप उधर कैमरा घुमाइए, कैसे
14: पुलिस
15: होंगे वहाँ से? आप ये बताइए कैसे बच्चे निकलेंगे ऐसी जगह से? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि ये बता रहे हैं ना कि 2 साल से सील मतलब कि बंद कर रखा था इसको, तो फिर क्यों इन्होंने ओपन किया? पांच पांच बिल्डिंग बना रखी है, उसके ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, 20-20 हजार रुपए ले रहे हैं, एक एक कमरे में तीन तीन चार चार बच्चों को मतलब कि भेजा जा रहा है कि यहाँ पे रहो, इतने मतलब कि कंजस्टेड जगह पे
16: रूम्स, आपको रूम्स देखने चाहिए, इतना इस साइज का रूम होगा जिसमें तीन बेड्स लगे होते हैं, घुटन से भी बच्चे मर सकते हैं, उनको बेसिक फैसिलिटीज देनी चाहिए बच्चों को, कुछ नहीं है इस एरिया में देने को। और अगर बिल्डिंग्स बन भी जाए तो उनकी फाउंडेशन परमिट भी तो यही लोग देते हैं ना बनाने को, आपको पता है G+1 लेवल की बिल्डिंग्स अलाउड है, पर यहाँ चार चार फ्लोर्स की बिल्डिंग बनी है, कौन देता है परमिट? आप लोग ही परमिट दे रहे हो ना। अब आप MCD से सवाल पूछ रहे हो तो परमिट किसने दिलाई थी? जब आप लोगों ने परमिट दिला दी, परमिट कैसे मिली? परमिट मिलनी नहीं चाहिए थी पहली बात तो, और मिल रही है तो जब ये हो रहा है तब आप आ रहे हो कि हम अब ये बदलेंगे वो बदलेंगे, पहले क्यों नहीं बदला गया? सारे सवाल पहले पूछने
15: करेंगे, अभी भी 2-3 दिन में मामला शांत हो जाएगा, फिर बस सब अपने अपने लाइफ में वापस लौट जाएंगे, किसी को कोई पड़ेगा, जिसका जाता है सिर्फ उसी को ही पता है।
16: बदला मालवीय नगर वाले केस के बाद क्या बदला? कितने सारे प्रोमिसेस करे गए थे, कुछ बदला आपको लगता है? तब भी बोला था ना सारी बिल्डिंग्स की फाउंडेशन चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे, आपने वायर्स देखे जो यहाँ वायर्स लटकते हैं? अगर आप कोई गली के अंदर जाओ, जालों की तरह वायर्स लटक रहे हैं।
14: ये जो सवाल है ना कि मालवीय नगर घटना के बाद क्या बदला, क्या एक्शन हुआ, क्या फाउंडेशन और इंस्पेक्शन हुआ बिल्डिंग का, उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चियां हैं, जो छात्र हैं, वो ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि इस एरिया में जब इतने ज्यादा बच्चे रहते हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, तो पास में एक अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? फैसिलिटीज का सवाल है, और कोई दुर्घटना होने के बाद क्यों एक्शन लिया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं लिया जाता? एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और इसी खबर पे हम बने रहेंगे।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: In association with
1: Anmol Biscuits, swad jo banaye har pal Anmol.
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega.
3: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
4: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
5: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
4: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
6: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
7: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
6: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
7: जो निचले इलाके हैं उन सब से ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
8: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
6: मैं आशुतोष मिश्रा,
8: रोहित सिंह,
7: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बारिश की मार और भरभराकर ढहता निर्माणाधीन रिंग रोड का पुश्ता। ये तस्वीरें टिहरी गढ़वाल की हैं, जहां कोटी कॉलोनी जाक डोबरा रिंग रोड के तहत बनाया जा रहा पुश्ता बारिश के बीच क्षतिग्रस्त हो गया। देखते ही देखते दीवार का हिस्सा टूटकर नीचे जा गिरा और निर्माण की मजबूती पर सवाल खड़े हो गए। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर से आई ये तस्वीरें पहाड़ों में बारिश के कहर की गवाही दे रही हैं। कपकोट में लगातार बारिश के बाद नाले उफान पर हैं। ऐसे में तेज बहाव में एक बाइक सड़क से नीचे बहने लगी। पानी की धार के बीच ग्रामीणों ने मोर्चा संभाला, बाइक को पकड़कर खींचा और बहने से बचा लिया। गनीमत रही कि बाइक सवार भी बाल बाल बच गया। और अब तस्वीर चमोली की। हेमकुंड साहिब के पैदल यात्रा मार्ग पर बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। पुलना से घांघरिया के बीच तीन जगह रास्ता क्षतिग्रस्त है। कहीं मलबा और पत्थर गिरे हैं तो कहीं पेड़ टूट कर रास्ते पर आ गए। कई जगह रास्ता बेहद संकरा हो गया है। इसके बावजूद श्रद्धालु क्षतिग्रस्त हिस्सों से जोखिम उठाकर आवाजाही कर रहे हैं, जबकि मार्ग को सुचारू करने का काम जारी है। कमल नयन सिलौड़ी के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पकड़ा गया दिल्ली के सत्य निकेतन हासी की बिल्डिंग का मालिक हरिराम बंसल राजस्थान की भिवाड़ी से पुलिस ने दबोचा। घटना के बाद से फरार था, जारी था लुकआउट नोटिस। बिल्डिंग गिरने से अब तक 7 की मौत। दिल्ली सीएम का एक्शन, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 सस्पेंड। दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया दुर्घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देहरादून शुद्धिकरण पर कांग्रेस का हल्ला बोल, परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक कूच, पुलिस ने हिरासत में लिया, बारिश के बीच प्रदर्शन। आज तक भर जल थल नभ के धुरंधर, सीडीएस एनएस सुब्रमणी ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। शाम 7 बजे रक्षा मंत्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात। रूस के हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार, रिहायशी इलाके में ड्रोन हमला, 1 की मौत, 4 घायल।

0: नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। आप देख रहे हैं आज तक और हम सत्या निकेतन की उन गलियों में हैं जहां पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, तार का जो जाल है वो इस तरह का बिछा हुआ है। ये छोटी सी पतली सी गली है और इसके आगे जाकर के और पीजी हॉस्टल भी है। यहाँ पर दो छात्र हैं जो यहाँ पर हॉस्टल में रहती हैं। मुझे बताइए कि इसी तरह का कितना दूर तक जाने पर?
1: ये बहुत ज्यादा अंदर है, आप लोग खुद चल के देख लीजिए। आइए, और भी पतली गलियां हैं जहाँ पे निकलने की जगह भी नहीं है और वहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम यहाँ रहें। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ साफ
2: बारिश में इतना गंदा पानी भरता है, इतनी गंदा सीवेज सिस्टम है, कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ पे धूप नहीं है,
1: यहाँ पे धूप नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है और यही 10-10 हजार, 15-15 हजार का ये लोग फ्लैट देते हैं और बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। यहाँ बेसिकली
2: सिक्योरिटी लेते हैं, 2 महीने की सिक्योरिटी ली जाती है प्लस 1 मंथ का रेंट लिया जाता है उनसे, और ओनर्स फिर सिक्योरिटी बाद में देने के बदले उनको ब्लैकमेल करते
1: हैं।
2: ये टूट गया आपका, ये फर्नीचर आपने खराब कर दिया, पूरे पैसे भी नहीं मिलते। मान लो किसी की 20 हजार है तो उसको सिर्फ 10 हजार मिलेंगे। हर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, हर बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। और
0: आप लोग कहाँ से?
1: मैं यूपी बुलंदशहर से हूँ।
2: मैं यूपी मैनपुरी से हूँ।
0: तो आप दोनों यूपी किसके हैं और यहाँ पर कौन से कॉलेज में पढ़ती हैं?
1: मैं मैत्री कॉलेज में पढ़ती हूँ।
2: मैं मोतीलाल कॉलेज से हूँ।
0: अच्छा, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है?
1: मैं थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर
0: मैं स्टूडेंट है। और सबसे आप लोगों की
1: पहले 3 साल से सत्य निकेतन में हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में पीजी में रहती थी। जब मेरे माँ बाप इनिशियली आए थे तो उनको लगा था डीयू का फीस बहुत रीजनेबल है। बेसिकली लोग इसलिए आते हैं क्योंकि रीजनेबल फीस है, यहाँ अफोर्ड भी कर सकते हैं और इतना अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। फिर भी 50% यहाँ पे डीयू हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करा पा रहा बच्चों को, तो बच्चे रहेंगे कहाँ? 50% बच्चे भी यहाँ हॉस्टल में नहीं रह पाते। हमारे मैत्री में कुल सिर्फ 100 सीट है हॉस्टल्स की। 100 सीटों में क्या बच्चे रह लेंगे? इतने लाख बच्चे यहाँ मैत्री में पढ़ते हैं और उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है? तो 100 किलोमीटर से दूर दूर है, पहले वो लोग उन लोगों को हॉस्टल्स देते हैं। इसलिए हमारे माँ बाप को हमें पीजी में छोड़ना पड़ा यहाँ पे, वरना वो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही होती ना कि वो कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ दे। कम से कम वहाँ पे कॉलेज तो रिस्पॉन्सिबल होता है ना बच्चों के लिए। यहाँ कौन रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा पीजी ओनर्स है? मोस्टली यहाँ पे पीजी ओनर्स क्या करते हैं, लीज पे दे देते हैं वो लोग, और वो लोग लीज पे दे देते हैं और वो यहाँ पे जो केयर टेकर है वो लोग करते रहते हैं। केयर टेकर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल भी जो इंसिडेंट हो उसमें केयर टेकर क्या कर लेंगे सारे? ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वो वहाँ पे बेसमेंट में काम करवा रहा था तो उसको पहले बच्चों को निकालना नहीं चाहिए था। उसने सोचा 1 महीने का रेंट है, वो चला जाएगा अगर बच्चे चले गए, इस चक्कर में उसने निकाला नहीं। और जितने बच्चे वहां पे गए वो फर्स्ट ईयर के बच्चे बेचारे अभी आए थे यहाँ पे, कि यहाँ पे आके कुछ फ्यूचर देख रहे थे। क्या फ्यूचर हो गया उनके? माँ बाप को पूछो जाके जो एम्स में रो रहे हैं, आधों का तो मिला भी नहीं है कुछ। तो क्या
2: यही उम्मीद है कि गवर्नमेंट से कि वो एटलीस्ट साउथ कैंपस में हॉस्टल अवेलेबिलिटीज तो दे। लाइक चाणक्यपुरी में काफी बड़ा,
0: इतने सालों में हॉस्टल बढ़े हैं या नहीं हुए?
2: नहीं, इवन हॉस्टल्स बन ही नहीं रहे हैं। मैं मोतीलाल से हूँ, मेरे कॉलेज में तो हॉस्टल की फैसिलिटी ही नहीं है। तो ऑलमोस्ट मोतीलाल के बच्चे या तो वसंत गांव रह रहे, आनंद निकेतन या सत्य निकेतन। एटलीस्ट हम 2 साल से रेगुलर एप्लीकेशन जा रही है कि हॉस्टल बनाया जाए, बट कोई वर्क नहीं हो रहा है उस पर। एम्फी थिएटर का तो इतनी मुश्किल से वर्क हो रहा है।
1: गर्ल्स कॉलेज की अलग फैसिलिटीज है, पर आप एक बात बताइए, अगर गर्ल्स कॉलेज के लिए गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स नहीं है तो क्या सेफ्टी कर रहे हैं आप लोग? ये पॉइंट
0: जहाँ जिस पीजी में आप रहती हैं, कि क्या वहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी या कुछ गार्ड?
1: 2 महीने का सिक्योरिटी लिया जाता है।
0: नहीं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब सिक्योरिटी गार्ड या कोई है?
1: नीचे बैठते हैं वो लोग, बट क्या होता है रात में वो लोग भी लेट लॉक करके चले जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है फिर उनको कॉल
0: कर देते हैं।
1: हाँ, वो लोग लॉक कर दे। आप एक बात बताओ, रात को अर्थक्वेक आ रहा है, वो गेट लॉक करके चले गए, हम लोग कहाँ से कूदेंगे? हम लोग ऊपर बिल्डिंग से फ्लोर से कूदेंगे? फिर इतने हम उन्हें कॉल करेंगे, वो लोग आएंगे 15-20 मिनट में, तो अर्थक्वेक आगे चला भी जाएगा, जिसको अंदर मरना होगा वो मर जाएगा।
2: जब मैं फर्स्ट ईयर में रहती थी तो बस 1 महीने का ही होता है दिखाने का। पेरेंट्स आते हैं दिखाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड वो बैठा के रखे, बट 1 महीने बाद मैंने खुद देखा है कि मेरे पीजी की जो बिल्डिंग थी सिक्योरिटी गार्ड वहां से हटा दिया गया था, जो भी फीमेल थी, और फिर वार्डन की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर हम कुछ भी कंप्लेन करते हैं तो वो वार्डन पे गुस्सा करते हैं, बट ये जिम्मेदारी ओनर की होती है। और जब अर्थक्वेक आया था ना, मेरा खुद का लाइव मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो हम वार्डन का 10 मिनट वेट करें कि अब वार्डन खोलेगी गेट, अब खोलेगी, 10 मिनट बाद खुला
0: है। जो आपने सुना इन दो छात्रों से, तो सवाल तो उठेंगे ना। और रेखा गुप्ता,
1: यही सवाल उठाने के लिए हम एक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मैम, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी और ये सब लोगों का ना, सबका अपना अपना है, वो पॉलिटिकली अपने अपने मुद्दे उठा रहे हैं, बट बेसिकली कोई बच्चों के लिए मुद्दा उठा ही नहीं रहा है। प्रॉब्लम्स तो यहाँ बच्चों की है ना। अगर सबको इतना फर्क पड़ता ना, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना नाम, अपना अपना टी शर्ट छोड़ के एक साथ बैठ जाते, बट अभी भी सब पॉलिटिकली सोच रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि बच्चों का एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत है अपनी जगह, बट यार हमारे बारे में सोचो। हम रहते हैं यहाँ, हम तो यहाँ से एक साल बाद चले जाएंगे, बट हमारे बाद तो और बच्चे आएंगे ना। हैं उन लोगों का तो सोचो ना, वो माँ बाप यहाँ पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छोड़ के जाते हैं, उनको उम्मीद होगी हमारे
0: सवाल उठा रही है जो छात्रा यहाँ पे सवाल उठा रही है वो बहुत जेन्युइन और इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि जब एक्शन होता है वो रिएक्शन रहता है, ज्यादातर एक्शन या डेप्यूटी कमिश्नर को सस्पेंड करना हुआ, एमसीडी के या इंजीनियर्स के खिलाफ एक्शन हुआ, वो उस वक्त एक्शन हुआ जब बिल्डिंग गिर गई और उसके नीचे दब करके 7 छात्र मर गए। सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्या कितनी और घटनाएं इस तरह की होती रहेंगी कि दिल्ली की जो सरकार है वो फाइनली कुछ एक्शन ले। ये रिपोर्ट देखिए।
3: इस शख्स को गौर से देखिए। जान बचाने के लिए भागते इस शख्स के चेहरे पर खौफ के भाव आप आसानी से देख और पढ़ सकते हैं। ये दिल्ली के सत्र निकेतन का सीसीटीवी वीडियो है, जब एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर गिर जाती है और वहां मौजूद लोगों को जान बचाने के लिए यूं भागना पड़ता है।
4: मुख्यमंत्री के द्वारा भले ही ये कहा जा रहा हो कि किसी भी जो दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और यहां की अभी सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इसके साथ साथ जो बगल वाली बिल्डिंग है उसको भी काफी खतरा है, जहां पर पिलर लगा करके ये कहा जा रहा है कि सभी लोग जो उस बिल्डिंग में थे उसको खाली कराया गया। एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये सामने जो है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है यहां पर फायर ब्रिगेड के द्वारा, इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा इस वक्त किया जा रहा है। इसमें नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं कि लोहे के पिलर इसमें लगाए गए हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है, स्थानीय लोग लगातार ये बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो है जो बगल वाली बिल्डिंग थी उसके सपोर्ट में ये खड़ी हुई थी।
3: जैसे अक्सर होता है इस बार भी हुआ, जब बेसमेंट में खुदाई हो रही थी तो प्रशासन सोता रहा, जब बेसमेंट में पानी भर रहा था प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जब खतरे को न्योता दिया जा रहा था प्रशासन कहीं मौजूद नहीं था। अब तक आप जान गए होंगे कि आखिर ये इमारत हादसे का शिकार कैसे हुई, जब गैर कानूनी तरीके से 3 की बजाय 5 मंजिला इमारत बना दी जाए, जब नियमों को ताक पर रखते हुए बेसमेंट को खोद दिया जाए, उसमें बारिश का पानी भरने दिया जाए तो हादसा होगा है। इस हादसे में भी वही पुरानी गलतियां दोहराई गई हैं और किसी को बख्शे न जाने का वही पुराना वादा भी दोहराया गया।
5: जो भी बच्चे यहाँ आसपास की बिल्डिंग्स भी जो डेंजरस स्थिति में पाई जा रही हैं, उनसे उन्हें भी विकेट कराया गया है। और ये खास करके ये बिल्डिंग जो खड़ी है ये पूरी तरीके से डेंजरस प्रतीत होती है, यहाँ से मलबा हटने के बाद में निश्चित रूप से इसको भी गिराया जाएगा, कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा। और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा।
3: अब ऐसे वादों से क्या फायदा मुख्यमंत्री जी, हादसा तो हो गया, जाने तो चली गई, अब लकीर पर लाठी पीटने से क्या होने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हादसे हुए, सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है, जरा उंगलियों पर गिनते जाइए। अप्रैल 2025 मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी जिसमें 11 की जान गई। 17 मई 2025 पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट ढहा, 3 मजदूरों की मौत। 12 जुलाई 2025 उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम में 4 मंजिला पुरानी इमारत ढह गई, 6 लोगों की मौत। 30 मई 2026 साकेत में एक 5 मंजिला अवैध इमारत गिर गई, 6 की मौत। 9 जुलाई 2026 रोहिणी इलाके में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, 3 लोगों की मौत। 6 सितंबर 2026 सत्य निकेतन में 5 मंजिला इमारत ढह गई, 7 की मौत। तो सिर्फ सत्य निकेतन के सत्य का ही सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि ऐसे मामलों की सिस्टम और सरकार को परवाह ही नहीं। हादसे की शिकार इमारत में रहने वाले छात्रों को कहां पता था कि जिस पीजी में वो रह रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं, न इमारत के मालिक की, न एमसीडी की, न सरकार की। सुशांत मेहरा अनमोल बाली के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।
0: सत्यनिकेतन की इन गलियों में अभी भी एम्बुलेंस लगी हुई है, क्योंकि कोशिश हो रही है कि अगर कोई भी शख्स उस मलबे में दबा है तो उसको जिंदा निकाला जा सके और अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। इस तरह की एम्बुलेंस लगभग 5 से 7 हैं, इधर भी अगर सचिन पैन करके दिखाएंगे, और बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादातर छात्र अभी सड़क पर हैं, सवाल पूछ रहे हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो घटना घटी लगभग 1:30 बज रहा था और संडे का दिन था, तो इसलिए छात्र अपने हॉस्टल में थे, और जो चश्मदीद गवाह हैं वो क्या कह रहे हैं सुनिए।
6: ये एनडीआरएफ की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे, वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे। हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है, तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहां पे 3 बच्चे निकले थे, एक बच्चे का जिसका पैर कटा है हम लोगों ने निकाला था उसको, 3 बच्चे को हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था। फिर उसके बाद में एनडीआरएफ की टीम काफी हद तक आ गई थी, और जो जेसीबी है, जेसीबी तो 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद आई है।
7: छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में एमसीडी द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है, या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है केएमसी और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पे आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि कितनी छोटी छोटी गलियां आप अंदर जाएंगी, गलियां कूचे यही सब चीजें,
8: अगल बगल की बिल्डिंग्स आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड हैं, सारे एक दूसरे पे गिर रही हैं बिल्डिंगें। और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहां पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहां पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहां से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहां पे।
9: अब जैसे कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है, तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना। आप आगे की गलियां देखें, पीछे की देखें, एवरीवेयर इट्स द सेम।
10: आप अंदर जाएंगे पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी 6-6 मंजिल 5-5 मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं उसमें भी अंदर, वहां अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहां जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहां जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
11: यहाँ पे तो स्टार्ट हो जाता है 10,000 तक पर विदाउट फूड होता है, ठीक है, और जाता है 20-25,000 तक जाता है, और भी जाता है। एक दो पीजीज हैं गर्ल्स पीजी जो बहुत मतलब हाई रेंट लेता है, और बॉयज भी हैं। ये जो अभी बिल्डिंग गिरी है उसका रेंट तो 22K था एक पर बेड, ठीक है, और वो डबल शेयरिंग का रूम था ऑलमोस्ट सारा, तो और फिर हमें दिक्कत तो मतलब ऐसे अभी इससे पहले कुछ नहीं होती थी, पानी इलेक्ट्रिसिटी यही सब थोड़ा लगता था क्योंकि पानी नहीं अच्छा और हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बस कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं।
0: एक महीना पहले जब मालविया नगर में मौत की घटना हुई थी, एक बिल्डिंग में आग लगी थी, लगभग 21 लोगों की मौत हुई थी, उस वक्त भी सवाल ये उठा था कि कैसे इन बिल्डिंग पर जो इमारतें हैं उन लोगों को परमिशन मिलता है कि बिना फायर एक्सटिंग्विशर के, बिना जो रिक्वायर्ड बाय लॉज हैं उनके, ये बिल्डिंगें क्यों बनी हुई हैं, उनको गिराया क्यों नहीं जाता, उनको ढहा क्यों नहीं जाता। इस घटना के बाद, सत्या निकेतन की इस घटना के बाद जब 7 छात्रों की मौत हो चुकी है, फिर से वो सवाल उठ रहा है कि कितनी और इस तरह की मौत की इमारतें हैं। मौसमी सिंह ने इसी लेन में जाकर आगे एक ऐसी इमारत को दिखाया है। आज तक की खास इस खास रिपोर्ट में आपको ये पता चलेगा कि कितनी पतली वो सीढ़ियां हैं जिससे छात्र ऊपर जाते हैं अपने कमरों में जानते हैं, जहां पर ना फायर एक्सटिंग्विशर है ना खिड़कियां हैं, और इस तरह की घुटन के माहौल में वो जी रहे हैं। क्या कोई परमिशन मिलता है, क्या कोई इंस्पेक्शन इन इमारतों का होता भी है, यही सवाल मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट दिखाती है।
12: ये तस्वीर आपने देखी होगी हॉस्टल डेज की, जो कि जो महिला पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, वो यहाँ पे जो चल रहा है विमेन्स वाला, बगल में ही बॉयज वाला था और ये गर्ल्स वाला पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन है। और यहाँ पे आप देखिए, हालांकि बाहर इस तरफ ताला पड़ा हुआ है, ठीक है, जरा ये देखिए ताला पड़ा हुआ है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। और ऊपर आप देखिए कपड़ा डाला हुआ है हॉस्टल डेज के अकोमोडेशन पे। लेकिन अगर भीतर जाके अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई यहाँ पे, एक सेकेंड आइए पवन, अंदर आइए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस कंडीशन में ये चल रहा है। बताया जा रहा है कि काफी पॉपुलर था, काफी पोस्टर बैनर प्रमोशन इसके पूरे इलाके में है। और जो रेट था, मुझे छात्रों ने बताया कि इसका रेट बाकी छात्र बाकी पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन से ज्यादा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये कितना संकरा है, ये हॉस्टल डेज गर्ल्स आप देख रहे हैं, इस तरीके से यहाँ की सुविधा बता रहे हैं। वही बिल्डिंग जो बगल में ढह गई है, इसी तरह की सुविधा बता रहे होंगे, नंबर भी दिए हुए हैं जो फरार चल रहा है आरोपी यहाँ पे। और ये देखिए कि वाईफाई, लॉन्ड्री, एसी रूम, गीजर, हाउसकीपिंग, ये सारी सर्विसेज की बात कर रहे हैं। सीसीटीवी, चार बारी मील मिलेगा, गार्ड्स मिलेंगे यहाँ पे आपको, वार्डन मिलेगा और पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन नाम के लिए ये बैनर है, सुविधा के नाम पे, सुरक्षा के नाम पे 0/0 है यहाँ पे। और इसी तरीके की पूरा यहाँ पे अगल बगल में आपको बता दें कि पीजी अकोमोडेशन को लेके कोई निर्धारित गाइडलाइंस नहीं है, जबकि ये पता है कि हजारों छात्र और

0: वाला है, वहाँ पे ये तारों का जाल आप देख रहे हैं, उसकी बालकनी में हम लोग खड़े हुए हैं। बगल में वो बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है और यहाँ पे ये कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये छुपाया गया है। ये है हॉस्टल डेज का ज्वाइन द डेज, और यहाँ जगह जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर है। इसी तरीके का 4 मंजिला जो बिल्डिंग का टावर है वो भी गाइडलाइंस को पूरे खुला खेल का फरुखाबादी यहाँ पे चल रहा है, गाइडलाइंस को वायलेट करता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं ना पाछने वाला है यहाँ पे।
1: सत्यनिकेतन से मेरी ग्राउंड रिपोर्ट अब समाप्त होती है, आगे देखिए खबर आज तक पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

इस शख्स को गौर से देखिए। जान बचाने के लिए भागते इस शख्स के चेहरे पर खौफ के भाव आप आसानी से देख और पढ़ सकते हैं। ये दिल्ली के सत्र निकेतन का सीसीटीवी वीडियो है, जब एक 5 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह भरभरा कर गिर जाती है और वहां मौजूद लोगों को जान बचाने के लिए यूं भागना पड़ता है, जिससे अक्सर होता है। इस बार भी हुआ, जब बेसमेंट में खुदाई हो रही थी तो प्रशासन सोता रहा। जब बेसमेंट में पानी भर रहा था प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। जब खतरे को न्योता दिया जा रहा था प्रशासन कहीं मौजूद नहीं था। अब तक आप जान गए होंगे कि आखिर ये इमारत हादसे का शिकार कैसे हुई, जब गैर कानूनी तरीके से 3 की बजाय 5 मंजिला इमारत बना दी जाए, जब नियमों को ताक पर रखते हुए बेसमेंट को खोद दिया जाए, उसमें बारिश का पानी भरने दिया जाए तो हादसा होगा है। इस हादसे में भी वही पुरानी गलतियां दोहराई गई हैं और किसी को बख्शे न जाने का वही पुराना वादा भी दोहराया गया। अब ऐसे वादों से क्या फायदा मुख्यमंत्री जी, हादसा तो हो गया, जाने तो चली गई, अब लकीर पर लाठी पीटने से क्या होने वाला है। ये पहली बार नहीं है जब ऐसे हादसे हुए, सिर्फ 1 साल का आंकड़ा है, जरा उंगलियों पर गिनते जाइए। अप्रैल 2025 मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत गिरी जिसमें 11 की जान गई। 17 मई 2025 पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत का बेसमेंट ढहा, 3 मजदूरों की मौत। 12 जुलाई 2025 उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम में 4 मंजिला पुरानी इमारत ढह गई, 6 लोगों की मौत। 30 मई 2026 साकेत में एक 5 मंजिला अवैध इमारत गिर गई, 6 की मौत। 9 जुलाई 2026 रोहिणी इलाके में 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई, 3 लोगों की मौत। 6 सितंबर 2026 तो सिर्फ सत्य निकेतन के सत्य का ही सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सत्य तो ये है कि ऐसे मामलों की सिस्टम और सरकार को परवाह ही नहीं। हादसे की शिकार इमारत में रहने वाले छात्रों को कहां पता था कि जिस पीजी में वो रह रहे हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं, न इमारत के मालिक की, न एमसीडी की, न सरकार की। सुशांत मेहरा अनमोल बाली के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक।

सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, कहीं बाइक समेत बहा युवक तो कहीं गांवों का संपर्क टूटा। नदियां उफान पर और बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब गईं और कई घरों में भी पानी घुस गया। जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के सोनीपत में भी बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी। सड़कें तालाब बन गईं और जगह जगह जलभराव है। लोग नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था और मानसून तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ के पानी को पार करते वक्त एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि युवक सुरक्षित बच निकला, लेकिन उसकी बाइक पानी में बह गई। धौलपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें पानी में डूब गईं और कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। नदियों और बांधों के बढ़े जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी बारिश का असर गंभीर है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के पानी से विजयपुर के करीब 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बारिश और उफनती नदियों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं घरों में पानी है, कहीं सड़कें डूबी हैं और कहीं गांवों का संपर्क टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: पकड़ा गया दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे की बिल्डिंग का मालिक हरिराम। राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस ने दबोचा, पटना के बाद से था फरार, जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। बिल्डिंग गिरने से अब तक हुई 7 मौत के बाद दिल्ली सीएम का बड़ा एक्शन, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफसर सस्पेंड। कार्रवाई पर राहुल ने उठाए सवाल, कहा छोटे अफसरों पर एक्शन, असली गुनहगार जवाबदेही से मुक्त। देहरादून में शुद्धिकरण मामले पर कांग्रेस का हल्ला बोल, परेड ग्राउंड से सीएम आवास तक कार्यकर्ताओं का कूच, बीच में रोककर पुलिस ने हिरासत में लिया, बारिश के बीच प्रदर्शन करते रहे समर्थक। आज तक पर जल थल नभ के धुरंधर, सीडीएस एनएस सुब्रमणि ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, शाम 7 बजे रक्षा मंत्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात। रूस के हमले के बाद यूक्रेन का पलटवार, रिहायशी इलाके में किया ड्रोन से हमला, एक व्यक्ति की मौत, 4 घायल।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। इन दिनों देश में दो मसलों पर राजनीति हो रही है, एक ढहती हुई इमारतों में जा रही बेगुनाह जानों पर और दूसरे ढाई जा रही इमारतों में सांप्रदायिक तिक्त सवाल पर। ढहती हुई इमारत पर चर्चा हम देखेंगे, लेकिन ढाई जा रही इमारतों पर भी सियासत जरूर सुलग गई है। और इस बार सवाल उत्तर प्रदेश का है। यह सवाल उस यूपी में बड़े होते जा रहे हैं जहां चुनाव आने वाला है, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले सहारनपुर में जिस तरह एक मस्जिद पर शासन की कार्यवाही हुई है, उस पर विपक्ष ने गंभीर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा है कि निचली अदालत के फैसले के 12 घंटे के अंदर अंदर मस्जिद गिराने के पीछे सरकार की सांप्रदायिक साजिश नजर आती है। दूसरी ओर 5 सितंबर को ढाई गई मस्जिद का दौरा करने जा रहे राजनीतिक दलों के नेताओं को आज नजरबंद कर लिया गया, क्योंकि विपक्षी दल नेता सहारनपुर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम सहारनपुर कचहरी में उस जगह पहुंची जहां ढहाई गई मस्जिद के मलबों के बीच में एक पुराना कुआं मिला है। इस कुएं में क्या पुरातत्व के अंश मौजूद है, इसी की जांच करने एएसआई की टीम वहां पहुंची थी। उन्हें क्या मिला है पता नहीं, लेकिन सियासत को वजह जरूर मिल गई। जिस यूपी में राम मंदिर चढ़ावा चोरी से लेकर पीडीए के पराया धन अपना तक ऐसे मुद्दों पर राजनीति हो रही है, पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, दलित अत्याचार से जाति जनगणना तक के सियासी मुद्दों पर अब सहारनपुर भारी पड़ता दिख रहा है। हालांकि आज विपक्षी दलों के नेताओं को सहारनपुर जाने से रोक दिया गया, लेकिन मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है, लिहाजा चुनाव तक के लिए मुद्दा मिल चुका है। ऐसे में दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या यूपी में अवैध मस्जिदों, मदरसों, मजरों और ईदगाहों पर जो कार्रवाई हो रही है, क्या वो सांप्रदायिक दृष्टि से ही देखी जानी चाहिए, या सचमुच में अवैध इमारतों पर जिन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है उनके खिलाफ कोई एक्शन के तौर। चुनावी सवाल कई है, लेकिन जिन पर हम चर्चा करना जरूरी भी है, इसीलिए हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं।

0: चुनाव का मौसम हो तो ढाई जा रही इमारतों पर उगती सियासत की रवायत एक बार फिर सहारनपुर में दिख रही है। शासन ने दो दिन पहले जिस इमारत को अवैध ठहरा दिया था उसके मलबे पर राजनीति अभी बाकी।
1: क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में 13 घंटे में मस्जिद को गिरा दिया जाए? ये सोची समझी रणनीति साजिश है जिसके तहत पूरे प्रदेश को ये अपने अधिकारियों के माध्यम से कम्युनल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।
0: एक तरफ विपक्षी दल सहारनपुर की घटना पर सांप्रदायिकता का सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सहारनपुर जाते रोके जाने के आरोप लगा रहे हैं। एसपी की इकरा हसन से कांग्रेस के अजय राय और ओएसी पार्टी तक के नेताओं ने कहा है कि सहारनपुर जाते हुए पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया।
1: हमारे सभी सांसद सभी नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई है। ये पुलिस चोर डकैत बदमाशों को नहीं पकड़ रही है, पॉलिटिकल लोगों को घेराबंदी कर रही है।
0: प्रशासन ने एहतियातन नेताओं को सहारनपुर जाने से जरूर रोका, लेकिन दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम उस कुएं की पड़ताल करने जरूर पहुंच गई, जिसकी खुदाई की मांग हिंदूवादी संगठन करने लगे।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रही हूँ, स्पष्ट कह रही हूँ भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ वहाँ शिव मिलते हैं।
0: दरअसल सहारनपुर में 5 सितंबर को तड़के 4 बजे जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उसमें कचहरी की जमीन पर अवैध मस्जिद गिराई गई थी, जिसे 16 जुलाई 2026 में सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने अवैध घोषित किया था और 6,41,00,000 का जुर्माना भी लगाया था। जिला अदालत में अपील खारिज होने के फौरन बाद मस्जिद पर बुलडोजर चला दी गई। अखिलेश सवाल उठाते हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रहते हुए फौरन मस्जिद ढहाने की क्या जरूरत है?
1: भाषण में तो पहले से ही कम्युनल थे, अब अपने एक्शन में भी कम्युनल हो गए हैं। ये जो लोग कानून को नहीं मान रहे हैं कल कानून मानेंगे।
0: दरअसल सहारनपुर में ढाई गई मस्जिद को लेकर दावा किया गया था कि ये करीब 70 से 100 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसे सरकारी जमीन पर अवैध बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस हुआ, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे गलत बताए कि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला अदालत में मस्जिद कमेटी की अपील खारिज होते ही 5 सितंबर की सुबह 4 बजे बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। कचहरी परिसर के सभी 5 दरवाजे बंद करके 6 बुलडोजर ने 3300 वर्ग फीट की 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। अब उसके मलबों पर सियासत हो रही है, क्योंकि उसमें अभी एक कुएं का पता चल गया है और आम आदमी पार्टी के सांसद समेत विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि खसरा नंबर 539 के उसी भूभाग में एक मंदिर भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन या किसी अन्य पक्ष की ओर से उस पर कोई कानूनी कार्रवाई या अतिक्रमण का मुकदमा नहीं है आज तक। देखो
3: तो उत्तर प्रदेश के में भीतर एक बार फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन के डिमोलिशन को लेकर राजनीति तेज हो गई है, और इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति हमेशा से तेज रही है, लेकिन इस बार क्या यह मामला सचमुच में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि सांप्रदायिक बन चुका है या उत्तर प्रदेश के भीतर सांप्रदायिक राजनीति के लिए किया जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से चर्चा में आएंगे। आज कांग्रेस के नेताओं को सहारनपुर जाने से रोक दिया गया था। मनोज सिंह काका समाजवादी पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे। सतीश प्रकाश पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ राघवेंद्र राम द्विवेदी SBSP के प्रवक्ता भी NDA में शामिल पार्टी, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल, क्या सहारनपुर में न्यायिक प्रक्रिया से पहले जल्दबाजी में अवैध मस्जिद ढाई गई है? क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में मस्जिद कमेटी के सामने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऑप्शन बाकी था, लेकिन हड़बड़ी में शनिवार को ही मस्जिद ढाई गई। दूसरा सवाल, क्या अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में हिंदू मुसलमान का सवाल सियासी है? और तीसरा सवाल, अल्पसंख्यक आयोग में दर्ज शिकायतों में यूपी के मामले तेजी से आगे क्यों बढ़ रहे हैं? और इस वक्त लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले दिल्ली बिल्डिंग का जो हादसा हुआ है, दिल्ली में जो इमारत ढही थी उस मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सत्यनिकेतन हादसे पर एलजी के दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद है। रेखा गुप्ता ने इस मामले में दिल्ली एमसीडी के कई अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अब एलजी के दफ्तर में यह बैठक चल रही है। विपक्ष का आरोप है कि जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है सिर्फ छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। तो अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक तरफ तो दिल्ली बिल्डिंग हादसे को लेकर एक इमारत ढहती है तो उसको लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं विपक्ष के तरफ से कि सरकार क्या कर रही है, और एक इमारत ढाई जा रही है उसको लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं मनोज सिंह काका, क्यों आपको ऐसा लगता है कि कोई सांप्रदायिक साजिश है? क्योंकि देखिए दो बार मामला आया, पहले शिकायत हुई एक साल पहले, फिर मैजिस्ट्रेट ने पहले कहा कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दरअसल वहां पर कोई रेस्ट हाउस था उसके भीतर मस्जिद बनाई गई, उसको तोड़ देना चाहिए, वो जुर्माना भी लगा दिया गया। उसके बाद मस्जिद कमेटी गई डिस्ट्रिक्ट अदालत के सामने, उन्होंने भी कहा कि नहीं गैरकानूनी है, और उसके बाद सरकार की कार्यवाही, क्यों आपको लगता है कि सांप्रदायिक साजिश है?
4: साहिल जी, एक तो प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती, और वो जो बात है ना कि हिंदू हो आप मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को न छेड़िए। योगी आदित्यनाथ जी का जो 9 सालों का पूरा जो विमर्श है, वो पूरा विमर्श उनका और उनका पूरा राजनैतिक जीवन यही है कि हिंदू मुसलमान के, उनकी वही यूएसपी है, उनका पूरा जो राजनैतिक विमर्श है वो यही है कि भारत में और उत्तर प्रदेश में खास करके योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धार्मिक पाखंड के अराजकता के हीरो हैं। अगर वो अगर ऐसा नहीं करते तो क्या आपसे मैं जानना चाहूंगा और बीजेपी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी बस यही जानना चाह रही है कि क्या जो सिटी मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट है, क्या सिटी मजिस्ट्रेट का कोर्ट ही इस देश में न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च संस्थान है? इस देश में न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च संस्थान तो सुप्रीम कोर्ट है। आपको इतनी जल्दी क्या है उसी उत्तर प्रदेश सरकार से, जब उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय यह मांगती है कि मुख्यमंत्री जी अपने स्वजाति अपराधियों के जरा हिस्ट्री बताएं और बताएं कि उन पर कितने कितने असल हैं, वो सरकार नहीं दे पाती है। उसी उत्तर प्रदेश से जब उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय, जब उत्तर प्रदेश में जो न्यायालय है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जब पूछता है कि आपने 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 दलितों पिछड़ों के में आपने ओवरलैपिंग का कानून क्यों नहीं माना, उनके हकों के साथ खिलवाड़ किया, ऐसा क्यों करा? अभी उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, सब में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन सरकार वो जवाब नहीं दे रही है कि आरक्षण का चोरी क्यों कर रही है, क्यों नहीं ओवरलैपिंग के कानून को मान रही। लेकिन सरकार जहां मुस्लिम की कोई ऐसी बात आ जाएगी, वहां सरकार चूंकि सांप्रदायिकता के लिए ही जानी जाती है, तो योगी आदित्यनाथ उसमें हीरो हो जाते हैं, तुरंत गिरा देते हैं। मैं जो समाजवादी पार्टी का सवाल है वो यही है कि आखिर जो वहां एडीएम भी, चूंकि एडीएम भी वहां संतोष बहादुर सिंह है, तो वहां एक तरफ से उत्तर प्रदेश में कौन नहीं जानता है कि स्वजातियों को तो पूरा संरक्षण है, चाहे वो संस्थान में रह के अपराध करें, चाहे अपराधी बन के अपराध करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के राज में रह के अपराध करें, तो सबको पूरे क्या। मैं फिर वही सवाल है कि क्या इस देश में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वही न्यायिक व्यवस्था का सर्वोच्च कोर्ट है? और जब ये देश में कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, उसकी पहली ही धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद हर धार्मिक संस्थान का जो स्वरूप होगा वही रहेगा, उसमें एक एक्सेप्शन था मर्यादा पुरुषोत्तम।
3: राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देंगे, राकेश त्रिपाठी इसका जवाब देंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी सवाल यह उठाने की कोशिश कर रही है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश के बाद या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद कमेटी के सामने रास्ता था कि वो हाईकोर्ट में अपील कर सकते थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में, या फिर वो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो मौका नहीं दिया गया। लेकिन जहां तक बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की है मनोज काका, मामला यहां पर सरकारी जमीन पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का है और सवाल यहां पर उस तरीके से उठाया गया था, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ने के लिए सरकार ने यह कार्यवाही की, यह सरकार का कहीं ना कहीं कहना है। लेकिन राकेश त्रिपाठी इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या ऐसी हड़बड़ी थी कि शनिवार को, क्योंकि शनिवार को अदालत बंद होती है, आपको पता है कि शनिवार को यह पिटीशन नहीं किया जा सकता, सरकार को इतनी हड़बड़ी क्या थी जो समाजवादी पार्टी यहां पर सवाल उठाने की कोशिश कर रही है?
5: देखिए, दो तीन बातें हैं। अभी मनोज काका ने भी जनता को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से, और पूरा विपक्ष ये कर रहा है लगातार, ऐसा प्रस्तुत करने की चेष्टा की जा रही है कि यह डिमोलिशन का ऑर्डर कोई प्रशासनिक आदेश है। मैं स्पष्टता से इस बात को कह दूं कि यह कोई प्रशासनिक आदेश नहीं है। प्रशासनिक आदेश से पहले एक न्यायिक आदेश हुआ है और न्यायिक आदेश को भारत के संविधान की शक्ति प्राप्त है। वो कोई पॉलिटिकल विल के आधार पर नहीं चलता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने तय कर दिया और सरकार की बात को किसी जुडिशियल अफसर ने मान लिया। डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है। आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट जज की ऑर्डर की कोई वैधता नहीं है। हाईकोर्ट ही जब कहेगा, सुप्रीम कोर्ट ही जब कहेगा तभी माना जाएगा। तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसका मतलब उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। जिला जज की अदालत ने बाकायदा 17 बार सुनवाई करने के बाद, और उसका आदेश मुझे लगता है शायद पढ़ा नहीं होगा, मैं उसका आदेश पढ़ रहा हूं, उसका आदेश में 3 बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट्स का उल्लेख किया है। एक जजमेंट है भारत संघ बनाम गुजरात राज्य, एक जजमेंट है जोगिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य, और एक जजमेंट है जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य। 3 जजमेंट्स का उल्लेख करते हुए जिला जज ने इस बात को स्पष्टता से लिखा है कि सरकारी भूमि पर अगर किसी प्रकार का इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उसको तुरंत बेदखल कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। यह 3 अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों में है और सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है, जिला जज की अदालत ने किया है। यानी जुडिशियल ऑर्डर के बाद वहां पर यह गिराने का काम हुआ है। अब सवाल ये उठा रहे हैं कि इसकी अपील करने के लिए समय नहीं
4: है। लोग हमसे
5: ऑर्डर 2 तारीख का है।
4: लगातार
5: देखिए, हमने देश की सुप्रीम कोर्ट को हमने बीच में नहीं बोली। आप कंफ्यूज मत करिए, बिल्कुल कंफ्यूज मत करिए।
4: उत्तर प्रदेश के
5: मैं नहीं बात करूंगा,
4: भारतीय जनता पार्टी
5: भाई, मैं इस तरह से बात करूंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
4: वो खाली नहीं कराएंगे।
6: मनोज काका जरा सुन लीजिए, आपको रिबेटल का मौका मिलेगा।
4: सिटी मजिस्ट्रेट
6: मनोज काका जरा एक मिनट जरा एक मिनट उन्हें शांत करिए, मेरी बात तो कम से कम सुनने दीजिए उनको। मनोज काका जरा बात सुनिए, मनोज काका प्लीज जरा मेरी बात सुनिएगा, मनोज काका आप मेरी बात सुनिएगा, ये बार बार बोलते रहेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आपको मैं ये जानकारी दे दूं, अगर आपको नहीं पता है तो सुरेंद्र राजपूत जी से पूछ लीजिएगा, मेरे शो में सभी को रिबटल का मौका मिलता है, सभी को बोलने का भी मौका मिलता है। तो ये मत करिएगा कि दूसरे के बीच में बोलिए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, रिबेटल का मौका मिलेगा। आर्ग्यूमेंट बाय आर्ग्यूमेंट हम जाएंगे, हर चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज थोड़ा समय उनको भी दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिएगा, दोबारा आपके पास में आऊंगा इस बात को लेकर। राकेश त्रिपाठी आपकी बात खत्म करिए।
5: देखिए, मैं स्पष्टता से कह रहा हूं कि सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के आधार पर नहीं गिराया गया या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के किसी ऑर्डर के आधार पर नहीं गिराया गया। ये जुडिशियल एक ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। सवाल यह उठा रहा है विपक्ष की, हमको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अवसर मस्जिद पक्ष को नहीं मिला है। देखिए, हमने देश की अदालतों को रात अंधेरे खुलते हुए देखा है, जब आतंकवादियों की फांसी तक रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रात को खुलवा लिया गया हो। ये जब चाहते तब कोर्ट जा सकते थे, जिला जज भी इस बात को सुन सकते थे, ये चाहते तो इस बात के लिए टाइम ग्रांटेड करा सकते थे। चूंकि अपने पूरे दावे को 17 बार की सुनवाई में यह साबित करने में एक भी साक्ष्य नहीं दे पाए। ये 1888-89 का सरकारी रेवेन्यू रिकॉर्ड मौजूद है, जो सरकार की तरफ से वहां प्रस्तुत किया गया कि 1888-89 1296 फसली वर्ष में अंकित है कि यह जमीन कलेक्ट्रेट के नाम दर्ज है, यह जमीन शासन के नाम दर्ज है, सरकार के नाम दर्ज है। बावजूद इसके जानबूझकर एक डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयत्न किया। इन्होंने 1911 का एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्रस्तुत किया, 1912 में सहारनपुर में बिजली आई है, 1917 से बिजली का वितरण शुरू हुआ है और 1911 का बिजली का बिल लेकर के पहुंच गए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो फोर्जरी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के मामले में एक और
6: एफआईआर दर्ज हुई। राकेश त्रिपाठी, दो चीजें मुझे सवाल पूछना है आपसे,
5: गलत तरीके से
6: मनोज काका इसका जवाब देंगे। कुल मिलाकर राकेश त्रिपाठी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट अदालत के आदेश के बाद में यह कार्रवाई की गई है, लेकिन राकेश त्रिपाठी एक सवाल मुझे जानना है, यह बड़ी दिलचस्प बात है कि कलेक्ट्रेट के भीतर, कलेक्ट्रेट कंपाउंड के भीतर एक मस्जिद चल रही है, पिछले 11 साल से आपकी 10 साल से आपकी सरकार वहां पर चल रही है, लेकिन 2025 आना पड़ता है 9 साल के बाद, और वो भी बजरंग दल के कार्यकर्ता को आगे आना पड़ता है इस बात की शिकायत करने के लिए कि कलेक्ट्रेट कंपाउंड के भीतर एक मस्जिद का काम चल रहा है, मस्जिद वहां पर पूरी तरीके से चल रही, मतलब वहां पर नमाज पढ़ा जा रहा है, मस्जिद चल रही है जो इल्लीगल है, और उसके 1 साल के बाद में कलेक्टर वहां पर आदेश देते हैं इस साल में कि इस मस्जिद को गिराया जाए। यह टाइमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों नहीं, क्योंकि मैं यहां पर रिसर्च कर रहा था, मैंने तो देखा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने बाकायदा एक पूरी फहरिस्त दी गई है, 40,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इलीगल कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश के भीतर आज की स्थिति में खड़े हैं, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने 40,000, मैं आंकड़ा जो कोट कर रहा हूं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रखा गया आंकड़ा है,
3: लेकिन फिर भी 9 साल लगते हैं सहारनपुर के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बिल्कुल 6 महीने के बाद। ये टाइमिंग का क्या मामला है राकेश त्रिपाठी जी? उसके बाद मनोज काका आप इसका जवाब दें।
5: इसके दो कारण, इसके दो कारण बताता हूं साहिल भाई। इस देश की जब आजादी हुई ना 1947 15 अगस्त को, तो इस देश की आजादी के साथ ही इस देश को एक बड़ी बीमारी लगा दी गई थी मजहबी तुष्टिकरण की। इस मजहबी तुष्टिकरण के कारण इस देश ने बहुत कुछ खोया है और वर्षों वर्ष तक जहां भी कहीं इस तरह के इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कहीं मस्जिद हो मजार हो लोग अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे, अपने होठ सिल लिया करते थे, लेकिन कानून का अनुपालन तो होना चाहिए ना। और यह शिकायत पहली बार जब सिटी मजिस्ट्रेट के सामने गई, सिटी मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने इसका पूरा ऑब्जर्वेशन लिया और उसके आधार पर एक अपना आदेश पारित किया। उस आदेश की अपील करते हुए मस्जिद पक्ष जिला अदालत में गया और जिला अदालत ने 17 बार सुनवाई करने के बाद, सारे ड्यू प्रोसेस फॉलो करने के बाद एक आदेश पारित किया और उस आदेश के अनुपालन के बाद वहां उसको डिमोलिश किया गया है। देखिए सच यह है कि इस देश में कहीं पर भी मनमाने पूर्ण तरीके से कई सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। और मैं इस बात को जब कह रहा हूं तो मैं केवल वाटर वाउट्री नहीं कर रहा हूं, इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मार्च 2026 के महीने में ही आगरा में तालाब पर बने हुए एक मंदिर को भी गिराया है जो कोर्ट के आदेश से गिरा है। सीतापुर के भीतर एक दुर्गा मंदिर जो हाईवे के रास्ते
3: में, मैं मानता हूं इस बात को, मैं आपके सामने आंकड़े रखने के लिए भी तैयार हूं।
5: कोई चर्चा नहीं होती,
3: इलीगल कंस्ट्रक्शन उत्तर प्रदेश सरकार कार्यवाही कर रही है उस पर तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं आंकड़ा बता रहा हूं 40,000 का आंकड़ा इलाहाबाद हाईकोर्ट के भीतर दिया गया है और मात्र 378 स्ट्रक्चर इस तरीके से तोड़े गए हैं और वो करीब सारे के सारे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं और इसीलिए माइनॉरिटी कमीशन के भीतर इस मामले में शिकायतें दर्ज की जा रही है और इसीलिए सवाल ये उठाया जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है टाइमिंग को लेकर जो मनोज काका उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनोज काका जो राकेश त्रिपाठी कहने की कोशिश कर रहे थे, दरअसल ये पूरा मामला अदालत के आदेश के बाद किया गया था।
5: मार्च और अगस्त के अभी रिसेंट उदाहरण बताएं
4: साहिल,
5: ठीक मैंने तो
3: मनोज काका जवाब देंगे उसके बाद दोबारा सुरेंद्र राजपूत भी इंतजार कर रहे हैं। ये भी पूछना है कि कांग्रेस के नेताओं को क्यों रोका गया?
5: मंदिर को लेकर के कोई आपत्ति नहीं होती है लेकिन मस्जिद को लेकर के हैतोबा मचाते हैं।
4: अरे अरे हमें
3: मनोज का जवाब दीजिए,
4: तंत्र को लेकर
3: मंदिरों के नंबर नहीं आपके पास,
4: तुम्हारी तरह अंग्रेजों का गुलामी नहीं किया है। और जब ऐतिहासिक तथ्य पे जाएंगे तो उत्तर आप ऐतिहासिक तथ्य की जांच करिए। उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मठ को भी, मैं एक बात जो कह रहा हूँ, गोरखनाथ मठ को भी उत्तर प्रदेश में जो जमीन दिया था आसिफ उद्दौला ने दिया था, वो अवध के नवाब थे। तो जब आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाएंगे कि कौन किसको जमीन दिया था, तो क्या आप वो जमीन गोरखनाथ मठ जी की जाएगी मुसलमानों को दी
5: जाएगी?
4: देश के मुसलमानों ने मांग करा है
5: ये भारत के भीतर आए थे क्या?
4: करना है योगी आदित्यनाथ को कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान कैसे हो। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों का आरक्षण उन्होंने 9 सालों में लूटा है, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे तमाम शासकीय व्यवस्थाएं हो, उत्तर प्रदेश में दलितों पिछड़ों आदिवासियों के बहन बेटियों के साथ लगातार बर्बरता हुई है। उसी मेरठ में क्या हुआ किसने नहीं देखा, बागपत में क्या हुआ किसने नहीं देखा, उसी उन्नाव में क्या हुआ किसने नहीं देखा, चंदौली में क्या हुआ किसने नहीं देखा, बनारस में एक बेटी को दरिंदों ने रात में नोचते रहे और देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री और स्मृति जी के साथ फोटो खिंचाते रहे।
3: तो
4: कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी को कोई कानून नहीं मानना है। और ये कौन नहीं जानता है कि डीएम की और एडीएम की सिटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है और उनके उनके न्यायिक व्यवस्था को क्यों सर्वोच्च मान लिया जाता है? देश के सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था को सर्वोच्च क्यों नहीं माना जाता है? और अगर सबका
3: मुख्यमंत्री
4: अपराधियों पर सबसे ज्यादा अवैध जमीन है बनारस से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पे उन लोगों ने कब्जा किया है, उनकी जमीनों पर बुलडोजर कब चलेगा ये सवाल।
5: चैलेंज करना चाहे तो हाईकोर्ट चैलेंज कर सकते हैं लेकिन टीवी डिबेट
4: जाने को जो उस जो न्यायिक व्यवस्था है हम उसको पालन करेंगे। तो क्या हाई कोर्ट ने आपने तो किसी के धर्म पर ठेस पहुंचा दिया ना, आपको इतनी जल्दी थी, इतनी जल्दी थी मस्जिद
3: गिराने का? इस डिबेट में शामिल होगा लेकिन मनोज
4: ठीक नहीं
3: कहा, एक बात का जवाब दीजिए, एक बात का जवाब दीजिए मनोज काका एक मिनट जरा एक मिनट जरा शांत, ठीक है मुझे एक बात का जवाब दीजिए मनोज काका। कल अगर हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट भी कहता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो आप मान लेते कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, सरकारी जमीन पर कब्जा था, ये मान लेती समाजवादी पार्टी? मान लेती या नहीं मानती?
4: अगर कोई देखिए साहिल, अगर कोई न्यायिक निर्णय आता तो न्यायिक निर्णय का समाजवादी पार्टी का है। इस देश के किस वर्ग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पर इस देश के सर्वोच्च न्यायिक संस्था का जो निर्णय आया, किसी ने सवाल उठाया क्या? किसी ने सवाल उठाया? सबने कहा कि देश के सर्वोच्च न्यायिक व्यवस्था का जो निर्णय आया उसको सब मानते हैं, लेकिन उस न्यायिक व्यवस्था को भी बीजेपी लेके झंडा घूमने लगी, चूंकि ये धार्मिक धंधेबाज है। और किया क्या अंत में? परिणाम क्या आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे थे कि भिखारी भी मंदिर का चंदा ले लूटता, लेकिन भारतीय जनता
6: पार्टी तो डिस्ट्रिक्ट अदालत का निर्णय नहीं मानेंगे। डिस्ट्रिक्ट अदालत ने अगर आदेश दिया है कि अवैध निर्माण को तोड़ दीजिएगा, तो उसका आदेश अगर प्रशासन मानता है तो उसमें क्या गलत है? आपको तो बस इस बात की चिंता है, इस बात की समस्या है कि आप मौका देना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट।
4: लेट मी कंप्लीट साहिल जी, वो सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्णय है और सिटी मजिस्ट्रेट पूरी तरह से जातिवादी है और उसके किसी न्यायालय पर वो बहुत विभाजनकारी
6: सुरेंद्र राजपूत
4: भावपूर्ण वाला वो निर्णय है, उसको नहीं माना
7: जा सकता है। जी डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर है भाई, झूठ मत बोलिए। आज तक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठ करके देश को बरगलाइए मत, ये जिला जज का निर्णय है, ज्यूडिशियल ऑर्डर है, ये जिला जज का निर्णय है।
4: सबसे बड़े झूठे और झूठों के सरदार आप लोगों।
8: जी साहिल, क्या सवाल है आपका?
4: व्यवस्था का निर्णय आता तब हम लोग मानते।
6: मेरा सवाल यह है, आज आपके नेताओं को रोक दिया गया वहां पर, आप भी इसी बात को कहने के लिए जा रहे थे कि इस पूरे जो ढहाने का काम हुआ, डेमोलिशन का काम हुआ, आपके नेता भी यही कहने के लिए जा रहे थे कि इसको रोक देना चाहिए डिस्ट्रिक्ट अदालत के फैसले के बाद भी, और इसीलिए आपको रोक लिया गया कि और कोई कारण था?
8: साहिल भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर है ना, कहते हैं किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, और मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। जिस देश में मुलजिम भी अगर सरकारी होने लगे और मुंसिफ भी सरकारी होने लगे, देखिए कितना इस आपके चैनल पर बैठ करके कितना झूठ बोला जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एक एसडीएम लेवल का अधिकारी होता है, उस सिटी मजिस्ट्रेट ने इसके डेमोलिशन का आदेश दिया और वो डेमोलिशन का आदेश सरकार के प्रभाव में आकर के दिया। उसके बाद उस डेमोलिशन के आदेश को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चैलेंज किया, उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करते ही उसका डेमोलिशन कर दिया। आप बात समझिए, तो आदेश डीजे ने नहीं दिया है, डिस्ट्रिक्ट जज ने नहीं दिया है, आदेश तो सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया है और सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम है, एक पीसीएस रैंक का अधिकारी है, समय आने पर उसको भी अपने इस परिणाम को।
6: लेकिन मस्जिद कमेटी का पिटीशन रिजेक्ट तो हो गया ना,
8: पहले
6: उस आदेश को चैलेंज करने के लिए जो पिटीशन फाइल किया गया था वो तो रिजेक्ट कर दिया गया ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट का आदेश तो सही माना ना डिस्ट्रिक्ट अदालत ने।
8: हाँ सही साहिल भाई, आप तो बहुत विद्वान हैं और आप तो एक्टिविस्ट भी रहे हैं। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं कि गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, यानी सीजीएम कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी 2 साल की सजा को अपहेल्ड रखा। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी राहुल गांधी जी की सजा को 2 साल के लिए अपहेल्ड रखा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जानते हैं क्या कहा था कि गुजरात के न्यायालयों से, गुजरात की निचली अदालतों से आश्चर्यजनक क्या नाम निर्णय आ रहे हैं। आप इस चीज से इसके बाद आप क्या कहेंगे कि अदालतें दबाव में हैं या नहीं है, डीजे की अदालत दबाव में है या नहीं? मैं सीना ठोक के कहता हूं कि वो अदालत दबाव में है और एसडीएम का आदेश सरकारी आदेश है, उस सरकारी आदेश को अपहोल्ड करने का दबाव था डीजे के ऊपर। और चाहे आप मेरे ऊपर कंटेम्प्ट लगवाइए, चाहे कुछ लगवाइए, सच बात ये, 3 चीजें यहां पर महत्वपूर्ण है, इधर उधर की चर्चा से नहीं भागना चाहिए। 3 चीजें महत्वपूर्ण है। नंबर 1, क्या बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी? अगर 100 साल पुरानी बिल्डिंग है तो आप मुझे बता दीजिए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की 100 साल पुरानी बिल्डिंग उठाइए और कहिए कि इसका नक्शा ले आओ। अगर वो नक्शा ले आए तो किसी का नक्शा नहीं होता था ना, मेरी बिल्डिंग का नक्शा, ना आपकी बिल्डिंग का नक्शा, ना राकेश भाई की बिल्डिंग का। अगर 100 साल पुरानी इनके बाप दादाओं ने बनवाई है, मेरे बाप दादाओं ने बनवा रखी है, तो कोई नक्शा नहीं। तो आज की डेट में वैध और अवैध को कौन डिसाइड करेगा? वैध और अवैध डिसाइड होते हैं सेट पैटर्न से। सरकारी जमीन पर अगर कोई चीज 12-13 साल से या 30 साल से ऊपर है तो उसको आप डिमोलिश करने का एक ड्यू प्रोसेस है, और वो ड्यू प्रोसेस है कि अब जो अगर वादी चाहेगा, सुन लीजिए सर, वादी चाहेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के लड़ेगा। हमारा सवाल एक ही है यहां पर, सिटी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को क्या नाम, जैसे ही चैलेंज किया वादी पक्ष ने, प्रतिवादी पक्ष ने, वैसे ही उसको क्या नाम डिनाई किया डिस्ट्रिक्ट जज ने, और वैसे ही उसी समय उसको आपने तोड़ दिया। यानी आपने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, और कानून की धज्जियां क्यों उड़ाई हैं सभी लोग जानते हैं कि चुनाव आ रहा है, हिंदू मुसलमान
6: मैं जरा एक बात समझू आपसे सुनील राजपूत, आपने आपने आपने बहुत सीरियस आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया हुआ है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है उस पर सरकार का दबाव है, इसीलिए 16 जुलाई को सिटी मैजिस्ट्रेट का फैसला आता है, उस ऑर्डर के खिलाफ मस्जिद कमेटी डिस्ट्रिक्ट अदालत के सामने जाती है, 2 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट अदालत के तरफ से यह फैसला दिया जाता है कि मस्जिद कमेटी का जो पिटीशन है वो रिजेक्ट किया जाता है और मैजिस्ट्रेट की ऑर्डर को सही ठहराया जाता है, यानी करीब 1.5 महीने डिस्ट्रिक्ट अदालत के सामने इसकी पूरी सुनवाई की जाती है। क्या इसकी गारंटी है कि कल अगर हाईकोर्ट के भीतर जाने के बाद भी अगर यही फैसला आता, मैजिस्ट्रेट के ओरिजिनल ऑर्डर को सही ठहराया जाता, तो क्या कांग्रेस पार्टी एक बार फिर यही आरोप लगाती कि इलाहाबाद हाईकोर्ट पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर है सरकार का? कल सुप्रीम कोर्ट पे यह फैसला आता तब भी यही कहा जाता कि सुप्रीम कोर्ट पर भी प्रेशर है। ऐसे तो कोई भी अदालती फैसले पर सवाल उठाना बड़ा आसान हो जाएगा सुनील राजपूत जी, ये बड़ी गंभीर बात है, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है।
8: मैं साहिल भाई, आपकी असहमति का मैं सम्मान करता हूं। अगर हाईकोर्ट से यह फैसला आता तो पीड़ित पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट जाता, और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर यही फैसला आता तो निश्चित तौर पर हम सब लोग फैसले के पक्ष में खड़े होते, फैसले का हम लोग सब लोग आदर भले ही ना कर रहे होते लेकिन सम्मान कर रहे होते। आप बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल गांधी जी की सजा को सुप्रीम कोर्ट भी अगर अपहोल्ड कर देता तो राहुल गांधी जी को सजा मिल जाती। आप मुझे बताइए ना, सीजीएम कोर्ट से सजा मिली राहुल गांधी जी को 2 साल की मानहानि के केस में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसकी सजा अपहोल्ड रखी 2 साल की मानहानि के केस में, फिर हाई कोर्ट ने उनकी सजा रखी। हम असहमत थे तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने हमको बरी भी कर दिया आपके सामने है। तो आप एक चीज को देखिए इस तरीके की,
6: बेसिकली कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनका भरोसा पाने के लिए वो वहां पर जाकर आंदोलन नहीं करते अगर हाईकोर्ट से फैसला आता तो मान लेते हैं उस बात।
8: 10 सेकंड,
6: चलिए 10 सेकंड में सुनील राजपूत खत्म करें, उसके बाद राकेश त्रिपाठी।
8: हाँ, ठीक है। तो मैं जो बात कर रहा हूं, राकेश जी की मजबूरी है कि आज की डेट में सत्ता के निर्लज्ज नीच चेहरे को बचाना, उनको बचाना है। रीजन क्या है कि आज की डेट में मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजने की एक परंपरा चल पड़ी है, मजारों के ऊपर झंडे फहराने की परंपरा चल पड़ी है, दूसरे के पूजा स्थल के सामने डीजे बजा करके नंगे तरीके से नाच करने की एक परंपरा चल पड़ी है। क्यों? क्योंकि इनके पास 69,000 शिक्षकों का जवाब नहीं है, इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, दलितों को पेशाब चटवाने का जवाब
6: के लिए राकेश त्रिपाठी। कुल मिलाकर आरोप विपक्ष का यह है कि जो फुर्ती दिखाई गई वहां पर कि जल्द से जल्द कार्रवाई कर दिया जाए, किसी को मौका ना मिले, शनिवार रविवार का समय था, सोमवार तक हाईकोर्ट जाया जा सकता था ध्यान भटकाने के लिए।
5: देखिए एक बात अभी सुरेंद्र राजपूत ने बहुत बहुत आपत्तिजनक कही है, जब सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि जुडिशरी दबाव में है, लोअर जुडिशरी को छोड़ के साथ साथ में इन्होंने हाईकोर्ट तक को कह दिया कि हाईकोर्ट भी दबाव में है, प्रभाव में है और वो इस तरह बायस्ड है। मुझे लगता है कि ये बात बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन फिर मुझे तुरंत याद आ गया कि ये कांग्रेस पार्टी कोई पहली बार नहीं कर रही है। इस देश में हमने देखा है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जैसे ही असहमत हुई वो फैसला उनके खिलाफ हो गया, उन्होंने देश में इमरजेंसी थोप दी। ये पुराना इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का देश की न्यायपालिकाओं का के अवमान ना करने का। ये तो अपने पार्टी के वर्कर्स को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते रहे, बिना पढ़े लिखे विजयलक्ष्मी पंडित जैसे लोगों को राजदूत बनाते रहे, अपने घर के नौकर कर्मचारियों तक को ये जजेस बनाते रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का यह अहंकार निश्चित तौर पर सुरेंद्र राजपूत को इस बात की अनुमति देता है कि वो देश की जुडिशरी के संदर्भ में इस तरह की टिप्पणी करें, लेकिन देश की न्यायपालिकाओं के प्रति देश की जनता का अक्षुण विश्वास है। और मैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते इस बात को न सुन सकता हूं न स्वीकार कर सकता हूं कि देश की जुडिशरी को ये बायस्ड कर रहे हैं। आप देश की न्यायपालिकाओं पर भरोसा नहीं रखेंगे? मजहबी तुष्टिकरण में इतना आकंठ डूब गए, आप कह रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है। अरे भाई, जिला जज ने 17 बार सुनवाई की है, कोई हरी वरी में नहीं है कि वो गए लेकर के और उन्होंने तुरंत खारिज कर दिया। वो योगी आदित्यनाथ जी से सुन रहे थे। जुडिशियल जिला जज की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा होती है और जिला जज के आदेश को आप वैधानिक नहीं मान रहे, आप कह रहे वो आदेश कूड़े के डब्बे में डालने लायक होता है। इसी जिला जज के आदेश को आप असहमत होते हाईकोर्ट जा सकते थे, और मैंने उदाहरण देकर के बताया कि हमने देखा है, यही कांग्रेस के तमाम सारे वकील जुड़े हुए थे जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आधी रात को जाकर के खुलवा रहे थे कि एक आतंकवादी को फांसी ना होने पाए। हमने कई बार देखा है कि रात अंधेरे कई बार हाईकोर्ट के दरवाजे खोले गए,
7: क्यों नहीं किसी कांग्रेस के नेता ने कहा कि हाईकोर्ट का दरवाजा हम जाकर रात को खुलवाएं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवाएं? ये केवल मजहबी तुष्टीकरण के लिए मस्जिद पर छाती पीटने का काम कर रहे हैं, मातम मनाने का काम कर रहे हैं। जिला जज के आदेश के बाद इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करना जिला प्रशासन का
6: मुझे तो ऐसा लगता है।
7: और छुट्टी के दिन ही इसे
6: एंटीसिपेट किया गया था सरकार के तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से, कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन इसी तरीके से होगा और उसके बाद अगले 6 महीने तक इसी बात को लेकर तमाम भाषण भी दिए जा सकेंगे। लेकिन राकेश त्रिपाठी जो बोल रहे हैं बड़ी दिलचस्प बात है। एक बार फिर तुष्टीकरण का मुद्दा सामने लाया जा रहा है सुनील राजपूत
8: यहां। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एक बार फिर
6: एंटीसिपेट किया था उन्होंने कि यही होगा।
8: मैं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हम संविधान की, यहां पर हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, यहां पर संविधान की रक्षा की बात कहे। और संविधान ये कहता है साहिल भाई हमारा, 100 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, यह संविधान कहता है। मैं फिर से दोहराता हूं कि जिला अदालतें दबाव में है, और यह मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुजरात की अदालतों से निचली अदालतों से आश्चर्यजनक रिजल्ट आ रहे हैं।
6: नंबर एक आपकी सरकार का,
8: नंबर दो, नंबर दो, दूसरी बात पे आज सर, अब दूसरी बात की मैं बात आपको बता दूं, जिस तरीके से इमरजेंसी की बात की है
7: कि वो जुडिशरी के खिलाफ,
8: मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जुडिशरी आपके लिए भगवान होगी, मुझे असहमत होने का अधिकार है, मुझे असहमत होने का अधिकार है और मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है।
6: ठीक है
8: साहिल भाई, अगर मुझे
6: राघवेंद्र द्विवेदी, सुरेंद्र जी एक मिनट जरा, राघवेंद्र द्विवेदी कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं। राघवेंद्र द्विवेदी जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, जरा आपकी आवाज ठीक करिएगा, उनकी आवाज नहीं आ रही है। राघवेंद्र द्विवेदी बोलिए, बोलिए जरा जी, राजपूत जो बोल रहे हैं।
9: साहिल जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मन में वही बेईमानी है, क्योंकि इनके दिमाग में भरा हुआ है कि चुनाव आ गया, हम कैसे हिंदू मुस्लिम कराएं। अभी जैसे मैं सुन रहा था कि विद्वान प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के वकील भी हैं, इनके द्वारा कैसे झूठा तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये एक कोर्ट का मामला है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला नहीं है, ये एक एसडीएम लेवल का मामला है। अरे भाई, एसडीएम लेवल के मामले को अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मान लिया तो वो तो माना जाएगा ना कि सही है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को नहीं मानते, ये हाई कोर्ट को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये अपने पिताजी को नहीं मानते, ये अपने चाचा जी को नहीं मानते, ये इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, ये उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मानते, ये उत्तर प्रदेश की एटीएस को नहीं मानते। भैया मानेंगे किसको? आप तो जनता का परिणाम भी नहीं मानते हैं। जनता आपको पिछले दो बार से विपक्ष में रखी है, तीसरी बार तैयारी कर ली है कि आपको विपक्ष में ही रखना है, और विपक्ष में रखने का कारण भी है क्योंकि जब जब जनता का मुद्दा उठाना होता है तो आप
8: को अपने दादा को तुम लोग नहीं मानते होगे, तुम लोग भाजपा को अपना बाप दादा मानते होगे, हम लोग
9: तो जनता के बीच में तो जाइए। ये हिंदू मुस्लिम वाला लड़ाई कब तक लड़ेंगे आप लोग? जनता जानना चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आप लोगों ने क्या किया, इनके सरकार ने तो बहुत कुछ किया। हिंदू भी जानना चाहता है कि ये मंदिर और मस्जिद के लिए आप लोग क्या करेंगे।
6: आपने सुना नहीं राघवेंद्र द्विवेदी, आपने सुना नहीं विपक्ष क्या कह रहा था? मैं आपको जरा एक बार समझा देता हूं क्या कह रहा था, और तभी मुझे सतीश प्रकाश जी को लाना है इस पूरी चर्चा के भीतर। विपक्ष दरअसल ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति के भीतर उठ रहे हैं, उनसे ध्यान भटकाने के लिए अपना एक टूल किट सरकार हमेशा इस्तेमाल करती है कि कोई मस्जिद गिरा दो और उस पर चर्चा शुरू कर दो। और सहारनपुर के भीतर क्यों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर सतीश प्रकाश जी देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप इस तरीके से नजर आता है, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं लोकसभा 2014 में 24 सीटें बीजेपी यहां से जीतती है, 2019 में 19 सीटें जीतती है, 2024 में 13 सीटें यहां पर जीतती है, विधानसभा के भीतर 109 सीटें 2017 में जीतती है, 2022 में 93 सीटें जीतती है। वहीं समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस 3 से 10 तक पहुंच जाता है लोकसभा के भीतर, और विधानसभा के भीतर 21 से 35 तक पहुंच जाता है। यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश जरूरी हो गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी सरकार को बचाने के लिए। तो ये उनका अपना पिच है ना कि कोई इलीगल मस्जिद है उस पर उसको गिरा दीजिए, उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया आएगी, कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंच जाएंगे, जाहिर सी बात है सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद है इमरान मसूद, तो वो वहां पर पहुंचेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और एक नई राजनीति शुरू होगी, नई चर्चा इस बात को लेकर शुरू हो जाएगी। अब तो ASI भी वहां पर पहुंच गई है ढूंढने के लिए कि भाई वो कुआ किस काल से था और क्या होगा उस कुएं का।
10: नहीं साहिल जी, 1000% योगी सरकार बेरोजगारी पे चर्चा नहीं कर सकती, महिलाओं के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती, कहीं ना कहीं जो बेरोजगार लोग हैं पेपर आउट के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती, एजुकेशन के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती, स्कूल के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती, महंगाई के ऊपर चर्चा नहीं कर सकती। वो उसका बाकायदा जमा जमाया पॉलिटिकल टूल है। एक छोटी सी बात, हमने बहुत सारी डिस्की की है, मुद्दा मस्जिद तोड़ना नहीं है साहिल जी, बुलडोजर ने सिर्फ मस्जिद नहीं तोड़ी, इस देश की स्थापित न्याय व्यवस्था को बाकायदा तोड़ा है। आप ये मान लीजिए कि कहीं भी रिव्यू का टाइम एक महीना होता है, कोई भी व्यक्ति अगर अदालत के किसी भी फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में एक महीने का उसको समय मिलता है, अगर कोई भी व्यक्ति इस दौरान अगर ये काम करता है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और मेरा मानना यह है कि अब उचली अदालतें सरकार से जरूर पूछेंगी, क्योंकि सरकार से जरूर पूछा जाएगा, और सहारनपुर के डीएम से उचली अदालतों को जाकर के व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं पूछना चाहिए, मेरा मानना एक बात। दूसरी बात, एक छोटी सी बात कहता हूं, ये अवैध अवैध है क्या है बाकी बेसिकली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी कलेक्ट्रेट के आप अंदर जाओगे वहां मस्जिदें खड़ी है, आप मस्जिद, अरे जमीन आई कहां से भाई, ये भी तो बताओ ना, जमीन का मालिक कौन है ये भी बताओ ना। शेरशाह सूरी भारत में पहला एक राजा रहा कि जिसने पहली बार भूमि का जो जो बाकायदा अभिलेख तैयार कराए, उसके बाद जितनी रियासतें आती रही, भूमि का मालिक रियासत है, जिसकी रियासत है वो उसका मालिक है, सामान्य व्यक्ति के पास भूमि नहीं है, लेकिन उन रियासतों से धीमे धीमे लोगों ने खरीद करके या उनकी सेवा करके जमीन उनके पास आई है, और आजादी तक जमींदार उन्मूलन कानून आने तक भूमि का मालिक कहीं ना कहीं वे ही लगे, रियासत के लोगों ने बाकायदा अंग्रेजों के टाइम में ये बहुत सारी कचहरियां खोलने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को ये जमीन दी गई है। उन अभिलेखों में अगर आप चेक करोगे तो कहीं ना कहीं वो रियासतों के नाम भी दर्ज है, ये मानो। तो आप एक छोटी सी बात मानो, जहां ऐसी पॉपुलेशन हो, और अभी भी न्याय व्यवस्था में आप देखेंगे उस न्याय व्यवस्था में बहुत सारे शब्द जो है ना, शब्दावली अभी भी कहीं ना कहीं आपको उर्दू नजर आती है। अभी भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर जो जो मुगल है या मुस्लिम है उसकी लैंग्वेज का भी प्रभाव है। अब मेरा मानना यह है कि देखो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, उनको समय था, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था कि जो वह कमेटी के
6: लोग क्यों किया गया?
10: साहिल जी, ये चंदा चोर है, ये रोजगार चोर है, ये बेईमान है, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, चाहे आप ऑफिस के अंदर देखेंगे, सड़कों में, हाईवेज में, उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, और योगी जी की ताकत नहीं है कि वो जनमानस के मुद्दों के ऊपर जाकर के चुनाव लड़ ले, जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की जो भोली भाली जनता है उसका पोलराइजेशन किया जा रहा है। मस्जिद ऐसी होंगी, और एक छोटी सी बात, राकेश जी एक बात और बताओ, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजकल जो है एक रविदास जी को लेकर के नया प्रेम हो रहा है, पंजाब जा रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से 84 जगह से मिट्टी लेके जा रहे, दिल्ली में रविदास मंदिर क्यों तोड़ा भाई तुमने, है ना, फिरोज शाह के टाइम का था ना वो, 15वीं शताब्दी के आपके पास कागज है, आपके पास 15वीं शताब्दी के कुछ कागज है, आपने रविदास मंदिर भी तोड़ा। अब मुद्दा ये नहीं है कि
6: राघवेंद्र द्विवेदी, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा था सतीश प्रकाश वही कह रहे हैं,
10: आप कहीं ना कहीं टारगेट वो लोग हैं।
6: मैं सवाल यही पूछने की कोशिश कर रहा था
10: जी
6: कि चुनाव नजदीक आ रहा है तो मस्जिद पर एक्शन लिया जाएगा, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा तो होगा ना भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, क्योंकि आप भी उनके साथ में शामिल है।
10: नहीं नहीं देखो साहिल जी, सवाल मुझसे है,
6: नहीं द्विवेदी जी से, राघवेंद्र
10: जी,
9: चुनाव नजदीक है, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पूरक है, कांग्रेस का कोई जनाधार तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के कैरियर पर बैठा है, और समाजवादी पार्टी का मात्र एक लक्ष्य है कि किस प्रकार जनता को हिंदू और मुस्लिम मंदिर और मस्जिद में उलझाया रहा जाए, क्योंकि ये आरक्षण पे बात नहीं करेंगे, जैसे हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि आरक्षण पे आइए बोलिए,
6: मस्जिद नहीं टूटती तो ये चर्चा ही नहीं होती राघवेंद्र जी, मस्जिद नहीं टूटती तो यह चर्चा ही नहीं होती
9: जी,
6: मस्जिद नहीं टूटती तो यह चर्चा ही नहीं होती।
4: अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में, सब जगह ओवरलैपिंग खत्म कर दिया गया। आपके आपके नेता कितना योगी आदित्यनाथ से सवाल किए, लंपटगिरी करने और दरबारीगिरी करने से अगर फुर्सत मिल जाए, आपने पूछा कि उत्तर प्रदेश के हर पब्लिक सर्विस कमीशन के भर्तियों में क्यों ओवरलैपिंग खत्म कर दी गई है?
9: ना हो, बुलडोजर ना चले तब भी ये कहते हैं योगी का बुलडोजर कहां चला गया, और चल रहा है तब भी इनके सीने में दर्द हो रहा है, तो ये तो मुहा बात कहां से लेके आते हैं?
6: सिलेक्टिव चल रहा है, शिकायत उनकी सिलेक्टिवनेस को लेकर है और टाइमिंग को लेकर है। मनोज काका आपकी बात रखिए, आखिर में राकेश त्रिपाठी बोलेंगे।
4: देखिए हमने एक तो साथी कह रहे थे कि ये बड़े अच्छे वकील हैं, तो कुछ एक्ट वैक्ट आता है, आईबी वगैरह पास है कि नहीं? एक एक एक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूं, एक एक्ट है 1900 जज इंक्वायरी एक्ट है 1968, आप पढ़ लीजिए। हर हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अगर कोई न्यायिक निर्णय आया है, अगर उससे सहमति नहीं है तो उसकी आलोचना करने का उसको पूरा हक है, जज इंक्वायरी एक्ट में है। आप क्या वकील हो जब आपको एक एक्ट नहीं पता? सिर्फ आप अभी वकील और क्या हो, वो किताब रखने से कोई वकील नहीं होता। जिस तरह वो फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग डिग्री तो बताते हैं, डिग्री दिखाते नहीं, तो उसी तरह आप वकील बताते हैं और आपको एक भी एक्ट नहीं पता है। इस देश के नागरिकों को संविधान
6: एक बात तो मान लीजिए राकेश त्रिपाठी जी,
4: जज इंक्वायरी
6: सहारनपुर के भीतर जो हुआ है, उस बात को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं तो लग रहा है ना कि पोलराइजेशन तो हो जाएगा इस बात को लेकर, क्योंकि मामला सरकारी जमीन का भी निकलेगा, मस्जिद का भी निकलेगा, डिमोलिशन का भी निकलेगा, ये बात तो है ना कहीं पोलराइज तो हो ही जाएगा ना।
4: बीजेपी को चाहे जो लगे उत्तर,
5: मैंने इसीलिए तो साहिल भाई कहा ना, मैंने उदाहरण देकर के बताया कि मार्च 2026 में आगरा में एक मंदिर गिराया गया, एक अभी जुलाई में 2026 में ही एक सीतापुर में दुर्गा मंदिर गिराया गया, क्योंकि इलीगल तरीके से इलीगल जमीन पर इंक्रोचमेंट करके जहां बना हुआ था वो मंदिर हो, मस्जिद हो, मजार हो, दरगाह हो, मदरसा हो, कोई बिल्डिंग हो, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल जगह तरीके से कब्जा किया गया है तो गिराया जाना चाहिए, उसको लेकर के चर्चा नहीं होती। चर्चा कब होती है? जब अतीक अहमद की बिल्डिंग गिराई जाती है, जब मुख्तार अंसारी की बिल्डिंग गिराई जाती है, किसी माफिया अपराधी की बिल्डिंग गिराई जाती है, विकास दुबे का घर गिराया जाता है, या कोई मस्जिद मदरसा गिराया जाता है, तो तुरंत चर्चा होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि पेट में दर्द होता है। वोट बैंक का मामला है, साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद हमने देखा है कि कितनी जुडिशरी की इज्जत की थी, संसद से बुलाकर के कानून बदल दिया,
6: मार्च महीने के भीतर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, महज 3 से 4 महीने बाकी है कि उत्तर प्रदेश के भीतर चुनावी रण चरम पर पहुंच जाएगा, और उसके बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 136 विधानसभा की सीटें और उसके साथ साथ 27 लोकसभा की सीटें, ये बहुत अहम साबित हो सकती है। जाहिर सी बात है कि सहारनपुर के भीतर जो हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं इन सीटों पर भी पड़ सकता है। इस पर नजर बनाए रखेंगे, एक लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद खबर जारी रहेगी, आप देखते रहिए।

0: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।
1: आगे आगे
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: और वही कहाँ गए थे घूमने?
2: जीके मैक्स।
3: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
2: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
4: जेके वॉल मैक्स
2: बेस्ट पेंट,
4: जेके मैक्स।
2: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: इन एसोसिएशन विद
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
7: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
8: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
9: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
8: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
10: आज तक की पंचायत में यूपी विजय के पक्के वादे।
11: अंजना जी को इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा। वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा।
10: यूपी की चुनावी लीला का मथुरा से शंखनाद, सिर्फ आज तक पर।
12: अब विशेष तौर पे बिहार सरकार से भी आग्रह है कि भाई हेलीकॉप्टर केवल अपने घूमने के लिए, मुआयना करने के लिए नहीं, बल्कि एयरफोर्स से भी मदद जो है मांगी जाए, ताकि जो भी बाढ़ के, दियर के, दूर के इलाके, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर से कम वितरण जो है कराया जाए। आजकल देखने को ही नहीं मिल रहा कोई, मतलब गंभीरता जो है बिहार सरकार द्वारा दिखाई नहीं दे रही है। क्या पैकेज जो नुकसान हुआ है, वो तो बाढ़ पहले चला जाए, उसके बाद उसका भी आकलन करने की जरूरत है। और एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि बिहार को देखते हुए एक विशेष पैकेज जो है केंद्र सरकार दे।
13: और जो प्रशासन से उम्मीद थी कि प्रशासन जब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, तो जो कटाव, जो जहां कटाव हो रहा है, उसका रोकथाम के लिए कुछ काम करेगी, लेकिन इस बार ऐसे कहीं भी देखने को नहीं मिला कोई।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
4: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
4: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: इन एसोसिएशन विद
6: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
7: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
8: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
9: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस को थोड़ा जल्दी हो जाता।
8: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
10: आज तक की पंचायत में यूपी विजय के पक्के वादे।
11: अंजना जी को इंटरव्यू 22 में लिया था, तो मैंने तब भी कहा था हमारी ही सरकार आएगी, चिंता मत करिए, और बहुत धमाकेदार तरीके से आएगी। 27 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत धमाकेदार तरीके से बनेगी। यूपी का युवा बनाएगा, यूपी की माताएं बनाएंगी, यूपी का अन्नदाता किसान बनाएगा। वह व्यक्ति जिस तक सुविधा पहुंची है, वह इस डबल इंजन की सरकार को फिर से यूपी के अंदर बनाने में अपना आशीर्वाद देगा।
10: यूपी की चुनावी लीला का मथुरा से शंखनाद सिर्फ आज तक पर।
12: अब विशेष तौर पे बिहार सरकार से भी आग्रह है कि भाई हेलीकॉप्टर केवल अपने घूमने के लिए, मुआयना करने के लिए नहीं, बल्कि एयरफोर्स से भी मदद जो है मांगी जाए, ताकि जो भी बाढ़ के, दियर के, दूर के इलाके पूरे बिहार में जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ हेलीकॉप्टर से कम वितरण जो है कराया जाए। आजकल देखने को ही नहीं मिल रहा कोई, मतलब गंभीरता जो है बिहार सरकार द्वारा दिखाई नहीं दे रही है। क्या पैकेज जो नुकसान हुआ है, वो तो बाढ़ पहले चला जाए, उसके बाद उसका भी आकलन करने की जरूरत है। और एक विशेष पैकेज केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि बिहार को देखते हुए एक विशेष पैकेज जो है केंद्र सरकार दे।
13: और जो प्रशासन से उम्मीद थी कि प्रशासन जब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, तो जो कटाव, जो जहां कटाव हो रहा है, उसका रोकथाम के लिए कुछ काम करेगी, लेकिन इस बार ऐसे कहीं भी देखने को नहीं मिला। कोई तैयारी इनकी नहीं थी बाढ़ को लेकर के।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: चुनाव का मौसम हो तो ढाई जा रही इमारतों पर उगती सियासत की रवायत एक बार फिर सहारनपुर में दिख रही। शासन ने दो दिन पहले जिस इमारत को अवैध ठहरा दिया था उसके मलबे पर राजनीति अभी बाकी।
1: क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में 13 घंटे में मस्जिद को गिरा दिया जाए? ये सोची समझी रणनीति साजिश है जिसके तहत पूरे प्रदेश को ये अपने अधिकारियों के माध्यम से कम्युनल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं।
0: एक तरफ विपक्षी दल सहारनपुर की घटना पर सांप्रदायिकता का सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ सहारनपुर जाते रोके जाने के आरोप लगा रहे हैं। एसपी की इकरा हसन से कांग्रेस के अजय राय और ओएसी पार्टी तक के नेताओं ने कहा है कि सहारनपुर जाते हुए पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया।
1: हमारे सभी सांसद सभी नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई है। ये पुलिस चोर डकैत बदमाशों को नहीं पकड़ रही है, पॉलिटिकल लोगों को घेराबंदी कर रही है।
0: प्रशासन ने एहतियातन नेताओं को सहारनपुर जाने से जरूर रोका, लेकिन दूसरी ओर भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम उस कुएं की पड़ताल करने जरूर पहुंच गई, जिसकी खुदाई की मांग हिंदूवादी संगठन करने लगे। दरअसल सहारनपुर में 5 सितंबर को तड़के 4 बजे जो बुलडोजर एक्शन हुआ था उसमें कचहरी की जमीन पर अवैध मस्जिद गिराई गई थी। इसे 16 जुलाई 2026 में सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने अवैध घोषित किया था और 6,41,00,000 का जुर्माना भी लगाया था। जिला अदालत में अपील खारिज होने के फौरन बाद मस्जिद पर बुलडोजर चला दी गई। अखिलेश सवाल उठाते हैं कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट रहते हुए फौरन मस्जिद ढहाने की क्या जरूरत है? दरअसल सहारनपुर में ढाई गई मस्जिद को लेकर दावा किया गया था कि ये करीब 70 से 100 साल पुरानी मस्जिद थी, जिसे सरकारी जमीन पर अवैध बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस हुआ, सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे गलत बताए कि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला अदालत में मस्जिद कमेटी की अपील खारिज होते ही 5 सितंबर की सुबह 4 बजे बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया था। कचहरी परिसर के सभी 5 दरवाजे बंद करके 6 बुलडोजर ने 3300 वर्ग फीट की 2 मंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया। अब उसके मलबों पर सियासत हो रही है, क्योंकि उसमें अभी एक कुएं का पता चल गया है और आम आदमी पार्टी के सांसद समेत विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि खसरा नंबर 539 के उसी भूभाग में एक मंदिर भी मौजूद है, लेकिन प्रशासन या किसी अन्य पक्ष की ओर से उस पर कोई कानूनी कार्रवाई या अतिक्रमण का मुकदमा नहीं है। आज तक बेरोकार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 31 अगस्त को 75 जिलों के जिलाध्यक्षों के साथ बैठक के बाद जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए थे तो उनके गले में पड़े नीले रंग के अंग वस्त्र ने सबका ध्यान खींचा था। वहां मौजूद पत्रकारों के सवाल पूछने पर अखिलेश ने तब इसे बुनकरों का प्यार कहकर टाल दिया था, लेकिन उस नीले रंग के असर का खुलासा अब हो रहा है जब समाजवादी पार्टी ने दलित वोटों तक पहुंच और प्रभाव बनाने के लिए छात्र सभा की वेशभूषा को लाल से बदलकर नीला करने का फैसला कर लिया है। समाजवादी पार्टी सूत्रों के मुताबिक दलित वोटों के मद्देनजर दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक एक तो समाजवादी पार्टी छात्र सभा की लाल वेशभूषा अब नीले रंग की होगी, दूसरे पार्टी के सभी कार्यालयों में बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा या चित्र अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े आयोजन, प्रेस कॉन्फ्रेंस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में बाबा साहेब की तस्वीर प्रमुखता से दिखनी चाहिए। दलित वोटों तक पहुंच की समाजवादी कोशिश की वानगी कुछ ऐसी है कि अखिलेश किसी भी चुनावी मुद्दे का जिक्र करते हुए बाबा साहेब को याद करना नहीं भूलते।
1: प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चोरी हुई तो सोचो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाए हुआ संविधान और कानून उसी का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि चोर पकड़े गए ना, तो चोरों के कार्रवाई कैसे हो रही है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, जो कानून बनाया उसी के तहत तो पकड़े जा रहे हैं।
0: अखिलेश के अम्बेडकर मंत्र के पीछे दरअसल चुनावी आंकड़े हैं जो बताते हैं कि 2022 में जहां समाजवादी पार्टी को बमुश्किल 10 से 12 फीसदी दलित वोट मिले थे, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर लगभग 35 से 40 फीसदी तक पहुंच गए। इंडिया गठबंधन की ओर दलितों के बढ़ते इस रुझान ने अखिलेश को उम्मीदों से भर दिया है, इसलिए अब समाजवादी पार्टी छात्र सभा की ड्रेस से ही सही अपना लाल रंग छोड़ नीला होने को तैयार हो रही है। और नीले रंग की महिमा कुछ ऐसी है कि 1942 में अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, तब उन्होंने इसके लिए गहरे नीले रंग का झंडा चुना। उस झंडे के केंद्र में अशोक चक्र स्थापित था। अंबेडकर खुद ही अक्सर नीले रंग के कपड़े पहनते थे। बाद में दलित सियासत करने वालों ने भी इसी नीले रंग को अपनाए रखा। और अब लोहिया के जमाने से लाल रंग के साथ सियासत करती आ रही समाजवादी पार्टी धीरे धीरे नीले रंग को अख्तियार करती दिख रही है। हालांकि इसका वोट के लिहाज से चुनावी असर अभी देखना बाकी है। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: दिल्ली बिल्डिंग हादसे में 7 मौत के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री का बड़ा एक्शन। एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 अफसर सस्पेंड। हाईकोर्ट ने घटना को बताया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस। पकड़ा गया दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे की बिल्डिंग का मालिक हरिराम, राजस्थान के भिवाड़ी से पुलिस ने दबोचा। घटना के बाद से था फरार, जारी हुआ था लुकआउट नोटिस। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर होगा उपचुनाव। 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। आज तक पर जल थल नब के धुरंधर। सीडीएस एनएस सुब्रमणी ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। शाम 7 बजे रक्षा मंत्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर। 27 लाख से अधिक लोग प्रभावित। पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी पानी। तेजस्वी की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: इतने सारे बच्चे, हमारे सामने ही होगी पूरी धारा सर। कौन हम कहाँ रह रहे हैं भाई?
1: जो है यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड के द्वारा, इसके साथ साथ एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा इस वक्त किया जा रहा है।
2: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है। साउथ कैंपस के सभी बच्चों का,
3: जब आप किसी चीज को सोचते हो, जब वो सच में आपके आगे हो जाती है तो एकदम से दिल कहीं ना कहीं घबरा जाता है।
4: कितने कितने में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है।
5: बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है।
6: छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ हो, कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे।
0: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा, जिनकी अनदेखी के कारण ये सारी दुर्घटना हुई है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, देश के किसी कोने से कोई छात्र अपना भविष्य बनाने देश की राजधानी आया। ये बच्चा आपके परिवार का, मेरे परिवार का, किसी के परिवार का हो सकता है, लेकिन उसे भविष्य के बदले में मौत मिले। सोचिए, जिन छात्रों के माँ बाप अपनी मेहनत की कमाई का पाई पाई इकट्ठा करते हैं, बचाते हैं, सिर्फ इसलिए कि बच्चों के सपनों को संवारने में उन्हें खर्च करना है, उनके बच्चे उन सपनों के पूरा होने से पहले मौत के मुंह में समा जाए। ये हमारे बच्चे हो सकते थे, हम में से किसी के बच्चे हो सकते थे। और सवाल यह है कि ये सिस्टम कब तक ऐसा रहेगा, कब तक? कल दिल्ली के सत्य निकेतन में एक इमारत ढह गई। उसमें डीयू के छात्र किराए पर कमरे लेकर रहते थे। 7 मौतों की पुष्टि हुई है, जिनमें 5 छात्र हैं, 1 मजदूर है और 1 अज्ञात बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद एमसीडी के 5 अफसरों को निलंबित किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्यों घटना के बाद ही शासन प्रशासन की नींद खुली है? कैसे नियम कायदों को ताक पर रखकर उनका उल्लंघन किया जाता है? जर्जर इमारतों को पीजी के तौर पर चलने दिया जा रहा है। जहां पर 3 मंजिलों की इमारत है, वहां 5 मंजिला, 6 मंजिला। क्यों? क्योंकि हर मंजिल के साथ कुछ कमरे बन जाते हैं, हर कमरे के साथ कुछ पैसे समेटे जा सकते हैं, और पैसे के इस अंधाधुंध कमाई के लिए बच्चों की बलि भी ने कुछ नहीं लगता। क्या यह घटना एक सवालिया निशान नहीं है कि हम हादसों से सबक नहीं सीखते? एमसीडी के 5 अफसर सस्पेंड है, लेकिन क्या बच्चों की जान लौटेगी? डीयू छात्रों का हॉस्टल डेथ, मौत के कितने असत्य निकेतन? आज हम इस पर सवाल जवाब करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वो असत्य निकेतन ही रहा होगा, वो भ्रष्टाचार, बेईमानी और आपराधिक लापरवाही के ईंटगारों से बनी कोई इमारत ही रही होगी। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में आर के पूरम इलाके के पास दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के पीजी की तरह काम कर रहा हॉस्टल डेज, हॉस्टल डेथ सिर्फ इसीलिए नहीं बना क्योंकि इमारत ही कमजोर थी। ये इमारत इसलिए गिरी क्योंकि एमसीडी के अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन की नीयत भी कमजोर थी। 3 मंजिला इमारत गैर कानूनी तरीके से 5 मंजिला कैसे बनी? बेसमेंट में खुदाई हुई, पानी भरा, तब शासन भी धृतराष्ट्र बना बैठा था और प्रशासन भी। जरूर रविवार के हादसे के बाद जवाबों की तलाश कर रहे सरकारी तंत्र ने बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल को भिवाड़ी से पकड़ लिया है, लेकिन पीजीडीएवी कॉलेज के छात्र अक्षत सिंह यादव की जिंदगी का मोल कैसे चुकाया जा सकेगा? कैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के छात्र अर्पित के परिवार वालों के टूटे सपनों को फिर जोड़ा जा सकेगा? जिन 7 युवा जिंदगियों को सिर्फ पढ़ने के लिए देश की राजधानी में रहने की कीमत जान गंवा कर चुकानी पड़ी, उसकी भरपाई कैसे हो सकेगी?
1: ये बिल्डिंग्स के, उसके आसपास की भी बिल्डिंग्स टूट रही थी, हमारे पास वीडियोस भी हैं। और इनफैक्ट जब वो बिल्डिंग गिरी थी तो उसके बगल में एक और पीजी था, उसकी बिल्डिंग भी हिलने लगी। अच्छा। ये खुद ही दिखाते हैं कि सत्य निकेतन जहाँ पे साउथ कैंपस के सारे बच्चे और भी कैंपसेस के सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ के और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसको नजरअंदाज किया।
0: सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली के एलजी से लेकर मुख्यमंत्री तक मौके पर पहुंचे थे। हादसे पर एक्शन के नाम पर दिल्ली नगर निगम में साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, साउथ जोन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, साउथ जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार, साउथ जोन के असिस्टेंट इंजीनियर सुनील चौहान और साउथ जोन के जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ कुछ लोगों पर कार्रवाई करने भर का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था से है जो सबक नहीं लेती। सत्य निकेतन में बॉयज का हॉस्टल डेज ढह गया, लेकिन उसी इलाके में ऐसी और भी खतरनाक इमारतें हैं।
2: हॉस्टल डेज जो गर्ल्स वाला है, वहाँ पे ये तारों का जाल आप देख रहे हैं, उसकी बालकनी में हम लोग खड़े हुए हैं। बगल में वो बिल्डिंग का मलबा हटाया जा रहा है और यहाँ पे ये कोशिश करते हैं आपको दिखाने की कि किस तरीके से ये छुपाया गया है। ये है हॉस्टल डेज, हॉस्टल डेज का ज्वाइन द डेज, और यहाँ जगह जगह इस तरीके के पोस्टर बैनर है। और इसी तरीके का 4 मंजिला जो बिल्डिंग का टावर है वो भी गाइडलाइंस को पूरे खुला खेल का फरुखाबादी यहाँ पे चल रहा है, गाइडलाइंस को वायलेट करता है।
0: दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में पढ़ने आए देश के हजारों छात्रों के लिए एक अदद छत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना मजबूरी है।
3: अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नारो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
4: ये सत्यनिकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे।
5: ये पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह मंजिल पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी।
3: यहाँ के सारे बिल्डिंग्स में ये है ना कि यहाँ पिलर्स नहीं है। लाइक इनिशियली उन्होंने सोचा होगा कि अपने लिए घर बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट से घर बना दिए, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा एक फ्लोर, इसलिए यहाँ पे मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं है किसी बिल्डिंग में।
6: तार यहाँ बारिश में पानी भरना और बिल्डिंग्स की हालत, तो अभी जब आप किसी चीज को सोचते हो, जब वो सच में आपके आगे हो जाती है, तो एकदम से दिल कहीं ना कहीं घबरा जाता है।
0: हादसों के बाद शासन प्रशासन वादे हर बार करता है, इस बार भी हुआ है। पूरी दिल्ली में अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया गया है और हादसे के पास के सभी पीजी और इमारतों की जांच की जा रही है।
7: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
0: अगर वाकई में किसी हादसे के बाद कोई बख्शा नहीं जाता है तो शायद अगला हादसा इंतजार नहीं करता, मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो मौके पर लगातार कवरेज कर रहे हैं, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस वहां चल रहा था। हमारे साथ मौसमी सिंह, हमारी सहयोगी वहां से जुड़ गई हैं। मौसमी वहीं पर इस वक्त भी मौजूद दिखाई दे रही हैं, और अस्पताल के बाहर से भी हमारी सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। हरीश खुराना प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, विनोद जाखड़ अध्यक्ष एनएसयूआई के जुड़ गए, राजेश पवार पूर्व चीफ एयर फायर ऑफिसर जुड़ गए हैं दिल्ली से, और नवीन भटनागर पूर्व डीआईजी एनडीआरएफ के, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रिटायर्ड पूर्व सीनियर कंसल्टेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम के। लेकिन पहले चेहरा दिखाइए, घटना घटी है, सरकार हिली है, लोग पहुंच रहे हैं, कवरेज है, चर्चा होगी, लेकिन फिर इंतजार रहेगा कि कब ये घटना शांत हो जाए। लेकिन आज हम आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये सिर्फ एक नंबर रह जाता है। मुझे लगता है कि अक्षत सिंह की एक और तस्वीर है जो हमने रिपोर्ट में भी डाली थी, वो डिलाइए दिखाइए, क्योंकि ये चेहरा बहुत छोटा इसमें दिखाई दे रहा है। अक्षत सिंह यादव, 18 साल इनकी उम्र है, और अभी अभी ये आए थे अपने परिवार वालों से मिलकर। ऐसे ही आप अनगिनत बच्चों का, पीजीडीएवी कॉलेज में अक्षत सिंह यादव पढ़ते हैं, आईएएस बनने का उनका सपना था, इन दोनों बच्चों को सपना सोचे आईएएस बनने का। अपने घर में अभी रहकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाकर वापस दिल्ली लौटे थे। क्या गलती थी अक्षत की? और ये जो एमसीडी वाले पैसा खाते चलते हैं, बिल्डिंगें सामने बनी रहती है, उनकी आंखों के सामने में बनती हैं, और इंतजार करते हैं कि पहले पूरा बन जाए तब जाएंगे वहां पर पैसा लेने। मैं तो साफ कह रही हूं, क्योंकि ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वहां पर पुलिस और एमसीडी की मिली भगत के बिना ये इमारतें चलें। जहां पर 3 मंजिला इमारतों का परमिशन है, वहां 5 मंजिला बने हुए हैं, ये हत्यारे हैं इन बच्चों के। क्या गलती थी अक्षत सिंह की? सिर्फ इतनी कि वो एक सपना लेकर दिल्ली आए थे, अपने परिवार को पीछा छोड़कर ये बच्चा आया था, क्योंकि ये यूपीएससी देना चाहता था और पीजीडीएवी कॉलेज में फिलहाल बीकॉम कर रहा था, लेकिन इसके साथ ही आईएएस बनने का सपना था इसका। अब अगली तस्वीर दिखाइए अर्पित की, 19 साल इनकी उम्र थी, कटनी के एमपी के रहने वाले थे अक्षत सिंह। ये देखिए अर्पित की उम्र 19 साल, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के छात्र, बीकॉम के छात्र थे। क्या गलती है इनके मां बाप की कि अपने बच्चे के सपने को पूरा होने के लिए जब उसने कहा कि मुझे जाना है दिल्ली, तो उसे जाने दिया कि जाओ मेहनत करो और अपनी मेहनत लगन से पढ़ोगे तो एक दिन तुम हमारा नाम रोशन करोगे, अपना नाम रोशन करोगे। जान ले ली इन लोगों ने ऐसे बच्चों की, जान गई है 20 साल के अभिषेक की भी, सोनभद्र के रहने वाले हैं, सोनभद्र में भी आज मातम है, युवराज सोनी। मैं चाहती हूं कि ये जितने एमसीडी वाले हैं ना, जो अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि ये काला पैसा लेकर कमा कर जाएंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ ज्यादा खरीद लेंगे, आज जरा देखें कि किसी दूसरे के बच्चे की जान पर जान लेकर वो लोग अपना अपनी तिजोरी भरते हैं। युवराज सोनी छात्र, दुर्ग छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। पवन 17 साल के हैं और अय्या यूपी के रहने वाले थे। सुरेंद्र सिंह पर तो पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी थी, वो तो मजदूर थे, काम कर रहे थे। और एक घटना नहीं है ये, आज जितने लोग जुड़े हुए हैं आप ध्यान से सुनिए। 22 जून 2026 लखनऊ एनिमेशन सेंटर में आग लगी, 15 लोगों में अधिकतर छात्र थे, जिंदा जल गए। वहां पर भी इसी तरीके से, अवैध तरीके से बिल्डिंग चलाई जा रही थी। 27 जुलाई 2024 ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। सोचिए पानी भरते हुए डूबती सांसों में कितनी दर्दनाक मौत उन बच्चों को मिली। 3 छात्रों की मौत हुई थी 27 जुलाई 2024 ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली कोचिंग सेंटर में। फिर पानी भरने से ये जो 3 लोगों की मौत हुई थी उसका वीडियो भी आ गया, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 15 जून 2023 मुखर्जी नगर दिल्ली कोचिंग सेंटर में आग लगी, खिड़कियों से छात्रों को कूदना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। क्या कर रहे हैं हम? 15 जून 2023 मुखर्जी नगर में, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। फिर 2019 का मामला है सूरत का, 24 मई कोचिंग सेंटर में आग, 22 छात्रों की मौत हो गई। किसी का बच्चा जिंदा जल जाए क्योंकि किसी को अपनी तिजोरी भरनी है, इससे दर्दनाक क्या हो सकता है? इससे पहले कि मेहमानों के पास जाएं, एक बार मौसमी जल्दी से वहां की तस्वीर दिखाइए और बताइए इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है।
2: देखिए अंजना, सुबह से हम लोग यहाँ आए और आज दिन भर हम लोग ने बहुत हताश, परेशान, डरे हुए छात्र छात्राओं से पूरे दिन बात की है और शायद ही अभी तक आपने यहाँ की एरियल तस्वीर देखी होगी। हम लोग बड़ी मशक्कत से यहाँ पे पहुँचे हैं। आप देखिए इस इलाके का हाल क्या है। हम सत्य निकेतन में खड़े हैं, आप देखिए कहीं इमारतों में पानी की टंकी जर्जर हालत में है, यहाँ बैल्कनियाँ देखिए उसमें पानी बह रहा है, ऊपर सारा जंग खाई हुई बैल्कनियाँ बनी है, ऐसा लग रहा है कभी भी गिर जाएंगी। आस पास बिल्कुल सटी हुई इमारतें हैं, आधे भित्ते की भी जगह नहीं है, कई बैल्कनियों के बीच में इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक तारों की जाल बिछी है। और यहाँ पे एरियल व्यू पे हम आपको दिखाते हैं जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से नहीं कहा गया है कि ऑपरेशन खत्म हो गया है, बट एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ बता रही है कि पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया। वही स्पॉट है जो आपको खाली दिख रहा है, जहाँ लाइट्स लगी है, वही इलाका है जहाँ पे पूरी वो इमारत ढह गई थी, जिस मलबे को छानते छानते जिंदगियां तलाशते हुए आज पूरा दिन लग गया। और यही सिचुएशन आप देखिए पीछे किस तरीके से टावर है, उसके नीचे ही इमारत है। और यहाँ पे पूरा इलाकों में हमने देखा कि छात्र बेहद डरे हुए हैं कि आज उनके बगल की इमारत ढही है तो कल उनकी बारी ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 15,000, 20,000, 25,000 एक खोपचे के लिए माचिस के डिब्बे की तरह तीन तीन बिस्तर का, 15,000 एक बिस्तर का यहाँ पे वसूला जा रहा है। पीजी वाले पूरे धड़ल्ले से पैसा ऐंठ रहे हैं और बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। आप देखिए नीचे कितना संकरा इलाका है, एम्बुलेंस खड़ी हुई है। यहाँ पे देरी इसलिए भी हुई कि जो फायर सेफ्टी नॉर्म वॉर्म है ये यहाँ पे बेमानी हो जाते हैं सारे। आप देखिए तारों में बिछा हुआ है, नीचे बड़ी मशीन या कुछ एक्सेस ही नहीं कर पाए उस इलाके को, तो ये एक बिल्कुल माखौल उड़ रहा है। और कितने सालों तक हम यही रिपोर्टिंग करते रहेंगे, कहीं जल भराव हो गया, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ गिर गया, कहीं मलबा ढह गया। मतलब 15-20 साल में मतलब मैं त्रस्त आ गई हूँ। मतलब समझ नहीं आता कि वो रात कैसे उन माओं ने बिताई होगी ये सोच के कि हमारे बच्चे उस मलबे में दबे हुए हैं। और आज हम लोग वही खड़े हैं जिस चौराहे पे हम लोग 15-20 साल पहले थे, वही एमसीडी, वही तमाशबीन और वही नतीजा ढाक के 3 पा।
8: मतलब इतना इस वक्त गुस्सा और एक अजीब सा, मतलब एक ऐसी स्थिति बनती है शिवानी, इतना डिसहार्टनिंग है ये। मतलब ये इतना डिसहार्टनिंग है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब इलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध तरीके से निर्माण, अवैध तरीके से, मतलब जो भी 3 मंजिलों का परमिशन है, 5 मंजिलों का लेना और फिर वहां से कमाई करना, ये एक धंधा बना हुआ, एक पूरा एक नेक्सस है। और ये राजधानी दिल्ली में चलता है, बच्चों की जान खतरे में डलती है। और फिर जब ऐसी घटना होती है तो अस्पताल बच्चों के शव पहुंचते हैं।
9: बिल्कुल अंजना, मैं इस वक्त एम्स ट्रॉमा सेंटर पे हूँ, मैं सुबह से यहाँ पर हूँ और जो परिजन जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है उनसे बातचीत कर रही थी। और अक्षत जो कटनी के रहने वाले थे, 18 वर्षीय अक्षत जो IAS बनने का सपना लेकर यहाँ आए थे, उनकी माँ का चेहरा मैं भूल नहीं पा रही हूँ। और उनका एक सवाल बार बार कानों में गूंज रहा है कि क्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मेरा बेटा लौटा सकती हैं। उनकी जो बेटी थी यानी अक्षत की छोटी बहन, उसका रो रो कर बुरा हाल था, उसे देखा भी नहीं जा रहा था। अंजना, बहुत ही मुश्किल वक्त है ये उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर खो दिया है। और ये पहली बार इस तरह का हादसा नहीं हुआ है, लगातार साल दर साल हम देखते हैं इस तरह के हादसे होते हैं। दूसरा, जो अर्पित था जो देवास का रहने वाला था, उसकी माँ कह रही थी कि उन्होंने अपने बच्चे को पहचानना बहुत मुश्किल था क्योंकि पूरा चेहरा उसका दबा हुआ था। और बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है ये। अभी भी ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, जिन लोगों का इलाज चल रहा है उसमें से बताया जा रहा है 5 में से 3 की हालत गंभीर है, इलाज जारी है, 7 मौतों की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि बार बार इस तरह के हादसे क्यों होते हैं। और MCD जो पूरी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरी जिम्मेदारी MCD की बनती है। राजेंद्र नगर का हादसा हुआ,
8: लौट रही हूँ एक सेकंड आपके पास, लौट रही हूँ, एक खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को जरा बता दे क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं और बिल्डिंग मालिक की पत्नी और बेटा भी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। कुल 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, हरिराम गुप्ता महेश उसका बेटा और उर्मिला उसकी पत्नी है, उसकी वाइफ और सन, मतलब बेटा और पत्नी को भी, हरिराम गुप्ता बेटा महेश गुप्ता और उर्मिला गुप्ता तीनों को अब गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। हरीश जी, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अब तो वो बहाने भी खत्म हो चुके हैं कि भाई MCD में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, तीनों जगह आप हैं। खुराना जी, कौन लौटाएगा इन बच्चों को? कैस मतलब क्यों, क्या मतलब कितनी कमाई करनी है, मतलब क्या करना है ऐसा कि बच्चों की बलि चढ़ाने को तैयार है? क्यों नहीं दिखता किसी को?
10: अंजना, सबसे पहले तो उस परिवार के प्रति हम लोग एक संवेदना प्रकट करते हैं कि जिन बच्चों की मौत हुई है, दिल से उनके परिवार के प्रति संवेदना है। दूसरा, मैं कोई यहाँ लिपापोती करने नहीं आया, यहाँ निश्चित तौर के ऊपर मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट और MCD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो सरकार किसी की भी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस सिस्टम का फेलियर है। आप सिर्फ कहें कि BJP सरकार है इसलिए फेलियर है। घटना 2010 से हम ललिता पार्क में, आप उस वक्त पत्रकार थी, याद करिए ललिता पार्क की घटना 15 नवंबर 2010 की, तब 81 लोग मरे थे, तब भी बातें हुई थी, तब भी थी ट्रिपल इंजन की सरकार थी। लेकिन सिस्टम ऐसा हो गया है, इसको ठीक करना जरूरी है। और जहाँ तक मेरी सरकार की बात है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहे हैं अंजना जी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ आपको और दिल से बोल रहा हूँ। आज ये सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और निश्चित तौर के ऊपर एक एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो MCD के हो, चाहे वो कोई ठेकेदार हो, चाहे वो उस मकान का मालिक हो, एक एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी। मैं आपके व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ।
8: और दूसरी बात, आज अब मुझ पर ये आरोप मत लगाइएगा कि मैंने आपको बीच में टोका, मैंने आपको बोले दिया नहीं, अब 10 सेकंड, अब आप मुझे सुनिए। जब पानी भरा था तस्वीरें दिखाई है इनको, यही दिल्ली में नीचे जब पानी भरा था बेसमेंट में, और जो इलीगल तरीके से बेसमेंट में लोग कोचिंग सेंटर्स बच्चों के लिए चलाते हैं, कहीं पर रूम्स रखते हैं, चलाते हैं, यही एग्जैक्टली यही जो जो आप अभी कह रहे हैं ना, मैं उस दिन का निकाल के रिवाइंड रिप्ले कर सकती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने यही बात कही थी एग्जैक्टली सेम टू सेम। क्या करें,
10: मैं एग्जांपल लेता हूं, अंजना जी, 2 महीने पहले घटना हुई थी, याद करिए जब हौसरानी की घटना हुई थी, सरकार ने एक्शन लिया, हमने विधानसभा के अंदर ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जो वो था लॉ था वो रिपील किया, नया सख्त कानून बना रहे हैं। और मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूं ऐसे ही अनऑथराइज, जो आज मैं आपको बता रहा था कि आज रेखा गुप्ता जी की सरकार के अंदर आज हमारी विधायक दल की बैठक थी, आज की बात बता रहा हूं, हम एक एक विधायक को ड्यूटी लगाई गई है हमारे एरिया के अंदर, अगर वो 5वीं फ्लोर बन रही है तो उनको चिन्हित कर अगले कुछ दिनों में उसकी सीलिंग हो, कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।
8: अभी तक पट्टी क्यों बंधी हुई थी?
10: मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले कुछ दिनों में इलेक्शन देखेगा।
8: अभी तक पट्टी क्यों बंधी हुई
10: थी? मैंने क्या बोला, सिस्टम गल चुका है अंजना, सिस्टम गल चुका है। जैसे मैंने आपको बताया 2010 में भी ले जाना चाहता हूँ,
8: सिस्टम का हिस्सा
10: कांग्रेस की थी, और मैं 22-23
8: में ले जाऊंगा, सिस्टम का हिस्सा है मिस्टर हरीश।
10: मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रहा हूं और ना हम भागेंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं रही है, इसलिए वो एक्शन मोड में है। 5 अफसर आज तक कभी डीसी सस्पेंड नहीं हुआ, पहली बार सस्पेंड हुआ है इस पूरे, आप देख लीजिए इस पूरे 15-20
8: ठीक है हरीश जी, जब आज बात कर ही रहे हैं, बात कर ही रहे हैं, सुनिए हरीश जी, आप तो विधायक भी हैं, आज जब बात कर ही रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं सिस्टम गला हुआ है, सड़ा हुआ है, आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। कौन कौन पैसा खाता है?
10: देखो मैंने क्या बोला,
8: कौन कौन,
10: पूरा सिस्टम की हालत खराब है।
8: कौन कौन खाता है सर?
10: अब इसमें कौन कौन खाता है, क्या क्या खाता है, वो तो जांच का, देखो जांच का विषय है निश्चित तौर के ऊपर, जो घटनाएं हुई है जांच का विषय है निश्चित तौर के ऊपर। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने एग्जांपल दिया आपको, 2023 में 22 में भी घटना हुई थी।
8: पैसा कौन कौन खाता है?
10: 70 घटनाएं हुई थी, 23 लोग मारे गए थे।
8: विधायक जी पैसा कौन कौन खाता,
10: पूरा सिस्टम ऐसा हो, मैंने क्या बोला, अब पैसा नहीं घिरो बैगो नहीं, मैंने पैसा कौन कौन खाता है, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि 5-5 मंजिलें बन रही है, 5-5 मंजिलें बन रही है, मैं तो खुद कह रहा हूं, और ये आज से नहीं हो रहा, 85 साल से हो रहा है, सिस्टम ये हुआ पड़ा। प्रॉब्लम क्या है सुन लीजिए, दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप क्षेत्रफल हॉरिजॉन्टली बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती गई, क्षेत्र का विकास हुआ नहीं, उसमें सरकारें जिम्मेवार हैं, लेकिन अब ये सिस्टम आ चुका है जिसे हमने मास्टर प्लान लेके आए, ऐसे ही हम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेने वाले हैं, ये निश्चित तौर पर मानिएगा कि हम एक्शन लेंगे।
8: मुझे समझ नहीं आ रहा हरीश जी कि आप हाथ खड़े कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हाथ खड़े करें कि सिस्टम तो ऐसा ही है, ताकि अगली बार फिर कहीं इंसिडेंट हो तो आप बता सकें कि भाई सिस्टम ऐसा है, मैंने कहा था कि हम लोग कोशिश करेंगे, सील क्यों नहीं करते, सील क्यों नहीं होता, फॉरन सील क्यों नहीं होता।
10: मैंने एग्जाम्पल अंजना मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, एक 2 महीने पहले की घटना से सबक लिया हम लोगों ने, हमने उस कानून को रिपील किया विधानसभा के अंदर, रिपीट हुआ, सख्त कानून आ रहा है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट का, ताकि 5, अगर परमिशन 5 की है तो 5 ही हो, 25 नहीं बनेंगे वहां पे, 25 कमरे नहीं बनेंगे, जो घटना है वहां पे अभी गेस्ट हाउस कांड हुआ है, ऐसे ही अब ये जो घटना अगर हुई है
8: तो पुरानी चीज है मिस्टर गुप्ता, सख्त एक्शन क्या होता है, मैं फिर ये रटी रटाई बातें ना, आप एक सेकंड सुनिए मिस्टर खुराना सॉरी विधायक जी, बड़ी मनस्थिति खराब है, देखिए ये स्थिति जो है ना, ये दिस इज मैन मेड मर्डर, इसको मैन मेड मर्डर कहते हैं, और जिस का हाथ सेका गया ना, ताकि ऐसे घर वहां पर चलते रहे, आप कह रहे हैं कि हम बनाने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे, हम 5-bed breakfast में हम करेंगे, तो यहां पर ये 5 इमारतें बनी हुई है, अब ऐसा तो है ना कि आप एक इमारत को आप तोड़वा देंगे, सील कराया जा सकता है, सील कराने में क्या दिक्कत है, और फिर सील होकर वो सील्ड रहे और फिर किसी का हाथ सेक कर उसको खोल ना दिया जाए, इस बात की गारंटी कैसे होगी? खुराना जी,
10: अंजना 2 चीजें अलग अलग फैक्टर हैं, 2 अलग अलग फैक्टर हैं, एक जो बिल्डिंगें नई बन रही हैं उनको तुरंत तोड़ा जाए, इसके आदेश आज रेखा गुप्ता जी ने दे दिए कि, और विधायकों की ड्यूटी लगाई है हमारे विधायकों की कि आप जाके चिन्हित करिए और उसको सील करिए। आप एक्शन देखने को मिलने वाला है जो नई बिल्डिंगें बन रही है। अब जो पुरानी बिल्डिंगें हैं उनका ऑडिट होगा, निश्चित तौर के ऊपर होगा, टाइम फ्रेम ऑडिट होगा, और जहां जहां ये बिल्डिंगें बनी हैं उसको सील करके तोड़ा जाएगा। ये निश्चित मानिए आपको अगले कुछ दिनों में आप ही चैनल पे एक प्रोग्राम चलाएंगी कि दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया। ये निश्चित मैं यकीन मान के मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार करने वाली है।
8: विधायक जी, मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके बाद एक बार आखिरी कोशिश कर रही हूं, आज बोल दीजिए। और आप, आपके पिता तो लंबे वक्त तक दिल्ली की राजनीति को देखते रहे हैं और ये सिस्टम एक दिन में बना नहीं है, इस ये बात भी मैं कबूलती हूं, लेकिन ये सिस्टम सबकी सरकारों में चलता रहा। मेयर आपका, एमसीडी आपके पास, दिल्ली सरकार आपके पास, केंद्र में आपकी सरकार, फिर भी ये व्यवस्था चल रही है। कौन कौन पैसा खाता है, हिम्मत दिखाइए।
10: मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूं। आपने जैसे कहा केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में बीजेपी, एमसीडी की बीजेपी में। कांग्रेस के लोग यहां बैठे होंगे, 2011 में भी एमसीडी उनकी थी, केंद्र भी होता, राज्य भी उनका था। 28 मौतें हुई थी 2011 के अंदर, 2012 में 32 मौतें हुई थी, 2013 में 21 मौतें हुई थी। ऐसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में भी थी और एमसीडी में भी थी। 371 कांड हुए, 23 मौतें हुई।
8: आपको इसलिए सत्ता में लाया गया था,
10: अप्रैल 2024 से जनवरी 2025
8: तक। खुराना जी, आपको इसलिए सत्ता में लाया गया था कि आप बताएं कि कांग्रेस भी करती थी, आप भी करती थी। हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप तो चाल चरित्र और चेहरे वाले थे, आपने तो कहा था आप परिवर्तन करेंगे, एक बार हिम्मत दिखाकर बता दीजिए ना कौन कौन पैसा खाता।
10: अंजना मैंने ये कहा चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, सिस्टम गल चुका है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम करके रहेंगे।
8: विनोद जाखड़ जी, आपके पास आ रही, देखिए विपक्ष है, आप इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना, सरकार को घेरना जरूरी भी है और इस मुद्दे पर दबाव बनाना भी जरूरी है कि भाई ये स्थिति बदले, सील किया जाए।
11: देखिए मैडम, मैं इस मंजर को अपनी आंखों से देखा है और देख के मैं ऐसा समझ पाया हूं कि या तो ऐसा मंजर हमने कभी फिल्मों में देखा होगा या उस दिन हमने हकीकत में देखा है। हमारा एक साथी का फोन आता है कि भैया हमारा एक साथी अंदर दब गया है। अब वो ये हड़बड़ाहट में, घबराहट में नहीं बता पाता है कि बिल्डिंग पूरी गिर गई है। जैसे ही हम लोग 20 से 25 मिनट में यहाँ पहुंचते हैं, मेरे 60 से 70 एमएसवाई के कार्यकर्ताओं के साथ मैं वहां जाता हूं और देखता हूं कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। वहां पर कुछ लोकल कार्यकर्ता थे जो कम से कम 5 से 7 होंगे, वो कोशिश कर रहे थे क्योंकि जस्ट पीछे की बिल्डिंग भी बहुत बुरी तरीके से जर्जर स्थिति में थी और वो कभी भी गिर सकती थी, तो लोकल लोग भी जो है वहां पे आने से घबरा रहे थे। 3 पुलिसकर्मी हमारी टीम जाती है और कुछ छात्रों को रेस्क्यू करती है। हम 3 छात्रों को बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। 1 एम्बुलेंस होती है, फायर ब्रिगेड नहीं होती है, ना ही कोई मेडिकल की टीम होती है, ना एनडीआरएफ होता है, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। उसके बाद हमारे कुछ साथी मीडिया को बताते हैं, मीडिया पहुंचता है, 1 से 1.25 घंटे तक पुलिस आती है, एनडीआरएफ की टीम आती है। आप सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ऐसा होना बड़ा सवाल खड़ा करता है एक सरकार की कार्यशैली पर। वो एक छात्र जो जिंदा था, बहुत बड़ी छत थी उसके ऊपर गिरी हुई थी, मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, वो चिल्ला रहा है दर्द के मारे और मेरा हाथ पकड़ता है। मैं उसको हिम्मत देता हूँ कि आप चिंता मत करो, हम बाहर निकालेंगे। वो कहता है भैया मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे जिंदा बता लीजिए। मैडम आप सोचिए, ऐसा मंजर आंखों के सामने अगर कोई देखेगा तो क्या स्थिति रहेगी। जैसे तैसे करके कुछ छात्रों को हम लोग जो है निकालते हैं और एम्स में हम लोग पहुंचाते हैं। एम्स में पहुंचते पहुंचते 2 छात्रों की जान चली जाती है। एक छात्र, जब मैं उनसे मिलने जाता हूं तो 2 छात्र डॉक्टर बताते हैं कोलैप्स कर गए हैं। 1 छात्र थोड़ी बहुत सुध में है, थोड़ी बहुत समझ पा रहा है, गर्दन हिला रहा है। जब हम लोग वहां थे तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा मंजर कि पूरी बिल्डिंगें हमने खाली करवाई, पूरी बिल्डिंगें हमने आसपास के पीजियों को समझाया कि प्लीज आप नीचे उतरिए। बच्चे घबरा गए, डर गए कि हो क्या रहा है, बच्चे छतों पे चले गए। हमने ये देखा कि जितनी भी जो पीजी हैं उसमें फाउंडेशन ही नहीं है, वो दीवार के ऊपर दीवार खड़ी हुई है। हम लोग जवाब चाहते हैं सरकार के, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। रेखा गुप्ता जी 5:30 बजे आती है प्रदेश के मुख्यमंत्री, इतना बड़ा हादसा है।
8: जवाब एक हरीश जी इसका दीजिए, उसके बाद से मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा।
10: दस सेकेंड। देखिए मैं विनोद जी की, अपने जाकर साहब की समझ सकता हूँ कि चुनाव 10 दिन बाद है, इसलिए उनको राजनीति करनी है। मैं राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 1:30 पे घटना होती है, 1:33 पे कॉल जाती है और 1:50 पर एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉयड होती है। मैं नहीं बोल रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया की आज खबर है। इसलिए मेरे बंधु छोटे भाई, आपको राजनीति करनी है करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि 18 तारीख को चुनाव है दिल्ली का, यूनिवर्सिटी का, आप जो राजनीति रोटी सेकनी है।
11: सर प्लीज झूठ मत बोल,
10: मुझे बोले दीजिए, जाकर जी बोले दीजिए, मैं अपने बात बोल लीजिए। मैं खुद नहीं कह रहा, ये आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की खबर है सर। इसलिए मेरा कहना है आपको राजनीति करनी है करिए, लेकिन लाशों की राजनीति मत करिए, लाशों पर राजनीति मत करिएगा। आप कांग्रेस की टीम, आप कह रहे हैं कि आज सड़कों पे
11: सर सर सर कहां, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। आप जितने वहां पे वीडियोस हैं,
10: मुझे
11: आप उन तमाम वीडियो को उठा के देखिए, अगर आपको दो पुलिस वालों से ज्यादा झूठ मिल जाएगा सर, आप सुनिए मेरी बात प्लीज सर, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
10: छोटे
11: देश के छात्रों का भविष्य का मुद्दा है।
10: जागर भाई,
11: ये सर 25 से ज्यादा छात्र मलबे के नीचे दब जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।
10: भाई
8: जल्दी से एक बार खुराना जी दो लाइन में दीजिए, इस पर बहुत सारी चर्चाएं आ रही हैं, एम्बुलेंस पहुंचने में लेट को लेकर, राहत कार्य लेट पहुंचने पर, अकाउंटेबिलिटी, एक अखबार का, आप एक सेकेंड सर, अखबार का आर्टिकल कोट करने की बजाय कोई सरकारी पेपर है तो वो दिखाइए कि हाँ भाई हमारी टीम कितनी बजे पहुंची थी, या कुछ तो आपके पास ऑन पेपर होगा।
10: सरकारी पेपर बता रहा हूँ मैं, सरकारी पेपर, और मैं एनडीआरएफ का बयान बता रहा हूँ मैडम, एनडीआरएफ के चीफ का बयान बता रहा हूँ कि 1:50 1:50 पे उनकी टीम पहुंच चुकी थी। बात समान वो नहीं है कि 20 मिनट में पहुंची
8: नहीं है, उनको जवाब देने दीजिए, बीच में मत बोलिए,
10: बीच में मत करिए,
8: अपने अपनी बारी में बोलिए। राजेश पवार,
10: मैं बयान नहीं दे रहा,
8: चीफ फायर ऑफिसर है,
10: मैं बयान नहीं दे रहा,
8: ड्रोन शॉट्स दिखा रही हूँ मैं, ड्रोन शॉट्स दिखाइए एक बार। राजेश जी सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही, समस्या यही है, और ये इन तमाम जगहों पर है, मतलब अगर एक एक करके इन इलाकों का नाम लिया जाए, वहां पर गाड़ियां पहुंचना, एम्बुलेंस पहुंचना, मतलब जो धड़ल्ले से इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है। और आप क्या बताएंगे पूरी घटना के बारे में?
12: अंजना जी, ये हादसे जो हैं पहले भी होते रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हादसे के बाद अगला हादसा नहीं होगा। संकरी गलियों के अंदर ये वास्तव में बात है कि फायर ब्रिगेड को या किसी भी सहायता दल को वहां पहुंचने में दिक्कत होती है। सर्वप्रथम मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली फायर सर्विस का मैंडेट फायर फाइटिंग का ज्यादा है, रेस्क्यू ऑपरेशन वो फायर फाइटिंग में ज्यादा करते हैं, लेकिन दिल्ली की आज तक अभी तक SDRF कहीं पे नहीं मिली है, जो कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होनी चाहिए, बाकी सभी स्टेट के अंदर हैं। और हमारे पास जब भी दिल्ली में ये कोई हादसा होता है तो हम NDRF जो है बाहर से, जहां की जो भी स्टेशन है जिस जगह पे भी, तो वहां से हम इनको जो है कॉल करते हैं। तो पहले SDRF, और दूसरा एक 2025 के अंदर एक मैंडेट जो है उस वक्त LG साहब ने किया था कि DDMA जो है सभी बिल्डिंगों का एक आर्किटेक्चरल सर्वे करें, और उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे किस किस बिल्डिंग को जो है डेंजरस है या किसको रेट्रोफिटिंग की जरूरत है उसको जो किया जाए, आर्किटेक्चर सर्वे जरूरी है। मैं अथॉरिटी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हम हाउस टैक्स के ऊपर बिजली का बिल भी मांगते हैं, बाकी चीज भी मांगते हैं, तो क्या उन्होंने 5 साल के बाद में या 10 साल के बाद में जिस प्रकार से गाड़ियों का रेट्रो उसको चेक करते हैं, तो इसका भी एक आर्किटेक्चर सर्वे जब हाउस टैक्स लिया जाता है तो उसके दौरान पे जमा कराया जाए, जिससे कि सभी लोग जो है इसमें जो है सचेत रहेंगे और अपना कार्य को जो है सुचारू रूप से करेंगे। और ये काम
8: फायर सेफ्टी के लिए भी, जो राजेश जी एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब दीजिएगा, जब कमर्शियल इस्तेमाल आप करते हैं तो फायर सेफ्टी की भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी ना ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स अगर आप बना रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं।
12: अंजना जी, फायर सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स हर घर के अंदर है, चाहे एक सिंगल स्टोरी का है उसमें भी है, लेकिन हमारे पास वो प्लान पहले आना चाहिए कि यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, और ये बिल्डिंग जो है जो सैंक्शनिंग अथॉरिटीज हैं इनका दायित्व जो है मेरे से ऊपर है, मैं इन्हीं के सहयोग से कार्य करता हूँ, अगर ये मेरे को सहयोग करेंगे तो मैं उसमें उचित व्यवस्था उनके लिए करवा पाऊंगा।
8: नवीन भटनागर जी, आप पूर्व DIG हैं NDRF के, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार जब घटना घटी किस तरह की तस्वीर थी, एक बार खुराना जी आप भी देखिएगा।
13: कितने सारे बच्चे गो हमारे सामने ही होंगी पूरी धारा ऐसा कौन हम कहाँ रह रहे हैं वैष्णो यार चलो उनको
8: नवीन भटनागर जी आप फॉर्मर डीआईजी हैं एनडीआरएफ के एक तो राहत बचाव पर भी बोलिए और आपको क्या दिख रहा है कहां पर सबसे बड़ा लूप होल दिख रहा है मतलब इस असहाय बच्ची की आवाज इसलिए मैं सुनाना चाहती थी क्योंकि दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ये स्थिति है जिसमें हमारे बच्चे रहने को मजबूर है एक जिंदा बच्ची कह रही है मेरे सामने ये बच्चे मर गए हम कहां पर रह रहे हैं हम क्या करें
14: बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और ये दिल्ली में पहली घटना नहीं है इससे पहले भी और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं इसी टाइप की तो कहने का मतलब ये है कि बार बार जो आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम से नहीं करते हैं और लापरवाही से करते हैं इसका नतीजा ये हमारे सामने है तो दिल्ली के अंदर जो अपना लाल डोरा है तो टाइप की बस्तियां हैं
15: यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं होता है जैसे
8: नवीन जी मैं आपको टोक रही हूँ सर बीच में लेकिन नवीन जी आपकी नजर में आपकी भी अनुभव बहुत रहा है कौन कौन आपको मतलब एक ही सवाल है मेरा कोई अधिकारी कोई नेता कोई बताए बैठ के सामने में टीवी पर बताए सर ईमानदारी से कौन कौन पैसा खाता है तब जाकर इस तरह का अवैध तरीके से निर्माण होता है और धड़ल्ले से धंधा होता है कौन कौन
15: मैं बता सकता हूँ इसमें जो है आपका जो एमसीडी या नगर पालिका नगर परिषद तहसीलदार या जो भी कंसर्न है इस एरिया के एक तो वो पैसे को तो मैं नहीं कह पाऊंगा लेकिन वो कंप्रोमाइज करते हैं इसी प्रकार से जो है इवन देन छोटा सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बंदा है वो ये सब लोग कंप्रोमाइज करते हैं मैं इसका एक उदाहरण दूं एक छोटा सा आप अपने घर के आगे खुदाई करके पंप लगाने की कोशिश करें आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ नेशनल चैनल पे कम से कम 5 डिपार्टमेंट के लोग एकदम आ जाएंगे जिन्हें कहां से उनको सूचना मिलती है आके खड़े हो जाएंगे जी इलीगल है इसको बंद करो थोड़ी देर में जो है तो वो कहीं बातचीत होती है कंप्रोमाइज हो जाता है और फिर वो लग जाता है नलकूप और ये सब तो मैं इन चीजों से मैं खुद घबरा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली सिस्मिक जोन 4 और 5 में है और यहाँ धरती के नीचे से पानी बहुत बुरी तरह निकाल लिया गया है पैकेट है इसके अलावा यहाँ इतनी स्टीम बढ़ रही है इतनी पावर जनरेट हो रही है दिल्ली रिज में कि मैं आपको बता रहा हूँ
8: एक सेकंड में आपको टोक रही हूँ सर ये 2 तस्वीरें आई हैं जो हम लोग दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को ये देखिए यही है वो हरिराम गुरुग्राम में इनका घर देखिए बच्चों की जिंदगी ताक पर डालकर छोटे बच्चों के सपनों को कुचलकर उनको मारकर ये आदमी अपना कैसा आलिशान घर में रह रहा था उसका आलिशान घर देखिए ये गुरुग्राम में हरिराम का घर है जिसको अब राजस्थान से अरेस्ट किया गया है या शानदार मकान और इस तरफ वो इमारत जहां पर ये बच्चे रह रहे थे और जहां पर गिरने से उनकी मौत हो गई है ये है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि खूब कमाई होती है ऐसे बेड पे बेड ऐड करो फ्लोर पे फ्लोर ऐड करो और फिर उन बच्चों से उनके परिवार वालों से मतलब एक तरह से अपना सब कुछ लुटाकर परिवार वाले सब कुछ करते हैं कि भाई बच्चा अच्छे से पढ़े 20-20 हजार 25-25 हजार एक एक बच्चे से ले लेके और यह आलिशान मकान बना हुआ है इस आदमी का दिखाइए उसका चेहरा एक बार अब उसको भी अरेस्ट किया गया है उसकी पत्नी को भी उसके बेटे को भी अरेस्ट किया गया है लेकिन ऐसे हरिराम एक नहीं है दिल्ली में एक हरिराम को अरेस्ट कर लेने से इस समस्या का अंत नहीं होगा ऐसे अनेकों हरिराम घूम रहे हैं जो पैसे की कमाई करते हैं मतलब जिसको कहिए कि इन बच्चों का उनके माता पिता का खून चूसकर उनकी कमाई का पैसा लेकर ये लोग अवैध तरीके से सबको खाना पीना मतलब जो भी पैसा दे वे के, क्योंकि कोई तो होगा जो रोकता होगा कि पांचवा मंजिल बना रहे हो, तो वो भी हाथ गर्म करने का एक जरिया बस बनता है, थोड़ा सा दिया बाकी कमाया और उसके बाद से ऐसे आलिशान बनाए। अनेकों हरिराम है और इन अनेकों हरिराम को जब तक आपकी पार्टी खुराना जी नहीं पकड़ेगी, आपकी पुलिस आपका एमसीडी नहीं पकड़ेगा, तब तक बच्चों की बलि ऐसे ही चढ़ती रहेगी। नीजक रिएक्शन और सब कुछ कालीन के नीचे छिपा लेने से अंत नहीं होगा इसका। सख्त से सख्त एक्शन और जितने विधायक हैं सबको जाना चाहिए अपने अपने इलाकों में। चेक कीजिए आप लोग क्यों नहीं औचक निरीक्षण कर सकते हैं, ब्रिगेडियर आप पुलिस को लेकर जाइए, एमसीडी के लोगों को लेकर जाइए, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आप फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के, और ये देखकर तो और भी डर लगता है कि दिल्ली सिस्मिक जोन में है और जिस स्थिति में हम रह रहे पानी और ये सब होने के बाद पूरी इमारत ढह रही है और वहां अच्छा अभी भी मतलब हमारी रिपोर्टर जहां से लाइव कर रही थी वहां पर भी ऐसे ही पांच पांच छह छह मंजिले इमारतें बनी हुई है। कौन कौन पैसा खाता है अगर आपको पता हो तो आप बता दीजिए, और फिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है?
16: इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह के बिल्डिंग बाइलॉज को तार तार किया जा रहा है, और मैं डीआईजी श्रीवास्तव की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एमसीडी में कुछ ऐसे लोगों ने उन्होंने लोग एम्प्लॉय कर रखे हैं जो मोटरसाइकिल पे सारी कॉलोनीज में घूमते हैं, और जैसे ही आपका कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं या कोई बिल्डिंग मटेरियल आता है वो एकदम उन अधिकारियों को सूचना देते हैं और वो एकदम आपके पास आ जाते हैं कि या तो आप इतने पैसे दीजिए वरना ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। जब उनको उनकी जो डिमांड्स है उनको पूरा कर दिया जाता है उसके बाद ये होने लगता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें देखिए, जहां तक मैं सोचता हूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं या जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज आप साउथ कैंपस में देखिए कितने कॉलेजेस में हॉस्टल है, बच्चे चाहते हैं कि मतलब अगर आप उनको हॉस्टल मुहैया करा सकते हैं तो ऐसे पेइंग गेस्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। केवल एक हरिराम को पकड़ने से नहीं होगा, उस हरिराम को बनाया किसने है, उस हरिराम को प्रशासन और शासन ने बनाया है, क्योंकि उसने किसी न किसी की जेबें गर्म करी होंगी तब जाके उसने वो बिल्डिंग खरीदी।
8: बिल्कुल सही कहा आपने।
16: और दूसरी चीज, ये जितने भी अधिकारी हैं इन सबके जब तक आप फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करेंगे, इनके असेट्स नहीं करेंगे, आप ये देखिए एमसीडी में एक छोटा सा मुलाजिम होता है वो करोड़ों की संपत्तियां उसके पास होती हैं, आप ये देखिए वो छोटी सी नौकरी कर रहा है लेकिन उसके पास असीम धन है, तो जब तक आप इनके लिए एक कोई फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करेंगे तब तक ये बदस्तूर चलता रहेगा। तीसरी चीज ये है कि जब तक आप ये देखिए अधिकारी खाली सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता
8: है। ये दिखाइए ना राकेश कुमार, ये दिखाइए एक बार इनको, खुराना साहब को। राकेश कुमार ये जानते हैं, ये जो अभी हाल में आपकी घटना हुई थी उस वक्त भी ये लोग एमसीडी में ही थे, ये रणवीर सिंह, ये सब हरीश जी सामने देखिए ना, हरीश जी स्क्रीन देखिए, स्क्रीन नहीं है सामने, ये सब चेहरे दिखा रहे हैं जिसको अभी सस्पेंड किया ना आपने, जिनको सस्पेंड किया ये पहले भी थे। और एक लाइन जो ब्रिगेडियर साहब ने कही है उससे मैं शत प्रतिशत सहमत हूं कि इनको शासन बनाता है, इनको प्रशासन बनाता है, क्या फर्क है? अगर उसी सड़ी गली व्यवस्था को आप भी उसके ध्वजवाहक सिर्फ बन रहे हैं, कुछ नहीं बदल रहे सिस्टम को, तो कौन तोड़ेगा इस सिस्टम को?
10: अंजना आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक हरिराम के एक्शन से काम नहीं चलने वाला। ऐसे दिल्ली के अंदर हजारों हरिराम घूम रहे हैं और एक एक को चिन्हित कर सजा दिलवाने का काम हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार करेगी, निश्चित तौर पे करेगी, ये यकीन मानिएगा। और एक्शन स्टार्ट हो चुका है आज ही, जैसे मैंने आपको बताया कि आज ही हम विधायकों को बोल दिया गया है ग्राउंड पे उतरिए और जाके एक एक बिल्डिंग को चिन्हित करिए। और मैं आपको यकीन दिलवाता हूं, और कल ही आपको मैं टैग करूंगा, मैंने ऑलरेडी दो तीन बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जहां पीजी चल रही मेरे एरिया के अंदर, उन पे एक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी डीसी को बोल दिया है कि इस पे एक्शन लीजिए, हमारे एरिया में डीएलएफ की एक बिल्डिंग है वहां पे चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप निश्चित मानिए, आपके चैनल के माध्यम पे मैं दिल्ली के लाखों श्रोताओं को आज बोलना चाहता हूं, ये सरकार चुप बैठने वाली नहीं है, इसका ऑडिट होगा।
8: चुप तो बैठे थे ना सर, तभी तो घटना घटी, चुप बैठे थे तभी तो घटना घटी, और घटना घट गई उसके बाद जागने से। फिर भी अगर कुछ बदलाव आप लोग कर पाए तो जरूरी है कि नजर रहे, पहले का अगर किए होते तो शायद लोगों को भरोसा भी होता कि आप बदलाव के लिए आए हैं। इन तस्वीरों के साथ इन बच्चों की छोड़े जाते हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी हो, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए लोग हों, सबकी नींद चली जाए इन बच्चों के चेहरों को देखकर। इन चेहरों को आप लोग भूल ना पाए कभी। जब जब काली कमाई के पैसे से कुछ खरीदे तो इन बच्चों के चेहरे आए आपकी नजरों के सामने, जिनकी इस सिस्टम ने हत्या की है। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आज रात 9 बजे जरूर

0: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
1: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
0: असली शहद, असली स्वाद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
4: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
5: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
6: जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस थोड़ा जल्दी हो जाता।
5: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
7: दरख्तों को देख करके आप समझ में आएंगे कि त्रिशूली की धारा कितनी ताकतवर थी। इसके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सब कुछ बह गया, ध्वस्त हो गया। आज तक पहला नेटवर्क बेतरावती के उस इलाकों में है। 9 दिन पहले एक भरा हुआ शहर अब बंजर रेगिस्तान कब्रिस्तान की तरह दिखाई देने लगा। जो अपने आप में मिरेकल हाउस थे, जो बचे रहे लोग इनकी छतों पर खड़े रहे, अब रोपवे बना करके लोगों को निकाला जा रहा है। यहां पर राहत बचाव कार्य अभियान का अब एक नया चरण शुरू हो चुका है। त्रावती से मैं आशुतोष मित्रा। आज तक
8: आपदा की इस घड़ी में आप अकेले नहीं हैं, चाहे वह सामान्य परिवार हो, व्यापारी हो, मठ मंदिर हो, घाट हो, इन सब को नुकसान जो भी हुआ होगा उन सबको हम लोग सरकार की ओर से सहयोग करने की व्यवस्था करेंगे और उन सबको हम लोग सहयोग भी करेंगे। दूसरा, मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर बाढ़ की चपेट में या अग्निकांड की चपेट में किसी गरीब का घर आता है, किसी का घर आता है, पूरा घर जल जाता है, बाढ़ की चपेट में आके पूरा घर बह गया है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता रखता तो प्रधानमंत्री आवास, और नहीं तो मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास और जमीन का पट्टा तत्काल दे दो।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: वो असत्य निकेतन ही रहा होगा। वो भ्रष्टाचार, बेईमानी और आपराधिक लापरवाही के ईंटगारों से बनी कोई इमारत ही रही होगी। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में आर के पूरम इलाके के पास दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के पीजी की तरह काम कर रहा हॉस्टल डेज, हॉस्टल डेथ सिर्फ इसीलिए नहीं बना क्योंकि इमारत ही कमजोर थी। ये इमारत इसलिए गिरी क्योंकि एमसीडी के अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन की नीयत भी कमजोर थी। 3 मंजिला इमारत गैर कानूनी तरीके से 5 मंजिला कैसे बनी? बेसमेंट में खुदाई हुई, पानी भरा, तब शासन भी धृतराष्ट्र बना बैठा था और प्रशासन भी। जरूर रविवार के हादसे के बाद जवाबों की तलाश कर रहे सरकारी तंत्र ने बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल को भिवाड़ी से पकड़ लिया है, लेकिन पीजी डीएवी कॉलेज के छात्र अक्षत सिंह यादव की जिंदगी का मोल कैसे चुकाया जा सकेगा? कैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के छात्र अर्पित के परिवार वालों के टूटे सपनों को फिर जोड़ा जा सकेगा? जिन 7 युवा जिंदगियों को सिर्फ पढ़ने के लिए देश की राजधानी में रहने की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ी, उसकी भरपाई कैसे हो सकेगी? सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली के एलजी से लेकर मुख्यमंत्री तक मौके पर पहुंचे थे। हादसे पर एक्शन के नाम पर दिल्ली नगर निगम में साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, साउथ जोन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, साउथ जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार, साउथ जोन के असिस्टेंट इंजीनियर सुनील चौहान और साउथ जोन के जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ कुछ लोगों पर कार्रवाई करने भर का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था से है जो सबक नहीं लेती। सत्य निकेतन में बॉयज का हॉस्टल डेज ढह गया, लेकिन उसी इलाके में ऐसी और भी खतरनाक इमारतें हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में पढ़ने आए देश के हजारों छात्रों के लिए एक अदद छत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना मजबूरी है।
1: अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे? उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
2: ये सत्य निकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं, सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे।
3: ये पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं और ऐसी 6-6 मंजिल 5-5 मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी?
4: यहाँ के सारे बिल्डिंग्स में ये है ना कि यहाँ पिलर्स नहीं है। लाइक इनिशियली उन्होंने सोचा होगा कि अपने लिए घर बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट से घर बना दिए, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा एक फ्लोर, इसलिए यहाँ पे मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं है किसी बिल्डिंग में।
5: तार यहाँ बारिश में पानी भरना और बिल्डिंग्स की हालत, तो अभी जब आप किसी चीज को सोचते हो, जब वो सच में आपके आगे हो जाती है तो एकदम से दिल कहीं ना कहीं घबरा जाता है।
0: हादसों के बाद शासन प्रशासन वादे हर बार करता है, इस बार भी हुआ है। पूरी दिल्ली में अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया गया है और हादसे के पास के सभी पीजी और इमारतों की जांच की जा रही है। अगर वाकई में किसी हादसे के बाद कोई बख्शा नहीं जाता है तो शायद अगला हादसा इंतजार नहीं करता, मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दिल्ली दुर्घटना पर मौत के कितने असत्य, निकेतन इसी पर आप देख रहे थे आज हल्ला बोल में चर्चा। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए 7 तक और कुछ ही देर में सुरक्षा सभा में आने वाले हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देखते रहिए आज।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली बिल्डिंग हादसे में दो और गिरफ्तार, बिल्डिंग मालिक के बाद पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 सस्पेंड। बिल्डिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई डांट, कहा जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते, हादसे को कहा दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार एमसीडी डीयू और एजेंसीज को नोटिस। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर एएसआई की टीम ने किया निरीक्षण, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। आज तक पर जल थल नव के धुरंधर, सीडीएस एनएस सुब्रमणि ने बताया मॉडर्न वॉरफेयर, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी, थोड़ी देर में रक्षा मंत्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की बात। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 27 लाख से अधिक प्रभावित, पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर में पानी ही पानी, तेजस्वी की पीएम को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।

0: कुमार या शकील, मैं सीधे आ रही हूँ सत्या निकेतन से। यहीं पर कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 24 घंटा पहले 7 छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन वो रिएक्शन है। सवाल ये है कि ये जो इमारतें हैं जो ओपन वायलेशन के बाद बनाई गई हैं, उनको तोड़ा या ढाया क्यों नहीं जा रहा, क्या इंस्पेक्शन हुआ है? बहुत सारे सवाल है, क्योंकि अगर आप यहाँ के पीजी अकोमोडेशन में जो रहने वाली छात्रों से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सेंस ऑफ नाराजगी भी है और खौफ का भी माहौल है, क्योंकि वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी और घटनाएं होंगी कि फाइनली कोई एक्शन होगा। पिछले कुछ घंटों से मैं यहीं पर हूं, छात्रों से बात कर रही हूं, स्टूडेंट्स और आसपास के लोगों से मैंने बात की है। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
1: एंड आफ्टर द इंसिडेंट विच हैपेंड यस्टरडे, उसके बाद हम लोग उन पर चेक ऑन करने आए थे कि वो लोग ठीक है या नहीं, बिकॉज ऑफ दैट कंसर्न ओनली। हमने देखा वो है ठीक है, उनकी बिल्डिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है, एज सच यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है, खाना भी इतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन जैसे यहाँ की हालत है आई वुड से इट इज नॉट गुड। यहाँ पे रहना इज लाइक वेरी हेक्टिक, यहाँ पे कोई रह नहीं पाता, यहाँ पे खाने के इश्यूज हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का तो कल हमें पता ही चल गया जैसा हुआ है। आफ्टर ऑल द इंसिडेंट हैपेंड, तो उसके बाद तो वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। वी डोंट लिव इन पीजी, लेकिन वी लिव इन दिल्ली ओनली, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, और यहाँ का हाल देख के तो बस इसे सारे ही हम लोग बहुत परेशान है देख के कि क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग आधे से ज्यादा टाइम यहीं होते हैं।
0: विद योर फ्रेंड्स यू आर हियर?
1: विद आवर फ्रेंड्स, या एंड द स्पॉट जहाँ पे ये हुआ है वी गो देयर, हम लोग वहीं पे होते हैं, वहाँ शॉप्स हैं जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, चॉकलेट एंड सब जो होता है, एंड हम लोग ऐसे एक दिन पहले भी वहीं थे एकदम बिल्डिंग के नीचे ही, तो इट वॉज वेरी शेकिंग, वी वर शेकिंग जब हमने ये न्यूज सुनी, तो इट्स नॉट गुड बिल्कुल। वो
2: द माफियाज, पीजी माफियाज दे चार्ज अ लॉट ऑफ फंड, लेके जैसे हमने पूछा था अपने दोस्तों के लिए जो फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स आए हैं, दे आज के भैया हमें पीजी चाहिए, हम हर पीजी में गए हैं, हमने पीजी चेक किया है, इतने गंदे पीजीज एंड उनका रेंट दे वर लाइक 14,000-15,000 विदाउट फूड।
0: इफ विदाउट 14,000
2: इफ वी से हमें खाली गर्ल्स पीजी चाहिए, बट अवर द सिक्योरिटी बोलते हैं कि नीचे एक गार्ड होगा एंड वो भी बीच में लंच ब्रेक वगैरह के लिए जाता है, एंड पीजीज लाइक फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर, उस पर भी लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है एंड रूम्स खाली इतने छोटे छोटे है कि नो वन वांट टू लिव देयर।
0: डिफिकल्ट लिविंग इन दिल्ली,
3: डेफिनेटली मैम मैम। एंड आई गेस यहाँ पर मेंटेनेंस इश्यूज बहुत हैं, एवरी लाइक यहाँ पर जितने पीजीज हैं वो सब बस रेंट के पीछे भागते हैं। आपको सेफ्टी भी तो देखनी है स्टूडेंट्स की, एज हमारे एक सीनियर है तुषार भी, उनको कल इंटरव्यू हुआ था, वो मैंने देखा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में 3 लाख बच्चे हैं और हॉस्टलर्स सिर्फ 4 है, मतलब 4,000 हॉस्टल्स अवेलेबल है, तो ये रेशियो तो बहुत कम है ना। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर इतने स्टूडेंट्स को वो वहां पर पढ़ाते हैं, तो उसके लिए अकोमोडेशन भी तो प्रोवाइड करना चाहिए, और अगर आप अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आसपास के एरियाज की सेफ्टी सिक्योरिटी, ये तो डूसू का एक मेन यूनियन का एक एजेंडा होना चाहिए ना कि वो सेफ्टी स्टूडेंट्स की
0: नहीं है। जब इलेक्शन होता है तो क्या उस वक्त जो स्टूडेंट यूनियन के जो चुनाव में लड़ते हैं तो क्या दे डोंट पुट दैट ऑन टॉप ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट?
3: मैम द एजेंडाज आर डेफिनेटली ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट, बट विद इन देयर टेन्योर ऑफ 1 ईयर कितने एजेंडाज कम्प्लीट होते हैं, दैट्स द मेन इशू राइट। तो अब कहने को तो मैं भी अगले साल इलेक्शन लड़ने के लिए अपने सारे एजेंडाज लिख दूं, बट मैं वो पूरा नहीं करूंगा तो दैट्स नॉट द अच्छी बात नहीं है ना। वो तो मेंशन सब करते हैं बट उस पर एक्शन कौन ले रहा है, ये मेन इशू है। आप यहाँ पर सबकी कंडीशंस देख लो, एक बिल्डिंग आपको अच्छी नहीं दिखेगी, और अगर जो बहुत अच्छी बिल्डिंग है उसका रेंट इतना ज्यादा है कि एक अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से भी आते हैं, बहुत वेल टू डू फैमिली से भी आते हैं इधर, बट हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, सो दैट्स द मेन इशू है, एक सेफ्टी का कंसर्न बहुत है।
1: देयर आर मेनी पीपल जिन लोगों को उनके घर से कॉल आ गई है, उन्होंने इमीडिएटली वापस बुला लिया गया है। इवन वन ऑफ आर फ्रेंड शी इज फ्रॉम सोनीपत, उसको जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ एंड जैसे ही न्यूज वगैरह हर जगह पे बात आई, उसके पेरेंट्स इमीडिएटली कॉल्ड हर कि घर आ जाओ, बस कैसे भी करके वहां से निकल जाओ। वो सोनीपत रहती है, सोनीपत इतना भी दूर नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स का कॉल आया उसी टाइम और वो उसी टाइम यहाँ से गई है। मेनी ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू लिव हियर आर नॉट हियर, अब सब चले गए।
4: कभी भी कुछ भी इमरजेंसी होती है हम लोगों के पास भाग, मतलब एस्केप प्लान नहीं है कोई भी, पानी इतना गंदा आता है यहाँ पे, हर चीज का दिक्कत है, खाना यहाँ पे इतना गंदा मिलता है,
0: फायर अलार्म्स
4: फायर
0: एक्सटिंग्विशर्स
4: नहीं है।
5: आनंद निकेतन माई सेल्फ इन माई फर्स्ट ईयर एंड द सिचुएशन इज नो बेटर, मतलब द एरिया इज नॉट एज कंजेस्टेड एट सत्या, बट देन अगेन वहां पे कोई शॉप्स वगैरह आपको कुछ फैसिलिटीज इतनी क्लोज बाय नहीं मिलेगी, एरिया कंजेस्टेड नहीं है बट बिल्डिंग्स वहां पे भी लंबी लंबी ऐसी ही है, तो देर इज नो ऐसा कि वहां बेटर तुमको मिल जाएगा, क्योंकि जो होना इधर भी हो सकता है वो उधर भी हो सकता है, पीजीज वहां पे भी ऐसे ही लाइंड अप मिल जाएंगे। हाँ, ऑल दो दैट इज रेजिडेंशियल एरिया तो वहां पे कम मिलेगा तुमको ये सब, बट एट द सेम वही हालत वहां की भी कोई ऐसी बेटर नहीं है। एंड अब जब यहाँ पे ये सब हो चुका है एंड व्हेन यू लीव एंड यू वांट टू मूव आउट टू दैट एरिया, वहां पे भी पीजी के रेंट्स वगैरह जो होंगे वो तुमको हाई ही मिलेंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि बच्चों के पास देर इज नो अदर ऑप्शन टू लिव, तो अब तो रेंट हाई कर देते हैं, अब क्या है।
6: ये तो सही है, बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहाँ जाएंगे आप लोग रहने के लिए?
4: आई एक्चुअली अब चेंज, मैंने 3 साल में 3 अलग पीजी ले रखे हैं एंड देन ये मेरा थर्ड पीजी, आई मीन थर्ड ईयर, ठीक है, इसलिए भी मैंने चेंज किया है, मतलब आई एम जस्ट होपिंग कि यहाँ पे बेटर हो, पर देन हर जगह जाते हो हर जगह आपको वही कंडीशन देखने को मिलती है। पहले मैं उधर रोड पे जो एक पीजी था उधर रहती थी, जो सत्या की मेन रोड है, एंड वहां भी सेम कंडीशन थी, हमें इतना गंदा खाना मिलता था, खाने में आपको हर तरीके का कीड़ा देखने को मिल जाएगा सबसे पहले तो, और मतलब इट इज बेरली एडिबल वो खाना।
6: वेन यू कम्प्लेन टू योर मैनेजर नोबडी इज देयर टू लिसन,
4: नथिंग, कुछ नहीं करते हैं वो लोग, कुछ भी नहीं करते हैं, एक कान से सुनेंगे वो दूसरे कान से निकाल देंगे।
6: मेरे पीछे वो जगह है जहां पर अभी भी कोशिश हो रही है कि अगर कोई भी फंसा हो, कोई भी उस इमारत के नीचे गिरा फंसा हो उसको निकाला जा सके। अभी तक 7 छात्रों की मौत हो चुकी है और लगभग 10 से 11 छात्र वो हैं जो एम्स में अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। कुछ देर पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक बयान आया, उसने एक सवाल पूछे हैं और जवाब मांगा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और दिल्ली सरकार से। कुछ देर पहले रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री ने भी ऐलान किया ट्विटर पे जाकर के कि एक्शन हुए हैं। ये सत्या निकेतन का इलाका है जहां पर हर गली में पीजी अकोमोडेशन है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स की कमी है, उसके वजह से ज्यादातर बच्चे जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं वो पीजी अकोमोडेशन में रहते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं उनको, लगभग 15 से 16 हजार रुपए का एक बेड मिलता है और बहुत ही छोटे कमरे होते हैं जहां पर जिंदगी बहुत टफ है, इतनी टफ है कि वो पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो उनका 3 साल है अपना अंडर ग्रेजुएट पूरा करने का वो ग्रेजुएशन करके यहां से निकले। कितना मुश्किल है यहाँ पर रहना। सत्या निकेतन के इस इलाके में ये रहती हैं, उसके अलावा ये सब जो स्टूडेंट्स हैं ये सब छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। मुझे बताइए आप कहाँ पर रहती हैं और किस तरह की हालत है, ज्यादातर जैसे आप जैसे छात्र यहाँ पर कैसे रहते हैं?
7: हम लोग इतनी दूर से इतना कट ऑफ क्लियर करके इतनी पढ़ाई करके आते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे, इतने एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, इतने सारे ड्रीम्स के साथ आते हैं, फिर 15-20 दिन में अगर हमारे साथ ये सब हो रहा है तो उनका घबराना भी रीजनेबल है।
6: कहाँ से हैं आप?
7: आई एम फ्रॉम यूपी एक्चुअली,
6: उत्तर प्रदेश से हैं।
7: जी,
6: तो कितना रुपया लगता है एक उस रूम में जहाँ पे आप रहती हैं?
7: मेरा रूम तो है 10.5K, बट उसमें फूड और कुछ भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी अलग से, फूड भी हमें अलग से मैनेज करना है, क्लीनलीनेस के चार्जेस भी अलग से देने हैं, और यहाँ पे सबका ऐसा ही है। पीजी ओनर्स उनको इतना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रखा है कि उन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे पीजीज का रेंट इतना ज्यादा है, 15K-16K से स्टार्टिंग है, और दे आर प्रोवाइडिंग नथिंग, लाइक स्पेस भी नहीं है, वेंटिलेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है,
6: फायर एक्सटिंग्विशर
7: कुछ भी नहीं, हर सारे आप देख सकते हैं 90% ऑफ बिल्डिंग का यही हाल है कि कोई कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते हैं।
6: इतनी बुरी हालत है। आप यहाँ पे रहते थे और उसके बाद आप नॉर्थ कैंपस मूव कर गए?
8: मैं फिलहाल सेकंड ईयर में हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया जब आसपास यही जगह थी, घर वालों को ये रहता है कि हॉस्टल बच्चा कॉलेज के पास रहे, जब मैंने यहाँ नई नई पीजी ली, मतलब क्या होता है कि यहाँ सिक्योरिटी लग जाती है 12 महीने से पहले, आप छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी है वो कट जाएगी। इस डर की वजह से हमें 12 महीने मजबूरन रहना पड़ा, 40,000 की मेरी सिक्योरिटी थी, इस वजह से मैंने 12 महीने काटे हैं, फिर बाद में मैंने दूसरी जगह शिफ्ट हुआ हूँ, नहीं तो मतलब छोड़ तो मैं 1 महीने में ही देता, क्योंकि यहाँ की हालत ऐसी है, ना ही तो कोई वेंटिलेशन है, ना ही कोई मतलब हवा है, बीमारियां हो रही हैं, मेरे भी खुद स्किन प्रॉब्लम्स हुई थी जब मैं था, टाइफाइड भी हुआ था मेरे पानी की वजह से,
6: और खराब है
8: पानी भी खराब है, हर चीज खराब है, मतलब कोई बेहतर कुछ है ही नहीं। जो मिलता है मैं 18 के देता था एक रूम के लिए, एक शीट के लिए 18 के,
6: हाँ मतलब एक बेड
8: के लिए 18,000।
6: साथ साथ क्या फैसिलिटी मिल?
8: बेड के साथ साथ खाना पीना ये मिलता था और जीरो फैसिलिटी, तो क्या जीरो फैसिलिटी है, जो मतलब जो मिलनी चाहिए वो नहीं थी। बेसिक जो फैसिलिटी है वो भी बहुत रेयर फैसिलिटी है। अब मेरा कमरा इतना छोटा था कि मैं 5 दोस्तों को भी साथ में नहीं ले जा सकता था।
9: मैं हंसराज कॉलेज से पढ़ता हूँ और नॉर्थ कैंपस में रहता हूँ, लेकिन ये जो मंजर है ये सिर्फ यहाँ की स्थिति नहीं है, लगभग हर जगह की यही स्थिति है। अगर आप दिल्ली के किसी भी ऐसे इलाके में जाके देखेंगे जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे रहते हैं, कॉलेज के बच्चे रहते हैं, तो आप देखेंगे छोटी गलियां, छोटे कमरे, वो दूर दूर से बच्चे। मैं 915 नंबर लेके हंसराज कॉलेज में आ जाऊं, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि वो हौसले और जो उम्मीदें हम यहाँ लेके आए थे वो उस मलबे के नीचे दबी हैं, वो बच्चे जो अभी भी उस मलबे के नीचे जिंदगी और मौत से झूल रहे हैं, बस किस चीज के लिए? कुछ चंद पैसों के कारण। उनकी जान की कीमत आज उन पैसों से नीचे हो गई है। वो बच्चे जो उन हौसलों के साथ आए थे यहाँ कुछ बड़ा करने, मेरे रूममेट की मम्मी का रात को फोन आता है, वो रोने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि तू कितना दूर है? तो शायद हम दूर तो नहीं है, हम बहुत पास हैं, शायद अगला हम भी हो सकते हैं।
6: हर गली में अभी आपको बच्चे मिल जाएंगे जो अपने बारे में बताएंगे, अपनी स्टोरीज बताएंगे और ये भी बताएंगे साथ साथ कि कैसे उनके माता पिता उनको बोल रहे हैं कि कुछ दिन के लिए ही सही छोड़ दो और उसके बाद फिर से आ जाना। लेकिन वो क्या, जो कुछ दिन के लिए अगर वो जाएंगे तो क्या सब चीज बदल जाएगा? क्या ये जो बिल्डिंगें बनी हैं, जो फ्लोर्स ऐड हुए हैं, उस पर जो वायलेशंस हुआ है, जो अनसेफ्टी है पूरी बिल्डिंग की, वो खत्म हो जाएगी? क्योंकि अगर आप यहाँ पे बच्चों से बात करेंगे और छात्रों से बात करेंगे तो वो एक सेंस जरूर मिलेगा। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं?
10: मैं लॉ फैकल्टी से रहा हूँ स्टूडेंट। हाँ जी।
6: तो यहाँ पर आने का मतलब?
10: हमारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3.5 लाख छात्र हैं, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटी सिर्फ 9,000 लोगों को है। आप समझिए कि 100 में से सिर्फ 3 बच्चों को यहाँ पे हॉस्टल मिल सकता है, बाकी 97 लोग ऐसे ही किसी प्राइवेट पीजी में रहने को मजबूर हैं, और जहाँ पे ना बेसिक फैसिलिटी है ना कुछ है। आप आंख उठा के देखेंगे तो सारे ऐसे ही जर्जर हालात में आपको बिल्डिंग दिखेंगे। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, नॉर्थ कैंपस में जाएंगे इससे भी जर्जर हालात मिलेंगे, जहाँ भी है। ये साउथ कैंपस में यहाँ पे इस प्रॉक्सिमिटी में 6 कॉलेजेस हैं, इनके पास एक भी अपना हॉस्टल नहीं है। तो इसके वजह से ये कुछ 8-10 ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कि मोनो
6: बना रहे हैं अपने इस तरह से, क्योंकि जो ओनर है उस बिल्डिंग का, जो बिल्डिंग गिरी है, जो हॉस्टल डेज कहा जाता था, उनकी और सारी बिल्डिंग्स हैं ये इस एरिया में, और सारी इमारतें हैं जहां पर वो पीजी अकोमोडेशन चला रहे हैं। तो क्या छात्र जब दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का एग्जाम, जब इलेक्शन होता है, तो ये सब इश्यू क्यों नहीं रेज हो?
9: मुझे लगता है कि जब इलेक्शन होता है तो चीजें एक बार के लिए गर्म हो जाती हैं, लोग आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और फिर सत्ता जब उनके पास आ जाती है तो सत्ता के बाद हर चीज भुला दी जाती है। वो बच्चा जो बहुत दूर चल के उन्हीं को वोट, उन्हीं के वोट से जो सत्ता में आए थे, उन्हीं सत्ता वही बच्चों को भुला देती है।

सुरक्षा सभा के समापन के लिए आज हमारे बीच आए हैं। बहुत सारे विचार आपने सुने हैं और बहुत सारे विशेषज्ञों को यहां पर देश के रक्षा मंत्री का जिक्र करते हुए भी सुने हैं उनकी नीतियों के बारे में, लेकिन वो अपने विचार अब स्वयं यहां पर व्यक्त करेंगे क्योंकि आपके ही कुशल मार्गदर्शन में सर भारत की सुरक्षा नीति ने सुरक्षा और स्वाभिमान के फलसफे को अपनाते हुए आगे का रास्ता अपना तय किया है। चाहे सीमाओं पर मुंह तोड़ जवाब देने की नीति हो या फिर पड़ोसी को नसीहत देने की बात हो, अपने शब्दों से उसकी कड़ाई से कभी परहेज नहीं करते हैं। भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, ऐतिहासिक संकल्प है हमारा और सरहदों पर हमारा स्वाभिमान स्पष्ट नजर आ रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का।

0: सुश्री कलीपुरी चेयरपर्सन एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ इंडिया टुडे ग्रुप, श्री सुप्रिय प्रधान न्यूज डायरेक्टर आज तक एंड इंडिया टुडे टेलीविजन, यहाँ पर बैठे अन्य देवियों व सज्जनों और हमारे जो यंग जनरेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शायद बैठे हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से यह प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज तक के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें कहीं दो मत नहीं है, आज तक का यहाँ तक प्रश्न है, एक बहुत ही क्रेडिबल मीडिया ग्रुप के रूप में इसने अपनी साख बनाई है मीडिया जगत में, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज तक की इस चैनल की मीडिया में एक अपनी विशेष पहचान है। वर्षों से आज तक ने देश दुनिया की घटनाओं से लोगों को बराबर अवगत कराने का काम किया है, और इतना ही नहीं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श बढ़ाने का भी सराहनीय प्रयास इस ग्रुप ने किया है। आज की सुरक्षा सभा का आयोजन भी मैं मानता हूं कि इसी दिशा में आप सबका प्रयास है। मुझे बताया गया है कि आज देश की सुरक्षा को लेकर यहां पूरे दिन चिंतन और मंथन हुआ है। मैं टीवी टुडे की पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आज तक आने वाले वर्षों में भी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ऐसे ही सार्थक चर्चाओं का आयोजन बराबर करता रहेगा। साथियों, भारत की रक्षा नीति के संदर्भ में लंबे समय तक कुछ रक्षा विशेषज्ञ एक टर्म का इस्तेमाल करते थे, संभवतः आप में से लोगों ने उस टर्म को सुना होगा, पानीपत सिंड्रोम। दरअसल यह भारत की रक्षा नीति पर मैं मानता हूं कि यह कटाक्ष था। इसका आशय यह था कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर एक्टिव नहीं बल्कि बराबर रिएक्टिव रहा है, यानी भारत तब तक कोई एक्शन नहीं लेता था जब तक कि खतरा बिल्कुल सिर पर न आ जाए। साथियों, लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि यह सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री की लीडरशिप में अब भारत की डिफेंस पॉलिसी, रक्षा नीति रिएक्टिव नहीं रही है बल्कि एक्टिव से भी एक कदम आगे प्रोएक्टिव हो गई है। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। भारत 2016 से पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, MTCR का नाम सुना होगा, इसका मेंबर नहीं था 2016 के पहले, जिसके कारण हम ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज एक सीमा से आगे चाहते हुए भी हम नहीं बढ़ा पाते थे। उसकी एक लिमिट थी हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की सीमा की, लेकिन हमारी गवर्नमेंट के सक्रिय डिप्लोमेसी और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हमारा MTCR के हम सदस्य बने, यह अवसर हमको प्राप्त हुआ, और उसके बाद ब्रह्मोस की रेंज भी बढ़ाने का काम करने में हमने कामयाबी हासिल की है। और आपको पता ही होगा कि पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल की क्या भूमिका रही है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के किसी को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और अभी हाल में ही एक वीडियो में भी मैं देख रहा था कि जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर रहे थे कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में कितना कहर ढाया है, शायद वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। साथियों, सीमाओं की सुरक्षा बेहतर करने की बात हो या सेनाओं का मॉडर्नाइजेशन करने की बात हो या रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी उत्पादन बढ़ाना हो या आर्डनेंस फैक्ट्रीज का कायाकल्प करना हो यानी उनका कार्बोटाइजेशन करना हो, हमने सभी मोर्चों पर काम किया है, और आज इसी का परिणाम है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बना है, और मैं कह सकता हूं आत्मनिर्भर ही नहीं बना है बल्कि आत्मविश्वासी भी बना है। आप सोचिए, यूपीए सरकार के कालकाल में, यूपीए सरकार के कार्यकाल में इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन आज यह लगभग 1.80 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। और आज हम 100 से अधिक कंट्रीज को लगभग अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय एग्जैक्ट फिगर 38,500 करोड़ की है, 38,500 करोड़ की है रुपए का डिफेंस कर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी 2014 से पहले जितना हमारा डिफेंस प्रोडक्शन था उतना तो लगभग आज हम सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में लाइसेंसिंग रूल्स जो थे उसको भी हमने सिंप्लीफाई किया है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से जो हमारे इंडिजिनस सिस्टम है, स्वदेशी सिस्टम्स हैं, उनको प्रायोरिटी दी है। आज हमारी सेनाओं के पास स्वदेशी एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम आकाश तीर है, नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस मिसाइल आकाश है, हमारे पास पिनाका रॉकेट लॉन्चर है, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र है, प्रचंड और ध्रुव जैसे स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं, और उसके साथ ही तेजस लड़ाकू विमान भी है, अर्जुन टैंक भी है, आधुनिक ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम भी है, और भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। और यानी सब मिला जुला कर हम यह कह सकते हैं कि भारत की रक्षा नीति अब तथाकथित पानीपत सिंड्रोम से नहीं बल्कि दूरदर्शिता और परिपक्वता से ही परिभाषित होती है। और साथियों, यह बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि 2014 से पहले डिफेंस डील्स में बराबर आप भ्रष्टाचार की बातें समाचार पत्रों में पढ़ते रहे होंगे। कुछ लोग चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा तक को भी वह दांव पर लगा देते थे। 2014 से पहले देश ने बोफोर्स घोटाला देखा है। 2014 के पहले इस देश ने HDW पनडुब्बी घोटाला भी देखा है, टाटा ट्रक घोटाला भी देखा है, अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला भी देखा है। गौर करने वाली बात है कि पिछले 12 वर्षों में भारत का रक्षा बजट 2.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, लेकिन आज तक एक पाई भी इधर से उधर नहीं हुआ है और पूरी ट्रांसपेरेंसी, पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ एक एक रुपया भारत की सुरक्षा को मजबूत करने में लग रहा है। साथियों, नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा करना किसी भी देश की सुरक्षा नीति और विदेश नीति का मैं मानता हूं कि यह सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक बड़े विद्वान हांस, आप इनका नाम सुना होगा, हांस मॉर्गेथ्यू ने माना है कि नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है देश की सीमा की सुरक्षा, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा, और देश की कल्चरल आइडेंटिटी, देश की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना, यह है नेशनल इंटरेस्ट। हमारी सरकार ने सभी मोर्चों पर भी काम किया है और आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट 400% तक बढ़ गई है। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, हमारी सरकार ने सभी मोर्चों पर काम किया है और आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट 400% तक बढ़ गई है। आर्टिकल 370 हटाकर भारत की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को और अधिक मजबूत किया गया है। साथियों, जहां तक भारत की कल्चरल आइडेंटिटी, सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न है, तो हमने उसे सुरक्षित ही नहीं किया है बल्कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं हम लोगों ने भारत की ताकत बनाया है अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को। आज पूरी दुनिया योगा दिवस मना रही है, नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से वैश्विक ज्ञान के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि भारत एक सिविलाइजेशनल लीडर बनकर उभर रहा है। आप सोचिए, आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायो फ्यूल्स अलायंस जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम में आप विश्व को वह नेतृत्व प्रदान कर रहा है। आज दुनिया में ऐसा कोई मंच नहीं है जहां की भारत की बात न सुनी जाती हो। साथियों, 2019 से लगातार भारत को G7 की बैठकों में आमंत्रित किया जा रहा है। 2023 में हमने G20 की अध्यक्षता भी की थी, उस दौरान दुनिया में बहुत मतभेद थे। लेकिन फिर भी हमने सर्वसम्मत से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को पास किया था। अपने में वह एक मेजर अचीवमेंट था उस समय। वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट और महासागर जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से भारत विकासशील देशों की आवाज को आज एक नई ताकत दे रहा है। जब हमारे पड़ोसी देशों पर कोई संकट आता है तो भारत फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में सबसे पहले सहायता के लिए पहुंच जाता है। यानी यह कहा जा सकता है कि भारत के पास डिप्लोमेटिक एक्सेस भी है और डिप्लोमेटिक लेवरेज भी है। साथियों, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा में आर्थिक सुरक्षा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक मजबूती केवल विकास का आधार ही नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला भी है। और जिस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है वही आधुनिक सैन्य क्षमताओं में इन्वेस्ट कर पाता है और संकट के समय अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी बनाए रख सकता है। आज पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, आर्थिक अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में भी भारत 7.8% के ग्रोथ रेट के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। हमने सप्लाई चेन्स को भी मजबूत किया है और क्रिटिकल सेक्टर्स में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया है। आज भारत अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम खड़ा कर रहा है। इसी तरह प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए बहुत से क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया गया है। साथियों, आत्मनिर्भरता केवल मिसाइल या बड़े जहाज बनाने तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। यह आत्मनिर्भरता एक स्क्रू से लेकर सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स तक है और एक कंपोनेंट से लेकर कंप्लीट वेपन सिस्टम तक है। और यही वह अप्रोच है जो भारत को स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की ओर ले जा रहा है। साथियों, आज दुनिया के कई हिस्सों में आप जानते हैं युद्ध चल रहे हैं। पूरी दुनिया में बहुत से देश साइड्स चुनने को मजबूर हैं। किसी न किसी ब्लॉक्स का हिस्सा बनना उनकी मजबूरी है, लेकिन भारत इंडिपेंडेंट एजेंसी और स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ आगे बढ़ रहा है यानी भारत अपनी प्रायोरिटीज खुद तय कर रहा है। आज भारत बोलता है तो सारी दुनिया सुनती है। साथियों, किसी भी देश की सुरक्षा मुख्यतः तीन चीजों पर निर्भर होती है: राष्ट्रीय नेतृत्व की सोच, रिसोर्सेस की उपलब्धता और सेनाओं का सामर्थ्य। भारत की सेनाओं का सामर्थ्य और हमारे जवानों का साहस हमेशा दुनिया के सामने अपने में एक मिसाल रहा है। 2014 से पहले कमी अगर कहीं थी तो एक ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप की थी जो सेनाओं को खुला हाथ दे और संसाधनों की कमी किसी भी सूरत में न होने दे। हमारे सैनिक हमेशा भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहे हैं और आज भी तैयार हैं। उनका शौर्य और युद्ध कौशल अद्वितीय है, अनपैरलल है। कांग्रेस की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के जवानों के हाथ मार दिए थे, अच्छी तरह जानते हैं। याद कीजिए, जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ तो पूरे देश में कितना गुस्सा था। देश के सभी लोग न्याय चाहते थे, भारत की सेनाएं और जवान इसके लिए तैयार थे, लेकिन उस समय की सरकार सिर्फ डोजियर दिखाती रही। लेकिन हमने अपने जवानों को खुली छूट दी है। हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेज भी दिए हैं और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमारे सामने कई चैलेंजेस थे, जैसे कि सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले बहुत लंबे से समय से ये बिल्कुल लटके पड़े थे, पेंडिंग में थे। हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से ज़्यादा इंपोर्ट पर जोर दिया जाता था, और सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। और आज यह सब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं पूरी तरह से बदल चुका है। आज हम मिसाइल भी बना रहे हैं, आज हम ड्रोन्स भी बना रहे हैं, आज हम बड़े बड़े शिप्स भी बना रहे हैं और छोटे छोटे स्क्रूज भी बना रहे हैं। और हम सिर्फ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और साथियों, आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 56 टाइम्स बढ़ा है, 56 टाइम्स हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सिमेटली 50,000 करोड़ क्रॉस कर गया है, और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे पूरे विश्वास के साथ, मैं ये डिफेंस मिनिस्टर कह सकता हूं। और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं यह होकर रहेगा। साथियों, भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम सभी स्वीकार करते हैं, दुनिया के दूसरे लोगों के लोग भी स्वीकार करते हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम भारत में पूरी तरह से बदल चुका है। अभी पिछले सप्ताह ही मैंने सभी 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एक एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार की इंडस्ट्रीज हैं, एक एक PSU डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के पास, ऐसी हमारी 16 डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनका रिव्यू किया था मैंने। आपको जानकर यह खुशी होगी, आज हमारी एक भी DPSU डेफिसिट में नहीं है, सभी प्रॉफिट में है। और सभी DPSU नई ऊर्जा के साथ काम करते हुए रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपना खर्च लगातार बढ़ा रही है और एक्सपोर्ट के एक नए अवसर की वह तलाश कर रही है। मुझे याद है कि आज के 6 साल 7 साल पहले जब मैंने मीटिंग ली थी इनकी, किसी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च जो है नॉमिनल 1%, 1.5%, 2% हुआ करता था, आज वो काफ़ी बढ़ चुका है, कोई 8% कर रहा है, कोई 10% कर रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। आज केवल बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि 16,000 से अधिक MSMEs भी डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। हमारे DPSU तो कर ही रहे हैं, 16,000 से अधिक MSMEs भी डिफेंस प्रोडक्शन इस समय कर रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हमने दोनों राज्यों में घोषित कर रखे हैं। दोनों में अब तक करीब 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आ चुके हैं और लगभग 10,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट अब तक हो चुका है। और साथियों, आईडेक्स और आईडेक्स प्राइम जैसी योजनाओं के माध्यम से हम डिफेंस इनोवेशंस को भी तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। और 2018 में यहां रक्षा क्षेत्र में कुल दर्जन भर स्टार्टअप हुआ करते थे, वहीं आज उनकी संख्या बढ़कर आपको जानकर आश्चर्य होगा 2,000 से अधिक हो गई। यानी आज भारत का नौजवान भारत की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं युवाओं से हमेशा से कहता हूं कि आप केवल नौकरी खोजने वाले मत बनो, आप नौकरी देने वाले बनिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसमें आपको जो भी सहायता या संसाधन चाहिए वह सब हम आपको देने को तैयार हैं। मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली। और मैं आज तक के माध्यम से सभी नौजवानों से कहता हूं कि रक्षा मंत्रालय के द्वार आप सबके लिए खुले हुए हैं। यदि आपके पास अच्छा आइडिया है तो आप कभी भी मुझसे आकर व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। साथियों, आज डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सारी इंडस्ट्रीज, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिकों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। इस साल मई में डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट कंबस्टर का भी सफल परीक्षण किया है और यह दुनिया की सबसे जटिल डिफेंस टेक्नोलॉजीज में से एक है जिसका कि अभी परीक्षण किया है और इससे हम हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की दिशा में और आगे बढ़े हैं। अभी पिछले ही महीने ही हमने यह निर्णय लिया है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी इंडियन इंडस्ट्रीज को भी ट्रांसफर की जाएगी। पहले इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डीआरडीओ प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर नहीं करता था, लेकिन हमने फैसला किया है हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी हम अपनी टेक्नोलॉजी हम ट्रांसफर करेंगे। यानी अब हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां मिसाइल का उत्पादन कर सकेंगी इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का परिणाम यह है। और भारतीय सेनाओं को मिसाइल्स की और भी समय से डिलीवरी सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों, भारत के दुश्मन भारत की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए साम दाम दंड और भेद चार तरीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसे कश्मीर के नौजवानों को बराबर उनको तरह तरह की बातें कहकर उनको बहकाने की कोशिश की जाती थी, एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए खूब फंडिंग भी की जाती थी, हिंसा और आतंक फैलाया जाता था, समाज में फूट और दरार पैदा करने की बराबर कोशिश की जाती थी, जैसे पहलगाम में धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया था। ऐसा लगता था कि हम खुद आचार्य चाणक्य और भारत का पारंपरिक ज्ञान भूल गए हैं, लेकिन 2014 के बाद से हमने चारों मोर्चों पर जवाब देने का काम किया है। साथियों, हमने राह भटक चुके लेकिन सुधर सकने वाले नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। दूसरा, उनको रिहैबिलिटेट और डी रेडिकलाइज करके रोजगार और कारोबार से भी जोड़ा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से तो जम्मू काश्मीर में अभूतपूर्व विकास हुआ है और वहां का युवा भी आज बेहद खुश है क्योंकि उसे नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। तीसरा, हमने दंड का भी प्रयोग किया है। सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को खाक में मिलाने का काम किया है मेरे मित्रों। और इसी तरह हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया और यह संदेश दिया है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। चौथा, हमने भारत में फूट डालने की कोशिश भी नाकाम की है। जैसे भारत की एकता और सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारा और क्रिश्चियन कॉन्वेंट को निशाना बनाया। यह एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन भारत के लोगों ने इस मंतव्य को कामयाब नहीं होने दिया। और हम सभी सबसे पहले और सबसे अंत में भी भारतीय ही हैं, यानी इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट, यह संदेश देने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। साथियों, आज युद्ध का स्वरूप भी आप सभी जानते हैं बदल रहा है। लैंड, एयर, सी के साथ साथ स्पेस और साइबर भी युद्ध के नए मैदान बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, ऑटोनोमस सिस्टम्स और प्रिसीजन वेपन सिस्टम्स का प्रयोग भी तेजी से बढ़ रहा है। यानी भविष्य में सुरक्षा क्षेत्र और युद्ध का मैदान और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा ही होगा, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी को फ्यूचर रेडी बनाने पर हमारी गवर्नमेंट बराबर बल दे रही है और हम इस बात पर भी फोकस कर रहे हैं कि आने वाले सभी बदलावों के लिए हमारा सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से तैयार हो। और हम इस दिशा में काम भी कर रहे हैं कि भारत टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट न करे बल्कि भारत खुद टेक्नोलॉजी डेवलप करे। और साथियों, यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि भारत शांति में विश्वास करता है, भारत युद्ध नहीं चाहता है, भारत किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता है, लेकिन शांति और कमजोरी में अंतर होता है, इसे भी लोगों को समझना चाहिए। मैं मानता हूं कि वह शांति निंदनीय है जो युद्ध से घबराए, वह शांति निंदनीय है जो युद्ध से घबराए, और वह युद्ध वंदनीय है जो शांति के लिए लड़ा जाए। हमने स्पष्ट कर दिया है कि यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा तो फिर डायलॉग नहीं होगा, फिर भारत की सेनाएं उसका जवाब देंगी। और मैं समझता हूं कि आज तक की सुरक्षा सभा के माध्यम से यह संदेश फिर से दुनिया को जाएगा। साथियों, इस सभा से आज एक और संदेश जाना चाहिए। जब जब कोई देश प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ा है और ज्यादा सभ्य हुआ है, तब तब उसका चरित्र भी उदार हुआ है। वहां कला और संस्कृति का भी विकास हुआ है, लेकिन अक्सर इस इवोल्यूशन में उस देश के लोगों ने फाइटिंग स्पिरिट, उस देश के लोगों में फाइटिंग स्पिरिट या कमजोर होने लगी है। इसका फायदा बाहरी आक्रंता और लुटेरे उठाते हैं, और भारत के इतिहास में भी हमने यह कई बार देखा है। इसलिए आज जब हम विकसित राष्ट्र बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें यह याद रखना होगा कि हमारी फाइटिंग स्पिरिट किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होनी चाहिए। हमें देश की अखंडता और देश की संप्रभुता की रक्षा और सम्मान के लिए सदैव तत्पर रहना है, क्योंकि सुरक्षा के बिना समृद्धि हमेशा खतरे में ही रहती है। यानी सिक्योरिटी के बिना प्रॉस्पेरिटी की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और साथियों, भारत का लक्ष्य केवल डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना ही नहीं है। हम एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा को मजबूत करे, देश की अर्थव्यवस्था को गति दे और ग्लोबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में भारत की भूमिका को और मजबूत बनाए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भारत अपनी आजादी के 100 ईयर्स पूरा करेगा, तब वह केवल एक विकसित देश ही नहीं होगा, बल्कि वह टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, डिफेंस और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में एक आत्मविश्वास के साथ दुनिया को नेतृत्व भी प्रदान करेगा। ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं एक बार फिर से आज तक की पूरी टीम को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपना निवेदन समाप्त करता हूं। लेकिन यह पोडियम हमारी लंबाई के हिसाब से थोड़ा सा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत नीचे रखकर पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच।
1: रक्षा सभा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह ने भारत की शक्ति, सेना और गौर सेनाएं आतंक के खिलाफ करारा जवाब दे रही हैं और देंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बना है, ये भी बड़ी बात कही है। और ये कहा है कि हमने पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज हमारा देश भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, ये पाकिस्तान की तरफ इशारा था। ऑपरेशन सिंदूर की बात उन्होंने कही, आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, ये भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। और उन्होंने अपने संबोधन में भारत की सेना, उसके शौर्य की बातें करते हुए ये कहा कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर हुए हैं, न सिर्फ वो रक्षा निर्माण के क्षेत्र में, अन्यथा सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर जिस तरह से हम बने हैं, उसका उल्लेख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तक की सुरक्षा सभा में किया है। आज हम दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये संबोधन आपने सुरक्षा सभा आज तक की में सुना। अब हम दूसरी खबरों का रुख करते हैं। सत्य निकेतन, दिल्ली का वो इलाका जो जहां पर इमारत गिरी, उसके मालिक हरिराम बंसल को भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही साथ हरिराम बंसल के बेटे और पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी के 5 बड़े अफसरों को भी सस्पेंड कर दिया। इनमें दिल्ली नगर निगम के साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, साउथ जोन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, साउथ जोन के ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग ललित कुमार और साउथ जोन के असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग सुनील चौहान, साउथ जोन के जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत ने अदालत से मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे, स्वतंत्र जांच, इलाके के सभी पीजी हॉस्टल की इमारतों का संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने की अपील भी की गई।
2: हमारे साथ एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु सिंह हैं।
3: कल बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था सत्यनिकेतन एरिया के अंदर, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इनिशियली हमें लगा था कि हरिराम गुप्ता ओनर हैं इसके, उनको वो भागे हुए थे इस इंसिडेंट के बाद। उनको इमीडिएटली हमने 10 टीम बनाई अलग अलग लोकेशंस पे, उनके रेजिडेंस पे भी भेजा गया, बट फाइनली भिवाड़ी से उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनके नाम था और उनका बेटा उसके साथ ऑपरेट करता था इस पूरे पीजी को, बट जो इसकी ओनर है उनकी वाइफ थी। तो इस हिसाब से 3 लोग इस फैमिली के अरेस्ट हुए जो इसको ओनर थे और इसको पीजी को ऑपरेट करते थे।
2: बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है, क्या पूछताछ में उसने बताया, क्या पूरा
3: जो एक्यूज है उनकी इंटरोगेशन करी गई तो पता चला कि बेसमेंट में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबर वर्कर्स भी वहां पे काम कर रहे थे। उनकी भी स्टेटमेंट ली गई, उन्होंने बताया उस कंस्ट्रक्शन को रिनोवेशन को काम को करते समय वो बिल्डिंग मिसहैप की वजह से कुछ कोलैप्स कर
2: गया। उनसे बात करने के लिए ये थे अभिमन्यु सिंह, जिनका कहना कि इस हादसे में 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक।
1: एक और बड़ी खबर इस समय दिल्ली से ही आ रही है, बिल्डिंग हादसे की ये खबर है और बिल्डिंग मालिक की पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि बेटा इस हॉस्टल को चलाता था और पत्नी इस हॉस्टल के मालिक हैं। तो हरिराम बंसल, उनकी पत्नी और उनके बेटे तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि 7 लोगों की मौत की खबर अभी तक आ गई है। कुछ लोग अस्पताल में भर्ती हैं, उनमें भी कुछ की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। और यहाँ बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन चल रहा था जो एक बहुत बड़ा कारण बना है इस बिल्डिंग के गिरने का और इस हादसे का।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है हाँ ला भाई मेरा बैट
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू
5: चार्ज हुआ यार
6: बैट किसका है
7: टाटा AIG है तो भरोसा है
8: आगे आगे
9: अरे उधर
8: उधर करेक्ट करेक्ट
10: मिल गया आपके पास दो ऑप्शंस हैं या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए E3 प्रोडक्ट्स ये रिश्ता लंबा चलेगा

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: एक को एक।
5: ए श्राम,

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: और वही कहाँ गए थे घूमने?
7: जीके मैक्स।
8: खाना कहाँ से मंगवाया?
7: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
9: जीके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट प्राइमर
10: जीके मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
10: जीके मैक्स।
7: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
11: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
7: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग। जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
1: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
1: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
5: ओले बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स।
12: खाना कहाँ से मंगवाया?
11: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
13: जेके वॉल मैक्स।
11: बेस्ट प्राइमर
14: जेके मैक्स।
11: बेस्ट पेंट
14: जेके मैक्स।
11: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
15: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
11: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: गांधी जी के आंदोलन करने का तरीका क्या आज के समय भी उतना प्रासंगिक है?
3: जो तुम गाली देते हो ना गांधी जी, 70 साल की उम्र में दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तुम 17 में नहीं चल पाए, पढ़ लो।
4: जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था जो गांधी जी ने वापस ले लिया था, वो भी तो किसी और की वजह से लिया था। चौरी चौरा में जो हुआ इंसिडेंट, उनसे उनको क्या मतलब था? अगर वो उसको जाए रखते, क्या पता उस समय इंडिपेंडेंस थोड़ा जल्दी हो जाता।
3: ताली बजाओ इनके लिए, ये ताली डिजर्व करते हैं।
5: हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा। इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। यहाँ पर बिना किसी स्टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
6: ये हब है जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। जैसे ही उस बाढ़ को, उस तबाही को, त्रासदी को आते लोगों ने देखा, इसी रास्ते से आगे होकर वो ऊपर की तरफ भागे।
7: कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल, आज तक।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
2: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. अब से कुछ ही क्षणों में खबरदार लेकर हम होते हैं आपके साथ उपस्थित. आप देखते रहिए आज.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही हैं करारा जवाब। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में दो और गिरफ्तार, बिल्डिंग मालिक के बाद पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत पांच अफसर भी सस्पेंड। बिल्डिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डांटा, कहा आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, हादसे को कहा दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार एमसीडी दिल्ली यूनिवर्सिटी और एजेंसीज को नोटिस। यूपी के सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर एएसआई की टीम अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़, 27 लाख से अधिक प्रभावित, पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर में पानी ही पानी, तेजस्वी की पीएम मोदी को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार, और ये वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। लेकिन सबसे पहले भारत के छात्रों की बात हम करेंगे। उन भारत के छात्रों के साथ दिल्ली में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया, हैरान कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में जो बच्चे 5 मंजिला इमारत के मलबे में दबकर मरे, वो सब आम परिवार के बच्चे थे। ये छात्र दिल्ली अपने अपने सपने पूरे करने के लिए आए थे, लेकिन सरकारी भ्रष्टाचार और लापरवाही के शिकार हो गए। अभी तक लगता था कि छात्र पेपर लीक, परिणाम में देरी, परीक्षा के तनाव, बढ़ी फीस, अभिभावकों के दबाव से ही परेशान रहते हैं। लेकिन दिल्ली की घटना ने यह खबरदार किया कि जानलेवा पीजी यानी कि पेइंग गेस्ट और हॉस्टल के अत्याचार से भी हम सबके प्यारे बच्चे पीड़ित हैं, जिनकी कोई नहीं सुनता और ना कोई सुन रहा है। दिल्ली के सत्य निकेतन में कमजोर इमारत में ज्यादा से ज्यादा किराया बच्चों से, हमारे छात्रों से वसूला जा रहा है, और उसका परिणाम ये हुआ कि उन बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी।
1: दिल्ली में पढ़ते आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे। वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा और हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर से सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो यह है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा,
5: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट, आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना। पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मंजिल जी कैसे बन जाएगा, आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर, प्लीज आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
4: हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी।
6: जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
4: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स, तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते, लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहाँ पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग है, एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही है वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और 19, 20, 21 मीटर है ये बीम, यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बत्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का। यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
8: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
8: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर देखिए, बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके। तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
7: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे, ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
8: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं और काफी महंगा है मैम। और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका,
7: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
8: महसूस कर सकती है,
7: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के। अब एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए, एक पंखा लगा हुआ है। ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
1: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया वो दोबारा नौकरी पर आ ही जाएंगे, लेकिन आपके हमारे बच्चे जो चले गए क्या वो कभी आ पाएंगे? वो बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे और उनका तो सब कुछ चला गया, लेकिन जो अधिकारी जो अफसर जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें वेतन मिला करता था, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड कर देना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी सजा जेल जाने की नहीं मिलती, तब तक ऐसे हादसों को आप कैसे रोक लेंगी? रेखा गुप्ता जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
7: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
1: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
9: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तब जाके हम लोग खुद मिल के, NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
7: कितनी देर में आए ये लोग?
9: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है, तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
1: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा पीजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
10: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा पीजीज लेता है, पर पीजी की हम छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है, मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
11: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
1: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
12: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, अब वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
13: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगे, और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी, जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे
10: होती है 11 महीने
7: 6 महीने या 11 महीने का दे
10: 11 महीना मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
7: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
10: हम बच्चों को यही बोलते रहते कि आप चेंज कर लेना सेकंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे। इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
1: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
0: दिल्ली के सत्य निकेतन के इस हादसे ने हमारे देश भर के हजारों पेरेंट्स को, परिजनों को खौफ और डर से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में और विशेषकर दिल्ली में पढ़ रहे हैं। दिल्ली में जहां की स्थिति सबको पता है, उन अभिभावकों के रातों की नींद उड़ी हुई है। सोचिए, जो माता पिता अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेज रहे हैं, उन माता पिताओं पर यह हादसा देखकर इस समय क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो अपने बच्चों को वापस घर बुला लिया है और कुछ हैं जो इस चिंता में हैं कि क्या किया जाए।
1: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
6: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई, उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
4: मेरे घर वाले हाँ पैनिक के ही वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है, तो हाँ फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
1: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
4: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी, टेम्परेरी जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है, तो दैट सेइंग कि सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
1: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है, लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है। इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
4: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
6: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है, और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है,
4: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
14: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है इससे पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
1: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है तो सत्य निकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
6: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग आप लोग शिफ्ट कर गए?
12: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है। मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
15: मैं तो थर्ड ईयर में हूँ तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज़ें हमने पहले भी उठाई है, हॉस्टल की मांगे डीयू की बहुत टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजी, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
16: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो पीजी है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे की प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देख, और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे, उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
17: पीजी की सिचुएशंस तो सब जगह जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा उनसे ज्यादा ही खराब है।
1: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, तीन को गिरफ्तार किया गया था, हरिराम बंसल, बेटा और पत्नी तीनों को इस समय आरकेपुरम थाने लेकर पहुंची है दिल्ली पुलिस। अब इन लोगों से पूछताछ होगी और इसके बाद कल इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड मांगेगी, उसके बाद और पूछताछ होगी और किस तरह की कमियां पाई गई हैं, किस तरह की लापरवाही इन्होंने की, कहां इन्होंने रिश्वत दी, कौन वो अधिकारी थे जिन लोगों ने इस पीजी को चलाने में इनकी मदद की, सब बातें दिल्ली पुलिस पता करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल हरिराम बंसल, उनके बेटे और उनकी पत्नी, बेटा संचालक था यानी कि हॉस्टल को चलाया करता था, पत्नी हॉस्टल की मालकिन थी पेपर्स पर, तो पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके जिसके नाम है वो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो पत्नी भी गिरफ्तार हो गई, हालांकि हरिराम बंसल जो था वो फरार था, उसे रेवाड़ी से गिरफ्तार किया गया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता, अरविंद क्या जानकारी इन माँ बेटों की गिरफ्तारी के बाद?
18: देखिए, पूछताछ में इन्होंने खुलासा कर दिया है जो बात पहले भी आ रही थी कि जो बेसमेंट है उसमें कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी वजह से जो बिल्डिंग है वो भर भरा कर गिर गई। इस मामले में हरिराम, उनकी पत्नी उर्मिला और उनके बेटे महेश को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब से कुछ देर बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा, पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जाएगी।
0: अदालत में अभी पेश किया जा रहा है अरविंद, इसी समय आरकेपुरम थाने के बाद?
18: बिल्कुल, देखिए
0: जी, ये अच्छी जानकारी। जी जी ठीक जी, अरविंद बात पूरी कीजिए प्लीज।
18: जी देखिए, आरकेपुरम पुलिस स्टेशन में फिलहाल उनको रखा गया है और वहीं से ड्यूटी एमएम के पास उनको पेश किया जाएगा, उसके बाद जो पुलिस कस्टडी रिमांड है वो मांगेगी। लेकिन इसमें सभी के जो कि जितने तीन किरदार हैं गिरफ्तारी हुई है उनकी सबकी अलग अलग भूमिका है और इन तमाम भूमिकाओं की जांच दिल्ली पुलिस की टीम करेगी।
0: बहुत धन्यवाद अरविंद। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, हरिराम बंसल, उनका बेटा और पत्नी गिरफ्तार। अब सवाल यह है कि इन लोगों के अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ अफसरों को सस्पेंड किया, तो क्या कुछ अफसरों को सस्पेंड कर इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी तय की जा सकती है? जबकि दिल्ली में जहां सत्य निकेतन में हादसा हुआ, उसी सत्य निकेतन में आसपास रहने वाले छात्रों को डर लग रहा है, पीजी छोड़कर वो छात्र जा नहीं सकते क्योंकि 11 महीने का एग्रीमेंट मकान मालिक ने इन छात्रों के साथ कर रखा है, पैसे ले रखे हैं और मोटी सिक्योरिटी भी ले रखी है। अब ये मकान मालिक इन बच्चों की सिक्योरिटी वापस नहीं करेंगे तो क्या इस बारे में भी बच्चों की मदद की जाएगी?
19: किराए पे मकान देना कोई अपराध नहीं है, ये पहले से एक प्रैक्टिस चल रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने और हमने आदेश दिए हैं।
1: छात्रों का सवाल यही है कि सरकार और एमसीडी हादसे के बाद ही क्यों जागती है। सत्यनिकेतन की सकरी गलियों में छात्रों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ से एमसीडी के मेयर पहले खबरदार क्यों नहीं थे?
20: इन तारों की ही तरह तमाम छात्र छात्राओं की जिंदगी सत्यनिकेतन में उलझी हुई है। हम लोग एक बालकनी में खड़े हुए हैं जो पेइंग गेस्ट है, अकोमोडेशन है, और यहाँ पे आप देखिए जो बगल वाली बिल्डिंग है उसमें एक हाथ का आपको फासला नजर आता है। नीचे आप देखिए कि कितना संकरा ये रास्ता है, आंटी यहाँ से निकल रही हैं, और ये एक के बाद एक बिल्डिंगें जो है आपस में सटी हुई है, पूरी इमारतें हैं, और तारों का जो जाल है इधर देखिए कितना खतरनाक, इसके बगल में ही बालकनी है।
1: दिल्ली में मौत की इमारतों में रहने की ये मजबूरी कैसे नौजवानों की जिंदगी छीन रही है, अब उसे दो अर्पित की कहानी से समझिए। एक अर्पित जो हॉस्टल डेज के मलबे में दबकर दुनिया से चला गया, वहीं दूसरे अर्पित ने हॉस्टल की हकीकत से खबरदार होकर इसमें रहने से इनकार कर दिया और बच गया। अब आप सोचेंगे कि जो अर्पित चला गया क्या वो अपनी लापरवाही की वजह से मारा गया? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दावा है कि हॉस्टल के मालिक ने इमारत की कमजोरी को छिपाकर उसे धोखा दे दिया।
21: मैं फर्स्ट ईयर में आया था जब पीजी देख रहा था अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ, तो उस टाइम उस पीजी का रिनोवेशन नहीं हुआ था, तो वो पीजी हमने देखा, उस पीजी पे 10 फुट की दरार चल रही है। अच्छा। हाँ, उसे देखते मेरे पापा ने बोला कि ये पीजी तो लेना ही नहीं, फिर उससे दूर थी उसके आगे जो फर्स्ट लेन थी उसमें हमने पीजी लिया, और फिर जब अर्पित आया उसके टाइम पे रिनोवेशन के नाम पे उसके ऊपर कलर कर दिया था बस, और जो दरारें थी मुझे नहीं पता पुट्टी से या किस चीज से उसको छुपा दिया था, पर सही नहीं करा था उसको।
1: तो किराया वसूलने के लालच में भ्रष्ट अफसरों की लापरवाही ने आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों को बेमौत मार डाला।
9: तो मैं एक आईडी मिली हुई है बच्चों की, ये एक बच्चे का
20: नीरज बाबा, हाँ,
9: इसका कार्ड भी था, मेट्रो कार्ड भी था, और इसके 3-4 लाइब्रेरी कार्ड थे, लाइब्रेरी कार्ड है,
20: ठीक है,
9: और इसके बाद ये एक लड़के का,
20: ये पवन कुमार है,
9: जी, हाँ। और इसके बाद
20: मोतीलाल कॉलेज,
9: हाँ, ये मोतीलाल कॉलेज की है।
1: रविवार को हॉस्टल गिरने की घटना का असर दूसरे छात्रों पर कितना गहरा हुआ है उसके बारे में आपको रितिका की कहानी से पता चलेगा, जो कुछ बनने के लिए बिहार से दिल्ली आई। वेंकटेश्वर कॉलेज की यह छात्रा सत्यनिकेतन में ही एक पीजी में रहती है, लेकिन रविवार के बाद से बेहद डरी हुई है। रितिका भले ही अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन वो चाहती है कि देश हॉस्टल और पीजी के नाम पर छात्रों से हो रहे अत्याचार से जरूर खबरदार हो।
22: कि कल सारे दिन से हम ये चीजें जो भी हो रही हैं विटनेस कर रहे हैं, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, इतनी लोगों की जान गई है उसमें, कितने लोग दबे हुए हैं उसमें, इतने सारे लोग, उनके फैमिलीज हैं, सब कुछ है, एम्बुलेंसेस आ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, एनडीआरएफ की टीम्स आ रही है, दिल्ली पुलिस आ रही है, इतनी ज्यादा केओस हो रही थी, हमें खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम इतने डरे हुए थे, हमें पता नहीं चल रहा है अर्थक्वेक आ गया है, क्या हो गया है नहीं हुआ है। हमारी क्लास के लोग वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि हम भी वहीं पे थे, थोड़ी देर पहले हम वहीं पे थे, इंटरनेट नहीं है, हमारे फोन्स नहीं चल रहे थे, जैमर्स लगा दिए थे उन्होंने, मुझे नहीं पता। एक सेंस ऑफ एप्रिहेंशन इतना ज्यादा था कि हमें लग रहा था कि हम यहाँ रहेंगे रात को या फिर हमें कहीं जाना पड़ेगा, नहीं रह पाएंगे, खाली करना पड़ेगा।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 लाख रेगुलर छात्र हैं, इनमें से अधिकतर दिल्ली के बाहर से आकर पढ़ते हैं। छात्रों की मुश्किल ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 7 से 9 हजार छात्रों के लिए ही हॉस्टल है। साउथ कैंपस के आसपास के 7 कॉलेजों, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, जीसस एंड मैरी कॉलेज, मैत्री कॉलेज, एआरएसडी कॉलेज, रामलाल आनंद कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज और आर्यभट्ट कॉलेज में ये सिर्फ 2 में ही हॉस्टल की सुविधा है। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में हॉस्टल की लगभग 175 सीटें हैं, जबकि मैत्री कॉलेज में सिर्फ 27 सीटें हैं। इस वजह से कई छात्रों को आसपास प्राइवेट पेइंग गेस्ट में रहने को मजबूर होना पड़ता है। इसी का फायदा सत्यनिकेतन में बेतरतीब और नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए हॉस्टल मालिक उठाते हैं, जो अपनी शर्तों पर मोटा किराया वसूलने के बाद भी इन छात्रों को बहुत बुरे हालात में रहने को मजबूर करते हैं। दुर्भाग्य यह है कि इन लाखों छात्रों की इस समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जाता और इन्हें हॉस्टल मालिकों के शोषण के लिए छोड़ दिया जाता है।
20: ये सत्य निकेतन का सत्य है, एक संकरी गली जिससे हम गुजर रहे हैं, और दाएं साइड देख लीजिए या बाएं साइड दीवार है, ये कोई सुरंग नहीं है, कोई टनल नहीं है। यहाँ जो तार आप देख रहे हैं, ये तार, ये पाइपलाइन, ये इमारत, ये यहाँ की हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी। रास्ता इतना संकरा है, बीच में ड्रेनेज पाइप भी है, बारिश होगी तो क्या यहाँ पे हालात होंगे, आप देखें सारे सरिया खुले हुए हैं, यहाँ पे ऊपर तार, ये पाइप यहाँ से पानी गिरने का ये पाइप जो है खुला हुआ है यहाँ पे, और ये रास्ता जाता है तमाम घरों की ओर।
0: आप अंदाजा लगाइए मौसमी जो दिखा रही थी, ऐसी जगह आपके हमारे बच्चे पढ़ते हैं रहते हैं, कैसे वो पढ़ेंगे, कैसे वो स्वस्थ रहेंगे। ये मामला सिर्फ सत्य निकेतन इलाके का नहीं है, दिल्ली के विभिन्न इलाकों की स्थिति इस सत्य निकेतन से अलग नहीं है। अशोक नगर से लेकर मुखर्जी नगर तक जर्जर इमारतें नियमों सरकारी लापरवाही से खबरदार कर रही हैं। देखिए
1: सत्य निकेतन में हॉस्टल के हालात पर भले ही बात की जा रही हो, लेकिन दिल्ली के बाकी इलाकों के हालात भी बेहतर नहीं है, जहां पर देश भर से आए छात्र रहते हैं।
2: बिल्डिंग इस वक्त आपको दिख रही है जो 5 माले की है, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। पिछले 4 साल में एमसीडी ने कई बार यहाँ पर नोटिस चस्पा किए, लेकिन कोई अधिकारी यहाँ पर इस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नहीं पहुंचा, लेकिन अब स्थिति काफी भयावह हो गई है। आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये जो बिल्डिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो 7 सटी हुई जो बिल्डिंग है, उसके इन 2 बिल्डिंग्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है, और किसी भी वक्त किसी भी दिन ये बिल्डिंग नीचे गिर सकती है। और आप अंदाजा लगाइए कि 5 माले की बिल्डिंग जब नीचे गिरेगी, तब उस वक्त इस इलाके की क्या स्थिति होगी।
1: आज तक संवाददाता पीयूष जब मुखर्जी नगर पहुंचे तो हमें कई मंजिल टेढ़ी दिखी, पूछताछ की तो पता चला कि सालों से इसी हालत में ये इमारत खड़ी हुई है, जबकि इमारत कभी भी गिर सकती है।
2: ये मुखर्जी नगर वो इलाका है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का हब माना जाता है, लाखों की संख्या में छात्र यहाँ पर आकर तैयारी करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई इस वक्त एमसीडी ने नहीं की है इस बिल्डिंग को गिराने की। हालांकि 2023 में यहाँ पर नोटिस भी चस्पा किया गया था, जिसमें ये साफ लिखा गया है कि इसको तुरंत प्रभाव से खाली कर दें, और खाली करने से होने वाले कष्ट को तत्काल सहन करें। ये नोटिस 2023 में एमसीडी ने यहाँ पर चस्पा भी किया था, लेकिन 2023 से लेके अब 2026 खत्म होने वाला है।
3: अभी भी यहाँ से बच्चे आते जाते हैं, मार्केट लगती है, स्टूडेंट यहाँ पे फोन पे ही बात करते हैं, पार्क में यहाँ के खुद के लोकल भी रहते हैं। बट ये बिल्डिंग को अब तक गिराया नहीं, कल को ये घटना घट जाएगी तब यहाँ की सरकार, यहाँ का जो प्रशासन है, सरकार तक काम कर रही है बट प्रशासन नहीं कर रही है। प्रशासन में पुलिस ले लो या एमसीडी कर्मचारी ले लो, वो काम नहीं कर रही एक्टिव रूप से, नहीं तो ये ऐसी घटना नहीं हो सकती। देखो अब ये घटना का माहौल हो चुका है, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि भूकंप आया है, आंधी आई, सबसे पहले ही गिरेगा।
1: दिल्ली के बड़े हिस्से में अवैध इमारतें बनी हुई है, हादसों की स्थिति में यहाँ पर मदद पहुँचाना भी मुश्किल है। छात्रों से किराए वसूलने के लालच में हालात को बद से बदतर कर दिया है।
2: एग्रीमेंट यहाँ बन पाता है आप?
5: जी नहीं, कुछ नहीं बनता है।
2: कैसे रहते हैं?
5: बस यहाँ पे ब्रोकर के थ्रू हम लोग रेंट वो रूम लेते हैं, और ब्रोकर भी आधा चार्ज करते हैं।
2: अगर मान लीजिए कि इस कमरे का किराया 10,000-12,000 है,
5: तो हमको फिर पहले महीने में 15,000-18,000-20,000 पे करने पड़ेंगे।
2: मतलब आप शिफ्ट कर रहे हैं तो 18,000
5: शिफ्ट करने पड़ेंगे,
2: 10,000 रेंट
5: और प्लस 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे ब्रोकर को, और प्लस 2,000 सिक्योरिटी।
2: पूरा
5: सिक्योरिटी देनी पड़ती है।
2: उसके बाद
5: फिर अगले महीने का फिर यही हो जाता है। ये लोग सोचते हैं कि थोड़ी अच्छी बिल्डिंग है तो मिल जाएगी, टाइल्स वैस लग जाता है बाहर से, बाकी कुछ नहीं है।
1: सत्य निकेतन हादसे ने एक बार फिर दिल्ली में अवैध निर्माण और सुरक्षा नियमों की अनदेखी से खबरदार किया है। छोटे प्लॉटों पर बनी बहुमंजिला इमारतों में पीजी और दुकानें चल रही हैं। सवाल ये है कि सकरी गलियों में बनी इन कमजोर ढांचों की वजह से हो रहे इन हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बच्चे परेशान हैं, माता पिता डरे हुए हैं, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि सत्य निकेतन में चल रहा ऑपरेशन अब खत्म हो गया। इनमें 12 को रेस्क्यू हमने करवाया है, जिनमें 9 छात्र और 3 मजदूर थे। वहीं 7 की मौत हुई है। इस मामले में हॉस्टल मालिक, पत्नी, बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर पहले ही हमने आपको खबर दी।
8: हमारे साथ एडिशनल डीसीपी अभिमन्यु सिंह हैं, उनसे सीधे बात करते हैं। सर, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है और उनकी भूमिका?
11: इसमें हमने जो कल बिल्डिंग कोलैप्स हुआ था सत्यनिकेतन एरिया के अंदर, उसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जो इनिशियली हमें लगा था कि हरिराम गुप्ता ओनर हैं इसके, उनको वो भागे हुए थे इंसिडेंट के बाद। उनको इमीडिएटली हमने 10 टीम बनाई अलग अलग लोकेशंस पे, उनके रेजिडेंस पे भी भेजा गया, बट फाइनली भिवाड़ी से उनको अरेस्ट किया गया। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उनके नाम था और उनका बेटा उसके साथ ऑपरेट करता था इस पूरे पीजी को, बट जो इसकी ओनर है उनकी वाइफ थी। तो इस हिसाब से 3 लोग इस फैमिली के अरेस्ट हुए जो इसको ओनर थे और इसको पीजी को ऑपरेट करते थे।
8: बिल्डिंग गिरने की वजह क्या है, क्या पूछताछ में उसने बताया, क्या पूरा
11: था? जो एक्यूज है उनकी इंटरोगेशन करी गई तो पता चला कि बेसमेंट में कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा था, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और लेबर वर्कर्स भी वहां पे काम कर रहे थे। उनकी भी स्टेटमेंट ली गई, उन्होंने बताया उस कंस्ट्रक्शन को रिनोवेशन को काम को करते समय वो बिल्डिंग मिसहैप की वजह से कुछ कोलैप्स कर
8: गया। उनसे बात करने के लिए ये थे अभिमन्यु सिंह, जिनका कहना कि इस हादसे में 7 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
0: दिल्ली में इमारत गिरने के मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा हादसे के लिए दिल्ली नगर निगम और दिल्ली यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने यह कहा कि ऐसे हादसों की जिम्मेदारी केवल पीजी हॉस्टल के मालिक पर नहीं होती, जिम्मेदारी एमसीडी प्रशासन की भी है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि हर एक निर्माण कार्य नियमों के अनुसार ही हो। अदालत ने यह भी कहा कि बाहर से पढ़ने आने वाले छात्रों के हॉस्टल की स्थिति बेहद दयनीय और खराब है, इसके लिए सरकार जिम्मेदारी से बिल्कुल बच नहीं सकती। हाईकोर्ट ने केंद्र और डीयू को छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा सुनिश्चित करने को कहा। कोर्ट ने पीजी को नियंत्रित और नियमित करने के लिए सरकार यानी कि दिल्ली सरकार से सख्त कदम उठाने को भी कहा है। बिल्डिंग हादसे के बाद हमारी संवाददाता मारिया भी मौके पर पहुंची, वहां की स्थिति कैसी है देखिए।
13: मैं हूं मारिया शकील, मैं सीधे आ रही हूं सत्यनिकेतन से। यहीं पर कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 24 घंटा पहले 7 छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रही हैं कि उन्होंने एक्शन लिया है, लेकिन वो रिएक्शन है। सवाल ये है कि ये जो इमारतें हैं जो ओपन वायलेशन के बाद बनाई गई हैं, उनको तोड़ा या ढाया क्यों नहीं जा रहा, क्या इंस्पेक्शन हुआ है? बहुत सारे सवाल है, क्योंकि अगर आप यहाँ के पीजी अकोमोडेशन में जो रहने वाली छात्रों से आप बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक सेंस ऑफ नाराजगी भी है और खौफ का भी माहौल है, क्योंकि वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि कितनी और घटनाएं होंगी कि फाइनली कोई एक्शन होगा। पिछले कुछ घंटों से मैं यहीं पर हूं, छात्रों से बात कर रही हूं, स्टूडेंट्स और आसपास के लोगों से मैंने बात की है। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
23: एंड आफ्टर द इंसिडेंट विच हैपेंड यस्टरडे, उसके बाद हम लोगों पे चेक ऑन करने आए थे कि वो लोग ठीक है या नहीं, बिकॉज ऑफ दैट कंसर्न ओनली। हमने देखा वो है ठीक है, उनकी बिल्डिंग्स भी इतनी अच्छी नहीं है, एज सच यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी भी नहीं है, खाना भी इतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन जैसे यहाँ की हालत है आई वुड से इट इज नॉट गुड। यहाँ पे रहना इज लाइक वेरी हेक्टिक, यहाँ पे कोई रह नहीं पाता, यहाँ पे खाने के इश्यूज हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का तो कल हमें पता ही चल गया जैसा हुआ है। आफ्टर ऑल द इंसिडेंट हैपेंड, तो उसके बाद तो वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। वी डोंट लिव इन पीजी, लेकिन वी लिव इन दिल्ली ओनली, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली, और यहाँ का हाल देख के तो बस ऐसे सारे ही हम लोग बहुत परेशान है देख के कि क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोग आधे से ज्यादा टाइम यहीं होते हैं।
13: विद योर फ्रेंड्स यू आर हियर?
23: विद आवर फ्रेंड्स, या एंड द स्पॉट जहाँ पे ये हुआ है, वी गो देयर, हम लोग वहीं पे होते हैं, वहाँ शॉप्स हैं जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं, चॉकलेट एंड स्टफ जो होता है, एंड हम लोग ऐसे एक दिन पहले भी वहीं थे एकदम बिल्डिंग के नीचे ही, तो इट वॉज वेरी शेकिंग, वी वर शेकिंग जब हमने ये न्यूज सुनी, तो इट्स नॉट गुड बिल्कुल। वो
24: द माफियाज, पीजी माफियाज दे चार्ज अ लॉट ऑफ फंड, लेके जैसे हमने पूछा था अपने दोस्तों के लिए जो फर्स्ट ईयर फ्रेशर्स आए हैं, दे आज के भैया हमें पीजी चाहिए, हम हर पीजी में गए हैं, हमने पीजी चेक किया है, इतने गंदे पीजी एंड उनका रेंट दे वर लाइक 14,000-15,000 विदाउट फूड।
13: इफ विदाउट 14,000
24: इफ वी से के हमें खाली गर्ल्स पीजी चाहिए बट अवर द सिक्योरिटी बोलते हैं नीचे एक गार्ड होगा एंड वो भी बीच में लंच ब्रेक वगैरह के लिए जाता है एंड पीजी लाइक फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर उस पर भी लिफ्ट वगैरह कुछ नहीं है एंड रूम्स खाली इतने छोटे छोटे है कि नो वन वांट टू लिव देयर.
4: डिफिकल्ट लिविंग इन दिल्ली.
6: डेफिनेटली मैम. मैम एंड आई गेस यहाँ पर मेंटेनेंस इश्यूज बहुत हैं. एवरी लाइक यहाँ पर जितने पीजीज हैं वो सब बस रेंट के पीछे भागते हैं. आपको सेफ्टी भी तो देखनी है स्टूडेंट्स की. एज हमारे एक सीनियर है तुषार भी, उनको कल इंटरव्यू हुआ था, वो मैंने देखा, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट दिया. दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में 300,000 बच्चे हैं और हॉस्टलर्स सिर्फ 4 है, मतलब 4,000 हॉस्टल्स अवेलेबल है. तो ये रेशियो तो बहुत कम है ना. आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर इतने स्टूडेंट्स को वो वहां पर पढ़ाते हैं तो उसके लिए अकोमोडेशन भी तो प्रोवाइड करना चाहिए. और अगर आप अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आसपास के एरियाज की सेफ्टी सिक्योरिटी, ये तो डूसू का एक मेन यूनियन का एक एजेंडा होना चाहिए ना कि वो सेफ्टी स्टूडेंट्स की.
4: नहीं है, जब इलेक्शन होता है तो क्या उस वक्त जो स्टूडेंट यूनियन के जो चुनाव में लड़ते हैं तो क्या दे डोंट पुट दैट ऑन टॉप ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट?
6: मैम द एजेंडाज आर डेफिनेटली ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट बट विद इन देयर टेन्योर ऑफ वन ईयर कितने एजेंडाज कंप्लीट होते हैं, दैट्स द मेन इशू राइट. तो अब कहने को तो मैं भी अगले साल इलेक्शन लड़ने के लिए अपने सारे एजेंडाज लिख दूं बट मैं वो पूरा नहीं करूंगा तो दैट्स नॉट द अच्छी बात नहीं है ना. वो तो मेंशन सब करते हैं बट उस पर एक्शन कौन ले रहा है, ये मेन इशू है. आप यहाँ पर सबकी कंडीशंस देख लो, एक बिल्डिंग आपको अच्छी नहीं दिखेगी. और अगर जो बहुत अच्छी बिल्डिंग है उसका रेंट इतना ज्यादा है कि एक अगर कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से भी आते हैं, बहुत वेल टू डू फैमिली से भी आते हैं इधर, बट हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर सकता. सो दैट्स द मेन इशू है, एक सेफ्टी का कंसर्न बहुत है.
23: देयर आर मेनी पीपल जिन लोगों को उनके घर से कॉल आ गई है एंड उन्हें इमीडिएटली वापस बुला लिया गया है. इवन वन ऑफ आर फ्रेंड शी इज फ्रॉम सोनीपत, उसको जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ एंड जैसे ही न्यूज वगैरह हर जगह पे बात आई, उसके पेरेंट्स इमीडिएटली कॉल्ड हर कि घर आ जाओ, बस कैसे भी करके वहां से निकल जाओ. वो सोनीपत रहती है, सोनीपत इतना भी दूर नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स का कॉल आया उसी टाइम और वो उसी टाइम यहाँ से गई है. मेनी ऑफ द पीपल हु यूज्ड टू लिव हियर आर नॉट हियर, अब सब चले गए.
7: कभी भी कुछ भी इमरजेंसी होती है हम लोगों के पास भाग, एस्केप प्लान नहीं है कोई भी. पानी इतना गंदा आता है यहाँ पे, हर चीज का दिक्कत है, खाना यहाँ पे इतना गंदा मिलता है.
4: फायर अलार्म्स
7: नहीं है,
4: फायर एक्सटिंग्विशर्स
7: कुछ नहीं है.
10: लिव्ड इन आनंद निकेतन माई सेल्फ इन माई फर्स्ट ईयर एंड द सिचुएशन इज नो बेटर. द एरिया इज नॉट एज कंजेस्टेड एट सत्या बट देन अगेन वहां पे कोई शॉप्स वगैरह आपको कुछ फैसिलिटीज इतनी क्लोज बाय नहीं मिलेगी. एरिया कंजेस्टेड नहीं है बट बिल्डिंग्स वहां पे भी लंबी लंबी ऐसी ही है. तो
0: सोचिए ऐसी स्थिति में रहने वाले हमारे बच्चे पढ़ाई पर कितना ध्यान दे पाएंगे. आगे बढ़ते हैं, झारखंड की खबर है. झारखंड में लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली को लेकर यहां भी छात्रों के आंदोलन के बाद अब इसी मामले पर महाराष्ट्र में भी छात्र सड़कों पर निकल गए. एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे. इसके विरोध में पुणे से छात्र सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन किया.
14: झारखंड की तरह अब महाराष्ट्र में एमपीएससी यानी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्र खबरदार करने सड़कों पर उतर गए. पुणे में छात्रों ने एमपीएससी विद्यार्थी आक्रोश मार्च निकाला. ये मार्च ओंकारेश्वर मंदिर से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचा. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र शामिल हुए. सबसे प्रमुख मांग एमपीएससी अध्यक्ष और सचिव को हटाने को लेकर. इसके अलावा पेपर लीक मामलों की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की भी मांग. छात्र चाहते हैं कि संदिग्ध परीक्षाओं का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए.
25: अध्यक्ष का राजीनामा होना चाहिए.
26: तो क्या आपको लगता है इस्तीफा होने के बाद आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे?
25: हाँ हो जाएगी, लेकिन इससे पहले भी कितने बड़े पेपर फूटे हुए हैं आपको पता करना चाहिए.
27: जो नेक्स्ट अध्यक्ष आएगा वो डरा रहेगा कि बाबा अगर मैंने पेपर भेज दिया क्यों लीक किया तो मेरे को भी राजीनामा देना पड़ेगा. इसलिए राजीनामा जरूरी है. और उसके बाद अगर कोई लॉयल आएगा अध्यक्ष तो अच्छे से काम भी कर सकता है ना. और जो पीछे जो पेपर लीक हुए होंगे शायद से उसके बारे में भी कुछ इंक्वायरी होगी.
28: गरीब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो श्रीमंत लोग है रिच कर रहे उनको आदत हो गई पैसा फेंको जॉब मिलो पैसा. अरे सब पैसे पे नहीं चलता यार, मेहनत से चलता है, डेमोक्रेसी है.
29: अध्यक्ष राजीनामा देना चाहिए.
26: नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि
29: इस्तीफा राजीनामा दिए तो घोटाले सामने आ जाएंगे.
26: ओके, तभी सब गफला सामने आएगा,
29: सभी सामने आएगा।
9: छात्रों का कहना है कि भर्ती निकलने और परीक्षा होने में लगातार देरी से उनकी उम्र निकल रही है, इसी वजह से वो अधिकतम उम्र सीमा में विशेष छूट की मांग कर रहे हैं। पुणे के आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया, वहीं सुप्रिया सुले छात्रों के इस मार्च में शामिल हुए।
12: बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र में हमारे सब बच्चे हैं, ये हमारी तो बच्चे हैं, वो आज आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरह से जंतर मंतर में बच्चों ने आंदोलन किया वही वातावरण आज पुणे में दिख रहा है। मेरी विनम्र विनती है महाराष्ट्र सरकार को कि आप किसी जिम्मेदार आदमी को भेजिए, हम सब आपका सहकार्य करेंगे, लेकिन चर्चा होनी चाहिए।
9: छात्रों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी की। सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का आश्वासन दिया गया, लेकिन अगर छात्र नहीं माने तो पुणे में छात्रों का ये आंदोलन आगे और भी बड़ा हो सकता है। ओंकार उम्बले, पुणे आज तक।
0: फर्जी डॉक्यूमेंट से पासपोर्ट बनवाने के आरोप में योग गुरु स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। देहरादून सीबीआई कोर्ट ने आचार्य बालकृष्ण को 15 वर्ष बाद बरी कर दिया है।
15: जो एक व्यवस्था है इस देश में, जो न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका का पूरा भरोसा है, उससे हमें न्याय।
1: आचार्य बालकृष्ण के चेहरे पर संतुष्टि की ये मुस्कान सीबीआई कोर्ट के एक फैसले से आई। फर्जी दस्तावेज से पासपोर्ट बनवाने के मामले में पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण को बरी कर दिया गया है।
15: न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास था और है, एक न्यायिक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में जो हमें न्याय मिला है उससे न्यायिक प्रक्रिया की जो सारी जिस विधा से हमको गुजरना पड़ा, निश्चित रूप से तो मानसिक रूप से भी और समय के दृष्टि से भी बहुत थकाने वाला भी था, उसमें हमने बहुत सारे अपमान, अपयश और बहुत सारे लोगों ने जो एक तरह से नकारात्मक जो ऊर्जा है उन ऊर्जाओं का हमने सामना भी किया।
1: आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पासपोर्ट बनवाने के लिए बरेली के पासपोर्ट ऑफिस में खुर्जा के एक संस्कृत महाविद्यालय से जुड़े कथित फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए थे। साल 2011 में आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ शिकायत मिली थी, इसके बाद जुलाई 2011 में एफआईआर दर्ज की गई और अगले साल आचार्य बालकृष्ण को गिरफ्तार भी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में देहरादून की सुद्धोवाला जेल भेजा गया था, जहां पर आचार्य बालकृष्ण करीब एक महीने तक जेल में रहे। हालांकि बाद में उनको जमानत मिल गई और 2018 में आचार्य बालकृष्ण को उनका पासपोर्ट भी वापस मिल गया, लेकिन 15 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार आचार्य बालकृष्ण बरी हो गए, जिसे उन्होंने सत्य की जीत बताया।
0: खबरदार में आज के लिए बस इतना है, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
16: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल टू इन वन बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
1: देखे जन्म पहला पहला कदम।
2: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Hevan on the 11th of September.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।
4: पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
5: पापा,
6: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
5: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
6: छक्का?
5: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ, ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
9: जीके मैक्स।
10: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
9: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
9: बेस्ट पेंट,
10: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी। इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ ईद।

0: The E3 Group, India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Haivaan on the 11th of September.
1: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
2: कभी कभी जब दो अलग स्वाद साथ मिलते हैं तब मजा ही कुछ और होता है, जैसे स्वीट एंड सॉल्टी अनमोल 2-in-1 बिस्किट, दो स्वाद एक साथ, क्या बात।
3: देखे जन्म पहला पहला कदम।
0: हैवान की कहानी में हर किरदार का अपना रिश्ता है, उसमें जुड़े होते हैं आपके सपने, आपकी पसंद और आपकी कहानी, इसलिए घर के लिए चुनिए सिर्फ E3, the E3 Group. India's leading manufacturer of interior and exterior products. E3 Group celebrates the release of Haivaan on the 11th of September.
4: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
5: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
6: Rungta nahi, to ghar strong nahi. Rungta Steel TMT bar, ekdam solid.
7: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
8: ओए, जाके से खड़ी की,
9: पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है।
8: और सारा शहर जानता है पार्किंग ना बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी?
9: क्या
10: बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए।
8: तेरी पार्किंग यार कहीं भी लगा ले।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में ब्लैक एंड व्हाइट लेकर हमारी साथी अंजना होंगी आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जब दिल्ली में जर्जर और मौत के मुहाने पर खड़ी इमारतों से मालिक किराया कमाते हैं तो आंखें मूंदने के एवज में कौन कौन अधिकारी पैसे खाते हैं। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में एक पीजी की बिल्डिंग गिर जाने से 7 छात्र और मजदूर सिस्टम की लापरवाही, कमजोरी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। फायर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हर रोज औसतन एक इमारत गिरती है। एक इमारत औसतन रोज गिरती है और पैसा खाकर मुंह बंद कर चुके अधिकारी इन हादसों को रोकने के बजाय सिर्फ नए हादसे का इंतजार करते हैं, क्योंकि हादसे को रोकने की अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को तो वो पहले ही अपनी जमीर के साथ पैसे की खनक पर नीलाम कर चुके होते हैं। दिल्ली में एक के बाद एक ढहती इमारतों को देखकर लगता है कि इन ऊंची ऊंची और दम घोटू इमारतों में मौत कभी भी मंजिल बनकर खड़ी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में इन काल कोठरियों से तमाम मालिक तो कमाते हैं, लेकिन वो कौन है जो इन पर ताला लगाने के बजाय इनसे पैसा खाते हैं। देखिए,

0: एमपी लेके गए हैं कटनी में और उनका वहीं अंतिम संस्कार होगा।
1: और इसके बाद आपको यूनाइटेड नेशंस के उस मानचित्र के बारे में बताएंगे जिस पर भारत के सम्मान के साथ सीधा और सख्त संदेश दिया है। जब यूएन में एक नए किस्म के ग्लोबल मैप पर बात चल रही थी तो भारत ने आपत्ति जताई और कहा कि हमारे नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे हिस्सों को बिल्कुल सही और आधिकारिक तरीके से ही दिखाया जाना चाहिए। भारत सरकार का साफ कहना है कि देश की सीमाओं और अखंडता से जुड़े मामलों में कोई भी लापरवाही या गलत नक्शा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसे रात में अचानक से गिरा दिया गया, जिसके बाद माहौल गर्म है। अब जब यहां बुलडोजर चला ढांचा गिरा तो उसके नीचे से एक पुराना प्राचीन कुआं निकल के आया है जिसने एक पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। अब लोग इस कुएं को अलग ही कहानी से जोड़ रहे हैं। और अगली खबर जो आपके स्वास्थ्य से सीधे जुड़ी हुई है, देश का दवा बाजार एक बार फिर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सवालिया निशान लग गया है। ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच में अब 199 ब्रांडेड दवाइयां, जो ब्रांडेड दवाइयां हम खरीदते हैं ना, क्वालिटी टेस्ट में ये दवाइयां फेल हो गई हैं। कुछ दवाओं में तो असरकारक सॉल्ट की मात्रा 0 मिली है। मतलब जिस सॉल्ट से मान लीजिए बुखार उतरता है वो सॉल्ट उस दवा में है ही नहीं। कल्पना कीजिए हम लोगों की सेहत के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या राम मंदिर में फिर से चंपत राय का दखल शुरू हो गया है। 2.5 महीने के अंतराल के बाद चंपत राय मंदिर परिसर में लौटे। दावा है कि उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि कोई दिक्कत है तो उन्हें बताएं। इस वजह से उनके दखल और सक्रियता को लेकर फिर से कई सवाल उठने लगे। जीडीपी के आंकड़ों पर विवाद के बीच इनकम टैक्स के आंकड़े नई कहानी कह रहे हैं। सीजीए और जीएसटी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जुलाई महीने के बीच कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी तीनों मोर्चों पर शानदार इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कॉरपोरेट टैक्स 20.83% बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इनकम टैक्स पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 24.30% की जोरदार छलांग लगाते हुए 4,42,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके बाद आपको नेपाल और तिब्बत की सीमा पर चाइना के गेरोंग पोर्ट की नई तस्वीर दिखाएंगे जो 26 अगस्त को आई आपदा में बर्बाद हो गया है। ये कभी 5 मंजिला कस्टम हाउस हुआ करता था लेकिन अब यहां सिर्फ ग्रे ब्लैक कीचड़ और मलबे का मैदान बचा है। यहां राहत टीमें भारी मशीन्स, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स की मदद से शवों को ढूंढने में अभी भी जुटी हुई है। और अगली खबर, अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेज़न का प्राइम एयर विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर साइड में खड़ी गाड़ियों से टकरा गया है जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत का दावा है।

और आखिर में आपको भारत में जापान के राजदूत की तस्वीरें दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में जापान के राजदूत ऋषिकेश में गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं।

0: लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं। एक तस्वीर उस जर्जर इमारत की है जिसके मलबे में दबकर 7 छात्रों की मौत हो गई, और दूसरी तस्वीर इस इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता के उस आलिशान घर की है जो गुरुग्राम के पालम विहार में है। और इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तरफ एक ऐसी इमारत है जो कि जर्जर हालत में है, दीवारें शायद लंबे समय से मदद मांग रही थी, रहने वाले बच्चों को शायद हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर रात गुजारनी पड़ती थी, और दूसरी तरफ एक आलिशान बंगला, शायद उसके एक हिस्से में ही इस जर्जर पीजी जैसी मंजिला वाली जो इमारत है वो उतने हिस्से में ही आ जाती। लेकिन आज सवाल सिर्फ इस बंगले और इस बर्बाद इमारत का नहीं है, सवाल उन दो अलग अलग दुनिया का है जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। एक दुनिया उस व्यक्ति की है जिसके पास रहने के लिए आलिशान घर है, और दूसरी दुनिया उन बच्चों की है जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर कुछ सपने लेकर दिल्ली आए थे। कोई बिहार से आया होगा, कोई केरल से आया होगा, कोई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी दूसरे राज्य से आया होगा। जिस इलाके में सत्या निकेतन में यह घटना घटी है, अगर वहां पर जाइएगा, अनेकों घर, हर घर में, हर कमरे में 4-4, 5-5 बेड, और जब उन बच्चों से पूछेगा तो वाकई देश के कोने कोने से हजारों सपने सजोए 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे राजधानी दिल्ली आते हैं। उनके माता पिता ने शायद उन्हें स्टेशन पर छोड़ते वक्त यही कहा होगा कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाना, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि जिस छत के नीचे वो अपने बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं वही छत एक दिन उसके ऊपर गिर जाएगी। सोचिए, इन बच्चों ने दिल्ली आने का फैसला इसलिए नहीं किया था कि इन्हें मौत मिले, वो यहां पढ़ने आए थे, डिग्री लेने आए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, आईएएस अफसर बनने आए थे, अपने परिवार की जिंदगी बदलने आए थे, अपनी मां की झोली में उसके हाथ में कुछ पैसे देने के काबिल बन जाएं, अपने बूढ़े मां बाप की लाठी बन सके, कुछ पैसा इकट्ठा करके हर रोज घर बेच सके। इसलिए इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने घर का ऐशो आराम, अपने मां बाप के साथ 3 वक्त की अच्छे से खाना मिलना, उनका प्यार, सब कुछ छोड़कर दिल्ली, दूर राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन उनकी जिंदगी बदलने से पहले ही खत्म हो गई। और इसीलिए इन दो तस्वीरों के बीच का अंतर सिर्फ अमीरी और गरीबी का अंतर नहीं है, ये जिम्मेदारी और बेबसी का अंतर है। और यही हमारे शहरों की सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग इन शहरों को अपना भविष्य बनाने आते हैं उनके लिए अक्सर सबसे असुरक्षित जगहें छोड़ दी जाती हैं। छात्र हो तो पीजी, मजदूर हो तो झुग्गी, नौकरी पेशा लोग हो तो छोटी सी किराए की कोई जगह किसी घर में, टेढ़े मेढ़े मकान पर किसी कोने में एक रूम, दो रूम। एक ऐसा बाजार है ये जिसमें कई बार इंसान की मजबूरी को ही सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना दिया जाता है। छोटे छोटे शहरों से आए लोगों की मजबूरी इन लोगों का बिजनेस मॉडल है। दिल्ली जैसे शहर में बाहर से आने वाला छात्र सबसे पहले क्या ढूंढता है? एक कमरा, एक बिस्तर, 4 दीवारें और एक ऐसी जगह जहां वो रात को सुरक्षित सो सके, सुबह उठकर अपने सपनों के लिए निकल सके और दिन में बैठकर पढ़ सके। लेकिन जब उसकी मजबूरी किसी दूसरे व्यक्ति की कमाई बन जाए तब सवाल सिर्फ किराया लेने का नहीं रह जाता, तब जिम्मेदारी भी आती है। और हमें लगता है कि अभी तो एक हरिराम गुप्ता जो है वो गिरफ्तार हुआ है, एक हरिराम गुप्ता। इस जैसे न जाने कितने हरिराम गुप्ता होंगे जिनके कारण कई छात्र और लोग जर्जर इमारतों में रहने के लिए मजबूर होंगे। देखिए,
1: अरे आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ
0: कहा जाता है कि चींटियों के झुंड में भी अगर कोई चींटी मर जाए तो बाकी चींटियां उसके आसपास जमा हो जाती हैं। यानी एक छोटे से जीव में भी अपनों के नुकसान को महसूस करने की एक प्रवृत्ति होती है। लेकिन इंसानों ने जो सबसे आधुनिक, सबसे विकसित, सबसे ताकतवर व्यवस्था बनाई है, उसमें शायद सबसे सस्ती चीज एक आम इंसान की जान ही बन गई है। कहीं पुल गिरता है, लोग मरते हैं, कहीं जर्जर इमारत गिरती है, परिवार खत्म हो जाते हैं, कहीं सड़क धंसती है, कहीं आग लगती है, कहीं भगदड़ मचती है, कहीं अस्पताल की लापरवाही जान ले लेती है। हर बार तस्वीर लगभग एक जैसी होती है। पहले हादसा होता है, फिर चीख पुकार होती है, फिर कैमरे पहुंचते हैं, फिर नेता पहुंचते हैं, फिर जांच समिति बनती है, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जाता है, फिर हमारा ये पूरा सिस्टम अगले हादसे तक आगे बढ़ जाता है। भूल गए लोग? हाँ हाँ भूल गए, काम पर लग जाओ। फिर वही चोरी चकारी। आज हम यही सवाल लेकर आए हैं कि क्या इस सिस्टम और सरकारों के लिए आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, और कब वो दिन आएगा जब किसी हादसे के बाद नहीं बल्कि हादसे से पहले हमारी सरकारें कुछ करेंगी। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि उन इमारतों के नीचे खड़े सबसे आम इंसान की जान को वो कितनी कीमत देता है, उनकी जान कितनी सुरक्षित है। ये दीवारें देख रहे हैं आप, जिसको एक हाथ से उठाकर गिराया जा रहा है, इन्हीं दीवारों से बना दिया था पीजी जिसमें इन बच्चों को डाल दिया था। दिल्ली के सत्य निकेतन में जो हुआ उससे तो यही पता चलता है ना कि हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें उन घटनाओं से कुछ नहीं सीखती जिनमें आम आदमी मारा जाता है। आप इस बार इस दिल झकझोरने वाली तस्वीर को देखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस घटना को दिल्ली सरकार, नगर निगम और यहां तक कि स्थानीय विधायक कितनी आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए,
1: कितने सारे बच्चे हमारे सामने ही होंगे, पूरी धारा ऐसा है।
0: सोचे एक बार को, जिन माता पिता और परिवारों ने इस घटना में अपने बच्चों को खोया होगा, क्या गुजरी होगी उन पर, और क्या सरकार की जांच से इस मलबे में दबकर मारे गए बच्चे फिर से जीवित हो पाएंगे। ये पूरी घटना 6 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे की उस वक्त हुई जब दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 मंजिला इमारत अचानक जमींदोज हो गई। ये वही इलाका है जहां कुल 299 इमारतें हैं। इनमें लगभग 200 इमारतों को हॉस्टल और पेइंग गेस्ट यानी पीजी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो इमारत इस घटना में जमींदोज हुई वो भी एक पीजी के रूप में इस्तेमाल हो रही थी, क्योंकि ये पूरा जो रिहायशी इलाका है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के पास है और बहुत सारे छात्र इन्हीं प्राइवेट हॉस्टल्स और पीजीज में रहते हैं। इस पीजी का भी नाम हॉस्टल डेज था, जो दुर्भाग्यवश इन छात्रों के लिए हॉस्टल डेथ में तब्दील हो गया। 1:30 बजे जब यह इमारत जमींदोज हुई उस वक्त वहां पर 20 से ज्यादा छात्र मौजूद थे। छात्रों की संख्या इसलिए भी ज्यादा थी क्योंकि रविवार होने के कारण सभी कॉलेजेस की छुट्टी थी, और सबसे दुखद बात तो यही है कि सारे छात्र दोपहर के खाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान 12 सेकेंड के अंदर यह पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। दावा है कि इस घटना के सिर्फ 15 मिनट बाद दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। लेकिन छात्रों का आरोप है कि यह दावा गलत है। छात्रों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी और रेस्क्यू टीम्स इतनी देर से आई कि जो छात्र बच सकते थे उन्हें भी इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज रात 9 बजे तक इस दुर्घटना में 7 छात्रों की मौत हो चुकी है, 12 छात्रों को रेस्क्यू किया गया है, 5 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिनमें 3 की हालत बहुत नाजुक है। पुलिस ने इस पीजी के मालिक हरिराम बंसल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया है और दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने भी इस इलाके की दूसरी अवैध इमारतों को सील करने, ध्वस्त करने का आदेश दिया है। ये सारी बातें सुनने में लगता है कि अब तो कार्रवाई हो ही जाएगी। खासकर एमसीडी ने इसे परंपरा बना लिया है, जब भी दिल्ली में कोई इमारत जमींदोज होती है उसमें दबकर लोग मारे जाते हैं, एमसीडी के अधिकारी ऐसा अभिनय करते हैं जैसे सारी अवैध इमारतों को अब जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन सिर्फ दिखावा होता है, सिर्फ दिखावा। अगर यह दिखावा नहीं होता तो दिल्ली में औसतन हर दिन 1 से ज्यादा इमारत जर्जर होकर नहीं गिरती। ऐसी घटनाओं में औसतन हर महीने 3 लोग नहीं मारे जाते। अब यह देखिए कि इमारत गिरी कैसे। पुलिस का कहना है कि इस हादसे के वक्त बिल्डिंग के बेसमेंट में मरम्मत और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी मरम्मत के दौरान एक मुख्य पिलर यानी जो खंभा है वो अस्थिर हुआ और इससे पूरी इमारत एक तरफ झुक गई और ऊपर की 5 मंजिलें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। स्थानीय लोगों को ये भी उनका कहना है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में अक्सर पानी भरा रहता था, लगातार पानी का रिसाव और सीलन की वजह से इमारत की जो नींव है वो इतनी कमजोर हो चुकी थी जिसके कारण यह हादसा हुआ है। देखिए

0: को संडे को 8:30-9 बजे पहुंचा दिल्ली। मम्मा को फोन लगाया, मम्मा मैं पहुंच गया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मम्मा मैं 12 बजे फिर फोन लगाया, मम्मा मैं खाना खाने जा रही हूँ। उसके बाद में दोस्त ने फोन लगाया कि जहाँ हरप्रीत जाग रहता है वहाँ बिल्डिंग गिर गई है।
1: MP लेके गए हैं कटनी में और उनका वहीं अंतिम संस्कार होगा।

0: जो क्या बेचारा हमारा बेटा चले भी गया।
1: सोशल मीडिया के माध्यम से जो एडमिशन स्लिप वायरल हुई उसका नाम हम तब हम लोगों को थोड़ा ये कंफर्म हुआ, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि वास्तविक इसकी डेथ हो गई है।

0: हमने तो संडे को 8:30 बजे पहुंचा दिल्ली।
1: अब यहाँ हम आपको एक बार फिर से इस ग्राफिक्स के जरिए ये समझाना चाहते हैं कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे और क्यों ये छात्र बच सकते थे। देखिए, हमने एआई की मदद से बनाया है पूरा ग्राफिक्स, जिसमें अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो ये पूरी बिल्डिंग 17 मीटर से ज्यादा ऊंची थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक मेडिकल शॉप यानी दवाइयों की दुकान चल रही थी और उसके ऊपर कुल 4 मंजिलें बनी हुई थी। इन्हीं 4 मंजिलों पर एक पीजी यानी पेइंग गेस्ट था, जिसमें हर मंजिल पर 4 कमरे बने थे और उन 4 कमरों में कुल 10 बेड थे। इसका मतलब यह हुआ कि एक छात्र को रहने के लिए इस पीजी में ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ग फुट जगह मिलती है, 40 वर्ग फुट, जबकि इससे ज्यादा जगह तो एक कब्र को नसीब हो जाती है। लेकिन इस पीजी में छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह किराए के नाम पर, और वो भी कह रहे थे कम किराए के नाम पर, ठूस दिया गया था और ये छात्र किसी तरह वहां रहने भी लगे। अब यहां सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि ये इमारत 50 साल पुरानी थी, काफी जर्जर हो चुकी थी। इसका मुख्य हिस्सा यानी ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक का निर्माण साल 1970 से 1980 के बीच बना था। इसके बाद 1997 में इसके बेसमेंट का हिस्सा और तीसरी मंजिल का बाकी निर्माण किया गया, और इनमें भी जो बेसमेंट था वहां लगातार पानी भरा रहता था, जिसके कारण पानी का रिसाव हो रहा था और पानी के रिसाव और सीलन की वजह से इमारत की नींव जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, और ऊपर से इस बिल्डिंग का मालिक ग्राउंड फ्लोर पर कुछ मरम्मत का काम करा रहा था। अब हुआ यह कि इसी मरम्मत के दौरान इस इमारत का एक मुख्य पिलर यानी खंबा अस्थिर हो गया, जिससे पूरी लोड बेयरिंग संरचना का संतुलन बिगड़ गया और ऊपर की 5 मंजिलें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि यह बिल्डिंग बिना किसी आरसीसी फ्रेम के केवल 4.5 इंच की पतली ईंट की दीवारों पर टिकी हुई थी। इतनी कमजोर दीवारें कि ये 5 मंजिलों का भार उठाने में पूरी तरह अक्षम थी, और यहां ज्यादा पैसा कमाने के लालच में करीब 40 छात्रों को रखा जा रहा था, और इसी वजह से यह हादसा हुआ। इतने बच्चों की जान चली गई। सोचिए कितने दुख की बात है, अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में, राज्यों से दिल्ली में पढ़ने आए इन बच्चों को इस तरह मलबे में दबकर मरना पड़ा, और जो व्यक्ति इस पीजी का मालिक था उसने सब कुछ जानते हुए इन बच्चों को मरने के लिए यहां छोड़ दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी इमारत सिर्फ 55 गज के प्लॉट में बनी थी। 55 गज का मतलब ये हुआ कि इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 वर्ग फुट थी, लंबाई 24 मतलब 25 कह लीजिए, 24.75 वर्ग फुट। एरिया फुटबॉल मैदान में बना जो एक गोल पोस्ट होता है ना, उस गोल पोस्ट जितना था, और सोचिए इतनी सी जगह में ये पूरा पीजी बना दिया गया, और यहां हर मंजिल पर कम से कम 8 छात्र रह रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि इनका किराया बहुत कम रहा, अधिकतम 40 बेड वाले इस पीजी में 1 बेड का किराया, मतलब पर स्टूडेंट हर बच्चे के लिए 14,000 रुपए था, जो 40 बेड के हिसाब से 5,60,000 रुपए होता है। हमारे देश में एक आम आदमी की सालाना आय कितनी है, 2.5 लाख रुपए, उससे भी कम। लेकिन इस पीजी का मालिक इस जर्जर मतलब फुटबॉल के गोलपोस्ट जितनी जमीन पर इस इलाके में एक बिल्डिंग खड़ा करता है, वो भी एकदम, आप देख ही रहे हैं उसकी क्या मजबूती है, दीवारों को उठाकर लोग एक हाथ से ऐसे गिरा रहे हैं। जर्जर इमारत में वो 5.5 लाख से ज्यादा रुपया कमा रहा था। और स्थानीय प्रशासन, एमसीडी, यहां तक कि दिल्ली सरकार का कहना है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और हम ये साफ कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी जरूर होगी, लेकिन फिर भी ये पीजी चलता रहा और इतने बच्चे मलबे में दबकर मर गए। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन पैसे खाता है, क्योंकि बिना पैसे के इतना बड़ा खेल चल ही नहीं सकता। यानी जब कोई जर्जर इमारत गिरती है और इसके मलबे में लोग दबकर मारे जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर यह इमारत यहां तक पहुंची कैसे। फिर दूसरा सवाल आता है, इस इमारत को देखकर भी किस किस ने अपनी आंखें बंद रखी, क्योंकि कोई इमारत एक दिन में तो जर्जर होती नहीं है, या एक दिन में अचानक कोई रातों रात तो उसके जो फ्लोर्स हैं उसको नहीं बढ़ा लेता है। दीवारें धीरे धीरे कमजोर होती हैं, कुछ दिन तो लगते हैं एक पूरा फ्लोर बनाने में। खतरा कैसे बढ़ता चला जाता है, लेकिन सिस्टम अचानक नहीं जागता। सिस्टम अक्सर तब जागता है जब इमारत गिर चुकी होती है, बच्चे मर चुके हैं, और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे सिस्टम कैसे काम करता है। किसी को शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि शिकायत हुई तो जांच होगी। किसी को जांच नहीं करनी है, क्योंकि जांच हुई तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कार्रवाई करनी पड़ी तो किसी की कमाई रुक जाएगी। इसलिए फाइलें चलती रहती हैं, नोटिस दबे रहते हैं, निरीक्षण कागजों पर होते रहते हैं, इमारतों में लोग रहते रहते हैं। फिर एक दिन वही होता है जिसका इंतजार शायद पूरा सिस्टम कर रहा है, दर्दनाक हादसा। और इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर कौन कौन और कहां कहां तक पैसा खाता है, और किस किस के पास ये पैसा जाता है। और इस बात को दिल्ली के लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहां आप आदित्य नाम के इस छात्र को देखिए, जो इस घटना के बाद मलबे में बेहद सक्रिय और घुटन भरी जगह में फंस गया था। चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट का भारी स्लैब, लोहे की मुड़ी हुई छड़ें थी, लेकिन अंधेरे, चीख पुकार और दहशत के बीच भी आदित्य ने अपना आपा नहीं खोया। उसने देखा कि उसका मोबाइल फोन चल रहा था, जिसे उसने किसी तरह निकाला, अपने दोस्तों परिजनों के 11 सेकंड की एक लाइव वीडियो कॉल की, जिसके बाद मलबे को हटाया गया, उसकी जान बच गई। देखिए,
2: बच्चे दबे हुए हैं इसमें, सारे लोग दबे हुए हैं, निकालने में किसकी जिम्मेदारी है बच्चे।
1: इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों में अभिषेक कुमार नाम का एक छात्र भी शामिल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्र थे। वो दिल्ली में इसलिए पढ़ रहे थे ताकि वो अपने परिवार का सहारा बन सके। लेकिन अभिषेक और उसके जैसे और बच्चों को हमारी सरकार, हमारा सिस्टम बचा नहीं पाया। और जानते हैं ये घटना इस इलाके में हुई, नाम क्या है? सत्य निकेतन। ये नाम महात्मा गांधी से प्रेरित होकर रखा गया था, जिसका मतलब होता है ऐसी जगह जहां सत्य का निवास हो। लेकिन सोचिए, ये तो झूठ, बेईमानी, लालच की पूरी बिल्डिंग खुली हुई थी, जिसने कई छात्रों को उनके परिवारों से छीन लिया। और हम तो इसे लालच निकेतन कहेंगे, जहां किराए के लालच और रिश्वतखोरी ने इतने बच्चों की जिंदगी ले ली। आइए मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको जरा दिखाती हूं कि ये जगह क्यों आज चर्चा में होनी चाहिए। ये सत्य निकेतन जो आप देख रहे हैं, तो आज ध्यान से सुनिए, ये सत्य निकेतन कहां है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में जिन बच्चों को कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलता है उनके रखने के लिए एक ऐसा पूरा कॉलोनी बन गया, इलाका बन गया है, जहां पर कई जगहों पर तो एक आदमी के भी बिल्डिंग्स के बीच में चलने की जगह नहीं है, सिर्फ तार बिछे हुए हैं और ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें। और ये जगह जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है और इन बच्चों की हत्या हुई है, जानते हैं कितनी दूर है? ये विधानसभा से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है, 13 किलोमीटर, जहां पर इन बच्चों की चीख, उनकी जिंदगी चली गई। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, 11 किलोमीटर्स। ये नगर निगम मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, वही नगर निगम जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर ये MCD, ये नगर निगम, ये सुविधाएं अगर ये परिवर्तित नहीं होते हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूं कि ये जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली शहर के अलग अलग इलाकों में, विस्फोटक स्थिति है। अगर ये अभी नहीं जागे, अगर इन्होंने अभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस की सीलिंग शुरू नहीं की, अगर सोचिए यही बिल्डिंग किसी ईमानदार व्यक्ति ने सील करा दी होती, जहां पर नीचे पानी भरा हुआ है, बेसमेंट में सीलन है, इलीगल फ्लोर्स बने हुए हैं, इन बच्चों की जान नहीं जाती। नगर निगम सचिवालय से 10 किलोमीटर दूर, मंत्री आशीष सूद का घर यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, मुख्यमंत्री आवास एक बार फिर से आपको बता रहे हैं 11 किलोमीटर दूर है, और 9 किलोमीटर दूर है नगर निगम मुख्यालय। लेकिन सब सो रहे थे और इस गहरी नींद की वजह से इन बच्चों की जान चली गई। और इसीलिए आज ये विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बच्चे किसी के हो सकते थे, ये बच्चे आपके हो सकते थे, हमारे रिश्तेदारों के हो सकते हैं, जो अलग अलग जगहों से अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं। हाँ, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि उनको राजधानी में बड़े बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है तमाम सहूलियतों के बीच। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पीजी के मालिक हरिराम गुप्ता, उसकी पत्नी उर्मिला गुप्ता, बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पत्नी की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि ये जगह उनके नाम पर थी, बेटे की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो बिल्डिंग का पूरा कामकाज देखता था, और हरिराम गुप्ता की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उनके नाम से बिजली और पानी का कनेक्शन था। अब सोचिए इनके लिए, इन बच्चों की जिंदगी की क्या कीमत थी? नीचे बेसमेंट में पानी भर रहा है, सीलन हो रहा है, टूटती जर्जर चीजें दिख रही हैं, बिल्डिंग की क्या हालत है, क्या इस व्यक्ति को पता नहीं होगा? लेकिन उसकी आंखों में इन दूर दराज के छोटे शहरों से आए बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। पैसा ऐंठने का जरूर तरीका था कमाई करने का। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही लोग इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं? और यह भी आज समझना चाहिए कि कोई भी हरिराम गुप्ता शासन और प्रशासन की मदद के बिना नहीं बन सकता है। क्या इस घटना के लिए बीजेपी की स्थानीय पार्षद हिमानी जैन जिम्मेदार नहीं है? आज हमने सोचा है कि एक एक करके सबके नाम चेहरे दिखाकर उनसे सवाल पूछे जाएं, जो इस इलाके में वोट मांगने आए लेकिन उनकी तरफ से जर्जर इमारतों को लेकर कोई शिकायत, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, एकदम चुप्पी, सन्नाटा। क्या इसके लिए MCD के मेयर प्रवेश वाही जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि इन इमारतों से जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो MCD की जेब में आता है। यही नहीं, दिल्ली मास्टर प्लान के तहत रिहायशी इलाकों के बेसमेंट में किसी भी तरह की व्यवसायिक गतिविधि या खुदाई के लिए नगर निगम के कंस्ट्रक्शन विभाग से अनुमति और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में नहीं हुआ। MCD के स्थानीय जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जिससे यह घटना हुई। हर साल MCD की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जोन में आने वाली सभी पुरानी और जर्जर इमारतों का बिल्डिंग सर्वे करे, वो इमारतें रहने लायक ना हो तो उन्हें खाली कराया जाए, उसको सील करे। लेकिन इस मामले में MCD ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसके लिए MCD के कमिश्नर संजीव खिरवार को जिम्मेदार माना जाए। ये वही संजीव खिरवार है जिन पर आरोप लगा था कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए त्यागराज स्टेडियम ले जाते थे और इस दौरान ये स्टेडियम वहां आने वाले खिलाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि खिरवार साहब टहलने निकले हैं और खिरवार साहब के साथ परिवार और उनके कुत्ते टहलने जाते थे। फिर स्टेडियम में खिलाड़ियों का क्या काम जब इतने बड़े अधिकारी आए हो? तो ये तो इनका रुतबा रहा है और संजीव खिरवार इस तरह से अपने रुतबे का इस्तेमाल करके व्यवस्था को कैसे मुट्ठी में उठाया जाता है उसके जीते जागते मिसाल बने हुए हैं। संजीव खिरवार एमसीडी कमिश्नर रहते हुए एक जर्जर इमारत को नियमों का उल्लंघन करने पर खाली क्यों नहीं करा पाते ये साहब जो एक स्टेडियम खाली करा लेते हैं अपने टहलने और अपने कुत्ते के टहलने के लिए। और हम तो यही कहेंगे कि अब एक कड़ी जांच का ढोंग होगा। इस घटना के लिए स्थानीय बीजेपी विधायक अनिल शर्मा भी जिम्मेदार माने जाएंगे जिन्होंने जर्जर इमारतों की सुध नहीं ली ना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोई शिकायत की। तब हुआ जब अनिल शर्मा के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो खुद इस इलाके में छात्रों के लिए कई जगहों पर पीजी चलाते हैं। उनके चुनावी हलफनामे के मुताबिक जो मैं अपने साथ लेकर आई हूं कुल 7,13,00,000 रुपए की संपत्ति है जिनमें 4,00,00,000 रुपए की 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, 1,60,00,000 रुपए की एक रिहायशी बिल्डिंग है। इनमें एक बिल्डिंग का पता है 11/78 गांव मोतीबाग और जानते हैं ये मैं लेकर आई हूं इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है उनकी बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग इस पीजी वाली इमारत से कितनी दूर है? 350 मीटर दूर। इस हलफनामे में अनिल शर्मा ने खुद बताया कि उन्होंने ये इमारत किराए पर रहने के लिए दी है। यानी बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं वो इस इलाके से पूरी तरह परिचित है, उन्हें पता होगा कि इस इलाके में कितने पीजी चल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई शिकायत या कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें साफ साफ लिखा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग शेयर ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी 11/78 विलेज मोतीबाग न्यू दिल्ली ऑल्सो नोन एज विलेज अरकपुर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेज ऑन मंथली रेंट बेसिस। मतलब महीने के किराए पर इस प्रॉपर्टी को उन्होंने रखा हुआ है और 350 मीटर की दूरी पर है। अनिल शर्मा के अलावा नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज भी इस घटना के लिए उतनी ही जिम्मेदार मानी जाएंगी। इस घटना के लिए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी उतने ही जिम्मेदार होंगे क्योंकि ये काम उनके विभाग का था कि इस इमारत का ऑडिट हो उसे खतरा मिलने पर बंद किया जाए, लेकिन आशीष सूद के विभाग ने ये काम ईमानदारी से नहीं किया और इस इमारत ने कई परिवारों को अब उजाड़ दिया है। और आखिर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है जिन्होंने घटनास्थल पर जाकर स्थानीय अफसरों को फटकार लगाई और ये कहा कि उन्होंने अपना काम सही से क्यों नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये फटकार या ये गुस्सा दुर्घटनाओं के बाद क्यों, दुर्घटना से पहले क्यों नहीं? सरकारें हमेशा एक्शन मोड में रहनी चाहिए। देखिए

0: क्या काम करे तुम लोग ये बताओ, बदतमीजी की हद होती है, क्या कह रहे हैं सारा फंड मुझे ये बताओ, क्या मेरे घर निकली क्या?
1: एमसीडी ने इस घटना के लिए दक्षिण जोन के डेप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन इमारतों के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन सब के पानी और बिजली के कनेक्शंस रोक दिए जाएंगे, दोषियों की संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन हमारा सवाल फिर से वही है कि फैसलों की उम्र कितनी होगी। अभी लोगों में गुस्सा है इसलिए सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पिछली घटनाओं में भी यही हुआ था, बाद में कुछ नहीं बदला। सारी बातें हम आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक साल 2022 से 2024 के बीच दिल्ली में इमारत गिरने की 1133 घटनाएं सामने आई, 98 लोगों की मौत हुई। इसके बाद 1 जनवरी से 31 जुलाई 2025 तक दिल्ली फायर सर्विस को इमारत गिरने की 233 कॉल्स आई, हादसे में 17 लोगों की मौत हुई, 101 लोग घायल। और ये घटनाएं भी तब हुई जब इसी साल 28 जून को एमसीडी ने अपने सर्वे में ये बताया था कि उसने 28 लाख इमारतों का सर्वे किया जिनमें 19 इमारतें ऐसी पाई गई जिन्हें खाली कराने की जरूरत थी। लेकिन अजीब बात यह है कि इन इमारतों में इस पीजी पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, और इसलिए नहीं गया क्योंकि शायद इसके पीछे रिश्वतखोरी बड़ी वजह रही होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन 5 अधिकारियों को एमसीडी ने सस्पेंड किया उनमें 3 अधिकारी वो है जिन पर मालवीय नगर के आग हादसे में भी सवाल उठे थे, लेकिन तब इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सर्वे में लापरवाही करने, इस बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं करने के लिए इन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में रहते हुए जर्जर इमारतों की पहचान करने की जिम्मेदारी इस शख्स की थी। लेकिन यही राकेश कुमार मालवीय नगर के भी जूनियर इंजीनियर थे, उनमें वो अग्निकांड हुआ उस वक्त भी उन पर सवाल थे, आज भी है। आज हम यही कहेंगे कि इन काली कमाई करने वालों को इन बच्चों के चेहरे देखने चाहिए। जब जब वो सोचते हैं कि अपनी जेब कैसे गर्म करनी है, कैसे अवैध निर्माण कोई करने वाला है तो वहां पहुंच जाते हैं पैसा मांगने और फिर आंखें बंद करने के पैसे लेते हैं। जब जब वो ऐसा करते हैं तो उनको इन बच्चों के चेहरे देखने चाहिए और सोचना चाहिए कि उनके लालच निकेतन ने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। ये रिश्वतखोरी चलती कैसे है, पैसा कौन कौन खाता है, उसके लिए आप इन एक्सपर्ट्स को जरा सुनिए। कौन कौन आपको, मतलब एक ही सवाल है मेरा, कोई अधिकारी कोई नेता कोई बताए बैठ के सामने में टीवी पर बताए सब ईमानदारी से, कौन कौन पैसा खाता है तब जाकर इस तरह का अवैध तरीके से निर्माण होता है और धड़ल्ले से धंधा होता है? कौन कौन,
2: मैं बता सकता हूँ। इसमें जो है आपका जो एमसीडी या नगर पालिका, नगर परिषद, तहसीलदार या जो भी कंसर्न है इस एरिया के, एक तो वो पैसे को तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वो कंप्रोमाइज करते हैं। इसी प्रकार से जो है इवन देन छोटा सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बंदा है वो ये सब लोग कंप्रोमाइज करते हैं। मैं इसका एक उदाहरण दूं, एक छोटा सा आप अपने घर के आगे खुदाई करके पंप लगाने की कोशिश करें, आपको मैं यकीन दिला रहा हूं नेशनल चैनल पे कम से कम 5 डिपार्टमेंट के लोग एकदम आ जाएंगे जिन्हें कहां से उनको सूचना मिलती है, आके खड़े हो जाएंगे, जी इलीगल है इसको बंद करो। थोड़ी देर में जो है तो वो कहीं बातचीत होती है, कंप्रोमाइज हो जाता है और फिर वो लग जाता है।
3: जहां तक मैं सोचता हूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं या जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज आप साउथ कैंपस में देखिए कितने कॉलेजेस में हॉस्टल है, बच्चे चाहते हैं कि
1: मतलब
3: अगर आप उनको हॉस्टल मुहैया करा सकते हैं तो ऐसे पेइंग गेस्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। केवल एक हरिराम को पकड़ने से नहीं होगा, उस हरिराम को बनाया किसने है, उस हरिराम को प्रशासन और शासन ने बनाया है, क्योंकि उसने किसी न किसी की जेबें गर्म करी होंगी तब जाके उसने वो बिल्डिंग खरीदी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: और दूसरी चीज, ये जितने भी अधिकारी हैं इन सबके जब तक आप फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करेंगे, इनके असेट्स नहीं करेंगे, आप ये देखिए एमसीडी में एक छोटा सा मुलाजिम होता है वो करोड़ों की संपत्तियां उसके पास होती हैं, आप ये देखिए वो छोटी सी नौकरी कर रहा है लेकिन उसके पास असीम धन है। तो जब तक आप इनके लिए एक कोई फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करेंगे तब तक ये बदस्तूर चलता रहेगा।
1: सोशल मीडिया की एक छोटी सी रीत और उसमें दिखने वाला लाइक बटन किसी को भी रातों रात स्टार बना सकता है। आजकल ऐसे ही एक स्टार है बिट्टू तबाही। मध्य प्रदेश के ब्यावर के रहने वाले बिट्टू तबाही के बारे में फेमस है कि इस अकेले लड़के ने वहां की अजनार नदी को साफ कर दिया। अजनार नदी पहले एक नाले की तरह थी जिसमें लोग कूड़ा कचरा सब बस डालते जाते थे, जो कई जगहों पर भारत में होता है। इस नदी को लोगों ने नदी कहना बंद कर दिया था। चारों तरफ गंदगी कूड़ा करकट होने की वजह से इसकी तरह मुंह भी करके जाना तक लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसी बीच बिट्टू तबाही नाम के एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दावा कर रहा है कि उसने अकेले दम पर अजनार नदी को साफ कर दिया। इस वीडियो में उसने बड़ी बड़ी बातें कही, अपने हाथ और पैर में इन्फेक्शन होने का दावा भी किया और ये जताया कि अकेला आदमी भी कुछ कर चाहे तो कर सकता है। लोगों ने इस वायरल वीडियो को देखकर बिट्टू तबाही की बहुत तारीफें की। लोगों ने यहां तक लिखा कि एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है जैसा बिट्टू तबाही ने किया। लोगों ने बिट्टू तबाही के नदी को अकेले साफ करने के दावे को मान लिया और उसे रातों रात सोशल मीडिया का नया स्टार बना दिया। बिट्टू तबाही एक नया सेंसेशन बन गए जिसने नाले की तरह दिखने वाली नदी को निर्मल जल वाली नदी बना दिया था। सोशल मीडिया की ताकत देखिए, किसी ने वीडियो और उसमें किए जा रहे दावों की सच्चाई परखने की जहमत ही नहीं उठाई। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके पूरे सिस्टम ने वायरल वीडियो के आधार पर मान लिया कि बिट्टू तबाही ने अकेले दम पर नदी साफ की है और ऐसा करने के लिए उसे सम्मानित किया। बिट्टू तबाही और सुरेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया बिफोर एंड आफ्टर करके अजनार नदी के दो वीडियोस डाले थे। एक वीडियो में नदी में कूड़ा करकट दिखाई दे रहा था और दूसरे में साफ बहता पानी। और इसी वीडियो को देखकर लोग प्रभावित हो गए क्योंकि एक अकेले लड़के ने चमत्कार कर दिया। लेकिन अब यह चमत्कार था या क्रेडिट लूटने का गिमिक, अब इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राजगढ़ के लोग नगर पालिका और अजनार बचाओ समिति नाम का एक संगठन बिट्टू के दावों को लेकर नाराज है। नाराजगी इस बात पर है कि नदी की सफाई का काम सबने किया था लेकिन एक वीडियो बनाकर सारा क्रेडिट बिट्टू तबाही ले गए। दरअसल अजनार बचाओ समिति और नगर पालिका की टीम्स पिछले कई महीनों से अजनार नदी की सफाई में लगी थी। अजनार बचाओ समिति से इलाके के कई युवा भी जुड़े थे जिनमें से बिट्टू तबाही भी शामिल था। आरोप है कि बिट्टू तबाही ने सफाई के इस काम का अपना अकेले का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और रातों रात स्टार बन गया। जबकि सच ये है कि नगर पालिका और अजनार बचाओ समिति ये काम पिछले कई महीनों से कर रही थी और बिट्टू उसका एक स्वयं सेवक था। हम आपको समिति के काम का एक वीडियो दिखाते हैं और इसमें उनका काम भी नजर आ रहा है। और तो और इसमें बिट्टू तबाही भी स्वयं सेवक के तौर पर काम करते दिख रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि अजनार बचाओ समिति के वीडियो से सच सामने आने के बाद भी बिट्टू तबाही का जो दावा है वो उसी तरह से कायम है।

अब आप सोचिए कि जिस टीम के साथ बिट्टू तबाई खुद एक स्वयं सेवक बनकर नदी की सफाई कर रहे थे, उन्हीं के काम को अपना काम बताकर प्रचारित किया और बिना सत्यता की जांच के उनका कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सबने सोचा कि भाई एक अकेले व्यक्ति ने चमत्कार कर दिया है। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी। ये खबर दूसरों को अमीर बनने का पाठ पढ़ाने वाले, कर्ज को अपनी ताकत बताने वाले और लोगों को उधार लेकर बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले की सलाह देने वाले रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी से जुड़ी है, जो खुद करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब चुके हैं। और इस खुलासे के बाद से उनके निवेशकों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिन्होंने उनकी सलाह पर अंधाधुंध उधार लिया, प्रॉपर्टी में निवेश किया और अब बाजार गिरने से कंगाल हो चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कियोसाकी की सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन आम निवेशकों के लिए ये किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं। बताइए अंजना 2.0। बिल्कुल अंजना, अब इस घटना से बहुत से लोग परेशान और गुस्सा है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया चीन से आ रही है, जहां इस किताब को ही सब कुछ मानकर लाखों लोगों ने अंधाधुंध उधार लिया और प्रॉपर्टी में पैसा झोंक दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन का रियल एस्टेट बाजार धड़ाम हो गया, घरों के दाम जमीन पर आ गए और निवेशक नेगेटिव इक्विटी के दलदल में फंस गए। अब जब ये निवेशक खुद को कर्ज में डूबा देख रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि जो गुरु खुद 11,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज के तले दबा बैठा हो, वो भला दूसरों को अमीर होने का ज्ञान कैसे दे सकता है। हालांकि इस बवाल के बीच कियोसाकी की पूर्व पत्नी और लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर किम कियोसाकी ने साफ किया है कि ये कोई उनका पर्सनल कर्ज नहीं है। इसमें करीब 1,500 फ्लैट्स और बिजनेस पार्टनर्स की उधारी शामिल है। जानकारों का मानना है कि कियोसाकी का ये कर्ज अमेरिकी रियल एस्टेट की उस पुरानी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां एसेट की वैल्यू पर बार बार रीफाइनेंस करके बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े किए जाते हैं और खुद को लिमिटेड लायबिलिटी के जरिए बचाया जाता है। कियोसाकी ने जो किया वो उनकी किताब के मूल सिद्धांत का ही एक्सट्रीम रूप है, यानी बिल्कुल इसी खबर के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है, कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
3: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।
4: एक दो एक
5: श्राम।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक तो एक
3: इश्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा, सफलता का शंखनाद।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत में। कभी कभी आप जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। नमस्ते।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात, बोले आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही हैं करारा जवाब। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में दो और गिरफ्तार, बिल्डिंग मालिक के बाद पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 अफसर सस्पेंड। बिल्डिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डांटा, कहा जिम्मेदारी से बच नहीं सकती सरकार, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार एमसीडी डीयू और एजेंसीज को दिया नोटिस। यूपी के सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने किया निरीक्षण, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। सागर जहरीली शराब कांड में मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश, 30 पर एफआईआर, 14 हिरासत में, अब तक 13 की मौत, 100 से ज्यादा भर्ती।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक में दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके का ऐसा सत्य जो झकझोर देने वाला है, कैसे एक पीजी की इमारत ढहने से 7 जिंदगियां मौत के मलबे में दब गई। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी पड़ताल जो सत्य निकेतन की सच्चाई की सारी परतें उधेड़ देती है। एक पीजी की बिल्डिंग गिरने के बाद भी जहां अवैध और जर्जर इमारतों में पीजी चल रहे हैं, मतलब मजबूर छात्रों की जिंदगी के साथ सीधा सीधा सत्य निकेतन में हो रहा है खिलवाड़। तो आइए आपको दिखाएं ऑपरेशन हॉस्टल डेथ।
1: जितनी भी पीजीज हैं सब में सीढ़न लगा हुआ है, पूरा पानी गिरता रहता है और बच्चों का फायदा उठाया जाता है साउथ कैंपस के सभी बच्चों का।
2: पर यहाँ 4-4 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनी है, कौन देता है परमिट? आप लोग ही परमिट दे रहे हो ना। अब आप एमसीडी से सवाल पूछ रहे हो तो परमिट किसने दिलाई थी?
3: कि वो हौसले और जो उम्मीदें हम यहाँ लेके आए थे वो उस मलबे के नीचे दबी हैं। वो बच्चे जो अभी भी उस मलबे के नीचे जिंदगी और मौत से झूल रहे हैं। बस
4: यहाँ जितना लोग देख रहे हैं कि 30-40 स्टूडेंट है, उससे कई ज्यादा थे। इमेजिन लाइक देयर वर 20 पीपल इन वन फ्लोर।
5: कोई ऑप्शन ही नहीं है, अभी टेम्परेरी हम जा सकते हैं पर फिर वापस इधर ही आना है हमको।
6: और जहाँ पे ना बेसिक फैसिलिटी है ना कुछ है, आप आंख उठा के देखेंगे तो सारे ऐसे ही जर्जर हालात में आपको बिल्डिंग दिखेंगे।
7: जब आप किसी चीज को सोचते हो, जब वो सच में आपके आगे हो जाती है तो एकदम से दिल कहीं ना कहीं घबरा जाता है।
8: निकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है, इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है।
9: बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है।
10: देयर इज नो ऐसा कि वहाँ बेटर तुमको मिल जाएगा, क्योंकि जो ना इधर भी हो सकता है वो उधर भी हो सकता है।
11: 6-6 मंजिल 5-5 मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चों।
12: जेन जी जब सड़क पर निकले तो सरकार को भी झुकना पड़ा, लेकिन देश के सिस्टम में भ्रष्टाचार की दीमक से ढहती इमारत के मलबे में जेन जी भी दम तोड़ देते हैं। जी हाँ, जिन पीजी को भ्रष्टाचार की रंगाई पुताई से खड़ा किया हुआ था उनमें जेन जी अपने भविष्य को जीवित रखने की कीमत चुकाते चुकाते मौत के मलबे के नीचे दम तोड़ देते हैं। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में आर के पुरम इलाके के पार दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के पीजी की तरह काम कर रहा हॉस्टल डेथ इसलिए हॉस्टल डेथ नहीं बना कि उसकी इमारत कमजोर थी, बल्कि इसलिए हॉस्टल डेथ बना क्योंकि एमसीडी के अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन की नीयत में भ्रष्टाचार का कीड़ा घुसा हुआ है। भले ही पीजी के मालिक हरिराम बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सच ये भी है कि मौत उन छात्रों पर लपकी है जो हॉस्टल न मिलने की मजबूरी में इन पीजी के घुटन वाले कमरों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। बरसात में सीलन इन पीजी को जकड़े रहती है, कहीं झड़ता प्लास्टर तो झांकता सरिया बताता है कि छात्रों की मजबूरी का फायदा पीजी वाले कैसे उठाते हैं। जर्जर इमारतों को चालू रखने के लिए अफसरों की जेबें गर्म करते हैं। आज दिल्ली के सत्य निकेतन में तकरीबन हर सियासी दल की मौजूदगी मिलेगी। खुद सीएम रेखा गुप्ता ग्राउंड जीरो पर हैं, लेकिन क्या सरकार के पास हॉस्टल डेस्क में रहने के लिए मजबूर होने वाले छात्रों पर कोई ठोस जवाब है? 7 बच्चे बेमौत मारे गए, इन मौतों का गुनहगार कौन है? दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरी तो मुख्यमंत्री से लेकर मेयर तक, एमसीडी के अफसरों से लेकर पुलिस प्रशासन तक सबका जवाबड़ा मौत के मलबे के पास है। अब पीजी के लिए नए नियम बनाने का भी दावा किया जा रहा है।
13: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
12: लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली में हॉस्टल डेथ की ऐसी पड़ताल जो पीजी में रहने वाले छात्रों की मजबूरी और पीजी बालिकों की हकीकत दोनों को उजागर करती है। आज तक की टीम ने सत्य निकेतन इलाके में पड़ताल शुरू की तो 7 जिंदगियों के मलबे में दबकर मरने के बावजूद अब भी कमरे बेधड़क किराए पर दिए जा रहे हैं। ये है हॉस्टल डेज से बहस 100 मीटर की दूरी पर साई प्रॉपर्टीज। जिस बिल्डिंग में दुकान है उसी बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर का पीजी चल रहा है। हमारी मुलाकात पीजी को चलाने वाले ब्रोकर धनराज से होती है।
14: वैसा रूम वगैरह मिल सकता है? रूम बच्चे के लिए चाहिए। दस से 12,000 की उसमें चाहिए, मिल जाए वन सिंगल रूम। कैसा मिलेगा? और एसी नहीं होगा? 18,000 बीच में। और कितना बड़ा रहता है रूम?
15: मतलब 8x10
14: का रूम रहता है।
15: 8x10 का।
14: और रेंट क्या? मतलब 18,000 रुपए। और ये नॉर्मल जो आप बता रहे पंखे वाला?
12: इसके बाद हमने धनराज से सस्ते कमरे के लिए पूछा और ये भी पूछा कि शर्तें क्या क्या होंगी। तो कमरा देने की शर्त ये थी कि 1 महीने का किराया एडवांस और 15 दिन का कमीशन और कम से कम 6 महीने का एग्रीमेंट।
14: पंद्रह दिन का किराया और कोई एग्रीमेंट भी साइन करना पड़ता है? एग्रीमेंट
15: कम से कम लॉन्ग पीरियड 6 महीने का होता है। कम से कम 6 महीने रहना पड़ेगा।
14: अच्छा, 6 महीने रहना पड़ेगा है? और
12: यकीन मानिए इस इमारत के अंदर हम दिन के उजाले में दाखिल होते हैं, फिर भी अंधेरा पसरा रहता है। सीने पर लाइट नहीं, जगह जगह सीलन और गंदगी।
14: ये पानी की पाइपलाइन जा रही है? ये पानी की पाइपलाइन से?
15: हाँ, पानी आता है ना लेने से।
14: वो ये अंधेरा बहुत है यहाँ तो। सीलन बहुत है। सीलन बहुत है।
15: सीलन?
14: मेरे सीलन बहुत है।
15: बहुत ही बारिश में आदमी गीले हो गए।
14: इसका आपने क्या बताया था रूम रेंट?
15: नहीं
14: तो किचन कहाँ है इसकी?
12: इसी बातचीत के बीच ब्रोकर धनराज हमें बताता है कि कैसे हॉस्टल डेज की इमारत गिरने के बाद से बच्चे उनके पास कमरा मांगने आ रहे हैं।
15: बिल्डिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं, कोई चीज छोड़ छोड़ के।
14: मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं।
15: मैं कहा आज बिल्डिंग टूट गई ना पीजी की, बच्चे आ रहे हैं लेने के लिए। सारे स्टूडेंट आ रहे हैं।
14: कितने स्टूडेंट्स होंगे बाबूजी आपके पास? कितने स्टूडेंट्स रहे होंगे? रहते हैं यहाँ पर?
15: हाँ रहते हैं।
14: कितने स्टूडेंट्स
15: इस बिल्डिंग में? 17 लोग।
14: अच्छा,
0: सत्य निकेतन का ये सत्य डराने वाला है। हॉस्टल डेज की इमारत गिरने के बाद एमसीडी के 5 अफसरों को निलंबित कर दिया गया, लेकिन शासन और प्रशासन की जेबें गर्म करके इस इलाके यानी कि सत्य निकेतन में धड़ल्ले से पीजी चल रहे हैं। अब हम आपको इस इलाके का पूरा सच दिखाते हैं। जिन इमारतों में छात्रों को पीजी रूम दिए जा रहे हैं वो न सिर्फ अवैध रूप से बनी हुई हैं बल्कि जर्जर भी है। आइए देखिए डीयू छात्रों का हॉस्टल डेथ और मौत के कितने असत्य निकेतन।
12: सत्य निकेतन इलाके में हादसे की जगह से सटे मोती बाग की ये इमारत इतनी संकरी गली में है कि कोई हादसा हो जाए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हमारी बात पीजी की मालकिन वीरवती से फोन पर होती है और फिर उसका बेटा कमरा दिखाने आता है। नवीन पहली मंजिल पर रहता है और बाकी ऊपर की 3 मंजिल किराए पर दे रखी है। हर फ्लोर पर 3 कमरे हैं जिसमें छात्र और छात्राएं रहती हैं। नवीन हमें 5वीं मंजिल के फ्लोर पर ले जाकर कमरा दिखाता है।
14: ये कौन से फ्लोर पर है?
15: ये है फोर्थ।
14: मेरे को फिफ्थ हो गया, ये फिफ्थ फ्लोर हो गया।
15: ग्राउंड ग्राउंड
14: ग्राउंड लगा के फिफ्थ हो गया। ये तो अभी बनाए हैं लगता है।
15: हाँ ये तो अभी बनाए।
14: इसका क्या रेंट होगा?
15: इसका तो वही बताएंगे हम।
14: तो कोई एग्रीमेंट?
12: अब आप सोचिए कि जिस गली में घुसना मुश्किल है उस गली में 50 गज के मकान में पांचवी फ्लोर पर नए कमरे बनाए हैं।
14: ये तो बिल्कुल नया रूम कंस्ट्रक्टेड है,
16: ये तो अभी अभी बनाया है, एक महीना भी नहीं हुआ है।
12: आज तक की टीम की मुलाकात सत्य निकेतन इलाके के एक और ब्रोकर से होती है, नाम है ओम। ओम इसी इलाके का पुराना ब्रोकर है। ओम को अच्छे से पता है कि सत्य निकेतन और उससे सटे मोतीबाग गांव में अधिकतर पीजी इमारतें गैर कानूनी तरीके से बनी हुई हैं। फिर भी उसने हमें एक पीजी रूम की डील दी। ब्रोकर ओम से मुलाकात हादसे की जगह से महज चंद कदम की दूरी पर होती है।
17: मेरे पास अब जो रूम है ना, बस टू रूम सेट पड़ा हुआ है, वन बेडरूम डाइनिंग रूम, और उसका रेंट होगा आपका 15-16 के बीच में, दो कमरे जिसमें आपको अलमीरा, बेड, एसी, ये चीज़ें मिल जाएंगी।
14: कौन सा फ्लोर पर होगा
17: वो? लेकिन एक फोर्थ है एक थर्ड है, लेकिन वो ये फोर्थ वाले में थोड़ा हवा पानी मिल जाएगा, थर्ड वाले में बिल्कुल अंधेरा है। जो गलियों अगर गली बन रही यहाँ तो अरे यहाँ लेंगे, यहाँ एक कमरा भी 20-22 से कम नहीं दे रहा कोई।
14: और वो कितने का?
17: वो आपको 16,000 में दो कमरे मिल जाएंगे।
14: कहाँ मिलेगा
17: वो? इधर ही आगे इब्लीज मुतीबाग में सीरिए, ये सत्य निकेतन है।
12: इसके बाद ओम हमें एक पुरानी बिल्डिंग में पांचवी मंजिल पर कमरा देने के लिए कहता है।
17: ये विलेज मुतीबाग, यहाँ से विलेज मुतीबाग है, लेकिन वो साइड में मिलेगा रूम। अभी मतलब काम वाम कराया उन्होंने, अभी टॉयलेट वोलेट इंडियन टॉयलेट था, इंग्लिश टॉयलेट के बारे में सही टाइल वाइल लगा।
12: इसके बाद ओम हमें कमरा दिखाने के लिए संकरी अंधेरे वाली गलियों में से लेकर जाता है। इसी बीच ओम ने बताया कि जिस बिल्डिंग में कमरा है वो पुरानी इमारत है।
14: ये जहाँ आप दिखा रहे हैं
17: बिल्डिंग, सर देखो सामने अब बिल्डिंग है पुरानी, लेकिन ये नहीं है वैसे, ठीक है आप देख लेना लेकिन ऐसे ही। अब ये इतना मैं भी नहीं कह सकता जाती जी, तो कोई कसी है, ये मकान है, ये आपके 15-20 साल पुराने हैं। नीचे तो नीचे जो होता है वो सबसे पुराना ही होता है, ऊपर ना रहते हैं लोग। मैंने
14: ये भी करीब होगा पांच फ्लोर का, हम पांचवे फ्लोर पे हैं।
17: ग्राउंड से लगेगा फिफ्थ कहेंगे
14: इसको। ये वाला है।
12: इतना ही नहीं, ब्रोकर ओम हमें छत से इलाके की गैर कानूनी इमारतें भी दिखाता है जिनमें बच्चे रहने के लिए मजबूर हैं।
17: ये देखो कितने और फ्लोर, ये देखो सामने बन रहे हैं।
14: तो मैं कुछ कहता नहीं, मतलब ये फ्लोर इसके ऊपर भी,
17: अरे छज्जे, इनका छज्जा देखना कितना बड़ा है, अब जितना ये दिख रहा है ये छज्जा बड़ा हुआ है इतना सा।
12: ओम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 299 इमारतों का दावा करता है और ये भी दावा करता है कि इनमें से करीब 200 में पीजी चल रहा है।
17: मतलब वो कहते हैं रूम ना खत्म है, चॉइस ही नहीं है, बहुत कम रूम है, रूम इसलिए कम है क्योंकि पीजी ज्यादा है। अभी टोटली पीजी है, अब 299 मकान है सत्य निकेतन में टोटल, 299 में तो ये लगा के चलो 200 तो पीजी है। अब रहने की जगह नहीं है बच्चों की, तो रूम मिलते नहीं है।
12: यानी छात्रों की मजबूरी का फायदा कैसे उठाया जा रहा है उसका पूरा सच आपके सामने है। जर्जर इमारतें, अवैध रूप से बनी इमारतें पीजी के तौर पर धड़ल्ले से चल रही हैं। नितिन जैन, दिल्ली आज तक।
0: और अब खबर सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर छिड़े राजनीतिक संग्राम की। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए उसे जमींदोज कर दिया। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन अवैध है, मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर उसे धराशायी कर दिया, उस एक्शन पर उठे सवाल पर राजनीतिक हंगामा मच गया। सवाल ये कि 2027 चुनाव के चलते राजनीतिक तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे कोई गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या क्या अब इस कुएं की जो जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो ASI की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है।
0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रही हूँ, स्पष्ट कह रही हूँ भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ वहाँ शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी, ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहाँ आज भी है, मेरे यहाँ चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी। तो वो है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी। कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये ASI की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है? दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
5: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
4: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
5: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
4: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और वो भी विधिक रूप से वैध।
0: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
6: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था, उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
0: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी। सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
7: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जो इस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई।
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
8: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष हमलावर है। अखिलेश यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी पर निशाना साध रहे हैं। तो क्या सहारनपुर की मस्जिद पर चला बुलडोजर 2027 का चुनावी मुद्दा बनेगा?
0: मस्जिद पर बुलडोजर क्यों, पूछ रहे हैं अखिलेश यादव।
9: भाषण में तो पहले से ही कम्युनल थे, अब अपने एक्शन में भी कम्युनल हो गए। ये जो लोग कानून को नहीं मान रहे हैं, कल कानून मानेंगे।
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस का पारा हाई है।
10: अरे पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी।
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर ओवैसी का भड़का गुस्सा।
11: मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है।
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष के सवाल पर बोले योगी के मंत्री,
12: यह केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, जो कानून संबद्ध है, जो न्यायालय का आदेश है, उसका अनुपालन कराना सरकार का दायित्व है।
0: कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह की माने तो सहारनपुर की मस्जिद पर बुलडोजर कोर्ट के आदेश पर चला, सब कुछ कानून के दायरे में है। विपक्ष के सवालों को योगी के मंत्री ने तुष्टिकरण की राजनीति से जोड़ दिया। वहीं अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि यूपी में चुनाव है इसलिए ही सहारनपुर में तनाव है।
9: क्या जरूरत थी कि 12 घंटे में 13 घंटे में मस्जिद को गिरा दिया जाए? ये सोची समझी रणनीति साजिश है जिसके तहत पूरे प्रदेश को ये अपने अधिकारियों के माध्यम से कम्युनल रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हमारे सभी सांसद सभी नेताओं के घर पर पुलिस पहुंच गई है। ये पुलिस चोर डकैत बदमाशों को नहीं पकड़ रही है, पॉलिटिकल लोगों को घेराबंदी कर रही है।
0: अखिलेश यादव यही नहीं रुके, दावा किया कि सच्चा सनातनी कभी भी किसी दूसरे धर्म के स्थलों पर बुलडोजर नहीं चला सकता,
13: और एक सच्चा हिंदू कभी दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है। हमने तो यही सीखा है सनातन धर्म में, और जो वासुदेव कुटुंबकम की परिभाषा है वो यही बताती है कि हमारा पूरा समाज पूरा धरती एक परिवार है।
8: दशक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दशक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे आज तक की सुरक्षा सभा, नए भारत का सुरक्षा कवच, सबसे बड़ा मंच। देखते रहिए दशक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
2: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का?
2: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ला भाई मेरा बैट। वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।
7: एक दो एक
8: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
5: आगे आगे
6: उधर
5: उधर
6: उधर करेक्ट करेक्ट
7: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: और वही कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जेके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
1: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
9: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: इन एसोसिएशन विद
1: अनमोल बिस्किट्स, स्वाद जो बनाए हर पल अनमोल।
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: आज तक इस वक्त पहुंचा है नेपाल के रूपनदेही जिले के भुटवल इलाके में।
4: अभी तक 700 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 2500 से भी ज्यादा जो लोग हैं अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। आई है इस बार नेपाल में, उसने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया है। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ रोहित सिंह, नेपाल आज तक।

सड़कें बनी दरिया, घरों में घुसा पानी, कहीं बाइक समेत बहा युवक तो कहीं गांवों का संपर्क टूटा, नदियां उफान पर और बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कें पानी में डूब गईं और कई घरों में भी पानी घुस गया। जलभराव से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के सोनीपत में भी बारिश ने शहर की रफ्तार रोक दी, सड़कें तालाब बन गईं और जगह जगह जलभराव है। लोग नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था और मानसून तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ के पानी को पार करते वक्त एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। गनीमत रही कि युवक सुरक्षित बच निकला, लेकिन उसकी बाइक पानी में बह गई। धौलपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कें पानी में डूब गईं और कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ। नदियों और बांधों के बढ़े जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी बारिश का असर गंभीर है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ के पानी से विजयपुर के करीब 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। उत्तराखंड से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बारिश और उफनती नदियों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं घरों में पानी है, कहीं सड़कें डूबी हैं और कहीं गांवों का संपर्क टूट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत दस्तक में एक बार फिर से आपका। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज तक की सुरक्षा सभा, नए भारत का सुरक्षा कवच। जी हां, सुरक्षा सभा के सबसे बड़े मंच पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात की और कहा, आज का भारत दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, भारतीय सेनाएं आतंकवाद को करारा जवाब दे रही हैं। आज हिंदुस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण करने वाला सशक्त राष्ट्र बन चुका है। देखिए,
1: हमारे सैनिक हमेशा भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहे हैं और आज भी तैयार हैं। उनका शौर्य और युद्ध कौशल अद्वितीय है, अनपैरेलल है। कांग्रेस की सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के जवानों के हाथ मार दिए थे, अच्छी तरह जानते हैं। याद कीजिए, जब मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ तो पूरे देश में कितना गुस्सा था। देश के सभी लोग न्याय चाहते थे, भारत की सेनाएं और जवान इसके लिए तैयार थे, लेकिन उस समय की सरकार सिर्फ डोजियर दिखाती रही। लेकिन हमने अपने जवानों को खुली छूट दी है, हमने अपनी सेनाओं से कहा है कृते प्रति कृतिम, यानी जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही करो, इसकी हमने पूरी छूट दे रखी है। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में साथियों, हमने सेनाओं को पर्याप्त रिसोर्सेज भी दिए हैं और हमारी सेनाओं को जब स्वतंत्रता और संसाधन मिले तो उन्होंने किसी बात की चिंता किए बिना दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा है। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमारे सामने कई चैलेंजेस थे, जैसे कि सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले बहुत लंबे से समय से ये बिल्कुल लटके पड़े थे, पेंडिंग में थे। हमारे देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा इंपोर्ट पर जोर दिया जाता था और सबसे बड़ी चुनौती थी कि भारत को अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं था। और आज यह सब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं पूरी तरह से बदल चुका है। आज हम मिसाइल भी बना रहे हैं, आज हम ड्रोन्स भी बना रहे हैं, आज हम बड़े बड़े शिप्स भी बना रहे हैं और छोटे छोटे स्क्रूज भी बना रहे हैं। और हम सिर्फ फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स ही नहीं बल्कि सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और साथियों, आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 56 टाइम्स बढ़ा है, 56 टाइम्स हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सिमेटली 50,000 करोड़ क्रॉस कर गया है और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे पूरे विश्वास के साथ, मैं ये डिफेंस मिनिस्टर कह सकता हूं। और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं यह होकर रहेगा। भारतीय सेनाओं को मिसाइल्स की और भी समय से डिलीवरी सुनिश्चित हो पाएगी। साथियों, भारत के दुश्मन भारत की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए साम दाम दंड और भेद चार तरीकों का इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसे कश्मीर के नौजवानों को बराबर उनको तरह तरह की बातें कहकर उनको बहकाने की कोशिश की जाती थी, एंटी इंडियन एक्टिविटीज के लिए खूब फंडिंग भी की जाती थी, हिंसा और आतंक फैलाया जाता था, समाज में फूट और दरार पैदा करने की बराबर कोशिश की जाती थी। जैसे पहलगाम में धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा गया था, ऐसा लगता था कि हम खुद आचार्य चाणक्य का और भारत का पारंपरिक ज्ञान भूल गए हैं। लेकिन 2014 के बाद से हमने चारों मोर्चों पर जवाब देने का काम किया है। साथियों, हमने राह भटक चुके लेकिन सुधर सकने वाले नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। दूसरा, उनको रिहैबिलिटेट और डी रेडिकलाइज करके रोजगार और कारोबार से भी जोड़ा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से तो जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व विकास हुआ है और वहां का युवा भी आज बेहद खुश है क्योंकि उसे नई नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। तीसरा, हमने दंड का भी प्रयोग किया है, सर्जिकल स्ट्राइक्स, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को खाक में मिलाने का काम किया है मेरे मित्रों। और इसी तरह हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करके पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर दिया और यह संदेश दिया है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। चौथा, हमने भारत में फूट डालने की कोशिश भी नाकाम की है। जैसे भारत की एकता और सामाजिक सद्भाव को तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारा और क्रिश्चियन कॉन्वेंट को निशाना बनाया। यह एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन भारत के लोगों ने इस मंतव्य को कामयाब नहीं होने दिया। और हम सभी सबसे पहले और सबसे अंत में भी भारतीय ही हैं, यानी इंडियन फर्स्ट इंडियन लास्ट, यह संदेश देने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है।
0: आज तक के सुरक्षा सभा कार्यक्रम सबसे आगे हिंदुस्तानी में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस सुब्रमणि ने महत्वपूर्ण संबोधन दिया। उन्होंने साफ कहा, युद्ध जीतने के लिए मल्टी डोमेन स्ट्रेटेजी जरूरी है और सीडीएस ने वॉर फ्रंट की चुनौतियां भी गिनवाई।
2: युद्ध अब केवल एक घटना ही नहीं रहा है, बल्कि यह एक कंटिन्यूम बनकर रह चुका है। शांति और युद्ध के बीच की रेखा और कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के बीच का जो गैप है वो लगातार धुंधला होता जा रहा है। आज कंपटीशन कई स्वरूप में सामने आ रहा है, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर हो, टेक्नोलॉजिकल डिनायल हो, साइबर एक्टिविटी हो, इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस हो, मैरिटाइम कोर्शन, प्रॉक्सी ऑपरेशंस या पब्लिक परसेप्शन को प्रभावित करना हो, यह सभी कंपटीशन के हिस्सा हैं। और यह सब बिना कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट की सीमा को पार किए भी हो सकता है। यह आज ग्रे जोन की सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन भी इस पूरे इक्वेशन को बदल रहा है। पहले हम सोचते थे कि टेक्नोलॉजी सिर्फ स्टेट एक्टर्स का प्रोविंस है, लेकिन आज चीपर टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स वगैरह हर एक नॉन स्टेट एक्टर के पास भी हैं और यह कॉन्फ्लिक्ट को डेमोक्रेटाइज कर रहा है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ कुछ चुनिंदा टेक्नोलॉजिकल नेशंस के पास ही नहीं बल्कि सभी को उपलब्ध है, ये जो हम ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में भी देख रहे हैं। असली एडवांटेज उसी को मिलेगा जो टेक्नोलॉजी को सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीके से ऑपरेशनल एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करेगा। यह बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी अपने आप में सिर्फ एक माध्यम है, उस माध्यम को कैसे हम यूज़ करते हैं, कैसे हम अपने ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन सुपीरियॉरिटी से डिसीशन सुपीरियॉरिटी तक दूसरा बड़ा बदलाव है बैटलफील्ड की पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, अनमैंड सेंसर्स, ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन और नेटवर्क्ड इंटेलिजेंस अब छुपने को या कंसीलमेंट को बहुत ही डिफिकल्ट बना रहे हैं। साथ ही सेंसर टू शूटर साइकिल का जो टाइम है लगातार कंप्रेस होता जा रहा है। पहले ज़माने में देखना और उस पर एक्शन लेना घंटों में काउंट किया जाता था, अब यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में सेंसर टू शूटर टाइम मिनट्स में काउंट होता है, मिनट्स कहीं कहीं सेकेंड्स में काउंट होता है। इसीलिए एनवायरनमेंट में उसी को एडवांटेज मिलेगा जो सबसे पहले सेंस करेगा, मतलब सबसे पहले देखेगा, उसके बाद सबसे पहले समझेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड करेगा और साथ साथ उस पर एक्ट करेगा। ये सेंसर टू शूटर साइकिल बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे नेटवर्क्स, हमारे डेटा जो हैं ठीक हों, ताकि उस पर हम अल्गोरिथमिक अल्गोरिथम चलाकर डिसीशन को जल्दी से जल्दी ले सके।
0: आज तक की सुरक्षा सभा में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल कृष्णा राम स्वामीनाथन ने भी शिरकत की। इस दौरान लहरों के सिकंदर सेशन में उन्होंने भारतीय नौसेना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात की। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने देश की सुरक्षा में नेवी की भूमिका, उसकी शक्ति, आधुनिक तकनीक से लेकर नौसेना की चुनौतियों पर अपने विचार रखे।
3: समुद्र सुरक्षा हर भारतीय की सुरक्षा और देश की समृद्धि सबसे जुड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में ही कहा था, जिस देश का समुद्र सामर्थ्य जितना मजबूत होगा उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव उतना ही सशक्त होगा। यही मैरिटाइम पावर का सार है, सुरक्षित समुद्र, सक्षम भारत। लेकिन आज समुद्र पहले से कहीं अधिक कॉन्टेस्टेड है। दुनिया की इकोनॉमी समुद्र पर निर्भर है और इसलिए समुद्र में पैदा हुआ संकट समुद्र तक ही सीमित नहीं रहता। रेड सी और वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट्स ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया है। एक मैरिटाइम क्राइसिस कितनी तेज़ी से सप्लाई चेन्स, एनर्जी सिक्योरिटी और आम भारतीय के जीवन को प्रभावित कर सकता है, हमने हाल में ही इसको देखा है। हम शायद कॉन्फ्लिक्ट से दूर रह सकते हैं, परंतु ग्लोबल इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड होने की वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस से दूर कभी भी नहीं रह सकते। एक एलपीजी कैरियर 45 से 50,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ सकता है, या लगभग 32 से 35 लाख डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स का बराबर है। अर्थात समुद्र से आने वाला एक जहाज करीब 5 लाख भारतीय परिवारों का एक साल की कुकिंग गैस की ज़रूरत पूरा कर सकता है। तो जब हम ये कहते हैं कि नेवी समुद्र की सुरक्षा रखती है, तो इसका अर्थ केवल ये नहीं कि हम किसी जहाज की सुरक्षा सिर्फ एक जहाज की रक्षा कर रहे हैं। हम भारत की इकोनॉमी की रक्षा कर रहे हैं, हम सप्लाई चेन्स की रक्षा कर रहे हैं, हम करोड़ों भारतीयों का जीवन की निरंतरता की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए विकसित भारत 2047 की चर्चा में मैरिटाइम पावर को सेंटर में रखना आवश्यक है। भारत का भविष्य केवल उसकी सड़कों, शहरों और आसमान में नहीं लिखा जाएगा, उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्र पर भी लिखा जाएगा, और इस भविष्य को सुरक्षित रखने में भारतीय नौसेना की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हाल में ही कहा, भारतीय नौसेना भारत की मैरिटाइम पावर का अहम मैनिफेस्टेशन है।
0: आज तक के मंच सुरक्षा सभा में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे ने भी चीन को लेकर बड़ा दावा किया। 1962 के भारत और 2026 के भारत का फर्क भी समझाया।
4: जब भी चाइना की बात होती है, हम इनवेरिएबली 1962 ही नहीं, हम थोड़ा उससे पीछे जाके सरदार पटेल की बात भी याद करते हैं, जब उन्होंने एक चेतावनी दी चीन को लेकर। आज जब हम 2026 में उसी रिश्ते को देख रहे हैं, क्या आप एक बेहतर, एक मोर मच्योर्ड रिलेशनशिप देखते हैं? क्योंकि आपने फॉरेन मिनिस्टर की भी बात की, जो बार बार कहते हैं इस बात को कि बातचीत के साथ रास्ता निकलेगा, लेकिन बातचीत की मेज पे भी हम तभी तक स्ट्रांग हैं जब तक हमारी सेना, और हमारी सेना को जो हासिल हो पाता है उसके बेस पे हम लोग इन टर्म्स पे बात कर सकते हैं। क्या हम वही 62 वाले हालात की बात करते हैं, वही मिसट्रस्ट, या चीजें वाकई बदली हैं?
5: अभी 62 की कहानी अभी बहुत पुरानी हो गई, अभी उसका हमें जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे जब जैसे गलवान के हम बात कर रहे हैं, तो हमने ना सिर्फ गलवान में लेकिन उससे पहले भी डोकलाम में, सिक्किम में, 67 में कई बार उनको दिखाया हुआ है कि हम जो हमारी जो काबिलियत है, मिलिट्री काबिलियत, वो अभी वो पुराने वाली नहीं रही, और जो पॉलिटिकल विल है वो भी पुराना वाला नहीं है। तो दोनों अगर आप जोड़े तो अभी हम एक बहुत ही स्ट्रांग देश है, और जो बाउंड्री प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच में, इसका अभी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये तो भूल जाए, वो भी भूल जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आर्मी चीफ के हैसियत से, लेकिन कई मैंने इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड किए हैं जहाँ के फॉरेन जो कॉरेस्पॉन्डेंट है, फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भी ये कहा है ऐसे ही सभा में कि मिलिट्री सोल्यूशन टू द बाउंड्री इशू इज नॉट पॉसिबल। और उनका इशारा साफ चीन के तरफ था कि हम तो नहीं कर रहे मिलिट्री सोल्यूशन, वो चीन कोशिश कर रहा है कि एक मिलिट्री सोल्यूशन करे, तो वो तो अभी नहीं हो पाएगा। अभी जो हमारी जो क्षमता है वो इस दर्जे तक पहुंच गई है कि वो नहीं हो पाएगा। तो अगर मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है तो सोल्यूशन हैज़ टू बी थ्रू टॉक्स। और हमारे जो रिश्ते हैं चीन और हमारे बीच में, दैट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन 3 म्यूचुअल्स, वंस अगेन जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल इंटरेस्ट। जब तक ये म्यूचुअल नहीं होगा, अगर वो चीन यही समझेगा कि वो जो करना चाहे वो करेगा, या उनके कहने के इशारे और या उनके इशारे पर या वो जो चाहते हैं उसी तरीके से हमारी कार्रवाई होगी, तो ऐसे नहीं है। तो हमारा भी अभी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इस स्तर पर पहुंच गया है कि वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम थ्रू टॉक्स। और इसीलिए अभी जो स्पेशल SR स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के जो टॉक्स हुए वो एक कदम इसी के तरफ है।
0: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: Papa!
10: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
9: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
10: छक्का?
9: सब कैशलेस हो गया
10: है। हाँ ला भाई मेरा बैट,
9: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
10: चार्ज हुआ यार,
11: बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: और वही कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जेके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जेके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जेके मैक्स।
1: जेके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
1: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
1: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
1: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ, ओ ले ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: बिजोटे चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: एयू सोच बदलो और बैंक भी।

0: और वही कहाँ गए थे घूमने?
1: जीके मैक्स।
2: खाना कहाँ से मंगवाया?
1: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
3: जीके वॉल मैक्स।
1: बेस्ट प्राइमर
4: जीके मैक्स।
1: बेस्ट पेंट
4: जीके मैक्स।
1: जीके मैक्स। बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स।
2: यार ये फिटनेस के लिए क्या करूं?
1: जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: एयू करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: अरे आओ।
4: वो असत्य निकेतन ही रहा होगा, वो भ्रष्टाचार बेईमानी और आपराधिक लापरवाही के ईंटगारों से बनी कोई इमारत ही रही होगी। दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में आर के पूरम इलाके के पास दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के पीजी की तरह काम कर रहा हॉस्टल डेज हॉस्टल डेथ सिर्फ इसीलिए नहीं बना क्योंकि इमारत ही कमजोर थी। ये इमारत इसलिए गिरी क्योंकि एमसीडी के अधिकारियों से लेकर शासन प्रशासन की नीयत भी कमजोर थी। 3 मंजिला इमारत गैर कानूनी तरीके से 5 मंजिला कैसे बनी? बेसमेंट में खुदाई हुई, पानी भरा, तब शासन भी धृतराष्ट्र बना बैठा था और प्रशासन भी। जरूर रविवार के हादसे के बाद जवाबों की तलाश कर रहे सरकारी तंत्र ने बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल को भिवाड़ी से पकड़ लिया है, लेकिन पीजीडीएवी कॉलेज के छात्र अक्षत सिंह यादव की जिंदगी का मोल कैसे चुकाया जा सकेगा? कैसे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के छात्र अर्पित के परिवार वालों के टूटे सपनों को फिर जोड़ा जा सकेगा? जिन 7 युवा जिंदगियों को सिर्फ पढ़ने के लिए देश की राजधानी में रहने की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ी, उसकी भरपाई कैसे हो सकेगी? सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली के एलजी से लेकर मुख्यमंत्री तक मौके पर पहुंचे थे। हादसे पर एक्शन के नाम पर दिल्ली नगर निगम में साउथ जोन के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, साउथ जोन के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रणवीर सिंह, साउथ जोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ललित कुमार, साउथ जोन के असिस्टेंट इंजीनियर सुनील चौहान और साउथ जोन के जूनियर इंजीनियर आशीष कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन यहां सवाल सिर्फ कुछ लोगों पर कार्रवाई करने भर का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था से है जो सबक नहीं लेती। सत्य निकेतन में बॉयज का हॉस्टल डेज ढह गया, लेकिन उसी इलाके में ऐसी और भी खतरनाक इमारतें हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में पढ़ने आए देश के हजारों छात्रों के लिए एक अदद छत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना मजबूरी है।
5: अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे? उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
6: ये सत्य निकेतन में आप जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं सब बिल्डिंगें जर्जर, इनकी कोई ये कभी भी गिर सकती है। इसमें सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार इन बिल्डिंगों की स्थिति देखकर इन्हें सील करे।
7: ये पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं और ऐसी 6-6 मंजिल 5-5 मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी?
5: यहाँ के सारे बिल्डिंग्स में ये है ना कि यहाँ पिलर्स नहीं है। लाइक इनिशियली उन्होंने सोचा होगा कि अपने लिए घर बना रहे हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट से घर बना दिए, उसके बाद उसके ऊपर दोबारा एक फ्लोर, इसलिए यहाँ पे मतलब बिल्कुल सपोर्ट नहीं है किसी बिल्डिंग में।
8: तार यहाँ बारिश में पानी भरना और बिल्डिंग्स की हालत, तो अभी जब आप किसी चीज को सोचते हो जब वो सच में आपके आगे हो जाती है तो एकदम से दिल कहीं ना कहीं घबरा जाता है।
4: हादसों के बाद शासन प्रशासन वादे हर बार करता है, इस बार भी हुआ है। पूरी दिल्ली में अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया गया है और हादसे के पास के सभी पीजी और इमारतों की जांच की जा रही है। अगर वाकई में किसी हादसे के बाद कोई बख्शा नहीं जाता है तो शायद अगला हादसा इंतजार नहीं करता, मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। आज तक ब्यूरो

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत सेना, आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में दो और गिरफ्तारी, बिल्डिंग मालिक के बाद पत्नी और बेटा भी गिरफ्तार, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। बिल्डिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार एमसीडी डी और एजेंसियों को नोटिस। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंचे एसआई टीम ने किया निरीक्षण, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। और बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर तक पानी ही पानी, तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब ढाई महीने बाद अब जब चार्जशीट दाखिल करने का वक्त आ गया है, तब पुणे पुलिस ने केतन मर्डर केस की साजिश में शामिल होने के इल्जाम में 22 साल के एक लड़के रितेश को गिरफ्तार किया है। रितेश सिया और चेतन का दोस्त है। पुणे पुलिस के मुताबिक रितेश को पहले से मालूम था कि केतन का कत्ल होना है। यहाँ तक कि कत्ल के अगले दिन खुद चेतन ने रितेश को सारी जानकारी दी थी। पुणे पुलिस को यह भी पता चला है कि पहले केतन का सिर्फ हाथ पांव तोड़ने का इरादा था ताकि शादी टल जाए, लेकिन आयन वक्त पर प्लान बदल दिया गया।

0: केतन अग्रवाल की मौत के अगले दिन तक सब यही मानकर चल रहे थे कि ये एक हादसा था। केतन लोगढ़ किले की पहाड़ी से फिसल कर नीचे जा गिरा और उसकी मौत हो गई। अलबत्ता तीन लोग ऐसे थे जो सच जानते थे, क्योंकि ये वही तीन थे जिन्हें केतन की मौत की जगह, तारीख और शायद वक्त पहले से मालूम था। इसीलिए केतन की मौत के अगले दिन यानी 19 जून को सिया और चेतन व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए एक तीसरे शख्स से बात कर रहे थे, और वो तीसरा शख्स था रितेश हाने। 22 साल का रितेश, जो स्कूल के दिनों से चेतन का दोस्त था। चेतन और सिया मैसेज पर रितेश को बता रहे थे कि 18 जून की सुबह लोगढ़ किले पर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और केतन कैसे मारा गया। ये सब कुछ चैट पर हो रहा था, यानी रितेश को केतन के कत्ल की छोटी से छोटी जानकारी भी मालूम थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही केतन के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 23 जून को चेतन और सिया को गिरफ्तार किया, उससे आयन पहले चेतन ने अपने सारे मैसेज डिलीट कर दिए। उनमें रितेश से बातचीत का वो मैसेज भी था जिसमें केतन के कत्ल की डिटेल बताई गई थी। पुणे पुलिस ने तभी चेतन और सिया के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए थे। इसके बाद डिलीट किए गए डेटा और चैट को रिट्रीव करने के लिए उसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इस बीच सिया और चेतन से पूछताछ के दौरान इस बात का खुलासा हो गया था कि केतन के कत्ल की जानकारी एक तीसरे शख्स को दी थी और वो रितेश था। पुलिस ने तब रितेश से पूछताछ भी की, लेकिन रितेश के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, क्योंकि वो 18 जून को सिया और चेतन के साथ लोगढ़ किले भी नहीं गया था। उस दिन उसकी मौजूदगी कहीं और थी, लिहाजा पुलिस ने रितेश को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन शुक्रवार यानी 4 सितंबर को फॉरेंसिक लैब से केतन का फोन आ गया, सारे डिलीटेड मैसेज वापस मिल गए। उन्हीं मैसेज को जब पुलिस ने पढ़ा तो साफ हो गया कि रितेश न सिर्फ पहले से केतन के कत्ल की बात जानता था, बल्कि उसे यह भी पता था कि सिया और चेतन उसे मारने जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद रितेश चुप रहा, यानी केतन के कत्ल की साजिश में वो भी पूरी तरह शामिल था। इसी के बाद पुलिस ने रितेश को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 12 सितंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।
1: इस केस में जो तीसरा आरोपी है रितेश हांगेहा, जो मुख्य आरोपी है चेतन चौधरी, उसका दोस्त है, उसका कॉलेज का दोस्त है, और चेतन चौधरी और सिया गोयल का आपस में जो रिश्ता था या उनका जो भी ये प्लानिंग चल रही थी, तो पहले दिन से इसको पता थी, क्योंकि उन्होंने रितेश हांगे के साथ ये सारी घटनाक्रम अपने जीवन का और उसके साथ साथ वो क्या करना चाहते थे जो विक्टिम है उसके साथ, वो डिस्कस किया था।
0: पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक चेतन का दोस्त होने के नाते सिया भी रितेश को अच्छे से जानती थी, तीनों अक्सर मिला करते थे। रितेश हांगे बीड जिले का रहने वाला है और पुणे के बालेवाड़ी इलाके में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। पुणे पुलिस के मुताबिक रितेश को चेतन और सिया की पूरी साजिश के बारे में बहुत पहले से पता था। 18 जून को भी सिया और चेतन ने रितेश केतन को मारने के लिए उनके साथ लोगढ़ किला चलने को कहा था, लेकिन रितेश डर गया और वो उनके साथ नहीं गया।
2: पुणे की ग्रामीण पुलिस जब चेतन और सिया इन दोनों की तहकीकात कर रही थी, इंट्रोगेशन चल रहा था, तब उसमें व्हाट्सएप चैट का जिक्र हुआ। जब फॉरेंसिक के पास इनके मोबाइल चले गए तो उसमें से कुछ डिलीट किए हुए व्हाट्सएप चैट्स रिकवर किए गए, और उन्हीं से ये कंफर्म हुआ कि रितेश हांगे और एक ऐसा इसमें आरोपी है जिसे अब इस पूरे मामले में 12 सितंबर तक पुलिस कस्टडी मिल चुकी है, वो भी इसमें को अक्यूज है, जिसकी बात चल रही थी। और ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ पता था, अहम बात यह है कि वो खुद इसमें को अक्यूज है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स रिकवर करने के बाद और फॉरेंसिक डेटा एनालिसिस करने के बाद जितना कुछ रिकवरी हुई है उसमें यह साफ तौर से क्लियर हो गया कि रितेश हांगे भी वन ऑफ द को अक्यूज है। वो खुद इस कॉन्स्पिरेसी में था, वो खुद इनके साथ बैठ के प्लान कर रहा था, लेकिन जब लोहगढ़ पर जाने की बात आई तो उसने एन मोमेंट पर ना भर दी।
0: पुलिस सूत्रों के मुताबिक सगाई के बाद सिया या चेतन का चेतन को मारने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही शादी की तारीख का ऐलान हो गया दोनों परेशान हो गए। सिया चाहती थी कि शादी की तारीख किसी तरह टल जाए, मगर दोनों के घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। तब पहली बार सिया, चेतन और रितेश ने केतन को नुकसान पहुंचाने की पहली साजिश रची। साजिश ये थी कि केतन के हाथ पैर तोड़वा दिए जाए, ऐसी सूरत में शादी अपने आप टल जाएगी। मगर इस साजिश को पूरा करने में दिक्कत ये थी कि केतन के हाथ पांव तोड़ेगा कौन, काम जोखिम भरा था और भेद खुल जाने का डर भी, लिहाजा इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया।
2: केतन अग्रवाल हत्या मामले में चार्जशीट दाखिल होने से पहले ही एक नया खुलासा हुआ है। चेतन चौधरी और सिया का एक दोस्त है, जो दोस्त इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में था, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शुरू में जो कहा जा रहा था कि उसे सिर्फ इस पूरे मामले की इंफॉर्मेशन थी, अब ये सीधे तौर पर दिख रहा है कि वो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, वो भी सिया और चेतन के साथ इसकी कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब जब तहकीकात ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अगले हफ्ते में चार्जशीट जानी है, तब पुलिस का यह कहना है कि इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की भी बात सोची गई थी। शुरू में जब ये तीनों दोस्त मिले, केतन अग्रवाल की हत्या करने का सोच रहे थे, तब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए इन्होंने एक तर्क लगाया था। इनका कहना था कि अगर शादी से पहले किसी ऐसे गैंग को या फिर किसी ऐसे ग्रुप को हम बुलाते हैं जो आके केतन अग्रवाल का एक्सीडेंट कर दे या फिर उसे मारपीट करे, तो ये शादी 6 से 8 महीने आगे जा सकती है, और इसी को लेके अब तहकीकात आगे बढ़ेगी।
0: फिर सिया और चेतन ने सीधे केतन को मार डालने का ही फैसला किया। इस बारे में दोनों ने रितेश से बात भी की, यहाँ तक कि रितेश के साथ ये भी बातचीत की कि केतन को कैसे मारा जाए। फिर जब आखिर में लौगढ़ की पहाड़ी से धक्का देने की बात आई, तब रितेश भी इस बातचीत में शामिल था। लेकिन कत्ल वाले दिन यानी 18 जून को रितेश ने बहाना बना दिया और वो चेतन के साथ लौगढ़ किले नहीं गया। इतना ही नहीं, 18 जून को सिया, चेतन और रितेश ने एक दूसरे को कोई फोन या मैसेज न करने की भी एक दूसरे को हिदायत दे रखी थी, ताकि किसी को उन पर शक न हो।
1: शुरुआत में उन्होंने उसको बॉडीली हार्म करने की प्लानिंग की थी, इसलिए उन्होंने एक थर्ड किसी पर्सन की हेल्प लेने के लिए भी एफर्ट्स किए, जिसका एविडेंस हमारे सामने आया है। और फिर उसके बाद उन्होंने विचार किया कि किसी और को इन्वॉल्व करने की वजह से खुद किया जाए, तो खुद की प्लानिंग उन्होंने की। तो शुरुआती में ये जो आरोपी है, पहले तो वहाँ इन्वॉल्व है कि ये थर्ड पर्सन की शोध में है उनके साथ, जो विक्टिम को बॉडीली सिवियर हार्म कर पाए। और उसके बाद जब ये खुद करने का डिसीजन करते हैं, उस समय भी ये जो आरोपी है वहाँ से अलग नहीं होता है, उनके साथ ही उसी प्लानिंग में शामिल है। और वो कब गए, कहाँ गए, देखने गए, क्या क्या प्लानिंग किया, करने के बाद फिर चेतन चौधरी उसको मिलने आता है, ये सारी चीज़ों में उसकी शमूलियत है। इंट्रोगेशन में कुछ चीज़ें हमारे सामने आई थी, उसके आधार पे हमने उसका स्टेटमेंट भी लिया था।
0: 18 जून को पहाड़ी से गिरकर केतन की मौत की खबर आते ही सिया घर वालों से घिर चुकी थी। शाम तक ये खबर केतन, सिया और उनके परिवार को जानने वालों तक भी पहुंच चुकी थी। इसी के बाद अगले दिन यानी 19 जून को रितेश ने चेतन को मैसेज कर केतन की मौत की पूरी जानकारी ली। चेतन ने मैसेज में वो सारी बात बताई जो 18 जून को हुआ था। चेतन और रितेश के बीच का ये मैसेज चैट इस केस में एक अहम सबूत साबित हो सकता है।
1: कभी कोई भी आरोपी रहता है तो जब उसको प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो पूरे उत्तर कभी नहीं देता। तो जितनी उसने अपूर्ण माहिती दी थी, वहां से हमें कुछ सस्पिशन शुरू हुई थी। फिर उस सस्पिशन को हमने वेरीफाई करने के लिए जो साइबर फोरेंसिक्स है तो उसकी मदद ली, और वहां से जो हमारे सामने कुछ इंफॉर्मेशन आई उसमें इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस दिखाई दिया, और इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई के तला उसको अरेस्ट किया जाए।
0: पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक रितेश की गिरफ्तारी और बरामद चैट के बाद सिया और चेतन के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं, जो उन्हें सजा दिलाने में काफी अहम साबित होंगे। हालांकि रितेश 18 जून को उस लौगढ़ किले की पहाड़ी पर खुद मौजूद नहीं था जहां से केतन को धक्का दिया गया, लेकिन केतन के कत्ल की साजिश की उसे पहले से ही सारी जानकारी थी, इसीलिए इस साजिश में शामिल होने की वजह से उसे भी आरोपी बनाया गया है। पुणे पुलिस केतन मर्डर केस में 16 सितंबर से पहले चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी पूरी कर चुकी है। असल में पुलिस को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने की उम्मीद है। केतन के परिवार ने पहले ही कहा है कि उनकी तरफ से सीनियर वकील उज्जवल निगम केस लड़ेंगे। खुद उज्जवल निगम ने भी आज तक से बातचीत में इस बात की पुष्टि की थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि वो केस में पैरवी चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही करेंगे।
3: मैं मुंबई में था, ये इन्होंने कुछ अर्जी दी उनके पास, उसके पिताजी ने, चेतन के,
4: अग्रवाल साहब,
3: केतन के पिता ने तो अर्जी दी, तो सीएम साहब का फोन आया, उज्जवल जी इनकी मांग है आप ऐसा का। अभी इतने बड़े हाई प्रोफाइल मैटर सीएम साहब विश्वास रखते हैं, तो मैंने कहा हाँ करूंगा, तो मैंने एक्सेप्ट मॉरली तो कर दी है। ये केस में मैं चार्जशीट दर्ज होने के बाद अपीयर होऊंगा,
4: 3 महीने बाद।
3: हाँ, 3 महीने के बाद।
0: उधर सिया और चेतन पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में बंद है। हालांकि पुलिस हिरासत के दौरान पूछताछ में दोनों लगातार केतन के कत्ल की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते रहे, पर अब रितेश की गिरफ्तारी के बाद दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुणे पुलिस सूत्रों की माने तो केस को मजबूत करने के लिए रितेश को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है, क्योंकि इस मामले में कोई चश्मदीद नहीं है और पूरा केस ही सरकमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य सबूतों पर खड़ा है। ऐसे में रितेश का सरकारी गवाह बनना केस में अहम मोड़ साबित हो सकता है, क्योंकि कत्ल से पहले और कत्ल के बाद की सारी जानकारी खुद सिया और चेतन ने रितेश को दी थी। ओमकार वाबले, पुणे, आज तक। अंकित बालियान शूटआउट केस में फरार शूटर सत्यम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ये ऐलान किया कि अभी 2 मर्डर और होने हैं। हालांकि ये मर्डर किसके होने हैं इसका उसने खुलासा नहीं किया। इस बीच गोगी गैंग के भोलू शाह पुरिया ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला है। इस पोस्ट में उसने कहा है कि जिन 2 शूटरों यानी सुमित और मोहित का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया, असल में उन दोनों को 30 अगस्त की रात अमृतसर में एक होटल के बाहर से उठाकर शामली लाया गया और फिर उन दोनों को मार दिया गया।
5: अंकित बालियान मर्डर केस के 4 शूटरों में से एक शूटर ये भी है, नाम है सत्यम कादियान। 26 अगस्त की शाम शामली में 2 मोटरसाइकिल पर 4 शूटर सवार थे। एक मोटरसाइकिल पर सवार ये मोहित और सुमित हैं। 31 अगस्त की सुबह शामली में एक एनकाउंटर में ये दोनों यूपी पुलिस के हाथों मारे गए। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार ये बाकी के 2 शूटर हैं, सत्यम कादियान और आर्यन। पिछले 12 दिनों से सत्यम और आर्यन दोनों फरार हैं। यूपी पुलिस की एसटीएफ और स्वाट की तमाम कोशिशों के बावजूद ये दोनों हाथ नहीं आए, इसलिए दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। लेकिन कमाल देखिए, फरार शूटर सत्यम भागते हुए भी सोशल मीडिया के जरिए धमकी दे रहा है, धमकी 2 और मर्डर करने की। पिछले हफ्ते से सत्यम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये सत्यम की आवाज है। इस वीडियो में वो कहता है कि अभी 2 मर्डर और करने हैं भाई, बचा सको तो बचा लो, मारेंगे ही मारेंगे। ये रहा वो वीडियो।
6: आने वाले समय में भाई 2 मर्डर हो गए, ये 2 ठीक है।

0: गायब कर दिया जाएगा अगर तू अपने आप में आने वाले समय में वही दो मर्डर।
1: हालांकि इस वीडियो में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि दो मर्डर किसके करने हैं, वो कौन लोग हैं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद रविवार को सत्यम के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक और वीडियो आया है जिसमें ये कहा गया है कि वापसी होगी फिर उसी अंदाज में। वेट एंड वॉच। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि ये दोनों वीडियो सत्यम की तरफ से ही जारी किया गया या नहीं, क्योंकि सत्यम के नाम से अब तक इंस्टाग्राम के अलग अलग अकाउंट से कई वीडियोस सामने आ चुके हैं।

0: कोई।
1: कुछ पोस्ट को तो पुलिस ने हटा भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद यूपी पुलिस ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया है। इसीलिए अंकित बालियान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बाकायदा पुलिस वालों को 24 घंटे घर वालों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। इस बीच यूपी पुलिस की टीम लगातार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और गुजरात में सत्यम और आर्यन की तलाश में जुटी हुई है। उधर गोगी गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर पिछले हफ्ते एक और पोस्ट डाला गया। इस पोस्ट की भाषा और ऊपर गोगी ग्रुप का लोगो एक जैसा है। ये पोस्ट गोगी गैंग के भोलू शाहपुरिया की तरफ से डाली गई है। इस पोस्ट में भोलू शाहपुरिया ने सनसनीखेज दावा किया है। उसका दावा है कि अंकित बालियान शूटआउट में शामिल 4 शूटरों में से 2 शूटर मोहित और सुमित को यूपी पुलिस ने 31 अगस्त को अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के करीब एक होटल से उठा लिया और फिर शामली ले जाकर दोनों को मार डाला। ये रही पूरी पोस्ट।
2: राम राम सभी को। मैं भोलू शाहपुरिया आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो दोनों भाई सुमित और मोहित का शामली पुलिस द्वारा एनकाउंटर बताया जा रहा है, ये एनकाउंटर नहीं हत्या है। इसे 30 अगस्त की रात को पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल के पास होटल से उठाया और शामली में लाकर इनकी हत्या कर दी। जो कोई भी भड़काऊ या उकसाने वाली पोस्ट सोशल मीडिया पे फ्रेम के लिए डाली जा रही है, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और जो अंकित को निर्दोष बताया जा रहा है, ये निर्दोष नहीं था।
1: सुमित और मोहित का एनकाउंटर 31 अगस्त की सुबह करीब 4 बजे शामली में ठीक उसी जिम से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ था, जिस जिम के करीब 26 अगस्त को अंकित बालियान को मारा गया था। इस एनकाउंटर पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि अंकित बालियान के शूटआउट के 5 दिन बाद 2 शूटर मोहित और सुमित वापस शामली क्यों आएंगे। भोलू शाहपुरिया का ये पोस्ट इसलिए भी सवाल खड़े करता है क्योंकि अंकित बालियान के दोनों शूटरों के एनकाउंटर के बाद 31 अगस्त को ही यूपी पुलिस के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इतना ही नहीं, यूपी एसटीएफ के चीफ और शामली के एसपी ने भी मीडिया से बात की थी। तब उन्होंने अंकित बालियान शूटआउट को लेकर भोलू शाहपुरिया के उस पहले पोस्ट का जिक्र किया था जिसमें उसने अंकित बालियान के कत्ल की जिम्मेदारी ली थी।
3: अभी इसमें एक अपराधी जो भोलू, जिसने क्लेम किया था, जिसके नाम से भोलू शाहपुरिया है, शाहपुर तुर्क का सोनीपत का है, उसमें 1 लाख रुपए का रिवार्ड हरियाणा से पूर्व से घोषित है। ये यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर में वांटेड चल रहा है और सोनीपत में सिंगल मर्डर में वांटेड चल रहा है। अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है वो। चचेरा भाई उसका जो है वो कनाडा में है, वो पूरा पोस्ट करता है। इवन जो 26-27 की रात में जो पोस्ट इंस्टा पे आया था, इसमें क्लेम किया था इन लोगों ने हत्या करने की, वो पोस्ट हरियाणा कनाडा से ही आई थी वो। और इसका एक मोंटी मान करके है जो गोगी का चचेरा भतीजा है, वो अमेरिका में उन लोग प्रॉपर तरीके से जिसलिए सपोर्ट लोग करते हैं। एक बड़ा गैंग है ये।
4: विवेचना में इस हत्याकांड के पीछे गोगी गैंग से जुड़े नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। 26-27 अगस्त को सोशल मीडिया पर राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया के द्वारा उससे जुड़े इंस्टाग्राम अकाउंट से हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और इसकी जांच भी विवेचना का एक हिस्सा है, जिसकी जांच की जा रही है।
1: अब सवाल यह है कि अगर यूपी पुलिस ये मानती है कि भोलू शाहपुरिया का ये पोस्ट सही है, तो फिर सवाल ये भी उठेगा कि भोलू शाहपुरिया के दूसरे पोस्ट में जिस तरह उसने मोहित और सुमित को अमृतसर से उठाकर शामली लाने और फिर मार देने की बात की है, उसकी सच्चाई क्या है। हालांकि ये भी सच है कि भोलू शाहपुरिया खुद एक अपराधी है और इस वक्त पुलिस के शिकंजे से दूर है, तो जाहिर है उसके दावे पर कोई जांच होगी, इसकी उम्मीद कम है। इस बीच यूपी पुलिस अंकित बालियान के शूटआउट की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को यह पता चला है कि अंकित बालियान के शूटआउट के लिए इशारा बेशक भोलू शाहपुरिया ने दिया हो, लेकिन पूरी साजिश को अंजाम जेल में बैठे गोगी गैंग के 2 गुर्गों ने दिया। इनमें से एक है राकेश पंपू, जो इस वक्त करनाल जेल में बंद है, जबकि दूसरा रोहित मोई तिहाड़ जेल में बंद है। यूपी पुलिस सूत्रों के मुताबिक हथियार से लेकर जरूरी लॉजिस्टिक इन्हीं लोगों ने मुहैया कराए। यूपी पुलिस राकेश पंपू के पूछताछ की तैयारी में है। बहुत मुमकिन है कि उसे ट्रांजिट रिमांड पर शामली लाया जाए, इस बात की खबर राकेश पंपू को भी है। इसलिए बीते हफ्ते राकेश पंपू ने करनाल जेल, हरियाणा जेल के आईजी, शामली के एसपी और यहां तक कि यूपी के डीजीपी के नाम एक लेटर भी लिखा है। इसमें उसने 7 मांगे रखी हैं। राकेश पंपू को डर है कहीं पूछताछ के नाम पर करनाल जेल से निकालने के बाद उसका एनकाउंटर न कर दिया जाए, लिहाजा उसने कुल 7 मांगे रखी हैं। इनमें करनाल जेल से निकालने से लेकर वापस लाने तक पूरे रास्ते की वीडियोग्राफी, पूरे सफर के दस्तावेज, हथियारबंद पुलिस वालों की सुरक्षा और जरूरत पड़ने पर उसे हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ कर ले जाने की मांग शामिल है। ये राकेश पंपू का वही लेटर है। हालांकि यूपी पुलिस इस बात को भी पता करने की कोशिश में जुटी है कि भोलू शाहपुरिया सचमुच कनाडा में ही है या फिर पिछले 3 सालों से भारत में छुपकर अपना गैंग चला रहा है। दरअसल तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि अंकित बालियान के शूटआउट के बाद भोलू शाहपुरिया के नाम से जो पहली पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली गई वो उसके एक रिश्तेदार पंकज की तरफ से डाली गई थी। पंकज कनाडा में है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि क्या भोलू शाहपुरिया कनाडा में बैठे पंकज के नाम पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डलवा कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं कर रहा कि वो कनाडा में है। अब आइए आपको अंकित शूटआउट के बारे में जल्दी से बता देते हैं। ये वारदात 26 अगस्त को हुई थी जब शाम को शामली के मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर के बाहर अंकित बालियान को घेर कर गोगी गैंग के 4 शूटरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और उनकी जान ले ली। अंकित बालियान जिम से बाहर निकले थे, काली टी शर्ट और लोअर पहने यही अंकित बालियान है। हाथ में भूरे रंग का जिम बैग भी है। वो जिम से निकलकर अपने काले रंग की स्कॉर्पियो में जाकर बैठे और तभी हमलावरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अंकित का कत्ल करने के बाद सारे शूटर हवा में हथियार लहराते हुए मौकाए वारदात से भाग निकले।
0: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल 4 शूटरों में 2 शूटरों को शामली पुलिस और यूपीएसटीएफ की टीमों ने मार गिराया, लेकिन अभी भी इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 शूटर आर्यन संधु और सत्यम का ध्यान फरार हैं। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है और यूपीएसटीएफ और शामली पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से लेकर तमाम राज्यों में छापेमारी कर रही हैं, खाद छान रही हैं, लेकिन दोनों शूटर हत्थे नहीं चढ़ रहे। वहीं दूसरी तरफ इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड टोरंटो में बैठे गोगी गैंग के संचालक भोलू शाहपुरिया पर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। अब भोलू शाहपुरिया 1 लाख रुपए का इनामी है। इतना ही नहीं, इस हत्याकांड में मददगार और साजिशकर्ता के तौर पर शामिल 2 और गोगी गैंग के सदस्य चिराग और मिंटू पर भी पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इनके लिए भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए भारत सरकार को रिपोर्ट भेज दी है।
1: शामली से शरद मलिक के साथ संतोष कुमार, लखनऊ आज तक।
5: तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: और इस वक्त बड़ी और अहम खबर आ रही है, सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुख्य आरोपी को। राजस्थान से इसे गिरफ्तार किया गया है और आपको ये भी बता दें कि पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बेटे को जिसके ऊपर रखरखाव की जिम्मेदारी थी उसे भी गिरफ्तार किया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी हरिराम बंसल को भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में जानकारी है कि पूरी बिल्डिंग पत्नी के नाम थी, रखरखाव इसका बेटा करता था और संचालन और बाकी का काम हरिराम के हाथ में था। इस हादसे के बाद ये तीनों ही फरार हो गए थे राजस्थान से। पुलिस ने हरिराम को गिरफ्तार किया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी हरिराम बंसल को भेजा गया है, जबकि जो इसका बेटा है उसको और इसकी जो पत्नी है उसे भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की नए भारत की बात, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर सस्पेंड। बिल्डिंग हादसे पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, सरकार एमसीडी रियो और एजेंसियों को नोटिस। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। और बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर तक पानी ही पानी, तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।

0: पालघर में डॉक्टर से मारपीट पर एकनाथ शिंदे का सख्त एक्शन। शिवसेना सिटी चीफ राहुल गराट पार्टी से निष्कासित, बोले डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ पर हमला किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। मुंबई में 10 लाख से ज्यादा की नकली करेंसी बरामद हुई, हाई क्वालिटी 500 के जाली नोटों की बड़ी खेप जब्त की गई। जांच एजेंसियां नेटवर्क और सप्लाई चेन को खंगालने में जुटी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में तीसरा आरोपी रितेश हांगे, 12 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में, आगे की जांच जारी। एसपी का बयान, केतन को गंभीर रूप से घायल या अपाहिज करने की साजिश भी रची गई थी ताकि सिया की प्रस्तावित शादी को रोका जा सके, डिलीट व्हाट्सएप चैट से खुलासा। नागपुर में 300 रुपए के आधार कार्ड की जन्म तारीख बदलकर नाबालिगों को पबों में एंट्री, एआई की मदद से उम्र बढ़ाने का फर्जी बाड़ा, दो गिरफ्तार पब मालिक भी फरार। महाराष्ट्र में हो रहे पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर हजारों छात्र निकले सड़कों पर, पुणे में एमपीएससी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग, जवाबदेही तय करने के लिए जोरदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी कल से वडोदरा, नवसारी और मुंबई के दौरे पर, 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 अहम सेक्शन होंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवसारी दौरे को तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, देश का पहला एआई तकनीक से लैस आधुनिक कमलम तैयार। आईएनएस सुदर्शनी ने स्पेन के बार्सिलोना में पोर्ट कॉल पूरा किया। लोकायन 26 अभियान के तहत भारतीय नौसेना की सेल ट्रेनिंग शिप का दौरा, स्पेनिश नौसेना और समुद्री अधिकारियों से हुए पेशेवर संवाद। बार्सिलोना में आईएनएस सुदर्शनी पर हुआ डेक रिसेप्शन, भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों ने जहाज में मुलाकात की, भारत स्पेन समुद्री संबंधों को मजबूती मिली। आशा भोसले की जयंती पर एआर रहमान पेश करेंगे आशा फॉरएवर, दिवंगत गायिका को खास श्रद्धांजलि। एआई के जरिए तैयार होगा वो सेलिब्रेशन जिसे आशा जी के साथ जीवंत देखने का सपना था। महज 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है। देश में 150 करोड़ के पार पहुंचा है कलेक्शन, 31वें दिन 22 करोड़ से ज्यादा की नेट कमाई का दावा। हनुमान अंश ने धुरंधर, छावा और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह दिल्ली से बाहर, गुजरात के एकता नगर में आयोजित, राष्ट्रपति मुर्मू देंगी पुरस्कार, 23 सितंबर को संभावित है आयोजन। मनोज तिवारी की बेटी रीति की बिग बॉस में एंट्री हुई है, मजाक के अंदाज में बोले सलमान खान, पिता की तरह नहीं खेलना शो। चीनी की लागत से करीब 20% बढ़ने से मिठाई बिस्किट कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। प्याज और पेंट के भी महंगे होने के बाद इस बार त्यौहार में महंगाई का बजट का तगड़ा वार। इस बार के त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी 1.5 लाख करोड़ के पार जाने का अनुमान है। इस रिकॉर्ड को बनाने में छोटे शहरों का सबसे बड़ा योगदान। आरबीआई के नियम के तहत मर्चेंट री केवाईसी की डेडलाइन, 15 सितंबर से पहले पेमेंट कंपनियों ने ज्यादा समय मांगा है। समय पर री केवाईसी न होने से करीब 10 लाख छोटे कारोबारियों पर क्यूआर पेमेंट प्रभावित होने का डर है। अगस्त में कुल वाहन बिक्री 17.5% से बढ़कर 24.23 लाख यूनिट्स पर पहुंच गए। पहली बार पैसेंजर व्हीकल में सीएनजी हाइब्रिड ईवी की हिस्सेदारी पेट्रोल से आगे निकली। इस हफ्ते शेयर बाजार में 12 कंपनियां आईपीओ लाकर करीब 7,180 करोड़ रुपए जुटाएंगी। इसके बाद आने वाले दिनों में एनएसई और जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के जरिए रकम जुटाने के लिए रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। गणेशोत्सव की तैयारियों के बीच मुंबई में डीजे और ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। नागपुर में डीजे पर रोक की खबर के बाद पूरे राज्य में एक समान नीति लागू करने की मांग की जा रही है। तो एक तरफ सरकार कानून के तहत कार्रवाई की बात कह रही है तो दूसरी तरफ गणेश मंडल उत्सव की परंपरा का हवाला दे रहे हैं। और इधर आपको बता दें कि एआईएमआईएम ने हिंदू और मुस्लिम त्योहारों में नियमों में भेदभाव के आरोप लगाकर फडणवीस सरकार पर सवाल उठाए हैं।
1: महाराष्ट्र में पूरे साल गणेशोत्सव का इंतजार होता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गणेश महोत्सव पास आते ही तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण पर बहस छिड़ गई है। नागपुर में डीजे पर रोक के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या पूरे राज्य में एक ही नियम लागू होगा। प्रशासन कार्रवाई का भरोसा दे रहा है, जबकि गणेश पंडालों का तर्क है कि उत्सव के माहौल के लिए संगीत जरूरी है। विपक्ष भी फडणवीस सरकार से सवाल पूछ रहा है कि हिंदू और मुस्लिम त्योहारों में डीजे के नियमों पर फर्क क्यों होता है।
2: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कोई भी त्योहार हो, महाराष्ट्र में परंपरा और संस्कृति के तहत मनाना चाहिए। आपकी क्या आपत्ति?
3: देखिए बिल्कुल महाराष्ट्र के अंदर गणपति का त्यौहार है, बनाना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ बनाते हैं हमारे हिंदू भाई, बनाई अच्छी बात है। और सरकार ने जो डीजे था उसका टाइम भी एक्सटेंड कर दिया, 12 बजे तक कर दिया, अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ 12 बजे को 1 बजे तक करिए, सबको त्यौहार खुशी बनाने का अधिकार है। पर मेरा सरकार से सवाल है, मेरा सरकार के हिपोक्रेसी के ऊपर सवाल है। त्यौहार सबको बनाने का अधिकार है, संविधान इक्वालिटी की बात करता है, रूल ऑफ लॉ सब पे लागू होता है। जो कायदा जो कानून फडणवीस जी पे लगता है वही कायदा कानून वारिस पठान के ऊपर भी लगता है। तो जब हमारा कुछ त्यौहार आता है तो हमको तो 10 बजे के अंदर बोलते बंद कर दो, रात माइक लेके चला जाएगा, लाउडस्पीकर लेके चला जाएगा। इतना ही नहीं, हमारा अजान जो है ना 1400 साल से दी जा रही है, अजान लाउड स्पीकर पे दी जा रही थी पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर के अंदर, मगर कुछ ये भाजपा का ही नफरती चंटू गए, मिनारत पे चढ़ चढ़ के हमारे लाउड स्पीकरों को उतार दिया। क्या बोल के, अजान से नॉइस पोल्यूशन होता है।
1: महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री मेघना बोर्डीकर ने डीजे के शोर से जुड़े अपने घर के हादसों का जिक्र करते हुए चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पिछले गणेशोत्सव में उनके चचेरे भाई की मौत डीजे के तेज शोर की वजह से हुई थी। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के मानकों का पालन करने की अपील भी की।
4: मैंने खुद मेरे भाई को खोया है, उतना ही नहीं अभी तक 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ। शादी के टाइम भी एक मेरे बहुत नजदीकी थे, उनका 28 साल का बेटा डीजे के आवाज पे शादी में बारात में नाच रहा था, तो डीजे के कारण उसका भी वहां पे डेथ हुई थी। और हमने देखा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पुष्टि की है कि लाउड साउंड ये लोगों को लोगों के शरीर पे उसका इफेक्ट होता है, जैसे कि बहरापन आ सकता है, और जिसका कमजोर अगर हृदय है तो वो भी उसको हर्ट कर सकता है।
1: वही कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार नागपुर के साथ राज्य भर में डीजे पाबंदी पर गोलमोल जवाब देते नजर आ रहे हैं।
5: माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने भूमिका सरकार की स्पष्ट की है, राज्य सरकार ने निर्णय पण केलाय, कायदा पण केलाय, तो कायदा आणि निर्णय डीजेतना आणि डीजे संदर्भातला स्वयं स्पष्ट आहे, प्रशासन त्याच्यावर कारवाई करते, पण कुठलाही कायदा निर्णय आणि त्यामध्ये जनतेची सहभागिता आणि समर्थन आवश्यक असते, ते चर्चेतून आणि सामोपचारातून निघतं, तो सामोपचारातून निर्णय कार्यान्वयित होण्याला आपल्या सगळ्यांची सहभागिता हवी आणि ते सर्व मंडळ आणि नागरिक करतील।
1: दूसरी ओर ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सक्रिय सोशल एक्टिविस्ट सुमेरा अब्दुल अली ने इस विवाद में राजनीतिक दखल पर सवाल उठाए हैं।
6: आप कोई भी प्रोसेशन या के मंडल देखो तो उसके ऊपर पॉलिटिकल बैनर्स रहते हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, और इससे साफ पता चलता है कि उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, कमर्शियल इंटरेस्ट भी है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है। और लोग कंप्लेन करते हैं तो पुलिस कहते हैं कि त्यौहार का दिन है, कुछ नहीं कर सकते हैं, या कि उनको जवाब नहीं मिलता है। और कभी कभी, जैसे कि मुझे हो चुका है, कभी कभी हम पे हमला भी होता है। इंडिविजुअल कंप्लेंट्स करो तो ये कहा जाता है कि यू आर अगेंस्ट आवर रिलीजन और यू आर अगेंस्ट समथिंग, जबकि इसमें रिलीजन की बात ही नहीं आती है।
1: गणेशोत्सव से ठीक पहले डीजे का यह मुद्दा अब सिर्फ आवाज की सीमा तक सीमित नहीं रहा। अलग अलग शहरों में असमान नियम, मंडलों की मांग और आम जनता की सेहत के सवालों ने इसे राज्यव्यापी मुद्दा बना दिया है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर पूरे महाराष्ट्र में डीजे पर कानूनी रूप से पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सकता तो फिर नागपुर में रोक किस आधार पर लगाई गई?
7: या विषयावरती त्या दिवशी मुख्यमंत्री काय बोलले मला अजून नाही कळलं। माझी बातमी जर चुकीची नसेल तर नागपुरात डीजे बंद झालंय, बाकी महाराष्ट्रामध्ये आहे। याच्यावरती मुख्यमंत्री सांगतायत कायद्याने आम्हाला बंदी नाही आणतायत, मग नागपुरात कसं बंद झालं? याचं कारण तुम्ही डीजेच्या वादात गुंता, डॉल्बीच्या वादात गुंता, तुम्ही हेच बोलत रहा सतत, बाकीच्या सगळ्या गोष्टींकडे तुमचं दुर्लक्ष होऊ देत।
1: ये सच है कि उत्सव की आजादी और उत्साह अपनी जगह है, लेकिन आवाज की सीमा भी तय होनी जरूरी है। सवाल है कि क्या पूरे महाराष्ट्र में डीजे को लेकर एक समान नियम बनेंगे? अगर नागपुर में रोक लग सकती है तो बाकी शहरों के लिए क्या व्यवस्था होगी? गणेशोत्सव से पहले सरकार के सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ है।
2: डीजे बंदी की इस मांग ने पूरे महाराष्ट्र में अब एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या परंपरा का उत्सव और जनता की सेहत के बीच कोई नया संतुलन बन पाएगा? अब देखना ये होगा कि क्या गणेशोत्सव से पहले सरकार कोई स्पष्ट और एक समान नीति लाएगी या फिर ये विवाद त्योहारों का रंग यूं ही फीका करता रहेगा। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: महाराष्ट्र में नवरात्रि के दौरान गरबा और डांडिया आयोजनों में मुसलमानों की एंट्री को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। विश्व हिंदू परिषद ने आयोजकों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और गैर हिंदुओं की पहचान करने की बात भी कही गई है। इनमें आधार कार्ड चेक करने और माथे पर तिलक लगाने जैसे सुझाव भी शामिल हैं। बीएचपी ने कहा है कि नवरात्रि देवी की पूजा का पर्व है, इसीलिए मुस्लिम्स को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने इसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने की कोशिश बताया है। AIMM नेता वारिस पठान ने भी कहा है कि मुसलमानों को ऐसे आयोजनों में जाने की जरूरत नहीं है जहां उनकी पहचान को लेकर सवाल उठाए जाएं।
8: घटना हॉस्पिटल में हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे घटनाओं को शिवसेना समर्थन नहीं देगी। डॉक्टर को मारपीट करना, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मारपीट करना, ये गलत है।
9: समुदाय की मूर्ति पूजा यानी बुद्ध परिस्थिति में यकीन नहीं रखते हैं, जो बुद्ध परिस्थिति को हराम मानते हैं और दोजग में जाएंगे ऐसे कहते हैं दो मूर्ति पूजा करने वाले, बुद्ध परिस्थिति करने वाले। वैसे लोग श्रद्धा से तो आते नहीं हैं और इससे पहले भी पूर्व में भी कई बार ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पर बहन बेटियों के साथ छेड़खानी, उपद्रव करना, वहाँ पर किसी प्रकार के न्यूसेंस और फैलाना, ये भी पूर्व में देखा गया है। तो और जो मूर्ति पूजा नहीं करते, बुद्ध परस्ती नहीं करते, वंदे मातरम नहीं बोलते ये लोग, ये भारत माता के जय नहीं बोलते, तो क्यों यहाँ आना? अगर इनको श्रद्धा है तो तिलक लगाएं, हाथ में कवलावा पहने और इनके अपने श्रद्धा स्थान, इनके अपने पूजा आराध्य स्थानों पर ये नवरात्रि का आयोजन करें। और केवल अकेले क्यों आते हैं ये? हर बार अपनी बहन बेटी माता इनको भी लेके आना चाहिए, ये आते नहीं है।
10: कौन है हमें हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाले? कौन है ये लोग? बात यही है, मुंबई में गरबा हो, नवरात्रि हो, दहीहंडी हो, गणपति हो, सारे लोग पहली आइडेंटिटी इनकी, यहाँ आप देख रहे हैं सब मुंबईकर है। कोई भी भाषा के हो, कोई भी प्रांत के हो, धर्म के हो, जाति के हो, बापा के लिए आते हैं ये, कोई लोग कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं आते, बापा ये सबका है।
11: कि वो मुसलमान को जाने की जरूरत ही क्या है वो गरबे में? क्यों उतना बेगैरती अख्तियार करना जहाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है, जहाँ मारा जाए, फटकारा जाए, आई कार्ड दिखा, ये दिखा, इसी जगह जाना ही नहीं चाहिए पहले तो। और इस्लाम भी इसकी इजाजत नहीं देता कि आप जाइए किसी भी रास गरबा के अंदर, डांडिया रास खेलिए आप, नहीं है इस्लाम के अंदर नहीं है ये। मगर फिर भी कुछ लोग जाते हैं, मार पड़ती है, नहीं जाना चाहिए। मगर वहीं पर मैं ये कहना चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद को, देश किसी के बाप के मुल्क की जागीर नहीं है। यहाँ सब मिलजुल के सब त्यौहार बनाते हैं, सब कल्चरल मल्टी कल्चर यहाँ पे ये चलता है रिवाज। आप कौन होते हो डिक्टम निकालने वाले? आधार कार्ड दिखा, ये दिखा, वो दिखा, ये देश में नफरत फैलाना बंद कर दो आप लोग। ये दादागिरी धांधली से देश नहीं चलेगा। चलो किसी ने इन्वाइट दे दिया, कार्ड भेज दिया कि आपको आना पड़ेगा एज अ गेस्ट, वहां गए तो क्या करेंगे आप? तो इनको तो सोचना चाहिए इस तरह के बस बयानबाजी कर देना। मैं तो मुसलमान से अनुरोध करूंगा कि भाई साहब अदबंद रिक्वेस्ट है कि जिस जगह पे इज्जत ना मिले, जिस जगह पे इस तरह से बोला जाए, धतकारा जाए, फटकारा जाए, उस जगह पे नहीं जाने में ही भलाई है।
0: और उधर महाराष्ट्र के पालघर में डॉक्टर्स के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपी शिवसेना नेता राहुल घरत को गिरफ्तार कर लिया है। पालघर कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भी भेजा है। वहीं FIR में नामजद सभी 10 आरोपी आज पालघर पुलिस थाने में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे हिंसक लोगों पर नकेल कसने को कहा है, जिसके बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी आरोपी नेता पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल शनिवार की बात है ये, जब दहीहांडी उत्सव के दौरान घायल हुए गोविंदाओं की टोली अस्पताल ले जाई गई और वहां डॉक्टर्स से उनकी बहस होने के बाद वहां पहुंचे शिवसेना विधायक राजेंद्र गावित के बेटे रोहित और शिवसेना के कुछ और स्थानीय नेता अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने डॉक्टर्स के साथ जबरदस्त तरीके से मारपीट की और ये वीडियो वायरल हुआ था।
8: घटना हॉस्पिटल में हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे घटनाओं को शिवसेना समर्थन नहीं देगी। डॉक्टर को मारपीट करना, हॉस्पिटल के कर्मचारियों को मारपीट करना, ये गलत है। अगर उनकी कोई गलती भी होती होगी तो कानूनी कार्रवाई जो है उसका अवलंब करना चाहिए। कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमें वो करना चाहिए था, लेकिन कानून हाथ में लेना गलत है और जिन्होंने कानून हाथ में लिया है वो जहाँ वहाँ का शिवसेना का पदाधिकारी राहुल भरत है, उसके ऊपर शिवसेना भी कार्रवाई करेगी, उसको निलंबित करेगी, पार्टी में से निकाल देगी।
12: अभी जो हाल ही मामला आया है पालघर में कि दही हंडी के कुछ जो हमारे खिलाड़ी हैं वो वहाँ पर गए थे अपना उपचार कराने, अब डॉक्टर उनके बीच में कुछ कहा सुनी हुई तो इसमें शिवसेना के शहर प्रमुख, जिला अध्यक्ष ये सब जाके मारपीट कर रहे हैं, वहां पर हाथापाई कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्यों करते हैं आप? आपको कुछ आपत्ति है आप पुलिस से कहिए, पुलिस जाके उस मामले को देख लेगी। लेकिन हॉस्पिटल में घुस जाना, पिछले आपने महीने में देखा था कि डोंबिवली में एक कॉरपोरेटर ने कैसे मारपीट की थी डॉक्टरों के साथ, तो ये मारपीट करना, हिंसा करना, ये इन लोगों को शोभा देता होगा लेकिन डॉक्टरों के साथ मत कीजिए।
13: पालघर में शिवसेना पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज किया गया है और फिर से इन नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने एक अस्पताल में जाकर मारपीट की है। आपको बता दें कि शनिवार को दहीहंडी उत्सव में कुछ गोविंदा जो जख्मी हुए थे उन्हें रिलीफ हॉस्पिटल पालघर में भर्ती कराया गया था। वहां पर डॉक्टरों ने उन जख्मी गोविंदाओं को ये एडवाइस किया कि आप MRI CT स्कैन करवाएं, पर जो जख्मी गोविंदा थे वो स्कैन नहीं करवाना चाहते थे और उन्होंने डॉक्टरों के खिलाफ शिवसेना के नेताओं को शिकायत कर दी। उसके बाद शिवसेना के शहर प्रमुख राहुल घरात, शिवसेना के जिला प्रमुख कुंदन सनखे, शिवसेना MLA राजेंद्र गावित के बेटे रोहित गावित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रिलीफ अस्पताल पहुंच गए और वहां पर जाकर डॉक्टर और कर्मचारियों से झगड़ा करने लग गए।
0: साल 1975 में सुपर डुपर हिट फिल्म शोले के साथ एक धार्मिक फिल्म जय संतोषी माँ आई थी। शोले में सितारों के जमावड़े के बावजूद जय संतोषी माँ ने उस दौर में भी रिकॉर्ड कमाई कर डाली थी, नए कीर्तिमान बना डाले थे। आस्था कालम ये हो गया था कि लोग उन दिनों थिएटर में पहुंचते नंगे पांव। कुछ इसी तरह का क्रेज महज 2 करोड़ रुपए के बजट में बनी हुई फिल्म हनुमान अंश को लेकर भी देखा जा रहा है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब कोई फिल्म 5वें वीकेंड में 45 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर पाई हो और इसी कीर्तिमान के साथ हनुमान अंश का ग्रॉस कलेक्शन 150 करोड़ के पार पहुंच चुका है।
14: स्वामी हो तुम गाढ़ो नाता बाबा जी,
15: करना क्या चाहते हो?
16: राम जी के पास पहुंचना है।
15: बात है सन 1942 की, जब हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और मैं गढ़वाल की पहाड़ियों में रह रहा
14: था। राम नाम की खूंटी से।
16: बाबा जी ये मेरा बेटा है।
1: नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस पर मानो चमत्कार कर रही है, इसीलिए हनुमान अंश ने कमाई के मामले में ऐसा कीर्तिमान बना दिया है जो किसी भी फिल्म के लिए तोड़ना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। महज 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश का देश में कुल ग्रॉस कलेक्शन 150 करोड़ के पार हो गया है। 7 अगस्त 2026 को रिलीज हुई हनुमान अंश ने 31वें दिन बॉक्स ऑफिस पर 22 करोड़ 75 लाख का नेट कलेक्शन किया, जिससे देश में नेट कलेक्शन 125 करोड़ के पार हो गया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 5वें वीकेंड पर हनुमान अंश ने कुल 45 करोड़ 60 लाख रुपए का कारोबार करके कमाई के मामले में नया इतिहास रच दिया है। अब हनुमान अंश हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने 5वें वीकेंड में इतनी ज्यादा कमाई की है। हनुमान अंश से पहले 5वें वीकेंड में धुरंधर ने 35 करोड़ 80 लाख, छावा ने 22 करोड़, पुष्पा ने 2 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया था।
0: विशाल चतुर्वेदी की हनुमान अंश एक नया रिकॉर्ड बनाने की कगार पर है। जी हाँ, इस फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर चुका है। बहुत ही छोटे बजट पे बनी ये फिल्म, सिर्फ 2 करोड़ रुपए में बनी थी और आज जाकर ये

0: है, नीम करोली बाबा के जर्नी के पे बेस्ड है, और कहीं ना कहीं ये फिल्म की ना जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। जब रिलीज हुई थी तो बिल्कुल 2 हफ्ते तक ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे थे, स्क्रीन्स काफी कम थे, एंड सडनली तीसरे हफ्ते से जो इस फिल्म ने एक जंप ली है वो बहुत ही एक रिमार्केबल एक अचीवमेंट कहला सकता है।
1: बजट की तुलना में कमाई की बात करें तो इस फिल्म को बॉलीवुड की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म माना जा रहा है। फिल्म को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने हनुमान अंश का दूसरा पार्ट बनाने का ऐलान भी कर दिया है। हनुमान अंश ने पहले दिन महज 10 लाख की कमाई की थी। पहले 2 हफ्तों में ये केवल 1 करोड़ 48 लाख रुपए कमा सकी थी, लेकिन बाद में फिल्म के गाने वायरल हुए और वर्ड ऑफ माउथ यानी फिल्म देखकर आए लोगों ने इसका खुद प्रचार किया, जिसके बाद सिनेमा घरों में दशकों बाद किसी धार्मिक फिल्म का क्रेज देखा जा रहा है।
2: और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के साथ राज्य मंत्रियों के 3 घंटे तक पीएमओ में बैठक चली है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है क्योंकि राज्य मंत्रियों के साथ मंथन किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। लगभग 3 घंटे लंबी मैराथन बैठक हुई है। तमाम जो कामकाज है उसे लेकर चीजों को डिस्कस किया गया है। तो प्रधानमंत्री के सामने जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने अपने कामकाज का ब्यौरा पेश किया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये 3 घंटे लंबी बैठक है, कैबिनेट रिशफल की भी बातें सामने आ रही हैं, तमाम जो ब्यौरा है कामकाज का उन्हें दिखाया प्रधानमंत्री को, वो सब बताया गया है, और क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई?
2: कामकाज का ब्यौरा मांगा गया, उनसे पूछा गया कौन से योजनाओं पे आप जो है काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनसे कहा गया कि जो भी आप काम कर रहे हैं, आपके मंत्रालय की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचनी चाहिए, और कोई भी योजना अगर आप बना रहे हैं तो आपको 2047 में भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है इसको ध्यान में रख के आपको करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा 2047 में आपका 47 के विकसित भारत के लिए आपका विजन क्या है। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने साफ साफ सभी मंत्रियों से पूछा कि आपकी सोशल मीडिया पे एंगेजमेंट क्या है और किस तरीके से सोशल मीडिया पे आप जो है एंगेज रहते हैं और अपने मंत्रालय के कामकाज को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं सोशल मीडिया पे के माध्यम से। इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 2 दर्जन से ज्यादा एमओएस और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों के साथ बैठक की।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। तो मंत्रालयों में कामकाज और सुधार को लेकर चर्चा हुई है, मैराथन बैठक पीएमओ में चली है, प्रधानमंत्री ने तमाम राज्य मंत्रियों के साथ बात की है, योजनाओं को समय पर पूरा करना है, लोगों के बीच बने रहना है और उनका लाभ जनता को मिलना चाहिए, इन तमाम चीजों पर चर्चा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुकेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

दिल्ली बिल्डिंग हादसे में 7 मौत के बाद दिल्ली सीएम का बड़ा एक्शन, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया। हाईकोर्ट ने दिल्ली बिल्डिंग घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस। पकड़ा गया दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे की बिल्डिंग का मालिक हरिराम, राजस्थान की विभाड़ी से पुलिस ने दबोचा, घटना के बाद से फरार था। सत्य निकेतन हादसे मामले में बिल्डिंग के मालिक हरिराम की पत्नी और बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। हरिराम के नाम बिजली का कनेक्शन था, बेटा महेश बिल्डिंग का मैनेजमेंट देखता था, प्रॉपर्टी ऑन पेपर हरिराम की पत्नी उर्मिला के नाम थी। दिल्ली में कोचिंग हॉस्टल और पीजी की सुरक्षा जांच होगी। एलजी बैठक के बाद मंत्री आशीष सूद बोले, सभी विभाग मिलकर तय समय में जांच पूरी करेंगे, छात्रों के रेजिडेंशियल सुविधाओं का गैप भरने पर भी जोर। मुखर्जी नगर में यूपीएससी अभ्यर्थियों का रेंट माफिया के बीच गुजर बसर, जर्जर मकानों में रहने को मजबूर छात्र, 25,000 तक मासिक खर्च है, न किराया अग्रीमेंट न मकान मालिकों का अतापता। चोरी के डर से सहमे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, ब्रोकर ज्यादा किराया देने वाले मिलते ही कर देते हैं कमरा खाली, छात्रों का दावा इमारतों में पिलर तक नहीं है, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बिहार में 400 बिना रजिस्ट्रेशन वाले पीजी हॉस्टल चिन्हित किए गए, सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है पत्र, एसपी को कार्रवाई और संचालकों से अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराने के भी निर्देश। पीजी हॉस्टल्स पर पुलिस दीदी की हर महीने निगरानी, छात्रों से बातचीत कर सुरक्षा का लिया जाएगा फीडबैक, एडीजी बोले इमारतों की उम्र और सुरक्षा का ऑडिट भी जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा, नवसारी और मुंबई के दौरे पर, 35,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 अहम सेक्शंस होंगे राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवसारी दौरे की तैयारियां पूरी हुई, देश का पहला एआई तकनीक से लैस आधुनिक कमलम तैयार। हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद के बीच बीजेपी का 19 जिलों में सामाजिक सौहार्द संकल्प प्रदर्शन, हरिद्वार में कैबिनेट मंत्रियों समेत नेताओं ने दिया धरना। पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान, 6 अक्टूबर को नंदीग्राम और रेजीनगर सीट पर होगा उपचुनाव, 9 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद होने वाला कार्निवल बंद, सीएम सुवेंदु अधिकारी का ऐलान, ममता बनर्जी सरकार की पहल पर कोलकाता के रेड रोड पर होता था भव्य आयोजन। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए बुक माई शो पर फ्री रजिस्ट्रेशन खुलते एक घंटे में फुल हो गई सभी सीटें, 42,000 से ज्यादा लोग वेटिंग लिस्ट में हैं। पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुआ सार्वजनिक पंजीकरण। आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। आज तक पर जल थल नभ के धुरंधर सीडीएस एनएस सुब्रमणि ने बताया, मॉडर्न वॉरफेयर एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री की पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से अपील, नवरात्र में मांस मछली का बहिष्कार करें, नवदुर्गा में नॉनवेज खाने वाले पाखंडी, अब जाग जाएं पत्ता पत्ता वाला हिंदू। निशा आजाद के अपने घर पर हुए पथराव के दावे पर उठे सवाल, सोसाइटी के लोगों ने कहा यहां नहीं हुई ऐसी कोई भी घटना। आईएनएस सुदर्शनी ने स्पेन के बार्सिलोना में पोर्ट कॉल पूरा किया। लोकायन 26 अभियान के तहत भारतीय नौसेना की सेल ट्रेनिंग शिप का दौरा, स्पेनिश नौसेना और समुद्री अधिकारियों से पेशेवर संवाद। बार्सिलोना में आईएनएस सुदर्शनी पर डेक रिसेप्शन हुआ, भारतीय प्रवासियों स्थानीय लोगों ने जहाज और पर मुलाकात की और भारत स्पेन समुद्री संबंधों को मजबूती मिली। दुबई में एम कांग्रेस 2026 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए एमपी के सीएम मोहन यादव, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एमपी पवेलियन का उद्घाटन किया, वैश्विक निवेशकों के सामने प्रदेश की संभावनाओं को पेश किया। फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला आयोग का 2 दिवसीय कार्यक्रम, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहे मुख्य अतिथि, महिला अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में ओम बिरला ने आजादी से राष्ट्र निर्माण तक महिलाओं की भूमिका को बताया बेहद अहम, कहा विकसित भारत के लिए महिला सशक्तिकरण बड़ा जरूरी। पालघर में डॉक्टर से मारपीट पर एकनाथ शिंदे का सख्त एक्शन, शिवसेना सिटी चीफ राहुल घराट पार्टी से निष्कासित, बोले डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ पर हमला किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुंबई में 10 लाख से ज्यादा की नकली करेंसी बरामद हुई, हाई क्वालिटी 500 के जाली नोटों की बड़ी खेप जब्त की गई, जांच एजेंसियां नेटवर्क की सप्लाई चेन को खंगालने में जुटी। केतन अग्रवाल हत्याकांड में तीसरा आरोपी रितेश हांगे, 12 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में, आगे से जांच जारी। एसपी का बयान, केतन को गंभीर रूप से घायल है, अपाहिज करने की साजिश भी रची गई थी ताकि सिया की प्रस्तावित शादी रुक जाए, डिलीट व्हाट्सएप चैट से खुलासा। नागपुर में 300 रुपए के आधार कार्ड की जन्म तारीख बदलकर नाबालिगों को पबों में एंट्री, एआई की मदद से उम्र बढ़ाने का फर्जीवाड़ा, 2 गिरफ्तार, पब मालिक भी फरार। महाराष्ट्र में हो रहे पेपर लीक और गड़बड़ी को लेकर हजारों छात्र निकले सड़क पर, पुणे में एमपीएससी चेयरपर्सन के इस्तीफे की मांग, जवाबदेही तय करने के लिए जोरदार प्रदर्शन। प्रयागराज में 60,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी, शिक्षक सड़कों पर प्रदर्शन के लिए मजबूर।
प्रयागराज में टीजीटी और पीजीटी में पुरानी नियमावली लागू किए जाने की मांग पर छात्रों का आमरण अनशन थमने पर बैठे सैकड़ों छात्र। वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर फिर से धस गई है सड़क। जनकपुरी ईस्ट मेट्रो के पास करीब 12-15 फीट गहरा गड्ढा। ट्रैफिक बाधित स्थानीय लोगों ने सीवर लाइन की लापरवाही को वजह बताया। काठमांडू में हर जगह आपदा में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर। 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। बिहार की विनाशकारी बाढ़ पर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। 5 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की भी अपील। नवगछिया के ब्रह्मोत्तर बांध पर मडराया बाढ़ का खतरा। 4-5 जगह रिसाव में मचा हड़कंप। कई जगहों पर कटाव की वजह से गांव की ओर बढ़ रहा है पानी। नवगछिया के 3 टंगा दियारा में बाढ़ का खतरा। स्कूल, कॉलेज और पशु अस्पताल में पानी घुसा। बच्चों ने चूक को बनाया नाव। मुंगेर में भी बाढ़ का कहर जारी। थानाध्यक्ष का आवास और गाड़ियां भी डूबी। फरियादी के साथ साथ पुलिसकर्मियों की भी हो रही है परेशानी। कटिहार में बाढ़ पीड़ितों के बीच मेगा कम्युनिटी किचन चालू किया गया। पीड़ितों के लिए मेडिकल कैंप्स की भी सुविधाएं। लखनऊ में भीषण बारिश के बीच सड़क पर गिरा भारी भरकम नीम का पेड़। कार और स्कूटी चपेट में आई। 2 लोग बाल बाल बचे। कुछ देर यातायात बाधित हुआ। बागेश्वर में लगातार भारी बारिश के बाद राजमार्ग सहित 15 सड़कें बंद है। 3 दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा। एमपी के मुरैना में बाढ़ के पानी में फंस गया था एक साधु। राहत और बचाव की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने लौटने से इनकार किया। 24 घंटे की बारिश में स्मार्ट सिटी बरेली, बेहाल हुआ वीआईपी और रिहायशी इलाकों में कमर तक पानी है। घर दुकानों में घुस गया बारिश का पानी। बेगूसराय में बाढ़ का कहर बढ़ गया है। 5 नगर निगम वार्ड समेत 8 प्रखंडों के करीब 200 गांव प्रभावित। 4 लाख से ज्यादा आबादी पर संकट। जिला पुलिया से सीएम सम्राट चौधरी ने 5 सितंबर को किया था बाढ़ का निरीक्षण। वहां अब 4 फीट ऊपर बह रहा है पानी। पेयजल, शौचालय की समस्या से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए लोग। ग्रेटर नोएडा में स्कूल में घुसकर छात्रों को पीटा गया। वीडियो वायरल हुआ 12वीं के छात्रों से मारपीट। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। नवसारी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी। लाखों का नुकसान। वीडियो वायरल हुआ। मुंबई के दहिसर में कार में बोनट के अंदर मिला था अजगर। बोनट खुलते ही मच गई थी अफरा तफरी। स्नेक रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला। कानपुर में करोड़पति दवा कारोबारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। बहू निकली 6 लाख रुपए की सुपारी देकर ससुर की हत्या करने की साजिश करने वाली। नौकर समेत 2 की गिरफ्तारी। अलवर में बेकाबू कार ने 2 लोगों को कुचल डाला। मौके पर मौत हुई। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। झांसी में रील बनाने के जुनून में पहुंचाया अस्पताल। 30 फीट ऊंचे बांध से युवक ने छलांग लगाई। चट्टान से टकराया युवक। कुएं में गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई। हादसे में मां गंभीर रूप से घायल हुई। बदायूं में टेम्पो डंपर की टक्कर में पति पत्नी समेत 7 की मौत हुई है। सवारी घायल हुई। हादसे के बाद डंपर चालक फरार हुआ। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली में मणिपुर के रहने वाले शख्स की पीटकर हत्या। घर के सामने डिलीवरी बॉय और ढाबा कर्मचारियों के शोर शराबे और हंगामे के बाद विरोध किया और इसके बाद मारपीट शुरू हुई। गोरखपुर में अंतिम संस्कार में गए 2 वकीलों पर गिर गई बिजली। दोनों की मौके पर मौत हुई। बस्ती में दरोगा सुसाइड केस में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का आरोप है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बादा में बाढ़ सर्वे के नाम पर अवैध वसूली। हंगामे के बाद लेखपाल और मुंशी ने लौटाई रकम। इटावा में चलती डबल डेकर बस बन गई आग का गोला। 40 यात्रियों का लाखों का सामान खाक हुआ। हाईवे पर धू धू कर जलती हुई नजर आई बस। देश भर में गणेशोत्सव की धूम। भगवान की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कई जगहों पर विराजमान होने के लिए पांडालों तक पहुंचाई जा रही है मूर्तियां। राजकोट में भी गणेशोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। बंगाल के मूर्तिकार दीपक जाना 30 साल से राजकोट आकर बना रहे हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 9 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव शुरू हुआ। कलश यात्रा शुभारंभ। 15 सितंबर को निकलेगी भव्य नगर भ्रमण शोभा यात्रा। छत्तीसगढ़ के भिलाई का दिव्यांग शिक्षिका शारदा ने बनाया रिकॉर्ड। केवल 1.5 साल में ब्लाइंड बच्चों के लिए बनाया 3800 ऑडियो बुक्स। अकोला में भव्य पालकी कावड़ महोत्सव में पहुंचे उज्जैन के जूना अखाड़े के नागा साधु। त्रिशूल भस्म के साथ शिव भक्ति में लीन नजर आए। प्रयागराज में इको फ्रेंडली गणपति की बढ़ गई है डिमांड। पर्यावरण बचाने का संदेश। गणेश चतुर्थी को लेकर बनाई जा रही है गणेश प्रतिमाएं। राजस्थान के एक कारीगर परिवार पिछले 6 महीने से गणपति बप्पा की बना रहा है मूर्तियां। परिवार के 8 लोग मिलकर सैकड़ों मूर्तियां बना चुके हैं। गणपति बप्पा के आगमन का उत्साह जोर ऊपर है। दिल्ली में मूर्तिकार दिन रात गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे। चंद्रपुर में बच्चों ने खुद से बनाए बप्पा। मोबाइल से दूरी और मिट्टी से दोस्ती। शाडू मिट्टी के वर्कशॉप में करीब 60 बच्चों ने बनाई गणेश प्रतिमाएं। कश्मीर में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भव्य आयोजन। श्रीनगर में स्थानीय कलाकारों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 10 सितंबर तक चलेगा आयोजन। आशा भोसले की जयंती पर यार रहमान पेश करेंगे आशा फॉरएवर। दिवंगत
गायिका को खास श्रद्धांजलि। एआई के जरिए तैयार होगा वो सेलिब्रेशन जिसे आशा जी के साथ जीवंत देखने का सपना था। महज 2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। 150 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन। 31वें दिन 22 करोड़ से ज्यादा नेट कमाई का दावा। हनुमान अंश ने धुरंधर, छावा और पुष्पा 2 जैसी फिल्मों के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह दिल्ली से बाहर, गुजरात के एकता नगर में आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू देंगे पुरस्कार। 23 सितंबर को संभावित आयोजन। मनोज तिवारी की बेटी रीति की बिग बॉस में एंट्री, मजा के अंदाज में बोले सलमान खान, पिता की तरह नहीं खेलना शो। चीनी की लागत करीब 20% बढ़ने से मिठाई बिस्किट कंपनियों पर दबाव बढ़ गया है। प्याज और पेंट के भी महंगे होने के बाद इस बार त्योहार में महंगाई का बजट पर तगड़ा वार। इस बार के त्योहारी सीजन में ऑनलाइन खरीदारी 1.5 लाख करोड़ के पार जाने का अनुमान है। इस रिकॉर्ड को बनाने में छोटे शहरों का सबसे बड़ा योगदान। आरबीआई के नियम के तहत मर्चेंट री केवाईसी की डेडलाइन 15 सितंबर से पहले पेमेंट कंपनियों ने ज्यादा मांगा है समय। समय पर री केवाईसी न होने से करीब 10 लाख छोटे कारोबारियों को क्यूआर पेमेंट प्रभावित होने का डर है। अगस्त में कुल वाहन बिक्री 17.5% से बढ़कर 24.23 लाख यूनिट्स पर पहुंच गई है। पहली बार पैसेंजर व्हीकल में सीएनजी हाइब्रिड ईवी की हिस्सेदारी पेट्रोल से आगे। इस हफ्ते शेयर बाजार में 12 कंपनियां आईपीओ लाकर करीब 7,180 करोड़ रुपए जुटाएंगी। इसके बाद आने वाले दिनों में एनएसई और जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के जरिए रकम जुटाने के रिकॉर्ड्स को तोड़ेंगे। उमंग ऐप पर पीएफ खाताधारक आधार फेज ऑथेंटिफिकेशन के जरिए घर बैठे करेंगे यूएएन जनरेट या एक्टिवेट कर पाएंगे। इसके साथ ही पासबुक डाउनलोड और केवाईसी अपडेट जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। एप्पल 9 सितंबर के नए इवेंट में आईफोन 18 प्रो प्रो मैक्स के साथ अपना पहला फोल्डेबल आईफोन अल्ट्रा लॉन्च कर सकता है। रूस पर प्रतिबंध और यूएस की सप्लाई घटने से यूरोप का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन गया भारत। अगस्त में बाब अल मंदेब यू रूट से यूरोप जाने वाले डीजल में भारत की हिस्सेदारी 60% रही है। सरकार ने पिछले 10 दिनों में 17 शहरों में करीब 4,000 टन बफर प्याज 35 रुपए किलो के भाव में बेचा है। केंद्र के पास 2026 के लिए 1.21 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक मौजूद है। 12 सितंबर को होने वाले जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में अब 7 अक्टूबर को यह होगी। एक साल से ज्यादा वक्त के बाद होने वाली यह बैठक 12-13 सितंबर को दिल्ली में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से टल गई है। रूस के पामिर इलाके में यूक्रेनी ड्रोन से भीषण हमला हुआ। रिहायशी इमारत को बनाया गया था निशाना। हमले में 1 की मौत हुई, 4 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस ने भी जपोरोजिया में जबरदस्त बॉम्ब बरसाए। कीव और मॉस्को में अमेरिकी दूतों की बातचीत के बाद बड़ा बयान। पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत की संभावना, ये बताना जल्दबाजी होगी कि वार्ता कब और कहां होगी। नॉर्वे में सैन्य पर भड़काया रूस। क्रेमलिन ने कहा नॉर्वे की सैन्य तैयारियां रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। नॉर्वे में कई एडवांस तकनीकी मिसाइलें तैनात हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का बयान, हॉर्मुज में सुरक्षित मार्ग बनाने को लेकर ईरान और ओमान के बीच समझौता अंतिम चरण में है। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में यूएन परमाणु एजेंसी आईएईए ने ईरान को दिए सख्त चेतावनी का। अगर यूएन की परमाणु निगरानी संस्था उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव अपनाती है तो तेहरान भी वैसा ही जवाब देगा। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप नाउरू में यरूशलम ने खोला अपना पहला दूतावास। इसराइल के विदेश मंत्री और नाउरू के उपराष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला, 9 लोगों की मौत की खबर। 11 लोग घायल हुए, मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। रूस और उत्तर कोरिया में तुमेन नदी पर बने अपने पहले पुल का उद्घाटन किया। दोनों ही देशों ने इसे सामरिक साझेदारी का अहम हिस्सा बताया है। ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ बंदरगाह पर प्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। प्रवासी विरोधी प्रदर्शन की सरकार ने कड़ी निंदा की। जर्मनी के राज्य चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी की ऐतिहासिक जीत हुई है। 44% वोट हासिल करके बन गई सबसे बड़ी पार्टी। 43 सीटों वाली राज्य विधानसभा में एएफडी की ने 39 सीटों को अपने नाम कर लिया, लेकिन बहुमत से दूर है।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि जब दिल्ली में जर्जर और मौत के मुहाने पर खड़ी इमारतों से मालिक किराया कमाते हैं तो आंखें मूंदने के एवज में कौन कौन अधिकारी पैसे खाते हैं। दिल्ली के आर के पुरम इलाके में एक पीजी की बिल्डिंग गिर जाने से 7 छात्र और मजदूर सिस्टम की लापरवाही, कमजोरी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। फायर डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में हर रोज औसतन एक इमारत गिरती है। एक इमारत औसतन रोज गिरती है और पैसा खाकर मुंह बंद कर चुके अधिकारी इन हादसों को रोकने के बजाय सिर्फ नए हादसे का इंतजार करते हैं, क्योंकि हादसे को रोकने की अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को तो वो पहले ही अपनी जमीर के साथ पैसे की खनक पर नीलाम कर चुके होते हैं। दिल्ली में एक के बाद एक ढहती इमारतों को देखकर लगता है कि इन ऊंची ऊंची और दम घोटू इमारतों में मौत कभी भी मंजिल बनकर खड़ी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में इन काल कोठरियों से तमाम मालिक तो कमाते हैं, लेकिन वो कौन है जो इन पर ताला लगाने के बजाय इनसे पैसा खाते हैं। देखिए,

0: एमपी लेके गए हैं कटनी में और उनका वहीं अंतिम संस्कार होगा।
1: और इसके बाद आपको यूनाइटेड नेशंस के उस मानचित्र के बारे में बताएंगे जिस पर भारत के सम्मान के साथ सीधा और सख्त संदेश दिया है। जब यूएन में एक नए किस्म के ग्लोबल मैप पर बात चल रही थी तो भारत ने आपत्ति जताई और कहा कि हमारे नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे हिस्सों को बिल्कुल सही और आधिकारिक तरीके से ही दिखाया जाना चाहिए। भारत सरकार का साफ कहना है कि देश की सीमाओं और अखंडता से जुड़े मामलों में कोई भी लापरवाही या गलत नक्शा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद के बारे में बताएंगे जिसे रात में अचानक से गिरा दिया गया, जिसके बाद माहौल गर्म है। अब जब यहां बुलडोजर चला ढांचा गिरा तो उसके नीचे से एक पुराना प्राचीन कुआं निकल के आया है जिसने एक पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। अब लोग इस कुएं को अलग ही कहानी से जोड़ रहे हैं। और अगली खबर जो आपके स्वास्थ्य से सीधे जुड़ी हुई है, देश का दवा बाजार एक बार फिर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला सवालिया निशान लग गया है। ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की जांच में अब 199 ब्रांडेड दवाइयां हम खरीदते हैं ना, क्वालिटी टेस्ट में ये दवाइयां फेल हो गई हैं। कुछ दवाओं में तो असरकारक सॉल्ट की मात्रा 0 मिली है, मतलब जिस सॉल्ट से मान लीजिए बुखार उतरता है वो सॉल्ट उस दवा में है ही नहीं। कल्पना कीजिए हम लोगों की सेहत के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है। और इसके बाद आपको बताएंगे कि क्या राम मंदिर में फिर से चंपत राय का दखल शुरू हो गया है। 2.5 महीने के अंतराल के बाद चंपत राय मंदिर परिसर में लौटे। दावा है कि उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि कोई दिक्कत है तो उन्हें बताएं। इस वजह से उनके दखल और सक्रियता को लेकर फिर से कई सवाल उठने लगे हैं। जीडीपी के आंकड़ों पर विवाद के बीच इनकम टैक्स के आंकड़े नई कहानी कह रहे हैं। सीजीए और जीएसटी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जुलाई महीने के बीच कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी तीनों मोर्चों पर शानदार इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कॉरपोरेट टैक्स 20.83% बढ़कर 2,40,000 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि इनकम टैक्स पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 24.30% की जोरदार छलांग लगाते हुए 4,42,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके बाद आपको नेपाल और तिब्बत की सीमा पर चाइना के गेरोंग पोर्ट की नई तस्वीर दिखाएंगे जो 26 अगस्त को आई आपदा में बर्बाद हो गया है। ये कभी 5 मंजिला कस्टम हाउस हुआ करता था लेकिन अब यहां सिर्फ ग्रे ब्लैक कीचड़ और मलबे का मैदान बचा है। यहां राहत टीमें भारी मशीन्स, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स की मदद से शवों को ढूंढने में अभी भी जुटी हुई है। और अगली खबर अमेरिका के मायामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अमेज़न का प्राइम एयर विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर साइड में खड़ी गाड़ियों से टकरा गया है जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत का दावा है।

और आखिर में आपको भारत में जापान के राजदूत की तस्वीरें दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में जापान के राजदूत ऋषिकेश में गंगा नदी में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं।

0: लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन दो तस्वीरों से करना चाहते हैं। एक तस्वीर उस जर्जर इमारत की है जिसके मलबे में दबकर 7 छात्रों की मौत हो गई, और दूसरी तस्वीर इस इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता के उस आलिशान घर की है जो गुरुग्राम के पालम विहार में है। और इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तरफ एक ऐसी इमारत है जो कि जर्जर हालत में है, दीवारें शायद लंबे समय से मदद मांग रही थी, रहने वाले बच्चों को शायद हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर रात गुजारनी पड़ती थी, और दूसरी तरफ एक आलिशान बंगला, शायद उसके एक हिस्से में ही इस जर्जर पीजी जैसी मंजिला वाली जो इमारत है वो उतने हिस्से में ही आ जाती। लेकिन आज सवाल सिर्फ इस बंगले और इस बर्बाद इमारत का नहीं है, सवाल उन दो अलग अलग दुनिया का है जो इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। एक दुनिया उस व्यक्ति की है जिसके पास रहने के लिए आलिशान घर है, और दूसरी दुनिया उन बच्चों की है जो अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर कुछ सपने लेकर दिल्ली आए थे। कोई बिहार से आया होगा, कोई केरल से आया होगा, कोई उत्तर प्रदेश, राजस्थान, किसी दूसरे राज्य से आया होगा। जिस इलाके में सत्या निकेतन में यह घटना घटी है, अगर वहां पर जाइएगा, अनेकों घर, हर घर में, हर कमरे में 4-4, 5-5 बेड, और जब उन बच्चों से पूछेगा तो वाकई देश के कोने कोने से हजारों सपने सजोए 18 साल, 19 साल, 20 साल के बच्चे राजधानी दिल्ली आते हैं। उनके माता पिता ने शायद उन्हें स्टेशन पर छोड़ते वक्त यही कहा होगा कि बेटा पढ़ लिख कर कुछ बन जाना, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं था कि जिस छत के नीचे वो अपने बच्चे को छोड़कर जा रहे हैं वही छत एक दिन उसके ऊपर गिर जाएगी। सोचिए, इन बच्चों ने दिल्ली आने का फैसला इससे नहीं किया था कि इन्हें मौत मिले, वो यहां पढ़ने आए थे, डिग्री लेने आए थे, डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, आईएएस अफसर बनने आए थे, अपने परिवार की जिंदगी बदलने आए थे, अपनी मां की झोली में उसके हाथ में कुछ पैसे देने के काबिल बन जाएं, अपने बूढ़े मां बाप की लाठी बन सके, कुछ पैसा इकट्ठा करके हर रोज घर बेच सके। इसलिए इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपने घर का ऐशो आराम, अपने मां बाप के साथ 3 वक्त की अच्छे से खाना मिलना, उनका प्यार, सब कुछ छोड़कर दिल्ली, दूर राजधानी दिल्ली पहुंचे थे। लेकिन उनकी जिंदगी बदलने से पहले ही खत्म हो गई। और इसीलिए इन दो तस्वीरों के बीच का अंतर सिर्फ अमीरी और गरीबी का अंतर नहीं है, ये जिम्मेदारी और बेबसी का अंतर है। और यही हमारे शहरों की सबसे बड़ी विडंबना है। जो लोग इन शहरों को अपना भविष्य बनाने आते हैं उनके लिए अक्सर सबसे असुरक्षित जगहें छोड़ दी जाती हैं। छात्र हो तो पीजी, मजदूर हो तो झुग्गी, नौकरी पेशा लोग हो तो छोटी सी किराए की कोई जगह किसी घर में, टेढ़े मेढ़े मकान पर किसी कोने में 1 रूम 2 रूम। एक ऐसा बाजार है ये जिसमें कई बार इंसान की मजबूरी को ही सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल बना दिया जाता है। छोटे छोटे शहरों से आए लोगों की मजबूरी इन लोगों का बिजनेस मॉडल है। दिल्ली जैसे शहर में बाहर से आने वाला छात्र सबसे पहले क्या ढूंढता है? एक कमरा, एक बिस्तर, 4 दीवारें और एक ऐसी जगह जहां वो रात को सुरक्षित सो सके, सुबह उठकर अपने सपनों के लिए निकल सके और दिन में बैठकर पढ़ सके। लेकिन जब उसकी मजबूरी किसी दूसरे व्यक्ति की कमाई बन जाए तब सवाल सिर्फ किराया लेने का नहीं रह जाता, तब जिम्मेदारी भी आती है। और हमें लगता है कि अभी तो एक हरिराम गुप्ता जो है वो गिरफ्तार हुआ है, एक हरिराम गुप्ता, इस जैसे न जाने कितने हरिराम गुप्ता होंगे जिनके कारण कई छात्र और लोग जर्जर इमारतों में रहने के लिए मजबूर होंगे। देखिए,
1: अरे आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ, आओ
0: कहा जाता है कि चींटियों के झुंड में भी अगर कोई चींटी मर जाए तो बाकी चींटियां उसके आसपास जमा हो जाती हैं। यानी एक छोटे से जीव में भी अपनों के नुकसान को महसूस करने की एक प्रवृत्ति होती है। लेकिन इंसानों ने जो सबसे आधुनिक, सबसे विकसित, सबसे ताकतवर व्यवस्था बनाई है, उसमें शायद सबसे सस्ती चीज एक आम इंसान की जान ही बन गई है। कहीं पुल गिरता है, लोग मरते हैं, कहीं जर्जर इमारत गिरती है, परिवार खत्म हो जाते हैं, कहीं सड़क धंसती है, कहीं आग लगती है, कहीं भगदड़ मचती है, कहीं अस्पताल की लापरवाही जान ले लेती है। हर बार तस्वीर लगभग एक जैसी होती है। पहले हादसा होता है, फिर चीख पुकार होती है, फिर कैमरे पहुंचते हैं, फिर नेता पहुंचते हैं, फिर जांच समिति बनती है, कुछ अधिकारियों को निलंबित किया जाता है, फिर हमारा ये पूरा सिस्टम अगले हादसे तक आगे बढ़ जाता है। भूल गए लोग? हाँ हाँ भूल गए, काम पर लग जाओ। फिर वही चोरी चकारी। आज हम यही सवाल लेकर आए हैं कि क्या इस सिस्टम और सरकारों के लिए आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है, और कब वो दिन आएगा जब किसी हादसे के बाद नहीं बल्कि हादसे से पहले हमारी सरकारें कुछ करेंगी। और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि किसी भी देश की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं होती, उसकी पहचान इस बात से होती है कि उन इमारतों के नीचे खड़े सबसे आम इंसान की जान को वो कितनी कीमत देता है, उनकी जान कितनी सुरक्षित है। ये दीवारें देख रहे हैं आप, जिसको एक हाथ से उठाकर गिराया जा रहा है, इन्हीं दीवारों से बना दिया था पीजी जिसमें इन बच्चों को डाल दिया था। दिल्ली के सत्य निकेतन में जो हुआ उससे तो यही पता चलता है ना कि हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें उन घटनाओं से कुछ नहीं सीखती जिनमें आम आदमी मारा जाता है। आप इस बार इस दिल झकझोरने वाली तस्वीर को देखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस घटना को दिल्ली सरकार, नगर निगम और यहां तक कि स्थानीय विधायक कितनी आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, सोचे एक बार को, जिन माता पिता और परिवारों ने इस घटना में अपने बच्चों को खोया होगा, क्या गुजरी होगी उन पर, और क्या सरकार की जांच से इस मलबे में दबकर मारे गए बच्चे फिर से जीवित हो पाएंगे। ये पूरी घटना 6 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे के उस वक्त हुई जब दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 मंजिला इमारत अचानक जमींदोज हो गई।

सोचे एक बार को, जिन माता पिता और परिवारों ने इस घटना में अपने बच्चों को खोया होगा, क्या गुजरी होगी उन पर, और क्या सरकार की जांच से इस मलबे में दबकर मारे गए बच्चे फिर से जीवित हो पाएंगे। ये पूरी घटना 6 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे के उस वक्त हुई जब दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 मंजिला इमारत अचानक जमींदोज हो गई। ये वही इलाका है जहां कुल 299 इमारतें हैं, इनमें लगभग 200

ये पूरी घटना 6 सितंबर को दोपहर 1:30 बजे के उस वक्त हुई जब दिल्ली दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक 5 मंजिला इमारत अचानक जमींदोज हो गई। ये वही इलाका है जहां कुल 299 इमारतें हैं। इनमें लगभग 200 इमारतों को हॉस्टल और पेइंग गेस्ट यानी पीजी के रूप में इस्तेमाल। औसतन हर दिन एक से ज्यादा इमारत जर्जर होकर नहीं गिरती। ऐसी घटनाओं में औसतन हर महीने 3 लोग नहीं मारे जाते। अब ये देखिए कि इमारत गिरी कैसे। पुलिस का कहना है कि इस हादसे के वक्त बिल्डिंग के बेसमेंट में मरम्मत और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी मरम्मत के दौरान एक मुख्य पिलर यानी जो खंभा है वो अस्थिर हुआ और इससे पूरी इमारत एक तरफ झुक गई और ऊपर की 5 मंजिलें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। स्थानीय लोगों को ये भी उनका कहना है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में अक्सर पानी भरा रहता था। लगातार पानी का रिसाव और सीलन की वजह से इमारत की जो नींव है वो इतनी कमजोर हो चुकी थी जिसके कारण यह हादसा हुआ है। देखिए

0: संडे को 8:30 बजे पहुंचा दिल्ली, मम्मा को फोन लगाया, मम्मा मैं पहुंच गया। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मम्मा मैं 12 बजे फिर फोन लगाया, मम्मा मैं खाना खाने जा रही हूँ। उसके बाद में दोस्त ने फोन लगाया कि जहाँ हरप्रीत जा रहता है वहाँ बिल्डिंग गिर गई है।
1: एमपी लेके गए हैं कटनी में और उनका वहीं अंतिम संस्कार होगा।

0: क्या बेचारा हमारा बेटा चले भी गया।
1: सोशल मीडिया के माध्यम से जो एडमिशन स्लिप वायरल हुई उसका नाम हम तब हम लोगों को थोड़ा ये कंफर्म हुआ, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया था कि वास्तविक उसकी डेथ हो गई है।

0: को संडे को 8:30 बजे पहुंचा दिल्ली।
1: अब यहां हम आपको एक बार फिर से इस ग्राफिक्स के जरिए ये समझाना चाहते हैं कि आखिर ये पूरी घटना हुई कैसे और क्यों ये छात्र बच सकते थे। देखिए, हमने एआई की मदद से बनाया है पूरा ग्राफिक्स, जिसमें अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो ये पूरी बिल्डिंग 17 मीटर से ज्यादा ऊंची थी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक मेडिकल शॉप यानी दवाइयों की दुकान चल रही थी और उसके ऊपर कुल 4 मंजिलें बनी हुई थी। इन्हीं 4 मंजिलों पर एक पीजी यानी पेइंग गेस्ट था, जिसमें हर मंजिल पर 4 कमरे बने थे और उन 4 कमरों में कुल 10 बेड थे। इसका मतलब यह हुआ कि एक छात्र को रहने के लिए इस पीजी में ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ग फुट जगह मिलती है, 40 वर्ग फुट, जबकि इससे ज्यादा जगह तो एक कब्र को नसीब हो जाती है। लेकिन इस पीजी में छात्रों को भेड़ बकरियों की तरह किराए के नाम पर, और वो भी कह रहे थे कम किराए के नाम पर, ठूस दिया गया था और ये छात्र किसी तरह वहां रहने भी लगे। अब यहां सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि यह इमारत 50 साल पुरानी थी, काफी जर्जर हो चुकी थी। इसका मुख्य हिस्सा यानी ग्राउंड फ्लोर से लेकर तीसरी मंजिल तक का निर्माण साल 1970 से 1980 के बीच बना था। इसके बाद 1997 में इसके बेसमेंट का हिस्सा और तीसरी मंजिल का बाकी निर्माण किया गया, और इनमें भी जो बेसमेंट था वहां लगातार पानी भरा रहता था, जिसके कारण पानी का रिसाव हो रहा था और पानी के रिसाव और सीलन की वजह से इमारत की नींव जो है वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, और ऊपर से इस बिल्डिंग का मालिक ग्राउंड फ्लोर पर कुछ मरम्मत का काम करा रहा था। अब हुआ यह कि इसी मरम्मत के दौरान इस इमारत का एक मुख्य पिलर यानी खंबा अस्थिर हो गया, जिससे पूरी लोड बेयरिंग संरचना का संतुलन बिगड़ा।

0: पड़ गया और ऊपर की पांचों मंजिलें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये बिल्डिंग बिना किसी आरसीसी फ्रेम के केवल 4.5 इंच की पतली ईंट की दीवारों पर टिकी हुई थी। इतनी कमजोर दीवारें कि ये पांचों मंजिलों का भार उठाने में पूरी तरह अक्षम थी। और यहां ज्यादा पैसा कमाने के लालच में करीब 40 छात्रों को रखा जा रहा था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। इतने बच्चों की जान चली गई। सोचिए कितने दुख की बात है, अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में, राज्यों से दिल्ली में पढ़ने आए इन बच्चों को इस तरह मलबे में दबकर मरना पड़ा। और जो व्यक्ति इस पीजी का मालिक था उसने सब कुछ जानते हुए इन बच्चों को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पूरी इमारत सिर्फ 55 गज के प्लॉट में बनी थी। 55 गज का मतलब ये हुआ कि इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 वर्ग फुट थी, लंबाई 24 मतलब 25 कह लीजिए, 24.75 वर्ग फुट। ये एरिया फुटबॉल मैदान में बना जो एक गोल पोस्ट होता है ना, उस गोल पोस्ट जितना था। और सोचिए इतनी सी जगह में ये पूरा पीजी बना दिया गया और यहां हर मंजिल पर कम से कम 8 छात्र रह रहे थे। और ऐसा भी नहीं है कि इनका किराया बहुत कम हुआ, कम रहा, अधिकतम 40 बेड वाले इस पीजी में एक बेड का किराया मतलब पर स्टूडेंट हर बच्चे के लिए 14,000 रुपए था, जो 40 बेड के हिसाब से 5,60,000 रुपए होता है। हमारे देश में एक आम आदमी की सालाना आय कितनी है, 2.5 लाख रुपए, उससे भी कम। लेकिन इस पीजी का मालिक इस जर्जर मतलब फुटबॉल के गोल पोस्ट जितनी जमीन पर इस इलाके में एक बिल्डिंग खड़ा करता है, वो भी एकदम, आप देख ही रहे हैं उसकी क्या मजबूती है, दीवारों को उठाकर लोग एक हाथ से ऐसे गिरा रहे हैं। जर्जर इमारत में वो 5.5 लाख से ज्यादा रुपया कमा रहा था। और स्थानीय प्रशासन, एमसीडी, यहां तक कि दिल्ली सरकार का कहना है कि उसे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। और हम ये साफ कहना चाहते हैं कि हमें लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी जरूर होगी, लेकिन फिर भी ये पीजी चलता रहा और इतने बच्चे मलबे में दबकर मर गए। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि कौन कौन पैसे खाता है, क्योंकि बिना पैसे के इतना बड़ा खेल चल ही नहीं सकता। यानी जब कोई जर्जर इमारत गिरती है और इसके मलबे में लोग दबकर मारे जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर यह इमारत यहां तक पहुंची कैसे। फिर दूसरा सवाल आता है, इस इमारत को देखकर भी किस किस ने अपनी आंखें बंद रखी, क्योंकि कोई इमारत एक दिन में तो जर्जर होती नहीं है, या एक दिन में अचानक कोई रातों रात तो उसके जो फ्लोर्स हैं उसको नहीं बढ़ा लेता है। दीवारें धीरे धीरे कमजोर होती हैं, कुछ दिन तो लगते हैं एक पूरा फ्लोर बनाने में, खतरा कैसे बढ़ता चला जाता है। लेकिन सिस्टम अचानक नहीं जागता, सिस्टम अक्सर तब जागता है जब इमारत गिर चुकी होती है, बच्चे मर चुके हैं और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे सिस्टम कैसे काम करता है। किसी को शिकायत नहीं करनी है क्योंकि शिकायत हुई तो जांच होगी, किसी को जांच नहीं करनी है क्योंकि जांच हुई तो कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कार्रवाई करनी पड़ी तो किसी की कमाई रुक जाएगी। इसलिए फाइलें चलती रहती हैं, नोटिस दबे रहते हैं, निरीक्षण कागजों पर होते रहते हैं, इमारतों में लोग रहते रहते हैं। फिर एक दिन वही होता है जिसका इंतजार शायद पूरा सिस्टम कर रहा है, दर्दनाक हादसा। और इसीलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर कौन कौन और कहां कहां तक पैसा खाता है और किस किस के पास ये पैसा जाता है। और इस बात को दिल्ली के लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहां आप आदित्य नाम के इस छात्र को देखिए, जो इस घटना के बाद मलबे में बेहद सकरी और घुटन भरी जगह में फंस गया था। चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट का भारी स्लैब, लोहे की मुड़ी हुई छड़े थी। लेकिन अंधेरे, चीख पुकार और दहशत के बीच भी आदित्य ने अपना आपा नहीं खोया। उसने देखा कि उसका मोबाइल फोन चल रहा था, जिसे उसने किसी तरह निकाला, अपने दोस्तों परिजनों के 11 सेकंड की एक लाइव वीडियो कॉल की, जिसके बाद मलबे को हटाया गया, उसकी जान बच गई। देखिए,
1: बच्चे दबे हुए हैं इसमें, सारे लोग दबे हुए हैं, निकाल लेंगे। किसकी जिम्मेदारी है बच्चे?
0: इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों में अभिषेक कुमार नाम का एक छात्र भी शामिल है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्र थे। वो दिल्ली में इसलिए पढ़ रहे थे ताकि वो अपने परिवार का सहारा बन सके। लेकिन अभिषेक और उसके जैसे और बच्चों को हमारी सरकार, हमारा सिस्टम बचा नहीं पाया। और जानते हैं ये घटना इस इलाके में हुई, नाम क्या है? सत्य निकेतन। ये नाम महात्मा गांधी से प्रेरित होकर रखा गया था, जिसका मतलब होता है ऐसी जगह जहां सत्य का निवास हो। लेकिन सोचिए, ये तो झूठ, बेईमानी, लालच की पूरी बिल्डिंग खुली हुई थी, जिसने कई छात्रों को उनके परिवारों से छीन लिया। और हम तो इसे लालच निकेतन कहेंगे, जहां किराए के लालच और रिश्वतखोरी ने इतने बच्चों की जिंदगी ले ली। आइए मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको जरा दिखाती हूं कि ये जगह क्यों आज चर्चा में होनी चाहिए। ये सत्य निकेतन जो आप देख रहे हैं, तो आज ध्यान से सुनिए, ये सत्य निकेतन कहां है? ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में, जिन बच्चों को कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलता है, उनके रखने के लिए एक ऐसा पूरा कॉलोनी बन गया, इलाका बन गया है, जहां पर कई जगहों पर तो एक आदमी के भी बिल्डिंग्स के बीच में चलने की जगह नहीं है, सिर्फ तार बिछे हुए हैं और ऐसी ऊंची ऊंची इमारतें। और ये जगह जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है और इन बच्चों की हत्या हुई है, जानते हैं कितनी दूर है? ये विधानसभा से महज 13 किलोमीटर की दूरी पर है, 13 किलोमीटर, जहां पर इन बच्चों की चीख, उनकी जिंदगी चली गई। ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, 11 किलोमीटर। ये नगर निगम मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर है, वही नगर निगम जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर ये MCD, ये नगर निगम, ये सुविधाएं अगर ये परिवर्तित नहीं होते हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूं कि ये जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली शहर के अलग अलग इलाकों में, विस्फोटक स्थिति है। अगर ये अब भी नहीं जागे, अगर इन्होंने अभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस की सीलिंग शुरू नहीं की, अगर सोचिए यही बिल्डिंग किसी ईमानदार व्यक्ति ने सील करा दी होती, जहां पर नीचे पानी भरा हुआ है, बेसमेंट में सीलन है, इलीगल फ्लोर्स बने हुए हैं, उन बच्चों की जान नहीं जाती। नगर निगम सचिवालय से 10 किलोमीटर दूर, मंत्री आशीष सूद का घर यहां से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, मुख्यमंत्री आवास एक बार फिर से आपको बता रहे हैं 11 किलोमीटर दूर है, और 9 किलोमीटर दूर है नगर निगम मुख्यालय। लेकिन सब सो रहे थे और इस गहरी नींद की वजह से इन बच्चों की जान चली गई। और इसीलिए आज ये विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि ये बच्चे किसी के हो सकते थे, ये बच्चे आपके हो सकते थे, हमारे रिश्तेदारों के हो सकते हैं, जो अलग अलग जगहों से अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं। हाँ, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि उनको राजधानी में बड़े बड़े घरों में रहने का मौका मिलता है तमाम सहूलियतों के बीच। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने इस पीजी के मालिक हरिराम गुप्ता, उसकी पत्नी उर्मिला गुप्ता, बेटे महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पत्नी की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि ये जगह उनके नाम पर थी। बेटे की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि वो बिल्डिंग का पूरा कामकाज देखता था। और हरिराम गुप्ता की गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि उनके नाम से बिजली और पानी का कनेक्शन था। अब सोचिए इनके लिए, इन बच्चों की जिंदगी की क्या कीमत थी। नीचे बेसमेंट में पानी भर रहा है, सीलन हो रहा है, टूटती जर्जर चीजें दिख रही हैं। बिल्डिंग की क्या हालत है, क्या इस व्यक्ति को पता नहीं होगा? लेकिन उसकी आंखों में इन दूर दराज के छोटे शहरों से आए बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं थी। पैसा ऐंठने का जरूर तरीका था कमाई करने का। हालांकि यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ यही लोग इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार है? और यह भी आज समझना चाहिए कि कोई भी हरिराम गुप्ता शासन और प्रशासन की मदद के बिना नहीं बन सकता है। क्या इस घटना के लिए बीजेपी की स्थानीय पार्षद हिमानी जैन जिम्मेदार नहीं है? आज हमने सोचा है कि एक एक करके सबके नाम चेहरे दिखाकर उनसे सवाल पूछे जाए, जो इस इलाके में वोट मांगने आई लेकिन उनकी तरफ से जर्जर इमारतों को लेकर कोई शिकायत, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, एकदम चुप्पी सन्नाटा। क्या इसके लिए एमसीडी के मेयर प्रवेश वाही जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि इन इमारतों से जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है वो एमसीडी की जेब में आता है। यही नहीं, दिल्ली मास्टर प्लान के तहत रिहायशी इलाकों के बेसमेंट में किसी भी तरह की व्यवसायिक गतिविधि या खुदाई के लिए नगर निगम के कंस्ट्रक्शन विभाग से अनुमति और स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में नहीं हुआ। एमसीडी के स्थानीय जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स ने भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जिससे यह घटना हुई। हर साल एमसीडी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जोन में आने वाली सभी पुरानी और जर्जर इमारतों का बिल्डिंग सर्वे करे। वो इमारतें रहने लायक ना हो तो उन्हें खाली कराया जाए, उसको सील करे। लेकिन इस मामले में एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की और इसके लिए एमसीडी के कमिश्नर संजीव खिरवार को जिम्मेदार माना जाए। ये वही संजीव खिरवार है जिन पर आरोप लगा था कि अपने कुत्तों को टहलाने के लिए त्यागराज स्टेडियम ले जाते थे और इस दौरान ये स्टेडियम वहां आने वाले खिलाड़ियों के लिए बंद कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि खिरवार साहब टहलने निकले और खिरवार साहब के साथ परिवार और उनके कुत्ते टहलने जाते थे। फिर स्टेडियम में खिलाड़ियों का क्या काम जब इतने बड़े अधिकारी आए हो? तो ये तो इनका रुतबा रहा है और संजीव खिरवार इस तरह से अपने रुतबे का इस्तेमाल करके व्यवस्था को कैसे मुट्ठी में उठाया जाता है उसके जीते जागते मिसाल बने हुए हैं। संजीव खिरवार एमसीडी कमिश्नर रहते हुए एक जर्जर इमारत को नियमों का उल्लंघन करने पर खाली क्यों नहीं करा पाते ये साहब, जो एक स्टेडियम खाली करा लेते हैं अपने टहलने और अपने कुत्ते के टहलने के लिए? और हम तो यही कहेंगे कि अब एक कड़ी जांच का ढोंग होगा। इस घटना के लिए स्थानीय बीजेपी विधायक अनिल शर्मा भी जिम्मेदार माने जाएंगे, जिन्होंने जर्जर इमारतों की सुध नहीं ली, ना अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कोई शिकायत की। तब हुआ जब अनिल शर्मा के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो खुद इस इलाके में छात्रों के लिए

जिनमें 4 करोड़ रुपए की 2 कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, 1 करोड़ 60 लाख रुपए की एक रिहायशी बिल्डिंग है। इनमें एक बिल्डिंग का पता है 11/78 गांव मोतीबाग। और जानते हैं ये मैं लेकर आई हूं, इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है उनकी बिल्डिंग का। ये बिल्डिंग इस पीजी वाली इमारत से कितनी दूर है? 350 मीटर दूर। इस हलफनामे में अनिल शर्मा ने खुद बताया कि उन्होंने ये इमारत किराए पर रहने के लिए दी है, यानी बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं वो इस इलाके से पूरी तरह परिचित है। उन्हें पता होगा कि इस इलाके में कितने पीजी चल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई शिकायत या कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसमें साफ साफ लिखा है रेसिडेंशियल बिल्डिंग शेयर ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी 11/78 विलेज मोतीबाग न्यू दिल्ली आल्सो नोन एज विलेज अरकपुर पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेज ऑन मंथली रेंट बेसिस। मतलब महीने के किराए पर इस प्रॉपर्टी को उन्होंने रखा हुआ है और 350 मीटर की दूरी पर है। अनिल शर्मा के अलावा नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज भी इस घटना के लिए उतनी ही जिम्मेदार मानी जाएंगी। इस घटना के लिए दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद भी उतने ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये काम उनके विभाग का था कि इस इमारत का ऑडिट हो, उसे खतरा मिलने पर बंद किया जाए। लेकिन आशीष सूद के विभाग ने ये काम ईमानदारी से नहीं किया और इस इमारत ने कई परिवारों को अब उजाड़ दिया है। और आखिर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने घटनास्थल पर जाकर स्थानीय अफसरों को फटकार लगाई और ये कहा कि उन्होंने अपना काम सही से क्यों नहीं किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये फटकार या ये गुस्सा दुर्घटनाओं के बाद क्यों, दुर्घटना से पहले क्यों नहीं? सरकारें हमेशा एक्शन मोड में रहनी चाहिए। देखिए,

0: करो तुम लोग, ये बताओ बदतमीजी की हद होती है? क्या कह रहा है सारा फंड, मुझे ये बताओ ये मेरे घर के लिए क्या।
1: एमसीडी ने इस घटना के लिए दक्षिण जोन के डेप्टी कमिश्नर समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड किया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन इमारतों के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन सब के पानी और बिजली के कनेक्शन रोक दिए जाएंगे, दोषियों की संपत्तियों को फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन हमारा सवाल फिर से वही है कि फैसलों की उम्र कितनी होगी। अभी लोगों में गुस्सा है इसलिए सरकार कार्रवाई कर रही है, लेकिन पिछली घटनाओं में भी यही हुआ था, बाद में कुछ नहीं बदला। सारी बातें हम आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक साल 2022 2024 के बीच दिल्ली में इमारत गिरने की 1133 घटनाएं सामने आई, 98 लोगों की मौत हुई। इसके बाद 1 जनवरी से 31 जुलाई 2025 तक दिल्ली फायर सर्विस को इमारत गिरने की 233 कॉल्स आई, हादसे में 17 लोगों की मौत हुई, 101 लोग घायल हुए। और ये घटनाएं भी तब हुई जब इसी साल 28 जून को एमसीडी ने अपने सर्वे में ये बताया था कि उसने 28 लाख इमारतों का सर्वे किया जिनमें 19 इमारतें ऐसी पाई गई जिन्हें खाली कराने की जरूरत थी। लेकिन अजीब बात यह है कि इन इमारतों में इस पीजी पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, और इसलिए नहीं गया क्योंकि शायद इसके पीछे रिश्वतखोरी बड़ी वजह रही होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन 5 अधिकारियों को एमसीडी ने सस्पेंड किया उनमें 3 अधिकारी वो है जिन पर मालवीय नगर के आग हादसे में भी सवाल उठे थे, लेकिन तब इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सर्वे में लापरवाही करने, इस बिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं करने के लिए इन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में रहते हुए जर्जर इमारतों की पहचान करने की जिम्मेदारी इस शख्स की थी। लेकिन यही राकेश कुमार मालवीय नगर के भी जूनियर इंजीनियर थे, उनमें वो अग्निकांड हुआ उस वक्त भी उन पर सवाल थे, आज भी है। आज हम यही कहेंगे कि इन काली कमाई करने वालों को इन बच्चों के चेहरे देखने चाहिए। जब जब वो सोचते हैं कि अपनी जेब कैसे गर्म करनी है, कैसे अवैध निर्माण कोई करने वाला है तो वहां पहुंच जाते हैं पैसा मांगने और फिर आंखें बंद करने के पैसे लेते हैं।

0: जब जब वो ऐसा करते हैं तो उनको इन बच्चों के चेहरे देखने चाहिए और सोचना चाहिए कि उनके लालच निकेतन ने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। ये रिश्वतखोरी चलती कैसे है, पैसा कौन कौन खाता है, उसके लिए आप इन एक्सपर्ट्स को जरा सुनिए। कौन कौन आपको, मतलब एक ही सवाल है मेरा, कोई अधिकारी कोई नेता कोई बताए बैठ के सामने में टीवी पर बताए सर ईमानदारी से, कौन कौन पैसा खाता है तब जाकर इस तरह का अवैध तरीके से निर्माण होता है और धड़ल्ले से धंधा होता है? कौन कौन?
1: मैं बता सकता हूँ, इसमें जो है आपका जो MCD या नगर पालिका, नगर परिषद, तहसीलदार या जो भी कंसर्न है इस एरिए के, एक तो वो पैसे को तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन वो कंप्रोमाइज करते हैं इसी प्रकार से जो है। इवन देन छोटा सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बंदा है वो ये सब लोग कंप्रोमाइज करते हैं। मैं इसका एक उदाहरण दूं, एक छोटा सा आप अपने घर के आगे खुदाई करके पंप लगाने की कोशिश करें, आपको मैं यकीन दिला रहा हूँ नेशनल चैनल पे कम से कम 5 डिपार्टमेंट के लोग एकदम आ जाएंगे जिन्हें कहां से उनको सूचना मिलती है, आके खड़े हो जाएंगे, जी इलीगल है इसको बंद करो। थोड़ी देर में जो है तो वो कहीं बातचीत होती है, कंप्रोमाइज हो जाता है और फिर वो लग जाता है।
2: जहां तक मैं सोचता हूं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं या जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। आज आप साउथ कैंपस में देखिए कितने कॉलेजेस में हॉस्टल है, बच्चे चाहते हैं कि
0: मतलब कैंपस
2: में अगर आप उनको हॉस्टल हॉस्टल मुहैया करा सकते हैं तो ऐसे पेइंग गेस्ट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। केवल एक हरिराम को पकड़ने से नहीं होगा, उस हरिराम को बनाया किसने है, उस हरिराम को प्रशासन और शासन ने बनाया है, क्योंकि उसने किसी न किसी की जेबें गर्म करी होंगी तब जाके उसने वो बिल्डिंग
0: बिल्कुल
2: खड़ी
0: सही
2: करी
0: कहा
2: है।
0: आपने।
2: और दूसरी चीज, ये जितने भी अधिकारी हैं इन सबके जब तक आप फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करेंगे, इनके असेट्स नहीं करेंगे, आप ये देखिए MCD में एक छोटा सा मुलाजिम होता है वो करोड़ों की संपत्तियां उसके पास होती हैं, आप ये देखिए वो छोटी सी नौकरी कर रहा है लेकिन उसके पास असीम धन है। तो जब तक आप इनके लिए एक कोई फाइनेंशियल ऑडिट नहीं करेंगे तब तक ये बदस्तूर चलता रहेगा।
0: सोशल मीडिया की एक छोटी सी रील और उसमें दिखने वाला लाइक बटन किसी को भी रातों रात स्टार बना सकता है। आजकल ऐसे ही एक स्टार है बिट्टू तबाही। मध्य प्रदेश के ब्यावर के रहने वाले बिट्टू तबाही के बारे में फेमस है कि इस अकेले लड़के ने वहां की अजनार नदी को साफ कर दिया। अजनार नदी पहले एक नाले की तरह थी जिसमें लोग कूड़ा कचरा सब बस डालते जाते थे, जो कई जगहों पर भारत में होता है। इस नदी को लोगों ने नदी कहना बंद कर दिया था, चारों तरफ गंदगी कूड़ा करकट होने की वजह से इसकी तरह मुंह भी करके जाना तक लोग पसंद नहीं करते थे। लेकिन इसी बीच बिट्टू तबाही नाम के एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दावा कर रहा है कि उसने अकेले दम पर अजनार नदी को साफ कर दिया। इस वीडियो में उसने बड़ी बड़ी बातें कही, अपने हाथ और पैर में इन्फेक्शन होने का दावा भी किया और ये जताया कि अकेला आदमी भी कुछ कर चाहे तो कर सकता है। लोगों ने इस वायरल वीडियो को देखकर बिट्टू तबाही की बहुत तारीफें की। लोगों ने यहां तक लिखा कि एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को बदल सकता है जैसा बिट्टू तबाही ने किया। लोगों ने बिट्टू तबाही के नदी को अकेले साफ करने के दावे को मान लिया और उसे रातों रात सोशल मीडिया का नया स्टार बना दिया। बिट्टू तबाही एक नया सेंसेशन बन गए जिसने नाले की तरह दिखने वाली नदी को निर्मल जल वाली नदी बना दिया था। सोशल मीडिया की ताकत देखिए, किसी ने वीडियो और उसमें किए जा रहे दावों की सच्चाई परखने की जहमत ही नहीं उठाई। यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके पूरे सिस्टम ने वायरल वीडियो के आधार पर मान लिया कि बिट्टू तबाही ने अकेले दम पर नदी साफ की है और ऐसा करने के लिए उसे सम्मानित किया। बिट्टू तबाही और सुरेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया बिफोर एंड आफ्टर करके अजनार नदी के दो वीडियोस डाले थे। एक वीडियो में नदी में कूड़ा करकट दिखाई दे रहा था और दूसरे में साफ बहता पानी, और इसी वीडियो को देखकर लोग प्रभावित हो गए क्योंकि एक अकेले लड़के ने चमत्कार कर दिया। लेकिन अब यह चमत्कार था या क्रेडिट लूटने का गिमिक, अब इसको लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। राजगढ़ के लोग नगर पालिका और अजनार बचाओ समिति नाम का एक संगठन बिट्टू के दावों को लेकर नाराज है। नाराजगी इस बात पर है कि नदी की सफाई का काम सबने किया था लेकिन एक वीडियो बनाकर सारा क्रेडिट बिट्टू तबाही ले गए। दरअसल अजनार बचाओ समिति और नगर पालिका की टीम्स पिछले कई महीनों से अजनार नदी की सफाई में लगी थी। अजनार बचाओ समिति से इलाके के कई युवा भी जुड़े थे जिनमें से बिट्टू तबाही भी शामिल था। आरोप है कि बिट्टू तबाही ने सफाई के इस काम का अपना अकेले का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला और रातों रात स्टार बन गया। जबकि सच ये है कि नगर पालिका और अजनार बचाव समिति ये काम पिछले कई महीनों से कर रही थी और बिट्टू उसका एक स्वयं सेवक था। हम आपको इस समिति के काम का एक वीडियो दिखाते हैं और इसमें उनका काम भी नजर आ रहा है, और तो और इसमें बिट्टू तबाही भी स्वयं सेवक के तौर पर काम करते दिख रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि अजनार बचाव समिति के वीडियो से सच सामने आने के बाद भी बिट्टू तबाही का जो दावा है वो उसी तरह से कायम है।

0: अब आप सोचिए कि जिस टीम के साथ बिट्टू तबाई खुद एक स्वयं सेवक बनकर नदी की सफाई कर रहे थे, उन्हीं के काम को अपना काम बताकर प्रचारित किया और बिना सत्यता की जांच के उनका कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सबने सोचा कि भाई एक अकेले व्यक्ति ने चमत्कार कर दिया है। और अब अगली खबर आपको अंजना 2.0 बताएंगी। ये खबर दूसरों को अमीर बनने का पाठ पढ़ाने वाले, कर्ज को अपनी ताकत बताने वाले और लोगों को उधार लेकर बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाले की सलाह देने वाले रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी से जुड़ी है, जो खुद करीब 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूब चुके हैं। और इस खुलासे के बाद से उनके निवेशकों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिन्होंने उनकी सलाह पर अंधाधुंध उधार लिया, प्रॉपर्टी में निवेश किया और अब बाजार गिरने से कंगाल हो चुके हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये कियोसाकी की सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, लेकिन आम निवेशकों के लिए ये किसी बड़े खतरे की घंटी से कम नहीं। बताइए अंजना 2.0। बिल्कुल अंजना, अब इस घटना से बहुत से लोग परेशान और गुस्सा है। सबसे तीखी प्रतिक्रिया चीन से आ रही है, जहां इस किताब को ही सब कुछ मानकर लाखों लोगों ने अंधाधुंध उधार लिया और प्रॉपर्टी में पैसा झोंक दिया। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन का रियल एस्टेट बाजार धड़ाम हो गया, घरों के दाम जमीन पर आ गए और निवेशक नेगेटिव इक्विटी के दलदल में फंस गए। अब जब ये निवेशक खुद को कर्ज में डूबा देख रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं कि जो गुरु खुद 11,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम कर्ज के तले दबा बैठा हो, वो भला दूसरों को अमीर होने का ज्ञान कैसे दे सकता है। हालांकि इस बवाल के बीच कियोसाकी की पूर्व पत्नी और लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनर किम कियोसाकी ने साफ किया है कि ये कोई उनका पर्सनल कर्ज नहीं है। इसमें करीब 1,500 फ्लैट्स और बिजनेस पार्टनर्स की उधारी शामिल है। जानकारों का मानना है कि कियोसाकी का ये कर्ज अमेरिकी रियल एस्टेट की उस पुरानी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जहां एसेट की वैल्यू पर बार बार रीफाइनेंस करके बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े किए जाते हैं और खुद को लिमिटेड लायबिलिटी के जरिए बचाया जाता है। कियोसाकी ने जो किया वो उनकी किताब के मूल सिद्धांत का ही एक्सट्रीम रूप है। यानी तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत में। कभी कभी आप जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। नमस्ते।
1: दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
2: हमारे सामने ही होंगे पूरी धारा। ऐसा हम कहां रह रहे हैं भाई?
3: दिल्ली में पड़ते आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
4: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे? उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
3: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
5: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहां अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे। वहां जेसीबी कैसे जाएगी? यहां आने में मुश्किल हो गया, वहां जाने में कैसे जाएगी जेसीबी?
3: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
6: पानी, इलेक्ट्रिसिटी यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा और हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है। मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर्स है, सब।
3: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो ये है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
7: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
8: अच्छा अच्छा,
7: हाँ मैं रहता हूँ भाई साहब।
8: लेकिन एक मिनट आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
7: मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
8: ये सपोर्ट,
7: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना। पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मंजिल जी कैसे बन जाएगा आप बताएं।
8: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
6: हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी।
8: जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
6: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स, तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना तो यही सेम कंडीशन।
3: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
9: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
3: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही हैं, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
9: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है, और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है, और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें 2 बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, 2 लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, 2 लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
3: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
10: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
9: टूटा फूटा
10: आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखें बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है। बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे, और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं। बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके। तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
3: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
9: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे। ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
10: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए, 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं, और काफी महंगा है मैम। और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका।
9: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
10: महसूस कर सकती है,
9: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के। एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए। एक पंखा लगा हुआ है, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
3: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
1: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
1: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सब का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
0: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
2: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए तब जाके हम लोग खुद मिल के NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
3: कितनी देर में आए ये लोग?
2: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। हाँ। और सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े बांधे थे। हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
0: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा तेजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
4: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा PGs लेता है, पर PG की हम छात्रों की ये मांग है कि जो PG की गाइडलाइंस होती है वो PG की गाइडलाइंस सरकार तय करे। दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक PG रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है, मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
5: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा, बताइए मैम।
0: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
6: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में PGs हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, अब वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
7: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगे। और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी, जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे।
8: होती है 11 महीने,
3: 6 महीने या 11 महीने का,
8: 11 महीना मैक्स, हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
3: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
8: हम बच्चों को यही बोलते रहते कि आप चेंज कर लेना सेकंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब DU प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
0: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने MCD के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
9: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या क्या अब इस कुएं की जो जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो ASI की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है।
0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहां आज भी है, मेरे यहां चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी, तो वो है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये ASI की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है? दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
5: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
4: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
5: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
4: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और वो भी विधिक रूप से वैध।
0: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्त नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
6: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
0: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी। सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
7: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जो इस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई?
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी, तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स, गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी 6-6 मंजिल 5-5 मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ हो, कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे। वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा, हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है, या फिर हमारे ओनर से सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो यह है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा अच्छा,
5: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट, हाँ, आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मंजिल कैसे बन जाएगा आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए, ऐसा नहीं है तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
2: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स, तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना, तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है। दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही हैं, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का। यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है। अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
8: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है। कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
8: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखे बहुत खतरा है मैम। ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं। बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके। तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं।

0: वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
1: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे। ये है 25,000 का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है, पर वायरिंग पूरी है।
2: 25,000 रेंट है, आप देख लीजिए, 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं और काफी महंगा है मैम। और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका।
1: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
2: महसूस कर सकती है,
1: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के। अब एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए। एक पंखा लगा हुआ है, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
0: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
3: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
1: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
0: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
2: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए तब जाके हम लोग खुद मिलके NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCT के लोग थे वो आए नहीं थे।
3: कितनी देर में आए
2: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
0: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा PG से नए सिरे से खबरदार किया है।
4: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा PG लेता है, पर PG की हम छात्रों की ये मांग है कि जो PG की गाइडलाइंस होती है वो PG की गाइडलाइंस सरकार तय करे। दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक PG रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
5: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको कहीं वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो

0: ये इसका भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
1: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाली ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
2: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, अब वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
3: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही हैं बिल्डिंगें। और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहां पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहां पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहां से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहां पे।
4: होती है 11 महीने,
5: 6 महीने या 11 महीने का,
4: 11 महीना मैक्स, हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
5: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
4: हम बच्चों को यही बोलते रहते कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना, कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
1: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
6: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के, जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
1: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
7: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
8: मेरे घर वाले हाँ पैनिक के ही वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना, अभी छोड़ के तो नहीं लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है, तो हाँ फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
1: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखी, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
9: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। अच्छा। हाँ जी टेम्परेरी जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है तो दया सिंह की सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
1: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है, इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
9: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
7: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है और ये लग रहा है

0: कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है,
1: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
2: फर्स्ट ईयर के लिए दो बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है, इससे पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
3: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्य निकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
0: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं, और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
4: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है, मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
5: मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो, हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज़ें हमने पहले भी उठाई है, हॉस्टल की मांगे डीयू की बहुत टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजी, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
6: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो पीजी है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए, उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे की प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देंगे, और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे, उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
7: पीजी की सिचुएशंस तो सब जगह, जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा, उनसे ज्यादा ही खराब है।
3: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
8: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो

कुआं है, कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा और क्या

0: जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो एएसआई की टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है।
1: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहाँ आज भी है, मेरे यहाँ चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी। तो वो है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी। कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
1: कुएं की कहानी क्या है ये एएसआई की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है। दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
5: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
4: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
5: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
4: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है और वो भी विधिक रूप से वैध।
1: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
0: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
1: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
6: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जिस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई?
1: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की

0: उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स, गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे। वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा, हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर्स है सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो यह है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा अच्छा,
5: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट, आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
4: हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ है इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनीज।
6: जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
4: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स।
2: तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना, तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही हैं, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है, और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
8: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
8: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखिए बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके, तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
7: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे, ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है, बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
8: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं, और काफी महंगा है मैम, और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका,
7: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
8: महसूस कर सकती है,
7: घुटन महसूस हो रही है, बिना एसी के, एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए, एक पंखा लगा हुआ है, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
1: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।

0: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
1: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है 20 साल पुरानी है 30 साल पुरानी है 40 साल पुरानी है उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
0: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
2: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़ेंगे ना बढ़े। देन थोड़ा सा दश कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए तब जाके हम लोग खुद मिल के NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
3: कितनी देर में आए ये लोग?
2: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। हाँ। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
0: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा PG से नए सिरे से खबरदार किया है।
4: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा PGs लेता है, पर PG की हम छात्रों की ये मांग है कि जो PG की गाइडलाइंस होती है वो PG की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक PG रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है, मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
5: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
0: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
6: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं जिनके अगल बगल में PGs हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
7: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही हैं बिल्डिंगें। और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे।
8: होती है 11 महीने,
3: 6 महीने या 11 महीने का,
8: 11 महीना मैक्स, हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
3: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
8: हम बच्चों को यही बोलते रहते कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब DU प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
0: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने MCD के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
9: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के, जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए, जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
0: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
10: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई, उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
11: मेरे घर वाले हाँ पैनिक की वजह से, वो पैनिक हो रहे हैं और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है, फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है, तो हाँ फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
0: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
12: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी, टेम्परेरी जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है, तो दया सिंह की सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
0: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है, लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है। इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
12: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
10: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है, और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है,
12: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
13: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है, पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
0: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्य निकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
10: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं, और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
14: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है, मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
15: मैं तो 3rd ईयर में हूँ, तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज है हमने पहले भी उठाई है, हॉस्टल की मांगे DU की बहुत टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है, है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजीज। इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
16: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे जो पीजी हैं उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे के प्लाई ऐसे मारो कि प्लाई देख। और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे। उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
17: पीजी की सिचुएशंस तो सब जगह जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा उनसे ज्यादा ही खराब है।
0: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
9: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या क्या अब इस कुएं की जो जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो ASI की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है।
0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है, और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए, और जब खुदाई होगी अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहाँ आज भी है, मेरे यहाँ चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी, तो वो है और कुछ नहीं। इसके अलावा ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये ASI की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है? दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
5: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
4: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
5: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
4: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और वो भी विधिक रूप से वैध।
0: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी, यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
6: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
0: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी। सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
7: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जो इस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई।
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स, गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा, हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर से सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो ये है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा अच्छा,
5: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट, आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर, प्लीज आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
4: हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी,
6: जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
4: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स।
2: अच्छा। तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना, तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग है, एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही है, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है, और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
8: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
8: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखिए बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके, तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
7: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे, ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है, बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
8: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं, और काफी महंगा है मैम, और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका,
7: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
8: महसूस कर सकती है,
7: घुटन महसूस हो रही है, बिना एसी के, एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए, एक पंखा लगा हुआ, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
1: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
9: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सब का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
1: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
10: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़ेंगे ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तब जाके हम लोग खुद मिल के NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
11: कितनी देर में आए ये लोग?
10: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है, तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
1: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा पीजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
12: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा पीजीज लेता है, पर पीजी की हम छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है, मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
13: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
1: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
14: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, अब वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
15: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगें, और अब उसके जो जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे
16: होती है 11 महीने
7: 6 महीने या 11 महीने का
16: 11 महीना मैक्स हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
7: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
16: हम बच्चों को यही बोलते रहते कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही सकता। फिर
1: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
0: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
1: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
17: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
18: मेरे घर वाले हाँ पैनिक की वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है। तो हाँ फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
1: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
19: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी टेम्परेरी जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है तो दया सिंह की सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
1: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है, इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
19: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
17: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे कोई लखनऊ जा रहा है कोई राजस्थान जा रहा है,
19: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की खाने की ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
20: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स ठीक है उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है इससे पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
1: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्य निकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
3: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं, और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
21: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है, मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
22: मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो, हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज है हमने पहले भी उठाई है, हॉस्टल की मांग है DU की बहुत टाइम से, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजी, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
23: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो पीजी है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे के प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देंगे, और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे, उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
24: पीजी की सिचुएशन तो सब जगह जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा, उनसे ज्यादा ही खराब है।
1: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम

0: एएसआई की टीम है वो यहाँ पहुँच चुकी है।
1: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहां आज भी है, मेरे यहां चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी, तो वो ही है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
1: कुएं की कहानी क्या है ये एसआई की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है। दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
5: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
4: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
5: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
4: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है और वो भी विधिक रूप से वैध।
1: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्त नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
0: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
1: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
6: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है, कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जो इस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई?
1: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।

0: आज तक ब्यूरो।
1: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी है।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स, गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा, हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर्स है सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो ये है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा अच्छा,
5: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट, आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
4: हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी दो दो फिट, तीन तीन फिट ऐसे निकला हुआ इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी,
6: जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
4: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स।
2: तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना, तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग है, एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही है, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है, और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
8: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
8: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखिए बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके, तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
7: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे, ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है, बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
8: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं, और काफी महंगा है मैम, और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका,
7: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
8: महसूस कर सकती है,
7: घुटन महसूस हो रही है, बिना एसी के, एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए, एक पंखा लगा हुआ, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
1: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
9: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सब का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
1: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
10: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़ेंगे ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तब जाके हम लोग खुद मिल के, NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
11: कितनी देर में आए ये लोग?
10: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है, तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
1: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा पीजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
12: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा पीजीज लेता है, पर पीजी की हम छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है, मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
13: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
1: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
14: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, अब वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
15: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगें, और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे
16: होती है 11 महीने
7: 6 महीने या 11 महीने का दे
16: 11 महीना मैक्स हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
7: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
16: हम बच्चों को यही बोलते रहते कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
1: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
0: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
1: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
17: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
18: मेरे घर वाले हाँ पैनिक की वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है। तो हाँ फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
1: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
19: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी टेम्परेरी जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है तो जैसा कि सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
1: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है, इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
19: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
17: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है।
19: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
20: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
1: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्य निकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
3: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं, और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
21: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है, मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
22: मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो, हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज है हमने पहले भी उठाई है, हॉस्टल की मांग है DU की बहुत टाइम से, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजी, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
23: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो पीजी है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए, उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे की प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देंगे, और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे, उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
24: पीजी की सिचुएशन तो सब जगह, जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा, उनसे ज्यादा ही खराब है।
1: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा, क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या क्या अब इस कुएं की जो जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो ASI की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है।
0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ वहाँ शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहाँ आज भी है, मेरे यहाँ चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी। तो वो ही है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी। कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये ASI की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है। दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
5: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
4: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
5: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
4: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और वो भी विधिक रूप से वैध।
0: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी, यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्फ नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
6: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था, उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
0: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी। सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
7: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने के बाद लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, जाने का ऊपर समय मिलेगा जो इस पर पैनल काम कर रहा है, लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई।
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआ, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स, गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजेस में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह मंजिल पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा, हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बस कॉमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर से सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो ये है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। ये हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा,
5: मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
4: यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ इधर, और ये सारे बिल्डिंग की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी
6: है। जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
4: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स।
2: तो ये सभी बिल्डिंग्स का ये आप जाओगे अंदर आप देखना तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही हैं, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का। यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
3: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है। कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
3: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखिए बहुत खतरा है मैम। ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं। बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके। तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
7: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे। ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
3: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए, 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं और काफी महंगा है मैम। और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका।
7: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
3: महसूस कर सकती है,
7: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के। अब एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए। एक पंखा लगा हुआ, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
1: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
8: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
1: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
9: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तब जाके हम लोग खुद मिलके, एनडीआरएफ की टीम आई नहीं थी और जो एमसीडी के लोग थे वो आए नहीं थे।
10: कितनी देर में आए ये लोग?
9: ये एनडीआरएफ की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है कि मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
1: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा पीजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
11: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा पीजी लेता है, पर पीजी की हम छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में एमसीडी द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है केएमसी और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
12: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
1: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
13: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
14: अगल बगल की बिल्डिंग आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगें, और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे
15: होती है 11 महीने
7: 6 महीने या 11 महीने का देते
15: 11 महीना मैक्स हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
7: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
15: हम बच्चों को यही बोलते रहते हैं कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
1: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
0: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
1: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
16: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
17: मेरे घर वाले हाँ पैनिक के ही वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है। तो हाँ फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
1: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
18: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी टेम्परेरी जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है तो दे आर सेइंग कि सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
1: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है, इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
18: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
16: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है।
18: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
19: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है इससे पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
1: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्यनिकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
20: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं, और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग आप लोग शिफ्ट कर गए?
21: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है। मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
22: मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो, हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज़ें हमने पहले भी उठाई है, हॉस्टल की मांगे DU की बहुत टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजी, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
23: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो पीजी है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे की प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देख, और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे, उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
24: पीजी की सिचुएशंस तो सब जगह जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा, उनसे ज्यादा ही खराब है।
1: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा।

0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
1: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
2: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहां आज भी है, मेरे यहां चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी। तो वो है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहां ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी। कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये एसआई की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है। दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
3: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
4: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
3: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
4: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
3: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है और वो भी विधिक रूप से वैध।
0: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्त नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
5: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ जारी। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
0: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
6: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जो इस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई?
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स, गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर, वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा और हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर्स है सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो यह है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा अच्छा,
5: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट, आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा, आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर, प्लीज आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
4: हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी,
6: जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
4: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स।
2: अच्छा। तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना, तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही है, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है, और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंक खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे। दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
8: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
8: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखिए बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके, तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
7: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे, ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
8: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं, और काफी महंगा है मैम, और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका।
7: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
8: महसूस कर सकती है,
7: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के, एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए। एक पंखा लगा हुआ, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
1: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
9: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सब का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
1: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
10: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़ेंगे ना बढ़े। देन थोड़ा सा डस्ट कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तब जाके हम लोग खुद मिल के, NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
11: कितनी देर में आए ये लोग?
10: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है, तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
1: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा पीजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
12: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा पीजीज लेता है, पर पीजी की हम छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है, मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
13: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
1: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
14: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, अब वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
15: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगें, और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे
11: होती है 11 महीने
7: 6 महीने या 11 महीने का
11: 11 महीना मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
7: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
11: हम बच्चों को यही बोलते रहते कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
1: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने MCD के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
0: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के, जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
1: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन PG छोड़कर घर बुला लिया है।
16: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो PG हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
17: मेरे घर वाले हाँ पैनिक की वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है। तो हाँ फिर हम लोग को PG खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
1: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखी, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना PG नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
18: मैं होमी PG में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी टेम्परेरी जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टिल हमारा PG में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है तो दया सिंह की सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
1: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है, लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है। इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
18: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
16: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है, और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर PG कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है,
18: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि PG की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
19: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है इससे पहले जिस PG में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
1: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्यनिकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
20: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं, और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
21: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है। मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ, तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
22: मैं तो थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो, हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज है हमने पहले भी उठाई है। हॉस्टल की मांग है DU की बहुत टाइम से, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजी, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
23: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो पीजी है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए, उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे के प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देंगे, और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे, उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
24: पीजी की सिचुएशन तो सब जगह, जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा, उनसे ज्यादा ही खराब है।
1: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था, उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है, या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या क्या अब इस कुएं की जो जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो ASI की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है।
0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी, ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहां आज भी है, मेरे यहां चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी। तो वो है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी। कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये ASI की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है? दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला, इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
5: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
4: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
5: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
4: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और वो भी विधिक रूप से वैध।
0: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्त नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
6: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी है। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
0: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी। सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
7: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जिस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई?
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी है।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स, गेट्स कुछ भी नहीं है। तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा और हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर्स है सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो ये है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा अच्छा,
5: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट, आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा, आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर, प्लीज आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
4: हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनीज
6: निकला है। जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा, बताइए।
4: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स।
2: तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना, तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है, दोनों बिल्डिंग है, एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही है वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंक खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे, दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
8: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
8: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखिए बहुत खतरा है मैम, ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके, तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
7: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे, ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है, बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
8: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं, और काफी महंगा है मैम, और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका,
7: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
8: महसूस कर सकती है,
7: घुटन महसूस हो रही है, बिना एसी के, एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए, एक पंखा लगा हुआ, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
1: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे हो चुके हैं, फिर भी जानलेवा पीजी में रहने वाले छात्रों की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। मकान मालिकों को बस किराए लेने से मतलब रहा, जो सरकारी अफसरों के साथ मिलकर हर उस नियम की धज्जियां उड़ाते रहे जो सत्य निकेतन में इतने बड़े हादसे को रोक सकता था।
0: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
9: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सब का स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
1: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
10: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तब जाके हम लोग खुद मिल के, NDRF की टीम आई नहीं थी और जो MCD के लोग थे वो आए नहीं थे।
11: कितनी देर में आए
10: ये NDRF की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है, तो मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
1: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है, लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा पीजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
12: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा पीजीज लेता है, पर पीजी की हम छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में MCD द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हमें निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है KMC और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है, मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
13: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा, बताइए मैम।
1: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाली ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी, जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
14: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, अब वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
15: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगें, और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे।
11: होती है 11 महीने,
16: 6 महीने या 11 महीने का,
11: 11 महीना मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
16: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
11: हम बच्चों को यही बोलते रहते कि आप चेंज कर लेना सेकेंड ईयर में अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे मैम। हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
1: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने MCD के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
0: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के, जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
1: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन PG छोड़कर घर बुला लिया है।
17: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो PG हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
18: मेरे घर वाले हाँ पैनिक की वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है। तो हाँ फिर हम लोग को PG खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
1: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया हो, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना PG नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
19: मैं होमी PG में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी टेम्परेरी जा रही हूँ, क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टिल हमारा PG में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है तो दया सिंह की सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
1: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है, लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है। इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
19: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
17: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है, और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर PG कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है,
19: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि PG की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
20: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है इससे पहले जिस PG में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
1: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है तो सत्यनिकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए हैं। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
3: जो पीजी है वहां पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं और वहां पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
21: हाँ, जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है। मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
22: मैं तो थर्ड ईयर में हूँ तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो, हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज है हमने पहले भी उठाई है। हॉस्टल की मांग है DU की बहुत टाइम से, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार पीजी विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी पीजी में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है पीजी, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
23: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो पीजी है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे के प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देंगे। और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप पीजी लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे। उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने पीजी में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
24: पीजी की सिचुएशन तो सब जगह जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा, उनसे ज्यादा ही खराब है।
1: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र पीजी और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है। मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है। देखना होगा कि कितने समय अब इस

0: आपकी बजट का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला। स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
1: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है और मैं तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए। और जब खुदाई होगी, अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहां जहां खुदाई होती है वहां वहां शिव मिलते हैं।
2: भाई ये जो मस्जिदें होती थी, ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहां आज भी है, मेरे यहां चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी। तो वो ही है, और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहां ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी। कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये एसआई की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है। दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
3: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
4: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
3: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
4: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
3: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और वो भी विधिक रूप से वैध।
0: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी। यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्त नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
5: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुश किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
0: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी? सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ? मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया?
6: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है। कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जो इस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई?
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डेप्यूटी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना भागलपुर भोजपुर बक्सर तक पानी ही पानी, तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है, तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर वहाँ अगर ऐसा कुछ हो, कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहाँ जेसीबी कैसे जाएगी, यहाँ आने में मुश्किल हो गया, वहाँ जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा, हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बस कॉमर्शलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर से सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो यह है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। यह हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा अच्छा,
5: हाँ, मैं रहता हूँ भाई साहब।
6: लेकिन एक मिनट, आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं।
5: हाँ, मैं आपको बताऊँ, जो आप बोल रहे हैं ना कि ये सपोर्ट लगा रखा है,
6: ये सपोर्ट,
5: एक मिनट जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये पिलर है एडिशनल सपोर्ट के लिए हमने लगाया हुआ है, तो ये सेफ्टी पर्पज पे ही लगाया हुआ है ना, पिलर है यहाँ पे, बगैर पिलर के 5 मल जी कैसे बन जाएगा आप बताएं।
6: लेकिन देखिए, आप देखिए तस्वीरों में, आप अगर ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइए, आप स्टूडेंट्स आइए इधर प्लीज, आइए स्टूडेंट्स आइए प्लीज, आप बताइए कि इस तरीके के पिलर लगा करके छज्जे बढ़ाए गए।
4: हाँ, यहाँ पे मोस्टली सारे बैल्कनीज निकले हुए हैं, काफी 2-2 फीट 3-3 फीट ऐसे निकला हुआ है इधर, और ये सारे बिल्डिंग्स की ऐसी हालत है कि सब जगह बैल्कनी,
6: जिनका पीजी है ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो आपको तो साफ दिखाई पड़ रहा है, बताइए।
4: यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है, सभी बिल्डिंग्स की ये सिचुएशन है, किसी में देर आर नो पिलर्स।
2: तो ये सभी बिल्डिंग्स का, ये आप जाओगे अंदर आप देखना, तो यही सेम कंडीशन।
1: तस्वीरें सत्य निकेतन इलाके का सच बता रही हैं, छात्र गवाही दे रहे हैं, लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके लोग इतने बड़े हादसे के बाद सच पर पर्दा डालने से नहीं चूकते। लेकिन सत्य निकेतन के सच को अब छिपाया नहीं जा सकता।
7: महज 10 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पे बिल्डिंग पूरी निस्तनाबूत हो गई, और हम खड़े हैं बिल्डिंग नंबर 111 और 110 के बीच में। ये दोनों बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें कोई ताजुब नहीं है। दोनों बिल्डिंग एक जर्जर हालत में है, एक में थोड़ा बाहर से लीपा पोती हुई है, सब 5 मंजिला इमारत है।
1: आज तक संवाददाता मौसमी सिंह अब जिस सच से देश को खबरदार करने जा रही हैं, वो अफसर से लेकर सरकारों की नियत पर सवाल उठाता है, जो इस तरह के हादसों के बाद ही जागते हैं।
7: आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की हकीकत। जब आप एंटर करिए तो यहाँ दोनों बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता जिस पर हम लोग खड़े हुए हैं। बिल्डिंग के भीतर आप आते हैं, सर पर आपको एसी मिलता है, और यहाँ पे जाल मिलता है पूरे तार का। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मतलब दर्जनों मीटर है यहाँ पे। और इधर आइए, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वाटर मीटर्स भी पूरे लगे हैं, 7 लगे हैं। और ये बालकनी देखिए, टूटी फाटी बालकनी, सारा सरिया बाहर निकला हुआ है। और उसके अलावा ये तार आप दिख रहे हैं, तो हमने 12 मीटर यहाँ गिनाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मीटर है। ये बीम यहाँ नीचे तक पूरी हिली हुई है, पूरी दीवार ऊपर से नीचे तक क्रैक है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये तस्वीर है उस बिल्डिंग की जहाँ पे 50-60 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह कमरों में रह रहे हैं। ऊपर सीलिंग देख लीजिए आप, तो सीलिंग पूरी सरिया जो है जंग खा गई है, और किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि सीलिंग ढह सकती है। और जो रास्ता है एंट्रेंस का दोनों बिल्डिंग के लिए, उसमें दो बाइक खड़ी है, सिर्फ एक बित्ता का ये रास्ता है, एक हाथ का ये रास्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई फायर या कोई दिक्कत होती है, आइए आपको दिखाते हैं यहाँ से घुस के, पवन हमारे कैमरामैन है, तो ये है रास्ता ऊपर जाने का, यानी कि और इससे ज्यादा कुछ सामान यहाँ पे। दो लोग अगर खड़े हो जाए, आप खड़े हो भैया यहाँ पे, दो लोग खड़े हो जाए तो चलने की जगह नहीं है, रास्ता बंद हो जाएगा। अगर कोई गिर जाए, लड़खड़ा के स्टैम्पीड हो जाए, यहाँ पे पूरी सिचुएशन ऐसी है, अंदर ना खिड़की है ना दरवाजा है, सिर्फ दरवाजा एंट्री के लिए है।
1: इसी तरह की हालत को छिपाने की कोशिश शायद हॉस्टल डेज के बेसमेंट में भी हो रही थी, जिसे लेकर एमसीडी और उसके अफसर जाग गए होते तो कई परिवार नहीं उजड़ते।
8: बहुत डेंजरस है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है। कभी भी आते जाते वहाँ पे पानी टपकता रहता है, पूरा सीलन है, वो छज्जा जो आप देख रही हैं कभी भी गिर सकता है, तमाम मीटर ये देख रही हैं कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं,
7: टूटा फाटा है,
8: टूटा फूटा आप देख, उधर पूरा लटका हुआ है वायर, देखे बहुत खतरा है मैम। ये मतलब बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ है, बहुत मतलब मुश्किल हालात है यहाँ पे। और हमारे पास मेन बात है कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी में हम यहाँ रह रहे हैं। बहुत दूर दराज से बच्चे आए हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय पास हॉस्टल नहीं है कि हम हॉस्टल में रह सके। तो और इसका रेंट देखिए आप, इतना महंगा रेंट है, एक एक बेड का ये 15-15 हजार, इसमें एक फ्लैट है जिसका रेंट 25 हजार रुपए है।
1: छात्रों की इसी मजबूरी का फायदा हॉस्टल माफिया उठा रहे हैं, वो जानते हैं कि छात्र कहाँ जाएंगे, इसलिए अपनी शर्तों पर अमानवीय हालत में छात्रों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है।
7: देखिए खिड़की की हालत ये है, और आइए आपको दिखाते हैं जो अकोमोडेशन है यहाँ पे। ये है 25 हजार का आलीशान अकोमोडेशन, कोई खिड़की ना दरवाजा, उधर का भी बंद किया गया है। बाहर देखेंगे तो एक और बिल्डिंग आपको नजर आ जाएगी, जाला वाला पड़ा हुआ है पर वायरिंग पूरी है।
8: 25 हजार रेंट है, आप देख लीजिए, 2 बच्चे 3 बच्चे इसमें रहते हैं, और काफी महंगा है मैम। और देख लीजिए बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बहुत बुरा हाल है उसका।
7: मेन बात खड़े हुए घुटन हो रही है,
8: महसूस कर सकती है,
7: घुटन महसूस हो रही है बिना एसी के। एसी चलेगा तो कितना बिल आएगा आप ये सोच लीजिए। एक पंखा लगा हुआ है, ये किचन का हालत देखिए, ये छोटा किचन है, यहाँ सिलेंडर लगा हुआ है, कोई एग्जिट नहीं है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं है।
1: दिल्ली में पिछले साल से अब तक 6 बड़े हादसे।
0: एमसीडी के जिन ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है वो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे, लेकिन जिनके बच्चे चले गए वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, उनका सब कुछ जा चुका है, लेकिन जो ऑफिसर्स जिनका काम इमारतों की जांच करना था, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह मिलती है, क्या उन्हें सिर्फ सस्पेंड करना काफी है? वो कब जेल जाएंगे? क्योंकि जब तक इस जानलेवा लापरवाही के लिए जिम्मेदार ऑफिसर्स को कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ऐसे हादसों को रोका नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा सवाल है।
1: दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों की इमारत में दबकर मौत के बाद सरकार अब सत्य निकेतन इलाके की खतरनाक इमारतों को गिराने और पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात कहती है।
9: कोई भी डेंजरस बिल्डिंग को छोड़ा नहीं जाएगा और जितनी भी बिल्डिंग्स ऐसी पाई जाएंगी उन सबका स्ट्रक्चरल ऑडिट होगा और उनको भी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और हम अधिकारियों के साथ मिल करके इस बात पे पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बना रहे हैं कि जो भी बिल्डिंग जितनी पुरानी बनी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, 40 साल पुरानी है, उनको अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट का परफॉर्मा देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उनकी बिल्डिंग सेफ है या नहीं है।
1: लेकिन बेसमेंट खोदने की वजह से हुए इतने बड़े हादसे ने देश के छात्रों की उन समस्या को उघाड़ दिया है जिन्हें देखकर भी अब तक अनदेखा किया जा रहा था।
10: बिल्कुल धूल ही धूल था, 5 मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं, इतना धूल थी वहाँ पे। देन उसके बाद शोर होना चालू हुआ कि बिल्डिंग गिर गई, बच्चे दब गए, बिल्डिंग गिर गए, बच्चे दब गए। तो सभी बिल्डिंग से लोग पहले तो डर गए थे हम लोग कि आगे बढ़े कि ना बढ़े। देन थोड़ा सा दस्त कम हुई तब आगे बढ़े और बच्चे स्टूडेंट इकट्ठे हुए तब जाके हम लोग खुद मिलके, एनडीआरएफ की टीम आई नहीं थी और जो एमसीडी के लोग थे वो आए नहीं थे।
11: कितनी देर में आए ये लोग?
10: ये एनडीआरएफ की जो टीम थी वो आधे घंटे बाद आई थी, उसमें भी 11 लोग आए थे, हथौड़े लेके आए थे। हाँ। वो सिर्फ ऐसे ऐसे हथौड़े मारे थे, हमें गुस्सा लगा था, मेरा गला इसलिए खराब है बिकॉज मैं उनसे लड़ गया था कि मशीन कहाँ है। मैंने तो बहुत सारी मशीन डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रखी है कि मशीन कहाँ है, मशीन लेके आओ। हम लोगों ने स्लैब खींच खींच के निकाला है, तब जाके स्लैब निकलने से वहाँ पे 3 बच्चे निकले थे।
1: पेपर लीक नतीजों में देरी, परीक्षा का तनाव, बढ़ती फीस, अभिभावकों का दबाव, देश भर के करोड़ों छात्रों की ये वो समस्याएं हैं जिनके बारे में अक्सर चर्चा होती है। लेकिन दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों की मौत ने देश को जानलेवा पीजी से नए सिरे से खबरदार किया है।
12: तो बच्चे एक सपना लेकर आते हैं कि हम अगर दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होंगे तो हमारे पास एक अच्छी डिग्री होगी, और अच्छी डिग्री आदमी के पास, बच्चे के पास जब होगी, जब वो एक अच्छी और स्वस्थ जगह पर रहेगा, उसके पास एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। पर ठीक है, बच्चा पीजी लेता है, पर पीजी की हम छात्रों की ये मांग है कि जो पीजी की गाइडलाइंस होती है वो पीजी की गाइडलाइंस सरकार तय करे, दिल्ली में एमसीडी द्वारा वो गाइडलाइंस तय हो कि तुम कितने फ्लोर बना सकते हो और एक पीजी रूम में तुम कितने बच्चे रख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि जैसे नॉर्थ कैंपस में हम हॉस्टल्स की बात करते हैं, मानसरोवर हॉस्टल है या पर कॉलेज के पास अपना अपना एक हॉस्टल है या फिर कुछ हॉस्टल्स डेवलपिंग है केएमसी और हिंदू कॉलेज में, तो ऐसे ही साउथ कैंपस जब ये है, इसका नाम पूरा साउथ कैंपस है, दुर्गाबाई देशमुख साउथ कैंपस, आपने मेट्रो का तो नाम रख रखा है मेट्रो स्टेशन का, पर साउथ कैंपस जैसी आप फैसिलिटीज भी तो इसमें प्रोवाइड कीजिए।
13: होने के बाद क्यों कार्रवाई होती है, उससे पहले क्यों नहीं होती है, बताइए। अब वो जो बच्चे मर गए उनको क्या वापस लाया जा सकता है, बताइए। वो देश का भविष्य थे, वो कुछ बनने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है, अब कैसे क्या होगा बताइए मैम।
1: ये वो सवाल है जो दिल्ली में रहने वाले ये छात्र ही नहीं, हर आदमी पूछ रहा है, जानना चाहता है कि हॉस्टल माफिया पर नकेल कब कसेगी जिसने हॉस्टल डेज के आसपास रहने वाले छात्रों को सदमे में डाल दिया है।
14: और उसके अलावा लोग अपने दोस्तों के फ्लैट्स पे, रिश्तेदारों के फ्लैट्स पे जाके रुके हुए हैं, अब वो वेट कर रहे हैं, जिनके अगल बगल में पीजीज हैं उसी बिल्डिंग के बगल में, वो जगह तो पूरी ब्लॉक्ड है, अब वहाँ जाके सामान भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता।
15: अगल बगल की बिल्डिंग से आप देखोगे अभी भी अंदर जाके तो गलियां ऐसी हो रखी हैं कि सामने से ऊपर से बिल्डिंग देखोगे तो वो सारी टिल्टेड है, सारे एक दूसरे पे गिर रही है बिल्डिंगें, और अब उसके जो बिल्डिंग आज गिरी है उसके बगल में भी आप जाओगे तो वहाँ पे भी नीचे में सिर्फ पिलर सपोर्टेड दिया गया है वो रॉड्स लगा के, और वो भी आज ना कल या अभी जब ये बेसमेंट निकलेगा, बेसमेंट में लोग फंसे हुए हैं तो वहाँ पे वो अभी भी हिल रही है जब स्लैब हट रहे हैं वहाँ से, तो कंडीशन बहुत खराब है अभी के टाइम में वहाँ पे।
16: होती है 11 महीने,
17: 6 महीने या 11 महीने का,
16: 11 महीना मैक्स, हाँ मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है।
17: अच्छा भी नहीं हो सुविधा तो फंस जाते हैं।
16: हम बच्चों को यही बोलते रहते हैं कि आप चेंज कर लेना सेकंड ईयर में, अगर आप पे अभी कोई चॉइस नहीं है तो क्योंकि हमें भी पता है कि ये सेफ नहीं है और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि कोई बिल्डिंग सेफ नहीं है यहाँ पे। मैम हॉस्टल्स की तो वो बात अब डीयू प्रशासन की ऊपर आ गई ना कि वो लोग इस पे कुछ कर ही नहीं रहे, इसके बाद भी कुछ नहीं होगा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। फिर
1: दिल्ली में पिछले 3 साल में इमारत गिरने की 1113 घटनाएं सामने आई हैं, इनमें 98 लोगों की मौत हो गई। इस ताजा हादसे को लेकर जनता के आक्रोश के बाद दिल्ली सरकार ने एमसीडी के 5 अफसरों पर एक्शन लेते हुए 2 डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रणवीर सिंह को सस्पेंड किया है। लेकिन खबरदार करता सवाल ये है कि अफसर तो कुछ महीनों बाद दोबारा अपने काम पर बहाल कर दिए जाएंगे, लेकिन उन छात्रों का क्या जो अपने सपनों के साथ इन अफसरों की लापरवाही और हॉस्टल माफिया के लालच के मलबे में दबकर इस दुनिया से चले गए।
0: इस हादसे ने देश भर के हजारों परिजनों को खौफ से भर दिया है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में पढ़ रहे हैं, खासतौर से दिल्ली के, जहां के हालात सबको पता है। उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। सोचिए, जो माता पिता अपने पेट को काटकर बच्चों को 15-20 हजार रुपए हर महीने इन हॉस्टल्स का किराया भेजते हैं, उन पर यह हादसा देखने के बाद क्या बीत रही होगी। कुछ ने तो बच्चों को वापस घर बुला लिया है।
1: साउथ कैंपस का दुर्गाबाई देशमुख मेट्रो स्टेशन, जहां पर बैग लेकर खड़ी ये छात्राएं बता रही हैं कि दिल्ली में 5 मंजिला इमारत गिरने की गूंज देश भर में गई है। दिल्ली में इमारत गिरने के बाद इन छात्राओं के माता पिता ने इन्हें फौरन पीजी छोड़कर घर बुला लिया है।
18: सत्य निकेतन में जिस तरीके की पूरी घटना हुई, उसके बाद तमाम बच्चे जो हैं वो सत्य निकेतन में जो पीजी हैं उनको छोड़ करके जा रहे हैं।
19: मेरे घर वाले हाँ पैनिक के ही वजह से, वो पैनिक हो रहे हैं और मेरा इधर कोई रहता भी नहीं है रिलेटिव, तो इसीलिए वो मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ, फिर जैसा होता है, फिर अगर सिचुएशन ठीक रही तो फिर से वापस चले जाना। अभी छोड़ के तो नहीं, लेकिन हाँ टेम्परेरी जा रहे हैं। 1:30 बजे ये हुआ था ये सब, तो मैं 1:35 मेरा ऑर्डर आया था नीचे, तो मैं वही आई तो मैंने देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तब सबने बताया कि बिल्डिंग वगैरह गिर गई है। तो हाँ, फिर हम लोग को पीजी खाली करवा दिया गया, इंस्पेक्शन वगैरह होना था और ये सब, तो फिर सील था काफी देर तक, तो 5:30 बजे तक सील था, फिर हम लोग एंट्री किए हैं 5:30 के बाद।
1: सत्य निकेतन में भले ही 27 घंटे बाद दिल्ली हॉस्टल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन इस एक हादसे ने छात्रों के परिवारों को खौफ से भर दिया है। लेकिन हॉस्टल माफिया की दादागिरी देखिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये छात्राएं अपना पीजी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मकान मालिकों ने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन करवाया हुआ है।
20: मैं होमी पीजी में रहती हूँ, मैं हरियाणा से हूँ और अभी मैं किसी रिलेटिव के घर जा रही हूँ अपने। हाँ जी, टेम्परेरी जा रही हूँ क्योंकि अभी हमने 11 महीने का एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उससे पहले नहीं छोड़ सकते हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ का, क्योंकि सारी बिल्डिंग अटैच्ड है, एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो ये सब हिल जाएगा, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टिल हमारा पीजी में इंस्पेक्शन वगैरह हुई है, तो दैसाइन की सब सेफ है अभी के लिए, बट स्टिल मन नहीं मान रहा क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तो हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं मान रहे हैं अभी।
1: तो दिल्ली में छात्रों की जान सस्ती है, लेकिन हॉस्टल का किराया महंगा है। इसके खिलाफ मेट्रो स्टेशन पर छात्र अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो।
19: जा रहे हैं सब बच्चे, पैनिक कर रहे हैं घर वाले भी कि घर वापस आ जाइए, कि बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ पे, या चेंज कर लीजिए लोकेशन अपनी।
18: एक पैनिक सिचुएशन यहाँ पर जरूर दिखाई पड़ रही है और ये लग रहा है कि इन लोगों के अंदर एक तरीके का जो यहाँ पर पीजी कोलैप्स हुई है, गिरी है पूरी तरीके से, उसके बाद खौफ की सिचुएशन इनके अंदर बनी हुई है। तमाम बच्चे, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है,
19: मोस्टली जो फर्स्ट ईयर होते हैं वही हॉस्टल में रहते हैं, क्योंकि सेकंड ईयर आते आते आपको पता चल जाता है कि पीजी की, खाने की, ओनर की कितनी गंदी कंडीशन है हर चीज की, तो सेकंड ईयर में शिफ्ट हो जाते हैं सब लोग।
21: फर्स्ट ईयर के लिए 2 बच्चे दे गॉट डेड, तो उनके फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी फैमिली और उनके जितने भी लोग, सब कितना पैनिक सिचुएशन, सब कितना डर गए होंगे कि एक एक महीने पहले, एक एक हफ्ते पहले बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे ये सब चल रहा है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। आपको पता है, इससे पहले जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे मेरी सिक्योरिटी रिफंड नहीं हुई।
1: दिल्ली में 5 मंजिला हॉस्टल गिरने के बाद छात्र और उनके परिवार डरे हुए, कोई कुछ दिन के लिए घर जा रहा है, तो सत्य निकेतन के आसपास रहने वाले छात्र अपना पीजी छोड़कर कॉलेज में शरण लेने पहुंच गए। लेकिन श्री वेंकटेश्वर कॉलेज साउथ कैंपस में बैठे ये छात्र आगे कहां रहेंगे, इस सवाल ने इन सबको परेशान कर दिया है।
18: जो पीजी है वहाँ पर अगल बगल के, उस पीजी में ये लोग ठहरे हुए हैं और वहाँ पर अब किस तरीके का एक, क्या आपको लगता है, खौफ या एक डर जैसा माहौल हो गया है कि इसी वजह सब लोग, आप लोग शिफ्ट कर गए?
22: हाँ,
3: जैसी मतलब पता लगता है कि कोई चीज है और उसका खतरा आपको भी अफेक्ट करने लगता है, मतलब न्यूज पर देखने से ना इतना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन फिर जब आपको लगता है कि ये इस खतरे से मैं भी प्रभावित हो सकता हूँ तो मतलब फिर वो खतरा अलग तरह से आपको असर करता है।
5: मैं तो थर्ड ईयर में हूँ तो मुझे इतना डर तो नहीं लगता है, क्योंकि हमें तो हमने तो ये सब देखा है, ये सब जो भी आवाज है हमने पहले भी उठाई है, हॉस्टल की मांग है DU की बहुत टाइम से, एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी नहीं होती है हॉस्टल की मांग कभी भी। आप एक बार PG विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कोई भी नॉर्म एक भी PG में फॉलो नहीं होता है, मेरी गारंटी है। आप इंस्पेक्शन की बात करेंगे, इंस्पेक्शन करने की जरूरत तक नहीं है ना, आप आंखों से देख सकते हो कि कितने खराब हालत में है PGs, इंस्पेक्शन की कोई जरूरत नहीं है।
22: डर का तो है माहौल ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी जो PG है उसमें अंदर घुसते ही बस दीवारें हैं, बस जो रूम कमरे हैं कनेक्ट किए उसको प्लाई से कनेक्ट किए हैं, एक दूसरे के प्लाई ऐसे मारोगे प्लाई देंगे, और रेंट लेते हैं 10,000 रुपए, 15-10,000 रेंट देता है, 20,000 डिपॉजिट देता है, फिर अलग से ब्रोकर चार्ज देता है। एक बार आप PG लोगे तो 35-40,000 देना पड़ता है हर फैमिली को एक ही बार में जब आप आओगे, उसके बाद लास्ट में वो सिक्योरिटी वापस नहीं करते हैं जो 15-20,000 लेते हैं, आपका बोल देंगे आपने PG में तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, कहीं ना कहीं से वो पैसा काट लेते हैं।
23: PG की सिचुएशन तो सब जगह जहाँ पे भी प्राइवेट है वहाँ खराब ही है, बट सत्यनिकेतन वाला एरिया ये बहुत ही ज्यादा उनसे ज्यादा ही खराब है।
1: सत्यनिकेतन दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस के काफी करीब है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेंकटेश्वर कॉलेज, आर्यभट्ट, मोतीलाल नेहरू और मैत्रेयी कॉलेज पास में ही है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में छात्र PG और हॉस्टल में रहते हैं। लेकिन रविवार की घटना ने बता दिया है कि छात्रों की इस मजबूरी का हॉस्टल माफिया दोनों हाथों से फायदा उठा रहा है। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।
0: और अब बात करेंगे सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में, क्योंकि सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। 5 सितंबर को सहारनपुर प्रशासन ने एक मस्जिद को अवैध करार देते हुए जमींदोज कर दिया था। मस्जिद कमेटी और विपक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन किया गया वो पूरी तरह से अवैध है, मतलब प्रशासन ने जिस मस्जिद को अवैध बताकर जमींदोज कर दिया था उस एक्शन पर अब सवाल उठने लगे हैं, सियासी सवाल। सवाल यही है कि 2027 चुनाव के चलते सियासी तनाव है या फिर मस्जिद पर बुलडोजर चलाने के एक्शन को लेकर जिला प्रशासन की हड़बड़ी के पीछे गड़बड़ी है।

0: क्या 2027 का चुनावी एजेंडा हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के इर्द गिर्द घूमेगा? क्योंकि सहारनपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, तो वहीं मस्जिद गिराए जाने के बाद मिले कुएं से हिंदू मुसलमान वाले एंगल की एंट्री पूरे मामले में हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम को कुएं का इतिहास पता करने के लिए बुलाया है, तो हिंदू संगठनों ने कुएं में मंदिर का चैप्टर जोड़ दिया है।
1: सहारनपुर की कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को जब ध्वस्त किया गया, जब उसका मलबा वहां से हटाया गया, उसके नीचे जो कुआं निकला था, उस कुएं की जांच करने के लिए ASI की जो टीम है अब वो सहारनपुर पहुंच चुकी है। अब आप विजुअल्स में देखेंगे कि ये वही ग्राउंड है और ये वही कुआं है जो मलबे के नीचे से निकला था, और ये टीम ASI की जो है अब इस कुएं के आसपास पहुंच चुकी है। अब इस कुएं की जांच जो है वो की जाएगी। अब इस कुएं की जांच में देखा जाएगा कि ये जो कुआं है कितना पुराना है और लगभग इसके अंदर क्या कुछ खुदाई के बाद और निकल कर आएगा। अब टीम अपना काम शुरू कर चुकी है, देखना होगा कि कितने समय अब इस जांच में लगेगा, इस प्रक्रिया में लगेगा, और क्या क्या अब इस कुएं की जो जांच है उसमें निकल कर आएगा। फिलहाल जो ASI की टीम है वो यहां पहुंच चुकी है।
0: दावा यही है कि मस्जिद का मलबा हटाते वक्त एक कंक्रीट का स्लैब मिला, स्लैब को हटाया गया तो उसके नीचे एक कुआं मिला जिसकी चौड़ाई करीब 1.5 मीटर यानी 5 फीट के करीब है, जबकि गहराई 20 से 22 फीट है। हिंदू पक्ष अब इसे मंदिर का हिस्सा बता रहे हैं, तो कांग्रेस सांसद का कहना है कि मस्जिद में कुआं होना आम बात है।
2: एक ऐतिहासिक कुआं मिला है, और मैं तो कह रही हूँ, स्पष्ट कह रही हूँ भाई, उसकी खुदाई करिए, खुदाई होनी चाहिए, और जब खुदाई होगी अगर शव मिले तो तुम्हारे, और शिव मिला तो हमारे। जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ वहाँ शिव मिलते हैं।
3: भाई ये जो मस्जिदें होती थी ये आदमी अपने रिठान पे बनाता था। रिठान मतलब जो खेत के अंदर एक ठिया होता था। मेरे यहाँ आज भी है, मेरे यहाँ चल के देख लो आपको, कुआं है, कुएं के बराबर में मस्जिद है। बोरिंग वोरिंग होते नहीं थे, मस्जिद उसी में से रेहट लगा हुआ होता था, रेहट से पानी भरते थे, उसी से वजू हो जाती थी, तो वो ही है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये सहारनपुर है, यहाँ ना हिंदू मुसलमान होता। ये लड़ाई प्रशासन के साथ है और प्रशासन के साथ ही रहेगी, कोर्ट की लड़ाई है और कोर्ट में ही रहेगी।
0: कुएं की कहानी क्या है ये ASI की जांच में सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि जिस मस्जिद को लेकर दावा है कि 100 साल पुरानी है, आखिर उस मस्जिद को क्यों गिरा दिया गया है? दरअसल 5 सितंबर को सुबह 4 बजे मस्जिद पर बुलडोजर चला इस दावे के साथ कि मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी हुई है यानी अवैध है। हुआ यूं कि 16 जुलाई 2026 को सिटी मजिस्ट्रेट अदालत ने मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए 6,41,00,000 का जुर्माना लगाया। आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने जिला अदालत में अपील की, लेकिन जैसे ही अपील खारिज हुई मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया।
4: ये जैसा कि आपको संज्ञान में है, सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की सरकारी जो जमीन थी उस पर एक ये इमारत बनी हुई थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय में बेदखली के आदेश किए गए थे, और उस न्यायालय के आदेश की पुष्टि जिला जज महोदय के द्वारा की गई है, और न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में आज ये बेदखली की कार्रवाई की जा रही है।
5: सर ये यहाँ पर क्या कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी?
4: नहीं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होती थी, कुछ किराएदार थे, एक डाकखाना भी चल रहा था और कुछ व्यक्ति किराए पर भी रहते थे।
5: तो साथ साथ इसको खाली कराने के अलावा जुर्माने की भी बात की गई है, तो जुर्माना कैसे वसूला जाएगा?
4: जुर्माना जो इसके मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा 6,41,00,000 रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और वो भी विधिक रूप से वैध।
0: हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद करीब 100 साल पुरानी थी, वही मस्जिद जिसे अवैध कब्जा बताते हुए बजरंग दल की ओर से शिकायत की गई थी, यूपी लोक परिसर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई तो मस्जिद कमेटी ने 150 साल पुरानी इमारत बताई। 1 जनवरी 1911 का बिजली बिल और वाहिद खान याकूब खान की ओर से दान वक्त नंबर 451 के दस्तावेज दिखाए, लेकिन प्रशासन ने दावे को गलत बताया क्योंकि सहारनपुर में बिजली ही 1912 में आई थी। जिला प्रशासन का दावा है कि मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन कानून के तहत हुआ है, इसमें कोई खामी नहीं है, यानी जो कुछ हुआ है वो कानून के तहत हुआ है।
6: यहाँ जनपद सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में एक मस्जिद थी जिसको सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा अवैध पाया गया था। उस आदेश के विरुद्ध जो मस्जिद कमेटी थी वो फर्स्ट अपील में गई थी, उनकी अपील खारिज हो गई है। इसमें सिटी मजिस्ट्रेट का जो ओरिजिनल ऑर्डर था उसको पुष्ट किया गया है। इस अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां जारी। हमारे प्रशासन ने जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं वो पूरे किए थे, पूरे प्रोसीजर के अंतर्गत ही ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है।
0: अब मस्जिद कमेटी और मुस्लिम पक्ष का सीधा आरोप है कि मस्जिद को गिराने की इतनी जल्दी क्या थी, सिर्फ जिला अदालत में अपील खारिज होते ही मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ, मस्जिद कमेटी को ऊपरी अदालत में जाने का मौका क्यों नहीं दिया गया।
7: शहर में जो है तरह तरह की अफवाहें सुनने को मिली गई कि मस्जिद को जो है बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी, और उसके थोड़ी देर बाद जो हमारे जिला स्तर के जितने भी सियासतदान हैं वो सोशल मीडिया पर दावा करने लगे कि हमारी फला उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है, कोई कह रहा था कि हमने ज्ञापन दे दिया है, तो तमाम लोगों में और हम लोगों में भी ये मुतमईन था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और कोर्ट में जाने का ऊपर समय मिलेगा जो इस पर पैनल काम कर रहा है। लेकिन सुबह नजारा कुछ और ही देखने को मिला कि उस पर बुलडोजर कार्रवाई कर दी गई। यहां तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं कि इतनी जल्दी और हपड़ दपड़ में बुलडोजर कार्रवाई क्यों की गई।
0: मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज तक ब्यूरो।
8: और इसी के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें आज तक पर लगातार जारी है।

0: आज तक सुरक्षा सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए भारत की बात कही, कहा आज दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है भारत, सेना आतंकवाद के खिलाफ दे रही है करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य मंत्रियों के साथ की अहम बैठक, मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने पेश किया कामकाज के ब्यौरा, योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में गिरफ्तार आरोपी हरिराम और पत्नी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 2 दिन की पुलिस कस्टडी में बेटा महेश, एमसीडी के डिप्टी कमिश्नर समेत 5 ऑफिसर्स भी सस्पेंड। सहारनपुर में मस्जिद के मलबे के नीचे मिला 20 फीट गहरा कुआं, मौके पर पहुंची एसआई की टीम ने निरीक्षण किया, अलग अलग एंगल से जांच शुरू। बिहार के 13 जिलों में बाढ़ का कहर, 29 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, पटना, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर तक पानी ही पानी। तेजस्वी की प्रधानमंत्री को चिट्ठी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। दिल्ली में सत्यनिकेतन हादसे के बाद भी हॉस्टल और पीजी में रह रहे छात्रों की सुरक्षा पर बड़े सवाल कायम हैं। जर्जर इमारतें, सकरी गलियां, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और मनमाना किराया, छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर हॉस्टल माफिया बेखौफ है। ऐसे में सवाल यह है कि अगला हादसा रोकने के लिए आखिर कब कार्रवाई होगी।
1: दिल्ली में पर्दे आए कई घरों के चिराग बुझ गए, लेकिन जो बच गए हैं उनकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि सत्य निकेतन में रहने वाले हजारों छात्र जानते हैं कि अगला नंबर उनका हो सकता है।
2: कल बहुत ही एक पैनिक सिचुएशन हुई, तो बच्चों के लिए एस्केप के लिए कोई इमरजेंसी डोर्स गेट्स कुछ भी नहीं है, तो अगर कल को दूसरी पीजीज में भी कोई पैनिक सिचुएशन हो, इतनी नैरो गलियां हैं कि बच्चे कल को कोई पैनिक सिचुएशन हो तो वो कैसे निकलेंगे, उनके लिए तो कोई एस्केप ही नहीं है ना।
1: सत्य निकेतन में रहने वाले ये छात्र सरकार को खबरदार कर रहे हैं कि अगर भविष्य में वो ऐसी मुसीबत में फंसे तो बचा भी नहीं पाओगे।
3: आप अंदर जाएंगे, पतली पतली गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, और ऐसी छह छह मंजिल, पांच पांच मंजिल की बिल्डिंग्स बना रखी हैं, उसमें भी अंदर, वहां अगर ऐसा कुछ कल जैसा कुछ होता है तो वो निकल नहीं पाएंगे बच्चे, वहां जेसीबी कैसे जाएगी, यहां आने में मुश्किल हो गया, वहां जाने में कैसे जाएगी जेसीबी।
1: 36 साल पुरानी इमारत के इस मलबे ने दिल्ली में हॉस्टल माफिया से एक बार फिर खबरदार किया है, जो लालच के लिए बच्चों की जान से खिलवाड़ करने को भी तैयार है।
4: पानी, इलेक्ट्रिसिटी, यही सब थोड़ा लगता था, क्योंकि पानी नहीं अच्छा और हाइजीनिक फूड बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बस कमर्शियलाइजेशन हो गया है कि बस हमें पैसे कमाने हैं, और ये सबका है, मतलब कोई अगर बेच रहा है दुकान उसका है या फिर हमारे ओनर से सब।
1: अगर पैसे कमाने का लालच हॉस्टल डेज के मालिक हरिराम बंसल को नहीं होता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। पुलिस ने भले इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सच तो ये है कि सत्य निकेतन इलाके में जानलेवा पीजी चलाने वालों की कमी नहीं है। ये हॉस्टल डेज की बगल वाली इमारत है, जो लोहे के पिलर के सहारे टिकी हुई है। अब भले ही इसे गिराने की बात की जा रही हो, लेकिन सत्य निकेतन में इस तरह की इमारतों की कमी नहीं है।
5: मेरा घर है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का।
6: अच्छा अच्छा।